0: पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा।
1: एज द कमांडर इन चीफ स्क्वाड्रन लीडर सिंह और स्क्वाड्रन लीडर शर्मा और एयर मार्शल मिश्रा, I don't look at the gender.
2: Right.
1: Like I said, when you select the pilots, it is the training that they have gone through, their experience, and most importantly, their performance in earlier gunnery exercises.
0: S-400 को निशाना बनाने की पाकिस्तानी चाल को नाकाम करने वाले पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा।
1: They were desperate to find where this S-400, like you asked me, where did you fire it from? The Pakistanis were desperate to find out where they are. They employed all the tricks in the book. I'm very sure they were getting satellite help from other nations. I don't want to use the name of the country. They were using air intelligence. They were using these EW systems to find out, because that was the biggest threat as far as they were concerned. Every time they got airmen, they got shot by an S-400. They had deployed spies within our country, activated their sleeper cell within our country to find out where the S-400 was.
0: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई 2025 को आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचते हैं, तो उनका स्वागत तत्कालीन वेस्टर्न एयर कमांड का नेतृत्व करते एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा करते हैं।
1: I had just asked him, can I travel with you in your vehicle? He just did not take a microsecond. Yes, he said yes, of course, why not? So for next 1.5 hours, I'm fortunate to have had the company of probably the bestest leader of the nation that we've had till.
0: Operation Sindoor mein Western Air Command ko lead karne wale Air Marshal Jitendra Mishra isi saal 30 April ko retire hue aur 3 mahine ke andar hi unhe Ram Mandir ke pehle CEO ki zimmedari di gayi. सवाल है कि सेना के एक पूर्व अफसर को इसके लिए क्यों चुना गया, जबकि उनका नाम उन 3 नामों में शामिल नहीं बताया गया जिसमें से एक को इस जिम्मेदारी मिलने की बात 24 घंटे पहले तक की जा रही थी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को संचालित करने वाला पहला सीईओ कौन होगा, इसे लेकर जिन नामों पर कयास लगाए जा रहे थे उनमें पूर्व आईएएस योगेश्वर राम मिश्रा, पूर्व आईपीएस राजेश पांडे और बिहार कैडर के आईपीएस डॉक्टर परेश सक्सेना के अलावा आईएएस दिनेश सिंह का नाम शामिल था, लेकिन जितेंद्र मिश्रा को सीईओ बनाया गया है।
3: एयरफोर्स में इनको बहुत सारे मेडल मिले हैं, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला है उनको, और जो कि कॉन्फ्लिक्ट में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, और आपको जान करके सबसे खुशी होगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी।
0: जितेंद्र मिश्रा की छवि ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है, इसके लिए उन्हें सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल भी मिला है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से उनका रिश्ता है, यानी राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति में भी उनका यूपी कनेक्शन है। जितेंद्र मिश्रा करीब 40 वर्षों तक वायुसेना में रहे और कई महत्वपूर्ण कमांड संभाली, ऐसे में मंदिर के बढ़ते प्रशासन, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और बड़े स्तर के ऑपरेशनल कामकाज के लिए उनका सैन्य प्रशासनिक अनुभव अहम माना जा रहा है।
3: बहुत अच्छा, हमारे इस जो मंदिर के संचालन के लिए जो आवश्यकता है वो शायद पूरा कर सकेंगे, उनमें सफल नहीं है। नहीं, हमेशा इम्प्रूवमेंट होता सकता है, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ते रहने के समय समय के अनुसार कुछ परिवर्तन होता है, आगे बढ़ता रहता है।
0: मंदिर ट्रस्ट में 3 नए सदस्य भी बनाए गए हैं। ये बदलाव मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के 3 महीने बाद हुआ है। इस मामले में 8 आरोपी जेल में है। इसके बाद जुलाई महीने में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपना पद छोड़ा। आगे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना न दोहराई जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से एक ऐसे सैन्य अफसर को सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनकी चर्चा 3 सबसे आगे बताए जा रहे नामों में थी ही नहीं।
1: As far as this dispensation is concerned, there was not a single restriction. It was left to the military to decide. It was left to the military to decide the ways that you fight them.
0: राम मंदिर के पहले सीईओ पद की जिम्मेदारी देश के कैसे बड़े सैन्य अफसर को दी गई है, जिनका करियर बेदाग है, जिनकी इमेज ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है। इस तरह जितेंद्र मिश्रा को ये जिम्मेदारी देकर ये भरोसा देने की कोशिश की गई है कि संदेश ये पहुंचे कि सेना की तरह मंदिर ट्रस्ट में भी अनुशासन भक्तों के भरोसे को बरकरार रखेगा।
2: अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले के बाद इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी और विपक्ष लगातार सवाल करते आए हैं। 5 से 6 महीने में यूपी में चुनाव होने हैं और उससे पहले योगी और अखिलेश दोनों ही इस मामले पर एक दूसरे को घेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्रस्ट के नए सीईओ बनाए जाने पर पूछा है कि क्या नई चीज होने से पुरानी भूल जाएंगे।
0: श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना के जांबाज अधिकारी रहे। उन्होंने भारतीय वायुसेना में करीब 40 साल सेवा दी। 3000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव उन्हें। करगिल युद्ध के दौरान मिराज 2000 पर लेजर गाइडेड बमों को ऑपरेशनल बनाने वाली टीम का हिस्सा रहे। लेकिन जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर हो रहा विवाद भी क्या थम जाएगा? अखिलेश यादव के सियासी सवाल को देखकर ये बात सामने आती।
4: श्रद्धा और आस्था, उससे खिलवाड़ की बीजेपी ने, और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है।
5: और
4: कोई मंदिर जान लो आप, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे, गरीब भीख मांगने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी चोरी नहीं करते मंदिर के।
0: राम मंदिर से दूरी रखने वाले अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मामले पर पैनी नजर बनाए हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबकी आस्था से जुड़ा ये मुद्दा उन्हें 2027 में फायदा पहुंचा सकता है, बीजेपी की उस वोट बैंक में सेंध लगा सकता है जो अब तक उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बीच की सबसे बड़ी दीवार है।
6: नई चीज होने से हम और आप पुरानी चीज भूल जाएंगे क्या? हमें कोई शिकायत किसी से नहीं है, कोई शिकायत नहीं किसी से, लेकिन जो राम धन के साथ हुआ, चंदा जिस तरीके से वहां से गायब हुआ, या चढ़ावे के साथ जो चोरी हुई, आपने सामान्य कर्मचारियों को जेल भेज दिया, अगर आपने बड़े लोगों को क्लीन चिट दिया है तो उनको क्यों जेल भेजा, उन्हें भी बाहर करो।
0: जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा, तब अखिलेश का हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को चुनौती देना बीजेपी को रास नहीं आ रहा, और इसीलिए वो इसकी काट के तौर पर जनता को समाजवादी सरकारों में हिंदुओं से कथित भेदभाव की याद दिलाती।
7: आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी के कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है।
0: चुनाव से पहले जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी के हिंदू विरोधी होने का नैरेटिव सेट करने में जुटी, तो मुख्यमंत्री एक बार फिर अखिलेश यादव पर मुस्लिम परस्त होने का ठप्पा लगाने में जुट गए।
7: अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी।
0: बीजेपी की पूरी सियासी यात्रा में राम मंदिर जैसे भावनात्मक मुद्दे का अहम रोल रहा है, इसीलिए अयोध्या के राम मंदिर की चढ़ावा चोरी की घटना को समाजवादी पार्टी ने लपका, तो योगी आदित्यनाथ पहले कब्रिस्तान की चार दीवारी वाला मुद्दा उठाने से लेकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में नमाज के दावे वाला 23 साल पुराना प्रकरण तक याद दिलाया।
7: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी, अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ, जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
0: इस तरह योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर बैकफुट पर नहीं दिखना चाहते। SIT जांच करवाने का ऐलान करते हुए उन्होंने दोषियों को सजा दिए जाने की बात कही, तो वही विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि राम मंदिर के खिलाफ रहे लोग अब आस्था की बात करने लगे।
7: हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी।
0: भगवा वेश में रहने वाले और गोरक्षपीठ की महंत के तौर पर योगी आदित्यनाथ खुद हिंदुत्व का चेहरा है। इसके अलावा उनके बुलडोजर मॉडल उत्तर प्रदेश से बाहर भी चर्चा होती। इस तरह योगी अपने विनिंग फॉर्मूले से पीछे हटने के मूड में नहीं।
2: कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज और कल मथुरा और वृंदावन में रहेंगे। जन्माष्टमी के दिन उनका श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। सीएम की ओर से मथुरा वृंदावन के लिए करीब 1051 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात प्रस्तावित है और इन सबके

0: मुख्यमंत्री चलते हैं।
1: बुलडोजर एनकाउंटर, सैफई से रामपुर तक यानी अखिलेश यादव से आजम खान तक पर वार, और वृंदावन बिहारी लाल का नाम लगातार लेते हुए क्या 2027 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने का सियासी चतुर्भुज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बना लिया है।
2: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
3: हर दिन राधे राधे कहते हैं।
4: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए तब हम सच मानेंगे।
5: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाएगा। वृंदा

0: अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव सवाल चंदा चोरी पर करते हैं। सनातन के अपमान के मुद्दे पर जब अखिलेश यादव घेरे जाते हैं तो फिर इटावा के केदारेश्वर मंदिर निर्माण की याद दिलाते हैं। और तब क्या समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट पर घेरने के लिए अब योगी आदित्यनाथ लगातार वृंदावन बिहारी लाल का नाम भाषणों में ले रहे हैं।
1: वृंदावन बिहारी लाल के
0: 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सांस्कृतिक नैरेटिव में मथुरा की चर्चा तेज है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद क्या बीजेपी का अगला बड़ा फोकस मथुरा है? सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के हाल के भाषणों पर गौर करने पर श्री राम के साथ श्री कृष्ण का नाम लेकर वो जय कराते हैं।
1: सियावर रामचंद्र भगवान के पवन सुत हनुमान के वृंदावन बिहारी लाल के
0: सिद्धार्थ नगर हो या आजमगढ़, इटावा हो या आगरा हो, हर सभा में वृंदावन बिहारी लाल की जय मुख्यमंत्री करा रहे हैं।
1: सियावर रामचंद्र भगवान के पवन सुत हनुमान के वृंदावन बिहारी लाल के।
0: अयोध्या से बीजेपी को घेरते अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि पर घिरेंगे? ये सवाल पहले से उठता आ रहा है।
2: तो बारी इसी ब्रज भूमि की है, मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल नंदगांव गोवर्धन बलदेव ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं।
0: 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान संघ परिवार का नारा रहा अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और तब अब की बारी बांके बिहारी कहते मुख्यमंत्री ये चैलेंज सीधे अखिलेश यादव को देते आए कि राम जन्मभूमि पर आस्था के अपमान की बात करने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष क्या कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलेंगे?
3: अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपके झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है।
0: इसके जवाब में अब तक अखिलेश यादव ने यूं तो सिर्फ राधे राधे कहा है।
4: हमारे घर के पास वो बहुत है वो, और हर दिन राधे राधे कहते हैं।
0: राधे राधे की बात तो अखिलेश यादव 4 साल पहले भी कहते दिखे जब चुनाव 2022 का आया।
4: भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी समझ लें कि इस बार जनता राधे राधे कहने वाली है उनको, और वो जाने वाले हैं।
0: अखिलेश यादव ये तक कहते आए कि भगवान उनको सपने में आकर पहले ही सरकार बन जाने की बात कह चुके हैं।
5: हमारे सपने में आए थे भगवान, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन कोई

0: ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सखा बनने जा।
1: लेकिन अखिलेश के सपने की वो बात तो सच हुई नहीं, तो क्या 2027 में भी कृष्ण जन्मभूमि के मसले पर समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है?
2: अयोध्या धाम अभी तीनों का हो गया है तो यदुवंशी थोड़ा ठीक ढंग से जागरूक हो जाए तो हम यदुवंश कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ भी बढ़े। मैं बोलना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, मथुरा के मुद्दे पर वे हमेशा उनका मुंह क्यों बंद हो जाता है, क्यों बंद हो जाता है? अपने को यदुवंशी कहेंगे लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बात आएगी तो इनको वोट बैंक की चिंता होने लगती है।
1: योगी आदित्यनाथ तब लगातार कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सवाल करते आ रहे हैं जब अयोध्या चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव सवाल करते हैं।
3: श्रद्धा और आस्था उससे खिलवाड़ की बीजेपी ने, और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है।
4: और
3: कोई मंदिर जान लो आप, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे, गरीब भीख मांगने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी चोरी नहीं करते मंदिर के।
1: अयोध्या पर बोलते अखिलेश, कृष्ण जन्मभूमि पर योगी आदित्यनाथ का चैलेंज मंजूर नहीं करते, और क्या इसीलिए योगी आदित्यनाथ के भाषण से लेकर चुनावी रणनीति तक में श्री कृष्ण का नाम बढ़ रहा है?
5: सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के।
6: योगी आदित्यनाथ जी भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म में उनकी आस्था है, इसलिए अपने संबोधन के पूर्व प्रभु राम और प्रभु कृष्ण का नाम लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो वामी हैं, जो कांगी हैं, जो सपाई हैं, जो कांग्रेसी हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है।
7: जब मुख्यमंत्री जी मथुरा का नाम लेते हैं तो वो शिक्षा का नाम नहीं लेना चाहते, शिक्षा व्यवस्था का नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर का नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब मुख्यमंत्री जी किसी कम्युनल पोलराइज इशू की बात करना चाहते हैं तो वो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात नहीं करना चाहते हैं। वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है।
8: मध्य प्रदेश के राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी को लेकर मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की तैयारियों में है। विश्वविद्यालय मध्य भारत, मालवा और महाकौशल के नाम से तीन भागों में बंट जाएगा। कैबिनेट ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है।
9: ये मध्य प्रदेश की एकमात्र प्रमुख टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, नाम है राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। 1998 में बनी इस यूनिवर्सिटी में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सबसे पहले तो ये कि इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी को तीन भागों में बांट दिया जाएगा। अभी तक ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी भोपाल में थी, लेकिन अब इसे तीन हिस्सों में डेवलप किया जाएगा। पहला हिस्सा भोपाल में होगा, दूसरा हिस्सा उज्जैन में होगा, तीसरा हिस्सा जबलपुर में होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि दूर दराज से आने वाले छात्रों को राहत मिल सके। इसके साथ ही एक निर्णय और हुआ है कि राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की जगह अब इसे मध्य भारत, मालवा और महाकौशल नाम से अपग्रेड किया जाएगा। मतलब यूनिवर्सिटी के नाम से राजीव गांधी का नाम हट जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है कि ये निर्णय विश्वविद्यालय को भौगोलिक पहचान दिलाने के लिए किया गया है।
10: हम किसी भी महापुरुष का, किसी भी पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री का हम नाम नहीं हटा रहे हैं, ना हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि किसी एक ही एक के नाम से सारी योजनाएं लागू करें। हमने तो भौगोलिक दृष्टि की पहचान दी है, और मैं समझता हूं भौगोलिक दृष्टि की पहचान भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे कोई महापुरुष है उन महापुरुषों के नाम हम स्थापित करते हैं, उसी प्रकार से ये भी स्थापित करने का अभियान है।
9: इतना ही नहीं, टेक्निकल के साथ कौशल शब्द भी जोड़ा जाएगा। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की सरकार राष्ट्रहित में काम करने वाले नेताओं का अपमान कर रही है।
11: इतना महान योगदान आधुनिक भारत
4: के निर्माण के लिए जिस व्यक्ति ने दिया है उसका नाम बदल देना जो पहले से रखा हुआ है बहुत दुर्भाग्यजनक है। और इनको देश के हर उस आदमी से आपत्ति है जिसने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया। इनको नेहरू जी के नाम पर आपत्ति है, इनको इंदिरा गांधी जी के नाम पर आपत्ति है, इनको महात्मा गांधी जी के नाम पर आपत्ति है, इनको राजीव गांधी जी के नाम पर आपत्ति है।
9: अब यूनिवर्सिटी के नाम पर कोहराम मचा हुआ है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
8: पाकिस्तान में जबरदस्त बाढ़ का मंजर है, सड़कों पर गाड़ियां तैर रही हैं, आवाम रो रहा है। रावलपिंडी में तो भयानक सैलाब की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
11: तस्वीरें इस्लामाबाद से सटे रावलपिंडी की हैं। वही रावलपिंडी जिसे पाकिस्तान का वेनिस कहने में अब किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। गलियां जलमार्ग बन चुकी हैं, घर पानी में समा चुके हैं और लाखों करोड़ों की गाड़ियां टिनके की तरह बह रही हैं। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर चुका है, नाले उफान पर हैं। कटारियन ब्रिज पर नालाए दई का पानी 29.5 फीट के पार पहुंच गया है और लोग अपनी आंखों के सामने अपनी तबाही का मंजर देख रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रावलपिंडी में सड़कों पर कहीं कारें कागज की नावों की तरह तैर रही हैं, तो कहीं पानी इतना गहरा है कि गाड़ियां पूरी तरह डूब चुकी हैं। सिर्फ गाड़ियों की छतें नजर आ रही हैं। रावलपिंडी का मंजर इतना खौफनाक है कि नाला और शहर की गलियां मिलकर एक हो चुकी हैं। पता ही नहीं चल रहा कि कहां नाला बह रहा है और कहां लोगों की रिहायशी गलियां थी। इस्लामाबाद को रावलपिंडी से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है, गाड़ियों के पहिए थम गए हैं और राजधानी का संपर्क अपने सबसे महत्वपूर्ण सैन्य शहर से कट गया है।
12: हम पाकिस्तान में ये सलूक हमारे साथ हो रहा है।
11: बिलखते रोते और मदद की गुहार लगाते ये पाकिस्तानी पंजाबी आवाम चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही है कि आखिर उनका कसूर क्या है। महीनों में नालों की सफाई नहीं हुई और जब बारिश आई तो पूरा शहर जलमग्न हो गया।
12: मैं खुश हूँ, ये देखे मेरे घर का नुकसान हो गया, ये मोटर तकरीबन 12,000 रुपए की मोटर है।
11: गनीमत देखिए, ये वो रावलपिंडी है जहाँ से पूरा पाकिस्तान चलाया जाता है। यही पाकिस्तानी सेना का जनरल हेडक्वार्टर यानी GHQ है और यही रहते हैं पाकिस्तान के असली हुक्मरान यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। जो सेना पूरे मुल्क पर राज करने का दावा करती है, जो फौज के बजट का एक बड़ा हिस्सा हड़प जाती है, आज उसी की नाक के नीचे पूरा शहर दरिया बना हुआ है। आलम यह है कि बेनजीर भुट्टो अस्पताल से लेकर होली फैमिली हॉस्पिटल तक सब पानी पानी हो चुके हैं। शमसाबाद में 201 मिलीमीटर, चकलाला में 191 मिलीमीटर बारिश ने पूरे रावलपिंडी के ड्रेनेज सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी हैं। G14 में छत गिरने से 20 साल के फैजान की जान चली गई तो 17 साल का यशवा नाले में बह गया। 50 साल के सोहेल असगर अपने पालतू कुत्ते को बचाते हुए करंट की चपेट में आ गए। बड़ी बड़ी डींगे हांकने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान आज कुदरत के एक थप्पड़ से बेबस नजर आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
8: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

ब्रज की भूमि से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पंचायत आज तक मथुरा, 3 सितंबर सिर्फ आज तक पर।

शुक्र के राशि परिवर्तन से किन राशि वालों की सेहत बिगड़ सकती है? शुक्र के राशि परिवर्तन से किनको धन का लाभ हो सकता है? और शुक्र के राशि परिवर्तन से किनको संपत्ति का फायदा हो सकता है? क्या है शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

अच्छा काम, देवरिया के उनके गांव में जश्न, तीन ट्रस्टी के नाम का भी ऐलान। यूपी चुनाव से पहले एसपी महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा 27 में कांग्रेस से मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन, अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी सरकार।

कहा टीम इंडिया की भावना से करे काम, पानी बचाने के लिए 2 करोड़ नए निर्माण का लक्ष्य, एआई के इस्तेमाल पर जोर। नासिक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की सीख, कहा पार्टी की विचारधारा से ना करे समझौता, बोले मेरे हाथ पैर टूट जाए तो भी आरएसएस का सिद्धांत नहीं करूंगा स्वीकार। ब्रज की भूमि से उठेगा सबसे बड़ा शोर, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े दिग्गजों से सबसे बड़े सवाल, आज दिन भर देखिए पंचायत आज तक मथुरा।

0: मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर के हीरो और वायुसेना के दिग्गज पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट का पहला सीईओ बना दिया गया है। और अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया, जिनका चयन 3 सदस्यों की कमेटी की तरफ से हुआ है। तो इस बड़े फैसले के साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट में और भी बदलाव हुए हैं। देखिए,
1: पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, जिनके नेतृत्व में वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मन को सबक सिखाया।
2: We have gone 100 kilometers inside the international border, which is Bahawalpur, 75 to 80 kilometers Muridke, without unnecessary ruffling international feathers.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी कमान को लीड करने वाले महिला पायलटों को आतंक पर वार करने के लिए चुनने वाले पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा।
2: As the commander in chief, squadron leader Singh, or squadron leader Sharma, or air marshal Mishra, I don't look at the gender.
3: Right.
2: Like I said, when you select the pilots, it is the training that they have gone through, their experience, and most importantly, their performance in earlier gunnery exercises.
1: S-400 को निशाना बनाने की पाकिस्तानी चाल को नाकाम करने वाले पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा।
2: They were desperate to find where this S-400, like you asked me, where did you fire it from? The Pakistanis were desperate to find out where they are. They employed all the tricks in the book. I'm very sure they were getting satellite help from other nations. I don't want to use the name of the country. They were using air intelligence. They were using these EW systems to find out, because that was the biggest threat as far as they were concerned. Every time they got airmen, they got shot by an S-400. They had deployed spies within our country, activated their sleeper cell within our country to find out where the S-400 was.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई 2025 को आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचते हैं, तो उनका स्वागत तत्कालीन वेस्टर्न एयर कमान का नेतृत्व करते एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा करते हैं।
2: I had just asked him, can I travel with you in your vehicle? He just did not take a microsecond. Yes, he said yes, of course, why not? So for next 1.5 hours, I'm fortunate to have had the company of probably the bestest leader of the nation that we've had till.
1: ऑपरेशन सिंदूर में वेस्टर्न एयर कमांड को लीड करने वाले एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा इसी साल 30 अप्रैल को रिटायर हुए और 3 महीने के अंदर ही उन्हें राम मंदिर के पहले सीईओ की जिम्मेदारी दी गई। सवाल है कि सेना के एक पूर्व अफसर को इसके लिए क्यों चुना गया, जबकि उनका नाम उन 3 नामों में शामिल नहीं बताया गया जिसमें से एक को इस जिम्मेदारी मिलने की बात 24 घंटे पहले तक की जा रही थी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को संचालित करने वाला पहला सीईओ कौन होगा, इसे लेकर जिन नामों पर कयास लगाए जा रहे थे उनमें पूर्व आईएएस योगेश्वर राम मिश्रा, पूर्व आईपीएस राजेश पांडे और बिहार कैडर के आईपीएस डॉक्टर परेश सक्सेना के अलावा आईएएस दिनेश सिंह का नाम शामिल था, लेकिन जितेंद्र मिश्रा को सीईओ बनाया गया है।
4: एयरफोर्स में इनको बहुत सारे मेडल मिले हैं, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला है उनको, और जो कि कॉन्फ्लिक्ट में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है। और आपको जानकर के सबसे खुशी होगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी।
1: जितेंद्र मिश्रा की छवि ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है, इसके लिए उन्हें सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल भी मिला है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से उनका रिश्ता है, यानी राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति में भी उनका यूपी कनेक्शन है। जितेंद्र मिश्रा करीब 40 वर्षों तक वायुसेना में रहे और कई महत्वपूर्ण कमांड संभाली, ऐसे में मंदिर के बढ़ते प्रशासन, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और बड़े स्तर के ऑपरेशनल कामकाज के लिए उनका सैन्य प्रशासनिक अनुभव अहम माना जा रहा है।
4: बहुत अच्छा, हमारे इस जो मंदिर के संचालन के लिए जो आवश्यकता है वो शायद पूरा कर सकेंगे, उनमें सफल नहीं है। नहीं, हमेशा इम्प्रूवमेंट होता सकता है, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ते रहने समय समय के अनुसार कुछ परिवर्तन होता है, आगे बढ़ता रहता है।
1: मंदिर ट्रस्ट में 3 नए सदस्य भी बनाए गए हैं। ये बदलाव मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के 3 महीने बाद हुआ है। इस मामले में 8 आरोपी जेल में, इसके बाद जुलाई महीने में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपना पद छोड़ा। आगे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना न दोहराई जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से एक ऐसे सैन्य अफसर को सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनकी चर्चा तीन सबसे आगे बताए जा रहे नामों में थी ही नहीं।
2: As far as this dispensation is concerned, there was not a single restriction. It was left to the military to decide. It was left to the military to decide the ways that you fight them.
1: राम मंदिर के पहले सीईओ पद की जिम्मेदारी देश के कैसे बड़े सैन्य अफसर को दी गई है, जिनका करियर बेदाग है, जिनकी इमेज ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है। इस तरह जितेंद्र मिश्रा को ये जिम्मेदारी देकर ये भरोसा देने की कोशिश की गई है कि संदेश ये पहुंचे कि सेना की तरह मंदिर ट्रस्ट में भी अनुशासन भक्तों के भरोसे को बरकरार रखेगा।
0: तो वहीं अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले के इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी और विपक्ष लगातार सवाल करते आए हैं। 5 से 6 महीने में यूपी में चुनाव होने हैं और उससे पहले योगी और अखिलेश दोनों इस मामले पर एक दूसरे को घेर रहे हैं। अखिलेश ने ट्रस्ट के नए सीईओ बनाए जाने पर पूछा कि क्या नई चीज होने से पुरानी भूल जाएंगे।
1: श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना के जांबाज अधिकारी रहे। उन्होंने भारतीय वायुसेना में करीब 40 साल सेवा दी, 3000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव उन्हें। करगिल युद्ध के दौरान मिराज 2000 पर लेजर गाइडेड बमों को ऑपरेशनल बनाने वाली टीम का हिस्सा रहे। लेकिन जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर हो रहा विवाद भी क्या थम जाएगा? अखिलेश यादव के सियासी सवाल को देखकर ये बात सामने आती है।
3: श्रद्धा और आस्था, उससे खिलवाड़ की बीजेपी ने, और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है। कोई मंदिर जान लो आप, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे, गरीब भीख मांगने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी चोरी नहीं करते मंदिर में।
1: राम मंदिर से दूरी रखने वाले अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मामले पर पैनी नजर बनाए हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबकी आस्था से जुड़ा ये मुद्दा उन्हें 2027 में फायदा पहुंचा सकता है, बीजेपी की उस वोट बैंक में सेंध लगा सकता है जो अब तक उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बीच की सबसे बड़ी दीवार।
5: नई चीज होने से हम और आप पुरानी चीज भूल जाएंगे क्या? हमें कोई शिकायत किसी से नहीं है, कोई शिकायत नहीं किसी से, लेकिन जो राम धन के साथ हुआ, चंदा जिस तरीके से वहां से गायब हुआ, या चढ़ावे के साथ जो चोरी हुई, आपने सामान्य कर्मचारियों को जेल भेज दिया, अगर आपने बड़े लोगों को क्लीन चिट दिया है तो उनको क्यों जेल भेजा, उन्हें भी बाहर करो।
1: जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा, तब अखिलेश का हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को चुनौती देना बीजेपी को रास नहीं आ रहा, और इसीलिए वो इसकी काट के तौर पर जनता को समाजवादी सरकारों में हिंदुओं से कथित भेदभाव की याद दिलाती।
6: आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी की कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है।
1: चुनाव से पहले जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी के हिंदू विरोधी होने का नैरेटिव सेट करने में जुटी, तो मुख्यमंत्री एक बार फिर अखिलेश यादव पर मुस्लिम परस्त होने का ठप्पा लगाने में जुट गए।
6: अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई राम द्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी।
1: बीजेपी की पूरी सियासी यात्रा में राम मंदिर जैसे भावनात्मक मुद्दे का अहम रोल रहा है, इसीलिए अयोध्या के राम मंदिर की चढ़ावा चोरी की घटना को समाजवादी पार्टी ने लपका, तो योगी आदित्यनाथ ने पहले कब्रिस्तान की चार दीवारी वाला मुद्दा उठाने से लेकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में नमाज के दावे वाला 23 साल पुराना प्रकरण तक याद दिलाया।
6: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी, अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ, जो राम भक्त नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
1: इस तरह योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर बैकफुट पर नहीं दिखना चाहते। SIT जांच करवाने का ऐलान करते हुए उन्होंने दोषियों को सजा दिए जाने की बात कही, तो वहीं विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि राम मंदिर के खिलाफ रहे लोग अब आस्था की बात करने लगे।
6: हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी।
1: भगवा वेश में रहने वाले और गोरक्षपीठ के महंत के तौर पर योगी आदित्यनाथ खुद हिंदुत्व का चेहरा है। इसके अलावा उनके बुलडोजर मॉडल उत्तर प्रदेश से बाहर भी चर्चा होती। इस तरह योगी अपने विनिंग फॉर्मूले से पीछे हटने के मूड में नहीं।
0: कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज और कल मथुरा और वृंदावन में रहेंगे। जन्माष्टमी के दिन उनका श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम है। सीएम की ओर से मथुरा और वृंदावन के लिए करीब 1,051 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की सौगात भी प्रस्तावित है और इन सब के बीच चर्चा इस बात की है कि क्या पश्चिमी यूपी में जो बढ़त समाजवादी पार्टी पर बीजेपी हासिल करती है, क्या उसी के लिए कृष्ण जन्मभूमि वाला दांव मुख्यमंत्री चलते हैं।
1: बुलडोजर एनकाउंटर, सैफई से रामपुर तक, यानी अखिलेश यादव से आजम खान तक पर वार, और वृंदावन बिहारी लाल का नाम लगातार लेते हुए क्या 2027 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने का सियासी चतुर्भुज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बना लिया है।
6: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
7: हर दिन राधे राधे कहते
6: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे।
8: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाएगा। वृंदावन

0: बावन बिहारी लाल के।
1: अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव सवाल चंदा चोरी पर करते हैं। सनातन के अपमान के मुद्दे पर जब अखिलेश यादव घेरे जाते हैं तो फिर इटावा के केदारेश्वर मंदिर निर्माण की याद दिलाते हैं। और तब क्या समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट पर घेरने के लिए अब योगी आदित्यनाथ लगातार वृंदावन बिहारी लाल का नाम भाषणों में ले रहे हैं।
0: वृंदावन बिहारी लाल के।
1: 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सांस्कृतिक नैरेटिव में मथुरा की चर्चा तेज है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद क्या बीजेपी का अगला बड़ा फोकस मथुरा है? सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के हाल के भाषणों पर गौर करने पर श्री राम के साथ श्री कृष्ण का नाम लेकर वो जय कराते हैं।
0: सियावर रामचंद्र भगवान के पवन सुत हनुमान के वृंदावन बिहारी लाल के।
1: सिद्धार्थ नगर हो या आजमगढ़, इटावा हो या आगरा हो, हर सभा में वृंदावन बिहारी लाल की जय मुख्यमंत्री करा रहे हैं।
0: सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के।
1: अयोध्या से बीजेपी को घेरते अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि पर घिरेंगे? ये सवाल पहले से उठता आ रहा है।
2: तो बारी इसी ब्रज भूमि की है, मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल नंदगांव गोवर्धन बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं।
1: 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान संघ परिवार का नारा रहा अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और तब अब की बारी बांके बिहारी कहते मुख्यमंत्री ये चैलेंज सीधे अखिलेश यादव को देते आए कि राम जन्मभूमि पर आस्था के अपमान की बात करने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष क्या कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलेंगे?
2: अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपके झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है।
1: इसके जवाब में अब तक अखिलेश यादव ने यूं तो सिर्फ राधे राधे कहा है।
3: हमारे घर के पास वो बहुत है, वो और हर दिन राधे राधे कहते।
1: राधे राधे की बात तो अखिलेश यादव 4 साल पहले भी कहते दिखे जब चुनाव 2022 का आया।
3: भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी समझ लें कि इस बार जनता राधे राधे कहने वाली है उनको, और वो जाने वाले हैं।
1: अखिलेश यादव ये तक कहते आए कि भगवान उनको सपने में आकर पहले ही सरकार बन जाने की बात कह चुके हैं।
4: हमारे सपने में आए थे भगवान, कृष्ण जी कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा।
1: लेकिन अखिलेश के सपने की वो बात तो सच हुई नहीं, तो क्या 2027 में भी कृष्ण जन्मभूमि के मसले पर समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है?
5: अयोध्या धाम अभी तीनों का हो गया है, तो यदुवंशी थोड़ा ठीक ढंग से जागरूक हो जाए तो हम यदुवंश कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ भी बढ़े। मैं बोलना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, मथुरा के मुद्दे पर वे हमेशा उनका मुंह क्यों बंद हो जाता है? क्यों बंद हो जाता है? अपने को यदुवंशी कहेंगे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बात आएगी तो इनको वोट बैंक की चिंता होने लगती है।
1: योगी आदित्यनाथ तब लगातार कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सवाल करते आ रहे हैं जब अयोध्या चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव सवाल करते हैं।
3: श्रद्धा और आस्था उससे खिलवाड़ की बीजेपी ने, और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है।
6: और
3: कोई मंदिर जान लो आप, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे, गरीब भीख मांगने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी चोरी नहीं करते मंदिर के।
1: अयोध्या पर बोलते अखिलेश, कृष्ण जन्म भूमि पर योगी आदित्यनाथ का चैलेंज मंजूर नहीं करते, और क्या इसीलिए योगी आदित्यनाथ के भाषण से लेकर चुनावी रणनीति तक में श्री कृष्ण का नाम बढ़ रहा है।
0: सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के।
7: योगी आदित्यनाथ जी भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म में उनकी आस्था है, इसलिए अपने संबोधन के पूर्व प्रभु राम और प्रभु कृष्ण का नाम लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो वामी हैं, जो कांगी हैं, जो सपाई हैं, जो कांग्रेसी हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है।
8: जब मुख्यमंत्री जी मथुरा का नाम लेते हैं तो वो शिक्षा का नाम नहीं लेना चाहते, शिक्षा व्यवस्था का नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर का नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब मुख्यमंत्री जी किसी कम्युनल पोलराइज इशू की बात करना चाहते हैं तो वो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात नहीं करना चाहते हैं। वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है।
9: तो वही नेपाल में ग्लेशियर के पिघलने के बाद आई बाढ़, ऐसे में ग्लेशियर ऊपर हिमालय पर पिघले और जब वो नीचे बहे तो अपने साथ भारी मात्रा मलबा लेकर आते गए।

0: क्या नेपाल की तबाही भारत के पहाड़ी इलाकों के लिए खतरे की घंटी बजा रही है? नेपाल में हुई तबाही से भारत को क्या सीखने की जरूरत है? गलते हिमालय के ग्लेशियर कौन सा खतरा बता रहे हैं? ठीक एक हफ्ते पहले नेपाल में हुई ये तबाही हिंदुस्तान के लिए बहुत से संकेत लेकर आई है, खास तौर पर भारत के वो हिमालयी राज्य जिन पर इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि यहां भी ग्लेशियर पिघलने से तबाही आ सकती है। ऐसा हुआ तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी तबाही मच सकती है। वैसे भी हर साल इन राज्यों में बरसात का सीजन बर्बादी लेकर आता है। कई जगह बादल फटते हैं, बहुत से फ्लैश फ्लड आते हैं और बहुत से लोग मारे जाते हैं। लेकिन क्या कोई बड़ी तबाही आगे इंतजार कर रही है? इस खतरे की बात आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि उत्तराखंड में सितंबर की शुरुआत में भारी बारिश कैसे बर्बादी का सबब बन रही है। ये उत्तरकाशी है। बारिश की वजह से जगह जगह भारी भूस्खलन हुआ है। पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह मलबा गिरा पड़ा है। पूरे हाईवे पर मलबा आया, जिसकी वजह से हाईवे बंद करना पड़ा। मंगलवार को गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पापड़गाड़ उफान पर आ गई थी, जिससे मलबा और पत्थर बह रहे थे। उधर यमुनोत्री हाईवे पर राणा चट्टी के पास मलबे में एक यात्री बस फंस गई थी। पहाड़ों में भारी बारिश से हादसे भी बहुत हो रहे हैं। ये कोटद्वार की तस्वीरें हैं। कोटद्वार में कोहरू नदी एक 1.5 साल की बच्ची और उसकी माँ के लिए काल बन गई। नदी पार करते वक्त 1.5 साल की छोटी बच्ची उसकी माँ की गोद से छूट गई और पानी में बह गई। बच्ची को बचाने के लिए माँ भी नदी में कूदी और बह गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई। काफी दूर तक तलाश के बाद SDRF और पुलिस ने नदी से माँ बेटी के शव बरामद किए।
1: घटनास्थल पे पहुंचने पे हमने सर्चिंग की तो हमें पता चला कि जो नदी का दूसरा साइड है, उधर वाला जंगल वाला, वहाँ दो व्यक्ति की डेड बॉडी मिल चुकी है, जिसमें से एक बच्चा था 1 साल का और एक महिला थी उसी की मम्मी। तो उनको मिलने के पश्चात वो उन्हें गांव नदी के दूसरे साइड ले गए थे, लेकिन उनको इस साइड लाना था, जिसके बाद हमारी टीम काफ़ी मशक्कत के बाद नदी पार की और उसके बाद डेड बॉडी को इस नदी के दूसरे साइड ला के जिले पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।
0: पहाड़ों पर छोटी छोटी नदियां भी बहुत तेज बहाव में हैं। पौड़ी जिले में मंगलवार को पैठानी क्षेत्र में एक महिला पश्चिमी नयार नदी में बह गई। यहां रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 33 साल की आशा देवी के बहने की सूचना पर रात भर ये ऑपरेशन चला, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। उधर उधम सिंह नगर में लगातार बारिश के बाद हालात चिंताजनक बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ गौरा नदी से पानी छोड़ने के बाद आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया है। प्रशासन बाकायदा मुनादी करके लोगों को सतर्क कर रहा है।
2: गोला नदी में अत्यधिक पानी छोड़ा गया है, जिस कारण गोला नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। आप सभी लोगों से प्रशासन द्वारा अपील की जाती है, कृपया अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, नदी किनारे ना आए।
0: किच्छा, पुलभट्टा, शांतिपुरी और सूर्यनगर समेत गौला नदी से सटे इलाकों में लोगों को नदी के आसपास न जाने की हिदायत दी गई है। हल्द्वानी से 27,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।
3: लगातार जो बरसात हो रही है, उसके पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार बरसात हो रही है। इस कारण गौला नदी में जलस्तर ऊपर है और वर्तमान में यह सूचना प्राप्त हुई है कि 27,000 क्यूसेक पानी काठगोदाम बैराज से छोड़ा गया है। मेरा सबसे अनुरोध है कि नदी क्षेत्रों से, तटीय क्षेत्रों से दूर रहें और गौला बैराज के अगल बगल रहने वाले गौला नदी के अगल बगल रहने वाले लोग नदी से दूर रहें, नदी के पास न जाएं, सावधानी बरतें, सुरक्षा बरतें। वर्तमान में स्थिति कंट्रोल में है, ऐसी कोई पैनिक करने की स्थिति नहीं है, लेकिन नदी तटों से दूर रहें।
0: उधर उधम सिंह नगर के नकाहा गांव में 4 फीट तक पानी भर गया था, जिसकी वजह से यहां 7 परिवार बाढ़ में फंस गए थे। ये गांव बैगुल डैम के पास है, इसीलिए इसके कई इलाके जलमग्न हो गए, जिसमें गांव के कई परिवार फंस गए थे, जिसके बाद SDRF की टीम ने पहुंचकर इन परिवारों को यहां से सुरक्षित निकाला। उधर नैनीताल में सुबह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी। लगातार दो दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते नैनी झील लबालब, जबकि नदी नाले और गधेरे उफान पर। मौसम विभाग ने कुमाऊं मंडल में अगले 24 घंटे के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश का असर नैनीताल जिले के रामनगर में भी दिखाई दे रहा है। यहां कोसी नदी उफान पर है। रामनगर स्थित प्रसिद्ध गर्जिया माता मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया है। अगले 24 घंटे कुमाऊं मंडल के 6 जिलों के लिए बेहद संवेदनशील बताए जा रहे हैं।
4: और लगभग मंडे की शाम से लगातार बारिश हो रही है और कल जनहानि के 5 मामले अल्मोड़ा जनपद में हुए हैं और 1 नैनीताल जनपद में हुआ है। साथ ही आज सुबह 10 बजे जो मैंने अपडेट लिया सभी डिस्ट्रिक्ट से, तो 88 हमारे मार्ग हैं जो बंद हैं। यद्यपि इसमें अधिकांश मार्ग जो हैं वो विलेज रोड्स हैं, लेकिन 2 बॉर्डर रोड्स भी हैं और कुछ स्टेट हाईवेज भी हैं। और अभी जो मैंने फोरकास्ट पता किया था, इसमें अगले 24 घंटे में भी काफ़ी जगहों का ऑरेंज अलर्ट है, जिसमें चंपावत के कुछ इलाके भी हैं, नैनीताल के भी कुछ इलाके हैं, बागेश्वर के भी कुछ इलाके हैं, तो एहतियात बरतने की आवश्यकता है।
5: यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
7: शुक्र के राशि परिवर्तन से किन राशि वालों की सेहत बिगड़ सकती है? शुक्र के राशि परिवर्तन से किनको धन का लाभ हो सकता है और शुक्र के राशि परिवर्तन से किनको संपत्ति का फायदा हो सकता है? क्या है शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
8: ब्रज की भूमि से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पंचायत आज तक मथुरा, 3 सितंबर सिर्फ आज तक पर।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम, देवरिया के उनके गांव में जश्न, तीन ट्रस्टी के नाम का भी ऐलान। यूपी चुनाव से पहले एसपी महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा 27 में कांग्रेस से मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन, अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी सरकार।

0: कहा टीम इंडिया की भावना से करे काम, पानी बचाने के लिए 2 करोड़ नए निर्माण का लक्ष्य, एआई के इस्तेमाल पर जोर। नासिक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की सीख, कहा पार्टी की विचारधारा से ना करे समझौता, बोले मेरे हाथ पैर टूट जाए तो भी आरएसएस का सिद्धांत नहीं करूंगा स्वीकार। ब्रज की भूमि से उठेगा सबसे बड़ा शोर, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े दिग्गजों से सबसे बड़े सवाल, आज दिन भर देखिए पंचायत आज तक मथुरा। ऑपरेशन सिंदूर के हीरो और वायुसेना के दिग्गज पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट का पहला सीईओ बनाया गया है। अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया, जिनका चयन 3 सदस्यों की कमेटी की तरफ से हुआ है, और इस बड़े फैसले के साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट में और भी बदलाव हुए हैं।
1: पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, जिनके नेतृत्व में वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मन को सबक सिखाया।
2: We have gone 100 kilometers inside the international border, which is Bahawalpur, 75 to 80 kilometers Murid ke, without unnecessary ruffling international feathers.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी कमान को लीड करने वाले, महिला पायलटों को आतंक पर वार करने के लिए चुनने वाले पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा।
2: The Commander-in-Chief, Squadron Leader Singh, or Squadron Leader Sharma, or Air Marshal Mishra, I don't look at the gender. Right. Like I said, when you select the pilots, it is the training that they have gone through, their experience, and most importantly, their performance in earlier gunnery exercises.
1: S-400 को निशाना बनाने की पाकिस्तानी चाल को नाकाम करने वाले पूर्व Air Marshal जितेंद्र मिश्रा।
2: They were desperate to find where these S-400, like you asked me, where did you fire it from? Hmm. The Pakistanis were desperate to find out where they are. They employed all the tricks in the book. I'm very sure they were getting satellite help from other nations. I don't want to use the name of the country. They were using air intelligence. They were using these EW systems to find out, because that was the biggest threat as far as they were concerned. Every time they got airmen, they got shot by an S-400. They had deployed spies within our country, activated their sleeper cell within our country to find out where the S-400 is.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई 2025 को आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचते हैं, तो उनका स्वागत तत्कालीन वेस्टर्न एयर कमांड का नेतृत्व करते एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा करते हैं।
2: I had just asked him, can I travel with you in your vehicle? He just did not take a microsecond. Yes, he said yes, of course, why not? So for next 1.5 hours, I'm fortunate to have had the company of probably the bestest leader of the nation that we've had till.
1: ऑपरेशन सिंदूर में वेस्टर्न एयर कमांड को लीड करने वाले एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा इसी साल 30 अप्रैल को रिटायर हुए, और 3 महीने के अंदर ही उन्हें राम मंदिर के पहले सीईओ की जिम्मेदारी दी गई। सवाल है कि सेना के एक पूर्व अफसर को इसके लिए क्यों चुना गया, जबकि उनका नाम उन 3 नामों में शामिल नहीं बताया गया जिसमें से एक को जिम्मेदारी मिलने की बात 24 घंटे पहले तक की जा रही थी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को संचालित करने वाला पहला सीईओ कौन होगा, इसे लेकर जिन नामों पर कयास लगाए जा रहे थे उनमें पूर्व आईएएस योगेश्वर राम मिश्रा, पूर्व आईपीएस राजेश पांडे और बिहार कैडर के आईपीएस डॉक्टर परेश सक्सेना के अलावा आईएएस दिनेश सिंह का नाम शामिल था, लेकिन जितेंद्र मिश्रा को सीईओ बनाया गया है।
3: एयरफोर्स में इनको बहुत सारे मेडल मिले हैं, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला है उनको, और जो कि कॉन्फ्लिक्ट में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, और आपको जानकर के सबसे खुशी होगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी।
1: जितेंद्र मिश्रा की छवि ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है, इसके लिए उन्हें सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल भी मिला है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से उनका रिश्ता है, यानी राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति में भी उनका यूपी कनेक्शन है। जितेंद्र मिश्रा करीब 40 वर्षों तक वायुसेना में रहे और कई महत्वपूर्ण कमांड संभाली, ऐसे में मंदिर के बढ़ते प्रशासन, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और बड़े स्तर के ऑपरेशनल कामकाज के लिए उनका सैन्य प्रशासनिक अनुभव अहम माना जा रहा है।
3: बहुत अच्छा, हमारे इस जो मंदिर के संचालन के लिए जो आवश्यकता है वो शायद पूरा कर सकेंगे, उनमें सफल नहीं है। नहीं, हमेशा इम्प्रूवमेंट होता सकता है। किसी भी चीज़ को आगे बढ़ते रहने समय समय के अनुसार कुछ परिवर्तन होता, आगे बढ़ता रहता है।
1: मंदिर ट्रस्ट में 3 नए सदस्य भी बनाए गए हैं। ये बदलाव मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के 3 महीने बाद हुआ है। इस मामले में 8 आरोपी जेल में है। इसके बाद जुलाई महीने में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपना पद छोड़ा। आगे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना न दोहराई जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से एक ऐसे सैन्य अफसर को सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनकी चर्चा 3 सबसे आगे बताए जा रहे नामों में थी ही नहीं।
2: As far as this dispensation is concerned, there was not a single restriction. It was left to the military to decide. It was left to the military to decide the ways that you fight them.
1: राम मंदिर के पहले सीईओ पद की जिम्मेदारी देश के कैसे बड़े सैन्य अफसर को दी गई है, जिनका करियर बेदाग, जिनकी इमेज ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है। इस तरह जितेंद्र मिश्रा को यह जिम्मेदारी देकर ये भरोसा देने की कोशिश की गई है कि संदेश ये पहुंचे कि सेना की तरह मंदिर ट्रस्ट में भी अनुशासन भक्तों के भरोसे को बरकरार रखेगा।
0: अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले के इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी और विपक्ष लगातार सवाल करते आए हैं। ऐसे में 5-6 महीने में यूपी में चुनाव होने हैं और उससे पहले योगी और अखिलेश दोनों इस मामले पर एक दूसरे को घेर रहे हैं। अखिलेश ने ट्रस्ट के नए सीईओ बनाए जाने पर पूछा कि क्या नई चीज होने से पुरानी भूल जाएंगे।
1: श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना के जांबाज अधिकारी रहे। उन्होंने भारतीय वायुसेना में करीब 40 साल सेवा दी। 3000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव उन्हें। करगिल युद्ध के दौरान मिराज 2000 पर लेजर गाइडेड बमों को ऑपरेशनल बनाने वाली टीम का हिस्सा रहे। लेकिन जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर हो रहा विवाद भी क्या थम जाएगा? अखिलेश यादव के सियासी सवाल को देखकर ये बात सामने आती है।
4: श्रद्धा और आस्था, उससे खिलवाड़ की बीजेपी ने, और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है।
5: और
4: कोई मंदिर जान लो आप, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे, गरीब भीख मांगने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी चोरी नहीं करते मंदिर के।
1: राम मंदिर से दूरी रखने वाले अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मामले पर पैनी नजर बनाए हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबकी आस्था से जुड़ा ये मुद्दा उन्हें 2027 में फायदा पहुंचा सकता है, बीजेपी की उस वोट बैंक में सेंध लगा सकता है जो अब तक उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बीच की सबसे बड़ी दीवार।
6: नई चीज होने से हम और आप पुरानी चीज भूल जाएंगे क्या? हमें कोई शिकायत किसी से नहीं है, कोई शिकायत नहीं किसी से, लेकिन जो राम धन के साथ हुआ, चंदा जिस तरीके से वहां से गायब हुआ, या चढ़ावे के साथ जो चोरी हुई, आपने सामान्य कर्मचारियों को जेल भेज दिया, अगर आपने बड़े लोगों को क्लीन चिट दिया है तो उनको क्यों जेल भेजा, उन्हें भी बाहर करो।
1: जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा, तब अखिलेश का हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को चुनौती देना बीजेपी को रास नहीं आ रहा, और इसीलिए वो इसकी काट के तौर पर जनता को समाजवादी सरकारों में हिंदुओं से कथित भेदभाव की याद दिलाती है।
7: आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी के कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है।
1: चुनाव से पहले जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी के हिंदू विरोधी होने का नैरेटिव सेट करने में जुटी, तो मुख्यमंत्री एक बार फिर अखिलेश यादव पर मुस्लिम परस्त होने का ठप्पा लगाने में जुट गए।
7: अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी।
1: बीजेपी की पूरी सियासी यात्रा में राम मंदिर जैसे भावनात्मक मुद्दे का अहम रोल रहा है, इसीलिए अयोध्या के राम मंदिर की चढ़ावा चोरी की घटना को समाजवादी पार्टी ने लपका तो योगी आदित्यनाथ ने पहले कब्रिस्तान की चार दीवारी वाला मुद्दा उठाने से लेकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में नमाज के दावे वाला 23 साल पुराना प्रकरण तक याद दिलाया।
7: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी, अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ, जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
1: इस तरह योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर बैकफुट पर नहीं दिखना चाहते। SIT जांच करवाने का ऐलान करते हुए उन्होंने दोषियों को सजा दिए जाने की बात कही, तो वही विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि राम मंदिर के खिलाफ रहे लोग अब आस्था की बात करने लगे।
7: हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी।
1: भगवा वेश में रहने वाले और गोरक्षपीठ के महंत के तौर पर योगी आदित्यनाथ खुद हिंदुत्व का चेहरा है। इसके अलावा उनके बुलडोजर मॉडल उत्तर प्रदेश से बाहर भी चर्चा होती। इस तरह योगी अपने विनिंग फॉर्मूले से पीछे हटने के मूड में नहीं।
0: कृष्ण जन्माष्टमी के

0: और वृंदावन के लिए करीब 1051 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की सौगात भी प्रस्तावित है। और इन सब के बीच चर्चा इस बात की है कि क्या पश्चिमी यूपी में जो बढ़त समाजवादी पार्टी पर बीजेपी हासिल करती है, क्या उसी के लिए कृष्ण जन्मभूमि वाला दांव मुख्यमंत्री चलते हैं।
1: बुलडोजर एनकाउंटर, सैफई से रामपुर तक यानी अखिलेश यादव से आजम खान तक पर वार और वृंदावन बिहारी लाल का नाम लगातार लेते हुए क्या 2027 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने का सियासी चतुर्भुज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बना लिया है।
2: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
3: हर दिन राधे राधे कहते
4: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे।
5: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाएगा। वृंदावन

0: बावन बिहारी लाल के।
1: अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव सवाल चंदा चोरी पर करते हैं। सनातन के अपमान के मुद्दे पर जब अखिलेश यादव घेरे जाते हैं तो फिर इटावा के केदारेश्वर मंदिर निर्माण की याद दिलाते हैं। और तब क्या समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट पर घेरने के लिए अब योगी आदित्यनाथ लगातार वृंदावन बिहारी लाल का नाम भाषणों में ले रहे हैं।
0: वृंदावन बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के।
1: 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सांस्कृतिक नैरेटिव में मथुरा की चर्चा तेज है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद क्या बीजेपी का अगला बड़ा फोकस मथुरा है? सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के हाल के भाषणों पर गौर करने पर श्री राम के साथ श्री कृष्ण का नाम लेकर वो जय कराते हैं।
0: सियावर रामचंद्र भगवान के, सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के।
1: सिद्धार्थ नगर हो या आजमगढ़, इटावा हो या आगरा हो, हर सभा में वृंदावन बिहारी लाल की जय मुख्यमंत्री करा रहे हैं।
0: सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के।
1: अयोध्या से बीजेपी को घेरते अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि पर घिरेंगे? ये सवाल पहले से उठता आ रहा है।
2: तो बारी इसी ब्रज भूमि की है, मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल नंदगांव गोवर्धन बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं।
1: 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान संघ परिवार का नारा रहा अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और तब अब की बारी बांके बिहारी कहते मुख्यमंत्री ये चैलेंज सीधे अखिलेश यादव को देते आए कि राम जन्मभूमि पर आस्था के अपमान की बात करने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष क्या कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलेंगे?
2: अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपकी झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है।
1: इसके जवाब में अब तक अखिलेश यादव ने यूं तो सिर्फ राधे राधे कहा है।
3: हमारे घर के पास वो बहुत है, वो और हर दिन राधे राधे कहते हैं।
1: राधे राधे की बात तो अखिलेश यादव 4 साल पहले भी कहते दिखे जब चुनाव 2022 का आया।
3: भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी समझ लें कि इस बार जनता राधे राधे कहने वाली है उनको, और वो जाने वाले हैं।
1: अखिलेश यादव ये तक कहते आए कि भगवान उनको सपने में आकर पहले ही सर

0: कार बन जाने की बात कह चुके हैं।
1: आप हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा।
0: लेकिन अखिलेश के सपने की वो बात तो सच हुई नहीं, तो क्या 2027 में भी कृष्ण जन्मभूमि के मसले पर समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है?
2: अयोध्या धाम अभी तीनों का हो गया है, तो यदुवंशी थोड़ा ठीक ढंग से जागरूक हो जाए तो हम यदुवंश कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ भी बढ़े। मैं बोलना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, मथुरा के मुद्दे पर वे हमेशा उनका मुंह क्यों बंद हो जाता है, क्यों बंद हो जाता है? अपने को यदुवंशी कहेंगे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बात आएगी तो इनको वोट बैंक की चिंता होने लगती है।
0: योगी आदित्यनाथ तब लगातार कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सवाल करते आ रहे हैं जब अयोध्या चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव सवाल करते हैं।
1: श्रद्धा और आस्था, उससे खिलवाड़ की बीजेपी ने, और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है।
3: और
1: कोई मंदिर जान लो आप, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे, गरीब भीख मांगने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी चोरी नहीं करते मंदिर के।
0: अयोध्या पर बोलते अखिलेश, कृष्ण जन्मभूमि पर योगी आदित्यनाथ का चैलेंज मंजूर नहीं करते, और क्या इसीलिए योगी आदित्यनाथ के भाषण से लेकर चुनावी रणनीति तक में श्री कृष्ण का नाम बढ़ रहा है?
4: सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के।
5: योगी आदित्यनाथ जी भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म में उनकी आस्था है, इसलिए अपने संबोधन के पूर्व प्रभु राम और प्रभु कृष्ण का नाम लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो वामी हैं, जो कांगी हैं, जो सपाई हैं, जो कांग्रेसी हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है।
6: जब मुख्यमंत्री जी मथुरा का नाम लेते हैं तो वो शिक्षा का नाम नहीं लेना चाहते, शिक्षा व्यवस्था का नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर का नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब मुख्यमंत्री जी किसी कम्युनल पोलराइज इशू की बात करना चाहते हैं तो वो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात नहीं करना चाहते हैं। वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है।
7: मध्य प्रदेश की राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी को लेकर मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की तैयारी में है। विश्वविद्यालय मध्य भारत और मालवा और महाकौशल के नाम से तीन भागों में यह बढ़ जाएगा। कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर भी लगा दी है।
8: ये मध्य प्रदेश की एकमात्र प्रमुख टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, नाम है राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। 1998 में बनी इस यूनिवर्सिटी में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सबसे पहले तो ये कि इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी को तीन भागों में बांट दिया जाएगा। अभी तक ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी भोपाल में थी, लेकिन अब इसे तीन हिस्सों में डेवलप किया जाएगा। पहला हिस्सा भोपाल में होगा, दूसरा हिस्सा उज्जैन में होगा, तीसरा हिस्सा जबलपुर में होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि दूर दराज से आने वाले छात्रों को राहत मिल सके। इसके साथ ही एक निर्णय और हुआ है कि राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की जगह अब इसे मध्य भारत, मालवा और महाकौशल नाम से अपग्रेड किया जाएगा। मतलब यूनिवर्सिटी के नाम से राजीव गांधी का नाम हट जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है कि ये निर्णय विश्वविद्यालय को भौगोलिक पहचान दिलाने के लिए किया गया है।
9: हम किसी भी महापुरुष का, किसी भी पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री का हम नाम नहीं हटा रहे हैं, ना हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि किसी एक ही एक के नाम से सारी योजनाएं लागू करें। हमने तो भौगोलिक दृष्टि की पहचान दी है और मैं समझता हूं भौगोलिक दृष्टि की पहचान भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे कोई महापुरुष है उन महापुरुषों के नाम हम स्थापित करते हैं उसी प्रकार से ये भी स्थापित करने का अभियान है।
8: इतना ही नहीं टेक्निकल के साथ कौशल शब्द भी जोड़ा जाएगा। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की सरकार राष्ट्रहित में काम करने वाले नेताओं का अपमान कर रही है।
3: इतना महान योगदान आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जिस व्यक्ति ने दिया है उसका नाम बदल देना जो पहले से रखा हुआ है बहुत दुर्भाग्यजनक है। और इनको देश के हर उस आदमी से आपत्ति है जिसने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया। इनको नेहरू जी के नाम पर आपत्ति है, इनको इंदिरा गांधी जी के नाम पर आपत्ति है, इनको महात्मा गांधी जी के नाम पर आपत्ति है, इनको राजीव गांधी जी के नाम पर आपत्ति है।
8: अब यूनिवर्सिटी के नाम पर कोहराम मचा हुआ है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
7: वक्त हो गया यहाँ एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: शुक्र के राशि परिवर्तन से किन राशि वालों की सेहत बिगड़ सकती है? शुक्र के राशि परिवर्तन से किनको धन का लाभ हो सकता है? और शुक्र के राशि परिवर्तन से किनको संपत्ति का फायदा हो सकता है? क्या है शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

अच्छा काम, देवरिया के उनके गांव में जश्न, तीन ट्रस्टी के नाम का भी ऐलान। यूपी चुनाव से पहले एसपी महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा 27 में कांग्रेस से मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन, अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी सरकार।

टीम इंडिया की भावना से करे काम, पानी बचाने के लिए 2 करोड़ नए निर्माण का लक्ष्य, एआई के इस्तेमाल पर जोर। नासिक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की सीख, कहा पार्टी की विचारधारा से ना करे समझौता, बोले मेरे हाथ पैर टूट जाए तो भी आरएसएस का सिद्धांत नहीं करूंगा स्वीकार। ब्रज की भूमि से उठेगा सबसे बड़ा शोर, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े दिग्गजों से सबसे बड़े सवाल, आज दिन भर देखिए पंचायत आज तक मथुरा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे शुक्र देव के राशि परिवर्तन के बारे में और ये जानेंगे कि शुक्र देव का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहने वाला है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 7:25 तक, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शुक्र देव के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र देव के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है पहले ये समझते हैं। शुक्र अभी तक कन्या राशि में विद्यमान थे, अब 2 सितंबर को दोपहर में तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र के प्रवेश के समय वृश्चिक लग्न का उदय हो रहा है और उसी समय अष्टम भाव में मंगल विद्यमान है। शुक्र और चंद्र का संबंध भी राशि परिवर्तन के समय बना हुआ है। इस समय रिश्तों को लेकर के सावधानी रखनी होगी, रिश्तों का ध्यान बनाए रखना होगा। आर्थिक बाजार में, फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। जो कीमती धातुएं हैं उनके मूल्य में भी उतार चढ़ाव दिखता है और ज्यादातर लगता है कि कीमती धातुओं का मूल्य नीचे की तरफ जा सकता है। शुक्र के राशि परिवर्तन पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्रा में सावधानी रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। तो शुक्र का राशि परिवर्तन 2 सितंबर को दोपहर में हो चुका है। शुक्र के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को पारिवारिक समस्या हो सकती है, परिवार में इस समय दिक्कतें आ सकती हैं और मानसिक तनाव बढ़ सकता है, चिंताएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। वृषभ राशि, शुक्र का राशि परिवर्तन आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं, यूरिन को लेकर, किडनी को लेकर, डाइजेशन को लेकर के आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिए। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का मामला आपका पहले से बेहतर होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी, आपकी चिंताएं बहुत हद तक इस समय कम हो जाएंगी। कर्क राशि, शुक्र के राशि परिवर्तन से आपको लाभ होगा, धन वस्त्र संपत्ति की प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थिति और करियर आपका बेहतर होगा। सिंह राशि, करियर के मामले में, आर्थिक मामले में लाभ होगा, बिना वजह की चिंताएं और बिना वजह के तनाव आपके दूर होंगे, दिमाग की उलझनें शांत होंगी। कन्या राशि,

कि इस समय आपको हो सकता है। बाकी बची हुई राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा उस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने

आज का पहला प्रश्न आरती वर्मा ने हमें लिखा है और आरती वर्मा हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 जून 1983। जन्म का समय रात में 11:25 और जन्म का स्थान है लखनऊ। आरती कह रही हैं कि मेरा एक डिवोर्स हो चुका है, मेरी एक शादी ब्रेक हो चुकी है और मैं अब अपनी बेटी के साथ लखनऊ में रहती हूँ, करियर बना रही हूँ, काम कर रही हूँ। क्या आगे मेरी दूसरी शादी हो सकती है? आरती, आपकी कुंडली के हिसाब से आगे आपको दूसरी शादी करने की मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से अगर दूसरी शादी भी की जाए तो उसके परिणाम बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए दूसरी शादी के चक्कर में मत पड़िए, अपनी बेटी पर और अपने करियर पे ध्यान दीजिए। इतना जरूर है कि भविष्य में आप अपने दम पर अपना बहुत अच्छा करियर और अपना बहुत अच्छा जीवन बना लेंगी। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय बृहस्पति मंत्र का जप करिएगा, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। अगर आप ऐसा उपाय करें तो आपका जीवन बेहतर होगा। तो हमने आपको मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोगों का हाल बताया कि इनके ऊपर शुक्र के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब बताते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का कैसा असर होगा। तुला राशि की अगर बात करें तो आपकी मन चाही इच्छाएं पूरी होंगी। धन के मामले में, करियर और विवाह के मामले में आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि, परिवार में, जीवन में कोई मंगल कार्य होगा, कोई शादी विवाह गृह निर्माण जैसा कार्य, कोई शुभ कार्य होने की संभावना आपके घर में बन रही है। धनु राशि, धन और संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय आपको धन की प्राप्ति भी होगी और आपको प्रॉपर्टी का लाभ होगा। धन और संपत्ति लाभ के योग धनु वालों के लिए बने हुए हैं। मकर राशि, मानसिक रूप से आपको परेशानी हो सकती है, पारिवारिक अशांति हो सकती है, बेवजह का तनाव, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। कुंभ राशि, धन प्राप्ति होगी, उपहार मिलेगा, समृद्धि का लाभ होगा। धन, उपहार और समृद्धि का लाभ होने की संभावना आपके लिए बन रही है। मीन राशि, इस समय में आपको लोगों से प्रेम मिलेगा, लोगों से सहयोग मिलेगा, ज्यादा बेहतर तरीके से जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।
शुक्र का राशि परिवर्तन अगर आपके लिए अनुकूल नहीं है तो क्या उपाय करें, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ काम बन जाएगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब ये जानते हैं कि अगर शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए अनुकूल नहीं है तो क्या उपाय करेंगे। देखिए, वैसे तो शुक्र अपनी राशि में गए हैं जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति है, इसलिए शुक्र का राशि परिवर्तन सबके लिए अनुकूल ही है। लेकिन मेष, वृषभ और मकर राशि के लिए ये परिवर्तन अनुकूल नहीं है, इनको अपने पारिवारिक मामलों का, अपने रिश्तों का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। इनको नियमित रूप से श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय शुक्र के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः, अगर इस मंत्र का सुबह शाम जप करें तो आपको लाभ होगा। नियमित रूप से किसी निर्धन व्यक्ति को या मंदिर में सफेद मिठाई का दान करें और सफेद रंग के कपड़ों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक
राशिफल। मकर राशि, सेहत की स्थिति बेहतर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, दौड़ भाग बनी रहेगी। भगवान को पीले फूल चढ़ा दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

लें, वाद विवाद से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, मानसिक समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि बृहस्पतिवार के दिन केला नहीं खाना चाहिए, क्या ऐसा है? देखिए, केला जो फल है वो बृहस्पति ग्रह से संबंध रखता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि बृहस्पतिवार के दिन केला नहीं खाना चाहिए। इतना जरूर है कि जो लोग बृहस्पतिवार को केले का दान करते हैं उन्हें केवल बृहस्पतिवार को केला नहीं खाना चाहिए, बाकी सामान्य व्यक्ति जो केले का दान नहीं करता वो सामान्यतः बृहस्पतिवार को केला खा सकता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम में सफलता मिलेगी। नंबर 2, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, मानसिक तनाव हो सकता है। नंबर 5, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। नंबर 6, धन लाभ के योग हैं। नंबर 7, चोट चपेट से सावधान रहें। नंबर 8, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। और नंबर 9, करियर में सफलता मिलेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर में आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी संतान और करियर से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो हल हो जाएगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अनिल जी ने हमें लिखा है और अनिल जी हमें मेल लिखते हैं पंचकुला से। इनकी जन्म की तारीख है 26 अप्रैल 1975 सुबह के 11 बजे। इनका जन्म स्थान है पंचकुला, हरियाणा।
ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो मुझे कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अनिल जी, आपकी कुंडली में ये संभावना दिखाई दे रही है कि कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करेंगे, कोई ना कोई संपत्ति आप बेचेंगे और अगले साल की शुरुआत तक आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। ऐसा भी लग रहा है कि पंचकुला छोड़ करके आप किसी अन्य जगह आगे जा करके बसेंगे और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कर्ज से मुक्ति मिले, आर्थिक स्थिति भविष्य में बेहतर हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्रवार की शाम को आप पन्ना पहनिएगा, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर आज कोई इंटरव्यू है, जरा सा जीरा खा के घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रख करके जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा।

वृषभ राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा। कर्क राशि के लोगों के लिए धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा। तुला राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज सप्तमी तिथि है। आज सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करिएगा और आज सफेद मिठाई का या दही का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा बने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ। कारगिल युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज बनाए गए राम मंदिर ट्रस्ट के नए महासचिव। इससे पहले ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की निभा रहे थे जिम्मेदारी। अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे बनाए गए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य। मंदिर मामले की सुनवाई में निभाई थी अहम भूमिका। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में शामिल तीन नए सदस्यों में महेश भागचंद का भी शामिल। वहीं 2020 में मंदिर के भूमि पूजन में बनाए गए थे मुख्य यजमान। शिक्षाविद डॉक्टर निर्मला यादव भी बनाई गई राम मंदिर ट्रस्ट की सदस्य। ट्रस्ट की पहली महिला सदस्य बनी। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद पर नियुक्ति को जितेंद्र मिश्रा ने बताया सौभाग्य। बोले, प्रभु श्रीराम का जैसा आदेश होगा वैसा कर्म करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर से राम मंदिर ट्रस्ट तक के सफर पर भावुक हुए जितेंद्र मिश्रा। बोले, मंदिर के हित में हर संभव प्रयास करूंगा।
1: ये बार बार टीवी में आता रहा है

0: श्री राम का आशीर्वाद भी मानूंगा कि 43 वर्ष राष्ट्र सेवा के बाद भारतीय वायुसेना में मुझे श्री राम ने एक और अवसर प्रदान किया है जहां पर मैं श्री राम मंदिर और श्री राम भक्तों की सेवा कर पाऊंगा।
1: चंद्रचूरी विवाद पर अखिलेश ने सरकार को फिर से घेरा, कहा बड़े नामों पर एक्शन नहीं। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले राम मंदिर में शंकराचार्य नियुक्त करेंगे धर्माचार्य। इंदौर में 12 के बदले अब 19 सितंबर को होगा राहुल का कार्यक्रम, छात्रों की गूंज। कांग्रेस का आरोप, प्रशासन ने नहीं दी स्टेडियम की इजाजत, प्रदर्शन की चेतावनी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी आरएसएस की मनुवादी सोच के खिलाफ लगाए नारे। यूथ कांग्रेस ने बांटे मनुवादी सोच, कहां मिलेगी बीजेपी के दफ्तर में लिखे पर्चे, जातिवाद के खिलाफ संघर्ष का किया ऐलान। नासिक में राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर हमला, बोले हाथ पैर टूट जाएं फिर भी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के अहम मुद्दों पर राहुल से चर्चा, एसआईआर से 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटने, किसान आत्महत्या और कुंभ बजट का मुद्दा उठा। मराठा आरक्षण की मांग पर मनोज उरांगे पाटिल का अनशन, 5वें दिन भी जारी, तबीयत बिगड़ने से बढ़ी चिंता। मराठा आरक्षण आंदोलन के 5वें दिन मनोज उरांगे का सरकार पर गंभीर आरोप, बोले मुंबई में घुसाने का प्लान, 100% दंगा कराना चाहती है सरकार। मांगों के तत्काल जीआर पर अड़े जरांगे, वहीं 12 सितंबर को मुंबई कूच का भी ऐलान, बोले लाठी का जवाब लाठी से देंगे। बीजेपी विधायक प्रसाद लाड जरांगे से बातचीत के लिए अंतरवाली सराटी रवाना, 15 मांगों पर चर्चा से समाधान की कोशिश। जालना में मराठा आंदोलनकारियों का धुले सोलापुर हाईवे पर रास्ता रोका गया, वहीं करीब 1.25 घंटे तक यातायात रहा प्रभावित। मनोज उरांगे के समर्थन में जोरदार नारेबाजी, मांगे जल्द पूरी करने की भी मांग, हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतार। दिल्ली एसआईआर के ड्राफ्ट में 47 लाख नाम कटने पर बीजेपी का मंथन, प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और सभी 7 सांसदों की बैठक, ग्राउंड पर लोगों की मदद का निर्देश। दिल्ली एम्स में 14 साल से दिल की सर्जरी के लिए इंतजार करते करते लड़की की मौत, 2012 में हृदय की जन्मजात बीमारी से पीड़ित बेटी की सर्जरी के लिए एम्स का चक्कर काट रहे थे माता पिता। हथिनीकुंड आर्मी बोट हादसा, 24 घंटे बाद भी यमुना में लापता 2 जवानों की तलाश जारी, तेज बहाव के बावजूद 1.5 घंटे बाद बंद रखे हुए गए नहर के गेट, वहीं लाइफ जैकेट डाइविंग गियर और मिले, लेकिन कमांडो का कोई भी सुराग नहीं मिला। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर ब्रज को सीएम योगी देंगे 977 करोड़ की सौगात, 57 परियोजना का लोकार्पण और 167 योजनाओं का शिलान्यास। नेपाल में तबाही का आंकड़ा बढ़ा, मृतकों की संख्या 1204 पहुंची, 4216 लोग लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक करीब 12,000 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, सेना के हेलीकॉप्टर तैनात, पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद और घायलों का मुफ्त इलाज। पीएम बालेंद्र शाह ने जलवायु परिवर्तन से जोड़ा हादसा, भारी बारिश से रेस्क्यू अभियान प्रभावित, 400 मेगावाट बिजली उत्पादन भी बाधित। नेपाल में भूतकोशी बाढ़ से तबाही, पीएम बालेंद्र शाह बोले कि दृढ़ संकल्प और साहस के साथ संकट से लड़ना होगा। नेपाल में भारी बारिश का असर, नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ा। चमोली गोपेश्वर में चोपता सड़क मार्ग बैरागना के पास भारी बारिश के चलते मलबा आने से मार्ग बंद। नैनीताल में मूसलाधार बारिश से नैनी झील लबालब, कोसी नदी उफान पर, गर्जिया मंदिर के चारों तरफ पानी, कुमाऊं में ऑरेंज अलर्ट। जामताड़ा में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल हुआ, नदियां उफान पर और रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। जामताड़ा में बारिश से छत गिरने की वजह से महिला की मौत, दक्षिण बहाल डायवर्जन का अप्रोच पथ भी बहा, आवागमन पर संकट। बिहार में गंगा नदी उफान पर, वहीं मनेर के दियारा इलाकों में बढ़ा खतरा, बाढ़ का खतरा बढ़ा, कई गांव में घुसा पानी। कैमूर में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा, शहर पर मंडराया खतरा। प्रयागराज में बाढ़ में डूबे घर और दुकानें, छोटा बगाड़ा दारागंज के इलाके बाढ़ से प्रभावित, कई घरों में घुसा पानी। सिंगरौली में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, कई रास्ते हुए जाम। झारखंड के गढ़वा में 48 घंटे की मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, सरस्वती नदी में बुजुर्ग महिला के बहने की सूचना। फतेहपुर में बारिश से हाहाकार, हुसैनगंज में जल निकासी नहीं होने से घरों में घुसा पानी, जल निकासी के लिए नगर पालिका ने लगाए जाड़ने। लखीसराय में बदहाल सड़क का दर्दनाक मंजर, मरीज को चारपाई पर दीवार के ऊपर ले जाने को मजबूर परेशान। ग्रेटर नोएडा में अनियंत्रित ट्रक ने सोसाइटी के गेट पर मारी जोरदार टक्कर, रोंगटे खड़े कर देने वाले सीसीटीवी फुटेज आए सामने। राजनंदगांव में बाइक और कार की जोरदार टक्कर, हादसे में चार लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर में दो बसों के आमने सामने भीषण टक्कर, एक चालक की मौत, 24 यात्री घायल। जयपुर में थाने की सेटिंग पड़ी भारी, एसीबी की टीम ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल और दलाल को किया गिरफ्तार। गुजरात के जामनगर में बिना नंबर प्लेट की नई कार ने राहगीर को मारी भीषण टक्कर, सीसीटीवी फुटेज वायरल। गुजरात में आरपीएफ जवान बना देवदूत, चलती ट्रेन से लटके यात्री को खींचकर बचाई जान, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। औरंगाबाद में कार सवार तीन बदमाशों ने नाबालिग से किया गैंगरेप, पुलिस ने दो आरोपी को किया गिरफ्तार, वहीं तीसरा आरोपी की तलाश जारी। बांका में बीडीओ 75,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, निगरानी टीम ने निजी आवास पर की कार्रवाई। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में कारगिल युद्ध के पूर्व सैनिक ने जमीन आवंटन की मांग को लेकर जहर खाकर की आत्महत्या की कोशिश, आईसीयू में भर्ती। महाराष्ट्र के सातारा में भगवान की मूर्ति बनाने वाले कारखाने में लगी भीषण आग, लाखों की मूर्तियां जलकर खाक। पुणे में जमीन विवाद में बेटों ने पिता को बीच सड़क पर पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर रील बनाने के लिए ट्रैफिक रोका गया, यातायात नियमों के उल्लंघन के आरोप में चार लोगों पर केस दर्ज। ग्वालियर में बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग, ताऊ की लाइसेंसी बंदूक से दागी गई गोलियां, वीडियो वायरल होने पर बर्थडे बॉय और ताऊ गिरफ्तार। सूरत में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, केमिकल ड्रम में जोरदार धमाकों से दहला इलाका, मौके पर 9 दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी बाइक को मारी जोरदार टक्कर, खौफनाक सड़क हादसा, सीसीटीवी कैमरे में कैद। झारखंड के गिरढ़ी में राधा स्वामी संगठन की आड़ में 8 से 10 करोड़ की ठगी का खुलासा, राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सहित चार आरोपी गिरफ्तार। कतरा में जमीन पर दखल कब्जा के दौरान बवाल मचा, महिला ने पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग। सोनीपत में पति पत्नी ने किया आत्महत्या, लव मैरिज के हुए थे 2 साल, जांच जारी।

देशभर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम स्वरूप। 4 सितंबर को बद्रीनाथ धाम में धूमधाम से मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा के साथ लगाया जाएगा विशेष भोग। रात में जन्मोत्सव के समय विशेष आरती के बाद श्रद्धालुओं को वितरित होगा प्रसाद। देशभर के बाजारों में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर रौनक। झांसी में नई डिजाइन की पोशाकें, श्रृंगार की सामग्री की भारी डिमांड। जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गोविंदाओं की मंडली का धमाल। दही हांडी फोड़ने के लिए कर रहे हैं जबरदस्त तैयारी। अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज। मंदिर में इस बार लोटस थीम पर मनाया जाएगा श्री कृष्ण जन्मोत्सव। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारी जारी। वृंदावन से मंगाए गए फूलों से की जा रही मंदिर की सजावट। श्री कृष्ण को कई तरह के व्यंजनों के भोग अर्पित करने की तैयारी। 500 से ज्यादा तरह के प्रसाद का किया जा रहा है इंतजाम। 100 किलो का बनाया जा रहा है केक। पीएनबी एआई समिट में बैंकिंग के भविष्य पर मंथन। एआई, जेन एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी पर हुई चर्चा। पीएनबी ने एआई आधारित बैंकिंग और साइबर सुरक्षा को दिया बढ़ावा। क्वांटम प्रूफ सिस्टम हैकाथॉन के विजेताओं को किया गया सम्मानित। जशपुर के पथलगांव वन क्षेत्र में 12 हाथियों का दल धान की फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 48 स्कूली शिक्षकों को, 21 उच्च शिक्षा के शिक्षकों और एमओएसडीई के 13 शिक्षकों को मिलेगा अवार्ड। यूपी के मथुरा इलाके को मिली 1051 करोड़ की लागत से तैयार 229 विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। इसी महीने शुरू हो सकती है बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन। कलेना अग्रहारा से तवरेकेरे तक चलेगी ये ट्रेन। यात्रियों को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। डेंगू चिकनगुनिया से राहत के लिए आईआईटी कानपुर में मच्छरों पर रिसर्च। मच्छरों के दिमाग पर और सूंघने की क्षमता पर शोध। 100 से ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स ने अहमदाबाद में रेलवे ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का किया दौरा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशन को देखने का मिला मौका। मिर्जापुर द मूवी के मेकर्स का बड़ा धमाका। रिलीज से 3 दिन पहले आउट हुआ नया गाना घूम। मनोज वाजपेयी की फिल्म लास्ट मैन इन टावर का ट्रेलर रिलीज हुआ। व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा के नॉवल पर आधारित यह फिल्म। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हनुमान अंश ने किया कमाल। मूवी ने 25 दिनों में 47 करोड़ के आसपास की कमाई। पर्दे पर आदमखोरों के शिकारी बनेंगे अक्षय कुमार। मशहूर शिकारी और पर्यावरण प्रेमी रहे जिम कॉर्बेट की बायोपिक में करेंगे काम। रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म ऐसा की रिलीज डेट का ऐलान। 27 नवंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म में एक दमदार एक्शन अवतार में नजर आएंगे रश्मि। ईरानी सेना ने सिरिक में एक शादी समारोह में हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा इस हमले में आम नागरिक मारे गए। ईरान ने दी चेतावनी। कहा अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो देंगे कड़ा जवाब। जर्मनी के ऑक्सबर्ग में रेलवे स्टेशन के पास धमाका। हमले में 2 यूक्रेनी नागरिक घायल। कई इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने जर्मन एयरपोर्ट पर हमले की कोशिश की निंदा की। यूरोप विदेश नीति प्रमुख ने कहा कि एयरपोर्ट पर ड्रोन साजिश प्रायोजित आतंकवाद। जर्मन सरकार ने ड्रोन हमले की कोशिश के लिए रूस को ठहराया था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जर्मनी के ड्रोन साजिश के सभी आरोपों को नकारा। जर्मन नेतृत्व पर पलटवार। कहा मर्ज देश के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहे हैं और अपनी नाकामी छिपा रहे हैं। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी सेना की भीषण बमबारी। एक बच्चा समेत 8 लोग घायल हुए। 2 की हालत गंभीर। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया गया निशाना। कई घरों को पहुंचा भारी नुकसान। इस्तांबुल के पास मरमारा सागर में आपस में टकराए टर्की के 2 जहाज। एक जहाज के डूबने की आशंका। 10 क्रू मेंबर लापता। दक्षिण कोरिया के दक्षिण पूर्वी तट के पास अचानक से हादसे का शिकार हुई टगबोट। हादसे में चालक दल के 1 सदस्य की मौत। 6 लोग लापता। थाईलैंड पहुंचा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन। एयरक्राफ्ट पर पिछले 9 महीनों से 5,000 सैनिक तैनात। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का राजधानी काहिरा में भव्य स्वागत हुआ। दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा।

0: Papa.
1: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया
1: है। हां ओ ला भाई मेरा बैट,
3: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
4: बिल्कुल चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: आगे आगे।
6: अरे उधर
5: उधर।
6: करेक्ट करेक्ट।
7: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: खाना कहाँ से मंगवाया?
9: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
11: जीके वॉल मैक्स।
9: बेस्ट प्राइमर
12: जीके मैक्स।
9: बेस्ट पेंट
12: जीके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
8: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
9: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
14: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
13: असली शहद, असली स्वाद।
15: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
16: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
17: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: ब्रज की भूमि से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पंचायत आज तक मथुरा, 3 सितंबर सिर्फ आज तक पर।

0: 12 बजे वाली ट्रेन 3 बजे चलेगी। यही है संगीत, बाकी लोग एडजस्ट करें।
1: मेरा संगीत माय वे।
2: गन्ना बड़े सियासत में फंसा हुआ इस समय, नहीं
3: गन्ने की वैल्यू बढ़ गई है, सड़क से उठा के स्टार बना दिया।
4: यही है था, कभी हमने अन्ना को बनाया, कभी गन्ने को बनाया।
1: गन्ने को हल्के में लेते थे, गन्ना ज्यादा बताओ, सबको जूस निकाल दिया भाई।
2: पलक को मैंने बोला कि तुम आर्मी वगैरह ज्वाइन करो, उसकी माँ ने कल बोला कि तो ऑफिसर वगैरह बन जाओ, तो उसने कहा क्यों बन जाए, उसने कहा अच्छा लगेगा हमको, मेरा शौक है, अरमान है। उसने मेरा भी अरमान था कि मेरे माता पिता मतलब पिताजी और मम्मी जो है वो ऑफिसर होते हैं, बने कि आप लोग, हम कह रहे हैं तेरे पैदा होने से पहले अपन पैदा हुए थे। तो मैंने कहा तू आर्मी कमांडो वगैरह बन, मैंने ब्लैक कैट कमांडो सब बनते हैं, तो ब्लैक डॉग कमांडो बन जाए।

0: matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: खाना कहाँ से मंगवाया?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
4: जीके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट प्राइमर?
5: जीके मैक्स।
2: बेस्ट पेंट?
5: जीके मैक्स।
2: जीके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जीके मैक्स पेंट्स।
3: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूँ?
2: जीके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: पापा, सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ
3: ओले, ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
3: बिल्कुल चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: सब्जी वाले से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक UPI ने पेमेंट का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। जेब में कैश ना हो तो भी मोबाइल से चंद सेकंड में भुगतान हो जाता है। लेकिन अब बड़े UPI पेमेंट को लेकर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट की चर्चा तेज हो गई है। लोकल सर्किल्स के एक नए सर्वे में सामने आया है कि अगर 2,000 रुपए से ज्यादा के मर्चेंट पेमेंट पर MDR लगाया जाता है तो बड़ी संख्या में कारोबारी इसका बोझ उठाने को तैयार नहीं है। सर्वे के मुताबिक 41% मर्चेंट 2,000 रुपए से ज्यादा के UPI पेमेंट पर कोई भी MDR देने को तैयार नहीं। 9% कारोबारियों ने कहा है कि वो UPI पेमेंट लेते ही नहीं है। केवल 17% मर्चेंट 0.3% या उससे ज्यादा MDR वहन करने को तैयार है। सर्वे में 242 जिलों के कारोबारियों से 32,000 से ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिली हैं। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि अभी 2,000 रुपए से ऊपर हर UPI पेमेंट पर 0.3% चार्ज तय नहीं हुआ है। संसद से पारित कानून ने सिर्फ सरकार को आगे MDR का ढांचा तय करने का अधिकार दिया है। वित्त मंत्रालय ने साफ कहा है कि अगर MDR लगाया भी गया तो ये चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर एक तय सीमा से ऊपर और मामूली दर पर होगा। आम ग्राहक से UPI पेमेंट का कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा और पर्सन टू पर्सन पेमेंट फ्री रहेगा। अब सवाल है कि अगर ग्राहक से सीधे चार्ज नहीं लिया जाएगा तो आम आदमी पर बोझ कैसे बढ़ सकता है? इसका जवाब लोकल सर्किल्स के दूसरे सर्वे में मिलता है। इसके मुताबिक 53% UPI यूजर्स ने कहा है कि अगर MDR की रकम उनसे वसूली गई तो वो बड़े पेमेंट्स के लिए UPI का इस्तेमाल कम या बंद कर देंगे। वहीं 27% क्रेडिट कार्ड, 14% डेबिट कार्ड और 12% कैश या बैंक ट्रांसफर का रुख करने की बात कहते हैं। अगर 0.3% MDR का बोझ ग्राहक पर डाला जाए तो 2,000 रुपए के पेमेंट पर 6 रुपए, 3,000 रुपए पर 9 रुपए, 5,000 रुपए पर 15 रुपए, 10,000 रुपए पेमेंट पर 30 रुपए अतिरिक्त। लेकिन ये सिर्फ संभावित गणना है, मौजूदा नियम नहीं। यानी फिलहाल ग्राहक के लिए UPI फ्री है और सरकार ने सीधे ग्राहक पर चार्ज लगाने से इनकार किया है। असली सवाल ये है कि भविष्य में MDR की दर कितनी तय होती है, किन कारोबारियों पर लागू होती है और व्यापारी इस लागत को खुद वहन करते हैं या नहीं। अगर व्यापारी ये लागत ग्राहक पर डालते हैं, पेमेंट पर आम आदमी की जेब पर अप्रत्यक्ष बोझ पड़ सकता है। आदित्य के राणा आज तक।
10: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

मिश्रा बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ। कहा, श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया के उनके गांव में जश्न, तीन ट्रस्टी के नामों का भी ऐलान। यूपी चुनाव से पहले एसपी महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा, 27 में कांग्रेस से मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन, अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी सरकार। देशभर के जल संसाधन मंत्रियों से बैठक में पीएम का जल मंत्र। कहा, टीम इंडिया की भावना से करे काम, पानी बचाने के लिए 2 करोड़ नए निर्माण का लक्ष्य, एआई के इस्तेमाल पर जोर। नासिक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की सीख। कहा, पार्टी की विचारधारा से ना करे समझौता, बोले मेरे हाथ पैर टूट जाएं तो भी आरएसएस का सिद्धांत नहीं करूंगा स्वीकार। ब्रिज की भूमि से उठेगा 2027 का सबसे बड़ा शो। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़े मंच पर दिग्गजों से सबसे बड़े सवाल। आज दिन भर देखिए पंचायत आज तक मथुरा।

0: आपके साथ पूजा शर्मा। समय है सुपर 8 का, जहां हम आपको आज दिखाएंगे आज की 8 बड़ी खबरें। नेपाल में कैसा चल रहा है रेस्क्यू का काम, बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा, क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री बालेन शाह, ये भी आपको बताएंगे। वहीं यूपी में बाढ़ के बेकाबू पानी ने कई इलाकों में जिंदगी की रफ्तार रोक दी है, पूरी डिटेल आपको देंगे। उत्तराखंड में बारिश, भूस्खलन और उफनती नदियों ने पहाड़ों में कैसे आफत बढ़ा दी है। उसके बाद चित्रकूट की बात होगी, जहां पर मंदाकिनी नदी ने 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, बाढ़ से गांव में हाहाकार मचा हुआ है। इसके बाद अयोध्या से राम मंदिर सीईओ चुने जाने की बड़ी खबर, जिससे जुड़ी कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। साथ ही आपको ये बताएंगे कि पीएम मोदी का पानी संरक्षण का मंत्र आखिर क्या है। उसके बाद अखिलेश यादव से जुड़ी बड़ी सियासी हलचल, अखिलेश का बीजेपी पर नया हमला क्या है। साथ ही आपको ये बताएंगे कि किसने राहुल की रैली में काले झंडे दिखाए हैं। और आखिर में जयपुर की बात करेंगे, जहां कैमरे में कैद हुआ रफ्तार का खौफनाक कहर, रेड लाइट तोड़ती थार और फिर जोरदार टक्कर की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। तो सबसे पहले देश के कई हिस्सों में बारिश अब राहत नहीं, आफत बनती जा रही है। जी हां, पहाड़ों से मैदान तक नदियां उफान पर हैं, सड़कें दरक रही हैं और बाढ़ का पानी आबादी में घुस रहा है। दरअसल उत्तराखंड, यूपी, बिहार तक नदियां उफान पर हैं, गंगा की लहरें प्रयागराज के रिहायशी इलाकों को डुबा रही हैं। उत्तराखंड में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है, तो वहीं देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बिहार में गंगा, गंडक और सोन का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और वहीं नेपाल में भीषण ग्लेशियर बाढ़ के बाद मौत का आंकड़ा 1200 पार कर चुका है। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। वही आपको ये बता दें कि उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ का कहर अभी भी जारी है, पहाड़ से मैदान तक कहीं पर भूस्खलन ने रास्ते रोक दिए हैं, तो कहीं उफनती नदियां खतरे की घंटी बजा रही हैं।
1: उत्तराखंड में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि पहाड़ से मैदान तक हर तरफ पानी, मलबा और तबाही की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। अल्मोड़ा में बारिश से जुड़े हादसों ने एक ही दिन में 5 जिंदगियां छीन ली। हालात बिगड़े तो स्कूलों को बंद करना पड़ा, बारिश ने जनजीवन की रफ्तार रोक दी। बागेश्वर में पहाड़ दरक रहे हैं, भारी भूस्खलन से सड़कें बंद हैं, कहीं रास्तों पर मलबा पसरा है तो कहीं अंतिम संस्कार तक के लिए रास्ता बाधित हो गया। नैनीताल में बारिश के बीच नैनी झील लबालब है, पहाड़ों से मलबा सड़कों पर आ रहा है और गाड़ियां रास्तों में फंसी हैं। जिले में बड़ी संख्या में सड़कें बंद हैं। उधर कोसी और शिप्रा नदी का पानी भी उफान पर है। रामनगर में कोसी का तेज बहाव गर्जिया मंदिर तक पहुंच गया, जबकि कैंची धाम के पास शिप्रा नदी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। ऊधम सिंह नगर में गोला नदी का जलस्तर बढ़ा है, 27,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नदी का बहाव तेज हुआ, नदी किनारे के इलाकों में अलर्ट है।
2: सूचित किया जाता है गोला नदी में अत्यधिक पानी छोड़ा गया है, जिस कारण गोला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।
1: चमोली में गोपेश्वर चोपता उखीमठ और थराली देवाल मार्ग पर पहाड़ से मलबा टूटकर सड़क पर आ गया, सड़कें बंद हैं, आवाजाही पूरी तरह प्रभावित है। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर भी पहाड़ से मलबा आया है, बारिश के बीच सड़क पर पसरा मलबा यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। मौसम की मार जारी है और पहाड़ों में मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात कर लेते हैं प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने के साथ ही निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। दरअसल सलोरी, बगाड़ा, दारागंज जैसे कई इलाके ऐसे हैं जो डूब रहे हैं। वहीं मिर्जापुर में पानी से लबालब रेलवे अंडरपास में रोडवेज बस भी फंस गई।

0: प्रयागराज से मिर्जापुर और मथुरा तक बारिश और उफनती नदियों ने यूपी के कई शहरों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि कहीं सड़कें पानी में डूबी हैं, तो कहीं बाढ़ का पानी घरों और दुकानों तक पहुंच चुका है। प्रयागराज में गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर का असर साफ दिखाई दे रहा है। छोटा बघाड़ा, सलोरी और तारागंज के निचले इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है। सड़कें जलमग्न हैं। दशाश्वमेध घाट के आसपास भी पानी का कब्जा है और कई जगहों पर नावें चलती नजर आ रही हैं।
1: ये बाढ़ की वजह से जो निचले इलाकों में रिहायशी इलाके हैं, वहां पर अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हम इस वक्त दारागंज इलाके में हैं। आप देख सकते हैं कि ये सड़क है और ये नागवास की रोड दारागंज की सड़क है, जहां पर ये गंगा का पानी आ गया है। दशाश्वमेध घाट है और यहां पर जो लोगों के तमाम घर हैं, इस बाढ़ के पानी में समाते जा रहे हैं।
0: मिर्जापुर में भी लगातार बारिश के बाद विंध्याचल के पटेगरा नाला रेलवे अंडरपास में पानी भर गया। इसी पानी में रोडवेज बस फंस गई, जिसे ट्रैक्टर की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। और अब मथुरा की तस्वीरें देखिए। लगातार बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव है। सड़कें पानी में डूबी नजर आ रही हैं और लोगों के साथ साथ वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। प्रयागराज की बाढ़, मिर्जापुर का जलमग्न अंडरपास और मथुरा का जलभराव, तीनों शहरों की तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश ने जनजीवन को किस कदर प्रभावित किया है। आज तक ब्यूरो।
2: तो चित्रकूट में बारिश और बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। मंदाकिनी नदी 23 साल का रिकॉर्ड तोड़कर उफान पर है और कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद सैलाब का असर अब कई गुना बढ़ गया है। कई रास्ते बंद हैं, गांव में पानी घुस गया है और राहत बचाव का काम भी जारी है। देखिए चित्रकूट में बाढ़ और बारिश से मची तबाही की रिपोर्ट।
0: चित्रकूट में बारिश और बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मंदाकिनी नदी 23 साल का रिकॉर्ड तोड़कर उफान पर है। मंदाकिनी का रौद्र रूप कैमरे में कैद है। तेज धार के साथ नदी का पानी घाटों और किनारों तक फैल गया है। लगातार बारिश से बांध भी ओवरफ्लो है। फाटक खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। बांध से निकलती पानी की तेज धार, नीचे की तरफ बढ़ता सैलाब और रास्तों पर टूटता पानी का कहर। जोड़ा बांध से छोड़े गए पानी ने टिकरिया गांव के पास बने रपट्टे को भी बहा दिया। मानिकपुर सतना मार्ग पर आवाजाही थम गई। बाढ़ के पानी से घिरे इलाकों में लोगों की मुश्किलें साफ दिखाई दे रही हैं। प्रभावित गांवों में राहत और बचाव का काम जारी है। प्रशासन की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही हैं।
3: 1.8 टाइम्स है 5 साल के एवरेज का, तो मोटा मोटा 2 गुना जो है, कम से कम बारिश जो है वो यहाँ पे हो रही है।
0: बाढ़ का पानी घरों के अंदर तक पहुँच चुका है। घरों में रखा सामान पानी में डूबा है। कहीं दुकानें जलमग्न हैं, तो कहीं लोग घर की छत और बारजे पर बैठकर हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। नाव से गुजरते हुए जो तस्वीरें सामने आई, वो तबाही की कहानी खुद बयां कर रही है। ग्रामीणों के मुताबिक घरों में पानी भरने से खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान तक बर्बाद हो गया है। कई ग्रामीण प्रशासन से मदद नहीं मिलने का आरोप भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ जगह राहत पहुंची है, लेकिन बड़ी संख्या में परिवार अब भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल मंदाकिनी का जलस्तर चिंता बढ़ा रहा है। तरोहा गांव में लोग छतों पर हैं, सड़कें पानी में हैं और हर नजर प्रशासन की मदद पर टिकी है। अखिलेश सोनकर के साथ आज तक ब्यूरो।
2: वहीं बिहार में नदियों का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। गंगा और गंडक से लेकर सोन तक कई इलाकों में बाढ़ और कटाव का खतरा गहराता जा रहा है। कहीं गांव पानी में गिर गए हैं, तो कहीं पर सड़कें टूट गई हैं और लोग नाव के सहारे आवाजाही को मजबूर हैं।
0: बिहार में नदियों का उफान अब तबाही का खतरा बन चुका है। गंगा गंडक से लेकर सोन तक पानी का रौद्र रूप दिख रहा है। कहीं गांव डूबे हैं, कहीं सड़कें टूटी हैं और कहीं कटाव घरों की दहलीज तक पहुंच गया है। मुंगेर की इन तस्वीरों में गंगा का बढ़ता जलस्तर साफ दिखाई दे रहा है। लक्ष्मीपुर बिंद टोली में तेज धार के साथ कटाव जारी है और पानी आबादी की तरफ बढ़ रहा है। कटाव की वजह से वार्डों को जोड़ने वाली PCC सड़क भी टूट चुकी है। करीब 5 फीट पानी के बीच ग्रामीणों को आवाजाही करनी पड़ रही है। गंगा की धार अब घरों के बेहद करीब पहुंच गई है। खेतों में खड़ी फसलें डूबी हैं और करीब 3000 की आबादी पर संकट मंडरा रहा है। बेगूसराय के रातगांव पंचायत की ये तस्वीरें बाढ़ की भयावहता दिखाती हैं। ड्रोन कैमरे में पूरा इलाका पानी से घिरा नजर आ रहा है। सड़कें पानी में समा चुकी हैं। आने जाने के लिए कहीं जुगाड़ नाव है तो कहीं निजी नाव ही ग्रामीणों का सहारा बनी हुई है। पानी घरों तक पहुंचा तो महिलाओं और बच्चों ने सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन शुरू कर दिया। स्कूल परिसर भी जलमग्न है। हाजीपुर में गंगा और गंडक दोनों का जलस्तर बढ़ रहा है। निचले इलाकों में पानी तेजी से फैलता दिखाई दे रहा है। गांवों की गलियां पानी में डूबी हैं। रास्तों पर तेज धार बह रही है और लोग घर छोड़कर ऊंची जगहों की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। हरिवंशपुर के DRCC और ITI परिसर में भी पानी पहुंच चुका है। गांधी सेतु के नीचे का इलाका पूरी तरह जलमग्न दिखाई दे रहा है। उधर रोहतास में सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सोन बराज के सभी 69 गेट खोले गए हैं। लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से नदी का बहाव बेहद तेज है। बराज से निकलता पानी सोन की धार को और विकराल बना रहा है। आसपास के इलाकों में अलर्ट है और लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: और अब बात कर लेते हैं नेपाल की। नेपाल में कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई है कि मौत का आंकड़ा 1200 के पार पहुंच गया है और करीब 4500 लोग अभी भी लापता हैं। हिमालय ग्लेशियर टूटने की वजह से आई विनाशकारी बाढ़ ने घर, सड़कें और पुलों को मलबे में बदल दिया है। सबसे बड़ी चिंता उन करीब 100 हाइड्रो पावर कर्मचारियों को लेकर है जो कि मलबे से भरी सुरंगों में फंसे बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है लेकिन अब तक सुरंग से सिर्फ शव बरामद हुए। इस बीच भारत ने नेपाल के लिए 5वीं राहत उड़ान भी भेजी है जिसमें कि 11 सदस्य रेस्क्यू टीम, विशेष उपकरण और 5.5 टन मेडिकल सप्लाई शामिल है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने संसद में भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम मित्र देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मिल रही मदद के लिए आभार जताया और आगे भी सहयोग की उम्मीद जताई है। अब खबर राम मंदिर पर। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ बन गए हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को नया महासचिव बनाया गया। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वेस्टर्न एयर कमान के चीफ थे और अब वो राम मंदिर के पहले सीईओ बना दिए गए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ बने हैं जितेंद्र मिश्रा। एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर मार्शल हैं जितेंद्र मिश्रा। एक बड़ा फैसला जिसका सबको इंतजार था वो कल ले लिया गया। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वेस्टर्न एयर कमान के चीफ थे और अब वो राम मंदिर के पहले सीईओ बन गए हैं।
4: सीमाओं पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के बाद अब रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र को राम मंदिर ट्रस्ट में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या राम मंदिर का पहला सीईओ बनाया है। ट्रस्ट की बैठक में उनके नाम का ऐलान किया गया। जितेंद्र मिश्र यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। जितेंद्र मिश्र ने ऑपरेशन से दूर में पश्चिमी वायु कमान को लीड किया था। 1986 में वायुसेना अकादमी से भारतीय वायुसेना की लड़ाकू स्टीम में कमीशन प्राप्त हुआ। 38 सालों से अधिक के अपने करियर में उनके पास 3000 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उन्होंने 18 से अधिक तरह के लड़ाकू और परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों को उड़ाया है। ये उस टीम का हिस्सा थे जिसने करगिल युद्ध की शुरुआत में मिराज 2000 विमानों पर लेजर गाइडेड बमों को पहुंचाया था जिनका इस्तेमाल बाद में ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान टाइगर हिल और मुंथो ढालों पर हुए हमलों में किया गया था। इतना ही नहीं ऑपरेशन सिंदूर में भी उनका अहम योगदान था। जितेंद्र मिश्र को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी भूमिका के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितेंद्र मिश्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो पीएम के साथ नजर आ रहे हैं।
5: I had just asked him, can I travel with you in your vehicle? He just did not take a microsecond. Yes, he said yes, of course, why not?
4: जितेंद्र मिश्र का देश के विकास और सेवा को लेकर अपना एक विजन है जिसका जिक्र वो अक्सर करते रहते हैं। राम मंदिर के पहले सीईओ के रूप में जितेंद्र मिश्र की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब न केवल दान चोरी घटनाओं को रोकने के लिए सिस्टम बनाना है बल्कि भारी भक्तों की व्यवस्था और इंतजामों को भी पूरी तरह से दुरुस्त करना है। जिम्मेदारी भले ही पिछले काम से अलग हो, लेकिन सेना का अनुशासन और सेवा का भाव यहाँ बहुत काम आने वाला है। आज तक ब्यूरो।
2: राम मंदिर चढ़ावा चोरी यूपी चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा रहा है, ऐसे में नए सीईओ पर विपक्ष का क्या कहना है सुनिए।
6: इस पे मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, ये फैसला सरकार का है, ट्रस्ट अपना फैसला लेता है और ट्रस्ट के सामने चुनौती इसलिए है कि जिस तरह की बातें आई हो, एसआईटी ने जो जांच के बाद रिपोर्टें दी हैं, एसआईटी के बाद एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज के बाद जेल गए हैं, क्लीन चिट मिल गई है, तो क्रेडिबिलिटी से भी ऊपर आस्था है और आस्था पर श्रद्धा पर बड़ी चोट पहुंचाई बीजेपी ने, तो जो भी बनेगा उसकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है।
2: राम मंदिर ट्रस्ट में महिला शक्ति को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। एटा के पूर्व प्राचार्य निर्मला यादव को भी ट्रस्ट का नया ट्रस्टी बनाया गया है। आज तक से खास बातचीत में निर्मला यादव ने अपनी नियुक्ति को प्रभु श्रीराम का प्रसाद बताया। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए नहीं बल्कि देश की महिलाओं के लिए भी गौरव का क्षण है। राम मंदिर आंदोलन से अपने परिवार के पुराने जुड़ाव का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उनके अनुभव ट्रस्ट की जिम्मेदारी निभाने में मददगार होंगे और निर्मला यादव ने भरोसा दिलाया है कि वो ट्रस्ट से जुड़े दायित्वों को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ निभाएंगे।
7: तो आप अपने लिए ये कितना बड़ा गौरव का जो है विषय मानती हैं और क्या मानते हैं कि श्री राम की आपका कोई विशेष कृपा हुई है इस तरह आपका चयन?
8: राम के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है, तो ये जब जो कुछ भी मुझे मिला है वो न मेरी इच्छा से है न किसी दूसरे की इच्छा से है, बल्कि श्री राम की अभिलाषा है कि वो इस काम में मुझे लगाएं और मुझे उन्होंने ये दायित्व दिया है और इसी को मान करके मैं इसमें कार्य करूंगी।
7: जब चयन हुआ आपका और जब ये सूचना आप तक पहुंची, पहली प्रतिक्रिया क्या रही आपकी?
8: जैसे कहते हैं ना कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ये दायित्व, बता तो रहे थे कि हाँ साहब आपका नाम हम आपको कुछ देने वाले हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे ये मिलेगा।
2: तो यूपी में गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। शिवपाल यादव ने दावा किया है कि कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन ठीक चल रहा है। 2027 में अखिलेश यादव सीएम बनेंगे, उन्होंने ये भी कहा, और ये चुनाव अखिलेश यादव राहुल गांधी मिलकर लड़ने वाले हैं, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन में चुनाव होगा।
9: जनता अब की बार हमारा जो गठबंधन है अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, ये रहेगा और मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा।
2: अब बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी फिर से महाराष्ट्र दौरे पर गए और इस बार वो नासिक में थे, जहां पर उन्होंने किसानों की बदहाली, एसआईआर और नासिक कुंभ मेले की तैयारियों पर बात की। राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान के तहत महाराष्ट्र के 68 जिलाध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की विचारधारा के साथ किसी भी हालत में समझौता ना करें। राहुल ने कहा है कि मेरे हाथ पैर भी टूट जाएं, फिर भी आरएसएस की विचारधारा को स्वीकार नहीं करेंगे। और एक बड़ी खबर कोलकाता से, जहां पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि पार्टी दफ्तर पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, अभिषेक बनर्जी का दावा है कि कोलकाता के केमिक स्ट्रीट स्थित टीएमसी कार्यालय में तड़के करीब 4:30 बजे हथियारबंद लोगों ने हमला किया। ये दावा किया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी ने इस हमले के लिए कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है और सीसीटीवी वीडियो भी एक जारी किया गया है। साथ ही उनका आरोप है कि हमलावरों ने पार्टी कार्यालय में मौजूद लोगों से मोबाइल छीने, फर्नीचर तोड़ा गया और यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी नुकसान पहुंचाया गया है। बनर्जी ने यह भी सवाल उठाया है कि शिकायत के बावजूद करीब 2 घंटे तक पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंची। उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और पूरे मामले की जांच की मांग की। वहीं जयपुर में रफ्तार के कहर का खौफनाक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। दरअसल मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के नीचे तेज रफ्तार ब्लैक थार ने रेड सिग्नल तोड़कर सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी। तस्वीर देखिए, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि थार पलट गई और सड़क किनारे खड़े ई रिक्शा को भी चपेट में ले लिया गया। हादसे में ई रिक्शा सवार 3 लोग घायल हैं। जिस कार को थार ने टक्कर मारी वो कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक अशोक चांदना की पत्नी का भी बताया जा रहा है। और अब सामने आए सीसीटीवी में कैद तस्वीरें हादसे की भयावहता और बेकाबू रफ्तार की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। वहीं दिल्ली एम्स में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। कोटा के एक परिवार ने आरोप लगाया है कि बार बार तारीख देने के बाद भी उसकी बेटी का ऑपरेशन नहीं किया गया। 14 साल तक एम्स के चक्कर काटते काटते बच्ची की मौत हो गई है।
0: राजस्थान के कोटा के रहने वाले मुकेश कुमार देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल दिल्ली एम्स पर आरोप लगाया कि 14 साल तक अस्पताल के चक्कर काटते रहे लेकिन सही इलाज नहीं मिलने की वजह से उनकी बेटी तानवी की मौत हो गई। साल 2012 में मुकेश कुमार अपनी 2 साल की बेटी को लेकर दिल्ली एम्स गए थे। तारीख थी 10 अक्टूबर 2012। बच्ची को हृदय से संबंधित जन्मजात समस्या थी।
10: मेरी बेटी के दिल में छेद है और एक नस नहीं है। मैं दिल्ली एम्स 2012 को पहली बार आया। पहली बार ओपीडी ली, मुझे 18 में बोला गया दिखाने को, कोठारी सर किया, वहाँ उन्होंने फाइल देखी, जांच कराई। 13 में 14 में मुझे डॉक्टर सचिन तलवार जी के यहाँ रेफर कर दिया गया कि डॉक्टर साहब अपन करेंगे, जाओ। डॉक्टर सचिन तलवार जी ने खुद कहा मुझे कि ये मेरी बेटी का ऑपरेशन करेंगे, 1,25,000 जमा कराए, 4 यूनिट ब्लड जमा करा।
0: एम्स कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर ने जांच करने के बाद सर्जरी के लिए सीटीवीएस विभाग के डॉक्टर के पास केस भेज दिया। सीटीवीएस के चिकित्सकों ने बच्ची की हालत देखने के बाद 4 अप्रैल 2014 को सर्जरी की तारीख तय कर दी। लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी सर्जरी नहीं हुई और 1 सितंबर 2026 को दिल्ली एम्स में ही बच्ची की मौत हो गई। अब दिल्ली एम्स ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी।
11: कर रहे हैं जो सीरियस पेशेंट हैं, मर रहे हैं, मुझे इंसाफ दिलाओ।
2: चलिए अब बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर तोड़े जाने से भारत में कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। लाहौर के पास एक गांव में 100 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार से मंदिर के पुनरुद्धार की मांग भी की है, साथ ही निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। इधर हिंदू संगठन के लोगों ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है जिस तरीके से मंदिर तोड़े जा रहे हैं। जम्मू में हिंदू संगठनों ने पाकिस्तान के खिलाफ पुतला भी फूका और इसका जमकर विरोध भी किया है। विदेश मंत्रालय ने कड़ी निंदा पाकिस्तान की।
12: बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है बेसिकली कि पाकिस्तान जो कभी मां भारती का अभिन्न अंग हुआ करता था, वहां पर देवी दुर्गा के और हमारे देवी देवताओं के जयकारे गूंजते थे। उस भव्य दिव्य मंदिर जो कि 1,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ था, उस मंदिर को अचानक सिर्फ एक मदरसा बनाने के लिए मंदिर को कुर्बान कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर ये हिंदू द्रोही, अल्पसंख्यक द्रोही, ये इतना गहरा जहर है जिसकी एक पराकाष्ठा सामने आई है।
2: तो विदेश मंत्रालय का इस पर क्या बयान सामने आया है, चलिए अब आपको वो दिखा देते हैं। जमकर विरोध हुआ है जम्मू में और पुतले भी फूके गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन जम्मू में किया गया। विदेश मंत्रालय का बयान है कि पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों का ध्वस्त होना काफी चिंताजनक है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस कार्रवाई की कड़ी निंदा विदेश मंत्रालय ने की है और एक बयान इसको लेकर जारी किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करे और कार्रवाई करे जल्द से जल्द। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है सुपर 8 का। गुजरात के वलसाड में ब्रिज से मां बेटे ने नदी में छलांग लगा कर दी। स्थानीय लोगों ने देवदूत बनकर दोनों की बचाई जान। हिमाचल के सोलन में भारी बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी। कालका शिमला NH5 पर डेली सेब मंडी के पास सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। पुणे में जमीन विवाद ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। बेटों ने बीच सड़क अपने ही पिता की पिटाई कर दी। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला सेतु से एक युवक ने छलांग लगा दी। SDRF ने मौके पर पहुंचकर युवक की जान बचाई। बरेली में एक बार फिर से बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। स्टेडियम रोड पर 140 दुकानें और मकानों पर कार्रवाई की तैयारी। नगर निगम ने 15 दिन में अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया। एसपी के रीवा में बस और ट्रक की भीषण टक्कर आई सामने सामने टक्कर हुई। हादसा इतना भयानक था कि दोनों वाहन पलट गए। हादसे में 5 लोगों की मौत, 13 घायल बताए जा रहे हैं। बांदा में सरकारी सिस्टम की लापरवाही की शर्मनाक तस्वीर आई सामने। बारिश के बीच ग्रामीण टेंट लगाकर अंतिम संस्कार करने को मजबूर हुए। शमशान घाट की बदहाल व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए। चलिए सुपर 8 में आ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: एक तो एक
15: इश्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
3: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
4: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
2: मतलब
4: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
3: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
4: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Papa!
2: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
1: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का?
1: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ, ओले ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ तू?
4: वो तो चार्ज हुआ यार।
5: ओले बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
10: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
9: असली शहद, असली स्वाद।
11: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स।
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
17: जेके वॉल मैक्स
18: बेस्ट पेंट,
19: जेके मैक्स।
20: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
21: JK Maxx Paints.
20: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बनते ही रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने कहा, श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया के गांव में जश्न, गोविंद गिरी बने महासचिव, 3 नए ट्रस्टी भी शामिल। थोड़ी देर में सजेगा 2027 के यूपी चुनाव का सबसे बड़ा मंच, पंचायत आज तक मथुरा में प्रदेश के सभी दिग्गजों की आवाज, ब्रज की भूमि से धर्म और सियासत के सभी बड़े चेहरे आज तक। शामली के अंकित बालियान हत्याकांड में फरार शूटर्स का सुराग देने पर अब 1,00,000 रुपए का इनाम, सिंगर की कार में ट्रैकिंग डिवाइस लगाने वाले सत्यम और दूसरे कातिल आर्यन की तलाश। देशभर के जल संसाधन मंत्रियों से बैठक में पीएम का जल मंत्र, कहा टीम इंडिया की भावना से करे काम, पानी बचाने के लिए 2 करोड़ नए निर्माण का लक्ष्य, AI के इस्तेमाल पर जोर। बिहार से उत्तराखंड तक गंगा मंदाकिनी समेत कई नदियों में जबरदस्त तूफान, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और भारी बारिश के चलते 7 लोगों की मौत, नेपाल में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,200 के पार।

0: जिस शहर में गोलीबारी में दो की मौत, शूटर भी मारा गया। घटना में तीन पुलिस अधिकारी घायल हुए, जिनमें दो गोली लगी लेकिन तीनों की हालत स्थिर। गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने लोगों को इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी। एफबीआई के डायरेक्टर आकाश पटेल ने भी घटना पर दी प्रतिक्रिया। पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति की मुलाकात पर अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा उन्हें नहीं लगता कि भारत और ईरान के बीच किसी ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी देश ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाने में मदद करेगा तो अमेरिका उस देश पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान संसद के स्पीकर का बड़ा बयान, कहा अमेरिका के सहयोगी देश भी अब ये मानते हैं कि वॉशिंगटन असुरक्षा की वजह। ट्रंप ने फिर से किया हॉर्मुज पर अधिकार होने का दावा, कहा कि पाबंदियों और हमलों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकेबंदी जारी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी सेना 86 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदल चुकी है, 3 जहाजों का निष्क्रिय किया गया। इसी बीच ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने यमन के ताइज और होदेदा में 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 100 साल से ज्यादा पुराने एक हिंदू मंदिर को गिराए जाने की कड़ी निंदा की। घटना की पारदर्शी जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग। पंजाब में चल रहे एसआईआर अभियान के दौरान सांसद राघव चड्ढा का नाम पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कटा, नए नाम के आगे परमानेंटली शिफ्टेड लिखा गया है। राघव चड्ढा 12 सितंबर 2026 तक अपना नाम काटे जाने पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और दोबारा नाम ऐड करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में एक बिल्डिंग में तोड़फोड़ को लेकर गरमाई सियासत। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सीसीटीवी वीडियो जारी कर बीजेपी पर बोला हमला। अभिषेक बनर्जी ने प्रशासन पर भी उठाए सवाल, आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और पूरे मामले की जांच की मांग। पाकिस्तान का F-16 गिराने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान की नई पारी, अब वो प्राइवेट एयरलाइन FLY-91 से जुड़े। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ। कारगिल युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज बनाए गए राम मंदिर ट्रस्ट के नए महासचिव, इससे पहले ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की निभा रहे हैं जिम्मेदारी। अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे बनाए गए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य, मंदिर मामले की सुनवाई में निभाई थी अहम भूमिका। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में शामिल 3 नए सदस्यों में महेश भागचंद का भी शामिल। 2020 में मंदिर के भूमि पूजन में बनाए गए थे मुख्य यजमान। शिक्षाविद डॉक्टर निर्मला यादव भी बनाई गई राम मंदिर ट्रस्ट की सदस्य, ट्रस्ट की पहली महिला सदस्य बनी। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद की नियुक्ति पर जितेंद्र मिश्र ने बताया, सौभाग्य बोले प्रभु श्रीराम का जैसा आदेश होगा वैसा कर्म करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर से राम मंदिर ट्रस्ट तक के सफर पर भावुक हुए जितेंद्र मिश्र, बोले मंदिर के हित में हर संभव प्रयास करूंगा।
1: श्री राम का आशीर्वाद भी मानूंगा कि 43 वर्ष राष्ट्र सेवा के बाद भारतीय वायुसेना में मुझे श्री राम ने एक और अवसर प्रदान किया है जहां पर मैं श्री राम मंदिर और श्री राम भक्तों की सेवा कर पाऊंगा।
0: चंदा चोरी विवाद पर अखिलेश ने सरकार को फिर से घेरा, कहा बड़े नामों पर एक्शन नहीं। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले कि राम मंदिर में शंकराचार्य नियुक्त करे धर्माचार्य। इंदौर में 12 से बदले अब 19 सितंबर को होगा राहुल का कार्यक्रम, छात्रों की गूंज। कांग्रेस का आरोप, प्रशासन ने नहीं दी स्टेडियम की इजाजत, प्रदर्शन की चेतावनी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी आरएसएस की मनुवादी सोच के खिलाफ लगाए गए नारे। यूथ कांग्रेस ने बांटे मनुवादी सोच, कहां मिलेगी बीजेपी के दफ्तर में लिखे पर्चे, जातिवाद के खिलाफ संघर्ष का किया ऐलान। नासिक में राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर हमला, बोले हाथ पैर टूट जाएं फिर भी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के अहम मुद्दों पर राहुल से चर्चा, एसआईआर से 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाने, किसान आत्महत्या और कुंभ बजट का मुद्दा उठा। मराठा आरक्षण की मांग पर मनोज अरांगे पाटिल का अनशन 5वें दिन भी जारी, तबियत बिगड़ने से बढ़ी चिंता। मराठा आरक्षण आंदोलन के 5वें दिन मनोज अरांगे का सरकार पर गंभीर आरोप, बोले मुंबई में घुसाने का प्लान, 100% दंगा कराना चाहती है सरकार। मांगों के तत्काल जीआर पर अड़े जरांगे, 12 सितंबर को मुंबई कूच का ऐलान, बोले लाठी का जवाब लाठी से देंगे। बीजेपी विधायक प्रसाद दलाठी जरांगे से बातचीत के लिए अंतरवाली सराटी रवाना, 15 मांगों पर चर्चा से समाधान की कोशिश। जालना में मराठा आंदोलनकारियों का धुले सोलापुर हाईवे पर रास्ता रोक को, करीब 1.25 घंटे तक यातायात रहा प्रभावित। मनोज अरांगे के समर्थन में जोरदार नारेबाजी हुई, मांगे जल्द पूरी करने की मांग, हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतार। दिल्ली एसआईआर के ड्राफ्ट में 47 लाख नाम कटने पर बीजेपी का मंथन, प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और सभी 7 सांसदों की बैठक, ग्राउंड पर लोगों की मदद के निर्देश। दिल्ली एम्स में 14 साल से दिल की सर्जरी के लिए इंतजार करते करते लड़की की मौत, 2012 में हृदय की जन्मजात बीमारी से पीड़ित बेटी की सर्जरी के लिए एम्स का चक्कर काट रहे थे माता पिता। हथिनीकुंड आर्मी बोट हादसा, 24 घंटे बाद भी यमुना में लापता 2 जवानों की तलाश अभी भी जारी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ब्रज को सीएम योगी देंगे 977 करोड़ की सौगात, 57 परियोजनाओं का लोकार्पण और 167 योजनाओं का शिलान्यास। नेपाल में तबाही का आंकड़ा बढ़ा, मृतकों की संख्या 1204 पहुंची, 4216 लोग लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक करीब 12,000 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। सेना के हेलीकॉप्टर तैनात, पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद और घायलों का मुफ्त इलाज। पीएम बालेंद्र शाह ने जलवायु परिवर्तन से जोड़ा हादसा, भारी बारिश से रेस्क्यू अभियान प्रभावित, 400 मेगावाट बिजली उत्पादन भी बाधित। नेपाल में भूतकृषि बाढ़ की वजह से तबाही, पीएम बालेंद्र शाह बोले दृढ़ संकल्प और साहस के साथ संकट से लड़ना होगा। नेपाल में भारी बारिश का असर, नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ा। पटना में गंगा नदी का रौद्र रूप, सभी घाट जलमग्न, सुरक्षा के मद्देनजर घाटों पर एनडीआरएफ एसएसबी तैनात। गंगा का बढ़ा जलस्तर, घाटों में सटी सड़कों पर पहुंचा बाढ़ का पानी, प्रशासन अलर्ट मोड में। बिहार के वैशाली जिले में गंडक नदी उफान पर, खतरे के निशान से 51 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा जलस्तर, प्रशासन अलर्ट। बिहार में गंगा गंडक नदी का कहर, हाजीपुर में बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में करीब 1700 घरों में घुसा पानी, लोग सड़क किनारे शरण लेने को मजबूर। चित्रकूट में बरसाती नाले का कहर, तेज बहाव में बहकर महिला की मौत, 24 घंटे बाद मिला शव। चंदौली में बारिश से लबालब हुए डैम और जलाशय, क्षमता से ज्यादा भरा पानी, हजारों क्यूसेक पानी किया जा रहा सिरिली। देहरादून में तेज बारिश का कहर, नाले में बही क्रेटा कार, श्रीगंगानगर की युवती समेत दो की मौत। हिमाचल के सोलन में भारी बारिश, कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर आया सैलाब, कई वाहन फंसे। बांदा में लगातार बारिश से हालात बिगड़े, चारों तरफ जलभराव, कच्ची दीवार गिरने की वजह से दो महिलाओं की मौत, जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बिहार के मुंगेर में भी गंगा नदी उफान पर, नौवगढ़ी में तेज कटाव से दहशत, 3,000 की आबादी प्रभावित हुई। कौशाम्बी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत जबकि 4 घायल। बिहार के मधेपुरा में मार्केट में लगी भीषण आग, 16 दुकानें जलकर राख हुई, करोड़ों के नुकसान का अनुमान। एमपी के रीवा में भीषण सड़क हादसा, बस ट्रक की आमने सामने टक्कर की वजह से 5 लोगों की मौत, 13 घायल। दरभंगा में युवक की संदिग्ध मौत, चेहरे पर चाकू से निशान सामने आए, हत्या की आशंका पर ग्रामीणों का हंगामा। बगहा में उप मुखिया और वार्ड पार्षद को अपराधियों ने मारी गोली, दोनों की हालत गंभीर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोयले से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, चालक ने कूद कर बचाई जान। बरेली में इमाम बाड़े पर चला नगर निगम का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत के बाद कार्रवाई। नगर आयुक्त ने बताया है कि इस अवैध कब्जे को लेकर आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, इसके बाद कार्रवाई की गई। लखनऊ में लिव इन पार्टनर की गला घोट कर हत्या, शव नहर में फेंकने पहुंचा आरोपी गिरफ्तार। सूरत में बीजेपी युवा नेता जय दलाल हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार, महाराष्ट्र से पकड़ा गया आरोपी। देहरादून में तेज रफ्तार का कहर, कई वाहनों को टक्कर मार, सब्जी की दुकान में घुसे कार। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु से खुदकुशी के नियत से एक युवक ने छलांग लगाई, एसडीआरएफ ने मौके पर बचाया, वायरल वीडियो। वलसाड में दमन ब्रिज से मां बेटे ने समुद्र में लगाई छलांग, स्थानीय मछुआरों ने देवदूत बनकर बचाई जान। सूरत में जमीन दलाल की 10 लाख की सुपारी देकर हत्या मामले में 4 शूटर गिरफ्तार, मुख्य साजिशकर्ता फरार। पटना में करोड़ों की विदेशी शराब जब्त, 6 शराब तस्कर गिरफ्तार। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारी जारी, वृंदावन से मंगाए गए फूलों से की जा रही मंदिर की सजावट। श्री कृष्ण को कई तरह के व्यंजनों के भोग अर्पित करने की तैयारी, 500 से ज्यादा तरह के प्रसाद का किया जा रहा इंतजाम। पीएनबी एआई समिट में बैंकिंग के भविष्य पर मंथन, एआई, जेन एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी पर हुई चर्चा। पीएनबी ने एआई आधारित बैंकिंग और साइबर सुरक्षा को दिया बढ़ावा, क्वांटम प्रूफ सिस्टम हैकाथॉन के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। जशपुर के पथलगांव वन क्षेत्र में 12 हाथियों का दल धान की फसलों को पहुंचा रहा नुकसान। मिर्जापुर द मूवी के मेकर्स का बड़ा धमाका रिलीज से 3 दिन पहले आउट हुआ नया गाना घूम घूम। मनोज वाजपेयी की फिल्म लास्ट मैन इन टावर का ट्रेलर रिलीज हुआ, व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा ने नॉवल पर आधारित है ये फिल्म। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हनुमान अंश ने किया कमाल, मूवी ने 25 दिनों में 47 करोड़ के आसपास की कमाई की। पर्दे पर आदमखोरों के शिकारी बनेंगे अक्षय कुमार, मशहूर शिकारी और पर्यावरण प्रेमी रहे जिम कॉर्बेट की बायोपिक में करेंगे काम। रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म ऐसा की रिलीज डेट का ऐलान, 27 नवंबर को रिलीज होने वाली है फिल्म। ईरानी सेना ने सिरिक में एक शादी समारोह में हुए हमले की कड़ी निंदा की, कहा इस हमले में आम नागरिक मारे गए, ईरान ने दी चेतावनी। जर्मनी के ऑग्सबर्ग में रेलवे स्टेशन के पास धमाका, हमले में 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने जर्मन एयरपोर्ट पर हमले की कोशिश की निंदा की, और विदेश नीति प्रमुख ने कहा कि एयरपोर्ट पर ड्रोन साजिश प्रायोजित आतंकवाद। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जर्मनी की ड्रोन साजिश के सभी आरोपों को नकारा, जर्मन नेतृत्व का पलटवार कर कहा कि मर्ज देश के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहे। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी सेना की भीषण बमबारी, एक बच्चा समेत 8 लोग घायल हुए, 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक, हिजबुल्ला के ठिकानों को बनाया गया निशाना, कई घरों को पहुंचा भारी नुकसान। इस्तांबुल के पास मरमारा सागर के आसपास में टकराया टर्की के 2 जहाज, एक जहाज के डूबने की आशंका, 10 क्रू मेंबर लापता। दक्षिण कोरिया के दक्षिण पूर्वी तट के पास अचानक से हादसे का शिकार हुई टगबोट थाईलैंड पहुंचा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट पर पिछले 9 महीनों से 5,000 सैनिक तैनात। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की राजधानी काहिरा में भव्य स्वागत हुआ, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत कर

फल की ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 7:25 तक, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्रा में सावधानी रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए

Galan. कन्या राशि

का ध्यान बनाए रखें, चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

चिंता हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ काम बन जाएगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मकर राशि, सेहत की स्थिति बेहतर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, दौड़ भाग बनी रहेगी। भगवान को पीले फूल चढ़ा दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

अब करें खान पान में सावधानी रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, मानसिक समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
4: In association with
5: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
6: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा। इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। यहाँ पर बिना किसी स्टिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये हब है जहाँ पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे।
8: कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, बरेली, नेपाल, आज तक।

यूपी में चुनाव से पहले ही आखिरी मौका है जब पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर केंद्र और राज्य की योजनाओं को इतने बड़े पैमाने पर प्रचार की तैयारी की जा चुकी है। सत्रह सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी तो देश भर में एक महीने का आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है, लेकिन यूपी में ये ज्यादा प्रभावी हो सकता है क्योंकि इस अभियान में वाराणसी एक बड़ा सेंटर है। बीजेपी ने तय किया है कि पीएम मोदी के सीएम पीएम रहते 25 साल पूरे होने के मौके पर अब तक के माइलस्टोन्स को जनता तक पहुंचाया जाए। इसके लिए 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान शुरू होने वाला है। इसमें गुजरात के वडनगर और यूपी के वाराणसी से बीजेपी की टीमें प्रचार के लिए निकलेंगी। दोनों शहरों से 10-10 टीमें रवाना की जाएंगी, जिसमें वडनगर से निकली टीम वाराणसी और वाराणसी से निकली टीम वडनगर जाएगी। हर टीम में 10 या अधिक बाइकर्स बसें शामिल होंगी। हर टीम रोज 100 किलोमीटर का सफर करेगी। ये बीजेपी सरकार का संदेश लोगों तक पहुंचाएगी। कुल 1500 किलोमीटर के सफर में ये टीम 60 से अधिक कार्यक्रम में शामिल होंगी। रोज 100 किलोमीटर के सफर के बाद ठहरने वाली बीजेपी की टीम पहले से तय 4 कार्यक्रमों में शामिल होगी और वहां बीजेपी सरकार की योजनाओं और कामयाबियों को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। इस सेवा संकल्प अभियान को यूपी में और जोर शोर से चलाने का संकल्प पहले ही लिया जा चुका है। 31 अगस्त को लखनऊ में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक में ही कार्यक्रम की रूपरेखा तय हो चुकी है। सेवा संकल्प अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए यूपी में विशेष तैयारी पहले ही हो चुकी है। दिल्ली के साथ तालमेल बैठाकर इस अभियान को यूपी में प्रभावी तरीके से चलाने के लिए बूथ बूथ तक के कार्यकर्ताओं को ताकीद दी जा चुकी है। वैसे 17 सितंबर से जो बीजेपी अभियान शुरू करने जा रही है उसमें कई और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। मसलन हर जिले और मंडल स्तर पर रक्तदान शिविर और मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगेंगे। 2 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान चलेगा। एक पेड़ माँ के नाम पौधारोपण भी चलता रहेगा। पार्टी कार्यकर्ता कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के घर जाकर आशीर्वाद दीप कार्यक्रम में दीप जलाएंगे। यूपी जैसे राज्य में करीब 25 करोड़ स्कूली बच्चों तक कई स्कूली प्रतियोगिताएं खेल कार्यक्रम के जरिए पहुंच बनाई जाएगी। इस पूरे अभियान का मूल मंत्र ये रहेगा कि बीजेपी कांग्रेस के 55 साल बनाम मोदी के 12 साल की तुलना जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेगी।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

मार्शल जितेंद्र मिश्र ने कहा श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया के गांव में जश्न, गोविंद गिरी बने महासचिव, 3 नए ट्रस्टी शामिल। थोड़ी देर में सजेगा 2027 की यूपी चुनाव का सबसे बड़ा मंच पंचायत। आज तक मथुरा में प्रदेश के सभी दिग्गजों की आवाज, ब्रज की भूमि से धर्म और सियासत के सभी बड़े चेहरे आज तक पर। शामली के अंकित बालियान हत्याकांड में फरार शूटर्स का सुराग देने पर अब 1 लाख रुपए का इनाम। सिंगर का को कार में ट्रैकिंग डिवाइस लगाने वाले सत्यम और दूसरे कातिल आर्यन की तलाश। देश भर में जल संसाधन मंत्रियों से बैठक में पीएम का जल मंत्र, कहा टीम इंडिया की भावना से करें काम। पानी बचाने के लिए 2 करोड़ नए निर्माण का लक्ष्य, एआई के इस्तेमाल पर जोर। बिहार से उत्तराखंड तक गंगा मंदाकिनी समेत कई नदियों में जबरदस्त तूफान,

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से भी। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर। इस बुलेटिन में बात करेंगे राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ की क्या है चुनौतियां, उस पर चढ़ावा चोरी मामले के बाद कैसे बदलेगी मंदिर की सूरत। साथ ही दिखाएंगे अंकित बालियान मर्डर केस के आरोपी पर कैसे कसा यूपी पुलिस का शिकंजा। खबरें उत्तर भारत में बाढ़ और भारी बारिश से बड़े खतरे की, दिखाएंगे अलग अलग इलाकों की तस्वीरें। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं चढ़ावा चोरी के बाद आस्था पर चोट को लेकर घमासान के साथ, क्योंकि अब राम मंदिर ट्रस्ट ने अहम फैसला कर दिया है। व्यवस्था में बदलाव के लिए नए सीईओ की नियुक्ति हो चुकी है और ये जिम्मेदारी मिली है ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले तत्कालीन एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को। रिटायरमेंट के बाद उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ पद के लिए चुना है। माना जा रहा है कि वो जल्द पदभार ग्रहण करेंगे और राम मंदिर के प्रबंधन में अपना अहम योगदान देंगे।
1: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
2: सीमा पर देश की रक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र को अब राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उन्हें मंदिर का पहला सीईओ बनाया है। ट्रस्ट की बैठक में उनके नाम का ऐलान किया गया जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने में अहम भूमिका निभाई। उस चेहरे पर राम मंदिर ट्रस्ट ने भरोसा जताया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितेंद्र मिश्र ने पश्चिमी वायु कमान को लीड किया था।
1: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र,
2: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए जितेंद्र मिश्र को सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितेंद्र मिश्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो पीएम के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने देश को 39 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं, अब उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। जितेंद्र मिश्र का देश के विकास और सेवा को लेकर अपना एक विजन है जिसका जिक्र वो अक्सर करते रहते हैं।
3: हमें एक ऐसे समाज की रचना करनी है जो अपने देश पे बलिदान होने के लिए तैयार है, और ये जरूरी नहीं कि हमें अपने देश के लिए सिर्फ अपनी जान का, अपनी जिंदगी का बलिदान देकर ही अपने देश की रक्षा करते हैं। हम सब लोग, हमारे देश के सभी नागरिक अपने देश के लिए ऐसे समाज की रचना करें जिसमें हम अपने देश के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और देश को अमृत काल की तरफ आगे ले जाएं।
2: राम मंदिर के पहले सीईओ के रूप में जितेंद्र मिश्र की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब न केवल दान चोरी घटनाओं को रोकने के लिए सिस्टम बनाना है बल्कि भारी भक्तों की व्यवस्था और इंतजामों को भी पूरी तरह से दुरुस्त करना है।
4: चयन समिति का बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि उन्होंने इतने सब कैंडिडेट्स में से मेरा चयन किया है। इसे मैं श्री राम का आशीर्वाद भी मानूंगा कि 43 वर्ष राष्ट्र सेवा के बाद भारतीय वायुसेना में मुझे श्री राम ने एक और अवसर प्रदान किया है जहां पर मैं श्री राम मंदिर और श्री राम भक्तों की सेवा कर पाऊंगा।
2: राम मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ के रूप में जितेंद्र मिश्र के साथ साथ उन्हें सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। न्यास में 3 रिक्त पदों पर नए न्यासियों की नियुक्ति की गई है। इसमें महेश भागचंद का, मदन मोहन पांडेय और निर्मला यादव शामिल हैं। साथ ही न्यास ने पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया है। स्वामी गोविंद देव गिरी अब महामंत्री का दायित्व संभालेंगे जबकि कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी महेश भागचंद का को सौंप दी गई है। मयंक शुक्ला के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
0: और अब आपको बता दें कि 1986 में वायुसेना अकादमी से भारतीय वायुसेना की लड़ाकू स्ट्रीम में जितेंद्र मिश्र को कमीशन प्राप्त हुआ। करीब 39 साल तक देश सेवा के अपने करियर में उनके पास 3000 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग टाइम है और उन्होंने 18 से अधिक तरह के लड़ाकू और परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टर्स को उड़ाया है। वो उस टीम का हिस्सा थे जिसने कारगिल युद्ध की शुरुआत में मिराज 2000 विमानों पर लेजर गाइडेड बम का को पहुंचाया था जिनका इस्तेमाल बाद में ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान टाइगर हिल और मुंथो ढालों पर हुए हमलों में किया गया था। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में भी उनका अहम योगदान था। अब आपको बताते हैं जितेंद्र मिश्र के सामने सीईओ के तौर पर क्या क्या जिम्मेदारियां और चुनौतियां हैं। दान चढ़ावे की व्यवस्था उन्हें दुरुस्त करनी है, वित्तीय लेन देन को किस तरीके से पारदर्शी बनाया जाए, खरीद और टेंडर की जिम्मेदारी भी है, इसके साथ ही श्रद्धालुओं को कैसे सुविधाएं दी जाएं ये जिम्मेदारी भी उनके सर है, कर्मचारी और उनसे जुड़े मामले और साथ ही मंदिर सुरक्षा समन्वय। वहीं सीईओ पद पर नियुक्ति के बाद जितेंद्र मिश्रा से आज तक संवाददाता सुमित चौधरी ने खास बातचीत की, इस दौरान उन्होंने कहा कि अब नई जिम्मेदारियों को निभाना है। सुनिए
5: सर, मेरा पहला सवाल था क्योंकि आप फोर्सेस में रहे हैं, चार दशकों तक आपने भारत को सर्विस की है, आप लगातार एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपने संभाली और अब आपके ऊपर एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिससे पूरे देश की आस्था आप कह सकते हैं और उनका विश्वास जुड़ा रहता है, क्या कुछ आपकी प्रायोरिटीज रहेंगी खासतौर पर एक सीईओ के तौर पर अभी?
6: जी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो अभी चयन हुआ है और अपॉइंटमेंट की अनाउंसमेंट हुई है अभी कुछ घंटे पहले ही हुई है, और जहां तक सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की साइट पर सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेलेबल है और उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए सर्च कमेटी ने ये सिलेक्शन प्रोसेस किया है। तो मेरी प्रायोरिटीज उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन करना रहेगा जितना मेरा सामर्थ्य है उस पर।
5: जी सर, आप लंबे चार दशकों तक आपने इंडियन एयरफोर्स में सर्व किया है एक फाइटर पायलट के तौर पर, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आपने देखे हैं, हमने आपके बारे में कई बातें भी सुनी है खासतौर पर ऑपरेशन सफेद सागर से लेकर ऑपरेशन सिंदूर में भी, क्या कुछ अनुभव रहा है आपका उन चार दशकों के अंदर और अभी जो नई जिम्मेदारी मिली है उसको लेकर खासतौर पर?
6: सबसे पहले तो मैं प्रभु श्री राम का धन्यवाद करना चाहूंगा कि 42 सालों तक, 17 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक मुझे राष्ट्र सेवा का भारतीय वायु सेना में अवसर प्रदान हुआ और अप्रैल में रिटायर होने के कुछ महीनों बाद ही मुझे ये भी अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आई वुड से दैट आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड आई कंसीडर माय सेल्फ अ वेरी फॉर्चुनेट पर्सन टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी।
0: समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। समर, तो आपने तो खुद नए सीईओ से बातचीत की है, कई सारी जिम्मेदारियां, कई सारी चुनौतियां उनके सर पर इस वक्त है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है वहां पर वापस जो ट्रस्ट था लोगों को, जो पहले जिस तरह की व्यवस्था रही है उससे अलग अब कुछ करके दिखाना।
7: नहीं देखिए, एक बड़ी चुनौती तो है, देखिए जो प्रकरण हुआ पिछले कुछ दिनों में, जो ट्रस्ट पर सवाल उठे, वहां की गतिविधियों पर सवाल उठे, शायद ट्रस्ट को ये लगता था कि इससे बेहतर कोई चेहरा नहीं हो सकता था जिनको कि वो सामने लाते, और यही रीजन है कि एक रिटायर्ड एयर मार्शल को सामने लाए हैं और कोई ऐसा चेहरा नहीं है। आप समझिए, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सफेद सागर, इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के तौर पर वो तैनात रहे हैं, उनका एक बहुत अहम रोल रहा है देश की सुरक्षा में, तो ऐसे में उनकी तैनाती यहाँ पर होना एक तरह से एक साफ संदेश दिया जाना है कि एक अब जो भी यहाँ पर काम होगा पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ होगा और एक भारतीय सैनिक से बेहतर इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं उठा सकता है। और जो राम भक्त है, जो आम पब्लिक है, उनके जहन में भी एक सेल्फ बिलीफ आती है, जो कि जब हम यूनिफॉर्म को देखते हैं, आर्मी नेवी और एयरफोर्स को देखते हैं, तो एक सेल्फ बिलीफ आती है और शायद एक यही रीजन है कि उनको तवज्जो दी गई जबकि इतने सारे लोगों ने आवेदन किया था। हालांकि इनके ऊपर कई जिम्मेदारियां भी हैं जो सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, चाहे भीड़ प्रबंधन हो गया, सरकार से समन्वय हो गया, अंदर जो प्रमाइसिस के अंदर जो भी प्रशासनिक फैसले होंगे उनमें सीईओ का रोल अहम रहने वाला है। हालांकि साधु संतों का कहना है कि ट्रस्ट की चलने वाली है, लेकिन कुल मिलाकर जो कहानी अभी तक सामने आ रही है वो ये है कि सीईओ की भी बहुत अहम भूमिका रहने वाली है इस पूरे प्रकरण में। एक बड़ी चर्चा जो कल की बैठक में और हुई है वो ये है कि गणना को लेकर पूरा विवाद था, जो चंदा चोरी का प्रकरण आया उसको अब कहीं ना कहीं एक तरीके से मशीन से गणना कराई जाए, इसको लेकर भी कल ट्रस्ट में चर्चा हुई है। बैंक्स जो है उन्होंने भी कई सुझाव दिए हैं, हालांकि इसको लेकर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि अब ये मानकर चला जाएगा कि जिस तरीके से इंसानी रूप से काउंटिंग कराई जाती थी वही मशीन से अब काउंटिंग आने वाले वक्त में देखी जा सकती है। जी नहीं,
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और नए सीईओ के रूप में जितेंद्र मिश्र की नियुक्ति को लेकर वीएचपी के आलोक कुमार ने जमकर तारीफ की, तो वहीं इकबाल अंसारी ने भी कहा कि इस बदलाव के बाद उम्मीद है कि वहां की व्यवस्था और बेहतर होनी चाहिए।
8: एयर मार्शल श्री जितेंद्र मिश्रा वह राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ नियुक्त हुए, उन्होंने देश के लिए जो अभी पहलगाम के बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भी भाग लिया था, सीमा की सुरक्षा, देश की स्वायत्तता की रक्षा, देश के मान बिंदुओं की रक्षा, ऐसा सब अनुभव रखने वाले इतने बड़े व्यक्ति, उन्होंने अयोध्या में रह के राम जी का काम करना स्वीकार किया, हमको आनंदित है, हमको विश्वास है कि आप ये ट्रस्ट और भी अच्छी तरह से चलेगा।
9: अयोध्या नगरी है और श्रद्धा की नगरी है, भगवान राम का मंदिर, सभी की श्रद्धा है कि लोग दर्शन करने आते हैं, पूजा करने आते हैं, लोग देश विदेश से आ रहे हैं। अच्छी बेहतर सुविधा होनी चाहिए, दर्शन भी बढ़िया होना चाहिए और श्रद्धालुओं के लिए अच्छी सुविधा हो। और नए CEO भी आए हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि ट्रस्ट में जो है बदलाव हुए हैं, ये बड़ा बेहतर है। जो लोग नए आए हैं वो काबिले तारीफ हैं।
0: और अब बात यूपी की सियासत की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर जा रहे हैं। जरान सीएम योगी मथुरा को 977 करोड़ की सौगात देंगे। सीएम का ये दौरा 2 दिवसीय है। आज पहले दिन कई योजनाओं का लोकार्पण होगा तो कल यानी 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन और गोप पूजन किया जाएगा। आज ही सीएम योगी फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित 1000 परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण भी करेंगे। साथ ही बाढ़ प्रभावित परिवारों को आवास हेतु भूमि आवंटन प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, आज का क्या कार्यक्रम है, विस्तृत तौर पर बताइए।
10: देखिए, निश्चित तौर पर अब मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है उसमें सैकड़ों करोड़ की योजनाएं हैं जिसका लोकार्पण और उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे मथुरा और वृंदावन में। लेकिन जो 2 दिनों का इनका कार्यक्रम अमूमन होता है, हर बार वो जन्माष्टमी के दिन पहुंचते हैं और जन्माष्टमी के दिन दर्शन करते हैं, लेकिन उसके एक दिन पहले वो वृंदा मथुरा बन जरूर मथुरा वृंदावन में जरूर होते हैं। आज 2:20 पर 12:20 पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं मथुरा। जो मुख्य कार्यक्रम है, गीता शोध संस्थान वृंदावन जाएंगे जहां पर उनका एक कार्यक्रम होगा, लोगों का संबोधन होगा। जो गरीब है उनके लिए एक प्रदर्शनी का अवलोकन है, वृक्षारोपण है और साधु संतों का सम्मान है। इसके बाद आज तक का जो कार्यक्रम है, आज तक पंचायत, उसमें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास तौर पर आ रहे हैं और उसमें भी अपने विचार रखेंगे। उसके बाद ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक की समीक्षा करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और फिर जो भक्ति कान्हा भक्ति मार्ग है वहां का भ्रमण करेंगे। तो आज दिन भर के उनके कार्यक्रम बेहद व्यस्त हैं मथुरा और वृंदावन में। लेकिन मुख्य तौर पर नजर ये रहेगी कि जब वो मथुरा और वृंदावन आए हैं तो आखिर बोलते क्या है, क्योंकि अयोध्या का मामला अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं सेटल डाउन कर रहा है। बेशक वो सियासी रूप से अभी भी विपक्ष के पास मुद्दा हो, लेकिन आज मुख्यमंत्री मथुरा और वृंदावन को लेकर भी कई बड़ी बातें कर सकते हैं। देखना है कि वो क्या कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी कोई बातें करते हैं या नहीं, लेकिन पूरा दिन आज का उनका पैक्ड है और मथुरा और वृंदावन में कई 100 करोड़ की जो योजनाएं हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और सीएम योगी के इसी मथुरा दौरे को लेकर यूपी की सियासत तेज हो गई। इस मुद्दे पर मंत्री भूपेंद्र चौधरी से खास बातचीत की आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने, सुनिए।
11: अब हमने देखा है मुख्यमंत्री कई अपनी रैलियों में जो एड्रेस कर रहे हैं वो बांके बिहारी जय और अयोध्या श्री राम जय, ये उधर रुख हो रहा है। तो अब क्या माने कि 2027 की चुनाव मथुरा की तरफ रुख है?
12: नहीं, इस रूप में ना देखा जाए। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो हमारी परंपरा, आस्था और जो हमारी विरासत है, उस विरासत को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भगवान राम भी हमारी विरासत है, भगवान श्री कृष्ण भी हमारी विरासत है, बाबा विश्वनाथ भी हमारी विरासत है। और भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकारों के समय हमने अपनी आस्थाकार विरासत का सम्मान आगे बढ़ाया है और उसी स्वरूप में आप सब लोग आज अगर देखेंगे तो पहले आज से 20-30 साल पहले उत्तर प्रदेश में दिखाने के लिए क्या कहा जाता था कि भाई हम कोई बाहर से पर्यटक आता है तो क्या दिखाएंगे उसे, तो आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक देश में धार्मिक पर्यटन वाला क्षेत्र है। आप अयोध्या है, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है, लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, विंध्यवासिनी देवी का मिर्जापुर में कॉरिडोर बना है और बड़ी संख्या में मथुरा वृंदावन आज अगर आप देखेंगे तो लोग सहजता के साथ बगैर किसी निर्बाध भाव के दर्शन करने आते हैं और उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में अपना योगदान कर रहे हैं और यही हमारी परंपरा है, यही हमारी विरासत है।
0: और सीएम योगी के मथुरा दौरे के बीच वहां आज तक का खास आयोजन भी होने जा रहा है। आज पंचायत आज तक का आयोजन वहां पर है, जिसमें शाम 5:30 बजे सीएम योगी शिरकत करेंगे। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे से होने जा रही है।
13: इसे उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पंचायत आज तक मथुरा 3 सितंबर सिर्फ।
0: और यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अब घोषणा पत्र की तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव और उनके रणनीतिकार इस बार ऐसा घोषणा पत्र तैयार करने जा रहे हैं जिसमें सभी के हितों को समाहित करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि पार्टी जेन जी और अल्फा पर विशेष जोर रखेगी। वहीं बेरोजगारी भत्ते के साथ कन्या विद्या धन, बेरोजगारी भत्ता और मुफ्त लैपटॉप जैसी योजनाओं को जगह दी जा सकती है। आउटसोर्स के सहारे नौजवानों पर समाजवादी पार्टी की नजर है। और बात सहारनपुर एक्सप्रेसवे की, जिसकी निर्माण की गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे की निर्माण में खामियों और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर सरकार और निर्माण एजेंसियों पर निशाना साधा है।
14: कभी एक्सप्रेसवे में गड्ढे नहीं सुनते हैं आप, गड्ढे हो रहे हैं एक्सप्रेसवे और गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं। कभी पंखे से सुखाते हैं, कभी कारपेट से ढकते हैं, पुअर क्वालिटी। कभी पंखे से सुखाते, दुनिया हंसेगी अगर आप विकसित भारत का सपना देख रहे हैं और आप सड़क को कैसे सुखा रहे हैं।
15: दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो सहारनपुर में बनाए, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, उसकी भी यही
14: वजह। मैं क्या बताऊं आपको, इस सरकार के एक्सप्रेसवे ऐसे ही बन रहे हैं।
16: आपकी तुलना में
14: ये कई जगह सुनने को मिल रहा है कि ये भ्रष्टाचार के एक्सप्रेसवे बन गए।
0: मैं उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल यादव का एक बड़ा बयान सामने आया। शिवपाल यादव ने यह दावा किया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ठीक चल रहा है। 2027 में अखिलेश यादव ही सीएम बनेंगे और ये चुनाव अखिलेश और राहुल गांधी मिलकर लड़ेंगे, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन में चुनाव होगा।
17: जनता आपकी बात, हमारा जो गठबंधन है अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, ये रहेगा और मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा। अब की बात सत्ता परिवर्तन होना है और समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये डबल इंजन की सरकार पूरे देश को और प्रदेश को बर्बाद करने में लगी है और खुद ये बांट रही, देख रहे, बांट रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी बटने नहीं देगी, समाजवादी पार्टी जोड़ने का काम करेगी, सबको जोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएंगे।
0: इस बीच बड़ी खबर कोलकाता से, यहां टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने दावा किया कि पार्टी दफ्तर पर हमला हुआ है। अभिषेक बैनर्जी का यह दावा है कि कोलकाता के कैमिक स्ट्रीट स्थित टीएमसी कार्यालय में तड़के करीब 4:30 बजे हथियारबंद लोगों ने हमला किया। उन्होंने इस हमले के लिए कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया, सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया है। उनका कहना है कि हमलावरों ने पार्टी कार्यालय में मौजूद लोगों से मोबाइल छीने, फर्नीचर तोड़ा और इलेक्ट्रॉनिक सामान को नुकसान पहुंचाया। बैनर्जी ने यह भी सवाल उठाया कि शिकायत के बावजूद तकरीबन 2 घंटे तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और पूरे मामले की जांच की मांग की। और बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर कश्मीरी पंडितों के मसले पर एक बार फिर से सियासत हो रही है। पिछले महीने कई बार कश्मीरी पंडितों को धमकी मिलने की खबर आई। अब वैसे मामलों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाए। उन्होंने धमकी के दावों को साजिश करार दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पुलिस के डीआईजी, डीजी, एसपी हिंदू हैं, डीसी हिंदू हैं, उन्हें क्यों नहीं धमकियां आ रही हैं? अगर हिंदुओं को धमकियां आ रही हैं तो उन्हें क्यों नहीं आ रही है और ये साजिश के तहत किया जा रहा है। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि ये साजिश केवल इस सियासत के स्टूडेंट से बाहर रखने के लिए की जा रही है, डर का एक माहौल पैदा किया जा रहा है।
18: यहाँ कश्मीरी पंडित ही नहीं रह रहे हैं, मुझे ये बताइए, यहाँ सब अफसर बाहर से हैं जो हिंदू हैं। आपके पुलिस के डीआईजी, डीजी, एसपी, डिस्ट्रिक्ट के एसपी हिंदू हैं, है, डीसी सिंधु है, उन्हें क्यों नहीं थ्रेट आ रही? सवाल इस बात का है, अगर थ्रेट आ रही है हिंदू को, उन्हें क्यों नहीं थ्रेट आ रही? ये एक साजिश है जी। और मैं ये ईमानदारी से कहता हूं, ये साजिश सिर्फ इस रियासत को स्टेटहुड से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है, डर का पैदा किया जा रहा है।
0: और फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर सियासत तेज हो गई।
19: डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब द्वारा कश्मीरी पंडितों को मिल रही धमकियों को जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे से जोड़कर देखना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही आपत्तिजनक है। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी संगठनों के सरगना हैं, वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर घाटी से जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं उनको हर सूरत में वहां से निकालने की साजिश हुई है।
20: मैं कहता रहा हूं, चुनाव आ रहे हैं, कोई हमला भी हो सकता है, क्योंकि सारे आतंकवादी हमले, सारी चीजें, धमकी हैं, ये सब नफरत की चीजें हैं, ये सब चुनाव के टाइम पे शुरू हो जाती हैं, हो रही हैं चुनाव के टाइम पर। और किसका किसको इनका फायदा होता है? जिसको फायदा होता है वो इसके पीछे जिम्मेदार है, बस इतनी सी बात है।
0: और अब बात नेपाल में हुई त्रासदी की। ऐसी तबाही वहां पर मची कि अब मौत का आंकड़ा 1,222 के पास पहुंच चुका है। करीब 4,200 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। हिमालय ग्लेशियर टूटने से आई विनाशकारी बाढ़ ने घरों, सड़कों और पुलों को मलबे में तब्दील कर दिया है। सबसे बड़ी चिंता उन 100 हाइड्रो पावर कर्मचारियों को लेकर है जो मलबे से भरी सुरंगों में फंस गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन है लेकिन अब तक सुरंगों में सिर्फ शव बरामद हुए। इस बीच भारत ने नेपाल के लिए पांचवी राहत उड़ान भेजी है जिसमें 11 सदस्यीय रेस्क्यू टीम, विशेष उपकरण और 5.5 टन मेडिकल सप्लाई शामिल है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संसद में भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम मित्र देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मिल रही मदद के लिए आभार जताया और आगे भी सहयोग की उम्मीद जताई। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे नेपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, आप तो शुरू से ही वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लेकिन अब जो राहत और बचाव का काम है वो किस तरीके से पहले की तुलना में बदल गया है?
21: नेहा, जो बचाव का काम है इवैक्यूएशन का, वो लगभग पहाड़ी इलाकों से पूरा हो चुका है। रेस्टोरेशन का ये दूसरा चरण है, वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर जो लेक थे हेलीसॉर्टी कम कर दी गए। अब चुनौती ये है कि उन गांवों तक पहुंचा जाए जहां लोग हैं। मैं इस समय बेतरावती में हूं, आज तक पहला नेटवर्क बेतरावती के उस इलाकों में है, ये पूरी तरह से बह चुका है, जिसे फुटहिल कहा जाता है। ठीक पहाड़ियों से रसुआ शुरू होता है और ये एक त्रिशूली की जो धारा है 30 मीटर चौड़ी धारा होती थी, आज इसका दायरा 600 मीटर बढ़ चुका है। 20 गुना जो है त्रिशूली ने अपना फैलाव, ये घर, मकान, दुकान, अगर आपको पीछे लग रहा होगा कि नदी का किनारा नहीं, 9 दिन पहले ये बाजार गुलजार था। मानसरोवर के यात्री जाते थे इसी बेतरावती पवित्र शहर में, डुबकी लगाते थे, यहाँ कैंप करते थे, कहीं बस अड्डा था, कहीं बाजार था, सब कुछ मलबे में है। सड़क के दूसरी तरफ भी ये पूरा रास्ता, जितने पुल ब्रिज थे वो सब कुछ बह गए हैं। अब क्या है कि त्रिशूली का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे कम होने लगा है और अपने साथ जैसे जैसे पानी कम हो रही है वैसे वैसे तबाही की वो तस्वीरें दिखाई दे रही है, वो मार्मिक मंजर दिखाई दे रहा है। इसी इलाके में दरअसल जैसे ही रसुआ से पानी नीचे आया, सबसे बड़ा बाजार यही था, यहाँ के जो लोग थे वो ऊपर पहाड़ी की तरफ भागे, लेकिन बहुत सारे छोटे बच्चे, महिलाएं थे जिनके बारे में कोई सुराग नहीं है। अब जैसे मैं आया हूँ वैसे तमाम सारे लोग दुर्गम रास्तों से, वो लोग हैं जो यहाँ पहाड़ियों को पार करते हुए पहुंच रहे हैं देखने कि अपनों का कोई सुराग मिल जाए। ये पूरी इमारत है, अगर लोग समय रहते नहीं भागे होंगे बहुत मुश्किल है कि वो बच पाए, क्योंकि ऊपर की तो पूरी मंजिल ही साफ हो चुकी है। सोचिए इतने मोटे छड़, ये सब कुछ बेंड हुआ, पूरी की पूरी छत जो है वो जा चुकी है। आगे जाता हूँ, यहाँ पर ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं, ये किसी बच्चे की किताब है वो हिस्सा, सोचिए कि ये बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सबसे ज्यादा इस तरह की आपदा में वो प्रभावित होते हैं, उसकी किताब यहाँ रह गई है, छोटे बच्चों के जूते रह गए, संभवतः वो भागने की कोशिश कर रहे थे। इधर पीछे जो ब्लॉक इमारत दिख रही है, अगर आपको याद हो वो हेलीकॉप्टर की तस्वीरें जिसमें 20 शव को निकाले गए थे, इन इमारतों से सबसे पहले लोगों को इवैक्यूएट किया गया था क्योंकि कुछ लोग जो भाग नहीं पाए वो अपनी छतों पर चले गए थे। इस इमारत की छत पर अगर लोग होते ये तो पूरी छत अपने साथ साफ कर ली गई है। उसी के साथ सड़क का दूसरी तरफ जो शहर है बेतरावती की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ग्राउंड रिपोर्ट आप आज तक देख पा रहे क्योंकि यहाँ पहुंचना ही मुश्किल था। जिन पहाड़ी रास्तों से होकर के हम यहाँ आए हैं ये जानने समझने के लिए कि आखिर इस तबाही ने नुकसान कितना किया है, इसको दोबारा पटरी पर खड़ा करने के लिए महीनों नहीं बल्कि सालों भी लग सकते हैं। उसी के साथ जो कही देखिए यहाँ पर एक मंदिर है वो पूरी तरह बह चुका है और जितने पुल इसके रास्ते में आते थे इस फैलाव के वो सारे पुल बिल्कुल बह चुके हैं, जमींदोज हो चुके हैं। यहाँ सिर्फ तबाही का मंजर। अब कोशिश क्या है, यहाँ पर बदबू भी आ रही है, वो इसलिए क्योंकि जो ऊपर से शव भर करके आए हैं वो क्या मलबे में है कहीं पर है, तो थोड़ी देर पहले जो नेपाली सेना है वो ऑपरेशन चला रही थी, जहां जहां से जानकारी मिल रही है बदबू की वो वहां जा रहे हैं और कोशिश करें कि कम से कम शव निकल पाए, क्योंकि 4000 लोग अगर लापता हैं तो उनके बारे में पता तो चले, डीएनए सैंपल हो। आपको बताऊं ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि एक पति था जिसने प्रेम से अपनी पत्नी को जो अंगूठी पहनाई थी वो मोबाइल फोन की वो तस्वीरें लेकर के उन शव की तस्वीरें देख रहा है जो पुलिस और प्रशासन के पास है, सिर्फ ये देखने के लिए कि कहीं उनमें उसकी पत्नी तो नहीं है, क्योंकि कई सारे जो शव है वो छत विछत है उस अंगूठी से पहचान करते हुए। एक पति अभी एक पिता यहां जा रहे थे, कह रहे थे मेरी बेटी मेरा बेटा उनका घर यहां पर था, आगे हुए ट्रक।
0: ठीक है, लौटेंगे आपके पास, ग्राउंड अपडेट्स लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में बारिश अब राहत नहीं आफत बनकर बरस रही है, क्योंकि पहाड़ों से लेकर मैदान तक नदियां उफान पर हैं, सड़कें दरक रही हैं, बाढ़ का पानी आबादी में घुस चुका है, उत्तराखंड यूपी बिहार तक नदियां उफान पर हैं और गंगा की लहरें प्रयागराज के रिहायशी इलाकों को डुबा रही हैं। उत्तराखंड में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 12 लोगों की जान जा चुकी है, देहरादून नैनीताल और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट है, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, बिहार में गंगा गंडक और सोन का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं प्रयागराज में गंगा यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं, लगातार बढ़ते जलस्तर से निचले शहर के इलाकों में बाढ़ का पानी अब घरों तक पहुंच चुका है। प्रयागराज से आज तक संवाददाता आनंद राज की रिपोर्ट देखिए।
1: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन दिनों बाढ़ का कहर है और जो खतरे का निशान है 84 है, लेकिन 2 सेंटीमीटर नीचे खतरे के निशान से अभी भी गंगा और यमुना बह रही है, पूरे जगह बाढ़ का पानी ही पानी है। लेकिन अगर आप जिस जगह पे हम खड़े हैं ये प्रयागराज का शास्त्री ब्रिज कहते हैं और इस शास्त्री ब्रिज के नीचे वाला जो इलाका है जहाँ पर पानी ही पानी नज़र आ रहा है ये माघ मेला कुंभ मेला क्षेत्र है। हर साल माघ मेला और हर 6 साल पर अर्धकुंभ और 12 साल पर महाकुंभ लगता है और इसी पानी वाली जगह पर तंबुओं का शहर नज़र आता है। मेला ख़त्म होते ही पूरा तंबू उखड़ जाता है, लेकिन अगर तंबुओं में एक पंडाल नहीं उखड़ता तो ये है देवराहा बाबा का पंडाल। आप देखेंगे देवराहा बाबा को कुटिया बाबा के नाम से कहा जाता है, कुटिया वाले बाबा, तो उनकी वो कुटिया है, तकरीबन 1-1.5 मंजिला मकान के ऊपर बनी है, इसलिए ऐसी बनाई गई है कि ये डूबे नहीं और हमेशा बनी रहे। अब माघ मेले में बाढ़ के हालात है, पूरे जगह पानी ही पानी है, माघ मेला वाले क्षेत्र में भी पानी है, लेकिन आज भी देवराहा बाबा का ये पंडाल और उसकी अखंड ज्योति अभी भी बरकरार है और ये साल भर अखंड ज्योति जलती है। अखंड ज्योति इसलिए जलाई जाती है कि देश में सब कुछ सकुशल रहे, देश में सब कुछ अच्छा होता रहे, इस आशय से अखंड ज्योति जलाया गया है। बाढ़ों के पानी के बीच में भी ये अखंड ज्योति अलग से नजर आती है। आनंद राज, आज तक प्रयागराज।
0: बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा, वक्त हो गया हेडलाइंस का।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
22: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ बनते रिटायर्ड है मार्शल जितेंद्र मिश्र ने कहा, श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया के गांव में जश्न, गोविंद गिरी बने महासचिव, 3 नए ट्रस्टी शामिल। ब्रज की जमीन पर सजेगा यूपी चुनाव का सबसे बड़ा मंच, पंचायत आज तक मथुरा में, सीएम डिप्टी सीएम समेत सियासत के सभी दिग्गज दिन भर आज तक पर। शामली के अंकित बालियान हत्याकांड में फरार शूटर्स का सुराग देने पर अब 1,00,000 रुपए का इनाम। सिंगर की कार में ट्रैकिंग डिवाइस लगाने वाले सत्यम और दूसरे कातिल आर्यन की तलाश। बिहार से उत्तराखंड तक गंगा मंदाकिनी समेत कई नदियों में जबरदस्त तूफान, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और भारी बारिश से चलते 7 लोगों की मौत। नेपाल में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,200 के पार।

0: नेपाल में तबाही का आंकड़ा बढ़ा, मृतकों की संख्या 1200 के पार, 4875 लोग लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक करीब 12,000 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, सेना के हेलीकॉप्टर तैनात, पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद और घायलों का मुफ्त इलाज। पीएम बालेन शाह ने जलवायु परिवर्तन से जोड़ा हादसा, भारी बारिश से रेस्क्यू अभियान प्रभावित, 400 मेगावाट बिजली उत्पादन भी बाधित। नेपाल में भौतिक कोशी बाढ़ से तबाही, पीएम बालेन शाह बोले दृढ़ संकल्प और साहस के साथ संकट से लड़ना होगा। नेपाल में भारी बारिश का असर, नदियों का जलस्तर बढ़ने से बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ा। पटना में गंगा नदी का रौद्र रूप, सभी घाट जलमग्न, सुरक्षा के मद्देनजर घाटों पर एनडीआरएफ एसएसबी तैनात। गंगा का बड़ा जलस्तर, घाटों से सटी सड़कों पर पहुंचा बाढ़ का पानी, प्रशासन अलर्ट मोड पर। बिहार के वैशाली जिले में गंडक नदी उफान पर, खतरे के निशान से 51 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा जलस्तर, प्रशासन अलर्ट पर। बिहार में गंगा गंडक नदी का कहर, हाजीपुर में बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में करीब 1700 घर में घुसा पानी, लोग सड़क किनारे शरण लेने को मजबूर। चित्रकूट में बरसाती नाले का कहर, तेज बहाव में बहकर महिला की मौत, 24 घंटे बाद मिला शव। चंदौली में बारिश से लबालब हुए डैम और जलाशय, क्षमता से ज्यादा भरा पानी, हजारों क्यूसेक पानी किया जा रहा है रिलीज। देहरादून में तेज बारिश का कहर, नाले में वही क्रेटा कार, श्रीगंगा नगर की युवती समेत दो की मौत। हिमाचल के सोलन में भारी बारिश, कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर आया सैलाब, कई वाहन फंसे। बांदा में लगातार बारिश से हालात बिगड़े, चारों तरफ जल भराव, कच्ची दीवार गिरने से दो महिलाओं की मौत। बिहार के मुंगेर में गंगा नदी उफान पर, नौवागढ़ी में तेज कटाव से दहशत, 3,000 की आबादी प्रभावित। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में गोलीबारी में दो की मौत, शूटर भी मारा गया। घटना में 3 पुलिस अधिकारी घायल, जिनमें 2 को गोली लगी है लेकिन तीनों की हालत स्थिर है। गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने लोगों को इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी। एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल ने भी घटना पर दी प्रतिक्रिया। पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति की मुलाकात पर अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा उन्हें नहीं लगता कि भारत और ईरान के बीच किसी ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। चेतावनी दी गई है कि अगर कोई देश ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में मदद करेगा तो अमेरिका उस देश पर प्रतिबंध लगा सकता है। मिडिल ईस्ट बढ़ते तनाव के बीच ईरान संसद के स्पीकर का बड़ा बयान, कहा अमेरिका के सहयोगी देश भी अब ये मानते हैं कि वॉशिंगटन असुरक्षा की वजह है। ट्रंप ने फिर किया हॉर्मुज पर अधिकार होने का दावा, कहा कि पाबंदी और हमलों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकेबंदी जारी है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी सेना 86 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदल चुकी है, 3 जहाजों को निष्क्रिय किया गया है। इस बीच ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने यमन के ताइज और होदियाता में 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 100 साल से ज्यादा पुराने हिंदू मंदिर को गिराए जाने की कड़ी निंदा की है, घटना की पारदर्शी जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग। पंजाब में चल रहे एसआर अभियान के दौरान सांसद राघव चड्ढा का नाम पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कटा, उनके नाम के आगे परमानेंटली शिफ्टेड लिख दिया गया है। राघव चड्ढा 12 सितंबर 2026 तक अपना नाम काटे जाने पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, दोबारा नाम ऐड करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बिल्डिंग में तोड़फोड़ को लेकर गरमाई सियासत, टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने सीसीटीवी वीडियो जारी कर बीजेपी वालों का हमला बताया। बैनर्जी ने प्रशासन पर उठाए सवाल, आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और पूरे मामले की जांच की मांग की है। पाकिस्तान के F-16 गिराने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान की नई पारी, अब ये प्राइवेट एयरलाइन FLY-91 से जुड़े। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ, कारगिल युद्ध ऑपरेशन सिंदूर में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज बनाए गए राम मंदिर ट्रस्ट के नए महासचिव, इससे पहले ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की निभा रहे थे जिम्मेदारी। अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे बनाए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य, मंदिर मामले की सुनवाई में निभाई थी अहम भूमिका। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में शामिल 3 नए सदस्यों में महेश भागचंद का भी शामिल, 2020 में मंदिर की भूमि पूजन में बनाए गए थे मुख्य यजमान। शिक्षाविद डॉक्टर निर्मला यादव बनाई गई राम मंदिर ट्रस्ट की सदस्य, ट्रस्ट की पहली महिला सदस्य बनी। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद पर नियुक्ति को जितेंद्र मिश्र ने बताया सौभाग्य, बोले प्रभु श्री राम का जैसा आदेश होगा वैसा कर्म करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर से राम मंदिर ट्रस्ट तक के सफर पर भावुक हुए जितेंद्र मिश्रा, बोले मंदिर के हित में हर संभव प्रयास करूंगा।
1: के बाद भारतीय वायुसेना में श्री राम का आशीर्वाद भी मांगूंगा कि 43 वर्ष राष्ट्र सेवा के बाद भारतीय वायुसेना में मुझे श्री राम ने एक और अवसर प्रदान किया है जहां पर मैं श्री राम मंदिर और श्री राम भक्तों की सेवा कर पाऊंगा।
0: चंदा चोरी विवाद पर अखिलेश ने सरकार को फिर घेरा, कहा बड़े नामों पर एक्शन नहीं। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले राम मंदिर में शंकराचार्य नियुक्त करें धर्माचार्य। इंदौर मार्ग बदले अब 19 सितंबर को होगा राहुल का कार्यक्रम छात्रों की गूंज कांग्रेस का आरोप प्रशासन नई दी स्टेडियम की इजाजत प्रदर्शन की चेतावनी दिल्ली के नॉर्थ प्लेस में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी आरएसएस की मनुवादी सोच के खिलाफ लगाए गए नारे यूथ कांग्रेस से बांटे मनुवादी सोच कहां मिलेगी बीजेपी के दफ्तर में लिखे पर्चे जातिवाद के खिलाफ संघर्ष का किया ऐलान नासिक में राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर हमला बोले हाथ पैर टूट जाएं फिर भी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे महाराष्ट्र के अहम मुद्दों पर राहुल से चर्चा एसआर के 2.06 करोड़ मतदाताओं के नाम हटने किसान आत्महत्या और कुंभ बजट का मुद्दा उठेगा मराठा आरक्षण की मांग पर मनोज जरांगे पाटिल का अनशन का आज पांचवा दिन है तबियत बिगड़ने से बड़ी चिंता मराठा आरक्षण आंदोलन के पांचवें दिन मनोज जरांगे का सरकार पर गंभीर आरोप मुंबई में घुसाने का प्लान 100% दंगा कराना चाहती है सरकार मांगों के तत्काल जीआर पर अड़े जरांगे 12 सितंबर को मुंबई कूच का ऐलान बोले लाठी का जवाब लाठी से देंगे बीजेपी विधायक प्रसाद लाठ जरांगे से बातचीत के लिए अंतरवाली सराटी रवाना 15 मांगों पर चर्चा से समाधान की कोशिश जालंधर मराठा आंदोलनकारियों का धुले सोलापुर हाईवे पर रास्ता जाम करीब सवा घंटे तक यातायात प्रभावित मनोज जरांगे के समर्थन में जोरदार नारेबाजी मांगे जल्द पूरी करने की मांग हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतार दिल्ली एसआर के ड्राफ्ट में 47 लाख नाम कटने पर बीजेपी का मंथन प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और सभी सात सांसदों की बैठक दिल्ली एम्स में 14 साल से दिल की सर्जरी के लिए इंतजार करते करते लड़की की मौत 2012 में हृदय की जन्मजात बीमारी से पीड़ित बेटी की सर्जरी के लिए एम्स का चक्कर काट रहे थे माता पिता हथनीकुंडा आर्मी बोट हादसा 24 घंटे बाद यमुना में लापता दो जवानों की तलाश जारी तेज भाव के बावजूद डेढ़ घंटे बंद रखे गए नहर के गेट श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर ब्रज को सीएम योगी देंगे 970 करोड़ रुपए की सौगात 57 परियोजनाओं का लोकार्पण और 167 योजनाओं का शिलान्यास कौशाम्बी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हादसे में अब तक 14 की मौत 4 घायल बिहार के मधेपुरा में मार्केट में लगी भीषण आग 16 दुकानें जलकर राख करोड़ों के नुकसान की आशंका एमपी के रीवा में भीषण सड़क हादसा बस ट्रक की आमने सामने से टक्कर में 5 की मौत 13 घायल दरभंगा में युवक की संदिग्ध हालत मौत चेहरे पर चाकू के निशान हत्या की आशंका पर ग्रामीणों का हंगामा बघा में उप मुखिया और वार्ड पार्षद को अपराधियों ने मारी गोली दोनों की हालत गंभीर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोयले से भरे ट्रक में लगी भीषण आग चालक ने कूदकर बचाई जान बरेली में इमामबाड़े पर चला नगर निगम का बुलडोजर सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत के बाद कार्रवाई नगर आयुक्त ने बताया कि सवैध कब्जे को लेकर आईआरजीएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी इसके बाद कार्रवाई हुई है लखनऊ 11 पार्टनर की गला घुटकर हत्या की गई शव नहर में फेंकने पहुंचा आरोपी गिरफ्तार सूरत में बीजेपी युवा नेता जय दलाल हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार महाराष्ट्र से पकड़ा गया देहरादून में तेज रफ्तार का कहर कई वाहनों को टक्कर मार सब्जी की दुकान में घुसी कार भागलपुर में विक्रमशिला सेतु से खुदकुशी के नियत से एक युवक ने लगाई छलांग एसडीआरएफ मौके पर बचाया वीडियो हुआ वायरल बलसाड़ में दमन ब्रिज से मां बेटे ने समुद्र में लगाई छलांग साने मछुआरों ने देवदूत बनकर बचाई जान सूरत में प्रॉपर्टी डीलर की 10 लाख की सुपारी देकर हत्या मामले में 4 शूटर्स गिरफ्तार मुख्य साजिशकर्ता फरार पटना में करोड़ों की विदेशी शराब जब्त 6 शराब तस्कर गिरफ्तार नोएडा के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारी जारी वृंदावन से मंगाए गए फूलों से की जा रही है मंदिर की सजावट श्री कृष्ण को कई तरह के व्यंजनों से भोग अर्पित करने की तैयारी 500 से ज्यादा तरह के प्रसाद का किया जा रहा है इंतजाम 100 किलो का बनाया जा रहा है केक पीएनबीआई समेत बैंकिंग के भविष्य पर मंथन एआई क्वांटम टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी पर हुई चर्चा पीएनबी ने एआई आधारित बैंकिंग और साइबर सुरक्षा को दिया बढ़ावा क्वांटम प्रूफ सिस्टम हैकाथॉन के विजेताओं को किया सम्मान जशपुर के पत्थल गांव वन क्षेत्र में 12 हाथियों का दल पहुंचा धान की फसलों को पहुंच रहा है नुकसान मिर्जापुर द मूवी के मेकर्स का बड़ा धमाका रिलीज से 3 दिन पहले आउट हुआ नया गाना घूम घूम मनोज वाजपेयी की फिल्म लास्ट मैन इन टावर का ट्रेलर रिलीज व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद आदिका नॉवल पर आधारित है फिल्म बॉक्स ऑफिस में फिल्म हनुमान अंश ने किया कमाल मूवी ने 25 दिन में 47 करोड़ की कमाई की पर्दे पर आदम खोरों के शिकार बनेंगे अक्षय कुमार मशहूर शिकारी और पर्यावरण प्रेमी रहे जिम कॉर्बेट की बायोपिक में करेंगे काम रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म मैसा का रिलीज डेट का ऐलान 27 नवंबर को सिनेमाघरों में होगी लॉन्च ईरानी सेना ने सिरिक में एक शादी समारोह में हुए हमले की कड़ी निंदा की कहा इस हमले से आम नागरिक मारे गए जर्मनी के ऑक्सबर्ग में रेलवे स्टेशन के पास धमाका हमले में 2 यूक्रेनी नागरिक घायल कई इमारतों को पहुंचा नुकसान यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री ने जर्मन एयरपोर्ट पर हमले की कोशिश की निंदा की ईयू विदेश नीति प्रमुख ने कहा एयरपोर्ट पर ड्रोन साजिश प्रायोजित आतंकवाद है रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जर्मनी के ड्रोन साजिश के सभी आरोपों को नकारा जर्मन नेतृत्व पर पलटवार यूक्रेन के ओडेसा में रूसी सेना की भीषण बमबारी, एक बच्चे समेत 8 घायल, 2 की हालत गंभीर। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक, हिजबुल्ला के ठिकानों को बनाया निशाना, कई घरों को पहुंचा नुकसान। इस्तानबुल के पास मरमारा सागर में आपस में टकराए तुर्की के 2 जहाज, एक जहाज के डूबने की आशंका, 10 क्रू मेंबर लापता। दक्षिण कोरिया के दक्षिण पूर्वी तट में अचानक हादसे का शिकार हुई टग बोट, हादसे में चालक दल के 1 सदस्य की मौत, 6 लापता। थाईलैंड पहुंचा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, एयरक्राफ्ट में पिछले 9 महीने में 5,000 सैनिक तैनात। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का राजधानी काहिरा में भव्य स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर।

0: दिल्ली एम्स में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। कोटा के परिवार ने आरोप लगाया कि बार बार तारीख देने के बावजूद उनकी बेटी का ऑपरेशन नहीं हुआ। 14 साल तक एम्स के चक्कर ये माँ बाप काटते रहे और बच्ची की मौत हो गई।
1: राजस्थान के कोटा के रहने वाले मुकेश कुमार देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल दिल्ली एम्स पर आरोप लगाया कि 14 साल तक अस्पताल के चक्कर काटते रहे, लेकिन सही इलाज नहीं मिलने की वजह से उनकी बेटी तानवी की मौत हो गई। साल 2012 में मुकेश कुमार अपनी 2 साल की बेटी को लेकर दिल्ली एम्स गए थे। तारीख थी 10 अक्टूबर 2012। बच्ची को हृदय से संबंधित जन्मजात समस्या थी।

0: पहली बार ओपीडी ली, मुझे 18 में बोला गया दिखाने को, कोठारी सर किया, वहाँ उन्होंने फाइल देखी, जाँचें वाँचे कराई। 13 में 14 में मुझे डॉक्टर सचिन तलवार जी के यहाँ रेफर कर दिया गया कि डॉक्टर साहब अपन करेंगे, जाओ। डॉक्टर सचिन तलवार जी ने खुद कहा मुझे कि ये मेरी बेटी का ऑपरेशन करेंगे, 1,25,000 जमा करा है, 4 यूनिट ब्लड जमा करा।
1: एम्स कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर ने जांच करने के बाद सर्जरी के लिए CTVS विभाग के डॉक्टर के पास केस भेज दिया। CTVS के चिकित्सकों ने बच्ची की हालत देखने के बाद 4 अप्रैल 2014 को सर्जरी की तारीख तय कर दी, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी सर्जरी नहीं हुई और 1 सितंबर 2026 को दिल्ली एम्स में ही बच्ची की मौत हो गई। अब दिल्ली एम्स ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी।
2: कर रहे हैं जो सीरियस पेशेंट हैं, मर रहे हैं, मुझे इंसाफ दिलाओ।
3: वक्त एक छोटे से ब्रेक का हौसला, बने रहिए हमारे साथ, टिकते रहिए आज तक।

0: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the cooler.

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: आगे आगे।
3: अरे उधर
2: उधर। करेक्ट करेक्ट।
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पापा
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया
2: है।
4: टाटा AIG है तो भरोसा है।
5: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: नहीं इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the cool

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: ब्रज की भूमि से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पंचायत आज तक मथुरा, 3 सितंबर सिर्फ आज तक पर।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: सो सॉरी।

0: राम राम पंडित जी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: तस्वीरें इस्लामाबाद से सटे रावलपिंडी की हैं। वही रावलपिंडी जिसे पाकिस्तान का वेनिस कहने में अब किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। गलियां जलमार्ग बन चुकी हैं, घर पानी में समा चुके हैं और लाखों करोड़ों की गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर चुका है, नाले उफान पर हैं। कटारियन ब्रिज पर नालाए दई का पानी 29.5 फीट के पार पहुंच गया है और लोग अपनी आंखों के सामने अपनी तबाही का मंजर देख रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रावलपिंडी में सड़कों पर कहीं कारें कागज की नावों की तरह तैर रही हैं, तो कहीं पानी इतना गहरा है कि गाड़ियां पूरी तरह डूब चुकी हैं। सिर्फ गाड़ियों की छतें नजर आ रही हैं। रावलपिंडी का मंजर इतना खौफनाक है कि नाला और शहर की गलियां मिलकर एक हो चुकी हैं। पता ही नहीं चल रहा कि कहां नाला बह रहा है और कहां लोगों की रिहायशी गलियां थी। इस्लामाबाद को रावलपिंडी से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है, गाड़ियों के पहिए थम गए हैं और राजधानी का संपर्क अपने सबसे महत्वपूर्ण सैन्य शहर से कट गया है।
1: हम पाकिस्तान में ये सलूक हमारे साथ हो रहा है।
0: बिलखते रोते और मदद की गुहार लगाते ये पाकिस्तानी पंजाबी आवाम चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही है कि आखिर उनका कसूर क्या है। महीनों में नालों की सफाई नहीं हुई और जब बारिश आई तो पूरा शहर जलमग्न हो गया।
1: मैं खुश हूँ, ये देखिए मेरे घर का नुकसान हो गया, ये मोटर तकरीबन 12,000 रुपए की मोटर है।
0: गनीमत देखिए, ये वो रावलपिंडी है जहाँ से पूरा पाकिस्तान चलाया जाता है। यही पाकिस्तानी सेना का जनरल हेडक्वार्टर यानी GHQ है और यही रहते हैं पाकिस्तान के असली हुक्मरान यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। जो सेना पूरे मुल्क पर राज करने का दावा करती है, जो फौज के बजट का एक बड़ा हिस्सा हड़प जाती है, आज उसी की नाक के नीचे पूरा शहर दरिया बना हुआ है। आलम यह है कि बेनजीर भुट्टो अस्पताल से लेकर होली फैमिली हॉस्पिटल तक सब पानी पानी हो चुके हैं। शमसाबाद में 201 मिलीमीटर, चकलाला में 191 मिलीमीटर बारिश ने पूरे रावलपिंडी के ड्रेनेज सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी हैं। G14 में छत गिरने से 20 साल के फैजान की जान चली गई तो 17 साल का यशवा नाले में बह गया। 50 साल के सोहेल असगर अपने पालतू कुत्ते को बचाते हुए करंट की चपेट में आ गए। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान आज कुदरत के एक थप्पड़ से बेबस नजर आ रहे हैं। एटमी ताकत का ढिंडोरा पीटने वाला मुल्क अपनी सड़कों से पानी निकालने में नाकाम है। रावल बांध के स्लिपवे खोलने पड़े हैं और फौज को अब अपने ही शहर में लोगों को निकालने के लिए नाव चलानी पड़ेगी। कल SCO की बैठक में शहबाज शरीफ सिद्धू जल समझौते पर रो रहे थे, भारत से पानी के लिए गुहार लगा रहे थे और खुद पाकिस्तान बारिश के पानी को नहीं संभाल पा रहा है।
2: एक्सीलेंसीज, वाटर इज द लाइफ ब्लड ऑफ आवर रीजन, इट सस्टेन्स मिलियंस ऑफ लाइव्स, नरिशेस आवर लैंड्स एंड सिक्योर्स द वेरी फ्यूचर ऑफ आवर कमिंग जनरेशंस। इट मस्ट नेवर बी वेपनाइज्ड, इट कैनॉट बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोएर्शन, नॉर कैन इट एवर बी एक्सप्लॉइटेड फॉर पॉलिटिकल लीवरेज। द ट्रीटीज गवर्निंग आवर शेयर्ड वाटर्स आर सॉलम बाइंडिंग इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, दे आर नॉट मैटर्स ऑफ पॉलिटिकल कन्वीनियंसेस टू बी कास्ट असाइड एट योर विल।
0: यही नहीं, जनता दाने दाने और सूखे तिनके के लिए तरस रही है, रो रो कर अपने बर्बाद हुए सामान को देख रही है और जनरल मुनीर अपने ठिकाने पर आराम फरमा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। In association with
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने कहा, श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया के गांव में जन्म। गोविंद गिरी बने महासचिव, 3 नए ट्रस्टी भी शामिल। ब्रज की जमीन पर सजेगा यूपी चुनाव का सबसे बड़ा मंच। पंचायत आज तक मथुरा में, सीएम डिप्टी सीएम समेत सियासत के सभी दिग्गज दिन भर आज तक पर। शामली के अंकित बालियान हत्याकांड में फरार शूटर्स का सुराग देने पर अब 1,00,000 रुपए का इनाम। सिंगर की कार में ट्रैकिंग डिवाइस लगाने वाले सत्यम और दूसरे कातिल आर्यन की तलाश। बिहार से उत्तराखंड तक गंगा मंदाकिनी समेत कई नदियों में जबरदस्त उफान। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और भारी बारिश के चलते हुए 7 लोगों की मौत। नेपाल में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,200 के पार। पाकिस्तान में 125 साल पुराना मंदिर तोड़े जाने पर भारत का सख्त रुख। कहा, मंदिर को नुकसान पहुंचाने वालों पर फौरन हो एक्शन। हिंदुओं की धार्मिक सुरक्षा सुनिश्चित करे पाकिस्तान।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर है। आज मिशन यूपी पर हमारा खास जोर है। सीएम योगी मथुरा के दौरे पर हैं, तो पंचायत आज तक भी सीधे मथुरा से ही है। पहला सेशन बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। आज बात होगी कि कैसे 2027 की लड़ाई अयोध्या से अब मथुरा तक आ गई है। बात होगी राम मंदिर के पहले सीईओ रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र की। हम बताएंगे कि उनके सामने आखिर कौन कौन सी चुनौतियां हैं, और बताएंगे कि पाकिस्तान में 100 साल पुराने मंदिर के तोड़े जाने से भारत में किस कदर गुस्सा है, विरोध है। तो इस सब पर बात होगी। पहले बात यूपी की चुनावी लड़ाई की, जो अब अयोध्या से मथुरा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के दान चोरी के आरोपों को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा सामने रखकर सियासी पलटवार अब तेज कर दिया है। योगी अपनी हाल की कई सभाओं में अखिलेश यादव से सवाल कर चुके हैं कि अगर वो खुद को सनातन और धार्मिक आस्था के करीब बताते हैं, तो मथुरा वृंदावन और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर अपना रुख क्यों नहीं साफ करते। सवाल है कि क्या अयोध्या में दान चोरी के मुद्दे से घिर रही बीजेपी ने उसकी काट के तौर पर मथुरा को चुनावी एजेंडे में आगे कर दिया है। और इसी सियासी संदेश के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिन का मथुरा दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। मथुरा में विकास परियोजनाओं, ब्रज क्षेत्र के कायाकल्प और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर फोकस के साथ धार्मिक आस्था और विकास दोनों को एक साथ साधने की कोशिश दिखाई दे रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा को 977 करोड़ की सौगात भी देंगे।
1: अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपके झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है, अब उसकी चलने की सामर्थ्य समाप्त, खेल खत्म। अब जब खेल खत्म तो फिर आगे की कोई संभावना नहीं, संभावना नहीं तो आगे के बारे में स्वयं सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं तो राम नाम का ही सहारा सही।
0: और इस मुद्दे पर खास बातचीत की है यूपी के मंत्री भूपेंद्र चौधरी से आज तक के आशीष श्रीवास्तव ने, सुनिए।
2: सर, अब हमने देखा है मुख्यमंत्री कई अपनी रैलियों में जो एड्रेस कर रहे हैं वो बांके बिहारी जय और अयोध्या श्री राम जय, ये उधर रुख हो रहा है, तो अब क्या माने कि 2027 की चुनाव मथुरा की तरफ रुख है?
3: नहीं, इस रूप में ना देखा जाए। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो हमारी परंपरा, आस्था और जो हमारी विरासत है, उस विरासत को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भगवान राम भी हमारी विरासत हैं, भगवान श्री कृष्ण भी हमारी विरासत हैं, बाबा विश्वनाथ भी हमारी विरासत है। और भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकारों के समय हमने अपनी आस्थाकार विरासत का सम्मान आगे बढ़ाया है, और उसी स्वरूप में आप सब लोग आज अगर देखेंगे तो पहले आज से 20-30 साल पहले उत्तर प्रदेश में दिखाने के लिए क्या कहा जाता था कि भाई हम कोई बाहर से पर्यटक आता है तो क्या दिखाएंगे उसे, तो आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक देश में धार्मिक पर्यटन वाला क्षेत्र है। आप अयोध्या है, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है, लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, विंध्यवासिनी देवी का मिर्जापुर में कॉरिडोर बना है, और बड़ी संख्या में मथुरा वृंदावन आज अगर आप देखेंगे तो लोग सहजता के साथ बगैर किसी निर्वाद भाव के दर्शन करने आते हैं और उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में अपना योगदान कर रहे हैं और यही हमारी परंपरा है, यही हमारी विरासत है।
0: और इस मुद्दे पर अब सियासत भी बढ़ गई है क्योंकि 2027 की लड़ाई अयोध्या से अब मथुरा पहुंच गई है। सुनिए क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता।
4: वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो उसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है। जब जाने की बारी है, जब आपने श्री रामचंद्र जी के नाम का सहारा लिया, तो आपने नाम इसलिए लिया कि आपको वहां पे लूटना था। हम तो कहेंगे कि वहां पे जो भी महंत लोग हैं मथुरा में, अरे भाजपाइयों से सावधान रहो, नहीं तो जो चढ़ावा है वहां का, जो चंदा है, उस पर भी निगाह इनकी पड़ चुकी, इनको घुसने मत देना वहां पर। और किशन जी की जो पूरा दुनिया में जो उनका चाहत है, मोहब्बत है, जो उनके अनुयायी हैं, वो बीजेपी की वजह से नहीं है। और किशन जी की मानने वाले लोगों का आपने क्या हाल कर रखा है? मथुरा में आज सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, मथुरा में आज मथुरा जी में सड़कों पे 3-3 फीट पानी है। तो आप नगर पालिकाएं आपकी जहां जहां पे हैं, आपने कहा था कॉरिडोर बनाएंगे आप, मतलब कौन सा कॉरिडोर बना?
5: जो वामी है, जो कांगी है, जो सपाई है, जो कांग्रेसी है, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है, हिंदुओं को बांटना है, मुसलमानों को एकत्रित करना है और उसके सहारे चुनावी वैतरणी पार करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये जान चुकी है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और 27 में उत्तर प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार, अर्थात नरेंद्र मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार की, जो काम उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जिस तरीके से विकास समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों तक पहुंचा है, कानून का शासन स्थापित हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, उसके आधार पर वोट देगी।
0: और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक का, जो मथुरा में ही मौजूद है। अभिषेक, आपसे यह जानना चाहेंगे कि सियासत तो लगातार अयोध्या पर चलती रही, लेकिन अब धीरे धीरे यूपी बीजेपी ने मीटर जो है वो मथुरा की तरफ घुमाना शुरू कर दिया है ताकि फोकस वहां रहे। किस तरीके से आज मुख्यमंत्री का यह दौरा अहम रहेगा इसके लिए?
6: अंजलि, देखिए अयोध्या उनका सेटल है, हालांकि कुछ सेटबैक लगे हुए हैं, उसको बीजेपी किसी तरीके से काउंटर करने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से उसने अभी नए सीईओ जितेंद्र मिश्र का चुनाव किया है, तो एक नैरेटिव बदलने की कोशिश अयोध्या में भी है। और जो चढ़ावा चोरी का एक आरोप बीजेपी और उसको झेलना है चुनाव में, उससे एक बचने का तरीका है। लेकिन सारा फोकस अब मथुरा की तरफ हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री आज दिन भर 12 बजे के बाद से मथुरा होंगे, वृंदावन होंगे और कल जन्माष्टमी के दिन सुबह वो दर्शन करने के बाद लौटेंगे। लेकिन आज सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ, इसके अलावा लोकार्पण, मुख्यमंत्री आज इसे अयोध्या और वृंदावन में, इस मथुरा और वृंदावन में इसको करेंगे। कई जगहों पर वो लोगों को संबोधित करेंगे, वृक्षाटन है, इसके अलावा विकास कार्यों की समीक्षा है। लेकिन नजर अंजलि इस बात पर रहेगी कि मुख्यमंत्री आज मथुरा में कहते क्या हैं, क्योंकि अब ये बात बिल्कुल साफ है कि अयोध्या के बाद अब बीजेपी का जो रुख है वो मथुरा की तरफ है, कृष्ण जन्मभूमि की तरफ है। और मुख्यमंत्री ने कभी इस बात को छिपाया भी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा, ठीक है बांके बिहारी का कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, वो बनेगा, लेकिन सारा फोकस अब कृष्ण जन्मभूमि पर जा रहा है। देखना है आज मुख्यमंत्री यहाँ कहते क्या है। और आज तक के कार्यक्रम, जो आज तक की पंचायत है, आज मुख्यमंत्री उसमें भी शिरकत करेंगे शाम को, और उस पर भी नजर रहेगी कि मुख्यमंत्री आखिर क्या ऐलान करते हैं। लेकिन अगर बीजेपी की बात कर लें तो पहले अयोध्या और अब मथुरा, और कहीं ना कहीं अयोध्या का जो नुकसान हुआ है उसको मथुरा के जरिए काउंटर करने की कोशिश जरूर होगी। अंजलि
0: जी, अभिषेक शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बीजेपी चुनावी मोड में है, तो दूसरी पार्टियां भी चुनावी मोड में आ चुकी हैं। बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की नजर हर वर्ग को साधने वाले घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो बनाने पर है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी इस बार पुराने वादों के साथ कई नए वादों को जोड़कर ऐसा मैनिफेस्टो तैयार करने में जुट गई है जिसमें युवा, महिलाएं, सरकार में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी और अलग अलग जातीय समूहों को साधने की कोशिश की जाएगी। खास फोकस जेन जी और अल्फा पर भी है, यानी युवाओं पर है। पेपर लीक रोकने के पुख्ता इंतजाम, लखनऊ की आईटी सिटी को विस्तार और आईटी कंपनियों को यूपी में लाने का वादा एजेंडे में शामिल हो सकता है। अखिलेश सरकार के चर्चित वादे कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता और मुफ्त लैपटॉप फिर से लौट सकते हैं। महिलाओं के लिए सालाना 40,000 रुपए की घोषणा और यश भारती सम्मान की वापसी का भी वादा हो सकता है। अब की बार अखिलेश यादव के तरकश में करप्शन यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी तीर भी मौजूद हैं।
7: कभी एक्सप्रेसवे में गड्ढे नहीं सुनते हैं आप, गड्ढे हो रहे हैं एक्सप्रेसवे और गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं। कभी पंखे से सुखाते हैं, कभी कारपेट से ढकते हैं, पुअर क्वालिटी। कभी पंखे से सुखाते, दुनिया हंसेगी अगर आप विकसित भारत का सपना देख रहे हैं और आप सड़क को कैसे सुखा रहे हैं।
8: दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो सहारनपुर में बनाए मोदी जी ने, इसका उद्घाटन किया था, उसकी भी यही वजह।
7: मैं क्या बताऊं आपको, इस सरकार के एक्सप्रेस भी ऐसे ही बन रहे हैं।
9: आपकी तुलना में
7: ये कई जगह सुनने को मिल रहा है कि ये भ्रष्टाचार के एक्सप्रेस भी बन गए।
0: तो मैनिफेस्टो की तैयारी के साथ गठबंधन पर भी समाजवादी पार्टी कोई शगो शुभा नहीं रखना चाहती है। शिवपाल यादव ने साफ किया है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी पक्की है, मजबूत है।
10: जनता, अब की बार हमारा जो गठबंधन है अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, ये रहेगा और मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा।
0: तो चलिए आइए बात करते हैं हमारे सहयोगी सिमर चावला से। सिमर, किस तरह की रणनीति दिख रही है समाजवादी पार्टी की, क्या चाह रहे हैं वो इस मैनिफेस्टो के साथ?
11: अंजलि, चुनाव सर पर है, ऐसे समाजवादी पार्टी जो है वो तमाम उन सभी मुद्दों को अपने एजेंडा में शामिल करना चाहती है जो सीधे तौर पर लोगों से कनेक्ट होते हैं। हमने देखा बीते समय में कैसे वो चाहे करप्शन का मुद्दा हो, चाहे एक्सप्रेसवे का मुद्दा हो, चाहे वो स्टूडेंट्स का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे समाजवादी पार्टी मुकर रही है। ऐसे में एजेंडा तैयार करते हुए समाजवादी पार्टी का जो सीधा फोकस है सबसे ज्यादा वो जेन अल्फा इस जनरेशन से है। हमने देखा कि कैसे किस तरीके से जंतर मंतर में जब वो प्रोटेस्ट हुआ तो डिंपल यादव खुले तौर पर उस मंच पर गई, स्टूडेंट्स को समर्थन दिया। अखिलेश यादव ने भी लगातार खुले मंच से इन उस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर समर्थन किया और लगातार इस मुद्दे को उठाती रही। जैसे हमने देखा कि पार्लियामेंट स्ट्रीट में भी जो प्रदर्शन हुआ, अखिलेश यादव को विरासत में भी लिया गया, तो ये मुद्दा जो है तमाम उनको बाकी एजेंडा में सबसे ऊपर है। बाकी अगर बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी महिला वर्ग को भी टारगेट करना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने 40,000 रुपये जो है धनराशि की घोषणा भी करी थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। वैसे तो समाजवादी पार्टी पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हर वर्ग को अपने साथ लाने की जो है वो बात करती है, लेकिन अगर एजेंडा की बात आए तो वो सभी वर्गों को उसमें शामिल करना चाहती है जो सीधे तौर पर सरकार से त्रस्त है या उनके ऐसे कोई मुद्दे हैं जो सरकार के सामने वो उठाना चाह रहे हैं। जैसे जेंसी की अगर बात करें तो लखनऊ में आई टी सिटी को लेकर उन्होंने दावा किया है कि कैसे जब उनकी सरकार आएगी तो आई टी सिटी डेवलप की जाएगी, उत्तर प्रदेश में ही रोजगार के जो नए अवसर हैं उनको लाया जाएगा, पेपर लीक को लेकर कड़ा कानून लाया जाएगा ताकि इस तरीके से जो पेपर लीक है वो ना हो, बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। इस तरीके से वो समाजवादी पार्टी जो है वो यंगस्टर्स को उनको टारगेट कर रही है, 40,000 रुपए की बात करके वो महिलाओं को टारगेट करना चाह रही है। इसके साथ ही कई ऐसे इश्यूज है, लैपटॉप बांटने की बात जो पहले उनके एजेंडा में थी, इस बार भी लैपटॉप और तमाम इस तरीके के जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, उनको भी बांट कर वो जो यंगस्टर्स है उनको साधने का काम करना चाहती है। इसके साथ ही हमने देखा है कि किस तरीके से जो पार्टी है वो लगातार पीडीए के फॉर्मूले पे काम कर रही है, उस वर्ग को अपने साथ लाना चाहती है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की क्लियर स्ट्रैटेजी है कि जो जो लोग सरकार से कहीं ना कहीं त्रस्त है, ऐसे कोई मुद्दे हैं जिसको लेकर वो सरकार पर अपनी बात पहुंचाते हैं, उन सभी मुद्दों को कैपिटलाइज करके अपने एजेंडा में शामिल किया जाए ताकि जब इलेक्शन आए तो उन सभी मुद्दों को उठाकर लोगों के वोट लिए जाए।
0: जी सिमर, शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। चढ़ावा चोरी के बाद आस्था पर चोट को लेकर घमासान के बीच अब राम मंदिर ट्रस्ट ने अहम फैसला कर दिया है। व्यवस्था में बदलाव के लिए पहली बार सीईओ बनाया गया है और ये जिम्मेदारी मिली है ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले तत्कालीन एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र को। रिटायरमेंट के बाद उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ पद पर चुना है। माना जा रहा है कि वे जल्द पदभार ग्रहण करेंगे और राम मंदिर के प्रबंधन में अपना अहम योगदान देंगे। तो आज तक हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने की राम मंदिर के पहले सीईओ जितेंद्र मिश्र से एक्सक्लूसिव बातचीत, सुनिए।
12: सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पहले तो कैसे आप इस नए रोल को देख रहे हैं, दर्शकों को बताएं।
13: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं चयन समिति, श्री राम तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट और भगवान श्री राम का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरा चयन इस पद के लिए किया है।
12: सर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में आपने जो किया पूरा देश उस पर गर्व करता है और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। आपने देश के लिए जो भी किया, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद आपको अब एक तरह से रामलला का सानिध्य भी है, एक बड़ा रोल तो है, लेकिन कहते हैं कि इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना भी कहीं ना कहीं एक तरह से एक बड़ा सानिध्य रामचंद्र का है, इसको आप कैसे देखते हैं?
13: इसको मैं अपना भाग्य मानता हूँ और अपने आप को मैं सबसे भाग्यशाली व्यक्ति आज महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि 43 वर्ष राष्ट्र सेवा में मैंने लगाए, 17 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक भारतीय वायुसेना में, और आज मुझे श्री प्रभु श्री राम की कृपा से श्री राम मंदिर और श्री राम भक्तों की सेवा का अवसर भी प्रदान हुआ है।
12: सर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट कर रही है, आपने परिवार वालों से बातचीत की होगी?
13: जी, ईश्वर का आदेश है, इसमें सभी को असीम प्रसन्नता है, मेरे माताजी को, मेरी बाकी फैमिली को, मेरे बच्चों को, सब बहुत ही प्रसन्न।
0: तो रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने यह भी कहा कि श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम।
14: श्री राम का आशीर्वाद भी मानूंगा कि 43 वर्ष राष्ट्र सेवा के बाद भारतीय वायुसेना में मुझे श्री राम ने एक और अवसर प्रदान किया है जहां पर मैं श्री राम मंदिर और श्री राम भक्तों की सेवा कर पाऊंगा। जी जो समय जो चयन समिति का प्रोसीजर था वो मेरे ख्याल से इंटरनेट पे मीडिया में उन्होंने प्रसारित किया था और उनका प्रोसीजर टाइमलाइंस ये बार बार टीवी में आता रहा है, तो इस विषय में मेरे ख्याल से चयन समिति ही बताएंगे कि फिर क्या प्रोसीजर था और क्या ठीक था।
15: इसके साथ
14: जैसा मैंने कहा कि सर्वप्रथम मैं चयन समिति, श्री राम मंदिर ट्रस्ट और ऑफकोर्स भगवान श्री राम का आभारी हूं कि मुझे इस दायित्व के लिए मेरा चयन किया गया है, और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे सामर्थ्य दें कि मैं इस कार्य को अच्छी तरह से भली भांति रूप से कर पाऊं।
15: सर इसके साथ ही बीते कुछ समय में कुछ कई विवाद जो है बीच में जुड़े हुए थे सेटलमेंट ट्रस्ट को लेकर,
14: जी
15: उसके बाद एक आर्मी के डिफेंस कम्युनिकेशन डेकोरेटेड ऑफिसर का नियुक्ति को आप किस तरह से देखते
14: हैं? मैं अभी बीते समय की नहीं आगे आने वाले समय की बात ज्यादा करना चाहूंगा, आप बीते समय को भूल जाएं और आगे समय में प्रभु राम की कृपा से हम बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कार्य को कर पाएंगे।
15: आगे का क्या
14: देखिए, अभी कुछ समय पहले ही मेरा प्रथम सीईओ के रूप में चयन हुआ है और मुझे नहीं लगता कि इस समय में यह सवाल प्रासंगिक है। मैं जब एक बार सीईओ के रूप में टेक ओवर कर लूंगा तो ट्रस्ट के विश्वास से और अपनी टीम की मदद से जो भी उत्तम से उत्तम कार्य होगा राम मंदिर के लिए वो मैं करने का पूरा प्रयत्न करूंगा और श्री राम से ये प्रार्थना करूंगा कि मुझे इसके लिए भरपूर सामर्थ्य प्रदान करें। धन्यवाद।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
17: श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
2: असली शहद, असली स्वाद।
4: पापा।
5: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया
5: है।
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
13: इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: रिवीजन का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। उन्होंने नियम बनाया है, पूरी तरह से विजिलेंट हैं हम। हमने पूरे प्रदेश में हम अधिकारी लगाए हैं और अधिकारियों की वजह से आज वो कीमत पीछे गिरी भी है। चीनी की कोई कमी नहीं है, ये भ्रम फैलाया जाता है कि चीनी की कोई कमी है।
1: लेकिन स्टॉक लिमिट आपको लगानी पड़ी है, प्राइसेस हाई हुए हैं, उसके बाद जो है प्रयास तो किया गया, लेकिन ये कीमतें ऊंची हुई क्यों? उत्पादन एक बड़ी वजह है, अलनीनो इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट आपको लगा?
0: देखिए, उत्पादन की तो मैंने आपको बताया, हाँ निश्चित रूप से कुछ उत्पादन में कमी जरूर आई थी, लेकिन इतनी कमी नहीं थी जैसे पहले। पिछले साल उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण दे रहा हूँ मैं, 104 लाख मैट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ था, अब के 90 लाख मैट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ था, तो उत्पादन में कुछ कमी जरूर आई। लेकिन आज भी मैंने बताया था कि स्टॉक में इतनी चीनी है कि किसी प्रकार की कोई भी किल्लत चीनी की नहीं हो सकती।
1: बाबा के राज में, योगी जी के राज में ये गन्ना किसानों का कितना विकास हुआ है?
0: देखिए, 2017 से पहले हमारे प्रदेश में मात्र 20 लाख हेक्टेयर में गन्ना हुआ करता था, और योगी जी के आने के बाद गन्ने का जो क्षेत्रफल है 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ के 29 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया। जो मिलें बंद पड़ी थी, उन कुछ मिलों को चालू किया गया, नई मिल भी बनाई गई, क्षमता वृद्धि भी की गई, इथेनॉल के भी प्लांट खोले गए। और इसका एक मूल कारण सबसे बड़ा ये रहा कि पहले दो दो तीन तीन एक साल तक गन्ने का भुगतान नहीं हुआ करता था। योगी जी के आने के बाद दो बात सबसे बड़ी हुई, एक तो गन्ना माफिया जो शब्द था उत्तर प्रदेश में, वो समाप्त हो गया। आज जब हम गन्ने का स्टॉक के संबंध में, गन्ने सप्लाई के संबंध में जारी करते हैं अपना एजेंडा, तो कनाडा में भी बैठे हुए सरदारों को जिनके यहाँ फार्म है उन्हें पता चल जाता है एक मेरा गन्ना किस दिन जाएगा और कितना जाएगा और पेमेंट कब होगा।
1: अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, आप कह तो रहे हैं कि समय पर भुगतान हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि समय पर नहीं हो रहा है, और कई केसेस में तो एक एक साल से ज्यादा का समय लग रहा है, और खासतौर पर वो सहारनपुर का उदाहरण देते हैं, वहां पर बजाज मिल का उदाहरण देते हैं।
0: मैं अब आपको यही बता रहा हूं, 2002 से लेके और 2017 तक 15 साल में 1,47,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसान का हुआ 15 साल में, और योगी जी के राज में हमने 9 साल में 3,25,000 करोड़ का भुगतान किया है।
1: ये भुगतान तो किया है, लेकिन थोड़ा देरी से किया है,
0: दो गुने से भी ज्यादा भुगतान किया है, नहीं देरी से नहीं किया। आज मैंने बताया ना, जो मिले तीन तीन साल और दो दो साल भुगतान नहीं करती थी, आज उन मिलों ने आज हमारा 94% से ऊपर ज्यादा भुगतान है आज के दिन। कभी उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना भुगतान नहीं हुआ, नंबर एक। नंबर दो ये है, अब के आपको ताज्जुब होगा, हमारी 70 मिल ऐसी हैं जिन्होंने 14 दिन में पेमेंट किया, और 25 मिल ऐसी हैं जिन्होंने वीकली पेमेंट किया है, वीकली भुगतान किया है।
1: और वो उनकी संख्या भी बताइए जिन्होंने समय से नहीं किया।
0: नहीं, जो समय पहले जो होता था उससे और उसके अनुपात में तो उन्होंने बहुत अच्छा भुगतान किया है। जैसे मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूं, अब मोदी जी का भुगतान मेरे ख्याल से दो दो तीन तीन साल तक नहीं हुआ करता था, आज मोदी जी का स्वयं का मोदी मिल का भी भुगतान एक का 100% हो गया और दूसरी का आज 75% से ऊपर हो गया।
1: चौधरी जी, आप बेबाक हैं और जाने जाते हैं कि आप स्पष्ट कहते हैं, तो आप सच बताइए कि आप बता रहे हैं कि जो गन्ना उगाने का क्षेत्र है वो बड़ा है, तो क्या उस अनुपात में चीनी की जो मिल हैं क्या वो बनी है, या उनको उनकी संख्या भी बढ़ाने की आवश्यकता है?
0: देखिए, मैं एक बहुत अच्छा बीज आया था 2038, जब से वो बीज आया तब से रिकवरी बहुत अच्छी हुई उत्तर प्रदेश में चीनी की, गन्ने की रिकवरी बहुत अच्छी हुई, और उसके बाद भुगतान समय और रिकवरी बढ़ी, इसलिए गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा। दूसरे नंबर ये है कि हमारी जो पॉलिसी थी वो इतनी स्पष्ट थी, एक मैंने बताया था घटतौली और गन्ना माफिया, गन्ना माफिया का शब्द ये था और घटतौली का ये था, एक दो दो तीन तीन कुंटल एक एक ट्रॉली में लोग घटतौली किया करते थे, वो पूरी तरह समाप्त है, किसी भी एक भी मिल में कहीं एक किलो की भी घटतौली नहीं होती। ये दो काम और भुगतान समय पे, कीमत में भी वृद्धि, योगी जी के समय पे 85 रुपये कुंटल गन्ने का भाव बढ़ाया गया, ये कारण रहे हमारे क्षेत्रफल बढ़ने के, और यही कारण रहे हमारे गन्ना के उत्पादन बढ़ने पर।
1: अच्छा, जब हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे थे तो बहुत सारे लोग हमें बाहर भी मिल गए, वो कह रहे थे कि जब मंत्री जी आए तो उनसे पूछना कि उन्हीं के क्षेत्र में यहाँ प्रदर्शन करना पड़ रहा है लोगों को मिल के लिए।
0: देखिए,
1: उसमें कुछ पूर्व सैनिक भी हैं।
0: ऐसा है, जो महाशय बैठे हैं धरने पे, ना तो उनका घर है इस जिले में, ना उनका खेत है इस जिले में, रहने वाले अलीगढ़ के हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या आप भी समझ रहे होंगे इस राजनीति को, और वो अपने मुंह से ही कहते हैं कि मथुरा का एक भी पूर्व सैनिक नहीं आ रहा है धरने पे, और ये स्वाभाविक रूप से जहाँ धरना चल रहा है उसके जो 10-10 किलोमीटर चारों तरफ लोग रहते हैं उनमें से ही मेरे खिलाफ दो दो चार चार लोग चुनाव लड़ते रहते हैं। आज तक धरने पे जो भी लोग गए, कोई लोकल नहीं गए, लोकल मुश्किल से कभी भी 500 आदमी इकट्ठा नहीं हुए, जब महापंचायत का नारा दे दिया तब भी इकट्ठा।
2: आइए अब एक नजर डाल लेते हैं क्या इस वक्त की बड़ी खबरें।

ट्रस्ट के पहले सीईओ बनते ही रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने कहा, श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम देवरिया के गांव में जन। गोविंद गिरी बने महासचिव, 3 नए ट्रस्टी भी शामिल। ब्रज की जमीन पर यूपी चुनाव का सबसे बड़ा मंच, पंचायत आज तक मथुरा में, सीएम डिप्टी सीएम समेत सियासत के सभी दिग्गज। गन्ना मंत्री बोले, किसानों के हित में काम कर रही है सरकार। शामली के अंकित बालियान हत्याकांड में फरार शूटर्स का सुराग देने पर अब 1 लाख रुपए का इनाम। सिंगर की कार में ट्रैकिंग डिवाइस लगाने वाले सत्यम और दूसरे कातिल आर्यन की तलाश। बिहार से उत्तराखंड तक गंगा मंदाकिनी समेत कई नदियों में जबरदस्त उफान, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और भारी बारिश के चलते हुई 7 लोगों की मौत। नेपाल में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1200 के पार। पाकिस्तान में 125 साल पुराना मंदिर तोड़े जाने पर भारत का सख्त रुख, कहा मंदिर को नुकसान पहुंचाने वालों पर फौरन हो एक्शन, हिंदुओं की धार्मिक सुरक्षा सुनिश्चित करे पाकिस्तान।

सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बात करते हैं सितंबर पर सैलाब के सितम की। दरअसल उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक मानसून का कहर जारी है, जहां एक तरफ उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से हादसे हो रहे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों से आ रहे मलबे ने लोगों की परेशानी बढ़ाकर रख दी है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानों पर भी मानसून का कहर जारी है। यूपी से लेकर बिहार तक भारी बारिश और नदियों के उफान ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश के बाद सड़क के धंसने से लोगों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। तो जाहिर तौर पर हर जगह स्थिति बुरी है। सबसे पहले एक और बात आपको बता दें कि उत्तराखंड की जहां भारी बारिश में नदियों उफान पर नजर आ रही है, उसी बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून समेत तीन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि राज्य के बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के मुताबिक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 12 लोगों की अब तक मौत हो गई है।

0: उत्तराखंड में मानसून का कहर जारी, भारी बारिश और लैंडस्लाइड से बचा हाहाकार, हर तरफ पानी, मलबा और तबाही की तस्वीरें। सितंबर का महीना जैसे उत्तराखंड के लिए सितम लेकर आया है। लगातार हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते अलग अलग जगहों पर हादसों की खबरों ने लोगों को डरा कर रख दिया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बारिश के चलते हुए हादसों ने एक ही दिन में 5 जिंदगियां छीन ली। एक घर पर ही पहाड़ से आया मलबा घुस गया और 3 लोगों की मौत हो गई। हालात बिगड़े तो स्कूलों तक को बंद करना पड़ा। अल्मोड़ा ही नहीं, उत्तराखंड के बाकी इलाकों में भी बुरा हाल है। ये तस्वीरें बागेश्वर की हैं, जहां भारी लैंडस्लाइड के बाद सड़कें बंद हो गई हैं, जिसके चलते सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। बागेश्वर में NH 109 समेत 16 अलग अलग मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क मुख्य सड़कों से टूट गया है। बागेश्वर देहरादून NH 109 रवाई खाल के पास पहाड़ दरकने से बाधित हो गया है। लगातार हो रही बारिश और सैलाब ने देहरादून को भी नहीं छोड़ा। प्रेमनगर के कंडोली में पानी का सैलाब ऐसा आया जिसकी चपेट में कई गाड़ियां कई किलोमीटर तक बह गईं। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं कोटद्वार से आई ये तस्वीर सबसे दर्दनाक है, जहां कोल्हू नदी एक 1.5 साल की बच्ची और उसकी माँ के लिए काल बन गई। नदी पार करते वक्त 1.5 साल की छोटी बच्ची उसकी माँ की गोद से छूट गई और पानी में बह गई। बच्ची को बचाने के लिए माँ भी नदी में कूदी और बह गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई। काफी दूर तक तलाश के बाद SDRF और पुलिस ने नदी से माँ बेटी के शव बरामद कर लिए।
1: घटनास्थल पर पहुंचने पर हमने सर्चिंग की तो हमें पता चला कि जो नदी का दूसरा साइड है, उधर वाला जंगल वाला, वहाँ 2 व्यक्ति की डेड बॉडी मिल चुकी है, जिसमें से एक बच्चा था 1 साल का और एक महिला थी उसी की मम्मी। तो उनको मिलने के पश्चात वो उन्हें गांव नदी के दूसरे साइड ले गए थे, लेकिन उनको इस साइड लाना था, जिसके बाद हमारी टीम काफ़ी मशक्कत के बाद नदी पार की और उसके बाद डेड बॉडी को इस नदी के दूसरे साइड ला के जिले पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।
0: पहाड़ों पर छोटी छोटी नदियों में भी बहुत तेज बहाव है। पौड़ी जिले के पैठाड़ी क्षेत्र में एक महिला पश्चिमी नयार नदी में बह गई। यहां रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 33 साल की आशा देवी के बहने की सूचना पर रात भर ये ऑपरेशन चला, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जहां एक तरफ बारिश तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। टिहरी के बोराड़ी में जमीन खिसकी तो मकानों के सामने मलबे का ढेर लग गया। मलबे में दबी स्कूटी को लोगों ने मिलकर बाहर निकाला। लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में हालात चिंताजनक बने हुए हैं, क्योंकि जहां गौला नदी में पानी छोड़ने के बाद आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया है।
2: गौला नदी में अत्यधिक पानी छोड़ा गया है, जिस कारण गौला नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। आप सभी लोगों से प्रशासन द्वारा अपील की जाती है, कृपया अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, नदी किनारे न आएं।
0: प्रशासन बाकायदा मुनादी करके लोगों को सतर्क कर रहा है, क्योंकि हल्द्वानी से 27,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।
3: लगातार जो बरसात हो रही है उसके पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार बरसात हो रही है, इस कारण गौला नदी में जलस्तर ऊपर है और वर्तमान में यह सूचना प्राप्त हुई है कि 27,000 क्यूसेक पानी काठगोदाम बैराज से छोड़ा गया है। मेरा सबसे अनुरोध है कि नदी क्षेत्रों से, तटीय क्षेत्रों से दूर रहें और गौला बैराज के अगल बगल रहने वाले गौला नदी के अगल बगल रहने वाले लोग नदी से दूर रहें, नदी के पास न जाएं, सावधानी बरतें, सुरक्षा बरतें। वर्तमान में स्थिति कंट्रोल में है, ऐसी कोई पैनिक करने की स्थिति नहीं है, लेकिन नदी तटों से दूर रहें।
0: वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते नैनीताल की नैनी झील लबालब है। पहाड़ों से मलबा सड़कों पर आ रहा है और गाड़ियां रास्तों में फंसी हैं। जिले में बड़ी संख्या में सड़कें बंद हैं। उधर कोसी और शिप्रा नदी का पानी भी उफान पर है। रामनगर में कोसी का तेज बहाव गर्जिया मंदिर तक पहुंच गया, जबकि कैंची धाम के पास शिप्रा नदी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। उफनती नदियां, दरकते पहाड़, टूटती सड़कें और बहती गाड़ियां, उत्तराखंड में बारिश की हर तस्वीर खतरे की कहानी कह रही है। मौसम की मार जारी है और पहाड़ों में मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। देहरादून से कमल नयन सिलोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां भारी बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार हो रही बारिश और पहाड़ों से आए मलबे ने कालका शिमला फोर लेन हाईवे पर आवाजाही प्रभावित कर दी है, जिसके चलते लंबा जाम लग गया है। वहीं आज भी हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
0: मानसूनी आफत से हिमाचल प्रदेश में हाहाकार, सड़कों पर सैलाब ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पानी की तेज बहाव में फंसी गाड़ियां। अगस्त का महीना खत्म हो चुका है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मानसूनी आफत का सिलसिला अभी थमा नहीं है। लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड से लोग परेशान हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सोलन की हैं, जहां कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ों से भारी मात्रा में सैलाब उतर आया है। हाईवे पर एक तरफ का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है और दूसरी तरफ गाड़ियां रुक रुक कर चल रही हैं। हाईवे पर मलबा और पत्थर आ जाने की वजह से लंबा जाम लग गया, जिसमें रात भर से कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। वहीं भारी बारिश के चलते सोलन के दूसरे इलाकों की सड़कों पर भारी तादाद में मलबा और बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं, जिससे सड़कों का नामो निशान तक गायब हो गया है। बीते 3 दिनों से परवाड़ू में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते हालात काफी खराब हो गए हैं।
5: यहाँ पे सड़क हुआ करती थी और मतलब यहाँ बहुत कम पानी आता था, लेकिन कुछ टाइम से यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी आने लग गया, जिसकी वजह से आप लोग देखिए लोग चल नहीं पा रहे हैं और पानी देखो मलबा कितना ज्यादा आने लग गया। यहाँ पे जेसीबी ने भी कई बार साफ कर दिया, लेकिन डेली यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सड़क बार बार मतलब खराब हो रही है और सड़क मतलब चल नहीं पा रहे हैं। आपके सामने अभी कल भी यहाँ 1-2 दिन पहले भी यहाँ जेसीबी ने रास्ता साफ करा, फिर यहाँ पे मलबा आ गया।
0: हिमाचल प्रदेश के शिमला, सोलन, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर में भारी बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में 60 सड़कें, 11 बिजली ट्रांसफार्मर और 39 पेयजल योजनाएं प्रभावित रहीं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 4 सितंबर तक बारिश से राहत के आसार नहीं है। 3 सितंबर को कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। सोलन ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी लैंडस्लाइड के चलते हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। लैंडस्लाइड के चलते नेशनल हाईवे 305 पर लंबा जाम लगा रहा। तो साफ है कि हिमाचल प्रदेश में सितंबर का महीना मानसूनी आफत लेकर आया है। सोलन से राजेश शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: तो ये सितंबर का सैलाबी सितम सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं है, मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नदी और बाढ़ ने आफत मचा रखी है। चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सब जगह पानी ने कहर बरपाया हुआ है। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की।

0: पहाड़ों से लेकर मैदान तक मानसून का कहर।
1: रामघाट सहित कई गांव और कस्बे,
0: चित्रकूट से लेकर प्रयागराज तक बाढ़ से बिगड़े हालात। नदियों के उफान ने मचाया हाहाकार। लगातार हो रही बारिश के चलते एक बार फिर यूपी के कई जिलों में बाढ़ से हालात खराब नजर आ रहे हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी ने 23 साल का रिकॉर्ड तोड़कर उफान पर बह रही है। नदी के रौद्र रूप एक बार फिर से तटीय इलाकों में कहर बरपा रही है। लगातार हो रही बारिश से बांध भी ओवरफ्लो है, जिसके बाद बांध के फाटक खोलकर पानी छोड़े जा रहे हैं, जिससे 18 गांव के 10,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। डोडा बांध से छोड़े गए पानी ने टिकरिया गांव के पास बने रपटा को भी बहा दिया। बाढ़ के पानी से घिरे इलाकों में लोगों की मुश्किलें साफ दिखाई दे रही हैं। वहीं प्रशासन भी एक्शन में नजर आ रहा है और प्रभावित गांव में राहत और बचाव का काम चल रहा है।
2: सभी डैम्स को जो है वो खोला जाना आवश्यक हो गया था, क्योंकि वो जो अपनी पूर्ण क्षमता में वो अभी भरे हुए हैं। इस वजह से भी जलस्तर जो है वो नदियों में काफी आगे, जो आगे डाउनस्ट्रीम है उनमें बढ़ा हुआ है। अभी तक लगभग 750 लोगों को, 688 जो है वो हमने 29 तारीख को रेस्क्यू किए थे, और कल की जो बाढ़ थी, कल वाली स्थिति में भी NDRF SDRF सबको मिला के जो है कुल मिला के लगभग 750 लोगों को रेस्क्यू किया गया।
0: बाढ़ का पानी घरों के अंदर तक पहुंच चुका है। घरों में रखा सामान पानी में डूबा है। कहीं दुकानें जलमग्न हैं तो कहीं लोग घर की छत और बारजे पर बैठकर हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। चित्रकूट ही नहीं, यूपी के दूसरे जिले में मानसूनी आफत का सामना कर रहे हैं प्रयागराज, मिर्जापुर और मथुरा तक बारिश और उफनती नदियों ने मुश्किलें बढ़ा दी है। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां गंगा और यमुना का बढ़ता जलस्तर का असर साफ दिखाई दे रहा है। छोटा बघाड़ा, सलोरी और दारागंज के निचले इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है। सड़कें जलमग्न हैं। दशाश्व मेघ घाट के आसपास भी पानी का कब्जा है और कई जगहों पर नावें चलती नजर आ रही हैं।
3: ये बाढ़ की वजह से जो निचले इलाकों में रिहायशी इलाके हैं वहां पर अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हम इस वक्त दारागंज इलाके में हैं। आप देख सकते हैं कि ये सड़क है और ये नागवास की रोड दारागंज की सड़क है, जहां पर ये गंगा का पानी आ गया है। दशाश्वमेध घाट है और यहां पर जो लोगों के तमाम घर हैं इस बाढ़ के पानी में समाते जा रहे हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी चला गया है, लोग दूसरी मंजिलों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं।
0: वही मिर्जापुर में भी लगातार बारिश के बाद विंध्याचल के पटेगरा नाला रेलवे अंडरपास में पानी भर गया। इसी पानी में रोडवेज बस फंस गई, जिसे ट्रैक्टर की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। और अब मथुरा की तस्वीरें देखिए। लगातार बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव है। सड़कें पानी में डूबी नजर आ रही हैं और लोगों के साथ साथ वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। लगातार हो रही बारिश और नदियों के उफान ने यूपी के कई जिलों में परेशानी बढ़ा दी है। वहीं मौसम विभाग ने 6 सितंबर तक यूपी में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की, तो साफ लग रहा है अभी यूपी को बारिश से राहत नहीं दिख रही। चित्रकूट से अखिलेश सोनकर और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और अब बात करते हैं बिहार और बंगाल की, जहां भारी बारिश के चलते हालात खराब होते हुए दिख रहे हैं। नदियों के जल स्तर बढ़ जाने के बाद बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं नदियों से हो रहे कटान ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। इसके साथ पश्चिम बंगाल के आसनसोल और बांकुरा में भी मानसून का कहर लगातार जारी है।

0: ये सारी खबरें हम आपको आगे दिखाएंगे, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: खाना कहाँ से मंगवाया?
7: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
9: जेके वॉल मैक्स।
7: बेस्ट प्राइमर
10: जेके मैक्स।
7: बेस्ट पेंट
10: जेके मैक्स।
7: जेके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
8: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
7: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: ब्रज की भूमि से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पंचायत आज तक मथुरा, 3 सितंबर सिर्फ आज तक पर।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: खाना कहाँ से मंगवाया?
4: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
6: जीके वॉल मैक्स।
4: बेस्ट प्राइमर
7: जीके मैक्स।
4: बेस्ट पेंट
8: जीके मैक्स।
4: जीके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
9: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
4: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: What is the difference between normal cold, allergy and sinus?
4: जो inhalers लोग use करते हैं, that unfortunately becomes a crutch in times of crisis. मैं कोई inhaler ले लूँ, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा. Whereas there is no relationship between the two. Horns and जो traffic noise है, India is a very very loud country. वहाँ से भी कहीं ना कहीं hearing loss होता है. हमने हिंदी में ear wax को मैल कह दिया. वो मैल नहीं है, वो कान को बैक्टीरिया, वायरस, ऐसी चीज़ों से बचा के रखता है. कान में तेल नहीं डालना. इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आप ये नहीं कर सकते.
3: सर, हियरिंग लॉस के अर्ली साइंस क्या होते हैं?
4: द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइन ऑफ अर्ली हियरिंग लॉस विल बी आस्किंग पीपल टू रिपीट. क्या कहा आपने, क्या कहा?

0: 12 बजे वाली ट्रेन 3 बजे चलेगी। तो अब आप यही है संगीत, बाकी लोग एडजस्ट करें।
1: मेरा संगीत माय वे।
2: गन्ना बड़े सियासत में फंसा हुआ इस समय, नहीं
3: गन्ने की वैल्यू बढ़ रही है।
0: हाँ,
3: सड़क से उठा के स्टार बना दिया है।
4: यही है था, कभी हमने अन्ना को बनाया, कभी गन्ने को बनाया।
1: गन्ने को हल्के में लेते थे, आज गन्ना ज़्यादा बताओ, सबको जूस निकाल दिया भाई।
2: फलकों ने बोला कि तुम आर्मी वगैरह ज्वाइन करो, उसकी माँ ने कल बोला कि तो ऑफिसर वगैरह बन जाओ, तो उसने कहा क्यों बन जाए, उसने कहा अच्छा लगेगा हमको, मेरा शौक है, अरमान है। उसने मेरा भी अरमान था कि मेरे माता पिता मतलब पिताजी और मम्मी जो है वो ऑफिसर होते हैं, बने कि आप लोग, हम कह रहे तेरे पैदा होने से पहले अपन पैदा हुए थे। तो मैंने कहा तू आर्मी कमांडो वगैरह बन, मैंने ब्लैक कैट कमांडो सब बनते हैं, तो ब्लैक डॉग कमांडो बन जाए।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: 12 बजे वाली ट्रेन 3 बजे चलेगी। तो आप यही है संगीत, बाकी लोग एडजस्ट करें।
1: मेरा संगीत माई वे।
2: गन्ना बड़े सियासत में फंसा हुआ इस समय, नहीं
3: गन्ने की वैल्यू बढ़ गई है, सड़क से उठा के स्टार बना दिया।
4: यही है था, कभी हमने अन्ना को बनाया, कभी गन्ने को बनाया।
1: गन्ने को हल्के में लेते थे, गन्ना ज्यादा बताओ, सबको जूस निकाल दिया भाई।
2: पलक को मैंने बोला कि तुम आर्मी वगैरह ज्वाइन करो, उसकी माँ ने कल बोला कि तो ऑफिसर वगैरह बन जाओ, तो उसने कहा क्यों बन जाए, उसने कहा अच्छा लगेगा हमको, मेरा शौक है, अरमान है। उसने मेरा भी अरमान था कि मेरे माता पिता मतलब पिताजी और मम्मी जो है वो ऑफिसर होते हैं, बने कि आप लोग, हम कह रहे हैं तेरे पैदा होने से पहले अपन पैदा हुए थे। तो मैंने कहा तू आर्मी कमांडो वगैरह बन, मैंने ब्लैक कैट कमांडो सब बनते हैं, तो ब्लैक डॉग कमांडो बन जाए।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर, पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: मार्शल जितेंद्र मिश्र ने कहा, श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया के गांव में जश्न, गोविंद गिरी बने महासचिव, 3 नए ट्रस्टी भी शामिल।
1: ब्रज की जमीन पर यूपी चुनाव का सबसे बड़ा मंच, पंचायत आज तक मथुरा में सीएम डिप्टी सीएम समेत सियासत के सभी दिग्गज। गन्ना मंत्री बोले, किसानों के हित में काम कर रही है सरकार।
0: शामली के अंकित बालियान हत्याकांड में फरार शूटर्स का सुराग देने पर अब एक लाख रुपए का इनाम। सिंगर की कार में ट्रैकिंग डिवाइस लगाने वाले सत्यम और दूसरे कातिल आर्यन की तलाश।
1: बिहार से उत्तराखंड तक गंगा मंदाकिनी समेत कई नदियों में जबरदस्त तूफान, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और भारी बारिश के चलते हुई 7 लोगों की मौत। वाराणसी में के हालात पर पीएम ने मेयर और डीएम से की बात।
0: पाकिस्तान में 125 साल पुराना हिंदू मंदिर तोड़े जाने पर भारत का रुख सख्त, कहा मंदिर को नुकसान पहुंचाने वालों पर फौरन एक्शन। हिंदुओं की धार्मिक सुरक्षा सुनिश्चित करे पाकिस्तान।

0: स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बात।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। बाढ़ के हालात के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के डीएम से सीधा बात की है। वहां पर जिस तरह के हालात पिछले कुछ दिनों में नजर आ रहे हैं भारी बारिश की वजह से, उसके बाद वाराणसी के मेयर और डीएम से बात की गई है।
0: हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, वार्ता में जाहिर तौर पर पीएम ने जानने की कोशिश की होगी कि आखिरकार बचाव और राहत के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं।
2: देखिए, बिल्कुल, बचाव और राहत के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ने ये भी पूछा कि आप इस चीज को लेकर ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि जो आम नागरिक है उसको जो है जो असुविधा है उसका ज्यादा मतलब उसका कम से कम सामना करना पड़े, और इसके लिए जो भी आपको करना हो वो उचित कदम जो है वो उठाए जाए। और एक सांसद के तौर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सजग है, और वो जो भी सिचुएशन बनी है वाराणसी में बाढ़ के हालात के कारण उस पर उनकी नजर भी है और लगातार वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, वहां से लगातार फीडबैक ले रहे हैं, और आज उन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शन देने थे वो दिए हैं, और जो कार्य किए गए हैं उनको लेकर और आगे भविष्य में किस तरीके के कदम जो है उठाए जाएंगे उसकी भी पूरी जानकारी जो है वो अधिकारी से लिया।
1: जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रुक करते हैं शतक आज तक का।

हरियाणा के यमुनानगर में जिम के बाहर ट्रांसपोर्टर की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने 10 से ज्यादा राउंड किए फायर। घटना के बाद शहर में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू। वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की कई टीमें। सीसीटीवी कैमरों में तलाश जा रहे हैं हमलावरों के सुराग। दिल्ली में जिम के बाहर गोली मारकर शख्स की हत्या। सोनीपत के प्रॉपर्टी डीलर को कई दिनों से आ रहे थे रंगदारी के कॉल। फिलहाल हत्या के कारणों का नहीं पता चला। कानपुर में घर के बाहर युवक की गोली मारकर हत्या। पंचायत चुनाव की रंजिश में वारदात। बदमाशों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। चाचा पर भी किया था जानलेवा हमला। मृतक के घर वालों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस ने पुरानी रंजिश का दिया हवाला।

0: अयोध्या के श्रीराम मंदिर में सीईओ सहित नई नियुक्तियों के साथ 6 साल पुराना सिस्टम लेगा नया रूप, बदलेगा मंदिर के संचालन का पूरा मॉडल। राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की नकद राशि की गिनती अब मशीनों से कराने की तैयारी, 2 बैंकों और IIT के विशेषज्ञों से प्रस्ताव लिए गए। शामली के अंकित बालियान हत्याकांड में फायर, दोनों शूटरों पर इनामी राशि बढ़कर हुई 1-1 लाख रुपए। दिल्ली समेत 5 राज्यों में दबिश। अंकित बालियान की कार में ट्रैकिंग डिवाइस लगाने वाले सत्यम और दूसरे कातिल आर्यन की तलाश तेज। अंकित बालियान हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर राकेश पंपू को एनकाउंटर का डर, DGP को पत्र लिखकर लगाई सुरक्षा की गुहार।
1: इंदौर में 12 के बदले अब 19 सितंबर से होगा राहुल का कार्यक्रम, छात्रों की गूंज, कांग्रेस का आरोप, प्रशासन नहीं दी स्टेडियम की इजाजत, प्रदर्शन की चेतावनी। दिल्ली के नॉर्थ प्लेस में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी आरएसएस की मनुवादी सोच के खिलाफ लगाए नारे। यूथ कांग्रेस से बांटे, मनुवादी सोच कहां मिलेगी, बीजेपी के दफ्तर में लिखे पर्चे, जातिवाद के खिलाफ संघर्ष का किया ऐलान। नासिक में राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर हमला, बोले हाथ पैर टूट जाएं फिर भी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के अहम मुद्दों पर राहुल से चर्चा, एसआर से 2.06 करोड़ मतदाताओं के नाम हटे, किसान आत्महत्या और कुंभ बजट का मुद्दा उठा। मनोज जरांगे के समर्थन में जोरदार नारेबाजी, मांगे जल्द पूरी करने की मांग, हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतार। दिल्ली एसआर के ड्राफ्ट में 47 लाख नाम कटने पर बीजेपी का मंथन, प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, सभी 7 सांसदों की बैठक, ग्राउंड पर लोगों की मदद का निर्देश। दिल्ली एम्स में 14 साल दिल की सर्जरी के लिए इंतजार करते करते लड़की की मौत, 2012 में हृदय की जन्मजात बीमारी से पीड़ित बेटी की सर्जरी के लिए एम्स का चक्कर काट रहे थे माता पिता। हथनीकुंड आर्मी बोट हादसा, 24 घंटे बाद यमुना में लापता, 2 जवानों की तलाश तेज, बहाव के बावजूद 1.5 घंटे बंद रखे गए नहर के गेट। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर ब्रिज को सीएम योगी देंगे 970 करोड़ की सौगात, 57 परियोजनाओं का लोकार्पण और 167 परियोजनाओं का शिलान्यास।
0: पंजाब में चल रहे SIR अभियान के दौरान सांसद राघव चड्ढा का नाम पंजाब की ड्राफ्ट फोटो लिस्ट से कटा, नाम के आगे परमानेंटली शिफ्टेड लिखा गया। राघव चड्ढा 12 सितंबर 2026 तक अपना नाम काटे जाने पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और दोबारा नाम ऐड करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में एक बिल्डिंग में तोड़फोड़ को लेकर गरमाई सियासत, TMC सांसद अभिषेक बैनर्जी ने CCTV वीडियो जारी कर बीजेपी पर बोला हमला। अभिषेक बैनर्जी ने प्रशासन पर भी उठाए सवाल, आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और पूरे मामले की जांच की मांग। पाकिस्तान का F-16 गिराने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान की नई पारी, अब वो प्राइवेट एयरलाइन फ्लाई 91 से जुड़े। नेपाल में तबाही का आंकड़ा बढ़ा, मृतकों की संख्या 1200 के पार पहुंची, 4875 लोग लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक करीब 12,000 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, सेना के हेलीकॉप्टर तैनात, पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद और घायलों का मुफ्त इलाज। PM बालेंद्र शाह ने जलवायु परिवर्तन से जोड़ा हादसा, भारी बारिश से रेस्क्यू अभियान प्रभावित, 400 मेगावाट बिजली उत्पादन भी बाधित। नेपाल में मुतिकाशी बाढ़ से तबाही, PM बालेंद्र शाह बोले दृढ़ संकल्प और साहस के साथ संकट से लड़ना होगा। नेपाल में भारी बारिश का असर, नदियों का जलस्तर बढ़ने से बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ा।
1: पटना में गंगा नदी का रौद्र रूप, सभी घाट जलमग्न, सुरक्षा के मद्देनजर घाटों पर NDRF SSB तैनात। गंगा का बड़ा जलस्तर, घाटों से सटी सड़कों पर पहुंचा बाढ़ का पानी, प्रशासन अलर्ट मोड में। बिहार के वैशाली जिले में गंडक नदी उफान पर, खतरे के निशान से 51 सेंटीमीटर ऊपर, प्रशासन अलर्ट। बिहार में गंगा गंडक नदी का कहर, हाजीपुर में बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में करीब 1700 घरों में घुसा पानी। चित्रकूट में बरसाती नाले का कहर तेज, बहाव में बहकर महिला की मौत, 24 घंटे बाद मिला शव। चंदौली में बारिश, लबालब हुए डैम और जलाशय, क्षमता से ज्यादा भरा पानी, हजारों क्यूसेक पानी रिलीज किया जा रहा है। देहरादून में तेज बारिश का कहर, नाले में बही क्रेटा कार, श्रीगंगानगर की युवती समेत 2 की मौत। हिमाचल के सोलन में भारी बारिश, कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर आया सैलाब, कई वाहन फंसे। बांदा में लगातार बारिश से हालात बिगड़े, चारों तरफ जलभराव, कच्ची दीवार गिरने से 2 महिलाओं की मौत, जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बिहार के मुंगेर में गंगा नदी उफान पर, नौवागढ़ी में तेज कटाव से दहशत, 3,000 की आबादी प्रभावित।
0: कौशाम्बी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत जबकि 4 घायल। बिहार के मधेपुरा में मार्केट में लगी भीषण आग, 16 दुकानें जलकर राख, करोड़ों के नुकसान का अनुमान। एमपी के रीवा में भीषण सड़क हादसा, बस ट्रक की आमने सामने टक्कर में 5 की मौत, 13 घायल। दरभंगा में युवक की संदिग्ध मौत, चेहरे पर चाकू के निशान, हत्या की आशंका पर ग्रामीणों का हंगामा। बगहा में उप मुखिया और वार्ड पार्षद को अपराधियों ने मारी गोली, दोनों की हालत गंभीर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कोयले से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। बरेली में इमाम बाड़े पर चला नगर निगम का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत के बाद कार्रवाई। नगर आयुक्त ने बताया कि इस अवैध कब्जे को लेकर IGRS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, इसके बाद कार्रवाई की गई। लखनऊ में लिव इन पार्टनर की गला घोटकर हत्या, शव नहर में फेंकने पहुंचा था आरोपी, गिरफ्तार। सूरत में बीजेपी युवा नेता जय दलाल हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार, महाराष्ट्र में पकड़ा गया आरोपी।
1: देहरादून में तेज रफ्तार का कहर, कई वाहनों को टक्कर मारकर सब्जी की दुकान में घुसी कार। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु से खुदकुशी की नियत से युवक ने लगाई छलांग, SDRF ने मौके पर बचाया, वीडियो हुआ वायरल। पलसार में दमन ब्रिज से मां बेटे ने समुद्र में लगाई छलांग, स्थानीय मछुआरों ने देवदूत बनकर बचाई जान। सूरत में प्रॉपर्टी डीलर की 10 लाख की सवारी देकर हत्या मामले में 4 शूटर गिरफ्तार, मुख्य साजिशकर्ता फरार। पटना में करोड़ों की विदेशी शराब जब्त, 6 शराब तस्कर गिरफ्तार। कल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-5 लॉन्च करेगा इसरो, आपदा प्रबंधन, मौसम की निगरानी और रणनीतिक सुरक्षा होगी बेहतर। GSLV-S17 मिशन से पहले भगवान वेंकटेश्वर के दरबार पहुंचे इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन, विधि विधान से पूजा कर EOS-5 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की कामना। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी तकनीक से बने लॉन्ग रेंज गाइडेड बम खगंतक 243 का किया सफल परीक्षण। केदारनाथ धाम के लिए 15 सितंबर से फिर शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, 7 सितंबर से श्रद्धालु कर सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग। भोपाल में 7 दिवसीय रासलीला समारोह आयोजित, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल।
0: वेब सीरीज की जबरदस्त सफलता के बाद कल रिलीज होगी मिर्जापुर द मूवी, जिसमें कालीन भैया, गुड्डू भैया और मुन्ना भैया का जलवा देखने को मिलेगा। कल बॉक्स ऑफिस पर अरशद वारसी और संजीदा शेख की डार्क कॉमेडी थ्रिलर जीवन बीमा योजना भी दस्तक दे रही है, अरशद वारसी पहली बार डबल रोल में नजर आए। तापसी पन्नू की फिल्म गांधारी आज OTT पर आ रही है, फिल्म में इश्फाक छाया कदम और स्वास्तिका मुखर्जी भी हैं। फिल्म गांधारी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए कल अजय देवगन की धमाल 4 नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी, इसमें अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा समेत कई अन्य सितारे हैं। कल से एक बार फिर लौट रहा है लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस, इस शो का 20वां सीजन कल से जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगा। प्राल खेमू की दूसरी निर्देशित फिल्म वाइब का ट्रेलर रिलीज, इस फिल्म में कुणाल, प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव, वंशिका धीर और अन्य कलाकार शामिल। रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 की रिलीज डेट आई सामने, 15 अक्टूबर को दशहरा के दौरान सिनेमाघरों में देगी दस्तक। शैतान और रेड 2 की सफलता के बाद देवगन फिल्म्स और पैनोरामा स्टूडियोज ने नई हॉरर थ्रिलर फिल्म पर शुरू किया है काम, रोहित जुगराज के निर्देशन में शूटिंग शुरू। कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार किच्चा सुदीप के जन्मदिन पर फैंस को मिला एक बड़ा सरप्राइज, उनकी भव्य ऐतिहासिक फिल्म देवराया की हुई आधिकारिक घोषणा। रवीना परिणीति के बाद मालामाल वीकली 2 में ईशा देओल की हुई एंट्री, जल्द ही फ्लोर पर आएगी ये फिल्म।
1: अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में गोलीबारी में 2 की मौत, शूटर मारा गया, घटना में 3 पुलिस अधिकारी घायल, जिनमें 2 को गोली लगी है लेकिन 3 की हालत स्थिर। गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने लोगों को इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी। एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल ने भी घटना पर दी प्रतिक्रिया। पीएम मोदी ईरान के राष्ट्रपति की मुलाकात पर अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा उन्हें नहीं लगता कि भारत और ईरान के बीच किसी ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई देश ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में मदद करेगा तो अमेरिका उस देश पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरानी संसद के स्पीकर का बड़ा बयान, कहा अमेरिका के सहयोगी देश भी अब मानते हैं कि वॉशिंगटन असुरक्षा की वजह है। ट्रंप ने फिर किया हॉर्मुज पर अधिकार होने का दावा, यह भी कह दिया कि पाबंदी और हमलों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकेबंदी जारी, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी सेना 86 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदल चुकी है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने यमन के ताइज और होदेदा में 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 100 साल से ज्यादा पुराने हिंदू मंदिर को गिराए जाने की निंदा की। घटना की पारदर्शी जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग।

0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अंकित बालियान हत्याकांड मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें शूटर्स दिखाई दे रहे हैं। फरार शूटर्स के सिम कार्ड खरीदने का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। डोगी गैंग के नामी शूटर्स आर्यन सिंधु सत्यम कादियान का ये वीडियो है।
1: करनाल में दोनों शूटर्स के सिम कार्ड खरीदने का ये वीडियो सामने आया है। शूटर्स ने मोबाइल शॉप में जाकर ये सिम कार्ड खरीदा और दुकानदार से सिम को एक्टिवेट भी कराया और ये सब कुछ सीसीटीवी पर कैद हो गया। अंकित के मर्डर से सिर्फ 3.25 घंटे पहले ही खरीदा गया था ये नया सिम कार्ड।
0: और सिम खरीदते वक्त आधार से लेकर फोटो खिंचाने तक का घटनाक्रम है। शामली में अंकित बालियान के मर्डर के बाद रात 10 बजे तकरीबन ये सिम एक्टिव थे।
1: सिम और फोन बंद होने के बाद से आर्यन और सत्यम का कोई सुराग नहीं है। आर्यन सिंधु और सत्यम कादियान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल भी डीएक्टिवेट कर दिए हैं।
0: आर्यन और सत्यम पर अब 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। शूटर मोहित और सुमित के बैकअप के लिए आर्यन और सत्यम दोनों मौके पर मौजूद थे। चारों शूटर्स के लौटते हुए तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिनको पुलिस ने अब जब्त कर लिया है।
1: तो आइए सीधा रुक करते हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव का। आशीष, वीडियो अब हम दिखा रहे हैं जिसमें सिम कार्ड खरीदने के लिए पहुंचे शूटर्स, जरा बताएं इसको डिस्क्राइब करें और किस तरीके से ये मदद कर सकता है अब इन्वेस्टिगेशन में।
2: देखिए, आर्यन और सिंधु और सत्यम ये जिस तरीके से शूटर सिम कार्ड खरीदते हैं, इस पूरी पे अंकित बलियान वाले पूरे मामले पर जिस तरीके से वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और ये सीसीटीवी एक अहम तरीके से सबूत भी है कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन शूटरों ने तैयारी की। हालांकि भले ही एसटीएफ ने इसको पूरे तरीके से चैलेंज लिया और उसके बाद सिम कार्ड खरीदने के बाद इस तरीके से उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई, जो शूटर्स थे वो तैयार हुए, एनकाउंटर भी हुआ, लेकिन जिस तरीके से मास्टरमाइंड इसके पीछे है एसटीएफ अभी भी तलाश कर रही थी। और अब ऐसे में सत्यम और आर्यन का जिस तरीके से सामने आया है वो जरूर ये दिखाता है कि एक बड़ी प्लानिंग थी जिसको लेकर इस तरीके की पूरी संरचना रची गई, क्योंकि पुलिस जो है एसटीएफ है भारत से लेकर कनाडा तक पूरी जांच कर रही है कि आखिर इसमें कौन कौन से गैंग शामिल है, क्योंकि बोगी गैंग और जिस तरीके से जयप्रिया गैंग दोनों के बीच की बात सामने, उसमें से किन किन लोगों को प्रयोग किया गया ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए ये सीसीटीवी और सिम खरीदना कहीं ना कहीं ये वो दिखाता है कि किस तरीके से पूरी रणनीति तैयार की गई थी और उसी को लेकर ये पूरी पटकथा लिखी गई है, जिसमें अब एक एक करके अब पुलिस भी आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं कार्रवाई की बात भी कही जा रही है नया। और इस वजह से भी माना जा रहा है, क्योंकि पुलिस के लिए एसटीएफ के लिए एक बड़ा चैलेंज है ये उत्तर प्रदेश में घुसकर एक तरीके से हत्या करना और उसके बाद हत्या करके फरार हो जाना, तो पुलिस भी उसको चैलेंज के तौर पर देख रही है और इसी वजह से चाहे वो सीसीटीवी हो।
0: आशीष जी बताइए कि अगर 10 बजे तक रात में ये सिम एक्टिव थे तो लास्ट लोकेशन इन दोनों की क्या ट्रेस हुई है?
2: देखिए, जो सिम और इंस्टाग्राम से बात कही गई है वो पुलिस ने जरूर जो कॉल डिटेल है सर्विलांस पे लगाने के बाद उसकी डिटेल निकाली है और कहीं ना कहीं इसको लेकर भी पुलिस अपनी तफ्तीश को जारी कर रही है कि जिस तरीके से सिम ऑन हुए, जिस तरीके से फोन में डाले गए, जिस तरीके से बातचीत की गई, उन सभी की एक सर्विलांस रिपोर्ट इंटेलिजेंस से ली गई है, लोकल इंटेलिजेंस से भी ली गई है और उसी को पुलिस साबित कर रही है। यानी कि ये जरूर शामिल हुआ, क्या बातचीत हुई पुलिस के पास इसकी भी पुख्ता जानकारी है और उसी को लेकर अब आगे बढ़ रही है कि किस तरीके से इन्होंने इंस्टाग्राम पर पहले वीडियो शेयर करते हैं, उसके बाद पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आगे आते हैं अंकित बलियान की हत्या में, तो ये पूरे गैंग को नेस्तनाबूद करने के लिए भी आगे बढ़ रही है और ये सबूत भी अहम हो जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसा गैंग एक्टिव है जो यूपी में घुसकर हत्या करने के लिए पुलिस को और एसटीएफ को चैलेंज करता है। जी,
1: शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो आपको ये तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं और इसमें जो पहली तस्वीर है ये नए सीसीटीवी की नई फुटेज है जो अब पुलिस को हाथ लगी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल बेखौफ होकर जो आरोपी हैं वो जाते हैं एक दुकान के अंदर, नया सिम खरीदते हैं, उसे एक्टिवेट भी कराते हैं, अपना आधार कार्ड शेयर करते हैं, यानी कि खुलेआम सब कुछ वो करते हैं और उसके बाद अंजाम देते हैं इस वारदात को।
0: और अब बात पाकिस्तान की, जहां पर 100 साल से ज्यादा पुराना हिंदू मंदिर को गिराए जाने पर अब भारत ने कड़ा विरोध दिखाया है। नरोवाल में सिराज गांव में मंदिर गिराए जाने को लेकर भारत ने पाकिस्तान से तत्काल और पारदर्शी जांच की मांग की है, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई और मंदिर को दोबारा बनाने की बात कही है।
1: भारत ने साफ कह दिया है कि एक सदी पुराने अल्पसंख्यक धार्मिक स्थल की सुरक्षा में पाकिस्तानी प्रशासन की नाकामी बेहद चिंताजनक है और यह घटना पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।
0: तो मंदिर तोड़े जाने की खबर के बाद भारत में विरोध तेज है। जम्मू में राष्ट्र बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की है और मंदिर तोड़े जाने की कड़ी निंदा की है।
1: दरअसल पाकिस्तान के पंजाब में करीब 100 से 125 साल पुराना मंदिर 21 अगस्त को गिराया गया था। स्थानीय लोगों और अल्पसंख्यक संगठनों का आरोप है कि मंदिर की जमीन को पास के मदरसे में शामिल करने के लिए उसे गिराया गया, जबकि पाकिस्तान का सरकारी पक्ष ये है कि भारी बारिश की वजह से मंदिर ढह गया।
3: पाकिस्तान में आज एक 100 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया है। उस मंदिर को तोड़ा है जिहादियों ने। 2 महीने पहले 150 साल पुराने एक गुरुद्वारे को भी तोड़ा गया था, वहां भी मदरसा बनाया जाना है। हिंदू सिख दोनों का जीना मुश्किल हो गया है। हम अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से अपील करते हैं वो पाकिस्तान की सरकार पर दबाव बनाए और वहां हिंदू और सिख को स्वाभिमान पूर्ण जिंदगी जीने का मौका दे।
1: तो आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में एक मंदिर तोड़ा गया, जिसके बाद से भारत ने अपनी आपत्ति जाहिर की है। दरअसल ये पहली बार नहीं हुआ है कि एक मंदिर को क्षति हुई हो, तो अल्पसंख्यकों की स्थिति जो है उसे लेकर भारत वहां पर सवाल उठा रहा है और अब आरएसएस ने भी अपना विरोध प्रदर्शन किया है।
0: यही वो 100 साल पुराना मंदिर है जिसे पाकिस्तान में तोड़ा गया, उसके बाद बस अब जर्जर अवशेष इस मंदिर के बचे हैं। इसी को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा अब भारत में लोग जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान हार है के नारे लगाए जा रहे हैं, पुतला दहन किया जा रहा है, वहां के प्रधानमंत्री की तस्वीरें जलाई जा रही हैं और ये दिखाता है कि इस तरह से मंदिर तोड़े जाने को लेकर भारत में कितना गुस्सा है।
1: जो जताई गई है वो महज इस तरह के विरोध प्रदर्शन के जरिए नहीं है, बल्कि भारत ने आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई है। भारत ने सरकार से पाकिस्तान की कहा है कि आपको सुनिश्चित करना होगा जो आपके यहाँ अल्पसंख्यक रहते हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं, उनकी सुरक्षा बनी रहे, क्योंकि सवाल बार बार उठ रहा है। और अब रुक करते हैं जलंधर का, जहां से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जलंधर के बस्ती की मैट्रेस फैक्ट्री में आग लग गई है। घटना के वक्त 30 कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे। यह हादसा सुबह 9 बजे हुआ। अचानक लोगों ने धुआं उठता हुआ देखा और फायर ब्रिगेड को सूचना दी।
0: कई कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। आप देख सकते हैं कितनी भीषण ये आग है, दूर तक इसका धुआं और आग की लपटें देखी जा सकती हैं और जिस तरीके से ये आग लगी है माना जा रहा है कि पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो चुकी है।
1: तो मैट्रेस फैक्ट्री थी, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ वहां पर रॉ मटेरियल काफी रहा होगा, ऐसे में आग पहले क्यों पनपी, फिर उसके बाद किस तरीके से फैली, ये सब सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन स्थिति कैसी है, जो लोग वहां पर काम कर रहे थे वो कैसे हैं, सब पर हम आपके लिए आगे अपडेट लाते रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से आग की लपटें निकल रही हैं और काले धुएं का गुबार।
0: वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का, उछला टिकते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
7: आगे आगे,
8: अरे उधर,
7: करेक्ट करेक्ट,
9: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
4: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: In association with
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
4: ब्रज की भूमि से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पंचायत आज तक मथुरा, 3 सितंबर सिर्फ आज तक पर।

0: विमुद्रीकरण मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी, कहा 24 दिन बाद भी नहीं हुआ कोई एक्शन, जल्द एफआईआर दर्ज करने की मांग।
1: गंगा की उफनती लहरों से पैदा हुए बाढ़ के हालात पर पीएम मोदी ने वाराणसी के मेयर और डीएमसी की बात, राहत में मुस्तैदी का निर्देश, उत्तराखंड से बिहार तक नदियां खतरे के निशान से ऊपर।
0: राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ बनते रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने कहा, श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम, देवरिया के गांव में जश्न, गोविंदगिरी बने महासचिव, 3 नए ट्रस्टी शामिल।
1: ब्रज की जमीन पर यूपी चुनाव का सबसे बड़ा मंच, पंचायत आज तक मथुरा में, सीएम डिप्टी सीएम समेत सियासत के सभी दिग्गज, गन्ना मंत्री बोले किसानों के हित में काम कर रही है सरकार।
0: अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल शूटर्स का नया वीडियो आया सामने, मर्डर से 3 घंटे पहले मोबाइल शॉप से सिम कार्ड खरीदते दिखे, यूपी पुलिस ने 2 शूटर्स पर रखा है 1-1 लाख का इनाम।

0: अयोध्या में राम मंदिर को नया सीईओ मिल चुका है। करीब 5500 आवेदन में से एक चयन समिति ने नाम पर मोहर लगाई, वो नाम था पूर्व मार्शल जितेंद्र मिश्रा का।
1: जितेंद्र मिश्रा का नाम किसी पर्चे का मोहताज नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके योगदान को देश खुद देख चुका है। अब राम मंदिर के सीईओ के तौर पर उनके प्रबंधन कौशल की परीक्षा है। राम मंदिर हाल के दिनों में चंदा चोरी को लेकर सुर्खियों में रहा है। अब जितेंद्र मिश्रा पर जिम्मेदारी है कि वो राम मंदिर के प्रबंधन को उन ऊंचाइयों तक लेकर जाएं जहां राम भक्तों की जहन से चंदा चोरी की यादें मिट सकें।

0: चयन समिति का बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि उन्होंने इतने सब कैंडिडेट्स में से मेरा चयन किया है। इसे मैं श्री राम का आशीर्वाद भी मानूंगा कि 43 वर्ष राष्ट्र सेवा के बाद भारतीय वायुसेना में मुझे श्री राम ने एक और अवसर प्रदान किया है जहां पर मैं श्री राम मंदिर और श्री राम भक्तों की सेवा कर पाऊं।
1: मिलिए राम मंदिर के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र से, जिनके नेतृत्व में वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मन को सबक सिखाया था।
2: We have gone 100 kilometers inside the international border, which is Bahawalpur, 75 to 80 kilometers Murid ke, without unnecessary ruffling international feather.
1: जी हाँ, ये वही जितेंद्र मिश्रा हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी कमांड को लीड करने वाली महिला पायलटों को आतंक पर वार करने के लिए चुना और कामयाबी का नया अध्याय लिखा।
2: As the commander in chief, squadron leader Singh, or squadron leader Sharma, or air marshal Mishra, I don't look at the gender.
3: Right.
2: Like I said, when you select the pilots, it is the training that they have gone through, their experience, and most importantly, their performance in earlier gunnery exercises.
1: S-400 को निशाना बनाने की पाकिस्तानी चाल को नाकाम करने वाले ये वही पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा हैं, जिन पर अब अयोध्या से राम मंदिर का प्रबंधन संभालने की बड़ी जिम्मेदारी है।
2: They were desperate to find where this S-400, like you asked me, where did you fire it from? The Pakistanis were desperate to find out where they employed all the tricks in the book. I'm very sure they were getting satellite help from other nations. I don't want to use the name of the country. They were using air intelligence. They were using these EW systems to find out because that was the biggest threat as far as they were concerned. Every time they got airmen, they got shot by an S-400. They had deployed spies within our country, activated their sleeper cell within our country to find out where the S-400 was.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी 13 मई को आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे, तो उनका स्वागत तत्कालीन वेस्टर्न एयर कमांड का नेतृत्व कर रहे एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने ही किया था।
2: I had just asked him, can I travel with you in your vehicle? He just did not take a microsecond. Yes, he said yes, of course, why not? So for next 1.5 hours, I'm fortunate to have had the company of probably the bestest leader of the nation that we've had till.
1: आप जानना चाहेंगे कि कौन है ये जितेंद्र मिश्र जिन्हें राम मंदिर के पहले सीईओ बनने का अवसर दिया गया है। जितेंद्र मिश्र का परिचय जानने के लिए उनके नाम, सम्मानों और पुरस्कारों की लंबी फेहरिस्त को जानना जरूरी है। जितेंद्र मिश्रा को 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, 2024 में अति विशिष्ट सेवा मेडल, 2013 में विशिष्ट सेवा मेडल और शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। ये सम्मान सबूत है कि जितेंद्र मिश्रा की शख्सियत कितनी बड़ी है। शायद यही वजह है कि एक दिन पहले राम मंदिर के नए सीईओ के तौर पर मीडिया में 3 नामों की जबरदस्त चर्चा थी। पूर्व आईपीएस राजेश पांडे, बिहार कैडर के आईपीएस डॉक्टर परेश सक्सेना, आईएएस दिनेश सिंह। इन 3 नामों में से एक नाम राम मंदिर के पहले सीईओ के लिए तय माना जा रहा था, लेकिन ऐलान हुआ जितेंद्र मिश्रा के नाम का, जो 43 साल वायुसेना में रहे, जो ऑपरेशन सिंदूर के हीरो रहे, जिनकी छवि पर कोई सवाल नहीं, जिनकी देशभक्ति संदेह से परे है, जिन्हें अनुशासन का लंबा अनुभव है, जो कड़े फैसले लेने में पूरी तरह सक्षम है।
0: चयन समिति का प्रोसीजर था वो मेरे ख्याल से इंटरनेट पे मीडिया में उन्होंने प्रसारित किया था और उनका प्रोसीजर, टाइमलाइंस, ये बार बार टीवी में आता रहा है, तो इस विषय में मेरे ख्याल से चयन समिति ही बताएंगे कि फिर क्या प्रोसीजर था और क्या ठीक था। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे सामर्थ्य दें कि मैं इस कार्य को अच्छी तरह से, भली भांति रूप से कर पाऊं। मैं अभी बीते समय की नहीं, आगे आने वाले समय की बात ज्यादा करना चाहूंगा। आप बीते समय को भूल जाएं और आगे समय में प्रभु राम की कृपा से हम बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कार्य को कर पाएंगे। देखिए, अभी कुछ समय पहले ही मेरा प्रथम सीईओ के रूप में चयन हुआ है और मुझे नहीं लगता कि इस समय में यह सवाल प्रासंगिक है। मैं जब एक बार सीईओ के रूप में टेक ओवर कर लूँगा तो ट्रस्ट के विश्वास से और अपनी टीम की मदद से जो भी उत्तम से उत्तम कार्य होगा राम मंदिर के लिए, वो मैं करने का पूरा प्रयत्न करूँगा और श्री राम से ये प्रार्थना करूँगा कि मुझे इसके लिए भरपूर सामर्थ्य प्रदान करें।
1: युद्ध के मैदान में जितेंद्र मिश्रा ने पराक्रम और साहस के कई अध्याय लिखे, लेकिन अब उनके सामने नई जंग है, नई चुनौती है, नया मिशन है, और वो है राम मंदिर के प्रबंधन को नई ऊंचाइयां देने का, चंदा चोरी के दाग को धोते हुए राम भक्तों का विश्वास दोबारा कायम करने का। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
3: एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें नवनिर्वाचित सीईओ अयोध्या पहुंचे हैं, वहां पर अब उनका स्वागत किया जा रहा है। देखिए नए कप्तान जो एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया के बाद नियुक्त किए गए हैं, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र रिटायर्ड, इनकी अहम भूमिका ऑपरेशन सिंदूर में इसके हीरो रहे और कई सर्वोच्च पदक सम्मान से ये सम्मानित हो चुके हैं। 2013 विशिष्ट सेवा मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया।
4: हमारे सहयोगी समर्थ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, तो समर्थ वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं किया है, नए सीईओ ने पहुंच गए अयोध्या।
5: अंजलि देखिए कल से इस बात की चर्चा थी कि जब ये पद मिला है उसके बाद कितनी जल्दी ट्रस्ट से मिलेंगे, और जब कल आज तक से बातचीत हुई तो उन्होंने सीधा यही कहा कि वो बस ट्रस्ट से समय ले रहे हैं और जैसे ही ट्रस्ट से समय मिलता है वो सीधा अयोध्या पहुंचेंगे और ट्रस्ट से मुलाकात करेंगे और अयोध्या पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो कुल मिलाकर बातचीत हुई है, क्योंकि जो महामंत्री हैं नए यानी कि गोविंद देव गिरी, वो दो दिन अयोध्या में हैं, आज और कल, उसके बाद वो अयोध्या से निकल जाएंगे। तो अंदेशा यही लगाया जा रहा था कि आज और कल में ही मुलाकात हो जाएगी और पदभार ग्रहण हो जाएगा। तो आज जैसा कि एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं अयोध्या से, डायरेक्टली दिल्ली की फ्लाइट ली उन्होंने, दिल्ली से अयोध्या वो पहुंचे हैं वाया फ्लाइट, और वो सीधे जा रहे हैं तीर्थ क्षेत्र भवन जहां गोविंद देव गिरी जो है नए महामंत्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, उनसे मुलाकात करने वाले हैं। एक आधिकारिक तौर पर जो पदभार ग्रहण की प्रक्रिया होती है वो होगी और उसके बाद वो अपना वक्तव्य भी रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहानी है कि एक ऐसे व्यक्ति को ये पद दिया गया है जिसने कहीं ना कहीं देश सेवा की है, बड़े बड़े ऑपरेशंस में रहे हैं, ऑपरेशन सफेद सागर हो चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, तो एक नई जिम्मेदारी है। उनका साफ कहना है कि अभी तक उन्होंने देश की सेवा की है, अब उन्हें राम सेवा का अवसर मिला है और इस अवसर को वो जाने नहीं देंगे। हालांकि जो प्रकरण हुआ है उसको लेकर उनका वक्तव्य साफ है, वो ये कहते हैं इतिहास को भुला देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो जिस तरीके से अयोध्या आगमन उनका हुआ है ये बड़ी बात है कि उन्होंने बिना समय बर्बाद किए, देखिए कल ही शाम को लगभग 5-6 के बीच में आधिकारिक घोषणा ट्रस्ट के द्वारा की गई थी कि जितेंद्र मिश्रा ही नए सीईओ होंगे राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, और उन्होंने महज एक रात बाद यानी कि कुछ घंटों के बाद ही अयोध्या आगमन उनका हो गया है और वो तीर्थ क्षेत्र भवन के लिए निकल चुके हैं। वहां गोविंद देव गिरी और अन्य जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सीईओ की जिम्मेदारी जो है वो अभी पूरी तरीके से आधिकारिक तौर पर तय नहीं है, उसको लेकर भी आने वाले आज के और कल का दिन बहुत क्रूशियल है, उसमें मंथन होगा क्योंकि ट्रस्ट के कई पदाधिकारी अयोध्या में इस वक्त मौजूद है, खासकर महामंत्री गोविंद देव गिरी। उसमें ये निर्धारित होगा कि आखिर सीईओ की पावर्स क्या होंगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जो हम लोग को जानकारी मिली है उसमें कुछ पावर्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर जो भी होगा, जो भीड़ प्रबंधन का काम होगा, सरकार समन्वय की बात होगी, जो आयोजन होंगे उन सबकी जिम्मेदारी खासकर सीईओ के ही पास रहने वाली है। लेकिन आधिकारिक तौर पर ट्रस्ट इसका ऐलान 1-2 दिन बाद कर सकता है, उसको लेकर ट्रस्ट ने थोड़ा समय मांगा है। इसके अलावा प्रवक्ता को लेकर अभी चीजें साफ नहीं हुई हैं, आने वाले दिनों में ट्रस्ट को एक प्रवक्ता भी मिलने वाला है, जिससे जो अफवाहें कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर पिछले दिनों फैली थी राम मंदिर को लेकर, ऐसा ट्रस्ट का मानना है वो रोकी जा सके, सटीक इन्फॉर्मेशन सामने आ पाए, इस वजह से प्रवक्ता की भी एक बहुत जरूरत है। तो ऐसे में बड़ी खबर यही है कि जो नए सीईओ हैं वो राम नगरी अयोध्या पहुंच चुके हैं और तीर्थ क्षेत्र भवन जाकर वो ट्रस्ट के पदाधिकारी
3: लौटेंगे। आपके पास बीच नए सीईओ के रूप में जितेंद्र मिश्र की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक और धार्मिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। सबको लगता है कि नई शुरुआत से राम मंदिर के इतिहास में एक नया दौर शुरू होगा।
6: एयर मार्शल श्री जितेंद्र मिश्रा वह राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ नियुक्त हुए। उन्होंने देश के लिए जो अभी पहलगाम के बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भी भाग लिया था, सीमा की सुरक्षा, देश की स्वायत्तता की रक्षा, देश के मान बिंदुओं की रक्षा, ऐसा सब अनुभव रखने वाले इतने बड़े व्यक्ति उन्होंने अयोध्या में रह के राम जी का काम करना स्वीकार किया है। हमको आनंदित है, हमको विश्वास है कि अब यह ट्रस्ट और भी अच्छी तरह से चलेगा।
7: अयोध्या नगरी है और श्रद्धा की नगरी है, भगवान राम का मंदिर सभी की श्रद्धा है कि लोग दर्शन करने आते हैं, पूजा करने आते हैं, लोग देश विदेश से आ रहे हैं। अच्छी बेहतर सुविधा होनी चाहिए, दर्शन भी बढ़िया होना चाहिए और श्रद्धालुओं के लिए अच्छी सुविधा हो। और नए सीओ भी आए हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि ट्रस्ट में जो है बदलाव हुए हैं, ये बड़ा बेहतर है। जो लोग नए आए हैं वो काबिले तारीफ़ हैं।

0: जितेंद्र मिश्रा का, और इन्होंने प्रधानमंत्री से भी काफी वाहवाही बटोरी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अब ये अयोध्या पहुंचे हैं, नए सीईओ एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र, जिन्होंने कहा कि पुराना जो कुछ भी हो चुका है अयोध्या में उसे भुला देना चाहिए। हालांकि एक बड़ी चुनौती यहां पर अंजलि के रहेगी कि कैसे वहां पर ये एक पारदर्शी सिस्टम लाते हैं, चाहे वो चंदा और जो चढ़ावा आता है उसकी गिनती को लेकर हो या फिर पूरे सिस्टम को लेकर।
1: तो लगातार यही बात हो रही थी कि किस तरीके से नया सीईओ चुना जाएगा, और अब नए सीईओ चुने जा चुके हैं और ये तस्वीर उनके वहां पहुंचने की अयोध्या में। जब
2: पर ये भी है कि जिस तरीके से आज उनका स्वागत होगा वहां पर, वो भी बहुत देखने वाली बात होगी, क्योंकि बड़ा मसला है कुल मिलाकर। देखिए, कल की जो घटनाक्रम रहा, 2-4 घंटे की बैठक चली है, बहुत बड़े बड़े निर्णय कल हुए हैं, क्योंकि देखिए काउंटिंग प्रोसेस से ही ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी जहां पर इस तरह की तस्वीरें प्रकरण में आई थी चंदा चोरी की। और कल एक बहुत अहम मुद्दे पर बैठक में चर्चा हुई है, हालांकि कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं हो पाया इसको लेकर, लेकिन अब मशीन्स का प्रयोग करने पर जोर डाला जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा और कहीं ना कहीं इससे जो एक निष्पक्षता की बात होती है मंदिर परिसर में, जिस तरीके से जो सवाल उठे उसके बाद, उस पर काम हो सकता है। कई बैंक्स
1: तो यूपी की चुनावी लड़ाई अब अयोध्या से मथुरा की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के दान चोरी के आरोपों को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा सामने रखकर सियासी पलटवार तेज कर दिया है।
0: योगी अपनी हाल की कई सभाओं में अखिलेश यादव से सवाल कर चुके हैं, और अगर वो खुद को सनातन और धार्मिक आस्था के करीब बताते हैं तो मथुरा, वृंदावन और श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर अपना रुख क्यों नहीं बताते?
1: तो सवाल ये है कि क्या अयोध्या में दान चोरी के मुद्दे से घिर रही बीजेपी ने उसकी काट के तौर पर मथुरा को चुनावी एजेंडे में आगे कर दिया है?
0: इसी सियासी संदेश के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिवसीय मथुरा दौरा बेहद अहम है। मथुरा में विकास परियोजनाओं, ब्रिज क्षेत्र के कायाकल्प और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर फोकस के साथ धार्मिक आस्था और विकास दोनों को एक साथ साधने की कोशिश दिखाई दे रही है। इस दौरान सीएम योगी मथुरा को 977 करोड़ की सौगात देंगे।

0: योगी आदित्यनाथ करेंगे मथुरा वृंदावन में। आज से मिशन मथुरा शुरू हो रहा है, यानी कि राम के अलावा अब फोकस श्री कृष्ण पर भी रहेगा चुनाव तक।
1: तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव को चुनौती देते रहते हैं कि वो मथुरा विवाद पर खुलकर क्यों नहीं बोलते।
2: अखिलेश जी, आपकी सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपके झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है, अब उसकी चलने की सामर्थ्य समाप्त, खेल खत्म। और जब खेल खत्म तो फिर आगे की कोई संभावना नहीं, संभावना नहीं तो आगे के बारे में स्वयं सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं तो राम नाम का ही सहारा सही।
0: तो क्या 2027 के चुनाव में बीजेपी का फोकस मथुरा पर रहेगा, क्योंकि अब सीएम योगी अपनी चुनावी सभाओं को बांके बिहारी की जय के साथ शुरू करते हैं। इस पर हमने यूपी के मंत्री भूपेंद्र चौधरी से बात की।
3: सर, अब हमने देखा है मुख्यमंत्री कई अपनी रैलियों में जो एड्रेस कर रहे हैं वो बांके बिहारी जय और अयोध्या श्री राम जय, ये उधर रुख हो रहा है, तो अब क्या माने कि 2027 की चुनाव मथुरा की तरफ रुख है?
4: नहीं, इस रूप में ना देखा जाए। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो हमारी परंपरा, आस्था और जो हमारी विरासत है, उस विरासत को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भगवान राम भी हमारी विरासत हैं, भगवान श्री कृष्ण भी हमारी विरासत हैं, बाबा विश्वनाथ भी हमारी विरासत है। और भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकारों के समय हमने अपनी आस्थाकार विरासत का सम्मान आगे बढ़ाया है, और उसी स्वरूप में आप सब लोग आज अगर देखेंगे तो पहले आज से 20-30 साल पहले उत्तर प्रदेश में दिखाने के लिए क्या कहा जाता था कि भाई हम कोई बाहर से पर्यटक आता है तो क्या दिखाएंगे उसे, तो आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक देश में धार्मिक पर्यटन वाला क्षेत्र है। आप अयोध्या है, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है, लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, विंध्यवासिनी देवी का मिर्जापुर में कॉरिडोर बना है, और बड़ी संख्या में मथुरा वृंदावन आज अगर आप देखेंगे तो लोग सहजता के साथ बगैर किसी निर्बाध भाव के दर्शन करने आते हैं और उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में अपना योगदान कर रहे हैं, और यही हमारी परंपरा है, यही हमारी विरासत है।
1: तो मथुरा को लेकर सियासी जुबानी जंग भी अब शुरू हो गई है।
5: वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है। जब जाने की बारी है, जब आपने श्री रामचंद्र जी के नाम का सहारा लिया, तो आपने नाम इसलिए लिया कि आपको वहाँ पे लूटना था। हम तो कहेंगे कि वहाँ पे जो भी महंत लोग हैं मथुरा में, अरे भाजपाइयों से सावधान रहो, नहीं तो जो चढ़ावा है वहाँ का, जो चंदा है उस पर भी निगाह इनकी पड़ चुकी, इनको घुसने मत देना वहाँ पर। और किशन जी की जो पूरा दुनिया में जो उनका चाहत है, मोहब्बत है, जो उनके अनुयायी हैं, वो बीजेपी की वजह से नहीं है। और किशन जी की मानने वाले लोगों का आपने क्या हाल कर रखा है? मथुरा में आज सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, मथुरा में आज मथुरा जी में सड़कों पे 3-3 फीट पानी है। तो आप नगर पालिकाएं आपकी जहां जहां पे हैं, आपने कहा था कॉरिडोर बनाएंगे आप, मतलब कौन सा कॉरिडोर बना?
6: जो वामी है, जो कांगी है, जो सपाई है, जो कांग्रेसी है, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है, हिंदुओं को बांटना है, मुसलमानों को एकत्रित करना है, और उसके सहारे चुनावी वैतरणी पार करना है।

0: लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये जान चुकी है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और 27 में उत्तर प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार अर्थात नरेंद्र मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार की जो काम उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जिस तरीके से विकास समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों तक पहुंचा है, कानून का शासन स्थापित हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, उसके आधार पर वोट देगी।
1: वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पर बड़े पैमाने पर डिजिटल कैंपेन की तैयारी कर रही है। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा जा रहा है कि वो जमीनी स्तर की गतिविधियों को शॉर्ट फॉर्म सोशल मीडिया कंटेंट में बदलें। इस योजना के तहत राज्य भर के 27,000 से ज्यादा शक्ति केंद्रों को रील्स बनाने का काम सौंपा जाएगा। हर केंद्र का लक्ष्य 10 शॉर्ट वीडियो बनाना होगा। ये कॉन्टेंट सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और मतदाताओं तक पार्टी की पहुंच पर केंद्रित रहेगा।
2: इस रणनीति के तहत स्थानीय स्तर पर तैयार राजनीतिक कंटेंट का एक बड़ा भंडार बनाया जाएगा। फिर बीजेपी के डिजिटल नेटवर्क और वरिष्ठ नेताओं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस कंटेंट को आगे बढ़ाया जाएगा। प्लान के मुताबिक मुख्यमंत्री चुने हुए रील्स को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को बहुत बड़े डिजिटल ऑडियंस तक पहुंचने का सीधा जरिया मिल जाएगा। मंत्रियों से भी नियमित रूप से छोटे वीडियो बनाने के लिए कहा गया है।
1: अब राजस्थान का रुख करेंगे। यहाँ पर बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जोधपुर में बीजेपी कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मिले तो रोने लगे।
2: दरअसल बीकानेर में कांग्रेस से जिला अध्यक्ष पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही हमला कर दिया। मदन गोपाल मेघवाल बीकानेर में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं। फिलहाल हमला करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी ने निकाल दिया है।
1: उधर गजेंद्र शेखावत ने कार्यकर्ता को आश्वासन दिया कि पार्षदी का टिकट कटा तो रोने की क्या जरूरत है, आगे बड़ा अवसर मिलेगा। जोधपुर में निकाय चुनाव हो रहा है, टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में स्थानीय स्तर पर खींचतान है। अब एक कार्यकर्ता का टिकट कटा तो वो रोने लगा।
2: फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: आज तक प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
6: सोच बदलो और बैंक भी।
3: इन एसोसिएशन विद
4: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
3: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।

त्योहारी सीजन आने वाला है और इसके साथ ही हर घर की रसोई का बजट हिलने लगा है। पकवानों की तैयारी के बीच आम आदमी की जेब पर महंगाई का तगड़ा प्रेशर साफ दिखने लगा है। दाल के तड़के से लेकर मीठे तक के बढ़ते दाम लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। प्याज और चीनी की चर्चा के बीच अब अरहर दाल की महंगाई भी जेब पर दबाव बढ़ाने लगी है। आंकड़ों के मुताबिक एक साल के अंदर अरहर दाल के रेट 27% तक बढ़ गए हैं। मार्केट में कम सप्लाई और सीमित स्टॉक की वजह से कीमतों पर दबाव बना हुआ है। चिंता की बात है कि अरहर के साथ ही मसूर दाल भी महंगी होने के संकेत मिल रहे हैं। कनाडा में उत्पादन घटने की आशंका जताई जा रही है, जिसका असर भारत में मसूर दाल की कीमतों पर पड़ सकता है। दाल के साथ साथ सब्जी का स्वाद बढ़ाने वाला प्याज भी लोगों को रुला रहा है। दिल्ली में प्याज की कीमत 55 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। हालांकि आम आदमी को इस महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक प्याज की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने का प्लान तैयार है, जिसके तहत दिल्ली में 35 रुपये किलो के रियायती रेट पर प्याज बेचा जाएगा। इसके लिए 800 टन प्याज लेकर कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच रही है। नाफेड, NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोर्स के जरिए ये प्याज जनता तक पहुंचाने की तैयारी है। ये मौजूदा एवरेज रिटेल कीमत से करीब 36% सस्ता है। दाल और प्याज की टेंशन के बीच मीठे के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर भी है। चीनी के एक्स मिल रेट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा के मुताबिक चीनी के दाम नीचे आ गए हैं और आने वाले दिनों में आम जनता को इसका सीधा फायदा मिलेगा। चीनी का एक्स मिल रेट 12 रुपये घटकर 55 रुपये प्रति किलो हो गया है। पिछले हफ्ते के 67 रुपये के रिकॉर्ड हाई रेट से इसमें 18% की कमी आई है। इम्पोर्ट को मंजूरी देने और जमाखोरी पर कड़े एक्शन लेने की वजह से ये रेट गिरे हैं। सरकार का कहना है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और कुछ मिलों की ओर से कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी देखी गई थी। थोक भाव कम होने का असर जल्द ही रिटेल मार्केट में भी देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर त्योहारों में रसोई का बजट संभालने के लिए एक तरफ सरकार एक्शन मोड में है, तो दूसरी तरफ दाल और प्याज जैसी जरूरी चीजों की महंगाई आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

हर्षा मुखिया अभियान के तहत ईडी का मेगा एक्शन, दक्षिण भारत में 30 जगहों पर एक साथ छापेमारी, हैदराबाद के गांजा डॉन के ठिकानों पर चल रही है रेड, करोड़ों का नशीला पदार्थ जब्त। शुद्धिकरण मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी, कहा 24 दिन बाद भी नहीं हुआ कोई एक्शन, जल्द FIR दर्ज करने की मांग। गंगा की उफनती लहरों से पैदा हुए बाढ़ के हालात पर पीएम मोदी ने वाराणसी के मेयर और डीएमसी की बात, राहत में मुश्तैदी का निर्देश, उत्तराखंड से बिहार तक नदियां खतरे के निशान से ऊपर। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ बनते ही रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा पहुंचे अयोध्या, कहा श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम, देवरिया के गांव में जश्न, गोविंद गिरी बने महासचिव, 3 नए ट्रस्टी भी शामिल। आज से 2 दिन तक ब्रज की जमीन से सीएम योगी की चुनावी हुंकार, जन्माष्टमी पर करेंगे बांके बिहारी के दर्शन, पंचायत आज तक मथुरा में करेंगे शिरकत, आज दिन भर सियासी दिग्गजों का जमावड़ा।

0: गाते हैं भस्म मुर्दे की, पागल आज राख किसी मुर्दे की मेरी ऊपर लगी है, तू भी एक दिन राख हो जाएगा। बड़ी गाड़ी बड़े बंगले का घमंड कब तक, एक दिन आपको बड़ी गाड़ी बड़े बंगले से निकलकर शमशान जाना होगा और शमशान में राख बनना होगा। यहाँ जितने बैठे हैं मैं स्वयं एक दिन राख हो ही जाऊंगा। कब तक राख नहीं बनेगा बेटा, कब तक भागेगा? 2026 में नहीं बना, 2040 में बनेगा, 2080 में बनेगा, कब तक नहीं बनेगा बता? 2099 आते आते हम सब राख हो चुके होंगे। किसकी रही है, कितने दिन की है आपकी? इसलिए शंकर जी ये मैसेज देते हैं, घमंड ना करो, इसलिए राख लगाते हैं। राख लगाने का ये मैसेज है, लेकिन मैसेज लोग समझते नहीं, है ना। शंकर जी सांप लपेटे हैं, सांप मैसेज देता है, काल कहते हैं। शंकर जी के गले में क्या है? काल मतलब सांप। वो सर्प ये कहता है कि तुम कितना भी च्यवनप्राश खा लो, मरना तो पड़ेगा ही। काल देखो बैठा है खोपड़ी पे, इसलिए ज्यादा 3-5 ना करो, चुपचाप अपना मरो जब टाइम आए, शांति से शांति से मरो अपना जब टाइम आए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। च्यवनप्राश खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, ये कितना भी खा लो, तुम्हारे बाप दादे नहीं मरे क्या?
1: पर स्वस्थ भी तो रहना जरूरी है।
0: स्वस्थ तो मैं योग करके आया हूं आपके पास योग तो योग स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है योग। मैं रोज योग करता हूं। आप भी करती हैं योग? जिम करती होंगी?
1: नहीं नहीं, योग ही करती हूं मैं
0: है?
1: योग करती हूं।
0: अच्छा सुनिए, शंकर जी के गले में सांप बैठा क्या मैसेज दे रहा है? काल है, काल सबको देख रहा है। आपने पुराना महाभारत देखा, उसमें क्या बोलता है? मैं समय हूं। क्या बोलता है? हाँ समय है। एक दिन मैं घूमता घूमता शमशान चला गया, तो शमशान में एक अच्छी बात लिखी थी, बताऊं? शमशान में लिखा था कि समय, यही वृंदावन के शमशान में, आप लोग भी जाके देख सकते हैं, शमशान भी जाते आते रहा करो क्योंकि आखिरी पड़ाव वही है सबका, मैं तो जाता रहता हूं। तो शमशान में लिखा था, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। समय के पास, समय जो गया गया, अब उसे आप ला नहीं सकते। पैसे से समय थोड़ी खरीद सकते हो, पैसे वाले समय खरीद लेते तो काहे मर गए पैसे वाले, खरीद ना लेते। इसलिए शंकर जी कह रहे हैं कि देख तेरा समय जा रहा हो, काल बैठा, सांप मतलब काल, अभ्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे, सांप को काल कहा गया। इसलिए शिव को कालों के काल महाकाल कहते हैं, क्योंकि वो काल को जीत चुके हैं। पर हम नहीं जीते, तो तुम नहीं जीते, तो घमंड ना करो, क्योंकि काल बैठा है फन पसारे। शंकर जी बैल पे सवार हैं, बैल मतलब नंदी, नंदी मतलब धर्म। शंकर जी बैल पे नहीं चलते, धर्म पर चलते हैं। बैल किसका सूचक है? आप कभी शिव, आप में से कितने लोग शंकर जी के मंदिर गए हैं तो बताओ? शिव जी के मंदिर में जो नंदी बैठते हैं उनके कितने पांव अंदर हैं और कितने पांव बाहर हैं बताओ? कितने? एक पांव बाहर है कि दो? एक पांव बाहर है और तीन पांव। क्या मैसेज मिला बताओ? मंदिर गए, पानी डाला, आ गए, सीखा वीखा कुछ नहीं। इसलिए सनातन सीखते आप लोग कुछ नहीं है और बदनाम सनातन को करते। तुम्हारे मंदिर में क्या है? अरे मंदिर में सब कुछ है, तुमने सीखा कहाँ है? तुम्हारी तो खोपड़ी पर मूर्खता थी।
1: इसका अर्थ तो बताइए।
0: बता रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में जो नंदी है वो किसका स्वरूप है? धर्म। इसलिए मोदी जी ने नई संसद बनाई ना, तो सेंगोल रखा, सेंगोल में नंदी है, बोलो हाँ कि ना? है नंदी। वो नंदी कौन है? वही धर्म का प्रतीक है, बोलो हाँ। जैसे आज तक वालों का देखो, ये है पहचान है इसकी, क्या है ये? हाँ ये पहचान है, ये इसकी पहचान है। ऐसे ही धर्म की पहचान नंदी। शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर। और धर्म के पांव होते हैं चार, सत्य दया दान और तप। इनमें से कलयुग में तीन पांव टूट गए हैं। कलयुग में क्या टूट गए? धर्म के तीन पांव टूट गए। सत्य नहीं रहा कलयुग में, दया नहीं रही और तप नहीं रहा, इसलिए तीन पांव टूटे हैं नंदी के। एक पांव आगे है, मतलब एक पांव जीवित है। कलयुग में केवल दान है, दान के बल पर धर्म चल रहा है, टिका हुआ है। इसलिए एक पांव है और तीन पांव टूट चुके हैं। तो वो तीन पांव जो अंदर है ना, वो टूटे कलयुग है। सतयुग आएगा तो धर्म चारों चरण से होता है। धर्म चारों चरण से होता है। तो शंकर जी बैल पर चढ़े हैं, आप लोग कहते हो शंकर जी बैल पर चढ़े, बैल की सवारी, तुम्हें ज्ञान नहीं है, हम क्या करें। शंकर जी बैल पर नहीं सवार हैं, शंकर जी धर्म पर सवार हैं। धर्म ही था भरा सोना खचा खच लंक की दीवार में, था खचा खच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। अच्छा ये बताओ, धर्म बड़ा कि धन बड़ा? इसलिए कहता हूं प्राण जाए पर धर्म ना जाए। क्या ना जाए? धर्म को बचाइए। गीता में लिखा स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म पर जिंदा रहना अच्छा है, अपने धर्म में रह के मर जाना अच्छा है, पर दूसरे धर्म का स्वीकार, दूसरे धर्म को स्वीकार करना अच्छा नहीं है। आज हमारे देश में धर्मांतरण हो रहा है। क्या हो रहा है? 5000 में 2000 में धर्मांतरण हो जा रहा है। धर्मांतरण गीता में लिखा है मर जाओ अच्छा है, पर धर्म का परिवर्तन करना पाप है।
1: पर कोई इच्छा से करे महाराज जी तो?
0: इच्छा से क्या, आम चाहे कि मेरी इच्छा है मैं इमली हो जाऊं, तो क्या आम अपनी इच्छा से इमली हो सकता है? जबकि इमली भी खट्टी है, आम भी खट्टा है, पर नहीं हो सकता। यदि इमली बनाना होता तो परमात्माओं से आम क्यों बनाता, इमली बनाना होता। यदि हमें हिंदू बनाया है ईश्वर ने, तो ईश्वर की मर्जी है कि मैं हिंदू हूं, हिंदू ही रहूंगा, मैं काहे धर्म परिवर्तन कर लूं, क्यों करना चाहिए?
1: स्वेच्छा से भी आप उसके फिर,
0: अरे काहे हमारी ऐसी स्वेच्छा होगी क्योंकि हम धर्म छोड़ दें? धर्म कायर छोड़ते हैं, समझदार नहीं धर्म छोड़ते।
2: तो मथुरा में आयोजित पंचायत आज तक में आपको ले जाते रहेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर हैं और इस दौरान वो मथुरा को 977 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। दो दिनों के दौरे का आज पहला दिन है। 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन और गौ पूजन करेंगे। आज ही सीएम योगी फरुखाबाद में बाढ़ प्रभावित 1000 परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण करने वाले हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित परिवारों को आवास हेतु भूमि आवंटन प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे।
3: उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ 970 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण मथुरा में इस बार, और वो भी वजह है कि मथुरा में विकास और संस्कृति दोनों एक साथ समागम होगा। फिर चाहे मथुरा के विकास की बात हो या समागम की, दोनों एक स्थान पर 3 और 4 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ का ये यूपी का चुनाव से पहले सबसे बड़ा दौरा, और कहीं ना कहीं मथुरा के जरिए पूरी सियासत साधने की ये कवायद है, जिसमें विकास भी होगा, संस्कृति भी होगी और कहीं ना कहीं सनातन श्रद्धा के साथ जुड़ा होगा। अयोध्या के बाद ये मथुरा की कहानी यूपी चुनाव के लिए एक नया संदेश लेकर आएगी।
2: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अब घोषणा पत्र की तैयारी में वो जुट गई है। अखिलेश यादव और उनकी रणनीतिकार इस बार ऐसा घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं जिसमें सभी के हितों को समाहित करने की तैयारी है। अब ये माना जा रहा है कि पार्टी जेंजी और विशेष तौर पर अल्फा पर जोर रखने वाली है। वहीं बेरोजगारी भत्ते के साथ कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता और मुफ्त लैपटॉप जैसी योजनाओं को जगह दे सकती है। आउटसोर्स के सहारे नौजवानों पर भी समाजवादी पार्टी की नजर है।
4: अखिलेश यादव पुराने फॉर्मूले और नए प्रयोगों के जरिए हर तबके को अपनी ओर खींचने की एक पुख्ता रणनीति बना चुके हैं। समाजवादी पार्टी अभी से घोषणा पत्र पर काम कर रही है। ये घोषणा पत्र ऐसा होगा जिसमें जिलों की चिंता भी दिखेगी और जमीनी स्तर पर क्या कमियां हैं, उनको लेकर क्या काम होने चाहिए वो भी दिखाई पड़ेगा। हाल ही में सपा ने महिलाओं को लेकर क्या कुछ करेंगे उसका एक प्लान ऑफ एक्शन सामने रखा था, लेकिन बात केवल महिलाओं की नहीं है, जेंजी और जेन अल्फा पर भी समाजवादी पार्टी का फोकस है। और इसी वजह से ITCT का विस्तार हो, चाहे साहित्यकारों के सम्मान की बात हो, यश भारती पुरस्कार का सम्मान योजना को बढ़ावा देने की बात हो, कन्या विद्याधन की बात हो, ये पुरानी जो योजनाएं हैं उनको नए फॉर्मूले के साथ भी समाजवादी पार्टी पेश करने का मन बना चुकी है, और लैपटॉप की जो प्रक्रिया है उसको भी मैनिफेस्टो में जगह मिलेगी।
2: और देखिए यूपी में गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल यादव का एक बड़ा बयान सामने आया, और शिवपाल यादव ने दावा किया कि कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन ठीक चल रहा है, 2027 में अखिलेश यादव सीएम बनेंगे और ये चुनाव अखिलेश राहुल गांधी मिलकर लड़ेंगे, यानी कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन होगा चुनावों में।
5: जनता आपकी बात, हमारा जो गठबंधन है अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, ये रहेगा और मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा।
2: तो यहां सपा कांग्रेस के गठबंधन की बात हो रही है, उधर लखनऊ में बीएसपी की एक अहम बैठक हो रही है। पार्टी की सुप्रीमो मायावती इस मीटिंग में संगठन विस्तार और जनाधार बढ़ाने पर चर्चा कर रही है और इस बैठक के लिए बीएसपी ने अपने बहुत से अधिकारियों को बुलाया है। बैठक का फोकस यूपी चुनाव है, 2027 संग्राम को लेकर बीएसपी अपनी तैयारियों की समीक्षा कर रही है, खुद को मजबूत बनाने की कवायद में जुटी है।
6: 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए न सिर्फ बीजेपी बल्कि बीएसपी अभी अपनी पूरी ताकत के साथ तैयारियों में जुट गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। लखनऊ में होने वाली इस बैठक में बीएसपी के न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि राष्ट्रीय स्तर के तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया है ताकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जा सके बल्कि कैसे पार्टी अपने पुराने जनाधार को इकट्ठा करे और पुराने जनाधार को जोड़ने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी पुरानी धमक को बढ़ा सके, इस पर भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक का सिलसिला शुरू कर दिया है। इससे पहले सोमवार को भी मायावती ने उत्तर प्रदेश के तमाम पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाकर फीडबैक लिया था कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी कितनी तैयार है और कहां मजबूत है और कहां तैयारी की जरूरत है।
2: और देखिए इन सारी खबरों के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अहम बयान दे दिया। अब वो कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी को हराना आसान नहीं है। अब ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाइव करे और ये हमारा मौलिक अधिकार है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी होना है उसे तुरंत करके जल्दी से हमें मैदान में निकलना चाहिए।
7: देखिए, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा हारे, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाइव करे और ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो हम अपनी पार्टी का सर्वाइवल भी चाहते हैं और हम भाजपा को हराना भी चाहते हैं। और देश के अंदर राहुल जी के नेतृत्व में एक माहौल बन गया है जो पूरे देश के अंदर इस वक्त चल रहा है। तो मेरा जो काम करने का तरीका है वो सिंपल और साफ है कि लड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि जिसका नतीजा है, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी होना है उसे तुरंत कर करके जल्दी से हमें मैदान में निकलना चाहिए। बीजेपी हमसे आगे ना निकल जाए, बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है, हवा के अंदर बीजेपी नहीं हार रही है। तो हमें सब चीजों को फाइनल कर करके निकलना चाहिए, रोड मैप तैयार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए।
2: और आइए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं 12 बजे 12 रिपोर्टर में। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ चुने जाने के बाद पहली बार जितेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे। अब अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी वो तीर्थ क्षेत्र भवन पहुंच गए हैं, वहां उनका भव्य स्वागत भी हुआ। एक दिन पहले ही ट्रस्ट ने उनके नाम का ऐलान किया, छप्पा लगा दिया। व्यवस्था में बदलाव के लिए नए सीईओ की नियुक्ति की गई है। ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले तत्कालीन एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा जिम्मेदारी मिलने के बाद कुछ ही देर में वो राम मंदिर परिसर पहुंचने वाले। अब यह माना जा रहा है कि वो जल्द पदभार ग्रहण करेंगे और राम मंदिर के प्रबंधन में अपना अहम योगदान देंगे।
8: चढ़ावा चोरी के बाद आस्था पर चोट को लेकर घमासान के बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने एक अहम फैसला लिया है। व्यवस्था में बदलाव करते हुए नए सीईओ की नियुक्ति कर दी गई है। यह जिम्मेदारी ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को दी गई है। जितेंद्र मिश्रा पिछले 4 दशक से वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वे वेस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख भी रहे और बीते अप्रैल 2026 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया, जिसके बाद यह जिम्मेदारी उनको दी गई। ये कहा जा रहा है कि वह जल्द ही अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि उनके सैन्य अनुभव और अनुशासन के साथ राम मंदिर ट्रस्ट के प्रशासन, संचालन और वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।
2: वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुद्धिकरण मामले में जेपी नड्डा को चिट्ठी में उन्होंने हल्द्वानी में हुए शक्तिकरण मामले को लेकर राज्यसभा में दिए अपने 13 अगस्त के भाषण का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने ये मामला उठाया था। अब खड़गे ने नड्डा को लिखी चिट्ठी में कहा है कि 24 दिन बीत जाने के बाद भी FIR तक दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने नड्डा को राज्यसभा में दिए उनके बयान का हवाला देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द उत्तराखंड सरकार को निर्देश दें और आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हो।
9: हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले में सियासत तूल पकड़ती जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने JP नड्डा को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने 13 अगस्त के बयान की याद दिलाई है, जिसमें JP नड्डा साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था और पूरे घटना की भत्सना की थी। खड़गे साहब ने कहा है चिट्ठी में कि अभी तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है और पूरे शुद्धिकरण को लेकर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
2: अब 12:12 रिपोर्टर में बात पंजाब की। पंजाब में वोटर लिस्ट में BJP के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम हटा दिया गया है। अप्रैल 2026 में आम आदमी पार्टी छोड़कर BJP में शामिल हुए राघव चड्ढा का नाम SIR प्रक्रिया के दौरान ड्राफ्ट लिस्ट से हटाया गया। वजह बताई गई है कि वो हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए हैं। 13 अगस्त 2026 को पब्लिश हुई ड्राफ्ट लिस्ट से नाम हटाए जाने को लेकर राघव चड्ढा ने अब भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि पंजाब में आप सरकार अब बदले की राजनीति को वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट तक ले आई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कोई क्लर्क की गलती नहीं लगती, साफ तौर पर राजनीतिक बदले की भावना का मामला है।
10: पंजाब में BJP की राज्यसभा MP राघव चड्ढा का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। जी हां, पंजाब में SIR की प्रक्रिया जो है वो चल रही है और इस प्रक्रिया के दौरान ही ड्राफ्ट लिस्ट से MP राघव चड्ढा का नाम जो है हटाया गया है। राघव चड्ढा जो अप्रैल 2026 में आम आदमी पार्टी को छोड़कर BJP में शामिल हुए थे और जो हटाया गया अब उनका नाम उसमें कैटेगरी में लिखा गया है शिफ्टेड परमानेंटली, मतलब वो परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं यहां से। इस पूरे विवाद को लेकर अब राघव चड्ढा ने जो है वो बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बोला कि भगवंत मान सरकार बदले की भावना जो है अब वोटर लिस्ट तक ले आई है। उन्होंने कहा कि ये कोई आम क्लरिकल मिस्टेक नहीं है, लेकिन राजनीतिक बदलाखोरी है जो आम आदमी पार्टी उनके साथ कर रही है।
2: और 12:12 रिपोर्टर में अब जो बड़ी खबर है वो है कोलकाता से, जहां TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि पार्टी दफ्तर पर हमला हुआ है और दावे के मुताबिक कोलकाता के केमिक स्ट्रीट स्थित TMC कार्यालय में तड़के करीब 4:30 सुबह हथियारबंद लोगों ने हमला किया। उन्होंने इस हमले के लिए BJP कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। CCTV वीडियो भी जारी कर आरोप लगाया है कि हमलावरों ने पार्टी कार्यालय में मौजूद लोगों से मोबाइल छीने, फर्नीचर तोड़ा और इलेक्ट्रॉनिक सामान को नुकसान पहुंचाया। बनर्जी ने यह भी सवाल उठाया कि शिकायत के बावजूद करीब 2 घंटे तक पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंची। आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और पूरे मामले की जांच की मांग उन्होंने की है।
11: कोलकाता के केमिक स्ट्रीट में अभिषेक बनर्जी के दफ्तर में तोड़फोड़ की घटना ने सियासी जंग का रूप ले लिया है। घटना कल रात लगभग अर्ली मॉर्निंग 3 से 4:30 के बीच की बताई जा रही है। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से CCTV फुटेज भी दिया है, जहां देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे लोग दफ्तर में घुस रहे हैं। जो सिक्योरिटी पर्सन्स थे उनके साथ मारपीट का भी आरोप है, दफ्तर में तोड़फोड़ की घटना का आरोप है। और सीधा जो आरोप अभिषेक बनर्जी की ओर से लगाया गया है वो BJP कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। शेक्सपियर सरने की थाने की पुलिस इस वक्त जो अभिषेक का दफ्तर है वहां पर पहुंची हुई है, छानबीन जारी है। हालांकि ये भी आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस वहां नहीं आई, जबकि थाना बेहद करीब था।
2: एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ED नशीले पदार्थों से जुड़े अलग अलग मामलों में दक्षिणी क्षेत्र के सभी जोन में 30 जगहों पर एक साथ बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही है, रेड जिसे कहते हैं। ये तलाशी अभियान नशा मुक्त भारत पहल के तहत किए जा रहे हैं। तलाशी वाली जगह केरलम, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना राज्यों में फैली हुई है। ये तलाशी PMLA के तहत जांच किए जा रहे 8 अलग अलग मामलों में की जा रही है और आगे की जांच अभी जारी है नशा मुक्ति भारत के तहत। और अब जो खबर है वो दिल्ली से है। नरेला में आज एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और यह हमला उस वक्त हुआ जब प्रॉपर्टी डीलर जिम से बाहर निकल रहा था। अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें उसकी जान चली गई। अभी आशंका जताई जा रही है कि मामला रंगदारी से जुड़ा हो सकता है। इस मामले को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है।
12: राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वक्त हम लोग ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां पर गुरुवार सुबह तकरीबन 7 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रमोद जिम पहुंचे थे और ठीक इसी जगह जहां पर हम खड़े हैं यहीं पर मौजूद थे, तभी बाइक पर सवार 3 बदमाश आते हैं और उन्होंने ताबड़तोड़ प्रमोद के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि 15 से 16 राउंड यहां पर गोली चली, जिसमें से कुछ गोलियां प्रमोद को लगी। प्रमोद के साथ उनके रिलेटिव भी उस वक्त मौजूद थे। गोलियां चलती देख वो लोग अपने को बचाने के लिए इधर उधर गए और उसके बाद जब वो वापस लौट के आए तब तक प्रमोद की मौत हो चुकी थी। परिवार का आरोप है कि प्रमोद को पिछले कई समय से धमकियां मिल रही थी। विदेश में बैठे बदमाश उन्हें धमका रहे थे और रंगदारी की मांग कर रहे थे। इस पूरे हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है, फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है।
2: और यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: आगे आगे,
16: अरे उधर
15: उधर
16: गिर,
15: करेक्ट करेक्ट
17: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: खाना कहाँ से मंगवाया?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट प्राइमर,
9: जेके मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स
6: जेके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
7: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
6: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: खाना कहाँ से मंगवाया?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जीके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट प्राइमर
4: जीके मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जीके मैक्स।
1: जीके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
2: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
1: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग। जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: भारत की रक्षा नीति से लेकर भविष्य की युद्ध रणनीति तक देश की सुरक्षा पर सीधी बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ देश के सबसे बड़े रणनीतिकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों का महामंच आज तक सुरक्षा सभा सिर्फ आज तक पर।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

मथुरा में पंचायत आज तक का शानदार आगाज। सीएम योगी आदित्यनाथ, मंत्री, सांसद, विपक्षी नेता, धर्मगुरु और वकील, यूपी की सियासत, हिंदुत्व, मथुरा समेत चुनावी मुद्दों पर करेंगे चर्चा। मथुरा में आयोजित पंचायत आज तक के मंच पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, कांग्रेस की जीत का दावा किया। पंचायत आज तक के मंच से अजय राय ने 2027 में पिंडरा सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान, 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर सवाल उठाए। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने शुरू की घोषणा, पार्टी की तैयारी, जेन जी और युवाओं पर रहेगा खास फोकस। यूपी मिशन को लेकर शिवपाली यादव का बड़ा दावा, कहा एसपी कांग्रेस का गठबंधन ठीक चल रहा है, 2027 में मिलकर लड़ेंगे चुनाव, अखिलेश बनेंगे सीएम। राम मंदिर के नवनियुक्त सीईओ जितेंद्र मिश्रा पहुंचे अयोध्या, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। राम मंदिर के पहले सीईओ जितेंद्र मिश्रा ने अपने चयन पर ट्रस्ट समिति का आभार जताया, बोले राष्ट्र सेवा के बाद अब राम भक्तों की सेवा का अवसर। जितेंद्र मिश्रा का राम मंदिर सीईओ बनने पर देवरिया के गांव में जश्न का माहौल, लोगों ने कहा मिला ईमानदारी का तोहफा। राम मंदिर में नए महासचिव गोविंद देवगिरी महाराज ने पूर्व महासचिव चंपत राय से की मुलाकात, छड़ावा चोरी मामले में इस्तीफा दे चुके पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा भी मौजूद रहे। अयोध्या के श्री राम मंदिर में सीईओ सहित नई नियुक्तियों के साथ 6 साल पुराना सिस्टम लेगा नया रूप, बदलेगा मंदिर के संचालन का पूरा मॉडल। पोस्टर से रील तक बीजेपी की नई चुनावी रणनीति, यूपी में 27,000 शक्ति केंद्रों पर बनेगी 2,07,000 रील, सीएम योगी करेंगे चुनिंदा कंटेंट का प्रचार। लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक, मायावती 2027 में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव की तैयारियों की करेंगी समीक्षा, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड पर रहेगा फोकस। लखनऊ के जेपीएनआईसी को 30 साल की लीज पर निजी हाथों में सौंपने के फैसले पर अखिलेश का बीजेपी पर तीखा हमला, बोले इतिहास और भविष्य की पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। मैनपुरी सीओ सिटी के वायरल वीडियो पर अखिलेश का पुलिस प्रशासन व्यवस्था पर तंज, बोले सिर पर सत्ता सजातीय का हाथ है पर बदलाव दस्तक दे रहा है, नहीं करेंगे निलंबन की मांग। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, कहा हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा हारे और हमारी पार्टी प्रदेश में बनी रहे, लेकिन बीजेपी को हराना आसान नहीं है। राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की नगद राशि की गिनती अब मशीनों से कराने की तैयारी, 2 बैंकों और आईआईटी के विशेषज्ञों से प्रस्ताव लिए गए। अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल शूटर्स का नया वीडियो सामने आया, मर्डर से 3 घंटे पहले मोबाइल शॉप से सिम कार्ड खरीदते दिखे। शामली के अंकित बालियान हत्याकांड में फरार दोनों शूटर पर इनामी राशि बढ़कर 1,00,000 रुपए हुई, दिल्ली समेत 5 राज्यों पर दबिश। अंकित बालियान की कार में ट्रैकिंग डिवाइस लगाने वाले सत्यम और दूसरे कातिल आर्यन की तलाश थी। अंकित बालियान हत्याकांड में मास्टरमाइंड गैंगस्टर राकेश पंपू को एनकाउंटर का डर, डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई।

बात करेंगे योगी के चुनावी यज्ञ की, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम योगी ने फरुखाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। थोड़ी देर पहले फरुखाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फरुखाबाद में बाढ़ राहत का जायजा लेने के बाद मथुरा के लिए रवाना होने वाले हैं। मुख्यमंत्री का फरुखाबाद दौरा गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए था, जहां पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में बने शिविर में करीब 1000 बाढ़ पीड़ितों को 26 प्रकार की राहत सामग्रियों वाले विशेष किट बांटे। बाढ़ के कारण बेघर हुए 31 परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा और मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता राशि भी दी गई है। यहां से सीएम योगी सीधे मथुरा वृंदावन के 2 दिनों के दौरे पर जा रहे हैं। अब दौरे से पहले सीएम योगी ने फरुखाबाद पहुंचते ही कैसे बाबा नीम करौरी को नमन कहते हुए बयान दिया है, आपको सीएम योगी का वो बयान सुनाते हैं।

0: बाबा नीम करोरी की पावन धरा फरुखाबाद को मेरा सादर नमन। आज मैं जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करूंगा, वहां प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका कुशल क्षेम जानूंगा, उनके समस्याओं को सुनूंगा और बाढ़ राहत सामग्री को भी वितरित करूंगा। इस दौरान राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा भी मुझे करने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक जरूरतमंद तक भोजन, दवा और अन्य आवश्यक सामग्री समय पर पहुंच सके, डबल इंजन की सरकार की यह प्रतिबद्धता है। संकट की इस घड़ी में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है।
1: देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी राजनीति की जो सर्च लाइट है वो इस बार अयोध्या, काशी से आगे मथुरा तक बढ़ चली है। सीएम योगी दो दिनों के मथुरा दौरे पर 1051 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं और इस सौगात के साथ साथ विपक्ष को मथुरा के नाम की सियासी चुनौती भी पेश कर रहे हैं।
2: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
3: हर दिन राधे राधे कहते हैं,

0: बिहारी लाल के।
1: उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सभाओं में जय श्री राम के गूंजते नारे अब जय श्री कृष्ण के जय घोष के रूप में तब्दील होते जा रहे हैं। अयोध्या और काशी से चली सनातन के सपनों की सियासी बयार अब मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में सियासत फहरा रही है और इसकी बानगी सीएम योगी के मंच पर मिलती है जब वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सामने मथुरा का चैलेंज देते हैं।
2: अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की।
1: सीएम योगी अयोध्या काशी के पास मथुरा वृंदावन के विकास की जिम्मेदारी खुद उठाने को तैयार है, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन में यदुवंश की सियासत करने वाले अखिलेश यादव से समर्थन मांगते नजर आते हैं।
2: तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपके झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है।
1: सीएम योगी 2 दिन मथुरा में रहने वाले हैं। इस दौरान सीएम योगी का 3 सितंबर को ही दोपहर में कान्हा भक्ति स्तंभ मार्ग का निरीक्षण कार्यक्रम है, उसके बाद गीता शोध संस्थान का दौरा, यूपी ब्रिज तीर्थ विकास परिषद में समीक्षा बैठक, श्री स्वामी हरिदास ऑडिटोरियम का लोकार्पण का कार्यक्रम है। इसी दौरान 582 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और 437 करोड़ की 167 नई परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम है। मथुरा में प्रदर्शनी अवलोकन, वृक्षारोपण, संतों से मुलाकात और गरीब बच्चों के अन्न प्राशन के साथ सीएम योगी का लाभार्थियों को चेक वितरण करने के बाद जनसभा के संबोधन का भी प्लान है। 4 सितंबर को जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी श्री कृष्ण जन्म स्थान पर गौ पूजन और मुख्य मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना आरती करने वाले हैं। सीएम योगी का मथुरा कार्यक्रम विकास और चुनावी सियासत दोनों वजहों से चर्चा में है। विपक्ष कहता है कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी के बाद अब बीजेपी की नजर मथुरा पर है।
3: वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है। जब जाने की बारी है, जब आपने श्री रामचंद्र जी के नाम का सहारा लिया, तो आपने नाम इसलिए लिया कि आपको वहां पे लूटना था। हम तो कहेंगे कि वहां पे जो भी महंत लोग हैं मथुरा में, अरे भाजपाइयों से सावधान रहो, नहीं तो जो चढ़ावा है वहां का, जो चंदा है उस पर भी निगाह इनकी पड़ चुकी, इनको घुसने मत देना वहां पर।
1: यूपी में अयोध्या मथुरा के नाम की सियासत में इतना साफ दिख रहा है कि विपक्ष अयोध्या के चढ़ावा चोरी के मुद्दे को ईवीएम के बटन दबाने तक घसीटने का प्लान बना चुका है, तो दूसरी ओर बीजेपी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर अखिलेश की पीडीए पॉलिटिक्स के सामने सनातन सियासत का कार्ड चल रही है। कुमार अभिषेक, मथुरा आज तक।
4: और अब बात अयोध्या की। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद अब पूरी व्यवस्था बदल गई है। बड़ी खबर आपको बताते हैं अयोध्या से। नए सीईओ जितेंद्र मिश्रा की मौजूदगी में ट्रस्ट की अहम बैठक हो रही है। अब इसमें ट्रस्ट के कई प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद हैं। खुद ट्रस्ट के महासचिव गोविंद देव गिरी के अलावा कोष अध्यक्ष महेश भागचंदका के अलावा ट्रस्टी जगदीश आफले भी बैठक में मौजूद हैं। अब इस बैठक में बड़े प्रशासनिक फैसलों की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रस्ट ने इस बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए। आशीष श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, बहुत अहम बैठक है, अब इस बैठक से जुड़ी क्या जानकारी अभी तक आपके पास आ पा रही है? आशीष,

0: आशीष माइक ऑन कीजिए प्लीज। देखिए राम मंदिर ट्रस्ट की ये बहुत अहम बैठक है। अब ये बैठक अहम क्यों कही जा रही है ये भी आप समझिए। इसमें नए सीईओ जितेंद्र मिश्र की मौजूदगी में ट्रस्ट की अहम बैठक हो रही है। कई प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद हैं। ट्रस्ट के महासचिव गोविंद देव गिरी के अलावा कोषाध्यक्ष महेश भागचंदिका के अलावा जो ट्रस्टी हैं जगदीश आफले वो भी इस बैठक में हैं। बड़े प्रशासनिक फैसलों की उम्मीद इस बैठक से जताई जा रही है और साधु संतों की तरफ से भी ये कहा गया था कि अब बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। जो पहले कुछ गड़बड़ियां रह गई थी उन गड़बड़ियों को अब दूर किया जाएगा, यही उम्मीद उनकी तरफ से जताई जा रही है। तो ऐसे में अब इस बैठक से बहुत उम्मीद भी है और बहुत परिवर्तन देखने को मिल सकता है व्यवस्थाओं से लेकर तमाम पहलुओं पर। अब ये बैठक देखिए, जब बैठक शुरू हुई उसके बाद जब यहां पर जा रहे जितेंद्र मिश्रा को आप यहां पर देख रहे होंगे, सबसे आगे जितेंद्र मिश्रा जो कि अब नए सीईओ हैं। सीधे आपको लिए चलते फर्रुखाबाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात रख रहे हैं।
1: डिग्निटी किट यानी इस प्रकार की लगभग 50 आइटम उसके साथ जुड़ी हुई हैं और ये हर बाढ़ पीड़ित को उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसे पिछले 15 दिन के अंदर हमारे इस क्षेत्र के तीनों विधायकों ने, विधायक सदर ने, विधायक कायमगंज ने, विधायक अमृतपुर ने, इन्होंने उन सभी पीड़ितों तक पहुंच करके जिला प्रशासन की मदद से उन पीड़ितों तक इस सामग्री को पहुंचाने और उन्हें राहत उपलब्ध करवाने का काम किया। यहां पर जो बात अपने उद्बोधन में माननीय जनप्रतिनिधिगण कह रहे थे, कायमगंज की माननीय विधायक ने जो बात कही, ये चीजें पहली बार देखने को मिल रही है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक उन शिविरों में जाकर के या गांवों में जाकर के अलग से उनकी क्लासेस भी ली जा रही हैं, स्वास्थ्य के शिविर लगाए जा रहे हैं, राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। हमारे चारों विधायकों ने और माननीय सांसद जी ने जो बात कही कि समय के अनुरूप मां गंगा उथली हुई है, स्वाभाविक रूप से जब भी नदी उथली होगी पानी का फैलाव होगा और पानी का फैलाव होने के कारण और फैलेगा, अन्नदाता किसान की फसल को नुकसान होगा। हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृत किया, लेकिन माननीय जनप्रतिनिधियों का कहना बिल्कुल सही है कि इसका एकमात्र समाधान है कि हम इस पूरे क्षेत्र में गंगा नदी की ड्रेजिंग करके उसको चैनलाइज करें और जो भी सीट निकलती है उसको बाहर तटबंध के रूप में इसका इस्तेमाल करें। हम इसकी पूरी परियोजना को, मैं इसीलिए आज आया भी हूं, मैंने देखा भी है, वास्तव में ये यहां की आवश्यकता है। इससे एक तो चैनलाइज हो जाएगी नदी तो आसपास के गांव बाढ़ से प्रभावित होने से बचेंगे, फसल बचेगी और लोगों को राहत मिलेगा। चिकित्सालयों में ये व्यवस्था की गई है कि सीजन में जल ही जल होने के नाते सांप बिच्छू या अन्य कीड़ों का भय रहता है। सरकार ने पहले से हर चिकित्सालय में एंटी स्नेक वेनम की व्यवस्था की है, एंटी रेबीज के वैक्सीन की व्यवस्था की है, पर्याप्त दवा की व्यवस्था भी की है। हर जगह ये हर सीएससी में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सुविधा पीड़ितों को उपलब्ध हो जाएगी। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जिन क्षेत्रों में, गांवों में पानी घुस गया है वहां पशुधन को भी नुकसान न हो, पशुओं के लिए चारा, उनको वैक्सीन उपलब्ध करवाना और दवा भी पशुओं को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, ये पूरी तैयारी हरेक क्षेत्र में युद्ध स्तर पर चल रही है। जिला प्रशासन यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के फील्ड लेवल की हमारी जो टीम है वह पूरी

मैं आश्वस्त करता हूं कि सरकार इसका स्थायी समाधान निकालना चाहती है और अस्थायी समाधान में यहां के अन्नदाता किसानों का सहयोग और इसके लिए प्रयास होना चाहिए कि अभी से हम प्लानिंग करें, ड्रेजिंग के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़वाने की तैयारी हम करवाएं। जहां कहीं भी थोड़े बहुत किसानों की जमीन आएगी वहां पर उसका उचित मुआवजा उन्हें मिले, ये व्यवस्था भी कराएंगे और फर्रुखाबाद को हम बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से मुक्त करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाएंगे। बहनों और भाइयों, अब तो फर्रुखाबाद बदल चुका है। अब आप देखो, आपके फर्रुखाबाद में गंगा एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे आ रहा है और ये आपको जोड़ेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ में। एक जंक्शन बन रहा है फर्रुखाबाद। अब आपको नारा नहीं लगाना पड़ेगा कि फर्रुखाबादी चूसे गन्ना और एक्सप्रेसवे, अबे नारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब फर्रुखाबाद के पास भी अपना एक्सप्रेसवे होगा। यहां की जिन सड़कों का चौड़ीकरण, ब्रिजेज के निर्माण के लिए, गांव की कनेक्टिविटी को अच्छा करने के लिए सरकार ने पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए, धन स्वीकृति के लिए प्रस्ताव मांगे हैं और हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने दिए हैं। देखिए, आपने देखा होगा अधिकतर गांवों में बाढ़ आई है, लेकिन गांव की कनेक्टिविटी ज्यादातर गांवों में बनी हुई है क्योंकि सड़कें अच्छी हैं, लोग आ जा पा रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत है और हमारा प्रयास होगा कि आने वाले समय में इस संकट उठी थी कड़ से भी हम यहां पर बोरा पैसे की व्यवस्था की है, जिनका कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा हुआ था उन किसानों के लिए। और मैं उन सभी किसानों को आश्वस्त करता हूं, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार उनके साथ में है, आप चिंता मत करिए। पहली बार अन्नदाता किसानों को वह सब लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्राप्त हो रहा है जिसकी कभी लोग कल्पना कर पाते थे। आपने देखा होगा गन्ना किसानों के लिए 400 रुपया कुंटल हम लोगों ने सीधे किया। हम लोग जब आए थे 250 से 300 रुपए के बीच में पैसे पर कुंटल दाम मिलता था, आज वही 400 रुपया है। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का समय पे भुगतान हो, गन्ना किसानों के लिए कोई समस्या ना हो, पर्ची की समस्या ना हो, घड़तोली की समस्या ना हो, उसका भी समाधान आज निकल चुका है। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। प्रदेश के अंदर किसान के लिए किसान फसल बीमा योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, या किसानों से संबंधित हो उनकी फसल को प्रोक्योरमेंट के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में लोग मक्का की खेती भी करते हैं, उसको क्रय करने के लिए क्रय केंद्र स्थापित हो। सरकार ने इस दिशा में भी अपने प्रयास को आगे बढ़ाया, उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। गन्ना यहां के आलू किसानों के लिए हम लोगों ने पेरू की मदद से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आगरा में इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर यानी आलू का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आगरा में स्वीकृत किया है, जिसने काम करना प्रारंभ कर दिया है। यानी डिमांड, दुनिया के मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट की डिमांड कैसा आलू है, उस प्रकार का आलू किसानों को उपलब्ध करवाना और उसके माध्यम से वैल्यू एडिशन के साथ किसान को जोड़ करके किसान को कई गुना आमदनी करवाना, जिससे अन्नदाता के चेहरे पर खुशहाली हो। ये सभी कार्य अन्नदाता किसानों के लिए किए जा रहे हैं। बाढ़ से जिन अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान हुआ है,

0: उसका सर्वे का भी निर्देश दिया गया है। सर्वे की रिपोर्ट आते ही अन्नदाता किसान के खाते में सीधे माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से धनराशि उनके खाते में सीधे जाएगा। किसान को आज सुरक्षा है, सरकार का संरक्षण भी है। सरकार हर स्थिति में अपने अन्नदाता किसान के साथ खड़ी है, सरकार अपने युवाओं के साथ खड़ी है। आपने देखा होगा पहली बार युवाओं को सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के प्राप्त हो रही है। पुलिस की भर्ती हो, अब मैं नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं, पूछता हूं कहां से, तो बताता है फर्रुखाबाद से। यानी फर्रुखाबाद जनपद का नौजवान भी बिना भेदभाव के सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, अब फर्रुखाबाद के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, फर्रुखाबाद के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। नौजवान के लिए ढेर सारे अवसर हैं आगे बढ़ने के लिए। सरकारी नौकरी में व्यवस्था है, एमएसएमई सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से ब्रांडिंग की, उसमें नए अवसर आ रहे हैं रोजगार के, तेजी के साथ उसको आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतरीन माहौल क्या बना कि प्रदेश के अंदर भारत का सबसे बड़ा निवेश का प्रस्ताव 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव अकेले उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं।
1: यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: यूपी में चुनाव से पहले ही आखिरी मौका है जब पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर केंद्र और राज्य की योजनाओं को इतने बड़े पैमाने पर प्रचार की तैयारी की जा चुकी है। सत्रह सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी तो देश भर में एक महीने का आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है, लेकिन यूपी में ये ज्यादा प्रभावी हो सकता है क्योंकि इस अभियान में वाराणसी एक बड़ा सेंटर है। बीजेपी ने तय किया है कि पीएम मोदी के सीएम पीएम रहते 25 साल पूरे होने के मौके पर अब तक के माइलस्टोन्स को जनता तक पहुंचाया जाए। इसके लिए 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान शुरू होने वाला है। इसमें गुजरात के वडनगर और यूपी के वाराणसी से बीजेपी की टीमें प्रचार के लिए निकलेंगी। दोनों शहरों से 10-10 टीमें रवाना की जाएंगी, जिसमें वडनगर से निकली टीम वाराणसी और वाराणसी से निकली टीम वडनगर जाएगी। हर टीम में 10 या अधिक बाइकर्स बसें शामिल होंगी। हर टीम रोज 100 किलोमीटर का सफर करेगी। ये बीजेपी सरकार का संदेश लोगों तक पहुंचाएगी। कुल 1500 किलोमीटर के सफर में ये टीम 60 से अधिक कार्यक्रम में शामिल होगी। रोज 100 किलोमीटर के सफर के बाद ठहरने वाली बीजेपी की टीम पहले से तय 4 कार्यक्रमों में शामिल होगी और वहां बीजेपी सरकार की योजनाओं और कामयाबियों को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। इस सेवा संकल्प
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: So sorry.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

बाढ़ संकट पर पीएम मोदी ने वाराणसी के मेयर और डीएमसी की बातचीत, राहत में मुस्तैदी का निर्देश। यूपी के फरुखाबाद में सीएम योगी ने किया सैलाब में समाये इलाकों का मुआयना। उत्तराखंड में बाढ़ से बिगड़े हालात। बीजेपी को हराना नहीं है आसान, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। कहा यूपी में नहीं है बीजेपी के खिलाफ हवा, चुनाव में टक्कर देने के लिए फौरन बनाना चाहिए रोड मैप। नशा मुक्ति अभियान के तहत ईडी का मेगा एक्शन, दक्षिण भारत में 30 जगहों पर एक साथ छापेमारी। हैदराबाद के गांजा डॉन के ठिकानों पर चल रही है रेड, करोड़ों का नशीला पदार्थ जब्त। मंदिर ट्रस्ट के सीईओ बनते रिटायर है मास्टर जितेंद्र मिश्र पहुंचे अयोध्या। कहा श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया के गांव में जश्न, गोविंद गिरी बने महासचिव। आज से दो दिन तक ब्रिज की जमीन से सीएम योगी की चुनावी हुंकार। जन्माष्टमी पर करेंगे बांके बिहारी के दर्शन, पंचायत आज तक मथुरा में करेंगे शिरकत। आज दिन भर सियासी दिग्गजों का जमावड़ा।

सीएम योगी ने फरुखाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से की मुलाकात, जनसभा को किया संबोधित। सीएम योगी ने 96 बाढ़ पीड़ितों को दी 1.2 लाख के चेक और 66 बाढ़ पीड़ितों को दी पट्टे की जमीन का प्रमाण पत्र, साथ ही राहत किट सामग्री का किया वितरण। गंगा की उफनती लहरों से पैदा हुए बाढ़ के हालात पर पीएम मोदी ने वाराणसी के मेयर और डीएम से की बातचीत, राहत में मुस्तैदी का निर्देश। शुद्धिकरण मामले से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी, कहा 24 दिन बाद भी नहीं हुआ कोई एक्शन, जल्द एफआईआर की मांग। नशा मुक्ति अभियान के तहत ईडी का मेगा एक्शन, दक्षिण भारत में 30 जगहों पर एक साथ छापेमारी। हैदराबाद में गांजा डॉन के ठिकानों पर छापेमारी जारी, करोड़ों का नशीला पदार्थ जब्त। मथुरा में पंचायत आस्था का शानदार आगाज, सीएम योगी आदित्यनाथ, मंत्री, सांसद, विपक्षी नेता, धर्मगुरु और वकील, यूपी की सियासत, हिंदुत्व, मथुरा समेत चुनावी मुद्दों पर चर्चा। मथुरा में आयोजित पंचायत आस्था के मंच पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर जमकर निशाना, कांग्रेस की जीत का किया दावा। पंचायत आस्था के मंच से अजय राय ने 2027 में पिंडरा सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान, 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर उठाए सवाल। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने शुरू की घोषणा पत्र की तैयारी, जेएनजी और युवाओं पर रहेगा खास फोकस। यूपी मिशन को लेकर शिवपाल यादव का बड़ा दावा, कहा एसपी कांग्रेस का गठबंधन ठीक चल रहा है, 2027 से मिलकर लड़ेंगे चुनाव, अखिलेश बनेंगे सीएम। राम मंदिर के नवनियुक्त सीईओ जितेंद्र मिश्रा पहुंचे अयोध्या, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। मंदिर के पहले सीईओ जितेंद्र मिश्रा ने अपने चयन पर ट्रस्ट समिति का जताया आभार, बोले राष्ट्र सेवा के बाद अब राम भक्तों की सेवा का अवसर है। जितेंद्र मिश्रा का राम मंदिर सीईओ बनने का देवरिया के गांव में जश्न, लोगों ने कहा मिला ईमानदारी का तोहफा। राम मंदिर के नए महासचिव गोविंद देवगिरी महाराज ने पूर्व महासचिव चंपत राय से की मुलाकात, चढ़ावा चोरी मामले में इस्तीफा दे चुके पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा भी रहे मौजूद। अयोध्या के श्री राम मंदिर में सीईओ सहित नई नियुक्तियों के साथ 6 साल पुराना सिस्टम लेगा नया रूप। पोस्टर से रील तक बीजेपी की नई चुनावी रणनीति, यूपी में 27,000 शक्ति केंद्रों पर बनेगी 2,07,000 रील्स। लखनऊ बीएसपी की बड़ी बैठक, 2027 होने वाले 5 राज्यों के चुनाव की तैयारियों की करेंगी समीक्षा। लखनऊ के जेपीएनआईसी को 30 साल की लीज पर निजी हाथों में सौंपने के फैसले पर अखिलेश का बीजेपी पर तीखा हमला, बोले इतिहास और भविष्य की पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। मैनपुरी सीओ सिटी के वायरल वीडियो पर अखिलेश का पुलिस प्रशासन व्यवस्था पर तंज, पुलिस सिर पर सत्ता सजातीय का हाथ है पर बदलाव दस्तक दे रहा है, नहीं करेंगे निलंबन की मांग। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, काम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा हारे और हमारी पार्टी प्रदेश में बनी रहे, लेकिन बीजेपी को हराना आसान नहीं है। अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल शूटर्स का नया वीडियो, मर्डर से 3 घंटे पहले मोबाइल शॉप से सिम कार्ड खरीदते दिखाई दिए। शामली के अंकित बालियान हत्याकांड में फरार दोनों शूटर्स पर इनामी राशि बढ़कर 1-1 लाख रूपये हुई, दिल्ली समेत 5 राज्यों में दबिश। अंकित बालियान की कार में ट्रैकिंग डिवाइस लगाने वाले सत्यम और दूसरे कातिल आर्यन की तलाश तेज। अंकित बालियान हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर राकेश पंपू को एनकाउंटर कर डीजीपी को पत्र लिखकर लगाई सुरक्षा की गुहार। एसआर विवाद पर आपका राघव चड्ढा पर पलटवार, दिल्ली में बैकडेटेड वोटर रजिस्ट्रेशन कराने का लगाया आरोप। ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम शिफ्ट दर्ज होने पर राघव चड्ढा ने आप सरकार पर राजनीतिक बदले का आरोप लगाया, कहा ड्राफ्ट मतदाता सूची प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। कोलकाता में 290 करोड़ बैंक फ्रॉड मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 11 अलग ठिकानों पर छापेमारी की। बीसीसीआई में मनन मिश्रा की ताकत पर चली कैंची, सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी निर्वाचित अध्यक्ष नहीं माना, फिलहाल कार्यवाहक भूमिका तक सीमित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली पर अहम आदेश दिया, बड़े नीतिगत फैसले में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को शामिल रहने का निर्देश। पंजाब में चल रहे एसआर अभियान के दौरान सांसद राघव चड्ढा का नाम पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कटा, नाम के आगे परमानेंटली शिफ्टेड लिखा गया। राघव चड्ढा 12 सितंबर 2026 तक अपने नाम काटे जाने पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, दोबारा नाम ऐड करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पश्चिम बंगाल में एक बिल्डिंग में तोड़फोड़ को लेकर गरमाई सियासत। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने सीसीटीवी वीडियो जारी कर बीजेपी पर बोला हमला। अभिषेक बैनर्जी ने प्रशासन पर उठाए सवाल, आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, पूरे मामले की जांच की मांग की। पाकिस्तान का एयर 16 गिराने वाले भारतीय वायुसेना ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान की नई पारी, अब प्राइवेट एयरलाइन FLY 91 से जुड़े। नेपाल में तबाही का आंकड़ा बढ़ा, मृतकों की संख्या 1200 के पार पहुंची, 4875 लोग लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक करीब 12,000 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, सेना के हेलीकॉप्टर तैनात, पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद और घायलों का मुफ्त इलाज। पीएम बालेन झा ने जलवायु परिवर्तन से जोड़ा हादसा, भारी बारिश से रेस्क्यू अभियान प्रभावित, 400 मेगावाट बिजली उत्पादन भी बाधित। नेपाल के भोते कोशी बाढ़ से तबाही, पीएम बालेन झा बोले दृढ़ संकल्प और सांस के साथ संकट से लड़ना होगा। नेपाल में भारी बारिश का असर, नदियों का जलस्तर बढ़ने से बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ा। पटना में गंगा नदी का रौद्र रूप, सभी घाट जलमग्न, सुरक्षा के मद्देनजर घाटों पर एनडीआरएफ एसएसबी तैनात। गंगा कपड़ा जलस्तर, घाटों से सरी सड़कों पर पहुंचा बाढ़ का पानी, प्रशासन अलर्ट पर। बिहार के वैशाली जिले में गंडक नदी उफान पर खतरे के निशान से 51 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा जलस्तर, प्रशासन अलर्ट पर। बिहार में गंगा गंडक नदी का कहर, हाजीपुर में बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में 1700 घरों में घुसा पानी। चित्रकूट में बरसाती नाले का कहर तेज, बाढ़ में बहकर महिला की मौत, 24 घंटे बाद मिला शव। चंदौली में भारी बारिश से लबालब हुए डैम और जलाशय, क्षमता से ज्यादा भरा पानी। देहरादून में तेज बारिश का कहर, नाले में बही क्रेटा कार, श्रीगंगानगर की युवती समेत दो की मौत। हिमाचल के सोलन में भारी बारिश, कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर आया सैलाब, कई वाहन फंसे। बांदा में लगातार बारिश से हालात बिगड़े, चारों तरफ जलभराव, कच्ची दीवार गिरने से दो महिलाओं की मौत, जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बिहार के मुंगेर में गंगा नदी उफान पर, नौवागढ़ी में तेज कटाव से दहशत। हरियाणा के यमुनानगर में जिम के बाहर ट्रांसपोर्टर की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। घटना के बाद शहर में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश तेज। वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, सीसीटीवी कैमरों में तलाशे जा रहे हमलावर के सुराग। दिल्ली के जिम के बाहर गोली मारकर शख्स की हत्या, सोनीपत के प्रॉपर्टी डीलर के कई दिनों से आ रहे थे रंगदारी के कॉल, फिलहाल हत्या के कारणों का नहीं चल सका है पता। कानपुर में घर के बाहर युवती की गोली मारकर हत्या, पंचायत चुनाव की रंजिश वारदात, बदमाशों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा, चाचा पर भी किया था जानलेवा हमला। मृतक के घर वालों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप, पुलिस ने पुरानी रंजिश का दिया हवाला। कौशाम्बी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, हादसे में 14 की मौत, 4 घायल। बिहार के मधेपुरा में मार्केट में लगी भीषण आग, 16 दुकानें जलकर राख, करोड़ों के नुकसान का अनुमान। एमपी के रीवा में भीषण सड़क हादसा, बस ट्रक के आमने सामने से टक्कर में 5 की मौत, 13 घायल। दरभंगा में युवक की संदिग्ध हालत मौत, चेहरे पर चाकू के निशान, हत्या की आशंका पर ग्रामीणों का हंगामा। बघा में उप मुखिया और वार्ड पार्षद को अपराधियों ने मारी गोली, दोनों की हालत गंभीर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोयले से भरे ट्रक में आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। बरेली में इमामबाड़े पर चला नगर निगम का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत के बाद कार्रवाई। नगर आयुक्त ने बताया कि वैध कब्जे को लेकर IGRS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। लखनऊ में लिविन पार्टनर की गला घोटकर हत्या, शव नहर में फेंकने पहुंचा आरोपी गिरफ्तार। सूरत में बीजेपी युवा नेता जय दलाल हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार, महाराष्ट्र से पकड़ा गया आरोपी। देहरादून में तेज रफ्तार का कहर, कई वाहनों को टक्कर मार, सब्जी की दुकान में घुसी कार। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु से खुदकुशी की नियत से युवक ने लगाई छलांग, SDRF ने बचाया। वलसाड़ में दमन ब्रिज से मां बेटी ने समुद्र में लगाई छलांग, स्थानीय मछुआरों ने देवदूत बनकर बचाई जान। सूरत में प्रॉपर्टी डीलर की 10 लाख की सुपारी देकर हत्या मामले में 4 शूटर गिरफ्तार, मुख्य साजिशकर्ता फरार। पटना में करोड़ की विदेशी शराब जब्त, 6 शराब तस्कर गिरफ्तार। कल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट US-5 लॉन्च करेगा इसरो, आपदा प्रबंधन, मौसम की निगरानी और रणनीतिक सुरक्षा होगी बेहतर। GSLV-S70 मिशन से पहले भगवान वेंकटेश्वर के दरबार पहुंचे इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी तकनीक से बने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम खंगटक 243 का किया सफल परीक्षण, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और JSR डायनेमिक्स ने मिलकर किया है तैयार। केदारनाथ धाम के लिए 15 सितंबर से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, 7 सितंबर श्रद्धालु कर सकेंगे ऑनलाइन बुकिंग। भोपाल में 7 दिवसीय रासलीला समारोह आयोजित, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। वेब सीरीज की जबरदस्त सफलता के बाद कल रिलीज होगी मिर्जापुर द मूवी, जिसमें कालीन भैया, गुड्डू भैया और मुन्ना भैया का जलवा देखने को मिलेगा।
कल बॉक्स ऑफिस पर अर्शद वारसी और संजीदा शेख की डार्क कॉमेडी थ्रिलर जीवन बीमा योजना दस्तक दे रही है। अर्शद वारसी पहली बार डबल रोल में आएंगे नजर। तापसी पन्नू की फिल्म गांधारी आज ओटीटी पर रिलीज हो रही है। बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के बाद कल अजय देवगन की धमाल 4 नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इसमें अर्शद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा समेत कई अन्य सितारे शामिल। कल से एक बार फिर लौट रहा है लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस। इस शो का 20वां सीजन कल से जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगा। कुणाल खेमू की दूसरी विजय निर्देशित फिल्म वाइब का ट्रेलर लॉन्च। इस फिल्म में कुणाल प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव, वंशिका और अन्य कलाकार शामिल हैं। रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 की रिलीज डेट आई सामने। 15 अक्टूबर को दशहरा के दौरान सिनेमाघर में दस्तक देगी फिल्म। शैतान और A2 की सफलता के बाद देवगन फिल्म्स और पैनोरामा स्टूडियोज की नई हॉरर थ्रिलर फिल्म पर शुरू किया गया काम। कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार किच्चा सुदीप के जन्मदिन पर फैंस को मिला बड़ा सरप्राइज। उनकी भव्य ऐतिहासिक फिल्म देवरिया की हुई आधिकारिक घोषणा। रवीना परिणीति के बाद मालामाल वीकली 2 में ईशा देओल की हुई एंट्री। दोनों फ्लोर पर जल्द आएंगी ईशा की फिल्म। अमेरिका के मिनियापोलिस में शहर में गोलीबारी, 2 की मौत, शूटर भी मारा गया। घटना में 3 पुलिस अधिकारी घायल, जिनमें 2 को गोली लगी है लेकिन 3 की हालत स्थिर है। गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस लोगों को इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी। FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने घटना पर दी प्रतिक्रिया। PM मोदी और ईरान के राष्ट्रपति की मुलाकात पर अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। कहा उन्हें नहीं लगता कि भारत और ईरान के बीच किसी ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई देश ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाने में मदद करेगा तो अमेरिका उस देश पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरानी संसद के स्पीकर का बड़ा बयान। कहा अमेरिका के सहयोगी देश भी अब ये मानते हैं कि वॉशिंगटन असुरक्षा की वजह है। ट्रंप ने फिर किया होमस पर अधिकार होने का दावा। ये भी कहा कि पाबंदी और हमलों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद है। होम स्ट्रेट में अमेरिका की नाकेबंदी जारी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी सेना 86 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदल चुकी है। इस बीच ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने यमन के ताइज और होदीदा में 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 100 साल से ज्यादा पुराने हिंदू मंदिर को गिराए जाने की कड़ी निंदा की। वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स और सेना के हमलों में 2 फिलिस्तीनी किशोरों की मौत। इजरायली सेना ने नागरिकों की सुरक्षा के इलाके में घुसने की कही बात। ट्रंप के यूक्रेन शांति समझौते पर सहमति के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने शिखर सम्मेलन में ये कही बात। कहा जंग में हर महीने 25,000 नौजवान सैनिक मारे जा रहे हैं। अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत में ड्रग तस्करी से जुड़े जहाज पर हमले का वीडियो जारी किया है। इजिप्ट दौरे के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की काहिरा से रवानगी। अपने दौरे में जिनपिंग ने इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फते अल सीसी से की मुलाकात। सेउटा प्रवासी संकट का प्रदर्शन कर रहे लोगों को मैड्रिड में पुलिस ने किया तितर बितर।

0: आज तक के उत्तर प्रदेश पंचायत में आपका बहुत स्वागत है। आज चर्चा इस बात को लेकर भी कि क्या सबसे बड़ा चैलेंजर कौन होगा योगी के सामने, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और क्या मथुरा से निकलेगा विपक्ष का रास्ता, हमारे साथ बेहद खास मेहमान, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी जुड़ रहे हैं। 5 बार के विधायक हैं और 23 से ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं और बार बार वाराणसी से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक को ललकारने की कोशिश करते हैं। माइक उठा लीजिए, पहला प्रश्न आपसे यही है कि कांग्रेस पार्टी की, मैं गठबंधन की बात नहीं कर रही हूँ, कांग्रेस पार्टी की कैसी तैयारी चल रही है अजय राय जी?
1: सबसे पहले मैं आज तक को और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हम सबको यहाँ आमंत्रित किया है। निश्चित तौर से देखिए, कांग्रेस पार्टी संघर्ष की पार्टी है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जिस तरीके से पूरे देश की बात उठा रहे हैं, चाहे वो अत्याचार बच्चों के साथ हो, किसान के साथ हो, महिलाओं के साथ हो, हर जगह पर अगर कोई आवाज़ उठा रहा है, इस देश के अंदर अगर बुलंद कर रहा है विपक्ष की आवाज़, तो एकमात्र हमारे नेता राहुल गांधी हैं जो ललकार कर अपनी बात को रख रहे हैं। और कांग्रेस विचारों की पार्टी है, संघर्ष की पार्टी है, क्रांतिकारियों की पार्टी है। हमारी तैयारी गांव गलियारे से लेकर मोहल्ले, हमारा एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहा है। जहां भी अत्याचार अन्याय हो रहा है इस सरकार में, जहां पर भी आप देख सकते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर गली गलियारे में कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी 2027 की तैयारी है। जैसे मैंने कहा था 2024 में कि बनारस में मोदी हारेंगे, आपसे ही कहा था, और यही 27 में के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ आएगी, सरकार बनाएगी।
0: कांग्रेस पूरी ताकत के साथ आएगी, सरकार बनाएगी या अखिलेश बाबू के भरोसे रहेगी?
1: देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा कि हमें किसके साथ रहना है, कितनी सीटों पर लड़ना है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। हमारा काम है कांग्रेस को मजबूत करना और हमारा एक एक कार्यकर्ता उस पर काम कर रहा है, हम उसको ताकतवर बना रहे हैं।
0: 2017 में जब आपका अलायंस हुआ था विधानसभा के लिए, तो लगभग 100-112 सीटें या 114 सीटें आपको मिली थी। पहला प्रश्न, क्या कांग्रेस पार्टी इस बार फिर समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेगी? दूसरा, अगर करेगी तो कितनी सीटें आप चाहेंगे बतौर प्रदेश अध्यक्ष?
1: देखिए, मैंने पहले भी कहा था अंजना जी कि ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। हमारा निर्णय जो हमें जिम्मेदारी पार्टी ने दिया है, मैं 3 साल, अभी 17 अगस्त को मेरा 3 साल पूरा हुआ है, इन 3 सालों में उत्तर प्रदेश की जितनी घटनाएं घटी हैं, जहां भी अत्याचार अन्याय हुआ है, चाहे वो शामली में अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई हो, चाहे महोबा के अंदर एक दलित बच्ची के साथ रेप किया गया 10 दिन, चाहे ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति को तलवार से काट दिया गोरखपुर में, वहां पर ई रिक्शा चालक की बच्ची के साथ रेप हुआ, पूरे प्रदेश के अंदर महोबा से लेकर बलिया से लेकर कहीं भी अत्याचार अन्याय हुआ, गाजीपुर से गाजियाबाद तक, कांग्रेस पूरी ताकत के साथ खड़ी रही है। निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का है। हमारा काम है कांग्रेस को मजबूत करना, अपने कार्यकर्ताओं को ताकत देना और जनता के विश्वास पर खरा उतरना, वो मैंने पूरी ताकत के साथ काम किया।
0: चलिए अजय राय जी, बहुत दिलचस्प तरीके से मैं भी वही सवाल पूछ रही हूँ, वो जवाब भी अपने तरीके से जो सोच के आए वही दे रहे हैं। एक बार पुनः कोशिश करती हूँ, लोकसभा चुनाव में जो भी आपका गठबंधन रहा और जिस तरह से आपने फाइट बैक किया, आपका जमीनी आकलन क्या है? क्या बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप ये चाहते हैं कि विपक्ष के लिए ये बेटर स्ट्रैटेजी होगी कि आप मिलकर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े? अजय राय की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है?
1: देखिए, ये इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन में जो भी दल हैं सब मिलकर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इसका नेतृत्व हमारा नेतृत्व निर्णय लेगा, नेतृत्व उस पर मजबूती से अपनी बात को करेगा। और ग्राउंड रिपोर्ट में बता दूं, 2024 में आप देख सकते हैं हमारी जो एक सीट थी, हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी सांसद थी, आप देख सकते हैं 6 सीट सरकार चुनाव आयोग जिस तरीके से मिलकर काम कर रहा, एक गठबंधन के तौर पर चुनाव आयोग और भाजपा का गठबंधन मैं कह दूं, ये पूरा काम कर रहा, उसके बावजूद भी हम मजबूती के साथ आप जीते। और मैंने बनारस के अंदर आपने देखा प्रधानमंत्री के खिलाफ, जहां बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, मोदी जी अपनी बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में जाकर झूठ बोल रहे हैं, उनको बनारस में बनारस की जनता के आशीर्वाद से 7 राउंड चुनाव हराया। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, ये ग्राउंड की रियलिटी है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कि 12 बजे 12:30 बजे के बाद चुनाव आयोग ने अपने अधिकृत वेबसाइट से बनारस को हटा दिया। अपडेट
0: वही पंजाब की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि पंजाब में रेप समेत आपराधिक मामलों को खत्म कराने के नाम पर 5 करोड़ रुपए तक की कथित वसूली की जा रही है। बीजेपी ने इस पूरे मामले में 2 ऑडियो क्लिप जारी किए जिसमें पार्टी के मुताबिक एक कथित बिचौलिया पैसों की मांग को लेकर बातचीत कर रहा है। बीजेपी ने सीधे सवाल पूछा है कि क्या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नाम पर केस खत्म कराने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। इस मामले मुख्यमंत्री की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर मान का नाम भी आरोपों के बीच सामने आया है। आरोप यह है कि बिचौली ने अपने राजनीतिक संपर्कों का हवाला देते हुए केस खत्म कराने की करोड़ों रुपए की बात कही है।
2: क्या पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल के लूट मॉडल में पंजाब की हमारी बच्चियां जिन पे दरिंदों ने रेप किया है, क्या अरविंद केजरीवाल उन दरिंदों के साथ में मिलकर ये अपना भ्रष्टाचार करने का प्रयास करने के चक्कर में क्या केसेस वापस ले रहे हैं? और इस संबंध में ये फोटोज भी है जो उसी संबंध के तरफ में आई थी जब ये पंजाब के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी एक पंजाब के रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट के अंदर एलिगेशन है जिसका नाम है रैप्स सैंडी बार एंड किचन। जब ये केस चल रहा था तो 13 मई को, ध्यान दीजिए, 13 मई को ये एक्यूज अरेस्ट होता है और 20 मई को वो मिडिलमैन से क्या पंजाब के मुख्यमंत्री की वाइफ की मीटिंग हुई है, ये हमारा चार्ज है, इस पर उनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। सो द कंक्लूजन विच वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हियर इज द फॉलोइंग। ए, पंजाब के अंदर एक करप्शन का लूट मॉडल चल रहा है, जैसे दिल्ली के अंदर करप्शन का लूट मॉडल शीश महल वाला चल रहा था, यहां पे रेप के केसेस पे रेप पीड़िताओं के साथ अन्याय करते हुए अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की सरकार 5-5 करोड़ की रिश्वत ले रही है, इस पर उनको जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, जब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियोस, टेक्स्ट सामने आए हैं और ऑलरेडी एनएचआरसी ने लिखा है, तो क्या पंजाब की सरकार को इन मैटर ऑफ जस्टिस एक सेंट्रल एजेंसी प्रोब नहीं ऑर्डर करनी चाहिए? पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3, आज भगवंत मान और के
0: और सीधे आपको लिए चलेंगे, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं,
3: अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है। हमारी सरकारों और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच हुए एग्रीमेंट से डिफेंस को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे। हम अपनी एजेंसीज के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग और क्राइम के विरुद्ध कोऑपरेशन को भी और मजबूत करेंगे। फ्रेंड्स, एक क्लीन एनर्जी फ्यूचर और रिलायबल सप्लाई चेन हमारी साझी प्राथमिकताएं हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पर आज हुआ एमओयू हमारे सस्टेनेबिलिटी सहयोग को नई गति देगा। क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है। इस दिशा में हम बेल्जियम के आईमेक इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी ताकत है। आज हमने अपने स्टार्टअप्स के बीच कनेक्ट मजबूत करने और मैरिटाइम सेक्टर में कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने पर सहमति बनाई। हम यूनिवर्सिटी और रिसर्च सहयोग को भी सुदृढ़ करेंगे और टैलेंट मोबिलिटी के लिए हम जल्द ही माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट पर भी विस्तार से चर्चा की। भारत और बेल्जियम दोनों ही रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। योर एक्सेलेंसी, पिछले महीने बेल्जियम और नीदरलैंड ने मिलकर हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट किया। मैं इस वर्ल्ड कप के भव्य आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अपने खिलाड़ियों की मेहनत और प्रदर्शन के लिए भी उनकी सराहना करता हूं। डायमंड्स ने भारत और बेल्जियम को लंबे समय से जोड़ा है। आज हम इस ऐतिहासिक जुड़ाव को एक व्यापक साझेदारी का नया रूप दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी चर्चा आपसी संबंधों में एक नया अध्याय की शुरुआत है। एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू सर। मे आई नाउ रिक्वेस्ट हिज एक्सीलेंसी मिस्टर बार्ट डे वीवर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंगडम ऑफ बेल्जियम, टू गिव हिज रिमार्क्स टू द मीडिया।
5: थैंक यू। Ladies and gentlemen of the press, namaskar. First of all, I would like to express my sincere condolences to the families of the Indian citizens who lost their lives in the devastating floods in Nepal. We saw this, we were horrified.
0: इसी के साथ यहां रुकेंगे, फिर से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। टिकते रहिए आज तक।
6: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से। इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर गया।
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: इन एसोसिएशन विद
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
4: ये मार्केट को पता कैसे लग जाता है सर, कुछ बड़ा होने वाला है?
5: देखिए, तेजी में सबको सब चीज पे भरोसा होता है, मंदी में सब सवाल उठते हैं कि भाई ये कैसे हो गया। तो बफेट साहब ने भी बोला ना, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। क्या होता है कि जब भी, जैसे अभी हम लोग वी आर लिविंग थ्रू दिस ना, कि रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है, वॉर चल रहा है, यू नो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे होएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होएगा, ये सब चिंता हो रही है लोगों को।
6: डोनाल्ड ट्रंप
5: साहब है, जियो पॉलिटिक्स है, वॉर है, ये चिंता हो रही है। तो पिछले 27 साल से मैं वो मार्केट में 6 बार हो चुका है। तो मैंने क्या देखा है कि जितना नंबर चेंज नहीं होता ना, उतना लोगों का मूड चेंज हो जाता है। तो आज के ज़माने में वैल्यू की डेफिनेशन ही ये है, मिसप्राइज्ड ग्रोथ।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू,
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: हम बस कल्पना कर सकते हैं कि यह शहर पहले कैसा रहा होगा।
5: इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। यहाँ पर बिना किसी स्टिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते।
4: ये हब है जहाँ पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है।
5: जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे।
4: कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, बरेली, नेपाल, आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: बात करेंगे सितंबर में जारी मानसूनी आफत की। यूपी के वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक गंगा और यमुना उफान के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री और सीएम योगी भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे। वहीं बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल में मानसून का कहर जारी है। बिहार में जहां नदियां उफान पर हैं, वहीं बंगाल से आसनसोल में सड़क धंसने से लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इसके अलावा उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश में भी आसमानी आफत है। उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से हादसे हो रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों से आ रहे मलबे ने लोगों को परेशान कर दिया है। सबसे पहले बात वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक नदियों के उफान के चलते बिगड़ते हालात की। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ जाने से वर्णा नदी उफान पर है, कई इलाकों में पानी भर गया है। प्रयागराज में गंगा यमुना के रौद्र रूप ने हालात बिगाड़ दिए।
1: गंगा की उफनती लहरों से पैदा हुआ बाढ़ का संकट, वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक बाढ़ से बिगड़े हालात, काशी के घाटों से लेकर कई इलाकों तक पानी ही पानी। सितंबर का महीना चल रहा है और वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक बाढ़ का कहर जारी है। भारी बारिश और गंगा नदी में उफान के चलते काशी के कई इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। कई पक्के घाट, घाटों से जुड़ी गलियां और रास्ते पानी की चपेट में आ चुके हैं। गंगा का बढ़ता पानी अब वर्णा नदी में पलट प्रवाह का कारण बन गया है। इसके चलते वर्णा किनारे बसी दर्जनों बस्तियां और रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और लोग आने जाने के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं।
2: हमारी मौजूदगी वाराणसी के इस कुनिया घाट, कुनिया पुल पर है, जो शहर के एक हिस्से से दूसरे इस कुनिया के इलाके को जोड़ता है। लेकिन जहां तक नज़र जा रही है, सिर्फ और सिर्फ जो वरुणा का पानी है वह इस रिहायशी इलाके में यानी कुनिया और आसपास के तमाम इलाकों में घुस चुका है। अभी भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी आबादी रहती है वाराणसी में, वरुणा किनारे रहती है और बुरी तरह से वे भी प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने तमाम इंतजाम के दावे किए हैं और वे कोशिश भी कर रही है कि लोगों तक, बाढ़ पीड़ितों तक पूरी मदद पहुंचे।
1: गंगा नदी और वरुणा के पलट प्रवाह के चलते कोनिया घाट का इलाका पानी पानी हो गया है, जिसके चलते कई लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन कर चुके हैं। वरुणा बाढ़ से करीब 10 से ज्यादा मोहल्ले प्रभावित हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है और राहत और बचाव कार्य के लिए कई नावें तैनात की गई हैं और प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी जा रही है। वाराणसी नहीं, यूपी के दूसरे जिलों में भी लोग मानसूनी आफत का सामना कर रहे हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना के उफान के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर का असर साफ दिखाई दे रहा है। छोटा बघाड़ा, सलोरी और दारागंज के निचले इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है। सड़कें जलमग्न हैं, दशाश्वमेध घाट के आसपास भी पानी का कब्जा है और कई जगहों पर नावें चलती नजर आ रही हैं।
3: ये नागवासकी रोड दारागंज की सड़क है, जहां पर ये गंगा का पानी आ गया है। दशाश्वमेध घाट है और यहाँ पर जो लोगों के तमाम घर है इस बाढ़ के पानी में समाते जा रहे हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी चला गया है, लोग दूसरी मंजिलों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं।
1: तो साफ है कि गंगा और यमुना के रौद्र रूप ने जहां प्रयागराज में हालात बिगाड़ दिए हैं, वहीं गंगा के बढ़ते जलस्तर ने काशी में कहर बरपा रखा है। वाराणसी से रोशन कुमार और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तो वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से हालात मुश्किल हो गए हैं। सबसे ज्यादा असर काशी के मां शमशान मणिकर्णिका घाट पर देखने को मिल रहा है। घाट के सभी शवदाह प्लेटफॉर्म पानी में डूब गए हैं। इसे ऊंची छत पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लोग नाव का सहारा लेकर शवों को लेकर वहां पहुंच रहे हैं।
2: वाराणसी में गंगा ने वैतरणी का रूप अख्तियार कर लिया है। फर्क इतना है कि वैतरणी पार करने के बाद यमलोक में प्रवेश मिलता था, क्योंकि माना जाता है कि वैतरणी का रास्ता बहुत ही कठिन और दुर्गम होता है। तो वहीं गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट पर मोक्ष की कामना के लिए शवों के आने का सिलसिला जारी है। देख सकते हैं कि कितनी बाधाओं को पार करने के बाद लोग इस मणिकर्णिका घाट के ऊंचे बने मचान, जिसे छत कहते हैं, वहां पर शव लेकर जा रहे हैं और बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कहा जाता है कि अंतिम यात्रा में जहाँ चार कंधे शव को मिला करते हैं, लेकिन अब उससे भी लोगों को वंचित रहना पड़ रहा है, क्योंकि नाव ही एकमात्र सहारा है जिसके जरिए लोग डेड बॉडी को ऊपर बने मचान तक ले जा रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, क्योंकि गंगा किनारे का पूरा घाट जो है वे जलमग्न हो चुका है। और देख सकते हैं कि जितनी भी छोटी बड़ी इमारतें हैं, मंदिर है, मठ है, वे भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। तो शवयात्री इस तरह से ऐसे हालात में और मजबूरी वश शवों को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अब चार कंधा भी मिलना मुश्किल हो गया है और नाव ही मात्र एक सहारा है। और बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में गंगा चेतावनी बिंदु को पार कर चुकी है और महज आधे मीटर ही शेष रह गई है खतरे के निशान को लेकर, और अभी भी बढ़ाव जारी है। लगभग 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बढ़ाव देखा जा सकता है।
0: वाराणसी में बढ़ रहे गंगा के जलस्तर से बाढ़ के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के मेयर और कलेक्टर से फोन पर बातचीत कर हालात का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से बाढ़ से प्रभावित इलाकों और राहत बचाव के लिए किए जा रहे इंतजामों की जानकारी ली। उन्हें राहत कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि बाढ़ के कारण आम लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। और अब बात यूपी की, जहां बारिश के साथ साथ बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इस वक्त तूफान पर बह रही है, जिसके बाद कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है।

0: पहाड़ों से लेकर मैदान तक मानसून का कहर।
1: रामघाट सहित कई गांव और कस्बे,
0: चित्रकूट से लेकर प्रयागराज तक बाढ़ से बिगड़े हालात। नदियों के उफान ने मचाया हाहाकार। लगातार हो रही बारिश के चलते एक बार फिर यूपी के कई जिलों में बाढ़ से हालात खराब नजर आ रहे हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी ने 23 साल का रिकॉर्ड तोड़कर उफान पर बह रही है। नदी के रौद्र रूप एक बार फिर से तटीय इलाकों में कहर बरपा रही है। लगातार हो रही बारिश से बांध भी ओवरफ्लो है, जिसके बाद बांध के फाटक खोलकर पानी छोड़े जा रहे हैं, जिससे 18 गांव के 10,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। डोडा बांध से छोड़े गए पानी ने टिकरिया गांव के पास बने रपटा को भी बहा दिया। बाढ़ के पानी से घिरे इलाकों में लोगों की मुश्किलें साफ दिखाई दे रही हैं। वहीं प्रशासन भी एक्शन में नजर आ रहा है और प्रभावित गांव में राहत और बचाव का काम चल रहा है।
2: सभी डैम्स को जो है वो खोला जाना आवश्यक हो गया था, क्योंकि वो जो अपनी पूर्ण क्षमता में वो अभी भरे हुए हैं। इस वजह से भी जलस्तर जो है वो नदियों में काफी आगे, जो आगे डाउनस्ट्रीम है उनमें बढ़ा हुआ है। अभी तक लगभग 750 लोगों को, 688 जो है वो हमने 29 तारीख को रेस्क्यू किए थे, और कल की जो बाढ़ थी, कल वाली स्थिति में भी NDRF SDRF सबको मिला के जो है कुल मिला के लगभग 750 लोगों को रेस्क्यू किया गया।
0: बाढ़ का पानी घरों के अंदर तक पहुंच चुका है। घरों में रखा सामान पानी में डूबा है। कहीं दुकानें जलमग्न हैं तो कहीं लोग घर की छत और बारजे पर बैठकर हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं मिर्जापुर में भी लगातार बारिश के बाद विंध्याचल के पटेगरा नाला रेलवे अंडरपास में पानी भर गया। इसी पानी में रोडवेज बस फंस गई, जिसे ट्रैक्टर की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। और अब मथुरा की तस्वीरें देखिए। लगातार बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव है। सड़कें पानी में डूबी नजर आ रही हैं और लोगों के साथ साथ वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। लगातार हो रही बारिश और नदियों के उफान ने यूपी के कई जिलों में परेशानी बढ़ा दी है। वहीं मौसम विभाग ने 6 सितंबर तक यूपी में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की, तो साफ लग रहा है अभी यूपी को बारिश से राहत नहीं दिख रही। चित्रकूट से अखिलेश सोनकर, आज तक ब्यूरो।
3: और अब बात सीएम योगी के फरीदाबाद दौरे की। यहां पर योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और साथ ही पीड़ितों से मुलाकात की। करीब 1,000 परिवारों को राहत सामग्री और भूमि आवंटन प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में आप अकेले नहीं है, डबल इंजन की सरकार हर संभव मदद देगी।
4: जिन 102 गांवों में बाढ़ की इस विभीषिका को जूझने के लिए वहां की जनता जनार्दन मजबूर हुई है, उन सब के प्रति सरकार की पूरी संवेदनशीलता और संवेदना उनके प्रति व्यक्त करते हुए आज मैं स्वयं इसलिए यहां पर आया हूं उन्हें आश्वस्त करने के लिए कि आपदा की इस घड़ी में आप अकेले नहीं हैं। ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की NDA सरकार आपके साथ खड़ी है और आपके लिए वह हर मदद आप तक पहुंचाने का कार्य करेगी जो आपकी जरूरत होगी।
3: और अब बात बंगाल और बिहार की, जहां भारी बारिश के चलते हालात खराब होते दिख रहे हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ जाने के बाद बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। वहीं नदियों से हो रहे कटान से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के आसनसोल और बांकुरा में मॉनसून का कहर जारी है।

बिहार से बंगाल तक मानसून का कहर, उफान पर नदियां, डूबे सैकड़ों गांव, जमीन धंसने से आसनसोल में आफत। सितंबर का महीना जब से शुरू हुआ है तब से अलग अलग इलाकों से मानसूनी सितम की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। बिहार में गंगा, गंडक और सोन नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। ये तस्वीरें मुंगेर की हैं, जहां गंगा नदी एक बार फिर उफान पर है, जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैलता जा रहा है। नदी के तेज बहाव के चलते नवागढ़ी उत्तरी में कटाव का खतरा बढ़ गया है। वहीं लक्ष्मीपुर बिंद टोली में तेज धार के साथ कटाव जारी है और पानी आबादी की तरफ बढ़ रहा है। मुंगेर ही नहीं, बेगूसराय में भी बाढ़ के चलते हालात खराब होते जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पूरा इलाका पानी में घिरता जा रहा है। घर, मकान, स्कूल और सड़कें पानी में समा चुकी हैं और लोग आने जाने के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। पानी घरों तक पहुंचा तो महिलाओं और बच्चों ने सुरक्षित ठिकानों

0: रहा है। निचले इलाकों में पानी तेजी से फैलता दिखाई दे रहा है। गांवों की गलियां पानी में डूबी हैं, रास्तों पर तेज धार बह रही है और लोग घर छोड़कर ऊंची जगहों की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल में भी मॉनसून का कहर बरस रहा है। आसनसोल से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बाराबानी इलाके में भारी बारिश के बाद 80 से 90 फीट हिस्सा धस गया। सड़क करीब 6 से 7 फीट नीचे बैठ गई, जिसके बाद रास्ते पर बैरिकेडिंग कर आवाजाही रोक दी गई। वहीं पश्चिम बंगाल के बांकुरा में भी भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद डुमनी नहर पर बना पुल पानी के तेज बहाव की भेंट चढ़ गया। पुल का हिस्सा टूटकर पानी में समा गया। अब गांव वालों के सामने रोजमर्रा की आवाजाही की चुनौती खड़ी हो गई है। इसके अलावा भारी बारिश के चलते कोलकाता के भी कई इलाकों में इसका असर दिख रहा है। कोलकाता के रिसकोर्स इलाके में सड़कें पानी से भर गई और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। तो साफ है कि चाहे बिहार हो या पश्चिम बंगाल, इस मानसूनी आफत से कोई अछूता नहीं रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: और अब बात उत्तराखंड की, जहां भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून समेत 3 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि राज्य के बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट है। इसमें अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के मुताबिक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 12 लोगों की जान जा चुकी है।
2: उत्तराखंड में मानसून का कहर जारी, भारी बारिश और लैंडस्लाइड से बचा हाहाकार। हर तरफ पानी, मलबा और तबाही की तस्वीरें। सितंबर का महीना जैसे उत्तराखंड के लिए सितम लेकर आया है। लगातार हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते अलग अलग जगहों पर हादसों की खबरों ने लोगों को डरा कर रख दिया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बारिश के चलते हुए हादसों ने एक ही दिन में 5 जिंदगियां छीन ली। एक घर पर ही पहाड़ से आया मलबा घुस गया और 3 लोगों की मौत हो गई। हालात बिगड़े तो स्कूलों तक को बंद करना पड़ा। अल्मोड़ा ही नहीं, उत्तराखंड के बाकी इलाकों में भी बुरा हाल है। ये तस्वीरें बागेश्वर की हैं, जहां भारी लैंडस्लाइड के बाद सड़कें बंद हो गई हैं, जिसके चलते सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। बागेश्वर में NH 109 समेत 16 अलग अलग मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क मुख्य सड़कों से टूट गया है। बागेश्वर देहरादून NH 109 रवाई खाल के पास पहाड़ दरकने से बाधित हो गया है। लगातार हो रही बारिश और सैलाब ने देहरादून को भी नहीं छोड़ा। प्रेमनगर के कंडोली में पानी का सैलाब ऐसा आया जिसके चपेट में कई गाड़ियां कई किलोमीटर तक बह गईं। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं कोटद्वार से आई ये तस्वीर सबसे दर्दनाक है, जहां कोल्हू नदी एक 1.5 साल की बच्ची और उसकी मां के लिए काल बन गई। नदी पार करते वक्त 1.5 साल की छोटी बच्ची उसकी मां की गोद से छूट गई और पानी में बह गई। बच्ची को बचाने के लिए मां भी नदी में कूदी और बह गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई। काफी दूर तक तलाश के बाद SDRF और पुलिस ने नदी से मां बेटी के शव बरामद कर लिए।
3: घटनास्थल पर पहुंचने पर हमने सर्चिंग की तो हमें पता चला कि जो नदी का दूसरा साइड है, उधर वाला जंगल वाला, वहाँ 2 व्यक्ति की डेड बॉडी मिल चुकी है, जिसमें से एक बच्चा था 1 साल का और एक महिला थी उसी की मम्मी। तो उनको मिलने के पश्चात वो उन्हें गांव नदी के दूसरे साइड ले गए थे, लेकिन उनको इस साइड लाना था, जिसके बाद हमारी टीम काफ़ी मशक्कत के बाद नदी पार की और उसके बाद डेड बॉडी को इस नदी के दूसरे साइड ला के जिले पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।
2: पहाड़ों पर छोटी छोटी नदियों में भी बहुत तेज बहाव है। पौड़ी जिले के पैठाड़ी क्षेत्र में एक महिला पश्चिमी नयार नदी में बह गई। यहां रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 33 साल की आशा देवी के बहने की सूचना पर रात भर ये ऑपरेशन चला, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जहां एक तरफ बारिश तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। टिहरी के बोराड़ी में जमीन खिसकी तो मकानों के सामने मलबे का ढेर लग गया। मलबे में दबी स्कूटी को लोगों ने मिलकर बाहर निकाला। लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तराखंड के

0: उधम सिंह नगर में हालात चिंताजनक बने हुए हैं, क्योंकि यहां गौला नदी में पानी छोड़ने के बाद आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया है।
1: गौला नदी में अत्यधिक पानी छोड़ा गया है, जिस कारण गौला नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। आप सभी लोगों से प्रशासन द्वारा अपील की जाती है, कृपया अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, नदी किनारे ना आए।
0: प्रशासन बाकायदा मुनादी करके लोगों को सतर्क कर रहा है, क्योंकि हल्द्वानी से 27,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।
2: लगातार जो बरसात हो रही है उसके पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार बरसात हो रही है, इस कारण गौला नदी में जलस्तर ऊपर है और वर्तमान में यह सूचना प्राप्त हुई है कि 27,000 क्यूसेक पानी काठगोदाम बैराज से छोड़ा गया है। मेरा सबसे अनुरोध है कि नदी क्षेत्रों से, तटीय क्षेत्रों से दूर रहें और गौला बैराज के अगल बगल रहने वाले गौला नदी के अगल बगल रहने वाले लोग नदी से दूर रहें, नदी के पास न जाएं, सावधानी बरतें, सुरक्षा बरतें। वर्तमान में स्थिति कंट्रोल में है, ऐसी कोई पैनिक करने की स्थिति नहीं है, लेकिन नदी तटों से दूर रहें।
0: वही लगातार हो रही बारिश के चलते नैनीताल की नैनी झील लबालब है, पहाड़ों से मलबा सड़कों पर आ रहा है और गाड़ियां रास्तों में फंसी हैं। जिले में बड़ी संख्या में सड़कें बंद हैं। उधर कोसी और शिप्रा नदी का पानी भी उफान पर है। रामनगर में कोसी का तेज बहाव गर्जिया मंदिर तक पहुंच गया, जबकि कैंची धाम के पास शिप्रा नदी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। उफनती नदियां, दरकते पहाड़, टूटती सड़कें और बहती गाड़ियां, उत्तराखंड में बारिश की हर तस्वीर खतरे की कहानी कह रही है। मौसम की मार जारी है और पहाड़ों में मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। देहरादून से कमल नयन सिलोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो।
3: वक्त एक ब्रेक का हौसला, बनी रही हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU! सोच बदलो और बैंक भी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: सो सॉरी।

अखिलेश जी, आपकी सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपके झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है, अब उसकी चलने की सामर्थ्य समाप्त, खेल खत्म। अब जब खेल खत्म तो फिर आगे की कोई संभावना नहीं, संभावना नहीं तो आगे के बारे में स्वयं सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं तो राम नाम का ही सहारा सही।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

अनिश्चितता के दौर में भी लगातार आगे बढ़ रहा है भारत। बेल्जियम के साथ रक्षा सहयोग पर करार के बाद बोले पीएम मोदी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की देश की यात्रा की तारीफ। बाढ़ संकट, पीएम मोदी ने वाराणसी के मेयर और डीएम से की बात, राहत में मुश्तैदी के निर्देश। यूपी के फर्रुखाबाद में सीएम योगी ने किया सैलाब में समाये इलाकों का हवाई सर्वे। उत्तराखंड में भी बाढ़ से बिगड़े हालात। बीजेपी को हराना नहीं है आसान, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। कहा यूपी में नहीं है बीजेपी के खिलाफ हवा, चुनाव में टक्कर देने के लिए फौरन बनाना चाहिए रोडमैप। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ बनते ही रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा पहुंचे अयोध्या। कहा श्रीराम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया के गांव में जश्न, गोविंद गिरी बने महासचिव।

सीएम योगी के चुनावी हुंकार, जन्माष्टमी पर करेंगे बाकी बिहारी के दर्शन, पंचायत आज तक में, मथुरा में करेंगे शिरकत, आज दिन भर सियासी दिग्गजों का जमावड़ा।

0: आज तक मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। और सबसे पहले आज 2 बजने के साथ ही आपको बता देते हैं कि किन खबरों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता देते हैं, सबसे पहले बात होगी राम मंदिर के पहले सीईओ के फर्स्ट डे फर्स्ट शो की, कांग्रेस के हमले की, ये भी हम आपको बताएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने किन मसलों पर घिरा है। बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत में मथुरा फैक्टर की, कि कैसे अब मथुरा तक चर्चा है 2027 की, और 27 से पहले मथुरा में पूरी तैयारियां की जा रही हैं। हम आपको यह भी बताएंगे आज कि बीजेपी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर क्यों 5 करोड़ के घूस लेने का आरोप लगाया है। अब इस पर, इस घूस कांड पर सियासत कैसे गरमाई हुई है। और ठीक आधे घंटे बाद देखिए पंचायत आज तक मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें, सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, आज अयोध्या में राम मंदिर के पहले सीईओ रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा का फर्स्ट डे फर्स्ट शो है। और खास बात यह कि जिस दिन मंदिर ट्रस्ट की नई जिम्मेदारी संभालने वाले सीईओ अयोध्या पहुंचे हैं, उसी दिन कांग्रेस ने उनकी नियुक्ति को लेकर मोर्चा खोल दिया। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के 2 नेताओं ने एक के बाद एक सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने तो जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति को सीधे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ दिया। सवाल उठाया कि आखिर एक रिटायर्ड एयर मार्शल को राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। और यहां तक कह दिया उन्होंने कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर में कोई सच छुपा तो नहीं है जिसे छुपाने के लिए यह पद दिया गया हो। वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने भी नियुक्ति पर सवाल उठाए और पूछा, क्या मंदिर के काम के लिए साधु संत नहीं मिले। तो देखिए, एक तरफ जितेंद्र मिश्रा फर्स्ट डे फर्स्ट शो बैठक हुई, बैठक में कोषाध्यक्ष सहित कई प्रतिनिधि शामिल हुए, तो दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ कांग्रेस के 2 नेता मोर्चा खोल देते हैं। क्या सच छुपाने की कोशिश की जा रही है, ये भी पूछा जाता है। और ये इमरान मसूद के साथ साथ जो कांग्रेस सांसद राशिद अल्वी, उनकी तरफ से ये सवाल उठाए जाते हैं। इन 2 खबरों को लेकर काफी चर्चा इस वक्त की जा रही है कि आखिर वजह क्या रही कि सीईओ बनाना पड़ा राम मंदिर का। ऑपरेशन सिंदूर में कोई सच छुपा तो नहीं है जिसको छुपाने के लिए पद दिया गया, ये कांग्रेस की तरफ से सवाल उठा दिए गए हैं। राम के नाम पर काम और सीईओ पर संग्राम इस वक्त देखा जा रहा है।
1: आर्मी के लोगों को, रिटायर्ड आर्मी एयर चीफ को आपने राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बना दिया है, उनका इससे क्या ताल्लुक है कि ऑपरेशन संदूर के अंदर कहीं कोई सच तो नहीं छुपा हुआ जिस वजह से उन्हें यहां पे सीईओ बनाया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री की जो ये नीति है ये देश को बर्बाद कर देगी।
2: अब पंडित जी क्या पूजा पाठ भी करते थे पहले? अरे भाई ये काम साधु संतों का है। अब एयर मार्शल साहब ने हवाई जहाज उड़ाया, हवाई जहाज उड़ा लेते, अब इनके आरएसएस के जंगल में फंस गए वो, अब कल को ये भी बेचारे बदनाम होके बाहर निकलेंगे, क्या तमाशा है भाई। मंदिर का काम मंदिर वालों को करने दो, अब आरएसएस वालों को तो पैसा दिखाई दे रहा है कि राम मंदिर पे चढ़ रहा है खूब दबा करके, देखो उसके ऊपर।
0: तो राशिद अल्वी का ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर हमला देखा गया, तो वहीं इमरान मसूद की तरफ से यह पूछा गया कि क्या राम मंदिर के काम के लिए साधु संत नहीं मिले। रिटायर्ड एयर मार्शल को सीईओ बना दिया गया पूर्णकालिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास का, इसके पीछे की वजह क्या है, तो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठा दिए गए हैं, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और इसका जवाब अब मांगा जा रहा है कि इसके पीछे की वजह क्या है। कांग्रेस के 2 नेता देखिए, फिर हम आपको बता रहे हैं, एक तरफ राशिद अल्वी तो दूसरी तरफ इमरान मसूद, और सवाल पूर्णकालिक सीईओ जितेंद्र मिश्रा पर पूछा जा रहा है। और देखिए जो पूर्णकालिक सीईओ बन गए हैं यानी रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, उन्होंने भी ये कहा है कि श्री राम की कृपा से अच्छा काम करूंगा।
3: सर्वप्रथम मैं चयन समिति, श्री राम मंदिर ट्रस्ट और ऑफ कोर्स भगवान श्री राम का आभारी हूं कि मुझे इस दायित्व के लिए मेरा चयन किया गया है। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे सामर्थ्य दें कि मैं इस कार्य को अच्छी तरह से भली भांति रूप से कर पाऊं। मैं अभी बीते समय की नहीं, आगे आने वाले समय की बात ज्यादा करना चाहूंगा। आप बीते समय को भूल जाएं और आगे समय में प्रभु राम की कृपा से हम बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कार्य को कर पाएंगे।
0: तो ये आपने देखा बयान। अब ऐसे समझिए कि 1986 में वायुसेना एकेडमी से भारतीय वायुसेना की लड़ाकू स्ट्रीम में जितेंद्र मिश्रा को कमीशन प्राप्त हुआ। अब जितेंद्र मिश्रा के बारे में आप जान लीजिए कि क्या इतिहास रहा है। करीब 39 साल तक देश सेवा के अपने करियर में उनके पास 3000 घंटे से अधिक का उड़ान का अनुभव है। उन्होंने 18 से अधिक तरह के लड़ाकू और परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टर्स को उड़ाया है, हवा में उड़ान भरी है। वो उस टीम का हिस्सा थे जिसने कारगिल युद्ध की शुरुआत में मिराज 2000 विमानों पर लेजर गाइडेड बमों को पहुंचाया था, जिनका इस्तेमाल बाद में ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान टाइगर हिल और मुंतो ढालों पर हुए हमलों में किया गया था। और इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में भी उनका अहम योगदान था। और आइए अब आपको बताते हैं कि जितेंद्र मिश्रा के सामने सीईओ के तौर पर क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। तो देखिए, दान चढ़ावे की व्यवस्था, ये एक मुख्य अहम जिम्मेदारी होगी, वित्तीय लेन देन से जुड़ी। अब तमाम चीजें खरीदी जाती हैं और उनके लिए टेंडर निकाले जाते हैं, तो उसकी भी अहम जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसकी जिम्मेदारी। कर्मचारी, उनसे जुड़े हुए मामले, मंदिर सुरक्षा समन्वय, आईटी, डिजिटल निगरानी, परियोजनाओं की मॉनिटरिंग, ये सारी अहम जिम्मेदारियां सीईओ यानी अब जितेंद्र मिश्रा जी की होगी। दान चढ़ावे की व्यवस्था से लेकर वित्तीय लेन देन, कर्मचारियों से लेकर सुरक्षा से लेकर हर चीज का ध्यान रखना। अब राम मंदिर के पहले सीईओ को लेकर अखिलेश यादव ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दान चोरी पर जो उनके सवाल पहले बने हुए थे वो सवाल आज भी बरकरार हैं।
4: इस पे मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं, ये फैसला सरकार का है, ट्रस्ट अपना फैसला लेता है। और ट्रस्ट के सामने चुनौती इसलिए है कि जिस तरह की बातें आई हो, एसआईटी ने जो जांच के बाद रिपोर्टें दी हैं, एसआईटी के बाद एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज के बाद जेल गए हैं, क्लीन चिट मिल गई है, तो क्रेडिबिलिटी से भी ऊपर आस्था है। और आस्था पर, श्रद्धा पर बड़ी चोट पहुंचाई बीजेपी ने, तो जो भी बनेगा उसकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है।
5: बड़ी डेवलपमेंट क्या है, जो चढ़ावा चोर है उनके खिलाफ की कार्रवाई हुई? क्या नए सीईओ जो नियुक्त हुए हैं, क्या वो चढ़ावा चोरी जो करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या चढ़ावा चोरी में जो पैसे वहां गायब हुए हैं भगवान के दरबार से, वो पैसे क्या फिर से वापस दान पत्र में आएंगे या फिर से वो रिकॉर्ड में आएंगे? केवल बना देने से या उनको बैठा देने से कोई बड़ा डेवलपमेंट है, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं।
0: तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आपने सुना। वहीं नए सीईओ के रूप में जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति को लेकर विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार ने जमकर तारीफ की है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष के जो मुद्दे थे इकबाल अंसारी, उन्होंने भी कहा है कि इस बदलाव के बाद उम्मीद है कि सब कुछ जो अव्यवस्थाएं थी या फिर कहीं पर कुछ गड़बड़ियां हुई थी वो बेहतर होंगी।
6: एयर मार्शल श्री जितेंद्र मिश्रा, वह राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ नियुक्त हुए। उन्होंने देश के लिए जो अभी पहलगाम के बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भी भाग लिया था, सीमा की सुरक्षा, देश की स्वायत्तता की रक्षा, देश के मानव बिंदुओं की रक्षा, ऐसा सब अनुभव रखने वाले इतने बड़े व्यक्ति, उन्होंने अयोध्या में रह के राम जी का काम करना स्वीकार किया, हमको आनंदित है। हमको विश्वास है कि अब यह ट्रस्ट और भी अच्छी तरह से चलेगा।
7: अयोध्या नगरी है और श्रद्धा की नगरी है, भगवान राम का मंदिर, सभी की श्रद्धा है कि लोग दर्शन करने आते हैं, पूजा करने आते हैं, लोग देश विदेश से आ रहे हैं। अच्छी बेहतर सुविधा होनी चाहिए, दर्शन भी बढ़िया होना चाहिए और श्रद्धालुओं के लिए अच्छी सुविधा हो। और नए सीईओ भी आए हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि ट्रस्ट में जो है बदलाव हुए हैं, ये बड़ा बेहतर है। जो लोग नए आए हैं वो काबिले तारीफ हैं।
0: और आइए अब आपको अयोध्या से मथुरा लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई अब अयोध्या से मथुरा की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के दान चोरी के आरोपों को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा सामने रखकर सियासी पलटवार तेज कर दिया है। योगी अपनी हाल की कई सभाओं से अखिलेश यादव से सवाल कर चुके हैं कि अगर वो खुद को सनातन और धार्मिक आस्था के करीब बताते हैं तो मथुरा, वृंदावन और श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर अपना रुख क्यों नहीं बताते हैं। अब सवाल है कि क्या अयोध्या में दान चोरी के मुद्दे से घिर रही बीजेपी ने उसकी काट के तौर पर मथुरा को चुनावी एजेंडे में आगे कर दिया है। और इसी सियासी संदेश के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से दो दिन का मथुरा दौरा बहुत बहुत अहम माना जा रहा है। मथुरा में विकास परियोजनाओं, ब्रज क्षेत्र के कायाकल्प और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर फोकस के साथ धार्मिक आस्था और विकास दोनों को एक साथ साधने की कोशिश दिखाई दे रही है। अब इस दौरान सीएम योगी मथुरा को 977 करोड़ की सौगात भी देंगे।
8: अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपके झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है, अब उसकी चलने की सामर्थ्य समाप्त, खेल खत्म। और जब खेल खत्म तो फिर आगे की कोई संभावना नहीं, संभावना नहीं तो आगे के बारे में स्वयं सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं तो राम नाम का ही सहारा सही।
9: सर, अब हमने देखा है मुख्यमंत्री कई अपनी रैलियों में जो एड्रेस कर रहे हैं वो बांके बिहारी जय और अयोध्या श्री राम जय, ये उधर रुख हो रहा है, तो अब क्या माने कि 2027 की चुनाव मथुरा की तरफ रुख है?
10: नहीं, इस रूप में ना देखा जाए। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो हमारी परंपरा, आस्था और जो हमारी विरासत है, उस विरासत को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भगवान राम भी हमारी विरासत हैं, भगवान श्री कृष्ण भी हमारी विरासत हैं, बाबा विश्वनाथ भी हमारी विरासत है। और भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकारों के समय हमने अपनी आस्थाकार विरासत का सम्मान आगे बढ़ाया है, और उसी स्वरूप में आप सब लोग आज अगर देखेंगे तो पहले आज से 20-30 साल पहले उत्तर प्रदेश में दिखाने के लिए क्या कहा जाता था कि भाई हम कोई बाहर से पर्यटक आता है तो क्या दिखाएंगे उसे, तो आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक देश में धार्मिक पर्यटन वाला क्षेत्र है। आप अयोध्या है, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है, लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, विंध्यवासिनी देवी का मिर्जापुर में कॉरिडोर बना है, और बड़ी संख्या में मथुरा, वृंदावन आज अगर आप देखेंगे तो लोग सहजता के साथ बगैर किसी निर्बाध भाव के दर्शन करने आते हैं और उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में अपना योगदान कर रहे हैं, और यही हमारी परंपरा है, यही हमारी विरासत है।
11: वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है। जब जाने की बारी है, जब आपने श्री रामचंद्र जी के नाम का सहारा लिया, तो आपने नाम इसलिए लिया कि आपको वहां पे लूटना था। हम तो कहेंगे कि वहां पे जो भी महंत लोग हैं मथुरा में, अरे भाजपाइयों से सावधान रहो, नहीं तो जो चढ़ावा है वहां का, जो चंदा है उस पर भी निगाह इनकी पड़ चुकी, इनको घुसने मत देना वहां पर। और कृष्ण जी की जो पूरा दुनिया में जो उनका चाहत है, मोहब्बत है, जो उनके अनुयायी हैं, वो बीजेपी की वजह से नहीं है। और कृष्ण जी के मानने वाले लोगों का आपने क्या हाल कर रखा है? मथुरा में आज सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं। मथुरा में आज मथुरा जी में सड़कों पे तीन तीन फीट पानी है। तो आप नगर पालिकाएं आपके जहां जहां पे हैं, आपने कहा था कॉरिडोर बनाएंगे आप, मतलब कौन सा कॉरिडोर बना?
12: जो वामी है, जो कांगी है, जो सपाई है, जो कांग्रेसी है, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है, हिंदुओं को बांटना है, मुसलमानों को एकत्रित करना है और उसके सहारे चुनावी वैतरणी पार करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये जान चुकी है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और 27 में उत्तर प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार अर्थात नरेंद्र मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार की जो काम उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जिस तरीके से विकास समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों तक पहुंचा है, कानून का शासन स्थापित हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, उसके आधार पर वोट देगी।
0: और अब बात समाजवादी पार्टी की। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की नजर हर वर्ग को साधने वाले घोषणा पत्र पर है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार पुराने वादों के साथ नए वादों को जोड़कर ऐसा मैनिफेस्टो तैयार करने में जुटी है जिसमें युवा, महिलाएं, आउटसोर्स कर्मचारी और अलग अलग जातीय समूहों को साधने की कोशिश होगी। खास फोकस जेन जी और जेन अल्फा पर, पेपर लीक रोकने के पुख्ता इंतजाम, लखनऊ की आईटी सिटी को विस्तार और आईटी कंपनियों को यूपी में लाने का वादा एजेंडे में शामिल हो सकता है। अखिलेश सरकार के चर्चित वादे कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता और मुफ्त लैपटॉप फिर लौट सकते हैं। महिलाओं के लिए सालाना 40,000 रुपए की घोषणा और यश भारती सम्मान की वापसी का भी वादा हो सकता है।
13: कभी एक्सप्रेसवे में गड्ढे नहीं सुनते हैं आप, गड्ढे हो रहे हैं एक्सप्रेसवे और गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं। कभी पंखे से सुखाते हैं, कभी कारपेट से ढकते हैं,
14: पुअर क्वालिटी।
13: कभी पंखे से सुखाते, दुनिया हंसेगी अगर आप विकसित भारत का सपना देख रहे हैं और आप सड़क को कैसे सुखा रहे हैं।
15: दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो सहारनपुर में बनाए, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, उसकी भी यही
13: है। मैं क्या बताऊं आपको, इस सरकार के एक्सप्रेस वे ऐसे ही बन रहे हैं।
14: आपकी तुलना में
13: ये कई जगह सुनने को मिल रहा है कि ये भ्रष्टाचार के एक्सप्रेस वे बन गए।
16: जनता, अब की बार हमारा जो गठबंधन है अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, ये रहेगा और मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा।
0: देखिए अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं, शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो मजबूत रहेगा। लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने चेतावनी वाले अंदाज में कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना आसान नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद की तरफ से बड़ा बयान आया और वो ये कह रहे हैं, मान रहे हैं कि बीजेपी को हराना उत्तर प्रदेश में ये आसान नहीं है, इसलिए हमें जो भी काम निपटाना है निपटाकर अभी से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, अभी से ग्राउंड लेवल पर पहुंचना चाहिए।

0: प्रदेश में भाजपा हारे। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाइव करे और ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो हम अपनी पार्टी का सर्वाइवल भी चाहते हैं और हम भाजपा को हराना भी चाहते हैं। और देश के अंदर राहुल जी के नेतृत्व में एक माहौल बन गया है जो पूरे देश के अंदर इस वक्त चल रहा है। तो मेरा जो काम करने का तरीका है वो सिंपल और साफ है कि लड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि जिसका नतीजा आए। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी होना है उसे तुरंत कर करके जल्दी से हमें मैदान में निकलना चाहिए। बीजेपी हमसे आगे ना निकल जाए। बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है। हवा के अंदर बीजेपी नहीं हार रही है। तो हमें सब चीजों को फाइनल कर करके निकलना चाहिए, रोड मैप तैयार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए।
1: वहीं उत्तर प्रदेश के चुनावी जंग में मायावती ने एकला चलो का दाव खेला है। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने ऐलान किया कि अब सारे चुनाव बीएसपी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। मायावती ने अपने भतीजे को भी झटका दिया है। कुछ दिन पहले जेन जी के चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाया, अब उनसे राष्ट्रीय संयोजक का पद छीन लिया है। तो मायावती मिशन 2027 पर है, लेकिन भतीजे जिनको राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया था आकाश को, अब उनको झटका देते हुए पद छीन लिया उनसे और अकेले चलने की बात कही है।

0: 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए न सिर्फ बीजेपी बल्कि बीएसपी अभी अपनी पूरी ताकत के साथ तैयारियों में जुट गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। लखनऊ में होने वाली इस बैठक में बीएसपी के न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि राष्ट्रीय स्तर के तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया है ताकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जा सके बल्कि कैसे पार्टी अपने पुराने जनाधार को इकट्ठा करे और पुराने जनाधार को जोड़ने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी पुरानी धमक को बढ़ा सके। इस पर भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक का सिलसिला शुरू कर दिया है। इससे पहले सोमवार को भी मायावती ने उत्तर प्रदेश के तमाम पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाकर फीडबैक लिया था कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी कितनी तैयार है और कहां मजबूत है और कहां तैयारी की जरूरत है।
1: और अभी यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद द कोला स्पा एट होम। No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: आगे आगे
6: उधर
5: करेक्ट करेक्ट
7: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
1: In association with
2: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
3: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: भारत की रक्षा नीति से लेकर भविष्य की युद्ध रणनीति तक देश की सुरक्षा पर सीधी बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ देश के सबसे बड़े रणनीतिकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों का महामंच आज तक सुरक्षा सभा सिर्फ आज तक पर।
2: बारह बजे वाली ट्रेन 3 बजे चलेगी। यही है संगीत, बाकी लोग एडजस्ट करें।
3: मेरा संगीत माय वे।
4: गन्ना बड़े सियासत में फंसा हुआ इस समय। नहीं,
5: गन्ने की वैल्यू बढ़ गई है। सड़क से उठा के स्टार बना दिया।
6: यही है था, कभी हमने अन्ना को बनाया, कभी गन्ने को बनाया।
3: गन्ने को अलग ही लेते थे, गन्ना ज्यादा बताओ, सबको जूस निकाल दिया भाई।
4: पहले को मैंने बोला कि तुम आर्मी वगैरह ज्वाइन करो, उसकी माँ ने कल बोला कि तो ऑफिसर वगैरह बन जाओ, तो उसने कहा क्यों बन जाए, उसने कहा अच्छा लगेगा हमको, मेरा शौक है, अरमान है। उसने मेरा भी अरमान था कि मेरे माता पिता मतलब पिताजी और मम्मी जो है वो ऑफिसर होते हैं, बने कि आप लोग, हम कह रहे हैं तेरे पैदा होने से पहले अपन पैदा हुए थे। तो मैंने कहा तू आर्मी कमांडो वगैरह बन, मैंने ब्लैक कैट कमांडो सब बनते हैं, तो ब्लैक डॉग कमांडो बन जाए।

0: दिल से स्वागत अभिनंदन। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि महाराज जी किसी का होता है तो आपका होता है, और मैं पीछे बहुत सारे युवाओं को भी देख रही हूं, और देखिए सबके मोबाइल उठ गए कि पता नहीं कौन सा वायरल मोमेंट बाबा दे देंगे, है ना। लेकिन हम प्रभु कृष्ण की भूमि पर हैं, हम शुरुआत ही उपदेश से करेंगे। जन्माष्टमी का पर्व है, इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है अभी
1: जी। तो सबसे पहले आवाज आ रही है सबको? सबसे पहले आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, यही आपके लिए मंगल कामना है। आज के लोगों को भगवान श्री कृष्ण को जरूर सुनना चाहिए। अर्जुन कह रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन क्या कह रहे थे? मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? सामने अपने लोग खड़े हैं। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता या कर्म से भागना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए भगवद गीता है, ऐसे लोगों के लिए कृष्ण है। यदि कृष्ण को आप समझते, पढ़ते, स्टडी करते, तो आज ना हमारे देश में कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत बेरोजगार हैं। मुझे लगता है कि आपके अंदर यदि काबिलियत है, गुण है, तो आप बेरोजगार नहीं हो सकते। कुछ अपना कर लीजिए। नौकरी ही क्यों लेना है? हमें नौकर ही क्यों बनना है? हम नौकरी लेने वाले क्यों बने? आओ बदलते हैं भारत को। नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनते हैं, और यही गीता सिखाती है। अब इन लोगों ने गीता तो पढ़ी नहीं, अर्थात जो नहीं पढ़ी उनके लिए बोल रहे हैं, बुरा ना मान जाना। जिन लोगों ने गीता नहीं पढ़ी उन लोगों के लिए बात है, वो ढूंढते हैं नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। गीता पढ़ोगे तो नौकरी लेने वाले नहीं बनोगे, नौकरियां देने वाले बनोगे।
0: कैसे, क्या क्या?
1: भगवान कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन तू कर्म कर। आज के लोग कर्म कहां कर रहे हैं? कर भी रहे हैं तो गलत दिशा में कर्म कर रहे हैं। हमारी गीता और हमारी रामायण, रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर रहे सो तस फल चाखा। कर्म करोगे, आप भी तो कर्म कर ही रही है ना, दिन रात श्वेत पत्र लेके घूमती रहती हैं। आप भी कर्म नहीं करो तो आपको रोटी कैसे मिले? आपसे सीखना होगा सबको। नहीं, आप कर्म नहीं करेंगी बताओ आपका गुजारा होगा? ये कर्म नहीं करेंगी मैया इनका गुजारा होगा? आज तक वाले कर्म ना करें कैसे गुजारा होगा? भाई कर्म प्रधान विश्व करी राखा।
0: आपका फोन प्लीज साइलेंट कर लीजिए। प्लीज फोन साइलेंट कर लीजिए सर।
1: चुप कर लीजिए, अभी हम बोल रहे हैं। तो सबको क्या करना होगा?
0: कर्म
1: कर्म कर्म प्रधान। नहीं करोगे तो खाओगे क्या? आजकल सबको ना फोकट का चाहिए, बिना करे मिल जाए सब। फ्री में सीट मिल जाए तो बस में बैठ के घूम आएंगे, फ्री में सिलेंडर मिल जाए तो चूल्हा जला लेंगे, फ्री में आटा मिल जाए, फ्री में चावल मिल जाए, फ्री में सब मिल जाए। सब फोकट वाला चल रहा है।
0: फ्री में नहीं होना चाहिए।
1: अरे फ्री में सांसें भगवान दे तो रहे हैं, और क्या चाहिए?
0: नहीं किसी चीज
1: बाकी यदि फ्री में सब मिल जाएगा तो आप अपाहिज हो जाएंगे, करेंगे कब? छोटे बच्चे को चलने मत दो तो क्या होगा? वो लंगड़ा हो जाएगा, चलेगा गिरेगा, खड़ा होगा चलेगा गिरेगा, तब ना उसके पांव में बल आएगा। चलने मत दो। आप तो बैसाखी थमारे हैं ना, कुछ मत करो बेटा हम हैं ले। छोटे बच्चे को आप बैठे बैठे, बेटा चलने की क्या जरूरत है, क्या चाहिए ले, ये खिलौना बैठे बैठे के चले ही ना, अपाहिज नहीं हो जाएगा?
0: पर फ्री में देंगे नहीं तो वोट नहीं मिलेगा ना।
1: अब वोट की राजनीति अलग है, ये फिर नेता लोग जाने, मैं तो नेता हूं नहीं।
0: अच्छा, बहुत सारे जो कथावाचक हैं, मुझे लगता है कि आपने उस परंपरा को तोड़ा है। आप एक अलग तरीके से बात करते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं, और इसीलिए बहुत सारे ऐसे कथावाचक रहे जो आप और धर्मगुरु जो जेन जी है, नहीं है, उम्र की बात नहीं होती है। पहला नाम किसको दिया गया? प्रेम से।
1: बिल्कुल।
0: केवल अनिरुद्धाचार्य जी महाराज नहीं, पूकी बाबा। पूकी एक बहुत प्रेम का शब्द है।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: आपने बुरा तो नहीं माना था जब आपको पहले पता चला कि आपको पूकी बाबा कह रहे हैं?
1: हमें अच्छा लगा कि हमारी जनता जनार्दन, हमारे जैन जी हमसे प्यार करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। और ये अच्छी बात है कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। पूकी बाबा आप जो नाम देंगे हमें सब स्वीकार है।
0: पर बहुत सारी चीजें आपकी वहां से ऐसे चल पड़ती हैं, आप बिस्किट को विश की किट कह हाँ। दिया आपने, आपकी बात सुन रहे हैं, मतलब आपकी बात को पे खुश हो रहे हैं, शेयर कर रहे हैं सारी चीजें, पर क्या आपको लगता है आपकी बात सुन रहे हैं?
1: हाँ, लोग सुन भी रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं और उसे जीवन में उतार रहे हैं। कल एक लड़का, कल या परसों मेरे पास एक लड़का आया, बोले गुरुजी आपकी बात सुनी मैंने कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, और ये बात सुनी तो मैंने अपनी सेटिंग को छोड़ दिया, क्योंकि मैं उसके चक्कर में पड़ता तो कामयाब ना होता, मेरी पढ़ाई बिगड़ रही थी, और मैं समझ पाया कि वो मेरे से प्यार नहीं कर रही थी, आए दिन पैसे मांगती रहती, मोबाइल दिला दो, कपड़े दिला दो, तो मैं समझ गया कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। आप लोग भी समझो, चक्कर में ना पड़ो, पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ, मेहनत करो, काम करो, वरना ना घर के रहोगे वरना घाट के। तो मेरी बात से देखिए, लड़के सेटिंगों को छोड़ रहे हैं, इससे बड़ी उपलब्धि क्या है?
0: प्रेम की धरती पर बैठ के आप ब्रेकअप करा रहे हैं महाराज, प्रेम की धरती पर बैठ के आप ब्रेकअप करा रहे हैं।
1: अरे ब्रेकअप कहाँ है, ये हम तलाक नहीं कराते, बस तलाक कराना पति पत्नी के बीच में घुसना पाप है, पति पत्नी के प्रेम में मत घुसना। बाकी ये लड़के पढ़ने की उम्र है, लड़कियों की पढ़ने योग, माँ बाप ने पढ़ने भेजा बेटा, पढ़ के माँ बाप का थोड़ा नाम रोशन कर लो, तो माँ बाप के सकरे, माँ बाप के सपने ना चकनाचूर नहीं होने चाहिए। तो मैं माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए मैं भी थोड़ा सपोर्ट करता रहता हूँ बच्चों को कि भाई पढ़ो, चक्कर में ना पढ़ो। जो जो चक्कर में पड़ा, रावण चक्कर में पड़ा दूसरे की, आज तक जल रहा है। आप लोग अपने पतियों का हाथ पकड़कर दशहरा दिखाने ले जाया करो, कुछ दिखाओ ना दिखाओ दशहरा जरूर दिखाओ, और जब रावण जले तो पति को कहो देखो ये पड़ा पराई चक्कर में, ये पड़ा था पराई चक्कर में, पराई नारी के चक्कर में, तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया। हैं? पराई के चक्कर में आज तक जल रहा है और तुम पढ़ोगे तुम्हारा क्या हाल होगा, इसलिए पराई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
0: पर आजकल जिस तरह की हिंसा हो रही है, जिस तरह की होते हैं प्रेम संबंध, लेकिन या तो शादी से पहले हत्या,
1: हत्या?
0: या फिर मतलब
1: हत्या,
0: अभी कितने सारे रिश्तों में ऐसा देखा गया।
1: इसलिए तो हम कह रहे हैं पहले चक्कर में पड़ोगे तो शादी बाद में टूट जाएगी, पत्नी को पता चलेगा, पति पत्नी कैसे बर्दाश्त करेगी कि मेरा पति किसी और के संग रह चुका है, या पुरुष कैसे बर्दाश्त करेगा कि ये स्त्री किसी और के संग रह चुकी है। इसलिए अपने चरित्र को पवित्र रखना चाहिए, यही सनातन है।
0: नहीं, मैं तो ये महाराज जी आपसे पूछ रही हूँ कि आजकल जैसे शादी तय हुई, मंगेतर ने अपने जिससे शादी होने वाली थी उसकी हत्या कर दी, या फिर शादी के बाद जब हनीमून पर गए तो वहां पर पहाड़ हाँ। से धकेल कर हत्या कर दी, तो ये चीजें भी बहुत हो रही हैं अभी, क्या मतलब मूल्य आपको लग रहा है, संस्कार कम हो रहे हैं?
1: ऐसा है ना, पहले पुरुषों ने स्त्रियों पर खूब अत्याचार किया, कुछ पुरुषों ने, तो स्त्रियां बदला ले रही हैं। पहले जला दिया जिंदा दहेज के लिए, भाई स्त्रियों को भी तो जलाया गया है, नहीं जलाया गया दहेज के लिए, मिट्टी का तेल, दहेज कम लाई हो जला दिया। आए दिन हमारे कानों में गूंजता था, खबर आती थी दहेज के लिए इसको जला दिया। एक और खबर आप लोगों ने टीवी पे चलाई थी कि कुछ पैसों के लिए उसकी पत्नी को जिंदा सबके सामने जला दिया था, ये खबर थी, पुरानी हो गई इसलिए भूल गई, अभी कुछ समय की साल भर भी नहीं हुआ, जला दिया। ना स्त्री पर अत्याचार हो ना पुरुष पर, समाज में इसलिए कहते हैं अत्याचार रोकना है तो अपनी बेटी और अपने बेटे दोनों को संस्कार देना होगा, स्त्री को पुरुष का सम्मान करना सीखना होगा और पुरुष को स्त्री का सम्मान करना सीखना होगा। बैलेंस बनेगा, गाड़ी के दोनों पहिए समान होंगे तब गाड़ी चलेगी, पंचर हो जाएगा एक तो घिसटेगी चलेगी नहीं, इसलिए दोनों को समझदार, इसलिए आपका बेटा है और बेटी है तो दोनों को ही समझाओ कि बेटा तुम नारी का सम्मान करना और तुम पुरुष का,
0: दोनों को समझाने की जरूरत है। आपकी सभाओं में, आपकी कथाओं में सबसे विचित्र प्रश्न आते हैं
1: हाँ।
0: लेकिन एक बार भी मैंने नहीं देखा कि आप हिचकते हों कि इसका क्या जवाब दूं, आप जवाब सबका देते हैं
1: हाँ।
0: सबसे कोई ऐसा मुश्किल प्रश्न रहा है जिसका जवाब आपको सूझा ही नहीं?
1: अब देखो सब लोगों से आप लोग तो बात कर नहीं पाते, तो जो आप लोगों से छूट जाते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। तो जब आपसे छूटा वो हमारे पास आया तो हमें तो उसको कहने ही कुछ।
0: लेकिन सोशल मीडिया अच्छा है बुरा है?
1: सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, कम से कम हम लोग अपनी बात तो कह पाते हैं, वरना कोई बात कहनी होती तो फिर आपको ढूंढना पड़ता हमें कि मैया कहाँ है, बहन कहाँ है। अब कम से कम हम अपनी बात तो कह पाते हैं।
0: पर एक चीज बताइए कि बहुत सारी चीजें जब समाज में कही जाती हैं, राजनेता ही कहते हैं, लेकिन अगर मनुस्मृति को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा है, क्या वो गलत है?
1: क्या वो कहा है? मैंने सुना नहीं।
0: उन्होंने महिलाओं के लिए कहा कि महिलाओं के लिए जो मनुस्मृति में लिखा गया है वो बिल्कुल गलत है और ये बताता है कि हमें स्मैश द पेट्रियार्की करना है, यानी कि हम उसको पीछे छोड़ें और उन सारी चीजों को न मिले। ये पहली बार नहीं है मनुस्मृति की प्रतियां कई बार
1: राहुल गांधी जी से। देखो, मैं राजनीति में नहीं जाता, ना राजनीति मुझे अच्छी लगती है, परंतु जब वो राजनेता होके धर्म में घुसेंगे तो हम भी उनको जवाब दे रहे हैं। ऐसा है कि राहुल गांधी जी कहते हैं मनुस्मृति गलत है, क्या वो कह सकते हैं कि कुरान गलत है? क्या उनकी हिम्मत है कि कह सकते हैं कि बुर्का गलत है? क्या कह सकते थे तीन तलाक गलत है? क्या कह सकते थे कि वो वहां पे वो भी होता ना, महिलाओं को तलाक देने के बाद फिर दूसरी बार जाती हैं, यदि स्वीकार तो कुछ होता है, हलाला वगैरह क्या होता है? हलाला। तो क्या राहुल गांधी जी कह सकते हैं कि हलाला गलत है? हलाला को वो गलत नहीं कहते, तलाक तीन तलाक को गलत नहीं कहते, बुरखा को गलत नहीं कहते, सनातन को गलत कहेंगे वो, क्योंकि सनातन सीधा है, जवाब देता नहीं है। तो राहुल गांधी जी जैसे लोग केवल सनातन को टारगेट करते हैं। मनुस्मृति में क्या गलत है? वही तो लिखा है, नारी का सम्मान करो, नारी का अपमान। अब बताइए, तीन तलाक दे के छोड़ देना, ये नारी का सम्मान है? तो राहुल गांधी जी को ये क्यों नहीं दिखा? मनुस्मृति दिख गई कि उसमें गलत है, वहां भी देख लेते, तीन तलाक पे थोड़ी बात कर लेते, नहीं करेंगे बात, क्योंकि सनातन पर राजनीति करनी है, सनातन को गलत ठहराना है।
0: जो आप कह रहे हैं कि जो लोग नहीं गीता पढ़ रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा, गीता ज्ञान नहीं लिया, रामचरितमानस नहीं पढ़ा, लेकिन जो सोशल मीडिया के रील्स हैं उसके जरिए एक छोटा ज्ञान आप हिस्सा उसका ले लेते हैं। आपको लगता है गलत व्याख्या सनातन के लिए?
1: कौन कर रहा है गलत व्याख्या?
0: बहुत सारे लोग, राजनीति में ही सही।
1: अब राजनेताओं का क्या है, वो तो रामचरितमानस जला रहे थे, कुछ नेता हमने देखा बोल रहे थे ये चौपाई गलत है। अरे तुम्हारे बाप दादों ने वो चौपाई पढ़ी है? ठीक से अर्थ करना आता है? पढ़ी लिखी कुछ नहीं, जला रहे हैं। अब समस्या ये है कि आज तक सुना आपने कि कोई मुसलमान कुरान को जला रहा है? आज तक सुना कि कोई ईसाई बाइबल को जला रहा है? पर हिंदू को पता नहीं क्या हो गया है, रामचरितमानस जला रहा है, मनुस्मृति जला रहा है। पढ़ लो भैया, पढ़ लो, जो बातें अच्छी लगे वो उतार लो, जो नहीं लगे छोड़ लो। कहा है ना, सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। सुपड़ा होता है, सुपड़ा आप जानती हैं?
0: जी।
1: फटकी है कभी उसमें? सुपड़ा होता है बांस का, उसमें ना धान और चीजें साफ करते हैं दादी अम्मा, उसमें ना जो खराब चीज होती है उड़ जाता है और जो अच्छी होती है वो बच जाता है। तो व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि बुराइयां उड़ा देनी चाहिए। यदि माना कि मेरे में कोई बुराई है, आप में कोई बुराई, मैं आपकी बुराई क्यों देखूं? बुराई सृष्टि में किस में नहीं है? इस एक आदमी बताइए संसार में जिसमें कोई बुराई ना हो। अरे मनुस्मृति में अच्छाई लिखी है, वो ग्रहण कर लो। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें बुरा लग है, बुरा कुछ नहीं, पर तुम्हें बुरा लग रहा वो छोड़ दो। रामचरितमानस में जो अच्छा लगे वो ग्रहण कर लो, जो तुम्हें कुछ बुरा है नहीं पर जो तुम्हें बुरा लगे छोड़ दो। हमारी हमारे में 1,00,000 बुराइयां हैं, पर एक अच्छाई भी साथ हो तो आप अच्छाई देख लो। अब बुराई ही देखना है तो फिर क्या देखते रहो बुराई? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना। हम जो बुरा कह रहे हैं मनुस्मृति को वही बुरे हैं।
0: लिप महाराज जी, आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले, अब मतलब बस अब लल्ला का इंतजार हो रहा है कि उनका जन्म होगा और एक बार फिर उत्सव समूचा विश्व मनाएगा, भजन आपसे हम सुनना चाहते हैं। आप केवल कथा नहीं बल्कि भजन भी बहुत सुंदर गाते हैं।
1: अभी परसों ही एक भजन हमने लॉन्च किया है तो सुना देते हैं आपको। अभी एक भजन ये दास अनिरुद्ध ने लिखा है और इसे संगीत भी ये दास अनिरुद्ध ने दिया है। अब सुनना, अच्छा ना लगे तो पैसे वापस। मथुरा से आप लोगों ने कंजूसी कर दी, थोड़ा संगीत मंगीत तो रखते। मथुरा

0: कई लोग इस बात को लेकर व्यथित हो जाते हैं कि जातियों में जब बंटवारा हो जाता है वो पक्षपात होता है, तो वो चाहते हैं कि छोड़ दें।
1: पक्षपात जातियां कहां कर रही हैं? हम तो कह रहे हैं संविधान से जातियां हटा दो। क्यों नहीं हटा रहे हैं? जातियां कौन बना रहा है? लोग कहते हैं पंडित ने जाति बनाई। अरे पंडित जी जाति बनाते तो जाति प्रमाण पत्र पंडित जी बांट रहे होते, काहे बदनाम कर रहे हो पंडितों को ब्राह्मणों को?
0: किसने बनाई
1: संविधान जाति प्रमाण पत्र? आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा तो आप मेरे पास आएंगे कि कानूनी व्यक्ति के पास जाएंगे? बोलो तो बताओ जातियां कौन बांट रहा है? हाँ तो बदनाम बेचारे पंडित जी हैं।
0: आपने नंदी जी के तीन पांव की बात बताई कि अंदर है, हाँ। एक

0: चाहिए। गौरी गोपाल में माताएं रहती हैं, थोड़ा सा आप दान कल माताओं को भोजन कराइए आप अपनी ओर से।
1: वहां तो दान होगा लेकिन जहां दान चोरी हुई है उसकी बात कर रहे हैं।
0: हाँ, अब दान चोरी किसने की, दान चोरी
1: कुछ तो उसमें से अभी पकड़े गए हैं।
0: अब देखो दान चोरी हुई, इसमें भी कुछ लोगों ने कह दिया कि पुजारियों ने चुरा लिया, मतलब बदनाम कौन हो गया, पुजारी, जबकि पुजारी तो बेचारा सैलरी से काम कर रहा है, महीनाबंदी से, चोरी कोई और कर रहा है भाई। चोरी अब जैसे इस कमरे में दान पेटियां ले आओ और यहां जो मुखिया है वही चोरी कर ले, तो वो उसकी गलती है, उसमें किसकी, उसमें सिस्टम की भी गलती है कि उसने ध्यान नहीं दिया, परंतु वहां उन लोगों की गलती है। अब किसी की नियत कैसी है, ये उन नियत खोटों की गलती है, उनकी पर्सनल गलती है, इसमें सबकी गलतियां नहीं है, इसमें आपकी और मेरी और मंदिर के ट्रस्ट की गलती नहीं है, गलती किन की है, जिनने नियत, अब जैसे आपने मेरे पे भरोसा किया और आपने अपने 100 रुपए मुझे दे दिए और मैंने 100 रुपए में से 10 रुपए चुरा लिए और 90 आगे पहुंचाए, तो आपकी क्या गलती, आपने तो 100 ही दिए थे, इसमें मेरी नियत की खोट है ना, इसमें मेरी गलती है। ऐसे ही भगवान का पैसा जिन लोगों ने चुराया उन लोगों की गलती है, उन्हें सजा मिलना चाहिए, सब इसके दोषी नहीं है।
1: आपको लगता है लोगों का विश्वास डिगा होगा इस वजह से या नहीं?
0: अब तो न्याय हो गया, मिल गई सजा,
1: न्याय हो गया है
0: मिल, आपको आप
1: नहीं, कई ये भी तो देखिए यहाँ पर राजनीति भी आ जाती है, है? क्योंकि विपक्ष इसमें कहता है कि अभी भी बहुत लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है उसमें
0: है? नहीं हुआ तो न्याय नहीं हुआ, तो न्याय होना चाहिए, जो गलत है उन्हें दंड मिलना चाहिए, जो गलत है उन्हें दंड मिलना चाहिए और बिल्कुल मिलना चाहिए, ताकि आगे से ये गलती ना हो, क्योंकि यदि आगे ये दंड नहीं दिया गया, हम तो कहते हैं बलात्कारी को ना चौराहे पे लटका के फांसी दो, और गलती करने, कोई दान चोरी की भी गलती उसे भी दंड दो, बलात्कारी को भी, चोर के भी हाथ मात काटना चाहिए,
1: ये तो तालिबानी सजा है।
0: तो फिर आपका घर का पासवर्ड दे देना, हम भेज देंगे 3-4 चोर।
1: कानून सजा देगा महाराज जी, कुछ
0: सजा कहां देते हैं, लोग चप्पल चुरा के भाग जाते हैं, पुलिस को पकड़ाते हैं, पुलिस भैया छोड़ देते हैं, चोर को ठीक से दंड देने,
1: तो वहां पुलिस को भी सजा हो ऐसा करे तो।
0: हाँ, एक बात बताओ, ठीक से दंड दोगे तो दोबारा चोरी नहीं होगी, चोर को पता है, चलो मैया तो बोल रही थी श्वेत पत्र वाली के, चलो कोई बात नहीं यार इतना क्या है, तो दो फिर चोरी करने आ जाएगा, एक बार सस्ता रोवे बार बार महंगा रोवे, एक बार रो लो अच्छे से।
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच in association with
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: और अब बात करेंगे पॉल्यूशन के सॉल्यूशन की।
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच in association with
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: के पॉल्यूशन के सॉल्यूशन सेगमेंट में कोल्हापुर के दो भाइयों की बात, जो दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए नया तरीका लेकर आए हैं। इनका फोकस है दिल्ली के प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट की पहचान करना और वहां फुटपाथ, ट्रैफिक सिग्नल और सड़क किनारे मजबूत एयर फिल्टर लगाना। इनका इनोवेशन पवन 3 है। दावा है कि कोल्हापुर में आजमाई और परखी गई ये तकनीक दिल्ली की जहरीली हवा के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत कर सकती है।
5: नाम प्रतिराज कुमार है और मेरा भाई सुमित पवार, हम दोनों फाउंडर्स है इकोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। हमने ये सोच के साथ ये डिवाइस बनाया है, पोल्यूशन को कम करे, एयर पोल्यूशन को, और वो अच्छे रिजल्ट्स दे, मतलब पोल्यूशन हॉटस्पॉट जो है, एयर पोल्यूशन के हॉटस्पॉट, वहाँ पर वो लगे और रोड साइड डिवाइडर के ऊपर लगे, रोड के ऊपर लगे, तो इस तरह से हमने ये डिवाइस बनाया है पवन 3 करके। ये जो इनोवेशन है ये कोल्हापुर महाराष्ट्र में ऑलरेडी लग चुका है और जो कोल्हापुर में लगा था वो उसे ये पता चला है, जो AQI में रिडक्शन कह सकते हो या फिर PM 2.5 PM 10 में रिडक्शन कह सकते हो, वो 29% से ज़्यादा आए हैं, पर वो पवन 1 डिवाइस है, ये अभी पवन 3 सीरीज चल रहा है, तो हमें लगता है कि इसके रिजल्ट जो है वो मे बी 40% पार कर जाए AQI रिडक्शन के मामले में और PM 2.5 के मामले में। ये

0: हाई सक्शन डिवाइस है, इसमें एयर आगे की तरफ से सक होती है। इसके अंदर मल्टीपल फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जब अंदर हवा इसके जाती है तो हेपा फिल्टर से पास होके ये हवा मल्टीलेयर फिल्ट्रेशन में प्यूरीफाई होके ये लास्ट में कूलिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम जो हमने बनाया है उसमें से पास होके पीछे से निकलती है मशीन के, जिससे AQI में और PM2.5 PM10 में रिडक्शन आता है। इसका मेंटेनेंस है वो हम बाई वीकली करते हैं, 14 दिन में कोल्हापुर में करते थे तो दिल्ली की एयर पोल्यूशन मतलब ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हमें इसका मेंटेनेंस हमारे हिसाब से हफ्ते में 2 बार करना पड़ेगा। ये जो पवन सीरीज चल रही है इसका कॉस्ट जो है वो 5.5 लाख से चालू होता है और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ा बहुत रहता है, पर क्या है कि कॉस्ट का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि ये डिवाइस कौन सा है, उसमें फिल्टर्स कौन कौन से लगेंगे, एक जगह के ऊपर कितने डिवाइसेस लगेंगे, एयर का फ्लो कितना है, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, इस तरह से हम उसमें पार्ट्स वगैरह चेंज करते हैं कि कौन सा पार्ट अच्छा रहेगा। इनोवेशन जो है जो हमने किया है वो भारत में पता लगे कि एयर पोल्यूशन कम हो सकता है, ऑन फील्ड ऑन रोड पोल्यूशन के हॉटस्पॉट को टारगेट किया जाए तो कम हो सकता है, ऐसा हम सोचते हैं।
1: वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: state of mind with a Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler Spa at home.
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: Spa state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपके झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है, अब उसकी चलने की सामर्थ्य समाप्त, खेल खत्म। अब जब खेल खत्म तो फिर आगे की कोई संभावना नहीं, संभावना नहीं तो आगे के बारे में स्वयं सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं तो राम नाम का ही सहारा सही।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

अब में बेटियों से दरिंदगी करने वालों से केस वापस ले रही है आप सरकार। सीएम भगवंत मान पर बीजेपी का सीधा आरोप, पूछा क्या करोड़ों का की घूस लेकर हो रहा है दरिंदगी का सौदा।

24 दिन बाद भी नहीं हुआ कोई एक्शन, नैनीताल हाई कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका। 2027 चुनावों से पहले बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक पद से हटाए गए आकाश आनंद, कहा साम दाम दंड भेद से निपटने में आकाश अभी भी नहीं है परिपक्व। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ बनते ही रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा पहुंचे अयोध्या, कहा श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया के गांव में भी जश्न, गोविंद गिरी बने महासचिव। आज से 2 दिन तक ब्रिज की जमीन पर सीएम योगी की हुंकार, जन्माष्टमी पर करेंगे बांके बिहारी के दर्शन, पंचायत आज तक मथुरा में करेंगे शिरकत।

नमस्कार, 3 बजे के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबरें। सीएम योगी ने फरुखाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। राहत शिविर में पहुंचकर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की, जनसभा को भी किया संबोधन। इस दौरान सीएम योगी ने 96 बाढ़ पीड़ितों को दी 1,20,000 रुपए के चेक और 66 बाढ़ पीड़ितों को दी पट्टे की जमीन का प्रमाण पत्र, साथ ही राहत किट सामग्री का भी किया वितरण। गंगा की उफनती लहरों में पैदा हुए बाढ़ के हालातों पर पीएम मोदी ने वाराणसी के मेयर और डीएम से बातचीत की है, राहत में मुस्तैदी के निर्देश दिए। शुद्धिकरण मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी, कहा कि 24 दिन बाद भी नहीं हुई है कोई एक्शन, जल्द एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई। नशा मुक्ति अभियान के तहत ईडी का मेगा एक्शन, दक्षिण भारत में 30 जगहों पर एक साथ छापेमारी, हैदराबाद के गांजा डॉन के ठिकानों पर भी छापेमारी जारी। राम मंदिर के नवनियुक्त सीओ जितेंद्र मिश्रा का पहुंचे अयोध्या, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। राम मंदिर के पहले सीओ जितेंद्र मिश्रा ने अपने चयन पर ट्रस्ट समिति का जताया आभार, बोले हैं कि राष्ट्र सेवा के बाद अब राम भक्तों की सेवा का अवसर मिला है। जितेंद्र मिश्रा का राम मंदिर सीओ बनने के बाद देवरिया के गांव में जश्न, लोगों ने कहा कि मिला ईमानदारी का तोहफा। राम मंदिर के नए महासचिव गोविंद देवगिरी महाराज ने पूर्व महासचिव चंपत राय से भी मुलाकात की। चढ़ावा चोरी मामले में इस्तीफा दे चुके पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा भी मौजूद रहे। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में सीओ रईस सहित नई नव नियुक्तियों को के साथ 6 साल पुराना सिस्टम लेगा नया रूप, बदलेगा मंदिर के संचालन का पूरा मॉडल। पोस्टर से रील तक बीजेपी की नई चुनावी रणनीति, यूपी में 27,000 शक्ति केंद्रों पर बनेगी 2,07,000 रील्स, सीएम योगी करेंगे चुनिंदा कंटेंट का प्रचार। लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक, मायावती ने 2027 में होने वाले 5 राज्यों के चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की, यूपी पंजाब उत्तराखंड पर रहेगा फोकस। लखनऊ के जेपीएनआईसी में 30 साल की लीज पर निजी हाथों में सौंपने पर फैसले पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तीखा हमला, बोले इतिहास और भविष्य की पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। मैनपुरी सीओ सिटी के वायरल वीडियो पर अखिलेश यादव का पुलिस एक्शन व्यवस्था पर तंज, बोले कि सिर पर सत्ता और सजातीय का हाथ है पर बदलाव दस्तक दे रहा है, नहीं करेंगे निलंबन की मांग। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, कहा कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा हारे और हमारी पार्टी प्रदेश में बनी रहे, लेकिन बीजेपी को हराना आसान नहीं है। अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल शूटर्स का नया वीडियो आया सामने, मर्डर से 3 घंटे पहले मोबाइल शॉप से सिम कार्ड खरीदते हुए दिखाई दिए। शामली के अंकित बालियान हत्याकांड में फरार दोनों शूटर्स पर इनाम राशि बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी गई, दिल्ली समेत 5 राज्यों में दबिश जारी है। अंकित बालियान की कार में ट्रैकिंग डिवाइस लगाने वाले सत्यम और दूसरे कातिल आर्यन की तलाश जारी है। अंकित बालियान हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर राकेश पंपू को एनकाउंटर का डर है, डीजीपी को पत्र लिखकर लगाई है सुरक्षा की गुहार। एसआईआर विवाद पर आपका राघव चड्ढा पर पलटवार, दिल्ली में बैकडेटेड वोटर रजिस्ट्रेशन कराने पर लगाया आरोप। ड्राफ्ट मतदाता सूची से अपने नाम को शिफ्टेड दर्ज होने पर राघव चड्ढा ने आप सरकार पर राजनीति बदले का आरोप लगाया, कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। कोलकाता में 290 करोड़ रुपए बैंक फ्रॉड मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 11 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मनन मिश्रा की ताकत पर चली कैंची, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्थायी निर्वाचित अध्यक्ष नहीं माना है और फिलहाल कार्यवाहक ही की भूमिका तक ही सीमित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली पर अहम आदेश भी दिया है और बड़े नीतिगत फैसलों में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को शामिल करने का निर्देश दिया गया। मथुरा में पंचायत आज तक का शानदार आगाज, सीएम योगी आदित्यनाथ, मंत्री, सांसद, विपक्षी नेता और धर्मगुरु और वकील यूपी की सियासत और हिंदुत्व मथुरा समेत चुनावी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मथुरा में आयोजित पंचायत आज तक के मंच पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, कांग्रेस की जीत का किया है दावा। पंचायत आज तक के मंच पर अजय राय ने 2027 में पिंडरा सीट पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान, 2024 लोकसभा चुनावों के रिजल्ट पर भी उठाया सवाल।
चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने शुरू की घोषणा पत्र की तैयारी, जेन जी और युवाओं पर रहेगा ज्यादा फोकस। यूपी मिशन को लेकर शिवपाल यादव का बड़ा दावा, कहा कि एसपी और कांग्रेस का गठबंधन ठीक चल रहा है, 2027 में मिलकर लड़ेंगे चुनाव, अखिलेश बनेंगे सीएम। पंजाब में चल रहे एसआईआर अभियान के दौरान राघव चड्ढा का नाम पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कटा है, नाम के आगे परमानेंट शिफ्टेड लिखा गया है। राघव चड्ढा 12 सितंबर 2026 तक अपना नाम काटे जाने पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और दोबारा नाम ऐड कराने के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में एक बिल्डिंग में तोड़फोड़ को लेकर गरमाई है सियासत, टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने सीसीटीवी वीडियो को जारी कर बीजेपी पर बोला हमला। अभिषेक बैनर्जी ने प्रशासन पर की भी सवाल उठाए हैं, आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और पूरे मामले की जांच की मांग की है। पाकिस्तान का F-16 गिराने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान की नई पारी की शुरुआत, अब प्राइवेट एयरलाइंस फ्लाई 91 से जुड़ेंगे। नेपाल में तबाही का आंकड़ा बड़ा है, मृतकों की संख्या 1200 के पार पहुंच चुकी है, 4875 लोग अब भी लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अब तक करीबन 12,000 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, सेना के हेलीकॉप्टर तैनात है, पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद और घायलों को मुफ्त इलाज जारी है। नेपाल के पीएम बालेन शाह ने जलवायु परिवर्तन से जोड़ा है हादसा, भारी बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ है, 400 मेगावाट बिजली उत्पादन की भी बाधित हुई है। नेपाल में होते कोशी में बाढ़ से तबाही मची है, पीएम बालेन शाह बोले हैं कि दृढ़ संकल्प और साहस के साथ संकट से लड़ना होगा। नेपाल में भारी बारिश का असर अब भी जारी है, नदियों का जलस्तर बढ़ने से बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा है। पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, लापरवाही पाए जाने पर 5 लेखपाल और एक कानून के शख्स को सस्पेंड कर दिया गया। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 प्रदान करेगी राष्ट्रपति मुर्मू, 48 स्कूली शिक्षकों को मिलेगा अवार्ड। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आर्मी ने आयोजित किया स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। गोलाघाट के डेरा गांव स्थित लाचित बरफुकन पुलिस अधिकारी अकेडमी में पुलिस कर्मियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई, जवानों में दिखा है जोश। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ली है परेड की सलामी, सीएम के अलावा कई उच्च अधिकारी परेड में शामिल हुए। पटना में गंगा नदी का रौद्र रूप, सभी घाट जलमग्न हो गए, सुरक्षा के मद्देनजर घाटों पर एनडीआरएफ और एसएसपी तैनात की गई है। गंगा का बाढ़ बड़ा है जलस्तर, घाटों से सटी सड़कों पर पहुंचा बाढ़ का पानी, प्रशासन मोड अलर्ट पर है। बिहार के वैशाली जिले में गंडक नदी का उफान पर है खतरे के निशान से 51 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा जलस्तर, प्रशासन अलर्ट।

0: संभल मथुरा काशी जब हम कहते हैं तो हम अलग अलग युगों की भी बात कर रहे होते हैं, और शुरू संभल से भले कह रहे हैं हम अपनी इस सत्र के नाम पे, लेकिन अगर हम युगों के हिसाब से बात करें तो अभी आने की प्रतीक्षा है। लेकिन एक प्रश्न के साथ मैं शुरुआत आप तीनों से करना चाहती हूं कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ उसके बाद जो एक आस्था प्रत्यक्ष देश भर में नजर आई, क्या वहां से ये परिवर्तन है या फिर वहां से केवल राजनीति है? आज अगर हम सनातन की बात करते हैं और एक उस ऊर्जावान आस्था की बात करते हैं जो हमें देश की हर पीढ़ी में नजर आता है, तो वहां पर आप किस प्रकार से इस दौर को पाते हैं? आचार्य जी आपसे शुरुआत।
1: श्वेता जी, भारत 1000 साल तक गुलाम रहा और 1000 साल तक गुलामी में लगभग 800 साल अफगान, हूड, मुगल और 200 साल अंग्रेज, तो वो हमारे इस गौरवशाली इतिहास के काले दिन थे। वो भारत जहां भगवान राम का अवतार हुआ, वो भारत जिस धरा पे भगवान कृष्ण आए, वो भारत जहां बुद्ध और महावीर की धरती कहा जाता है, वो भारत जो छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की धरती है, वो भारत जहां भगवान का अंतिम अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल में अवतार लेगा, वो भारत गुलाम रहा। और भारत इसलिए गुलाम नहीं रहा कि अंग्रेज बहुत बहादुर थे, मुगल बहुत बहादुर थे, अफगान बहुत बहादुर थे, बाबर बहुत बहादुर था, चंगेज खान बहुत बहादुर था, तैमूर लंग बहुत बहादुर था। भारत इसलिए गुलाम रहा कि हमारे बीच में कुछ गद्दार जयचंद के रूप में मौजूद थे। वो जो पीरियड की जो त्रासदी है, तो वो जो नई जनरेशन है, आज का जो भारत है, जब हम उस इतिहास को पढ़ते हैं तो हम अंदर से, हमारे अंदर एक ज्वालामुखी धधकता है और जितनी गलतियां हमसे हुई हैं हम उनको सुधारने की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हम कोई इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिसमें भारत की गौरव गाथा है, जिसमें सनातन की बात है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम और राम मंदिर की बात है, राम मंदिर, भगवान राम का अवतार अयोध्या में हुआ, इसके सबूत देने पड़े, भगवान राम अयोध्या में आए, उनकी जन्मस्थली अयोध्या है, इस बात पे सैकड़ों साल मुकदमा चला, अंततो गत्वा हम राम मंदिर बनाने के मार्ग में जितने रोड़े थे उनको साफ करके वो दिन देख पाए, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र अयोध्या, वो दिन देखा जब भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। लेकिन जिस तरह अयोध्या ने दर्द सहा, उसी तरह काशी ने दर्द सहा, उसी तरह मथुरा ने दर्द सहा, और श्वेता जी उसी तरह संभल ने दर्द सहा। यह आपने जो विषय छेड़ा है, संभल, मथुरा और काशी, तो आधे लोगों को तो पता नहीं है कि भाई मथुरा काशी का तो इतिहास हम जानते हैं, लेकिन संभल का इतिहास क्या है? बाबर 1527 में संभल आया, 1527 में, और ये इतिहास में दर्ज है। अयोध्या का मंदिर जब टूटा, काशी टूटा, मथुरा टूटा, उससे पहले सोमनाथ टूट चुका था, लेकिन संभल में भी जो मंदिरों को तोड़ा गया तो क्यों तोड़ा गया? क्या मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाने के लिए जमीनें कम थी? ऐसा तो नहीं था, जमीनें बहुत थी। लेकिन कहीं भी अगर बादशाह चाहता, कहीं भी आक्रांता चाहता, तो वो पूरे कहीं भी मस्जिद बना सकते थे, लेकिन उनका मकसद मस्जिद बनाना नहीं था, उनका मकसद हिंदुओं की आस्था को तोड़ना था। इसलिए अयोध्या कि तुम कहते हो ये भगवान आया, तोड़ा, मथुरा भगवान आया, तोड़ा, और संभल के मंदिर भी तोड़े गए कि आप कहते हो भगवान आएगा, वो भी तोड़ा गया। तो ये सारा के सारी चीजें जो हैं आज राजनीतिक परिदृश्य में और राजनीतिक वातावरण में, सामाजिक वातावरण में, पूरे राष्ट्र में नहीं पूरी दुनिया में घूम रही है, उसका परिणाम है कि आज हम लोग यहां बैठ करके इस पर चर्चा कर रहे हैं।
0: स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, जब भी मंदिर की बात आती है संतों की तरफ से प्रयास होते हैं, लेकिन वो तब तक संपन्न नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता है जब तक आम लोगों का साथ नहीं होता। और आज के युग में अगर बात करें, जब तक राजनीति, राजनेताओं का उसमें की भागीदारी नहीं रहती है, लेकिन जब मंदिर निर्माण की बात आती है या कहीं पर भी जब आप कहते हैं कि वापस पुनः स्थापित होना चाहिए, तो वहां पर यह कहा जाता है देश में समस्याएं पहले से कम है क्या? आप उससे ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर आपका जवाब।
2: जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस ब्रज की धरती पे आकर के हम सब सौभाग्यशाली हैं, और आज तक को और श्वेता जी को सबको बहुत बहुत आज तक के पूरे टीम को बधाई देता हूँ। कल कृष्ण जन्माष्टमी है और आज यहाँ पे इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इस बात को हमें समझना होगा, श्वेता जी आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि 1528 में जब मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़ा तो क्या उसके बाद भक्ति जागृत हुई? ऐसा नहीं था, भक्ति तो शुरू से ही था और तभी मंदिर पहले भी बना था। लेकिन बीच में जो आचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा कि कुछ ऐसे काल आते हैं, एक बात समझ लीजिए, सृष्टि की जब से उत्पत्ति हुई सूर और असुर दोनों रहे हैं, ये विचारधारा है। सूर क्या करता है? सूर निर्माण करता है। असुर तत्व तो क्या करता है? वो विध्वंस करता है। तो एक ऐसी विध्वंसकारी विचारधारा आई, एक ऐसे लुटेरों का समय आया जो वो अपने मजहब धर्म के लिए नहीं आए थे, वो आए थे सिर्फ लूट मार करने। और लूट मार करने के बाद वो देखा कि अरे यहां तो बड़े बड़े सोने के मंदिर बना है, चलो इसको लूट लिया, अब करे क्या। तो भाई, लोगों की आस्था इस राम मंदिर से है, लोगों की आस्था यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि से है, लोगों की आस्था यहाँ पे सोमनाथ मंदिर से है, तो क्या करें? तो इसको तोड़ते भी हैं और एक ऐसे मजहबी रूप दे देते हैं ताकि कुछ हमारे जो विचारधारा के, यानी कट्टरपंथी जो विचारधारा के है, वो हमारी लड़ाई को आगे करेगा। तो हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा वो तो थे लुटेरे, और उनको बने बनाए बिल्डिंग मिल जाती थी, सोना निकाल लेते थे, हीरे निकाल लेते थे, गुंबद का रूप दे दिया। लेकिन हमें यहाँ पे सबसे बड़ी आश्चर्य और हमें उनकी होती है जो आज भी किसी शताब्दी में जो इस विचारधारा के लोग इतना विकास प्रगति कर रहा है, उसमें जो उनके पैरवीकार लोग हैं वो भी ये नहीं समझते कि भाई आप देखो कि जिस हिंदुओं ने, जिस सनातन धर्म ने कभी किसी पे आक्रमण बेवजह किया ही नहीं, कभी किसी के धर्म स्थलों को बेवजह तोड़ा ही नहीं, उसने अपने अधिकार मांगा है। एक राम मंदिर में, चूंकि मैं खुद भी पक्षकार रहा, एक लंबी लड़ाई के बाद राम मंदिर, वो भी कानूनी लड़ाई के बाद, और कानूनी लड़ाई लड़ी गई उसमें भी जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उससे भी लड़ाई लड़ी गई, ये भी नहीं कि सिर्फ कानूनी हम लड़ रहे हैं, इतने अवरोध उत्पन्न किया गया, उसके बाद एक कानूनी लड़ाई के साथ भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ, आज राम मंदिर बने। लेकिन अब अभी एक दो नहीं, हजारों मंदिर जो उस समय तोड़े गए, हम मध्य प्रदेश में आप जाके देखिए, अन्य स्थलों पे जाके देखिए, उस समय उन दरिंदों ने क्या किया कि वो जानते थे कि सनातन धर्म की मान्यता है कि भंग प्रतिमा की पूजा नहीं होती, जैसे नाक टूट जाए, हाथ टूट जाए, तो उन्होंने क्या किया, ईर्ष्या से सभी मंदिरों की प्रतिमाओं को कहीं ना कहीं कान तोड़ दिया, नाक तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, जानबूझ करके तोड़ा। तो उन लोगों से कहां तक घृणा होनी चाहिए और वर्तमान में लोगों को घृणा करना चाहिए जो उनके मान्यता के लोग हैं, तो उसके लिए भी वो लड़ाई लड़ते हैं कि नहीं, ये तो हमारा है, ये तो हमारा मस्जिद है। अरे भाई, हमें तो लगता है प्रायश्चित का समय है, आपको न सिर्फ जो हिंदुओं के अधिकार है उसको देना चाहिए, बल्कि अगर वो प्रायश्चित करना चाहिए, न कि आप मुगलों की पाप की गठरी बात करके लेके चलो। तो हमें लगता है कि देखिए, यह सनातन धर्म विध्वंस का नाम है नहीं है, सनातन धर्म एक निर्माण का नाम है और हमेशा से सृजन किया है, निर्माण किया है, और सनातन माने जो शाश्वत है, हमेशा से रहा है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। और यह एक विचार ऐसे है, हमने पूरे विश्व में जाके देखा, तो ये पूरे विश्व में प्रभुपाद जी हमारे अमेरिका में गए, आप देखिए हरे रामा हरे कृष्णा लोग करने लगे, अंग्रेज यहाँ पे लोगों को प्रणाम नहीं करने आता, वो दंडवत प्रणाम करते हैं, यहाँ चोटी शिखा रखने में शर्म आती है, वो चोटा रखते हैं, बड़े बड़े चोटा रखते हैं। तो मूल विषय यह है, अनेक संस्थाएं कार्य कर रही है, हमारे संत महात्मा काम कर रहे हैं, हमारे आचार्य जी देखिए कल्कि पीठ में बहुत बड़ा मंदिर बनवा रहे, जो भगवान कल्कि अभी आने वाले हैं, हमारे आचार्य बद्रीश जी बैठे गुरुकुल के माध्यम से बच्चों में संस्कार दे रहे, तो लोग कार्य कर रहे हैं। अब इन आप चले जाए गुरुकुलों में, तो वहां पे रहने वाले बच्चों को विध्वंसक चीजें नहीं बताई जाती, वहां पे तो यह बताया जाता है कि देश और विश्व के लिए क्या अच्छे कार्य करोगे, क्योंकि हमें बचपन से घोट के पिलाया जाता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है। दूसरी तरफ कहा जाता है नहीं, तो अंदर सिखाया जाता है कि भाई आप तो जो है एक विशेष मानने वाले, दूसरा जो मूर्ति पूजा है वो काफिर है। तो जब अंदर से जब नफरत की बीज उसके अंदर डाल दी जाएगी ना, तो ये स्थिति रहेगी कि हमेशा वो जाएगा तो विध्वंसक कार्य करेगा, वो तोड़ेगा, वो नफरत घृणा होगा। तो मेरा ये मानना है कि हमें सनातन की तरफ लौटना चाहिए और हर व्यक्ति को स्पष्ट रूप से अपनी सनातन होने पे, सनातनी होने पे गर्व करना चाहिए और पूरे विश्व में इसकी खुशबू को फैलाना चाहिए।
0: आचार्य बद्रीश जी महाराज, ये एक नारे के रूप में बार बार दोहराया गया कि काशी मथुरा बाकी है, मथुरा का संत समाज क्या अपेक्षा रखता है?
3: वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। बोलो गिरिराज भगवान की, बोलो जमुना महारानी की, बोलो बाल कृष्ण लाल की। सबसे पहले मैं आपके चरणों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वर्तमान में हम बालकृष्ण लाल को दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान देखना चाहते हैं। समस्त ब्रजवासियों की आबाल वृद्ध वनिता सभी उत्साहित हैं, यथाशीघ्र राम मंदिर के बनते ही मन में बार बार उत्साह जागृत होता है, उत्कंठा जागृत होती है, भाव जागृत होता है कि अब जल्दी से जल्दी हमारे बालकृष्ण लाल दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो। और जो ईदगाह का कलंक है, जैसे बाबरी मस्जिद को हटाया गया उसी तरह से उस कलंक को भी हटाया जाए और शीघ्राति शीघ्र, जहां तक हमारा विश्वास है कि पूर्व में राम मंदिर की जो परिस्थितियां थी उस समय वातावरण इतना भयावह था, पूर्व की सरकारों ने जो विदर्भियों को इतना सिर पर चढ़ा रखा था उनके डर से मुझे लगता था कि न्यायालय भी भयभीत था, तथापि समय आया और न्यायालय के सहयोग से राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब वर्तमान में वैसी भयभीत स्थिति नहीं है, जहां तक न्यायालय का संपूर्ण सहयोग मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसलिए नहीं कि हमारी सरकारें उनको दबाव में डालेंगी। उस विपक्ष के पास ना तो कोई, पहले नगर पालिका थी उसकी कोई रसीद है, न जल विभाग की कोई रसीद है और न बिजली विभाग का कोई उनके पास विल है, एक भी कागज उनके पास नहीं है जिससे वो ईदगाह को अपना सिद्ध कर सकें। इसलिए न्यायालय भी और वातावरण भी देखते हुए निश्चित रूप से निष्पक्ष न्याय देगा और राम मंदिर की तरह बहुत ज्यादा समय लगता है श्रीकृष्ण मंदिर में नहीं लगेगा। यथाशीघ्र न्यायालय के द्वारा भी, शासन प्रशासन के द्वारा भी और जितने भी सनातनी हैं, हम सब ब्रजवासी हैं, जितने भी संत हैं, मठाधीश हैं, भागवताचार्य हैं, कथा व्यास हैं, हमारी अखाड़ा परिषद है, ये सारा का सारा सनातन इस समय एक मत है, एकजुट है और सभी की एक ही भावना है कि शीघ्रातिशीघ्र हमारे बालकृष्ण लाल इस ईदगाह को हटा करके जो वास्तव में जन्मभूमि का स्थल था, जैसा कि हमारे महाराज श्री ने बताया, उन्होंने जानबूझकर हमको खिजाने के लिए, चढ़ाने के लिए हमारी मूर्तियों को खंडित किया, मंदिरों को तोड़ा और जानबूझकर उसी जगह पर उन्होंने अपने अपने देवालयों का निर्माण किया और अनेक उन्होंने अनियमितताएं की जो सरकारों के भी संज्ञान में है, लेकिन फिर भी जितनी मजारें बन रही हैं, ईदगाहें बन रहे हैं, तरह तरह के अवैध उनके जितने भी निर्माण हैं, हालांकि योगी जी के द्वारा बहुत प्रयास हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार भी कर रही है, बंगाल सरकार ने भी प्रारंभ किया है, लेकिन ये एक मुहिम ऐसी चलनी चाहिए जैसी कि जेहादियों ने चलाई थी, हमारे कम से कम नहीं तो 1,00,000 के आसपास मंदिरों को ध्वस्त करके उन्होंने अपने मंदिर मस्जिद हो मंदिर को तोड़कर या ईदगाह बनाया हो या उन्होंने मजार कहीं पर भी सार्वजनिक जगह पर बनाई, इन सब का ध्वस्तीकरण चुन चुन करके होना चाहिए।
0: हालांकि जो आपने अच्छी बात कही कि कानून के हिसाब से और जो तथ्य हैं, जो दस्तावेज हैं, जो कागज हैं, वो सब कुछ आपके पास हैं और अदालत में यह मामला चल रहा है, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ये चीज समझाइए कि जब भी ये बात शुरू होती है ना, ये बात जरूर शुरू होती है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात आती है वहां पर, जो कि एक पहले ही एक व्यवस्था कर दी गई, वह राम मंदिर बना लोगे तो उसके बाद ये नहीं सोचना कि बाकी जगह भी कर सकते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि ये यहां पर एक तो अव्वल बदलाव की आवश्यकता है क्या? आप लोग क्या ये सरकार से कहते हैं कि क्योंकि वहां पर सरकार को अपना अब रिप्रेजेंटेशन देना है, बताना है कि उनका रुख क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे। दूसरी चीज क्या उनके रहते हुए आपको लगता है संभव होगा जो आचार्य बद्रीश जी कह रहे हैं कि सारी गलतियों को वो चाह रहे हैं कि वो सही हो?
1: देखिए श्वेता जी, पहली बात तो यह है कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो कानून का मसौदा तैयार बाद में होता है, पहले भाव और विचार आता है कि भाई कानून किस उद्देश्य और लक्ष्य को लेके बनाया जा रहा है। तो ये जो प्लेसेस ऑफ वर्सेस एक्ट है, ये 1991 का, इसका जो उद्देश्य है वही बेईमानी है। इसका उद्देश्य ये था कि भाई जहां जहां भी मंदिरों को तोड़ करके उनका स्वरूप बिगाड़ा गया है तो कोई आगे भविष्य में कोई भी इस पे दावा ना कर सके। यानी कि एक बहुत बड़े सेक्टर को जिसमें क्या करोड़ों लोगों की आस्था इन्वॉल्व है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा इन्वॉल्व है, जहां हमारा संविधान फंडामेंटल राइट्स है, हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हम ये नहीं कहते। और मैं आज साफ करना चाहता हूं, आपको बधाई देता हूं कि वृंदावन की पवित्र भूमि पर जन्माष्टमी के अवसर पर, शुभ अवसर पर भगवान जहां आए उस धरा पर आपने इस कार्यक्रम को आयोजित करके एक संदेश देने का जो प्रयास किया है, तो आज यहां से एक संदेश स्पष्ट जाना चाहिए। और वो एक व्यक्ति का नहीं है, वो एक कम्युनिटी का नहीं है, वो एक वर्ग का नहीं है, वो एक जाति का नहीं है, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, वो संपूर्ण सनातन का संदेश है कि हम किसी भी मस्जिद को तोड़ने के पक्ष में नहीं है, लेकिन हम किसी भी मंदिर को छोड़ने के पक्ष में नहीं है। और इसीलिए सरकारें जनता नहीं बनाती, जनता सरकारें बनाती है। सरकार जनता और जनता सरकार, ये खेल है ना, आप ये यकीन करिएगा, जिस समय 2004 से 2014 तक यूपीए 2 यूपीए 1 की गवर्नमेंट थी, उस वक्त राम मंदिर के आंदोलन और राम मंदिर के मुकदमे को लोग सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे और फैसला आते हुए देखना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी फोर्सेस थी, पॉलिटिकल फोर्सेस थी, षड्यंत्रकारी फोर्सेस थी, जो राम मंदिर के फैसले को टालना चाहती थी। तो सरकारें टालने का प्रयास करती हैं, सरकारों ने राम मंदिर के फैसले में रोड़ा अटकाने का काम किया, सरकारों ने राम मंदिर के रास्ते में रोड़े अटकाए, लेकिन अंत में फैसला तो राम मंदिर के पक्ष में हुआ ना, नहीं अटका पाए। और श्वेता जी एक बात और मैं कह रहा हूं, इस उत्तर प्रदेश में आप बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा भी है, जमुना भी है, अयोध्या भी है, मथुरा भी है, काशी भी है और संबल भी है, और ये कितनी पवित्र धरती है, कितनी पवित्र धरा है कि हमारे पुराणों हमारे ग्रंथों के आधार पर अयोध्या में भगवान राम आए, मथुरा में भगवान कृष्ण आएंगे, और श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में स्पष्ट उल्लेख है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति, के संभल नामक स्थान पर गंगा और राम गंगा के मध्य में, कितनी बड़ी घोषणा है ये, हजारों साल पहले पुराणों में जो लिखा है, और ये हमारे सनातन के भविष्य का केंद्र बनेगा। अब मुझे बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक परिदृश्य है, ये जो पॉलिटिकल गुणा भाग चल रहा है, ये अलग है। हमारी आस्था का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है कि भाई भगवान कृष्ण मथुरा में पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, बताओ ना, भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ? मथुरा में हुआ। बाबर का जन्म हुआ यहां? खिलजी का हुआ यहां? तैमूरलंग का हुआ? औरंगजेब का हुआ? किसी का नहीं हुआ। अरे भाई, भगवान कृष्ण जहां आए उनके जन्म स्थान के मंदिर को लेने के लिए भी अगर हम दर दर की ठोकरें खाएं, तो फिर एक समाज, एक पूरा का पूरा एक आस्था का जो सैलाब है वो तो उमड़ेगा। और जब आस्था का सैलाब उमड़ता है तो सत्ताएं बदल जाती हैं, सत्ताएं बिगड़ जाती हैं और सत्ता नई बन जाती है।
0: अगर बात
1: और मैं आज यहाँ से सारे पॉलिटिकल पार्टीज को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आओ ना, सारा विपक्ष आए, सारा पक्ष आए। भगवान कृष्ण कोई सिर्फ हिंदुओं के हैं क्या? भगवान कृष्ण जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं।
0: आपको लग रहा है कि हर पार्टी को बोलना चाहिए?
1: बोलना चाहिए। अखिलेश यादव जी को आना चाहिए उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव जी को आना चाहिए, वो तो कहते हैं हम यदुवंशी हैं।
0: हाँ।
1: अरे भगवान कृष्ण के मंदिर का शिलान्यास करने के लिए उनको आना चाहिए, आना चाहिए।
0: स्वामी चक्रपाणी महाराज, क्या राजनीति छोड़कर आपका भी ये विचार है कि सबको आना चाहिए? क्योंकि राम मंदिर में जो चंदा मामला हुआ उस पर सब बोल रहे हैं अभी, और योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि ठीक है वहां पर बोल रहे हो, यहां पर कृष्ण जी के मंदिर के बारे में बोलकर दिखाओ। क्या आप लोग भी अपेक्षा करते हैं कि सब बोले कृष्ण मंदिर पर?
2: श्वेता जी, यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हिंदू शुरू से चाहता था कि कम से कम अगर जो कोई भी विपक्ष की, जो वर्तमान में विपक्ष है, पहले सत्ता में थी, कि कम से कम अगर जो हिंदुओं का साथ नहीं दे रहे तो निष्पक्ष रहो, लेकिन वो निष्पक्ष भी नहीं रहे। अब आज आप देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि जो मनुस्मृति कहता है यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी नारी का सम्मान की कितना सर्वोच्च हर व्यक्ति इसको बोलता है, उसको कुछ मूर्ख लोग मनुस्मृति जलाने में अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, बताइए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो सबके लिए होता है ना, वो तो सबके विकास की, सबकी भावना का सम्मान करने के लिए होता है। लेकिन यह फैशन हो चुका है कि बस हिंदुओं की भावना को कैसे उसको रगड़ा जाए, कैसे तोड़ा जाए, कैसे प्रभावित किया जाए। और यही कारण हुआ, जब आप देखो कभी राम सेतु को काल्पनिक बता दिया गया, कभी भगवान राम को ही काल्पनिक बता दिया गया। राम मंदिर जब केस जब चल रहा था सर्वोच्च न्यायालय में, कितना रुद उत्पन्न किया गया, भाई चुनाव चल रहा है मत इसको रोक दिया जाए, वो कर दिया जाए। अरे भाई चुनाव तो सालों भर चलता है, लेकिन इस बात को ये विपक्ष के नेता वर्तमान में जो है खासतौर से नहीं समझ पाते कि आप मोदी जी से, योगी जी से लड़ते लड़ते सनातन पे हिंदुत्व के क्यों लड़ने लगते हो भाई। और हम लोग तो इतना आहत है इस चीज को देख करके। आप देखिए, मैं कल पेपर पढ़ रहा था, विपक्ष के कुछ उसके वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर के मनुस्मृति जलाई, और उस पर कोई प्रियंका जी, राहुल जी, सब लोगों का समर्थन है और सभी विपक्षियों का समर्थन है, सब कोई उठता है आकर के मनुस्मृति पे टिप्पणी कर देता है। अरे कभी दूसरे पे भी तो कर दो ना, जिसपे सीधा स्पष्ट कहता है काफी रही इसको मारो, उस पर तो तुम करोगे नहीं।
0: एक चीज मुझे सिर्फ बताइए कि हम तुलना नहीं करते हैं, हम न तो कुरान से तुलना कर रहे हैं न बाइबल से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि बात सनातन की हो रही है,
2: सनातन।
0: तो मैं सिर्फ मनुस्मृति की बात आपसे पूछती हूँ, क्या वो पूरी तरीके से ऐसा है कि उसकी प्रतियां जलाए? हालांकि मनुस्मृति यानी जो याददाश्त, जो हमारी स्मृति में है,
2: तो पर उसकी ये एक व्यवस्था है हमारे, जब कुछ संविधान तो अब बने हैं ना, जब ये नहीं था तो उसके अनुसार चलता था आदमी, वो एक हमारी आईना।
0: ये भी कहा गया कि जो त्रुटियां रहे धर्म में, अगर कुछ समय के साथ परिवर्तन या उसको गलत ढाल लिया गया है, उसमें परिवर्तन के लिए भी समाज तैयार रहे।
2: बिल्कुल, सवाल इस बात का है कि वह गलत सही तो तब देखे। अब देखिए, कोई अधिवक्ता होता है, 5 साल पढ़ता है अपनी लॉ की, उसके बाद उस चीज को समझता है और फिर उस पे कहता है क्या गलत है क्या नहीं। जब तुम बिना पढ़े ही, बिना सुने ही, बस कौवा कान लेके गया, तुम कौवे के पीछे दौड़ रहे हो, किसी ने कह दिया मनुस्मृति अपमान कर रही है, बस तुम जलाना शुरू कर दिए।
0: शिक्षित तो ये तो होना चाहिए।
2: हाँ, मूल विषय ये है कि शिक्षा की भी कमी है और संस्कार भी की भी कमी है। कोई भी संस्कारित व्यक्ति इस तरह से नहीं करेगा किसी की भावना को ऐसे आहत। तो भी सनातन जो ऋग्वेद कहता है मनुर्भव, जिस हिंदुओं के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। मनुष्य कौन है? जो सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम पे जिसके अंदर गुण है वही मनुष्य है। और तुम उसको, जिसने कहा सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख, जिसने सभी की सुखमय जीवन की कल्पना की, आज जो अंतरिक्ष से लेकर के वनस्पतियों से लेकर सबके शांति और उसके लिए कामना किया, और तुम उसको कह रहे हो कि जी ये तो जो है हमारे लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है, कट्टरपंथी। अरे कैसे कट्टरपंथी है, ये तो सबसे बड़ा मानवतावादी है। तो इसलिए हमें लगता है कि वो है ना, कि हमें एक दो जख्म नहीं, पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है, उठे कहां से। तो हमारे मंदिरों को भी तोड़ा गया, हमारी भावना भी आहत की गई, और अभी तक चला रहा। हमें लगता है कि मुगल तो चल गए, मर गए, हम तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हमें लगता है कुछ अंश इस विपक्ष के रूप में आ गए जो अभी भी भावना भड़का रहे, भावना को आहत करते जा रहे, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी निंदा हम करते हैं।
1: लेकिन मैं एक बीच में थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा कि हमारे किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि इस पे विचार नहीं किया जा सकता, इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती या इस पे चर्चा नहीं की जा सकती। हम कट्टरता और रिजिडनेस के पक्ष में नहीं है, हम विराटता के पक्ष में हैं, हम विशालता के पक्ष में हैं। हम इसीलिए कहते हैं सनातन, सत्य सनातन सर्वदा, सत्य सार्थक सर्वदा। तो हम ये नहीं कहते कि सनातन सिर्फ हमारा ही धर्म है। सनातन वो धर्म है जो प्राणी मात्र का धर्म है। हमारी प्रार्थना कभी ये नहीं है कि हिंदुओं का भला करो, हमारी प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। तो श्वेता जी, हमारा कोई भी धर्म ग्रंथ किसी भी परिवर्तन को, किसी भी संशोधन को रोकता नहीं है, समीक्षा को कभी नहीं रोक। लेकिन लेकिन जब देश काल और परिस्थिति परिवर्तित होती हैं, यहाँ सारे विद्वान लोग बैठे हैं, जब देश काल और परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं तो सब कुछ बदलता है। हमारे समाज के अंदर जितनी कुरीतियां थीं उनका विरोध हम ही ने किया। सती प्रथा को बंद किया, बोलो सती प्रथा रोकी, बाल विवाह रोका और बहुत सी कुरीतियां। और जैसे जैसे समय आगे निकलता है हम लोग स्वतः ही परिवर्तन की तरफ चलते हैं, नहीं तो प्रगति रुक जाएगी। अब सब कुछ बदल रहा है, पहले एक टेलीविजन हुआ करता था, अब तो कितने चैनल हैं आपके बैठे। तो ऐसे ही लोग सोचते हैं कि हम तो बदलते रहें और ये संत समाज और ये जो ग्रंथ हैं ये परिवर्तित ना हो, उनमें संशोधन की गुंजाइश है। मैं आपसे सहमत हूं, यदि हमें लगता है कि कोई बात प्रासंगिकता नहीं है, जिस बात की प्रासंगिकता नहीं है उसको परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु किसी की आस्था का अपमान करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। आप मनुस्मृति को माने या ना माने, लेकिन मनुस्मृति को फाड़ करके उसे आग लगाने की अनुमति आपको किसने दी? हमारा विरोध यह है।
0: आपको अच्छी सीख लेनी है तो आप ये भी तो देखिए ना कि आज आप जातिवाद मिटाने की बात करते हैं, प्रभु श्री राम ने कब मां शबरी के जूठे बेर खा लिए थे, कब एक जो धोबी का काम करते थे वो राजा राम से प्रश्न करने का की स्वतंत्रता रखते थे। तो ये बातें भी है। लेकिन आचार्य बद्रीश जी महाराज, ये बताइए कि आपकी अपेक्षा क्या हर पार्टी से ये है कि वो इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात सामने रखे? आप चाहते हैं कि जो भी है, दूध का दूध पानी का पानी, बता दो पक्ष में हो कि नहीं।
3: जय श्री राधे। पार्टी कोई सी भी हो, सबसे पहले उन्होंने भारत में जन्म लिया है और सबसे पहले वो हिंदू हैं। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो जो माता पिता के द्वारा संतति उत्पन्न होती है पुरुष रूप में, तो वस्तुतः हिंदू होती है, स्त्री रूप में हिंदू होती है। उसके बाद उनमें परिवर्तन करके अपने अपने धर्म के अनुसार लोग उनको अपने में ढालते हैं। फिर इसी तरह से जब हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, उसके बाद फिर हम अन्य पार्टियों में चले गए तो हमारा एक पार्टी का स्वरूप बदल गया। लेकिन पार्टी का स्वरूप बदल जाने से जब पिता एक है और छह भाई अलग अलग काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के विरुद्ध नहीं हो सकते। कोई वकील है, कोई पुलिस में है, कोई पटवारी है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, लेकिन भीतर से सबको एक मत होना चाहिए कि हम एक पिता की संतति हैं। हमारे यहाँ तो जो भी भाव रखा गया है वो यही रखा गया है कि पूरी वसुधा यानी अयम निजाह परोवेति गणना लघु चेत साम, ये मैं हूं मेरा है, ये तू है, ये तेरा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में माया की परिभाषा लिख दी, मैं अरु तोर तोरते माया यही बस कीने जीव निकाया। तो ये जो मेरा तेरा का भाव है ये हमारे यहाँ कभी भी नहीं रखा गया, ये मेरा है ये तेरा है, ये छोटी बुद्धि वालों का काम है।
0: यहाँ पर मैं रामायण की तरफ जाऊंगी, राम मंदिर की तरफ जाऊंगी। बड़ा आंदोलन रहा है, अदालत से लेकर सड़क तक बहुत सभी संत समाज ने लड़ाई भी लड़ी है उसकी। अब जब चंदा मामला हुआ उसके बाद अब एक सीईओ आए हैं, ये परिवर्तन कितना स्वीकार्य है आपको? और क्या जो थोड़ा सा भी विश्वास किसी का डिगा या फिर आरोप लगे? अब विराम।
1: देखिए, मंदिर में चोरी हुई इससे सब आहत हुए, मंदिर में चोरी नहीं होनी चाहिए थी, विश्वास तोड़ा, आस्था को भी ठेस पहुंची। लेकिन इसमें राम जी का क्या दोष है, इसमें भक्तों का क्या दोष है? और हमारे घर में अगर चोरी हो जाए तो हम घर में रहना थोड़ी छोड़ देंगे? लेकिन जो लोग जिन लोगों ने कभी राम का समर्थन नहीं किया, राम मंदिर का समर्थन नहीं किया, अयोध्या का समर्थन नहीं किया, जो लोग कभी अयोध्या नहीं गए, जो लोग कभी राम मंदिर नहीं गए, वो राम मंदिर की चोरी पे बड़ी छाती पीट रहे हैं। अब नए सीईओ आ गए, ये व्यवस्था का प्रश्न है। एक्चुअली जो लोग राम मंदिर की चोरी को आधार बना करके योगी आदित्यनाथ जी को निशाना बनाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को निशाना बनाना चाहते हैं, उनका उनका विषय ये नहीं है कि साहब राव राम मंदिर की चोरी हो गई वो बड़े दुखी हैं। उनका विषय ये है कि राम मंदिर की भीतर ये जो पाप हुआ है इसको आधार मानते हुए राम मंदिर, अयोध्या और राम को बदनाम करके सनातन को टारगेट किया जाए, ये है उनकी मूल भावना। दूसरा सवाल ये है कि आज नए सीईओ आए हैं, ये व्यवस्था का प्रश्न है, कल को दूसरे आएंगे, परसों तीसरे आएंगे, ये आना जाना तो लगा रहता है। मगर श्वेता जी बड़े सवाल ये हैं कि क्या भारत में जो लोकतंत्र है इसके सभी अधिकार एक खास वर्ग को, एक खास पार्टी को उपलब्ध हैं या हमको भी हैं? आखिर हमने गुनाह क्या किया है? इस देश के हिंदुओं ने, सनातनियों ने गुनाह क्या किया है? जो भी उठता है गली मोहल्ले का टटपूंजिया नेता वो राम मंदिर पर सवाल कर देता है, वो कृष्ण जन्मभूमि पर सवाल कर देता है, मनुस्मृति के पन्ने फाड़ देता है, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का दुस्साहस करता है। तो सवाल यह है कि फंडामेंटल राइट, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति को है और दूसरे को नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मैं आज भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश की सशक्त सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से, मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो सभी विपक्ष को आमंत्रित करें, सारे विपक्षी नेताओं को कहें कि भाई राजनीति अपनी जगह है, जब 2027 का चुनाव आएगा तो किसी भी मुद्दे पर राजनीति कर लेना, लेकिन चलो मथुरा, चलो श्री कृष्ण जन्मभूमि का शिलान्यास करने चलो, सब चलो, सब चलो, सारे चलो, सारे यदुवंशी नेता चलो, सारे छत्री चलो, सारे ब्राह्मण चलो, सारे अगड़े चलो, सारे पिछड़े चलो, और वो भी चलो जो जनेऊ धारण करके नए नए ब्राह्मण बनना चाहते हैं, वो भी चलो, आओ ना, आओ आओ आओ, आओ। आइए,
0: स्वागत है बद्रीश जी, आएंगे,
1: सबका स्वागत करेंगे
0: मथुरा सब, ये निमंत्रण जब जाएगा तो सारी पार्टियां आएंगी, आपको यकीन है, विश्वास है?
3: श्री राधे, यदि वो वास्तव में इंसान है, यदि उनके माता पिता उनकी पीढ़ियों से यदि उन्होंने सनातन धर्म का पालन किया है, यदि वो हमारे अवतारों में आस्था रखते हैं, हमारे श्री राम में आस्था रखते हैं, श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं, भगवान श्री गणेश में, भगवान श्री शिव में, मां भगवती जगदम्बा में, उन्हें आना चाहिए। दलगत राजनीति को निश्चित रूप से जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, आज आप स्थिति ये देखिए कि 2 करोड़ से 40 करोड़ हमारे जेहादी पैदा हो गए और आज जगह जगह अब चुनौतियां दी जा रही हैं। अब कोई भी आपका यदि धार्मिक आयोजन है तो वह आवश्यक नहीं है कि वह बगैर किसी बाधा के संपन्न हो जाए। इसलिए हिंदुओं को एक होना चाहिए, सनातनियों को एक होना चाहिए, उसको दलगत भावना भूल जाना चाहिए, अन्यथा बहुत पश्चाताप करेंगे। आज अखिलेश जी ने या मुलायम सिंह जी ने जिन लोगों का पक्ष लेकर जो कुछ किया है, आज उनको बढ़ावा देकर कांग्रेस ने जो कुछ किया है, एजो और बर्सिप 1971 आदि आदि जो कानून लाए, इन्होंने जो कुछ किया है, या तो वो वस्तुतः जैसा कि सुनने में आता है वो स्वयं भी उनके पूर्वज उसी धर्म से थे और इसीलिए अब भले ही उनका चोला बदल गया है, मानसिकता उनकी वही है, तो उनकी बात अलग है। अन्यथा यदि आप कट्टर सनातनी है, यदि आप परंपरा से, पीढ़ियों से और जन्म से यदि सनातनी एक हो जाइए, ये समय आ गया है। आप पूछ रही हैं कि वो आएंगे क्या? आएंगे नहीं, मैं उन्हें चेतावनी दे रहा हूं, आप जग जाइए, आप सावधान हो जाइए, हमारा कल बहुत खराब होने वाला है। जो दूसरे देश आज मुस्लिम राष्ट्र बन गए, आज वहां देखिए, आज वो जबरदस्ती उन देशों पर कब्जा कर रहे हैं। आज नेपाल में कितना बड़ा बवाल हुआ, अभी अभी मैं आज भी मोबाइल में देख रहा था कि वहां से बांग्लादेश से और पाकिस्तान से आकर के लोग दो एक हिंदुओं को कुछ सामान बांट करके और वहां अपनी वह जिहादी मानसिकता को फिर विस्तृत कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो ये बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में हो चुका है। हिंदुओं सावधान हो जाओ, अपने आप को केवल हिंदू और सनातनी समझ करके अपने पूर्वजों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और हमारी माता बहनों, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। आज के वर्तमान में आप मत जिए, आगे 100 साल की सोचिए। और यदि हमारे संत लोग ये आवाहन कर रहे हैं तो मैं सभी संतों की ओर से आप सभी के चरणों में, जो भी जिस दल में हो, मैं उनके चरणों में बार बार प्रार्थना करूंगा कि आप संभल जाइए, सुधर जाइए। क्योंकि संभल, आज संभल की बात भी रखी है ना, तो संभल माने संभल जाइए। संभल ग्राम में भगवान जब अवतरित होंगे उस समय बहुत भयानक स्थिति होगी
0: जी।
3: आज हमारे आचार्य जी चिंतन कर रहे थे कि आज मैं देख रहा हूँ कि लगता है 3/3 कलयुग बीत गया है, जबकि कलयुग की उम्र है 4,32,000, अभी 5,000 से कुछ वर्ष बीते हैं, ज्यादा समय नहीं बचा है। इसीलिए अपनी आत्मसत्ता के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और अपने बच्चों के लिए, अपनी माँ बहनों के लिए, मैं बार बार सभी संतों की तरफ से, सभी पार्टी के जितने भी जिस पार्टी के महानुभाव हैं उनसे प्रार्थना करूंगा, एक हो जाइए
0: जी।
3: अन्यथा हम कभी भी, ये जो गुलामी हमारी आज की है या पिछली थी, वो ऐसी गुलामी आने वाली है, हम उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे।
0: स्वामी चक्रपाणि जी, इसको बात को समाप्त करते हुए, केवल एक चेतावनी या फिर वाकई जो एक सुधार की भी कोशिश समाज की तरफ से हो रही है कि जातियां भी छोड़ो, एक साथ रहो, एकजुट रहो।
2: देखिए श्वेता जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबके अंदर जो है ना कहीं उसके अंदर वो होता है हिंदुत्व या सनातन। अगर हिंदू है तो उसके अंदर हिंदुत्व का, चाहे कितना भी विपक्षियों के संगत में या गलत संगत में चल जाए, लेकिन अगर संतों की कई बार ऐसा होता है, कृपा होता है, तो उनके अंदर जागृत हो जाता है और अपने धर्म के लिए खड़ा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई ऐसे उदाहरण है। एक बार 2002 की बात है, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे जनेश्वर मिश्रा जी, तो उनके यहाँ हम लोग गए एक बार, कई संतों की टीम गई 2002 में, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया कि सभी पार्टियों से जाके संपर्क करिए और जो कि ताकि गोरक्षा केंद्रीय कानून में समर्थन के लिए। तो जब हम लोग आदरणीय स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी के यहाँ जब हम लोग गए और हमने कहा कि

0: के बाद उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम आपको वचन देते हैं, हम सनातनी हैं, प्रस्ताव लाए और मैं पार्टी पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, हम एक सनातनी होने के नाते उसमें समर्थन हम करेंगे, एक सनातनी होने के नाते। मेरे कहने, क्योंकि गो हत्या बिल्कुल पाप है, मेरे कहने का मतलब है, एक बार इंदिरा जी ने भी चुनाव में कहा था कि अपने अंतरात्मा की आवाज से आप लोग वोट दीजिए, तो उसी प्रकार से मुझे लगता है कि सभी पार्टियों में जो लोग हैं वो हमारे मंदिरों के लिए, हमारे गोरक्षा के लिए, हमारे धर्म रक्षा के लिए, और 1991 एक्ट जो पिछली सरकारों ने बना दिया जानबूझ करके, मानसिक रूप से गुलाम बनाया, जिसकी लड़ाई हमारे विष्णु शंकर जी जैन, इनके पूज्य पिताजी भी काफी इन्होंने लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसके लिए सभी पार्टियों के लोग पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके आए और एक बार कहे कि नहीं, हिंदुओं पे अब अन्याय नहीं, और एक कृष्ण जन्मभूमि नहीं, जितने भी हमारे मुगलकालीन मंदिर तोड़े गए हैं, जिसकी लीगल लड़ाई आप लड़ रहे हैं, सभी लोग उसकी जिसके भावना जुड़ी हुई है, आप देखिए ना भोजशाला में कैसे उससे न्याय मिला, एक लंबी लड़ाई के बाद आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सभी पार्टियों के लोग उठ करके एक बार अपने को एक सनातनी, एक भारतीयता, क्योंकि इस देश की पहचान राम और कृष्ण से है, तो इसलिए सभी लोग इसको मिल करके और एक बार आगे आके सनातन धर्म के लिए आगे आकर के मुखर होकर आवाज देनी पड़ेगी। और क्योंकि जिस देश का ईश्वर आजाद न हो, उस देश की आजादी जाली है, या तो हिंदू बुजदिल है या इस देश से खाली है। तो अपने अंदर के हिंदुत्व को जगाओ और एक बार आओ, सच्चाई आप बोलो, और हमें लगता है 1991 एक्ट भी खत्म करो और सभी जितने मुगल कालीन जो नाक कान तोड़े गए, पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, पूजा की आवश्यकता है, यही सबसे बड़ी श्रद्धा होगी।
1: आचार्य जी उसके साथ।
2: श्वेता जी, मैं आचार्य जी ने जो बात कही, गणना के दृष्टिकोण से कलयुग अभी बहुत लंबा है और भगवान कल्कि का अवतार होने में काफी विलंब है, लेकिन गणना के दृष्टिकोण से ठीक है, मगर जो लक्षण है उसके दृष्टिकोण से कलयुग अपने चरम उत्कर्ष पे है। मुझे लगता है कल्कि भगवान जल्दी अवतार लेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस मंच पर आने के लिए। धन्यवाद।
3: थैंक यू। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: आगे आगे
6: उधर
5: उधर किधर करेक्ट करेक्ट
7: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: खाना कहाँ से मंगवाया?
6: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
8: जीके वॉल मैक्स।
6: बेस्ट प्राइमर
9: जीके मैक्स।
6: बेस्ट पेंट
9: जीके मैक्स।
6: जीके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
7: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
6: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: spa state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
2: Money, money, money, money, every month.
3: Soch batlo aur bank bhi.
4: Aur bhai, kahan gaye the ghumne?
5: JK Max.
6: Khana kahan se mangwaya?
5: JK Max. Best putty.
7: JK Wall Max.
5: Best primer.
8: JK Max.
5: Best paint.
8: JK Max.
5: JK Max. बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
6: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
5: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: नोवा कोटा से ऊपर मैं त्रिशूली में आया हूँ, देख लीजिए सैलाब का ये सितम।
3: ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया।
2: पीछे जो आपको इमारतें दिख रही है ना, वो सारी बिल्कुल खंडहर हो चुकी है।
3: जो निचले इलाके हैं उन सब से ऊंचाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा गया है।
4: चितवन में आज तक की टीम मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
2: मैं आशुतोष मिश्रा,
4: रोहित सिंह,
3: श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: spa state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

वापस ले रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। पूछा, क्या करोड़ों का घूस लेकर हो रहा है यह सौदा? शुद्धिकरण मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी, कहा 24 दिन बाद भी नहीं हुआ कोई एक्शन। नैनीताल हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका।

से निपटने में आकाश अभी मैच्योर नहीं। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ बनते ही एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र पहुंचे अयोध्या, कहा भगवान श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम, देवरिया के गांव में जश्न। और दो दिन तक ब्रज की जमीन से सीएम योगी की हुंकार, जन्माष्टमी पर करेंगे बांके बिहारी के दर्शन, पंचायत आज तक मथुरा में, आज शाम लेंगे भाग।

0: पाकिस्तान का कट्टरपंथी चेहरा फिर बेनकाब। मदरसे के लिए प्राचीन हिंदू मंदिर को तोड़ा। भारत का विदेश मंत्रालय पाकिस्तान पर भड़का। पहले गुरुद्वारा और अब मंदिर पर इस्लामी प्रहार। सरदारी की जुर्रत देखिए, कहां हिंदुओं को बर्दाश्त कर रहे। मरियम का लाहौर में जगहों को हिंदू नाम देने का प्लान फ्लॉप। कट्टरपंथियों के आगे झुकी मरियम नवाज शरीफ की सरकार। पाकिस्तान में मंदिर की तोड़फोड़, भारत में फूटा आक्रोश।
1: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। पाकिस्तान में हिंदुओं पर, सिखों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। धार्मिक स्थलों की बर्बादी पर वहां की जो सरकार है ना, शहबाज शरीफ की सरकार, या यूं कहे मरियम नवाज की सरकार, उनका जो दोहरा चेहरा है ना, वो एक बार फिर बेनकाब हो गया है। और क्यों ना हो, आप मानसिकता देखिए, वही मानसिकता जो आसिम मुनीर की है, ये पूरे पाकिस्तान में नजर आ रही है। पाकिस्तान का जो पंजाब सूबा है, उसमें नरोवाल में सिराज गांव है, करीब 125 वर्ष पुराना ऐतिहासिक हिंदू मंदिर को ढहा दिया गया। इस नापाक हरकत के सामने आने के बाद भारत ने बेहद कड़े रुख को अपनाते हुए पाकिस्तान को साफ तौर पर चेतावनी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान में ऐतिहासिक हिंदू मंदिर के विनाश की परेशान कर देने वाली रिपोर्ट को हमने देखा है। भारत इस घिनौने कृत्य की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। पाकिस्तान की सरकार मंदिर की रक्षा करने में विफल रही है और यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। घटना की त्वरित यानी तुरंत और पारदर्शी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जाए। स्थानीय लोगों ने और हिंदू संगठनों ने जो आरोप लगाया है, उसके मुताबिक दरअसल मंदिर की जो जमीन है ना, उसको पास के मदरसे में शामिल करने की जो बदनीयत है, उसी के तहत एक सोची समझी साजिश के तहत मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं अपनी नाकामी छिपाने में जुटी पाकिस्तान की जो हुकूमत है ना, वो ये कह रही है कि भारी बारिश में एक मंदिर ढह गया और ये एक हादसा था, वो लीपा पोती कर रहे हैं। लेकिन ये घटना पाकिस्तान की उस मानसिकता का सबूत है जहां राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, जिनको मिस्टर 10% कहा जाता है, यही आसिफ अली जरदारी 14 अगस्त को भरे मंच पर यह कहने की जुर्रत करते नजर आए कि हम हिंदुओं को बर्दाश्त करते हैं। यानी जिस देश का राष्ट्रपति अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को ही नागरिक अधिकार नहीं बल्कि एक एहसान समझता हो, क्या वहां मंदिर या वहां पर गुरुद्वारे या फिर वहां पर चर्च सुरक्षित रह सकते हैं, क्या इसकी उम्मीद भी की जा सकती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पंजाब सूबे की जो मुख्यमंत्री हैं मरियम नवाज, उन्होंने लाहौर की ऐतिहासिक विरासतों के पुराने जो हिंदू नाम, जैन नाम, सिख नाम, उन्हें बहाल करने का झुंझुना बनाया था और दुनिया भर में पाकिस्तान ने खूब वाही वाही लूटी थी कि पाकिस्तान अब वो हिंदू नाम पुराने इलाकों का एक बार फिर ला रहा है जो ऐतिहासिक नाम था। लेकिन पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी है ना, वो जो कट्टर इस्लामिक संगठन है, उन्होंने ऐसा दबाव बनाया कि मरियम नवाज ने घुटने टेक दिए, शहबाज शरीफ सरकार ने घुटने टेक दिए और ये फैसला वापस ले लिया गया। ये बात साबित करती है कि पाकिस्तान हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और सरकार की नीयत ना वहां साफ है ना प्रशासन की, और कट्टरपंथियों को रोकने का दम वहां किसी में नहीं है, क्योंकि वहां कौन आतंकवादी है, कौन पाकिस्तानी सेना का है, मानसिकता वही है, मानसिकता एक है। अब भारत सरकार ने इस कायराना हरकत पर कड़ा विरोध जताते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि एक सदी पुराने धार्मिक स्थल की सुरक्षा न कर पाना पाकिस्तान के प्रशासन की नाकामी और पाकिस्तान की सरकार की नीयत, दोनों पर गंभीर सवाल उठाता है। भारत ने पाकिस्तान से तत्काल पारदर्शी जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई और मंदिर के तुरंत पुनर्निर्माण कराने की मांग कर दी है। मंदिर तोड़े जाने की खबर से भारत में भी आक्रोश की लहर है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और पाकिस्तान में जो धार्मिक उन्माद और पाकिस्तान में धार्मिक नफरत है उसकी कड़ी निंदा की।
2: और यह मंदिर जो 1000 स्क्वायर फीट के दायरे में था, जो मदरसा के अंदर शामिल करने के लिए तोड़ा गया और अब वहां की सरकार जो है वो सफाई दे रही है कि बारिश की वजह से यह मंदिर टूटा, लेकिन जबकि क्लियर है वहां पर जो अल्पसंख्यक समाज है उन्होंने सीधे कहा है कि इस मंदिर को जो है इन आतंकवादियों ने तोड़ा है जो वहां पर मदरसा बनाना चाहते हैं, जो उसको मदरसे के अंदर शामिल करना चाहते हैं उस जमीन को भी, ये सारा क्लियर है। इसलिए हिंदू समाज रोषित है और हिंदू समाज अपने मंदिर का पुनर्निर्माण मांगता है और पाकिस्तान के सीधी सीधी चेतावनी है कि अगर जल्द से जल्द हमारा मंदिर पुनः स्थापित नहीं हुआ तो पाकिस्तान के खिलाफ पूरे विश्व के अंदर जहां जहां हिंदू है वहां वहां प्रदर्शन जो है वो किए जाएंगे।
1: पाकिस्तान में दरअसल सच्चाई ये है कि हिंदू लड़कियां हो, सिख लड़कियां हो, ईसाई लड़कियां हो, जबरदस्ती ये कट्टर इस्लामिक संगठन के लोग उन्हें उठा के ले जाते हैं, जबरदस्ती उनका धर्मांतरण करते हैं, जबरदस्ती निकाह पढ़वाते हैं और वही लोग मियां मिट्ठू जैसे लोग वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ उन्हीं की मस्जिदों में जाकर नमाज भी अदा करते हैं और उन्हीं के साथ रमजान के बाद अपने रोजे भी तोड़ते हैं। ये असलियत है पाकिस्तान की। अच्छा, पाकिस्तान बर्दाश्त का ढोंग रचने की बात करता है। पाकिस्तान की जो नफरती और घटिया हरकत है दुनिया के सामने बेनकाब हो गई, क्योंकि नरोवाल में 125 वर्ष पुराने ऐतिहासिक हिंदू मंदिर को कट्टरपंथियों ने हथौड़ों से तोड़ा और जब दुनिया भर में पाकिस्तान की थूथू हुई तो बेशर्मी जिस इस कदर पाकिस्तान की कि वहां का जो प्रशासन है वो ये कह रहा है कि बारिश इतनी तेज आई कि मंदिर अपने आप गिर गया। पाप पर पर्दा डालने में पाकिस्तान का प्रशासन जुट गया। कभी मदरसे के लिए मंदिर पर बुलडोजर चलते हैं तो कभी शॉपिंग मॉल बनाने के लिए सदियों पुराने गुरुद्वारे का विनाश कर दिया जाता है। उस मुल्क में जहां का राष्ट्रपति अल्पसंख्यकों को बर्दाश्त करने का दम भरता है, वहां की नियत और नफरत उसका पूरा सच हम आपको दिखाएंगे इस
3: लाहौर से करीब 130 किलोमीटर दूर नरोवाल का सिराज गांव, जहां कभी एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर श्रद्धा और इतिहास का गवाह बनकर खड़ा था, लेकिन 21 अगस्त को कट्टरपंथियों की सनक ने उस 125 साल पुरानी विरासत को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। आरोप है कि धार्मिक चरमपंथी संगठन तहरीके लबैक यानी TLP के गुंडों ने पास के मदरसे का दायरा बढ़ाने के लिए मंदिर की जमीन पर कब्जा किया और इस पवित्र ढांचे को हथौड़ों से ढह दिया। और जब दुनिया में थूथू हुई तो बेशर्म पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए कुदरत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी प्रशासन अब बेशर्मी से दावा कर रहा है कि मंदिर इंसानों ने नहीं बल्कि भारी बारिश ने तोड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के इस झूठ को वहीं के हिंदुओं ने खारिज कर दिया है और अब भारत के हिंदू और साधु संत पाकिस्तान को सबसे बड़ी चेतावनी दे रहे हैं।
4: जो जो पाकिस्तान ने मंदिर तोड़ा है 100 साल से पुराना, वो मंदिरों का निर्माण करे। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम भारतीय पाकिस्तान का नामो निशान देंगे, मिटा देंगे। हमारे पीएम मोदी पर भरोसा है, जैसे सिंदूर ऑपरेशन में हुआ था, क्या वो भूल गया है? पाकिस्तान ही मंगा देश है हुआ और हमारे 100 साल पुराने मंदिरों को तोड़ करके मदरसे और मस्जिद का निर्माण ढहाकर ये हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है।
3: बहानेबाज पाकिस्तान का ये दोहरा चेहरा कोई नया नहीं है। अभी 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपनी संकीर्ण मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए कहा था कि पाकिस्तान हिंदुओं को बर्दाश्त करता है।
5: They believe in अखंड भारत, but there is a lot in between which they have forgotten. We are Muslims, they are not. But we are Muslims of the mindset that we tolerate. We have 3-4% Hindu population in Pakistan.
3: जरदारी पाकिस्तान में घुसखोरी के लिए कुख्यात हैं, उन्हें मिस्टर 10% कहा जाता है। यही वजह है कि उनके इस बयान के बाद जावेद अख्तर ने उन पर तीखा पोस्ट किया था। जावेद अख्तर ने लिखा था, बेनजीर भुट्टो से शादी के बाद लाइमलाइट में आए मिस्टर जरदारी कहते हैं कि वो पाकिस्तान में 3-5% हिंदुओं को बर्दाश्त करते हैं। असल में जरदारी साहब 10% से नीचे वालों के प्रति संवेदनहीन रहते हैं। और इस वजह से जब पाकिस्तान का ऐसा भ्रष्ट राष्ट्रपति बराबरी के हक की जगह बर्दाश्त करने जैसा जहरीला शब्द इस्तेमाल करता हो, वहाँ का कट्टरपंथी समाज मंदिरों को ढहाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इतना ही नहीं, पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने कुछ दिन पहले दुनिया को दिखाने के लिए लाहौर के कृष्णा नगर, जैन मंदिर चौक और राम गली जैसी ऐतिहासिक हिंदू सिख नामों को बहाल करने का ढोंग रचा था, लेकिन जैसे ही कट्टरपंथियों ने आंख दिखाई, मरियम नवाज ने घुटने टेक दिए और अपना फैसला वापस ले लिया। नारोवाल का मंदिर ढहाने से ठीक पहले इसी साल जून में लाहौर से 70 किलोमीटर दूर फरुखाबाद में 125 साल पुराना ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब ढहा दिया गया था। इसके ठीक बाद अगस्त 2026 के अंत में बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में भी 200 साल पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह सभा क्वेटा को शॉपिंग मॉल बनाने के लिए बुलडोजर से ढहा दिया गया। दिन रात हिंदुओं और सिखों को बांटने की चाल चलने वाला पाकिस्तान इस्लामी कट्टरपंथियों को शह देकर अपने देश में दोनों पर ही जुल्म करता है, लेकिन अब उसका जुल्म और बर्दाश्त नहीं होगा। जम्मू की सड़कों पर अब पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश की ज्वाला धधक रही है। राष्ट्रीय बजरंग दल समेत देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। सवाल यह है कि खुद को इंसानियत का हमदर्द बताने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान क्या कभी इस नफरत के वायरस का इलाज कर पाएंगे, या फिर बर्दाश्त करने के ढोंग के पीछे पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के वजूद को पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
1: पाकिस्तान दिखावा बहुत करता है। दुनिया के सामने खुद को उदार और अल्पसंख्यकों का हमदर्द साबित करने के लिए पाकिस्तान में मरियम नवाज सरकार ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चला था, लेकिन कट्टरपंथियों के खौफ ने पूरा ड्रामा जो उनका था वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने बहुत धूमधाम से ऐलान किया था कि लाहौर के ऐतिहासिक इलाकों को वही पुराने नाम दिए जाएंगे जो 1947 से पहले वो नाम थे। विभाजन के बाद पाकिस्तान ने अपना असल अस्तित्व मिटाने के लिए बहुत सा ढोंग किया था, बहुत सी साजिशें की थी। फैसला क्या लिया? इस्लामपुरा, ये स्वतंत्रता के बाद नाम दिया गया, उसको उसके सदियों पुराने नाम कृष्णनगर, कृष्णानगर नाम से बुलाया जाएगा। खूब वाही वाही बटोरी उन्होंने, खूब वाही वाही लूटी। भारत में भी कई लोग जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं बोल रहे थे वाह पाकिस्तान वाह। फिर क्या हुआ? बाबरी मस्जिद चौक को फिर से जैन मंदिर चौक का नाम दिया जाएगा, ऐसा मरियम नवाज ने कहा था, वाही वाही बटोर ली। मुस्तफाबाद जो नाम रखा था फिर पुराना ऐतिहासिक नाम धर्मपुरा नाम होगा, यह पाकिस्तान ने दावा किया था। रहमान गली को दोबारा राम गली की पहचान दी जाएगी। शुरुआत में साइनबोर्ड भी टांग दिए गए। लगा शायद पाकिस्तान 21वीं सदी में बदल रहा है, पाकिस्तान अपनी उस कट्टर इस्लामिक आतंकवाद वाले देश की छवि को बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही TLP यानी तहरीके लब्बैक और जो कट्टरपंथी जमाते हैं, चाहे उसमें लश्कर ए तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, पाकिस्तान में तो पता ही नहीं चलता कि कौन वहां आम आदमी है, कौन वहां पर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद का हिमायती है। वो लोग सड़कों पर उतर आए, सरकार को उन्होंने आंखें दिखाई। मरियम नवाज की सरकार ने तुरंत घुटने टेक दिए और यूटर्न ले लिया। कागजों और साइनबोर्ड तक सीमित रह गया ये फैसला। अब एक बार फिर वही इस्लामपुरा नाम आ गया है, वही रहमानपुर नाम आ गया है, और इस कदम ने फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में ना तो सरकार में कोई दम है और ना ही उनकी नीयत साफ है। वहां असल में जो असली रिमोट कंट्रोल है ना, वो आज भी हाफिज सईद और हाफिज सईद की मानसिकता वाले लोग जिसमें आसिम मुनीर शामिल है, उन्हीं के हाथ में पाकिस्तान की बागडोर भी है और रिमोट कंट्रोल भी है। अच्छा, उनकी असलियत आपको और विस्तार से बताते हैं। इस्लामी कट्टरपंथ का ही नतीजा है कि 1947 में विभाजन के वक्त जिस पाकिस्तान में लगभग 15% हिंदू रहते थे, आज उनका नामो निशान लगभग मिट गया है। और इस साजिश में, इस चाल में पाकिस्तान कामयाब होता साफ नजर आ रहा है। अब हम आपको बताते हैं कैसे, क्योंकि देखिए जब तक आप शत्रुबोध आप में नहीं होगा, जब तक आप अपने दुश्मन को पहचानेंगे नहीं, उसकी असलियत नहीं जानेंगे, तब तक आप तो दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहेंगे और वो हर बार आपकी पीठ में खंजर भोंकते रहेंगे। तो आवश्यक है कि आप असलियत पहचाने पाकिस्तान की। हम आपको कुछ चौंकाने वाले आंकड़े दिखाते हैं और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की क्या है स्थिति, ये सच आपके लिए जानना आवश्यक है। 1947 में 15% थे, आज महज 1.61%, यानी 2% भी नहीं है इस समय हिंदू पाकिस्तान में। 75% हिंदू बेटियां यौन हिंसा का शिकार है, 10-12 साल की बच्चियों को उठाकर ले जाते हैं, जबरदस्ती उनका निकाह पढ़वा देते हैं, धर्मांतरण करते हैं। मियां मिट्ठू जैसे लोग पाकिस्तान में नेशनल हीरो होते हैं, आइकॉन होते हैं। क्या है ये देश जहां पर कभी हाफिज सईद उनका हीरो है, कभी उनका मौलाना मसूद अजहर उनका हीरो है, कभी मियां मिट्ठू और कभी आसिम मुनीर। क्या है ये देश? हिंदुओं की आबादी घट रही है, ये अलग बात है। अल्पसंख्यकों का क्या हाल है? विभाजन के समय सिख समुदाय जो था ना, वो केवल लाहौर ही नहीं, लाहौर हो, पेशावर हो, पाकिस्तान में कई जगह बहुत फैला हुआ था असल में सिख साम्राज्य। और ये खालिस्तानी ये बात भूल जाते हैं, लाहौर सिख साम्राज्य का हेडक्वार्टर्स था, उनका कैपिटल था लाहौर। अब क्या है असल स्थिति? हमने आपको हिंदुओं के बारे में बताया, 1947 में जो लाखों सिख थे, अब बस 20-22 हजार बचे हैं, वो छोड़ के भाग जाना चाहते हैं वहां से, 20-22 हजार। ईसाइयों के बारे में हम आपको बताते हैं, ईसाइयों की संख्या घटकर मात्र 1.37% बच गई है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पूरे मुल्क में जो हिंसा की आग फैली, जो गैर मुस्लिमों को, जिनको वो काफिर बोलते हैं, जिनकी बहु बेटियों को वो माले गनीमत बोलते हैं, उनका वजूद खत्म कर दिया गया। आंकड़ों से ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली बात यह है कि वहां जो लोग रहते हैं ना, वो जिस डर के साए में रहते हैं, कब उनके घर में लोग घुसेंगे, उनकी बहु बेटियों को उठाकर ले जाएंगे, धर्मांतरण करा देंगे, और किसी में हिम्मत नहीं है कोई उनके खिलाफ बोल सके। अगर कोई बोलता है तो उसको गोली मार दी जाती है, मार दिया जाता है, और जो उनको गोली मारता है उसको लोग उस पर फूल बरसाते हैं, पाकिस्तान वकील वहां के फूल बरसाते हैं उन पर। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा अल्पसंख्यक लड़कियों का अपहरण करके, जबरन निकाह करके उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। इसमें 75% हिंदू बेटियां हैं, 71% इनमें भी नाबालिग है। यह है स्थिति, 14 साल से कम उम्र उनकी होती है, जबरदस्ती 40-50-60 साल के बूढ़ों से, बस क्योंकि वो मुसलमान है, उनकी शादी करा दी जाती है। सिंध की अगर हम बात करें, अमरकोट से लेकर धारपकड़ तक अल्पसंख्यकों को मिटाने का ये खेल खुलेआम जारी है, और हाफिज मोहम्मद सईद वहीं जाकर रिक्रूटमेंट भी करता है। जो बच जाते हैं उन्हें शर्मिंदा किया जाता है, झूठे आरोपों में फंसा दिया जाता है। पाकिस्तान में ईश निंदा का जो आरोप लगाया जाता है, 100 से ज्यादा लोगों को भीड़ सड़कों पर पकड़ पकड़ के जेलों के अंदर पीट पीट कर मार चुकी है, 100 से ज्यादा। और यह महज आंकड़ा नहीं है, यह पाकिस्तान की सच्चाई है। पाकिस्तान में हर दिन दम तोड़ती इंसानियत और अल्पसंख्यकों के कत्लेआम का यह कड़वा सच है, जिस पर कई लोग भारत में पर्दा भी डालने की साजिश करेंगे, लेकिन यह सच्चाई दुनिया के सामने है, ये जग जाहिर है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, दरअसल पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का एक बड़ा युद्धाभ्यास होने जा रहा है, जिसके लिए राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब एक विशाल एयर स्पेस को अब रिजर्व किया जा रहा है। बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना इसी महीने वीर गार्डियन 26 और तरंग शक्ति 2026 जैसे दो बड़े हवाई युद्धाभ्यास आयोजित करने जा रही है। 9 से 21 सितंबर के बीच जोधपुर में होने वाले वीर गार्डियन अभ्यास में जापान की वायुसेना के 3 F2A फाइटर जेट और 110 वायुकर्मी और भारतीय वायुसेना के एयर वॉरियर्स उसमें भाग लेंगे। इसके तुरंत बाद 21 सितंबर से 7 अक्टूबर तक जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, जोधपुर, बीकानेर सेक्टर में तरंग शक्ति में हमारे वायुवीरों की गर्जना देखने को मिलेगी। इसके लिए बकायदा एक नोटैम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 20 किलोमीटर की दूरी तक 40,000 फीट की ऊंचाई तक आसमान में केवल लड़ाकू विमानों की आक्रामक गतिविधियों के लिए इस पूरे एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया गया है। यहां पर कोई सिविलियन मूवमेंट नहीं होगा। यह नोटिस टू एयरमैन अक्रॉस पूरी दुनिया भर के लिए इस क्षेत्र के लिए जारी कर दिया गया है। रुख करते हैं मध्य पूर्व का, जहां रणभूमि में पाकिस्तान की कूटनीति नाकामी का एक और स्मारक बन गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को हमले की धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि जब चाहे ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं।

0: it was a very heavy attack last night, and we're prepared to do another one anytime we want.
1: व्हाइट हाउस में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान महज कोई चेतावनी नहीं बल्कि सीधे तौर पर युद्ध के और भड़कने का ऐलान है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के रडार और नौसैनिक ढांचों को बेहद भारी हमले में पूरी तरह तबाह कर दिया है, जिससे ईरानी सेना अब अमेरिकी जहाजों को देखने में भी नाकाम है।
0: Bringing lots of boats out every day with millions of barrels of oil. We are, for the most part, doing it without trouble. Every once in a while, they shoot a drone and we knock it down. But we have very strong control. They were trying to rebuild their radar systems and a missile system and a mine drop. You know, we got rid of all the mines in the Hormuz Strait. See everything that they're doing. They can't move. They can't go to the bathroom without us seeing it. So we saw that, we took it out, we took out some other things, and then we hit them last night because they took a shot at us in Jordan, at our base in Jordan. We knocked all of them down.
1: लेकिन क्या ये सिर्फ एक तरफा दबदबा है या फिर अमेरिका अपनी उन गलतियों पर पर्दा डाल रहा है जिसने उसे अंतर्राष्ट्रीय कटघरे में खड़ा कर दिया है? क्योंकि दूसरी तरफ दक्षिण पूर्वी ईरान के कोहिस्ताक शहर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने वॉशिंगटन को हिलाकर रख दिया है। एक शादी के जश्न के बीच गिरी अमेरिकी मिसाइल के बलबे ने हंसते खेलते घर को मातम में तब्दील कर दिया। दो मासूम बच्चों और दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग खून से लथपथ हो गए।
2: मध्य पूर्व की गतिविधियों पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: भारत की रक्षा नीति से लेकर भविष्य की युद्ध रणनीति तक देश की सुरक्षा पर सीधी बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ देश के सबसे बड़े रणनीतिकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों का महामंच आज तक सुरक्षा सभा सिर्फ आज तक पर।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

शुद्धिकरण मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी, कहा 24 दिन बाद नहीं हुआ कोई एक्शन। नैनीताल हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका। ২০২৭ के यूपी चुनाव में अकेली लड़ेगी बीजेपी, मायावती का ऐलान। बीएसपी ने राष्ट्रीय संयोजक पद से आकाश आनंद को हटाया, कहा साम दाम दंड भेद से निपटने में आकाश अभी मैच्योर नहीं।

राष्ट्र पहुंचे अयोध्या, कहा श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम, देवरिया के उनके गांव में जबरदस्त जश्न। दो दिन तक ब्रिज की जमीन में सीएम योगी की हुंकार, जन्माष्टमी पर करेंगे बांके बिहारी के दर्शन, पंचायत आज तक, मथुरा में आज शाम लेंगे भाग।

और हम बात कर रहे हैं दूसरी बड़ी रणभूमि की। एक तरफ हम बात कर रहे थे कि किस तरह अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो बेहद खतरनाक मोड़ पर आ गया है। अब जंग केवल सरहदों पर नहीं, सीधा राजधानियों के ऊपर लड़ी जा रही है, रूस के आसमान में लड़ी जा रही है, मॉस्को भी अब सुरक्षित नहीं है, ऐसा दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति का है। जिस जंग को राष्ट्रपति पुतिन कुछ ही हफ्ते में जीतने का दावा रूस की तरफ से किया जा रहा था, जंग रूस की सीमाओं के पास सिमटी थी, सीमाओं से भी दूर यूक्रेन के अंदर थी, अब रूस के घर के अंदर उसके आसमान तक मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंच रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की उस सीधी और खौफनाक चेतावनी के बाद अब पूरे रूस में हाहाकार मचा है, जिसमें यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन आईकाओ को आधिकारिक तौर पर सूचित किया कि रूस का हवाई क्षेत्र अब सुरक्षित नहीं है, रूस के आसमान अब सिविल विमानों के लिए भी सुरक्षित नहीं है, केवल यूक्रेन के ड्रोन वहां पर दिखेंगे, ऐसा यूक्रेन ने औपचारिक दावा किया। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन हमलों की सुनामी और इस चेतावनी का असर अब यह हुआ है कि मॉस्को का आसमान अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए नो फ्लाई जोन जैसा बनता जा रहा है। दुनिया की कम से कम 7 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन कंपनियों ने मॉस्को और रूस के कई बड़े शहरों के लिए अपनी उड़ानों को तुरंत प्रभाव से या तो निलंबित कर दिया है या रद्द कर दिया है। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे तुर्की की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन पेगासस, उसने विनुकोवो एयरपोर्ट के लिए अपनी 12 उड़ानें एकाएक बंद कर दी, रद्द कर दी। विमानों में बैठे यात्रियों को ऐन मौके पर टेक ऑफ से पहले उतार दिया गया। इसके अलावा तुर्की एयरलाइन, यूएई की फ्लाई दुबई, मिस्र की नेशमा एयरलाइंस, कुवैत एयरवेज, आर्मेनिया की शिराक एविया और ताजिकिस्तान की सुमोन एयर ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल या पोस्टपोन करने का ऐलान कर दिया है। यूरोप और अमेरिका की एयरलाइंस तो पहले ही रूस का बहिष्कार कर चुकी थी, अब खाड़ी के देश और एशियाई एयरलाइंस भी रूस की हवाई सीमा में घुसना नहीं चाहती हैं या कुछ बड़े एयरपोर्ट्स पर नहीं जा रही हैं। जो एयरलाइन जोखिम उठाकर रूस के ऊपर से उड़ान भर भी रही थी, जैसे कतर एयरवेज, एमिरेट्स, एतिहाद, वो हर मिनट खतरे का आकलन कर रही है। कई विमानों को हवा में उड़ते उड़ते ही इस्तांबुल की तरफ डाइवर्ट करना पड़ रहा है ताकि वो यूक्रेन के ड्रोन्स की जद में ना आ जाए। आप ये सोचिए कि जब ये बड़े बड़े पैसेंजर एयरलाइंस जब ये उड़ते हैं तो ये 36,000, 37,000, 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। आमतौर पर ड्रोन्स इन ऊंचाइयों पर नहीं होते, लेकिन खतरा रूस में यह है कि जब ये एयरलाइंस इनके विमान लैंड करने आएंगे या टेक ऑफ करेंगे, उस समय ये ड्रोन्स के डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में होते हैं, और उस समय अगर वहां पर ड्रोन अटैक हो रहा हो तो ये एयरलाइंस अगर लो फ्लाई कर रही हैं या टेक ऑफ या लैंड कर रही हैं, इनके ऊपर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस पूरी स्थिति की वजह से रूस के हवाई अड्डों पर इस समय अफरा तफरी है। मॉस्को का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है शेरमेतेवो एयरपोर्ट, वहां पर एक ही दिन में 235 से अधिक उड़ानें या तो लेट हुई या कई रद्द कर दी गई। अच्छा, वुकोवो और डोमोदेवो मॉस्को में जो 4 बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, बार बार वहां पर इमरजेंसी शटडाउन का, स्ट्राइक का अलर्ट लागू किया जा रहा है। अच्छा, सोची से लेकर सेराटोव तक रूस की जो विमान एजेंसियां हैं वो बार बार नो फ्लाई जोन घोषित करने पर मजबूर होती जा रही है। आप ये सोचिए, हजारों सैकड़ों फ्लाइट्स, हजारों पैसेंजर्स वो अलग अलग एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं, हजारों अंतरराष्ट्रीय यात्री हवाई अड्डों के टर्मिनलों पर इस समय इंतजार कर रहे हैं, चारों तरफ अफरा तफरी है। और रूस का जो रक्षा मंत्रालय है उसका यह कहना है कि इस समय वो हाई अलर्ट पर है, क्योंकि जो धमकी आई है ये यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से आई है। यूक्रेन के ड्रोन ने पुतिन के देश में नागरिक उड्डयन का जो पहिया है या उसके पंख है उनको कतर दिया है, लगभग फ्लाइट्स रुक गई है।
और इस समय स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। यूक्रेन की ड्रोन चेतावनी के बाद जहां रूस में हड़कंप है, वहीं जर्मनी में एक विस्फोटक ड्रोन की वजह से बहुत बड़ा खतरा एकाएक बढ़ गया है। और कुछ एनालिस्ट तो ये कह रहे हैं, कुछ विशेषज्ञ इस तरह का आकलन कर रहे हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है, उसका ये अलार्म बजने लगा है। क्या हुआ? दरअसल बीते महीने जर्मनी में लिप्ज़िग एयरपोर्ट पर यूक्रेन का एक कार्गो विमान आया, उसका उसके पास बारूद से लदा यूक्रेन का एक रूसी ड्रोन पाया गया। यूक्रेन का विमान और रूस का ड्रोन उसके बिल्कुल निकट पाया गया। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि यह ड्रोन मॉस्को से नहीं उड़ा था, बल्कि आरोप यह लग रहा है कि रूस के जो स्लीपर सेल्स हैं वो जर्मनी में मौजूद है। जर्मनी की सरजमी से ही इस ड्रोन को न केवल तैयार किया गया बल्कि इसे लॉन्च किया गया, और इसे एक हाइब्रिड टेरर अटैक के रूप में देखा जा रहा है। इस हाइब्रिड आतंकी हमले से बौखलाए जर्मनी ने रूस का जो वाणिज्य दूतावास है उसे बंद करने का ऐलान कर दिया कि बंद कर दे रूस अपना वाणिज्य दूतावास। दूसरी तरफ मॉस्को ने भी पलटवार किया, जर्मनी के राजनयिकों को उसने जर्मनी का जो वाणिज्य दूतावास है उससे निकाल दिया। लेकिन सबसे बड़ा खतरा राष्ट्रपति पुतिन की एक धमकी से पैदा हो गया है। ब्रिटेन पर हमले के सवाल को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि एक मिलिट्री सीक्रेट है, और इस बयान से सीधे नेटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधे सैन्य टकराव की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि यूरोप में अगर बात की जाए तो जर्मनी और ब्रिटेन दोनों नेटो का हिस्सा है। यूरोप की धरती पर मंडराते जो बारूदी बादल हैं, ये कब फट जाएंगे? और क्या यही वजह थी कि CIA के चीफ रात के अंधेरे में मॉस्को गए, और उनकी क्या बात हुई मॉस्को में? क्या युद्ध के बादल को वो टालने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन ये जो बारूदी बादल इस समय यूरोप के ऊपर है, उस पर देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।

0: 4 अगस्त को जर्मनी का लिप्ज़िग एयरपोर्ट एक महाविनाश का गवाह बनते बनते रह गया। जर्मन खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूसी खुफिया एजेंसियों GRU और SVR ने यूरोप के दिल में छिपे अपने स्लीपर सेल्स को सक्रिय कर दिया है। रूस में जन्मे लातवियाई और बेलारूसी एजेंटों ने जर्मन सरजमीन पर विस्फोटक ड्रोन तैयार किया और उसे सीधे यूक्रेन के विशालकाय विमानों की तरफ दाग दिया। ड्रोन के मलबे और उसके डेटोनेटर से मिले रूसी सिग्नेचर के बाद जर्मनी के सब्र का पैमाना छलक गया है। बर्लिन ने बॉन में रूसी वाणिज्य दूतावास और बर्लिन के रशियन हाउस को सील कर दिया। वहीं यूरोपीय संघ ने रूस की 193 बिलियन यूरो की संपत्ति जब्त कर यूक्रेन को सौंपने का खाका तैयार कर लिया। लेकिन यूरोप का आसमान अब सिर्फ तनाव से नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से धधक रहा है। आग में घी तब पड़ा जब ब्रिटेन ने यूक्रेन को अपनी सबसे विध्वंसक स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों की सीक्रेट तकनीक और ब्लूप्रिंट सौंपने का ऐलान कर दिया। इसी कदम से बौखलाए व्लादिमीर पुतिन ने जब मीडिया से पूछा कि क्या रूस अब सीधे ब्रिटेन की धरती पर हमला करेगा तो पुतिन की एक लाइन की रहस्यमय मुस्कान ने पूरी दुनिया को कयामत की दहलीज पर खड़ा कर दिया। पुतिन ने सिर्फ इतना कहा, ये एक मिलिट्री सीक्रेट है।
1: промышленности Британии, которые находятся на территории Британии, могут стать военными целями.
2: So the military infrastructure sites in the UK, could they become a military target? It's a military secret.
0: सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन का ये सैन्य रहस्य असल में तीसरे विश्व युद्ध के बिगुल का सीधा इशारा है। अगर रूस, ब्रिटेन या किसी भी नेटो देश पर सीधा या छद्म हमला करता है तो नेटो का आर्टिकल 5 अपने आप सक्रिय हो जाएगा। इसका मतलब है अमेरिका, ब्रिटेन और पूरे नेटो की सेनाएं सीधे रूस के खिलाफ मैदान में उतर आएंगी, जो परमाणु महाविनाश की राह खोल देगा। नेटो के नए प्रमुख मार्क रूटे ने भी पुतिन को दो टूक चेतावनी दी है कि ऐसी साजिशों से नेटो पीछे नहीं हटेगा बल्कि अपनी पूरी सैन्य ताकत से माकूल जवाब देगा। जर्मनी में स्लीपर सेल्स की साजिश, ब्रिटेन पर सीधे हमले की सीक्रेट कोड वाली धमकी और नेटो की बारूदी घेराबंदी, यूरोप में खिंच चुकी यह युद्ध की रेखा अब किसी भी पल पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की भीषण आग में झोंक सकती है। आज तक ब्यूरो।
3: और इस समय एक जंग और चल रही है, वो जंग है मौत के मुंह से जिंदगी को बचाने की जंग, और ये जंग नेपाल में लड़ी जा रही है और भारत कंधे से कंधा मिलाकर नेपाल के साथ इस जंग में शामिल है। नेपाल त्रासदी में मरने वालों का आंकड़ा दुर्भाग्यवश और ज्यादा बढ़ गया है। मरने वालों की संख्या 1252 अब तक पहुंच गई है, यानी 1252 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। 4875 लोग अब भी लापता है, ये संख्या और ज्यादा बढ़ भी सकती है। आज 9 दिन हो चुके हैं और 90 दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है क्योंकि उम्मीद अभी भी बरकरार है जिंदगी को मौत के मुंह से निकालने की। ये जो जंग इस समय चल रही है तिब्बत की सीमा से लेकर रसुआगढ़ी के इलाके से लेकर नेपाल के कई इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में, तिब्बत नेपाल सीमा के आसपास के इलाकों में अभी भी सड़कें पूरी तरह से नहीं बन पाई हैं या वहां पर पहाड़ काट काट कर रास्ता या पगडंडियां बनाई जा रही हैं, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, किसी भी तरह लोगों को बचाने का प्रयास। जो लोग वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं, अपने घरों से बाहर हैं, उन तक रसद सामग्री, दवाइयां, खाना, कुछ भी पहुंचाने की जो जद्दोजहद है उस पर देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
4: आपने उस मकान के बारे में सुना जो भटकोशी के प्रकोप को झेल गई, वो घर बच गया, परिवार को निकालना पड़ा, लेकिन ऐसे चमत्कार बहुत सारे घरों के साथ हुए। जो नदी की धारा जो है अपने बीचों बीच इन मकानों के आई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा। जहां पर आपने वो पहला घर देखा था उसके आगे देखे दो और मकान है, ये दो मकान में तीसरा मकान जो सबसे पीछे है वो पूरी तरह बर्बाद हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, सब कुछ मलबे में चला गया। लेकिन उसके ठीक पीछे यानी नदी के पानी के करीब जो कि धारा किनारे पर, देखिए मलबा 12 से 15 फीट है, इसके बावजूद भी वो जो दो मकान है बचे हुए हैं, लोग वहां पर छतों पर गए और चूंकि समय था तो समय रहते वो भागने में भी कामयाब हो गए। इसी के साथ देखिए कहते ना कि मिरेकल क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए कुछ होटल्स हैं, नीचे की मंजिल अगर आप देखेंगे, पहली और दूसरे मंजिल, वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए, सब कुछ नहीं है। लेकिन लोगों के पास भागने के लिए यहाँ भी समय था, वो भी अपने छतों पर चले। अब ठीक इसके पीछे त्रिशूली नदी बह रही है और पानी कहाँ तक था ये देखिए, जहां मैं खड़ा हूँ पानी मलबा यहाँ पर 12 से 15 फीट तक आता है, लेकिन उसके बावजूद इन इमारतों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। पहाड़ों पर जो निर्माण कार्य था इतना मजबूत था कि वो इस प्रवाह को और उसकी ताकत को झेल गया। इसी तरह ढूंगे बाजार में देखिए, पीछे भी इधर मकान है, ये एक दो पीछे तीन मंजिल और आगे कृषि भव का जो ब्लॉक है, ये सारे मकान जो कि बिल्कुल धारा के बीचों बीच थे, प्रवाह को उसके बावजूद ये बचे रह गए। लेकिन आप सोचिए कि विडंबना देखिए कि जो धारा के बीच में आए वो मकान बच गए, लेकिन सड़क के बिल्कुल किनारे जो कि पहले से ही ऊंचाई पर हैं, मलबा इतना आया कि यहां के मकान, ये दुकानें ढह गई, ये मकान ढह गया, इस मकान।
3: इस खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: राजस्थान के कोटा के रहने वाले मुकेश कुमार देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल दिल्ली एम्स पर आरोप लगाया कि 14 साल तक अस्पताल के चक्कर काटते रहे, लेकिन सही इलाज नहीं मिलने की वजह से उनकी बेटी तानवी की मौत हो गई। साल 2012 में मुकेश कुमार अपनी 2 साल की बेटी को लेकर दिल्ली एम्स गए थे। तारीख थी 10 अक्टूबर 2012। बच्ची को हृदय से संबंधित जन्मजात समस्या थी।
1: मेरी बेटी के दिल में छेद है और एक नस नहीं है। मैं दिल्ली एम्स 2012 को पहली बार आया। पहली बार ओपीडी ली, मुझे 18 में बोला गया दिखाने को, कोठारी सर किया, वहाँ उन्होंने फाइल देखी, जांचें कराई। 13 में 14 में मुझे डॉक्टर सचिन तलवार जी के यहाँ रेफर कर दिया गया कि डॉक्टर साहब अपन करेंगे, जाओ। डॉक्टर सचिन तलवार जी ने खुद कहा मुझे कि ये मेरी बेटी का ऑपरेशन करेंगे, 1,25,000 जमा कराए, 4 यूनिट जमा करा।
0: एम्स कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर ने जांच करने के बाद सर्जरी के लिए CTVS विभाग के डॉक्टर के पास केस भेज दिया। CTVS के चिकित्सकों ने बच्ची की हालत देखने के बाद 4 अप्रैल 2014 को सर्जरी की तारीख तय कर दी, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी सर्जरी नहीं हुई और 1 सितंबर 2026 को दिल्ली एम्स में ही बच्ची की मौत हो गई। अब दिल्ली एम्स ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी।
2: कर रहे हैं जो सीरियस पेशेंट है, मर रहे हैं, मुझे इंसाफ दिलाओ।

0: कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: सरकार ने भारत का जो जीडीपी विकास दर है उसका डेटा जारी किया तो विपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार आंकड़ों में घालमेल कर रही है। तो इसी मुद्दे पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग से खास बातचीत की बिजनेस टुडे के ग्रुप एडिटर सिद्धार्थ जराबी ने। सुनिए।
3: कार स्वागत है आपका, मैं हूं सिद्धार्थ जराबी और अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सौरभ गर्ग, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और एक प्रकार से जीडीपी डेटा के कर्ता धर्ता। डॉक्टर गर्ग आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है जीडीपी के डेटा को लेके, जो 7.8% का अभी एक ग्रोथ डेटा आया है और भारत विश्व में कई इकोनॉमी से तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी आई है फर्स्ट क्वार्टर में, और ये कहा जा रहा है कि ये डेटा मैनिपुलेट किया गया है और कहीं ना कहीं सरकार अपनी ग्रोथ को ज्यादा अच्छा और बेहतर दर्शाने के लिए डेटा में कुछ फिक्सिंग कर रही है, ये फिक्स्ड मैच है, ऐसी एलिगेशन लगाई जा रही है। डॉक्टर गर्ग आपका इस विषय पे क्या रिस्पॉन्स है?
4: तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो हमारे आंकड़े हैं वो एक बहुत बुनियादी तरीके से जनरेट किए जाते हैं और जो भी हम डेटा स्रोत इस्तेमाल करते हैं, जो भी मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, वो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजी है और जो भी डेटा सोर्सेज हैं वो हमारे पब्लिक डोमेन में रहते हैं। और जो 7.8% पे प्रश्न उठाए जा रहे हैं, अगर आप रियल इकोनॉमी के फिगर्स देखें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 9% से ग्रो हो रहा है, स्टील सीमेंट 8% से ग्रो हो रहा है, अगर आप पीएमआई देखें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का वो 54, 55, 58, 59 पॉजिटिव एक्सपेंशन साइड पर है, सर्विसेज सेक्टर में देखें 24% रियल एस्टेट का सेक्टर ग्रो हो रहा है, 16% पे होटल्स ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, कमर्शियल व्हीकल्स 18-20% पे हैं। आप जो भी आंकड़ा देखना चाहें रियल सेक्टर का, कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखेंगे वो 12% पे ग्रो कर रहा है। तो जो भी क्रॉबोरेट हो रहे हैं नंबर्स, ये 7.8% जो क्वार्टर फिगर्स निकले हैं, तो इसलिए काफी मुझे आश्चर्य हो रहा है कि किस बेसिस पे लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं 7.8%, जबकि रियल इकोनॉमी के फिगर्स भी उसी दिशा में पॉइंट कर रहे हैं।
3: डॉक्टर गर्ग, 6 लाख करोड़ का एक आंकड़ा बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सारा खेल जो है एक प्रकार से इस 6 लाख करोड़ के कारण हो रहा है और कहीं ना कहीं पे इस 6 लाख करोड़ के नंबर की एडजस्टमेंट ऐसे की गई है कि ग्रोथ का नंबर वास्तविक स्थिति से ज्यादा बेहतर दिखे। ये 6 लाख करोड़ का नंबर क्या है, ये क्या?
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: सितंबर 5 को जो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च था इंडिया गेट से न्यू पुलिस हेडक्वार्टर्स तक, वो हम लोग कॉल ऑफ कर रहे हैं क्योंकि हमारे सारे डिमांड्स सरकार ने मान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ब्लेस किया। तो इसलिए सारे सारे देश के युवाओं को बहुत बहुत बहुत बड़ी मुबारक और शुभकामनाएं।
1: कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से 5 सितंबर को होने वाले मार्च को रद्द करने का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 से 25 जुलाई के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी FIR रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि जिन प्रदर्शनकारियों का आपराधिक रिकॉर्ड है उन्हें इस राहत का फायदा नहीं मिलेगा। ये आदेश देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज मामलों पर लागू होगा।
2: तो अब मुझे लगता है ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उससे हर स्टेट में जो FIRs अभी लोगों के अगेंस्ट हैं फॉर द प्रोटेस्ट, उनको हटाया जाएगा, उनको क्वॉश करा जाएगा, उनको ये बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है अगर FIR ऑनगोइंग होती है, उनके फ्यूचर के अगेंस्ट होता है वो।
1: दिल्ली बिहार

0: पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से अपने यहां दर्ज एफआईआर रद्द करने का अनुरोध किया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से अपील की कि बाकी राज्यों के लिए भी ऐसा ही आदेश पारित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत हासिल विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इन एफआईआर को निरस्त कर दिया है।
1: डेलीगेशन आया था और हमारी कई 7-8 मीटिंग्स हुई और उस मीटिंग्स में हमारा बस यही था कि कैसे एब्सोल्यूट जस्टिस मिल सके।
2: सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं।
0: जंतर मंतर में प्रोटेस्ट खत्म करने की एक शर्त छात्रों पर हुए केस वापस लेने की थी, लेकिन केस वापस न लिए जाने पर कॉकरोच जनता पार्टी ने पहले 5 सितंबर को मार्च निकालने का ऐलान किया था। आज तक ब्यूरो।

0: यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी ने पहले की सरकारों को फिर घेरा। मथुरा में कहा, विकास के नाम पर विरासत का अपमान होता रहा, थोड़ी देर में पंचायत आज तक मथुरा में करेंगे शिरकत। पंजाब में सीएम मान पर बीजेपी का सीधा आरोप, कहा बेटियों से दरिंदगी करने वालों से केस वापस ले रही है आप सरकार। पूछा, क्या करोड़ों का घूस लेकर हो रहा है सौदा। शुद्धिकरण मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी, कहा 24 दिन बाद भी नहीं हुआ कोई एक्शन। नैनीताल हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका। सत्ताईस के यूपी चुनाव में अकेले लड़ेगी बीएसपी, मायावती का ऐलान, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पद से आकाश आनंद को हटाया, कहा साम दाम दंड भेद से निपटने में आकाश अभी मैच्योर नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ बनते ही रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र पहुंचे अयोध्या, कहा श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया के गांव में जश्न।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल राम मंदिर के ट्रस्ट में हुए बदलाव को लेकर है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के बाद पहली बार मंदिर की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। कल ही ट्रस्ट को नया महासचिव, नया कोषाध्यक्ष, नए दो ट्रस्टी, एक नया सीईओ मिला है। कुल 5 बदलाव ट्रस्ट की व्यवस्था में हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल सियासत और बयानबाजी ट्रस्ट के सीईओ को लेकर हो रही है। ट्रस्ट ने बताया कि 5,500 उम्मीदवारों में से एयर मार्शल रिटायर्ड जितेंद्र मिश्रा को सीईओ पद के लिए सबसे योग्य मानकर चुना गया है। यूपी के ही देवरिया जिले से रहने वाले जितेंद्र मिश्रा 30 अप्रैल को ही रिटायर हो गए हैं, और उससे पहले वो भारतीय वायुसेना के वेस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में प्रशंसनीय भूमिका निभा चुके हैं। 42 साल तक सेना में सम्मानित सेवा देने वाले जितेंद्र मिश्रा की योग्यता पर किसी को शक नहीं होना चाहिए, लेकिन सियासत की अपनी आशंका है। कांग्रेस के नेता रशीद अलवी ने तो यह शक जाहिर कर दिया है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर का सच दबाए रखने के लिए सरकार ने जितेंद्र मिश्रा को सीईओ तो नहीं बना दिया। बीजेपी कह रही है कि सेना पर सवाल उठाना और सनातन का अपमान करना कांग्रेस की फितरत रहती है। लेकिन विपक्ष के सवाल और भी हैं। विपक्षी दलों में किसी का आरोप यह भी है कि संघ वीएचपी के लोगों की चोरी पकड़े जाने के बाद अब सरकार सेना अफसर के शरण में चली गई है। तो कोई यह कह रहा है कि फाइटर उड़ाने वाले अफसर को मंदिर में क्यों तैनात किया गया। कोई शंकराचार्य की तैनाती की दलील दे रहा है, तो कोई सीईओ पर चढ़ावा चोरी कांड के असली जिम्मेदारों को पकड़ने की चुनौती पेश कर रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के शूर पर क्यों यह सियासत हो रही है, इसी पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं।
1: अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर से चढ़ावे की चोरी से राम भक्तों की आस्था को जितनी चोट पहुंची थी, उससे ज्यादा हलचल सियासत में मची हुई है। नतीजा यह है कि कल ही भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अफसर जितेंद्र मिश्रा को मंदिर ट्रस्ट का नया सीईओ बनाया गया, और आज ही उनकी तैनाती पर सवालों के बौछार किए जाने लगे।
2: लोगों के दिमागों में शक और शुबा पैदा करती है। ऑपरेशन संदूर के अंदर कहीं कोई सच तो नहीं छुपा हुआ, जिस वजह से उन्हें यहां पे सीईओ बनाया गया।
3: कांग्रेस अब मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस हो गई है। राशिद अलवी जी, आपने उस राज का पर्दाफाश कर दिया, जो हल्का फुल्का भरम का नकाब था वो भी आपने उतार दिया।
4: भाई ये काम साधु संतों का है। अब एयर मार्शल साहब ने हवाई जहाज उड़ाया, हवाई जहाज उड़ा लेते, अब इनके आरएसएस के जंगल में फंस गए वो।
5: एक आदमी जो फौज की कमान संभालता था, इस धार्मिक इदारे की या धार्मिक मंदिर की कमान को कैसे संभाल पाएगा?
6: रिटायर्ड एयरफोर्स मैन बीइंग अपॉइंटेड इटसेल्फ इज अ क्वेश्चनेबल थिंग।
7: मेरिट पर पोस्टिंग नहीं होती है, बल्कि जो इस बीजेपी का कोई भी काम अंजाम देता है उसके लिए पोस्टिंग्स होती है।
8: एयर मार्शल लगा हुआ है, अब ये कैसे मार्शल निकलते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
1: जिस जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के इस्लामिक दहशत गर्दों को नेस्तनाबूद किया, S-400 को निशाना बनाने की पाकिस्तानी चाल को नाकाम किया, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, 42 साल की राष्ट्र सेवा में जिस एयर मार्शल को शौर्य चक्र से विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल तक से सम्मानित किया गया, वो राम मंदिर ट्रस्ट में आकर खुद को धन्य मानते हैं।
9: चयन समिति का बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा, और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि उन्होंने इतने सब कैंडिडेट्स में से मेरा चयन किया है। इसे मैं श्री राम का आशीर्वाद भी मानूंगा कि 43 वर्ष राष्ट्र सेवा के बाद भारतीय वायुसेना में मुझे श्री राम ने एक और अवसर प्रदान किया है, जहां पर मैं श्री राम मंदिर और श्री राम भक्तों की सेवा कर पाऊँ।
1: जितेंद्र मिश्रा राष्ट्र सेवा के बाद राम भक्तों की सेवा को अपनी खुशकिस्मती मानते हैं, लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी की सियासत का हिस्सा बता रहा है। अब सवाल जात पात से लेकर बिजनेस धंधे तक उठ रहे हैं।
10: एक मिश्रा जी गए, निपेंदन मिश्रा जी गए तो दूसरे आए, क्या कोई दलित ओबीसी नहीं हो सकता था?
11: इसका मतलब अब सरकार को, मोदी जी को भाजपा, आरएसएस, वीएचपी के लोगों पर विश्वास नहीं रहा।
12: ये धर्म का स्थान है, भगवान राम का जन्म स्थान है, यहाँ पर परम पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा नामित होना चाहिए, धर्माचार्य को वहां बैठाना चाहिए था।
1: राम मंदिर ट्रस्ट में 2 सितंबर को बैठक में बड़े बदलाव हुए हैं। गोविंद देवगिरी को ट्रस्ट का नया महासचिव बनाया गया है। महेश भागचंदका को ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अधिवक्ता मदन मोहन पांडे और शिक्षाविद निर्मला यादव ट्रस्ट में नए सदस्य बनाए गए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अफसर को लेकर उठाए जा रहे हैं।
13: तीर क्षेत्र न्यास का सीईओ बनाए जाने पर भी सेना पर आपत्ति कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी रवायत है, वो देश के सेनाध्यक्ष को गुंडा कहते हैं, वो बार बार सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं और अब एयर मार्शल के सीईओ बनाए जाने पर भी राशिद अल्वी सवाल खड़ा कर रहे हैं।
1: हालांकि विपक्ष के सवाल सिर्फ सेना के अफसर को सीईओ बनाने को नहीं है। विपक्ष आरोप लगाता है कि सेना के अफसर को सीईओ बनाकर सरकार चढ़ावा चोरी के असली गुनहगारों को बचाना चाहती है। विपक्ष की मांग है कि जब तक ट्रस्ट के पुराने जिम्मेदारों पर मुकदमा नहीं होता, सीईओ की तैनाती से पुराने पाप नहीं धुलेंगे, क्योंकि चंदे से चढ़ावे तक में गड़बड़ी के आरोप है जिनकी पूरी जाँच बाकी है।
14: Back to the Ram.
15: He may be raided by ED if he finds some real facts behind it. No wonder.
16: Thank you so much. मंदिर का कॉर्पोरेटीकरण हो गया है, बिजनेस हो गया ना। जब बिजनेस होता है तो सीईओ आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, डायरेक्टर्स आते हैं, सब लोग आते हैं।
1: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट पर इतने हमले नहीं हुए जितने सवाल इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर के सीईओ बनाने के बाद हुए हैं। इसमें सवाल ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जाति तक और सेना को धार्मिक मामलों में घसीटने से लेकर चंदा चोरों को बचाने तक के उठाए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: तो दरअसल मंदिर के ट्रस्ट में दो नए ट्रस्टी आ गए हैं, नए कोषाध्यक्ष आ गए हैं और उसके साथ साथ नए जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव भी नियुक्त किए गए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड एयर मार्शल को लेकर, नए सीईओ की नियुक्ति को लेकर, जबकि इसकी पूरी छटनी की छाननी की प्रक्रिया की गई थी, लेकिन उसके बावजूद सवाल सिर्फ उन्हीं पर उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ सिद्धार्थ यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। डॉक्टर एमएच खान समाजवादी पार्टी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। प्रोफेसर रविकांत तिवारी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में आ रहे हैं और उसके साथ साथ अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से भी इस चर्चा में आएंगे। तीन सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल, क्या ट्रस्ट में एयर मार्शल रिटायर्ड जितेंद्र मिश्रा को सीईओ बनाए पर विपक्ष बेवजह सवाल उठा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बाकी भी नियुक्तियां की गई है लेकिन सवाल सिर्फ सीईओ बनाने को लेकर है। पहली बार राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति हो रही है। दूसरा सवाल, क्या ऑपरेशन सिंदूर के सच का जिक्र करके राशिद अल्वी ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाया है। और तीसरा सवाल, क्या मंदिर ट्रस्ट में जितेंद्र मिश्रा की तैनाती के बावजूद चढ़ावा चोरी पर बड़े सवाल क्या अब भी कायम है, क्योंकि सीईओ की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी होगी और उसके साथ साथ वो लोग जिनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, यह भी सवाल एक कायम रहेगा। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरी चर्चा पर शुरू करने से पहले रविकांत तिवारी जी, सबसे पहले तो आप ही से समझना चाहेंगे कि भाई मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, 5,585 एप्लीकेशन किए गए थे, 6 जुलाई से यह प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसके बाद एआई के जरिए कुछ 1600 एप्लीकेशंस की छटनी की गई, उसके बाद उनके इंटरव्यूज किए गए, 16 एप्लीकेशंस फाइनल किए गए, बाकायदा एक 75 पेज की रिपोर्ट बनाई गई, 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, उसमें 2 लोग पूर्व सेना बैकग्राउंड से हैं, आईएएस अधिकारी भी उसमें रिटायर्ड है, लेकिन उसके बावजूद अब नियुक्ति के बाद आप यहां पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों?
17: शुक्रिया साहिल जी, सबसे पहले तो मेरा नाम थोड़ा दुरुस्त करा दीजिए, मेरा नाम सिर्फ रविकांत है। दूसरा, ये जो आपका सवाल है,
3: और नाम दुरुस्त कराइए, वो सिर्फ रविकांत नाम चलाते हैं तो उनका सिर्फ रविकांत नाम रखिएगा, ठीक है, बोलिए।
17: एक तो आश्चर्य इस बात का है कि इस नियुक्ति के जरिए क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने उस टकैती को छिपाना चाहती है। दूसरा, सेना को इस तरह से बीच में लाना, अब वो उनकी काबिलियत थी ऑपरेशन सिंदूर में, उन्होंने बड़ी भूमिका अदा की, ये पूरा देश उनका ऋणी है, लेकिन उनके जरिए क्या भारतीय जनता पार्टी उस डकैती को बचाना चाहती है। और तीसरा सवाल कि पहले तो साहब प्रधान सचिव थे प्रधानमंत्री के नृपेंद्र मिश्रा जी, अब आप कह रहे हैं कि एयर चीफ मार्शल साहब हैं, तो क्या नृपेंद्र मिश्रा जी बहुत कमजोर थे क्या, मतलब उनकी पावर कम थी क्या कि जो प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव रहा हो, उसकी पावर कम थी और उस समय और उन्होंने क्या आपस में आरोप लगाए थे जो सच थे, नृपेंद्र मिश्रा जी और चंपत राय जी, उसका क्या हुआ? सवाल तो ये है इस नियुक्ति को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती रही होगी कि इस तरह की पॉलिटिक्स हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से भारत के सब धर्मनिरपेक्ष संविधान और जो तमाम धर्म पंथ हैं उनकी मर्यादा का हमेशा सम्मान करती है।

0: लेकिन धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? खुले तौर पर कर रहा है, और धर्म की ही नहीं, मनुस्मृति की राजनीति कर रहा है। कि जहां आप राम मंदिर में, आप तो बताएंगे कि हिंदुओं का वो आस्था का स्थल है, लेकिन जहां ट्रस्ट बनेगा, जहां और पूरी व्यवस्था बनेगी, वहां तो कुछ खास लोगों को ही वहां बिठाया जाता है। उसमें दलित क्यों नहीं है, उसमें ओबीसी क्यों नहीं है? अभी उसमें एक मैडम है, शायद निर्मला यादव जी, ओबीसी से महिला है। लेकिन क्या उसमें 85% एससी ओबीसी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए? अगर उसे आप कह रहे हैं कि करोड़ों हिंदुओं की, और वो आस्था कहां गई जब ये लूट हो रही थी? ये इन्होंने झूठ की, लूट की,
1: लेकिन एक बात बताइए रविकांत जी, आपने, आप जो सवाल उठा रहे हैं उसके जवाब सिद्धार्थ यादव दे देंगे, लेकिन मुझे सवाल आपसे ये पूछना है। मैं कांग्रेस के नेताओं के स्टेटमेंट्स देख रहा था। देखिए, सीयू की नियुक्ति हो रही है जो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करेगा। रोहित कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीयू की नियुक्ति हो रही है, वो जो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करेंगे, वो वहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखेंगे, उसके साथ साथ जो भीड़ की मैनेजमेंट होगी उस पर नजर रखेंगे, बड़े बड़े वहां पर त्योहारों के आयोजन होंगे उसका उस पर उनका ध्यान रहेगा, कर्मचारियों की नियुक्ति पर उनका ध्यान रहेगा, बाकी सारी चीजों पर उनका ध्यान रहेगा। तो जिसने एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन देखा हुआ है उसकी तलाश कहीं ना कहीं 3 सदस्यीय कमेटी को थी। वो जो सदस्यीय कमेटी में जो 3 सदस्य थे उसमें भी पूर्व आईएएस अधिकारी भी थे, उसमें पूर्व साई बाबा संस्थान के चेयरमैन भी उसमें शामिल थे जिन्होंने मंदिर प्रबंधन का काम देखा हुआ है। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया में देख रहा हूं कि हवाई जहाज उड़ा लेते मंदिर के ट्रस्ट के भीतर आकर क्या कर रहे हैं, ये एक सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस के नेता। एक ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी के काम का अंजाम देने के लिए वहां पर आ रहे हैं, कौन सा बीजेपी का काम उन्होंने किया? उसके बाद आप ही सवाल उठा रहे हैं कि दलित ओबीसी क्यों नहीं है। भाई ट्रस्टी देखा जा रहा है, चेयरमैन सीईओ देखे जा रहे हैं, उसमें थोड़ी ना आप ये देखेंगे कि भाई कौन क्या ट्रस्टी है, कौन क्या है, उसके जरिए थोड़ी ना उसकी नियुक्ति वहां पर की जाएगी। रविकांत जी,
0: करना ये क्या बताता है? भारत की सेना बहुत ऐश्वर्य वाली, शौर्य वाली है और हमेशा से धर्मनिरपेक्ष रही है। ये जो नियुक्ति है उनकी काबिलियत को लेकर के कोई सवाल नहीं, उनके शौर्य, उनके
1: नहीं। तो आप ही तो बोल रहे हैं ना कि ओबीसी नहीं नियुक्त किया गया सीईओ, आप ही तो कह रहे हैं ना कि ओबीसी नियुक्त नहीं किया गया सीईओ, आप ही तो कह रहे हैं ना दलित सीईओ क्यों नहीं है।
0: मैंने सीईओ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने कहा कि उस ट्रस्ट में कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने महिलाएं हैं, क्या समस्त हिंदुओं को उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए? मैंने सीईओ की बात नहीं की, मैंने कहा कि उनकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं, उनके शैली को सैल्यूट है, लेकिन सवाल सरकार की नियत पर है कि सरकार क्या उस डकैती को ढकना चाहती है। सवाल यह है, क्या नृपेंद्र मिश्रा नाकाबिल थे? क्या जो नृपेंद्र मिश्रा और चंपत राय ने सवाल उठाए थे, आरोप लगाए थे, उनका क्या?
1: सिद्धार्थ यादव जवाब दीजिए।
2: मेरी आवाज आप तक आ रही है?
1: जी आ रही है, बोलिए
2: साहिल जी। जी साहिल जी, मुझे लगता है
1: जी आवाज आ रही है।
2: साहिल जी, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जिस ग्रसित मानसिकता से गुजर रही है, जिस डिप्रेशन की स्टेट में है, उस डिप्रेशन की स्टेट में ही ऐसे बयान आ सकते हैं। मैं 2-3 बात आपके सामने रखता हूं। पहली बात, देश के एक ऐसे डेकोरेटेड ऑफिसर जिन्होंने 38 साल देश के लिए अपनी सेवाएं दी हों, जब कारगिल का युद्ध चल रहा हो, जो मिराज 2000 को मॉनिटर करके, बॉम्बिंग करवा करके भारत को एक युद्ध जितवाने में काम करे, जिनने अलग अलग फ्रंट्स पर भारत को इतना ज्यादा मजबूत करने का काम किया, जिनने 38 साल वर्दी पहन करके देश की सेवा करने का काम किया, उनके लिए कांग्रेस द्वारा बयान दिया जाना, एक सोल्जर की जाति पर पुकारना कि ये मिश्रा हटके मिश्रा आए, उनके लिए एक इस प्रकार का घृणित बयान देना कि इनकी जाति ये क्यों नहीं है और फलाना क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, या यहां तक कह देना कि ऑपरेशन सिंदूर का कोई सच छुपाया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी का डिप्रेशन है, मानसिक दिवालियापन है। इससे ज्यादा बुरा आप एक देश के विपक्षी पार्टी से क्या मानेंगे? ये पहली बात। 5000 सुपर एप्लीकेशंस थी, 5585 साहिल जी, उन एप्लीकेशंस में से शॉर्टलिस्ट किए गए लोग, जो चयन समिति थी उसमें देश के पूर्व न्यायाधीश थे।

0: एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, एक विशेषज्ञ थे, उन लोगों ने चयन करके एक अच्छे सीईओ, हमारे देश के एक डेकोरेटेड ऑफिसर को चुना। सबको स्वागत करना चाहिए था, कोई बात नहीं है, पर क्योंकि देश में सनातन को गाली देनी है, हमको हिंदुओं को गाली देनी है। अभी पूछ रहे हैं कितने हैं, कितने इस समिति के अंदर कितने ओबीसी लिए गए। मैं उल्टा प्रश्न पूछता हूं कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के जितने मुख्यमंत्री हैं इस देश के अंदर, उसमें से कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने हैं बताइए? शून्य। आपकी नियत क्या हुई? जब आपको नेतृत्व देना होगा, आपको पार्टी चलानी होगी, तब किसी को मौका देंगे नहीं, तब तो किसी को आगे आएंगे नहीं। यहां पर हुआ तो बहुत तेज इनकी जबान चली। मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, कभी आपने पूछा वक्फ को चलाने वाले या मस्जिदों की कमेटियों का चयन करने वाले लोग उसमें कितने पासवंदा थे, कितने अहमदिया थे, कितने शिया थे, कितने सुन्नी थे, कभी पूछा आपने? ये जो राहुल गांधी स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें सेना की जाति पूछो, मिस वर्ल्ड की जाति पूछो, देश के बच्चों की जाति पूछो, किसी भी वर्ग में जाओ और विभाजन करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करो, मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। और साहिल जी, ये एक्सेप्टेबल नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, ये कह देना कांग्रेस पार्टी द्वारा कि यहां पर कुछ ऑपरेशन सिंदूर का सच छुपाया जा रहा है, मतलब भारत की जीत पर तो सवाल है, पाकिस्तान के दावों पर भरोसा है, तो आप किसकी तरफ है भैया, आप कौन सी तरफ से खेलना चाहते हैं? आप ये एक बार होता साहिल जी तो भी जाने दिया जाता। हम लगातार, और मैं एक खुद सैनिक परिवार से आता हूं, मुझे लगता है देश की जनता थक चुकी है इनकी बातें सुन के। कभी आप कहेंगे कि नहीं हमको तो सबूत चाहिए, कभी आपके नेता आएंगे कहेंगे कितने विमान गिरे, कभी पृथ्वीराज चौहान आपके नेता आएंगे कहेंगे हम तो युद्ध पहले दिन ही आ चुके थे, कभी आप सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा बुलाएंगे, अब आपके नेता राजनीति दलवी आ गए कह रहे ऑपरेशन सिंदूर का सच छुपा हुआ है। भाई, सेना के साथ आपको देश में मजाक करना अनिवार्य हो चुका है क्या? क्या कांग्रेस पार्टी की क्वालिफिकेशन हो चुकी है कि सेना के शौर्य का अपमान करेंगे, सेना का प्रश्न उठाएंगे?
1: ये बात मुझे भी समझ नहीं है,
0: करेंगे तभी होगा।
1: ये कौन सा सच छुपाने के लिए एयर मार्शल, रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र को सीईओ बनाया जाएगा और उसके वजह से सच छुप जाएगा, ये क्या लॉजिक है मुझे नहीं समझ में आया। दरअसल सच छुपाने के लिए रिटायर्ड एयर मार्शल को वहां पर सीईओ बनाया जाएगा,
2: बयान मालूम है कि नहीं? अब मेरी सुन लीजिए ना, राजनाथ सिंह ने क्या कहा था उस समय कि कोई हताहत नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, बोले ना कि 6 सैनिक हमारे हताहत हुए। ये सच है कि नहीं है? ये राजनाथ सिंह का ही बयान है। और सेना को इस तरह से इन्वॉल्व कर, सेना पर राजनीति आप करते हैं, धर्म पर आप राजनीति करते हैं, कम से कम सेना को तो दूर रखिए। लेकिन नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, एजुकेशन के लिए कुछ नहीं है, रोजगार के लिए कुछ नहीं है, आपको बच्चों को एजुकेशन नहीं देना है और इसलिए रोजगार नहीं देना है, महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं, तो जीडीपी बताएंगे साहब 7.8% है। थिथराई का आलम यह है कि लोग यहां मर रहे हैं, देश को कितने कर्जे में आपने डाल दिया, और लेकिन राजनीति आप किस पर करेंगे धूल झोंकने के लिए? करी साहब देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट में हमने सीईओ इनको बनाया है, मैं तो कह रहा हूं कि उनकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आप सेना को धर्म और राजनीति के साथ क्यों जोड़ना चाहते हैं? आपका इरादा क्या है ये बताइए जरा।
0: साहिब जी, मेरा
2: कांग्रेस पार्टी हमेशा से धर्मनिरपेक्षता, हमेशा से भारत के संविधान का सम्मान करती रही है, और सिद्धार्थ जी अगर हिम्मत है तो बोल दें कि संविधान जिंदाबाद और मनुस्मृति मुर्दाबाद, बोल दें सिद्धार्थ यादव। मैं जान लू इनको कि भारतीय जनता पार्टी की असली मंशा क्या है। इनकी मंशा मनवादी व्यवस्था को लागू करना है और सेना को राजनीति के साथ घसीटना है, ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, ये नहीं करना चाहिए।
1: जवाब दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर में हमारे साथ में डॉक्टर सुरेश हावरे भी हमारे साथ ज्वाइन होने वाले हैं, और एक बार जरा ये प्रक्रिया कैसे रही वो भी हम सबको बताएंगे, उनसे वो भी सवाल मैं पूछने वाला हूँ। सिद्धार्थ यादव,
0: साहिल जी, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी से सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए। हम राहुल गांधी की तरह नहीं है जो संविधान को लेकर घूमते हैं, उसको पढ़ते नहीं है खोल करके। हम संविधान को जीवन में अपनाने वाले लोग हैं और संविधान को लेकर चलने वाले। बीच में मत बोलिए साहब, आपके बीच में कोई नहीं बोला था साहब, बीच में मत बोलिए, ऐसे परेशान साहब, परेशान, अरे साहब परेशान नहीं होते आपको, आप ये बात अपने आप, ये साहिल जी ये तरीका नहीं हो सकता, मैं एक शब्द नहीं बोल रहा इनके बीच में, ऐसे विचलित मत होइए, परेशान
1: जी बीच में अपनी बात खत्म कर दीजिए, उनकी बात खत्म करने,
0: मैं एक शब्द नहीं बोला
1: बीच में नहीं, प्लीज।
0: आप उम्र में भी वृद्ध हैं, इतना अनुभव आपको होना चाहिए कि बीच में एक दूसरे के नहीं टोकते हैं। मैं तो आपको कह रहा हूं, अगर आपको मनुस्मृति से बहुत दिक्कत है, आप जाइए राहुल गांधी जी को समझाइए, जो बात महात्मा गांधी जी ने मनुस्मृति के बारे में बोली थी बोलिए कि महात्मा गांधी ने गलत थे, बोलिए कि जवाहरलाल नेहरू गलत थे, बोलिए ना जाकर के। आप लोग की समस्या यह हो चुकी कि आपको केवल सनातन को आपको आगे जाकर
1: देखिए, विषय हमारा मनुस्मृति नहीं है।
0: अरे अरे भैया सुन लीजिए।

0: जवाब सुन लीजिए, आप आपको यहाँ पे प्रवचन सुनने के लिए नहीं बुलाया है। मैं दूसरी बात पूछता हूँ, मैं कहता हूँ आपको बात करनी है एजुकेशन पर, आपको बात करनी है देश में किसी भी बात पर, इकोनॉमी पर। ये बयान आपके मुंह में थोड़ी डाला जाके किसी ने, देश के एक हमारे हमारे आराध्य राम मंदिर का एक सीईओ नियुक्त हो गया, किसने आपको फोर्स किया कि राशि दलवी जाके बोले कि
1: अरे
0: ऑपरेशन सिंदूर
1: राम
0: का सच
1: मंदिर में
0: छुपाया जा रहा
1: डकैती
0: है?
1: डालने
0: राज्य
1: वाले
0: को
1: बोल
0: आप
1: रहे
0: करते
1: हैं,
0: हैं,
1: राम
0: आप
1: मंदिर में
0: मजाक आप
1: डकैती
0: बनाते
1: डालने
0: हैं,
1: वाले बोल रहे
0: सेना
1: हैं।
0: का पाठ
1: अरे अब
0: आप
1: तक
0: करते
1: आप
0: हैं,
1: आईने
0: सनातन
1: में
0: को
1: मुंह
0: गाली
1: देख
0: आप देते
1: लीजिए,
0: हैं, या
1: आईने
0: आप
1: में
0: लोगों
1: मुंह
0: की
1: देख
0: फितरत
1: लीजिए,
0: है?
1: करो
0: आप लोगों
1: हिंदुओं
0: से
1: के
0: बर्दाश्त नहीं
1: सामने,
0: होता
1: जरा
0: कि इस
1: अपने
0: देश
1: आप
0: के
1: को रख
0: अंदर सनातन
1: लीजिए।
0: का अब कैसे हो जाएगा?
1: भगवान
0: साहिल
1: राम
0: जी, ये
1: हमारा जो
0: डिबेट का
1: राम
0: तरीका नहीं हो
1: राम
0: सकता।
1: को
0: आप
1: लाए
0: इनको
1: हैं,
0: या तो इनको
1: हनुमान
0: शांत
1: जी को
0: कराइए, नहीं तो
1: लटाएंगे।
0: बुलवाइए। मैं 10 लोगों के साथ कैसे अन्याय
1: ये
0: नहीं कर
1: आराध
0: सकता?
1: है, आप
0: मैं माफी
1: आराध
0: चाहूंगा,
1: मान रहे
0: इनको
1: हो,
0: बुलवा
1: उनको
0: लीजिए आप।
1: आस्था है आप।
2: तो इस वक्त हमारे साथ साई बाबा शिरडी संस्थान के पूर्व चेयरमैन, पूर्व न्यूक्लियर साइंटिस्ट, और उसके साथ साथ उस चयन प्रक्रिया में जो कमेटी बनाई थी, 3 सदस्य कमेटी बनाई गई थी सीईओ का चयन करने के लिए, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, सुरेश हावरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े जुड़ रहे हैं आज तक पर। सुरेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए। बहुत ही लंबी प्रक्रिया रही आपकी, करीब 5,585 एप्लीकेशन सीईओ के पद के लिए दावेदार आपके सामने आए थे। एक लंबी प्रक्रिया के साथ एआई का भी उसमें इस्तेमाल किया गया, हमने सुना, वन ऑन वन इंटरव्यूज किए गए। लेकिन जो नियुक्ति की गई है, जो चयन किया गया है, पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा जी का, क्या किस तरीके से आपने यह चयन किया और क्या सोचकर यह चयन किया गया?
0: देखिए, पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनाने का पहले दिन से ही हमने तय किया था, उसी प्रकार से पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंटली अपनाई गई है। जितने भी आवेदन आए हैं उनको सबके साथ में न्याय किया गया, और नैरो डाउन करते करते 3 लोगों के पैनल तक हम पहुंचे जो कि ट्रस्ट को हमें सौंपने थे। यह 3 नाम हमने सौंप दिए हैं। कई कई गुणवत्ता इनमें परखनी थी, कम्युनिकेशन कैसा है, कॉन्फिडेंस व्यक्ति का कैसा है, उनका अनुभव जो रहा है, जो जिस व्यवसाय में या प्रोफेशन में वो रहे उनका अनुभव कैसे रहा है, लार्ज स्केल एस्टेब्लिशमेंट को हैंडल करने का उनका अनुभव कैसा है, क्राइसिस मैनेजमेंट उन्होंने कभी किया है या नहीं किया है, क्राउड मैनेजमेंट कभी हुआ है, डिसीजन मेकिंग उनका कैसा है, पर्सनालिटी किस तरह से है, ऐसे कई सारे विषय जो जनरल मैनेजमेंट के उपयोग में आते हैं, मैनेजमेंट का भी उनका अनुभव, फाइनेंस का भी उनका अनुभव, एडमिनिस्ट्रेशन का भी उनका अनुभव, या कैपेबिलिटीज, ये देख करके हमने नैरो डाउन किया है।
2: सूर्य जी, ये भी कहा गया था कि धार्मिक आस्था से जुड़े सवाल भी उनको पूछे गए थे, और उसके साथ साथ मंदिर के जो प्रशासन होता है, मंदिर किसी भी ट्रस्ट का जो प्रशासन होता है, आप खुद एक शिरडी साई बाबा संस्थान के चेयरमैन रह चुके हैं, और आपको पता है कि करोड़ों रुपए दान के तौर पर मंदिर में चढ़ावा के तौर पर वहां पर आते हैं, तो उसके लिए भी क्या पूछा गया था, और धार्मिक आस्था कितना अहम मुद्दा रहा जब आपने इनका चयन किया था?
0: नहीं, देखिए, जो मैनेजमेंट प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में होता है, उनका एक आधार या रवैया रहता है, और मंदिर मैनेजमेंट का अलग से एक आधार रहता है। 3 चीज़ें मैं कहूँगा कि जो मंदिर मैनेजमेंट में अलग है कंपेयर टू इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट या प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मंदिरों में एक इमोशन का विषय आता है, डिवोशन का विषय रहता है, भक्ति का रहता है, और स्पिरिचुअलिटी मंदिरों में रहती है। ये 3 पैरामीटर्स आमतौर पर बाकी मैनेजमेंट में नहीं रहते हैं, तो इनसे जुड़े हुए सवालों के बारे में भी चर्चा हुई है। और हमने ये पाया कि जिसकी श्रद्धा है, एक तो धर्म में श्रद्धा होना, अपने मंदिरों में श्रद्धा होना, राम जी के प्रति श्रद्धा होना, ये सारी श्रद्धा भाव वो सारा भी देखा गया, वो तो जरूरी था। लेकिन आमतौर से देखा गया कि जो बड़ा मैनेजमेंट कर सके, उनकी एबिलिटीज काम में आ सके, राम मंदिर का जो आकार, साइज और वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को, और ये अभी बढ़ते जा रहा है, आगे भी बढ़ते जाएगा, तो उस के कैपेबल एक मैनेजमेंट के सवाल पूछे गए, ऐसे ही सवाल हुए हैं।
2: एक और एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर नोटिस की जा रही है, जो कई लोग बोलने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई बड़े बड़े मंदिरों के जो ट्रस्ट है, जिसमें शिरडी साई बाबा का भी ट्रस्ट है, या फिर तिरुपति तिरुमला ट्रस्ट है, या फिर वैष्णो देवी ट्रस्ट है, बड़े बड़े मंदिरों के जो ट्रस्ट है, उस पर जो सीईओ की नियुक्तियां हुई है, वो आमतौर पर हमने देखा है कि कोई या तो कोई आईएएस बैकग्राउंड से, यानी सिविल सर्विसेज से आए हुए व्यक्ति वहां पर ज्यादातर देखे गए। पहली बार सेना बैकग्राउंड से आए हुए किसी व्यक्ति को या किसी अधिकारी को, बड़े अधिकारी को सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है। क्या यह क्रेडिबिलिटी का भी एक तरीके से मामला था, क्योंकि राम मंदिर को लेकर जो भी कंट्रोवर्सी रही है और उसके बाद सीईओ के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई, खोजने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो क्रेडिबिलिटी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, इसीलिए सेना का बैकग्राउंड भी इसमें देखा गया है, क्योंकि आमतौर पर जो एप्लीकेंट्स थे, फाइनलाइज किए गए थे, उसमें सिविल सर्वेंट्स, पुलिस अधिकारी और सेना अधिकारी ज्यादा तौर पर देखे गए।
0: नहीं, देखिए, आवेदन तो बहुत लोगों से आए थे, आईएएस आईपीएस रिटायर्ड ऑफिसर्स जो थे, 700 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किए थे, सेना के जो सीनियर अधिकारी है ऐसे 300 के करीब लोगों ने आवेदन किए थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और बैंक, इनमें से भी एमडी लेवल के, सीईओ लेवल के लोगों के भी आवेदन थे, एजुकेशन आईटी रिलेटेड भी लोग इसमें थे, और बाकी जो मंदिरों की आपने बात कही है, तिरुपति बालाजी मंदिर और शिरडी का साई बाबा संस्थान, आपको एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि ये दोनों मंदिर जो है ना, वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। शिरडी साई बाबा का मंदिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, नियंत्रण में, और तिरुपति का आंध्र गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। जितने भी गवर्नमेंट कंट्रोल मंदिर है वहां पर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर
2: सुरेश हावरे जी, कुल मिलाकर डॉक्टर एम एच खान, आपने सुना होगा सुरेश हावरे जिन्होंने इस सीईओ की नियुक्ति की, उस पैनल में वो शामिल थे जिसमें एक रिटायर्ड जज भी थे और बाकी लोग भी थे, उसमें तीन लोगों का यह पैनल था। वो कह रहे हैं, हमने देखा कि कैपेबिलिटी, क्राउड मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी देखी, क्राइसिस मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी देखी, डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी देखी, पर्सनैलिटी हमने देखी, आस्था देखी, और एक बड़ा मैनेजमेंट संभाल सके ऐसे व्यक्तियों का चयन हमने यहां पर करने की कोशिश की है। इनमें से कौन सी चीज पर जितेंद्र मिश्र वहां पर उसमें नहीं दिखाई देंगे आपको, या उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं दिखाई देगी? अगर ये सारी चीजें उनके पास में है तो फिर ये सब सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं?
1: नहीं, मेरा सवाल तो इस पर है ही नहीं, मैं तो कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। हमारे सभी हिंदू भाइयों की भावना जो थी, जो चोरी हुई थी, जिसमें छोटी मछली पकड़ी गई, और नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि डकैती पड़ी है, एसआईटी गठित हो गई, एसआईटी में कुछ लोग जेल गए, और फिर एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो रही है। मैं तो उस चीज को जानना चाहता हूं कि जो करोड़ों रुपया की चोरी हुई है, उसमें जो मेन आदमी है वो क्यों नहीं पकड़े गए? उनको पकड़ना चाहिए। और ये सरकार का काम है कि ट्रस्ट बनाए, क्या करे, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि वहां पे चोरी ना हो, किसी की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे, हिंदू भाइयों के धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे। और अगर इस तरह की चीजें हैं तो देखिए, उसमें एक जो कोषाध्यक्ष थे जिनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उनको महासचिव बना दिया गया, तो ये कहां तक न्याय संगत है? पहले जो एसआईटी गठित हुई है सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में, उसकी रिपोर्ट आ जाने देते कि कौन कौन इसमें दोषी है, कौन कौन इसमें बड़ी मछली है। बड़ी मछली तो कोई नहीं पकड़ी गई ना। तो सवाल इस बात का है, हिंदू भाइयों के साथ छल किया जा रहा है। जिन लोगों ने चंदा दिया, जिन लोगों ने कुछ दिया, तो उस पर ये कमेटी और इसका डाइवर्जन करके ये सत्य नहीं लगता मुझे। मुझे चाहिए जो चोरी हुई है वो बरामद होनी चाहिए।
2: कांग्रेस पार्टी सीईओ के चयन पे सवाल उठा रही है, एक ऐसे व्यक्ति पर सवाल उठा रही है जिन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पे, वो बेवजह उठा रही है।

0: और वो नहीं उठाना चाहिए, असली मुद्दा कुछ और है, यही समाजवादी पार्टी कहने की कोशिश कर रही है।
1: नहीं देखिए, ये चोरी का मुद्दा अगर पकड़ना है तो आईपीएस अधिकारी पकड़ेगा, फौज का आदमी नहीं पकड़ पाएगा, फौज का आदमी लड़ाई लड़ेगा।
0: अरे
1: ये जो धन जो है, धन को पकड़ना, चोरी पकड़ना, चोर पकड़ना, डकैती को पकड़ना, ये सारा काम आईपीएस अधिकारी जो जिले में एसपी होता है, डीआईजी होता है, आईजी होता है, डीजीपी होता है, वो करता है। ये काम सेना का अधिकारी नहीं कर सकता है। सेना का अधिकारी से लड़ाई लड़वा सकते हैं आप, कैसे बोल के लड़ सकते हैं, वो काम कर सकता है।
0: हर कोई अलग अलग तरीके से सीईओ कैसा होना चाहिए वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि या तो वो दलित या ओबीसी में से फेस होना चाहिए था, ऑपरेशन सिंदूर के पूर्व सेना अधिकारी को आपने क्यों बनाया। समाजवादी पार्टी कह रही है कि आईपीएस अधिकारी को रख लेते ताकि चोरी पकड़ी जा सकती थी। हर किसी के अपने अपने दावे हैं, और जबकि जो चयन समिति है उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि क्या क्या चीजें उन्होंने देखी उसमें। सिद्धार्थ यादव
2: ने, साहिद जी, मंदिर ट्रस्ट के सीईओ का काम है क्या पिछले केस की तफ्तीश करना? ये एसआईटी का काम है? ये क्या तर्क हुआ? मुझे एसआईटी जांच करेगी जो पहले गलत हुआ, एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी के चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, उसमें बदलाव होकर के आईपीएस को ही रखा गया है। सीईओ ट्रस्ट का होना ये एक मैंडेट है, बायलॉज का मैंडेट है। अगर सीईओ हटे तो सीईओ का चयन होना है, लिमिटेड समय में होना है। ट्रस्ट बिना सीईओ के, बिना कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के नहीं चल सकता। आप लोग किसी बात को झुटलाने के लिए या अपनी घृणा को आगे रखने के लिए कोई भी तर्क लेकर के आए और फिर कहें कि वाह साहब क्या तर्क था, तो साहिल जी ऐसे थोड़ी चलता है। दो ट्रस्ट अभी बना है जिन लोगों का चयन हुआ, सीईओ छोड़िए, इनको तो सेना से घृणा है हमको पता है, बाकी लोग भी, क्या ये लोग पिछले केस में तफ्तीश करेंगे? या जो एसआईटी बनी हुई है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, वो लोग तफ्तीश करेंगे? या सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है? क्या है ये तर्क? ये और कुछ नहीं है साहिल जी, हमारे देश की विपक्षी पार्टियों को कैसे ना कैसे बहाना ढूंढकर देश की सेना को अपमानित करने का काम करना है। मुझे प्रश्न नहीं समझ में आया, कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है इस बात से कहकर कि ऑपरेशन सिंदूर का कोई सच छुपाया जाए? कौन सा सच है ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? ये कौन सी साजिश है? कब बाज आएगी कांग्रेस पार्टी देश की सेना का अपमान करने से? हमारी सेना का शौर्य है, हमने अपना शौर्य
0: दिखाया, सेना ने शौर्य दिखाया,
2: एक सेना अधिकारी बना दिए तो आप रोने धोने लगे, प्रश्न उठाने लगे, ये क्या बात हुई? आप इनसे स्पष्ट करवा दीजिए वो कौन सी बात है जो राशिद अल्वी पूछना चाह रहे, मैं भी समझना चाहता हूँ।
0: चलिए स्पष्ट कर रही है, मुझे भी समझ रहा है इस बात।
3: आप सवाल भी दोबारा कर रहे हैं। मैंने जो एक सवाल उठाया था कि राजनाथ सिंह जी ने क्या बयान दिया, 6 सैनिकों की वहां पर निधन हुआ, वहां शहादत हुई, वो आपने छिपाया कि नहीं छिपाया, जरा मुझे एक बता दे सिद्धार्थ जी, ये बता दीजिए कि राजनाथ सिंह जी का जो बयान था या तो वो गलत है, या तो वो गलत था, नहीं
2: नहीं कांग्रेस को क्या साजिश लग रही है
3: भाई? कौन से किसने कहा कि
2: साजिश लग रही है? खेलते हैं कि टीम इंडिया की तरफ से खेलते हैं, कहां से खेल
3: लग रही है
2: बताइए?
0: राशिद अल्वी कह रहे हैं,
3: राशिद अल्वी कह रहे हैं, आपको बोलना है, सेना को आपको बीच में लाना है, ये आपकी पुरानी राजनीति है जो अब पूरे तरीके से बेपर्दा हो चुकी है।
2: सेना को आप
3: ले आएंगे,
0: रविकांत जी इस मामले में, नहीं नहीं जरा एक मिनट रविकांत जी, एक मिनट ये ठीक है, आप जो बाकी पॉलिटिकल आरोप आप हमेशा लगाते रहते, लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं, इस बार सेना के अधिकारी की, एक निवृत्त जो रिटायर्ड अधिकारी है उनकी नियुक्ति पर सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। कांग्रेस पार्टी के जो अलग अलग नेताओं के बयान आए हैं, जिसमें आपके वहां के सांसद शामिल हैं, इमरान मसूद शामिल है, राशिद अल्वी शामिल है, तमाम जो लोग हैं उनके बयान सामने आए। राशिद अल्वी का बयान तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि आप हवाई जहाज उड़ाइए, वहां पर मंदिर में क्या कर रहे हैं, ये सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए गए हैं। इसीलिए मैं भी समझना चाहता हूं ऐसी क्या गलती है इसमें कि अगर कोई रिटायर्ड सेना का अधिकारी मंदिर के ट्रस्ट का सीईओ नियुक्त किया जाता है, पूरी चयन प्रक्रिया होने के बाद, 75 पेज की रिपोर्ट बनाने के बाद, पूरी प्रक्रिया में एआई से लेकर इंटरव्यू शामिल होने के बाद भी, इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है। आप प्लीज इस बात का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। रविकांत जी
3: देखिए, वो सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं, आप ये बीजेपी ये क्यों बताना चाहती है कि उनकी काबिलियत केवल सेना की, उसमें बहुत सारी काबिलियत जो भी बताई, जो चयन करता थे उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीजें खोजी गई कि मैनेजमेंट का कैसा है, भीड़ को कैसे कंट्रोल करना, ये सारी काबिलियत उनमें है जो पाई उन्होंने उसका किया। लेकिन चूंकि आपको तो सेना को राजनीति में ले आना है,

0: आप ये कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका हमने चयन किया, जिसमें ये काबिलियत पाई गई, उनका इसको जोड़ना ये जरूरी है क्या कि साहब वो सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और इसलिए हमको नियुक्त
1: अरे
0: किया है?
1: बाप रे
0: इसलिए नहीं किया है। आप तो सीधा ये
1: बाप रे,
0: बताइए कि उनमें ये काबिलियत
1: मतलब
0: है,
1: ये
0: लेकिन
1: कहना गुनाह
0: सेना
1: हो
0: को
1: चुका कि वो
0: ये
1: सेना के
0: किसने
1: सेवा
0: कहा?
1: निवृत्त कार्य अधिकारी हैं।
0: अरे भाई
1: मतलब
0: है
1: आपको
0: या
1: ये
0: किसने
1: एयर
0: कहा कि
1: मार्शल
0: नहीं है, लेकिन
1: हैं, ये सुनकर
0: आपको
1: आपको
0: सेना
1: दर्द
0: को
1: हो रहा है कांग्रेस
0: राजनीति में
1: पार्टी को।
0: घसीटना है, ये
1: अरे
0: सबसे
1: किसकी
0: बड़ी चीज है कि
1: राजनीति,
0: आपको
1: राजनीति
0: घसीटना
1: कहाँ
0: है।
1: है इसमें?
0: आपको राजनीति
1: एक
0: करनी है
1: एक
0: उस पे,
1: इतने बड़े
0: और
1: मंदिर का ट्रस्ट
0: माफ
1: है,
0: करें इस
1: उसके लिए
0: बार ये
1: आपको
0: तर्क मुझे
1: एक्सपर्टीज
0: भी नहीं
1: चाहिए,
0: समझ में आ रहा
1: अथॉरिटी
0: है।
1: चाहिए।
0: अरे
1: कमाल है
0: मंदिर
1: साहब।
0: आप अभी तक क्या था, मैं तो पूछ रहा हूं ना कि नृपेंद्र मिश्रा में क्या काबिलियत की कमी थी
1: अरे
0: जो वहां
1: नृपेंद्र
0: डकैती हो
1: मिश्रा
0: रही
1: तो
0: थी?
1: सीओ भी नहीं थे,
0: चंपतराय में कमी
1: आपको
0: थी
1: ये तक
0: क्या?
1: नहीं पता?
0: सवाल
1: रवि कांत
0: जवाब
1: जी, वो
0: उसका देना
1: कंस्ट्रक्शन
0: चाहिए
1: समिति के
0: आपको।
1: सीओ थे,
0: आप उस
1: आपको ये
0: जवाब
1: नहीं
0: को
1: पता कि
0: ढकने के
1: मंदिर
0: लिए
1: ट्रस्ट का सीओ कौन
0: आप
1: था?
0: ये लेकर
1: छोड़िए
0: के आए
1: साहब,
0: हैं।
1: कौन
0: आप
1: थे
0: ये
1: मंदिर
0: बताइए
1: ट्रस्ट
0: वो
1: का सीओ, बताइए।
0: डकैती का क्या हुआ? वो डकैती का क्या हुआ?
1: आपको पता
0: छेत्रा
1: ही
0: मत
1: नहीं
0: कीजिए,
1: कौन
0: वो
1: था?
0: बताइए डकैती
1: कमाल
0: का क्या
1: है।
0: हुआ? डकैती का क्या हुआ ये बताइए पहले, ये बताइए डकैती का
1: अरे
0: क्या
1: उसकी तो
0: हुआ,
1: जांच चल रही है, आप
0: उसका
1: लोग का
0: क्या हुआ
1: दर्द है।
0: पहले
1: जो
0: बताइए।
1: लोग राम को काल्पनिक बताते थे वो आज देश में कालनेमी बनकर राम राम जप रहे हैं, पर जहर मन में छुप नहीं पा रहा, निकल कर आ रहा है बाहर। ये जहर है आपका। मतलब
0: अरे
1: एक सेना के अधिकारी को
0: हाँ
1: ये
0: वो
1: ना बोले
0: मालूम
1: कि वो
0: है,
1: एयर
0: वो
1: मार्शल थे, क्या
0: मालूम है कि
1: बोले?
0: इसीलिए
1: नाम
0: जो
1: छुपा
0: राम
1: ले,
0: को लाए हैं
1: नेहरू, नेहरू
0: वो तो
1: बताया अपने
0: वहां
1: आपको, क्या
0: आप
1: बताए?
0: वो तो
1: नेहरू
0: नरेंद्र
1: गांधी,
0: मोदी को
1: नेहरू
0: बना
1: गांधी
0: देंगे ना,
1: वाड्रा,
0: वो
1: ये
0: तो
1: बताए।
0: नरेंद्र मोदी को बना देंगे राम से बड़ा,
1: रोहित कुमार
0: नरेंद्र
1: सिंह
0: मोदी
1: कुछ
0: को
1: ऐड
0: राम
1: करना
0: से
1: चाह
0: बड़ा
1: रहे
0: बना
1: हैं।
0: देंगे। लखनऊ में नितिन
1: रोहित,
0: नवीन क्या कर रहे थे?
1: ठीक है,
0: हनुमान जी
1: रोहित
0: को
1: कुमार
0: लेके आ रहे
1: सिंह,
0: थे, वो
1: 6 जुलाई
0: टारगेट
1: को
0: ही
1: यह प्रक्रिया
0: आपकी,
1: शुरू होती है,
0: बता दीजिए
1: चयन
0: हटा
1: की
0: दिया जाओ।
1: प्रक्रिया। एक मिनट रवि कांत जी, रवि कांत जी, 6 जुलाई को यह प्रक्रिया शुरू होती है सीईओ के चयन की। 5,585 एप्लीकेशन आवेदन आते हैं, और कि कोई भी
0: अरे भाई
1: आवेदन कर
0: तीन
1: सकता
0: बार
1: था,
0: आप
1: आप भी
0: गिना
1: आवेदन
0: चुके
1: कर
0: हैं ना, ये
1: सकते थे कि
0: बात क्यों
1: मुझे
0: बार बार
1: राम
0: गिना रहे हैं
1: मंदिर ट्रस्ट का
0: उसको?
1: सीईओ बनना है।
0: ये क्यों बिना
1: नहीं
0: रहे हैं
1: नहीं
0: ना,
1: नहीं नहीं मैं आपसे
0: ये
1: पूछ रहा
0: गिना
1: हूं,
0: क्यों रहे
1: आपसे,
0: बार बार आप?
1: अरे मैं आपको बता रहा हूं,
0: अरे
1: नहीं
0: यही
1: मैं
0: बात
1: आपको
0: मिला
1: बता
0: है
1: रहा
0: कि आपको
1: हूं
0: कितना
1: रवि कांत
0: इतने
1: जी,
0: बार बार
1: कोई भी
0: गिना है आपको
1: एप्लीकेशन,
0: स्पीच करनी है,
1: पूरे देश
0: कितने
1: में
0: इतने
1: कोई भी
0: एप्लीकेशन?
1: एप्लीकेशन कर सकता था। चलिए खैर ठीक है, अभी हमारे पंचायत आज तक चल रही है मथुरा में, और वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं, वो थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। जरा चलते हैं मथुरा, पंचायत आज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत स्वागत यूपी पंचायत में। महज 50 दिन पुरानी बात है, वो यूपी पंचायत में लखनऊ में मौजूद रहे और वहां से उन्होंने जनता का संबोधन किया और आज एक बार फिर इस मंच से वो आज तक के तमाम दर्शकों और यहां पर मौजूद जो लोग हैं मथुरा वृंदावन में उन सब के सामने अपना संबोधन रखेंगे। लेकिन तीन चार बड़ी बातें हैं जिनकी चर्चा हम पहले करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे लंबा कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश में अब तक का हो चुका है। सत्रह में बने, 22 में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और अब सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने इस बार 27 का रहेगा। बहुत सारी बातें हैं क्योंकि यह पहला चुनाव है जो जेंजी आंदोलन के बाद देश में होने वाला है, तो उस पर क्या सोचते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये जानेंगे। ये मथुरा की धरती है, ये कृष्ण बिहारी की धरती है और आजकल मुख्यमंत्री जी जहां पर जा रहे हैं संबोधन में वो वृंदावन कृष्ण बिहारी की जय के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो कई जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई अयोध्या अगर झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो मथुरा जन्म स्थान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्या सोच है ये वो इस मंच से जानना चाहेंगे। विजय की पाल की, जय कन्हैया लाल की, क्या इस सोच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल पड़े हैं। इसी के साथ साथ जिन मुद्दों पर हम लोग चर्चा चाहेंगे वो है अयोध्या का मुद्दा, क्योंकि उसके ध्वजवाहक के तौर पर लंबे वक्त से मुख्यमंत्री जी लगे रहे। मंदिर बनने के बाद अनेकों बार 70-80 बार वो वहां पर गए। चढ़ावा चोरी का मुद्दा, क्या राजनीतिक रूप से चुनावी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है या फिर नए सीईओ के गठन के बाद, नई टीम बनने के बाद एक बार फिर से भक्तों का भरोसा वो जीत पाएंगे।

लेकिन इसी के साथ साथ आपने देखा होगा आज दिन भर कांग्रेस के कई नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े एक आर्मी के पूर्व अधिकारी को आपने सीईओ के पद पर क्यों नियुक्त कर दिया। तो इस पर मुख्यमंत्री जी क्या सोचते हैं वो जानना दिलचस्प रहेगा। जेन जी, जेन अल्फा, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने ये चैलेंज होगा कि वो कैसे उनकी भावनाओं को क्लॉकेट करेंगे, क्योंकि अब उनकी भाषा अलग है, इंस्टाग्राम की पीढ़ी से आपको जुड़ना है, तो उसमें आपकी क्या सोच है। एक दिलचस्प सवाल मेरे मन में भी है जो मैं चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी बनाए कि चढ़ावा चोरी या जेंजी आंदोलन, उनकी नजर में कौन सा रियल चैलेंज है जो उनके लिए चुनावी तौर पर 27 के पहले आने वाला है। हमने दर्शकों को भी दिखाया कई जगहों पर जेन अल्फा वीडियोस भी बना रहे हैं, वो मिड डे मील की मुख्यमंत्री जी बहुत चर्चा कर रहे हैं कि उसका स्तर और बेहतर होना चाहिए। पेपर लीक, रोजगार, इन सब पर क्या है आपकी योजना और युवाओं को कैसे आप अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं अलग है और उसको वो अलग अलग जगहों पर सामने आकर दिखा भी चुके हैं। एक और रीत आजकल मुख्यमंत्री जी चल रही है जिसमें महिलाओं का वोट निर्णायक हो रहा है, तो बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद क्या यूपी में भी आपकी कोई योजना है, क्योंकि अब अखिलेश जी भी अनाउंस कर रहे हैं पैसों की बात, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या करने वाले हैं। कुछ ऐसी खबर आई कि 30+10+10 वाली बात आने वाली है, तो महिलाओं को लेकर आप क्या सोच रहे हैं उस पर चर्चा होगी। अब आपने सैफई सिंडिकेट और रामपुर सिंडिकेट का जिक्र किया है और आप अपना कानून व्यवस्था का पूरा एजेंडा रखते हैं, तो क्या आज भी समाजवादी पार्टी की पुरानी सरकार और उसके तौर तरीकों पर आप जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे। जो अगला मुद्दा मेरी नजर में है जिस पर हम लोग उम्मीद रखते हैं कि मुख्यमंत्री जी आज बोलेंगे, वो ये है कि पिछली बार आप बुलडोजर बाबा, हम लोगों ने देखा जिस दिन रिजल्ट आया तो बुलडोजर के मिनी एचर ले लेके लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। माफियाओं को हमारे इंटरव्यू में आपने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में नहीं मिलाएंगे तो क्या उनकी आरती बताएंगे, क्या वही सख्त रूप आपका फिर से देखने को मिलेगा और क्या वही आपके चुनाव का नैरेटिव बनेगा। इसी के साथ साथ जो अगला मुद्दा हम लोग मान रहे हैं कि बड़ा होगा वो ये है कि 2017 और 2022 ये चुनाव अलग था, 2024 में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं, वो एक नई ऊर्जा के साथ आ रहे हैं, उनको आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं। इन तमाम मुद्दों पर आपका रिपोर्ट कार्ड, आपका जनता से संवाद सुनने के लिए हम सब आतुर हैं। तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत कीजिए। हमने शीर्षक मुख्यमंत्री जी बड़ा दिलचस्प रखा है, मथुरा की धरती है योगी जी की चुनावी लीला। बहुत बहुत स्वागत है आपका, तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए।

राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। पंचायत आज तक ब्रज की इस पावन धरा पर आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा आयोजित पंचायत आज तक के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में हमारे मंत्रीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, न्यूज डायरेक्टर आज तक श्री सुप्रिय प्रसाद जी, मैनेजिंग एडिटिंग सुश्री श्वेता सिंह जी, मैनेजिंग एडिटर सुश्री अंजना ओम कश्यप जी, आज तक और इंडिया

टुडे ग्रुप से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण, मैं सबसे पहले आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप को पंचायत आज तक के इस आयोजन को कान्हा की इस धरा पर करने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं। पूरी ब्रजभूमि इस समय कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव की तैयारी में लगा हुआ है। एक उत्सव है, चारों ओर आनंद का माहौल है, हर घर में लोगों के यहां श्रद्धालुजनों के घरों में आनंद जैसा उत्साह का वातावरण है और उस उत्साहपूर्ण माहौल में पंचायत आज तक ने इसी वृंदावन की धरती पर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। मित्रों, मानव जीवन की वास्तविकता क्या है, और जीवन कैसे जिया जाना चाहिए, श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले इसी पावन धरा पर जन्म लेकर के जीवन के उन रहस्यों को हम सबके सामने उद्घाटित करके रखा है। और जीवन का उद्देश्य क्या है? सत्य है, धर्म है, लेकिन इनका मार्ग कर्तव्य से होकर के जाता है, या प्रेरणा इसी धरा की देन है। और उसी धरा पर आज हम सबको पंचायत आज तक के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आज तक इंडिया टुडे ग्रुप की को इसके लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न हम सबके सामने आता है, क्या आज उत्तर प्रदेश में जो उत्साह का वातावरण है, उत्सव का वातावरण है, आप ब्रजभूमि में ही देखें, मथुरा वृंदावन में जन्मोत्सव का माहौल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, बरसाना में रंगोत्सव होली के अवसर पर, ब्रजरज महोत्सव यहां के उत्सवपूर्ण वातावरण के साथ ही यहां की पंचकोशी परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा और 84 कोसी परिक्रमा, ये उत्सवपूर्ण वातावरण, इसका जो पोटेंशियल है, इसकी जो संभावनाएं हैं और इसकी जो चुनौतियां हैं, क्या 2017 के पहले संभव था? आज हम जहां खड़े हैं, याद करिए, ये वही धरा है जहां पर जून 2016 में जवाहर बाग की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी। उनतीस लोग मारे गए थे, उपद्रव का तांडव था,

चारों ओर अराजकता थी। यूपी पुलिस के भी अधिकारी मारे गए थे। और उस धरती पर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ? क्या आज वहां पर एक

एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जहां पहले हजारों की संख्या में श्रद्धालु आने को तैयार नहीं था। उस धरती पर आज के दिन पर गत वर्ष अकेले इस ब्रजभूमि पे 11 करोड़ श्रद्धालु पर्यटक के रूप में आया था। और मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो गत वर्ष उत्तर प्रदेश में 2025 में 156 करोड़ श्रद्धालुओं ने आकर के उत्तर प्रदेश के अंदर आस्था को आर्थिकी के साथ जोड़ने का एक नया अनुभव देश और दुनिया को करवाया था। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन उसी बदलाव का परिणाम है जो चुनौती से भागता नहीं, उन चुनौतियों में संभावनाएं देखता है और उन संभावनाओं को समाधान तक पहुंचा करके सफलता के नित नए प्रतिमान स्थापित करता है। जो लोग चुनौती को समस्या मानते थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश को कर्फ्यू ग्रस्त बनाया था, दंगा ग्रस्त बनाया था, अराजक बनाया था, उपद्रव प्रदेश में बदल दिया था। जिन लोगों ने चुनौती को एक संभावना के रूप में लिया, उन्होंने उन संभावनाओं में सफलता के नित नए प्रतिमान स्थापित भी किए और वही प्रगति आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबको दिखाई दे रही है। मैं मानता हूं किसी भी क्षेत्र में हम आप जाएंगे, यूपी के अंदर किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, पिछली सरकारों ने जनसंख्या को एक चुनौती माना, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य वैसे ही नहीं बना है, क्योंकि यहां जनसंख्या सबसे बड़ी थी, कृषि का क्षेत्रफल सबसे बड़ा था, आबादी बड़ी है तो युवा बड़े होंगे, सबसे ज्यादा युवा आबादी यूपी के पास, इतिहास और संस्कृति की सबसे समृद्ध परंपरा यूपी के पास, धार्मिक और ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े हुए समृद्ध जो पर्यटन के केंद्र हैं उसकी असाधारण क्षमता भी उत्तर प्रदेश के पास, और देश का सबसे बड़ा बाजार होने के साथ साथ एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल भी उत्तर प्रदेश के पास मौजूद था। हमारे पास वह सब कुछ था जो उत्तर प्रदेश को देश के अंदर केवल जनसंख्या की दृष्टि से ही नंबर एक बनाने की सामर्थ्य नहीं रखता था, हर दृष्टि से वह यूपी को नंबर एक पर करने की सामर्थ्य रखता था। लेकिन जिन लोगों ने इस चुनौती को समस्या माना, उन्होंने उत्तर प्रदेश की दुर्गति कर दी, और जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की इस चुनौती में संभावनाएं देखी, उन्होंने सफलता के नित नए प्रतिमान स्थापित किए। हम लोगों ने उन संभावनाओं को आज एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। आज हम मानते हैं कि यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी, यह हमारे लिए एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में उपयोगी है। हमारे पास युवा शक्ति है, युवा की इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ना, उस स्किलिंग को एम्प्लॉयमेंट के

साथ जोड़ना है, स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ उसको जोड़ना, और पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने सफलतापूर्वक उसे आगे बढ़ाने का काम किया। देश की सबसे उर्वरा भूमि यूपी के पास थी, पिछली सरकारें अन्नदाता किसानों को एक चुनौती मानती थी और एक समस्या मानती थी, परिणाम था किसान आत्महत्या करता था, परिणाम था किसान के सामने प्लान करने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं बचा था, किसान हताश और निराश था। हमने उसे समस्या नहीं माना, हमने अन्नदाता किसान को, उसकी समस्या को समझा, उसका समाधान निकालने का प्रयास किया। आज आप कह सकते हैं कि यूपी के अंदर कृषि विकास की दर 8% से बढ़कर के 21% हो गई है, और भारत की कुल कृषि लैंड जो योग्य भूमि है उनमें से यूपी का शेयर केवल 11% है, लेकिन उस 11% कृषि योग्य भूमि में उत्तर प्रदेश आज के दिन पे 21% खाद्यान्न उत्पादन करके देश का पेट भरने का काम भी कर रहा है। इसके लिए प्रयास प्रारंभ करने पड़े थे। दशकों से लंबी सिंचाई की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया, किसानों को आधुनिकता के साथ जोड़ा गया, शासन की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का काम हुआ, उनकी उपज के लिए बाजार तक पहुंचाने के लिए कनेक्टिविटी दी, और जब सरकार और किसान एक साथ मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाए तो उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों ने उत्तर प्रदेश की कृषि उपज को 8% से बढ़ाकर के 18% बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। आपके सामने मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा, 2007 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर 29 चीनी मिलें बंद हुई। इस दौरान जो गन्ना किसान थे उनके गन्ना मूल्य का भुगतान भी अलग अलग चीनी मिलों में बाकी थे, चीनी उद्योग जर्जर स्थिति में था। 17 में जब सरकार आई थी हमारे सामने सबसे ज्वलंत मुद्दा गन्ना किसानों का भी था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज के दिन पे हम उत्तर प्रदेश के अंदर 122 चीनी मिलें चला रहे हैं। कोई चीनी मिलें पिछले 9.5 वर्ष के अंदर कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई। हम अब तक 3,26,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में कर चुके हैं, और आज के दिन पे गन्ना किसानों का जो प्रति क्विंटल का दाम प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध करवा रही है वो 400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से करवा रही है। 122 चीनी मिलों में से 110 चीनी मिलें ऐसी हैं जो चौथे दिन गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही। अब उसमें 4 साल नहीं लग रहे, 9 साल नहीं लग रहे, हर चौथे दिन उनका गन्ना मूल्य का भुगतान उनके खाते में होता है। 10 चीनी मिलें ऐसी हैं जिनमें समस्याएं हैं, उनका भी समाधान निकाला जा रहा है। लेकिन मैं मानता हूं जहां चाह वहां राह, अगर सरकार ठान ले कि हमें ये करना है तो उस कार्य को होने में देर नहीं लगती है। और यही पिछले 9.5 वर्ष के अंदर यूपी के अंदर हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी समाज हो, कोई भी सोसाइटी हो, अगर वह अपने कारीगर और हस्तशिल्पियों का सम्मान नहीं कर सकता है तो इसका मतलब उसने वहां के उद्यमिता को,
हतोत्साहित करके विकास को एक प्रकार से वहां की व्यवस्था कुंद कर रही है। उत्तर प्रदेश के पास पहले से ही इसकी व्यापक संभावनाएं थी। उत्तर प्रदेश इस देश से अत्यंत समृद्ध था। '17 में जब हम लोग आए, हमारे सामने चुनौती थी, क्या होगा। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए हमारे जो क्षेत्र हैं, उनमें से ज्यादातर कारीगर, ज्यादातर हस्तशिल्पी, ज्यादातर उद्यमी पलायन कर चुके थे, हताश और निराश बैठे थे। कहीं मार्केट का भाव, कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भय, कहीं सरकार की उदासीनता, कहीं सुविधाओं का और कनेक्टिविटी का अभाव। उस हताशा और निराशा को देख करके हमें भी लगता था कि क्या हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। और उसी समय जब हम लोगों ने इसका सर्वे करवाया था, तब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के एमएसएमई उद्यम को एक पहचान देने का काम किया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यहीं से प्रारंभ होता है। फिरोजाबाद का ग्लास, मुरादाबाद का ब्रास, अलीगढ़ का हार्डवेयर, लखनऊ की चिकनकारी, मेरठ का स्पोर्ट्स आइटम, सहारनपुर की लकड़ी की कारीगरी, भदोही का कालीन, वाराणसी की रेशम की साड़ी, गोरखपुर का टेराकोटा, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, 57 जनपदों में जब हमने इसका सर्वे करवाया तो यूनिक प्रोडक्ट हमें मिला था। तो मैंने उस समय के अपने अधिकारियों से कहा, मैंने कहा इसका एक सेल गठित करो, एक टीम इसके साथ लगाओ और हर जिले की एक प्रोडक्ट को, जो शेष 18 जनपद हैं, इनको भी एक पहचान के साथ जोड़ो और फिर 75 जनपदों के लिए एक यूनिक प्रोडक्ट हमने दिया। जैसे मथुरा में हम हैं तो मथुरा में ठाकुर जी की पोशाक को हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का हिस्सा बनाया था। और मुझे देख करके प्रसन्नता होती है। अभी मैं इससे पहले एक कार्यक्रम में था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि कैसे यहां की पोशाक को आज देश और दुनिया के अंदर एक पहचान मिली है। और हमने यहां के केवल ठाकुर जी की पोशाक को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में नहीं लिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बाद अब हमारी सरकार ने काम शुरू किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन में। और वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन में मथुरा के लिए हमने दिया है मथुरा का पेड़ा। राधे राधे। मैं देख रहा था अभी एग्जीबिशन को, मैं देख रहा था, उसमें सारी चीजें मुझे वहां दिखाई दे रही थी और उन बहनों के चेहरे पर खुशी मैं देख रहा था जो ठाकुर जी की पोशाक के साथ उस प्रदर्शनी में मौजूद थी। मैं उनसे पूछ रहा था कितने का आप कमाई कर लेते हैं। कोई महिला स्वयं से भी समूह कहती थी कि हम 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, कोई कहती थी कि हमारा 10 करोड़ का टर्नओवर है। कोई कल्पना करता था 17 के पहले, कोई इसकी कल्पना करता था। लेकिन अब यूपी के अंदर ये सब संभव है। सरकार ने उनके लिए बाजार उपलब्ध करवाया, सरकार ने उन्हें टैक्स से बचाया। जब सरकार संवेदनशील होती है तो अपने कारीगरों को उद्यमी बनाने में उसे देर नहीं लगती।
हमने उनके लिए बाजार के द्वार खोले, उनके उद्यम तक पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी दी, उनके लिए विद्युत की आपूर्ति करवाई, उनको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, उनको पैकेजिंग के साथ जोड़ा, उनको डिजाइन के साथ जोड़ा। आज परिणाम है कि यूपी का प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पे दुनिया में छा गया है, चारों ओर इसकी गूंज है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष 25-26 में हमने 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट भी किया है यूपी से। मैं नेशनल मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा हूं। इतने का एक्सपोर्ट अकेले यूपी ने किया है एमएसएमई से। मित्रों, यूपी के पास वह सब कुछ है, जिसे सम्मान और स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करके देश के अंदर एक विशिष्ट पहचान दिलाता है। यूपी को अचानक वैसे ही भारत का हृदय स्थल नहीं कहा गया, यूपी के पास उस प्रकार की संभावनाएं थी, पहले भी थी, आज भी है। भारत की विरासत से जुड़े हुए सभी स्थल, अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी तीर्थ स्थल, सुख तीर्थ, बौद्ध तीर्थ स्थल, जैन तीर्थंकरों से जुड़े हुए सभी स्थल, ये सब तो यूपी के पास है। दुनिया के अंदर सबसे बड़े, सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल बौद्ध तीर्थ स्थल यूपी के पास। भगवान बुद्ध ने अपना बचपन जहां व्यतीत किया था वह कपिलवस्तु यूपी में। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जिस धरती पर दिया था वह सारनाथ यूपी में। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास जिस स्थल पर व्यतीत किए थे वह श्रावस्ती यूपी में। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जिस पावन भूमि पर लिया था वह पवित्र भूमि कुशीनगर भी यूपी में। कौसाम्बी, ये भी बुद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। संकिसा, ये भी यूपी के अंदर। 24 जैन तीर्थंकरों में सर्वाधिक जैन तीर्थंकर यूपी के अंदर पैदा हुए, भगवान ऋषभ देव से लेकर के। एक लंबी परंपरा है जिनकी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश भारत की सनातन आस्था का एक प्रदेश, जिस प्रदेश ने भारत की विरासत को आगे तो बढ़ाया ही, लेकिन ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश ने देश की स्वाधीनता आंदोलन में भी एक नई पहचान देश को दी थी। याद रखिए, उत्तर प्रदेश के बलिया से, बलिया में जन्म लिए मंगल पांडे ने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की चिंगारी जलाने का काम बैरकपुर में किया था। 1857 में उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर में नाना साहब के नेतृत्व में, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में ये लड़ाई आगे बढ़ती रही। उत्तर प्रदेश में ही गोरखपुर में चोरी चोरा, लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन जैसी इतिहास प्रसिद्ध वे घटनाएं होती हैं जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम भी किया था। ये वही धरती है।
लेकिन उस धरती के सामने आजादी के बाद जो संभावनाएं आगे बढ़ने के लिए होनी चाहिए थी, उन संभावनाओं को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तिलांजलि देकर के कुंद किया गया, उन्हें अपमानित किया गया। यहां के पोटेंशियल को परफॉर्मेंस के रूप में बदलने की बजाय उसे प्लानवादी बनाने का प्रयास किया गया। दुष्परिणाम क्या था? दशकों तक यूपी के सामने बीमारू राज्य के रूप में अपनी पहचान को छुपाने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। यहां का युवा अपनी पहचान को छुपाता था, यहां का व्यापारी अपनी पहचान को छुपाता था, यहां का हर नागरिक जब यूपी के बाहर जाता था तो अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होता था। गलती उस युवा की नहीं थी, गलती उस बेटी की नहीं थी, गलती उस व्यापारी और उस उद्यमी की नहीं थी। बीमार यूपी नहीं था, यूपी में तो सब कुछ था। यहां संभावनाएं थी, यहां विरासत थी, दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि थी, सबसे अच्छा जल संसाधन था, लेकिन योग्य नेतृत्व का अभाव था। बीमारू उत्तर प्रदेश नहीं था, बीमारू मानसिकता थी जो 2017 के पहले यूपी में शासन कर रही थी। वह बीमारू थी, वह बीमार थी, इसलिए उसने यूपी को बीमारू बना दिया। उनकी नीति बीमार थी, उनके क्रियाकलाप बीमार थे, इसलिए यूपी बीमारू बना। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यूपी अब बीमारू नहीं है। यूपी भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में आज तेजी के साथ आगे बढ़ा है। हमने यूपी को बॉटम थ्री से टॉप थ्री इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। मैं मानता हूं इस बात को, यह डबल इंजन सरकार की ताकत है, जिसे हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर जिस यूपी के बारे में ये चर्चाएं चला करती थी कि यूपी में निवेश कौन करेगा, वहां सुरक्षा नहीं, और स्वाभाविक निवेश की पहली शर्त है सुरक्षा। निवेश की पहली शर्त होती है सरकार की नीति क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है। निवेश की पहली शर्त होती है किसे सिंगल विंडो की सुविधा चाहिए, एक फाइल 56 टेबल में घूम करके नहीं आएगी, एक सिंगल विंडो की सुविधा उसे चाहिए। दुर्भाग्य से 2017 तक इस सुविधा यूपी के अंदर लोग पैदा नहीं कर पाए। यूपी का कल्चर किस रूप में इन्होंने खड़ा किया, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहां माफियाओं को, दंगाइयों को, पेशेवर अपराधियों को पाला, उन्हें प्रोत्साहित किया, उनके सामने नतमस्तक हुआ करते थे। वही लोग यूपी के बीमारूपन के कारण भी थे, यूपी के निवेश के विरोध, यूपी में निवेश के विरोधी भी थे, यूपी में पर्यटन के विरोधी भी थे, यूपी में महिला सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए थे, और उत्तर प्रदेश के युवाओं की नौकरी और युवाओं के रोजगार पर भी सबसे बड़ी डकैती डालने का काम ये वही लोग करते थे, ये वही लोग करते थे। 2017 के पहले यूपी के अंदर कोई नौकरी निकलती थी, कोई भी नौकरी निकलती थी, विज्ञापन जारी हुआ तो खेल प्रारंभ हो जाता था। सिपाही सिंडिकेट ये महाभारत के रिश्तों का सबसे अच्छा उदाहरण है।
महाभारत के सारे रिश्ते इस परिवार में मिल जाएंगे, सिंडिकेट के अंदर मिल जाएंगे। वहां शकुनी भी हैं, वहां पर वे सभी पात्र हैं, कोई दुर्योधन है, कोई दुशासन है, वे सभी पात्र मिल जाएंगे। और ये सभी पात्र मिलकर के यूपी के अंदर फिर युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ कर देते थे। हर युवा चिंतित होता था, पहले परीक्षा के, पहले विज्ञापन के बारे में, फिर परीक्षा के बारे में, फिर परिणाम के बारे में, फिर पोस्टिंग के बारे में, और फिर आगे जो खेल होता था वह भी यूपी के अंदर हम सब उस रूप में देखते आए हैं। मित्रों, 2017 के पहले अगर उन्होंने ईमानदारी के साथ यूपी के अंदर उन नौजवानों के लिए उस प्रकार के अवसर दिए होते, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां यूपी के अंदर कभी नहीं आती। स्कूल कॉलेजेस की स्थिति क्या थी? उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार का माहौल हो चुका था? बेसिक शिक्षा में जर्जर भवन स्कूल के, विद्यालय का भवन है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है तो छात्र भी नहीं होते थे। यूपी के अंदर बालक बालिकाओं के लिए ड्रॉप आउट रेट 19 से 20 फीसदी था, ये केवल स्कूली शिक्षा में। 17 में जब मैं आया तो मैंने पूछा, मैंने कभी इतना ज्यादा बच्चे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं, क्या कारण है? बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसका कारण है कि लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। क्यों नहीं भेजना चाहते? कहा साहब, उनकी प्रायोरिटी नहीं कि बेटी स्कूल पढ़े या बच्चे स्कूल पढ़े। मैंने कहा ये कोई कारण नहीं होगा। मैंने प्रदेश का दौरा किया, पूरे प्रदेश भर का दौरा करने के बाद मैं इस बात को मानता था कि बेसिक शिक्षा परिषद के उन स्कूलों में जो बच्चे आते भी थे, नंगे पैर आते थे, फटे हुए कपड़े पहन करके आने के लिए मजबूर थे, नंगे पैर चलते थे, स्कूल में संसाधन नहीं थे, बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट अलग अलग नहीं थे, पेयजल की सुविधा नहीं थी, अपने घर से ही टाट लेकर के आते थे, उसमें बैठने के लिए मजबूर होते थे। तो मैंने 2017 में ऑपरेशन कायाकल्प के नाम पर एक अभियान चलाया और मैंने हर जनप्रतिनिधि से इस बारे में अनुरोध किया कि आप एक एक विद्यालय को गोद लो। पुरातन छात्रों से भी मैंने अपील की कि आप भी एक एक संस्था को गोद लो। सभी अधिकारियों से मैंने कहा एक एक विद्यालय गोद लो। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,46,000 जो कुल बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं उनमें से 1,36,000 का हमने ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से उनके क्लासरूम की व्यवस्था दुरुस्त की, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट दिए, पेयजल की सुविधा दी, डिजिटल लेबोरेटरी दी, स्मार्ट क्लास दिए, फर्नीचर उपलब्ध करवाए। और फिर मैंने शासन की ओर से कहा कि भाई हर बच्चे को हम 2 यूनिफॉर्म देंगे, बैग देंगे, बुक्स देंगे, शूज देंगे, सॉक्स देंगे और स्वेटर भी उपलब्ध करवाएंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज के दिन पे हमारी सरकार 1,60,00,000 बच्चों को सुविधा उपलब्ध करवा रही है। ड्रॉप आउट रेट जो 19 से 20 फीसदी था, मैंने जब इसका सर्वे करवाया या एक टूल के माध्यम से फिर इसकी एनालिसिस करवाई और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब मैंने पूछा कि आखिर क्या विद्यालय दूर होने के कारण क्या ये बच्चे स्कूल नहीं आते थे या स्कूल छोड़ देते थे,
बहुत सारे कुछ और भी कारण थे, कहीं शिक्षक नहीं थे, कहीं सुविधा नहीं थी, कहीं, लेकिन उनमें से एक कारण यह भी निकला था कि बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट अलग अलग न होने और पेयजल की सुविधा न होने के कारण खासतौर पर बेटियां स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती थी। आज मुझे प्रसन्नता है कि ड्रॉप आउट रेट को हम 19-20 फीसदी से घटा करके 3% से नीचे लाने में हमने सफलता प्राप्त की है। हमने स्कूल कॉलेज कोई स्कूल बंद नहीं किया, हमने इसको अपग्रेड किया है। जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर, कस्तूरबा गांधी विद्यालय 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक चलते थे, गरीब परिवार की बेटियों को वहां पढ़ाया जाता था। कुल 446 विकास खंडों में व्यवस्था चल रही थी। हमने कहा 8वीं के बाद ये बेटियां क्या करती हैं, तो बताया गया कि ज्यादातर बालिकाएं स्कूल नहीं जा पाती हैं। तो हमने कहा अगर इसी को हम 12वीं तक कर लें, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा शिक्षक देने पड़ेंगे, शासन से कुछ और सुविधाएं मिल जाएंगी, कम से कम ये बच्चियां पढ़ तो लेंगी। दूसरा, यूपी में 825 विकास खंड हैं, इन 825 विकास खंडों में क्यों नहीं ये विद्यालय बन जाते हैं। पैसा हमने दिया और मुझे प्रसन्नता है कि सभी 825 विकास खंडों के लिए हम लोगों ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ की, उसको प्रारंभ किया और उसे 8वीं से 12वीं तक किया। ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोलती है कि स्कूल बंद हो गए, उसी बात को कहते हैं, उनको ये पता ही नहीं कि वो बंद नहीं हुए बल्कि उसको अपग्रेड किया गया है। अब उसको 6ठी से लेकर 12वीं तक क्या किया गया है, न कि उसको, यानी उनको लगता है कि 8वीं तक ही रहना चाहिए था, 8वीं तक ही रहना चाहिए था। हमने कहा भी 8वीं तक का नहीं, उसको 12वीं तक ही नहीं करेंगे, अब हम एक नया मॉडल लेके आए हैं। वह मॉडल है एक पीएम श्री विद्यालय का और दूसरा सीएम कंपोजिट विद्यालय का। सीएम कंपोजिट विद्यालय में 1ली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के इंटीग्रेटेड कैंपस हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। एक ही कैंपस में लगभग 15 एकड़ क्षेत्रफल में सभी प्रकार की सुविधाएं बच्चों के लिए होंगी, जहां कम से कम 1500 से 2000 बच्चे होंगे और कम से कम 100 से लेके 120 शिक्षक भी होंगे जो अलग अलग डिसिप्लिन से जुड़े हुए होंगे और वे उन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पहली बार हुआ है, मॉडल देखना हो शिक्षा का तो पीएम श्री विद्यालयों को देखें, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को देखें, सीएम कंपोजिट विद्यालय को देखें, और श्रमिकों के बच्चे भी, मजदूरों के बच्चे भी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के विद्यालयों में अध्ययन कर सकते हैं। अटल आवासीय विद्यालयों में जाकर के देखें कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अगर एक कांग्रेस और सपाई कभी देख पाएंगे तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे कि वास्तव में ये क्या यूपी के अंदर हो रहा है। जिन्होंने अच्छा किया नहीं, वे अच्छा देख भी नहीं सकते, और यह इनकी सबसे बड़ी समस्या है, इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इन लोगों ने 17 के पहले यूपी के अंदर जो पाषाण युग लेके आए थे, उसी पाषाण युग की कल्पना को लेकर के आज भी ये क्या बात करते हैं। आपने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के कुछ वचनों को सुना होगा, जो उनके संस्कार के अनुरूप ही होता है। उनके मुंह से चवन्नी और कुत्ता जैसे शब्द निकले थे। दुनिया एजुकेशन को बेहतर बनाने में रुचि ले रही है, स्किलिंग को नया आयाम दे रही है, याई डिपटेक मेटेक इन पे चर्चा कर रही है, और ये लोग अपनी ही पार्टी के लोगों को कुत्ता और बिल्ली बना रहे हैं। लोकतंत्र का इससे बड़ा उपहास मित्रों दूसरा नहीं हो सकता है।
लोकतंत्र में जनता को हम जनार्दन कहते हैं और समाजवादी पार्टी अपने ही नेताओं को कुत्ता बिल्ली बना करके किस रूप में लोकतंत्र का उपहास उड़ा रही है, कैसे एक केंद्रीय मंत्री के बारे में समाजवादी पार्टी के मुखिया किस प्रकार की हल्की बातें करते हैं, या इनकी उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो उन लोगों ने 17 के पहले यूपी के अंदर किया था। और मेरा मानना है यही वो मानसिकता है जो इतिहास के शहीदों को और बलिदानियों को कभी सम्मान नहीं दे पाई। इन लोगों ने, मुझे याद है, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैं एक बार दिल्ली के लिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बैठा था। उस समय समाजवादी पार्टी के शिक्षा मंत्री अचानक आ गए, तो हम लोग एक ही, जो उनका रिटायरिंग रूम था, उसी में बैठे थे। तो उसी दिन वे गोरखपुर के एक कार्यक्रम में थे। गोरखपुर आप जानते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बलिदानी भूमि भी है। गोरखपुर में ही गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई थी। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पे एक पार्क का उद्घाटन था, तो पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम में उनको बुलाया गया था, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री। और जब उनको भाषण देने के लिए वे गए, तो उन्होंने मंच से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम नहीं लिया। उन्होंने इस बात को कहा कि साहब, मुझे बिस्मिल्ला साहब के जन्मदिन पर आकर के खुशी हुई। मंच से एक सज्जन ने कहा कि भाई, ये बिस्मिल्ला साहब नहीं है, ये सहनाई वादक के उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब नहीं है भाई, ये तो क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं। कहा कि तुम भाजपाई हो इसलिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ले रहे। ये उस समय के शिक्षा मंत्री बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के। तो जिस व्यक्ति को क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सहनाई वादन के उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब के नाम में ही जिनमें अंतर महसूस न होता हो, वे उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा को कहां ले गए होंगे, आप सहज कल्पना कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने नकल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हर नौकरी में सेंध लगाना भी उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको उन्होंने अपने कालखंड के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया था, और इसी को कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। जो उस समय जैसी व्यवस्था थी वैसे चल रहा था, चारों ओर अराजकता थी। योग्यता से ज्यादा पर्ची को महत्व दिया जाता था, विवेक से ज्यादा उस समय प्रदेश के अंदर फतवा को महत्व दिया जाता था, और भारत की विरासत की बजाय उस समय एक परिवार की चाटुकारिता को महत्व दिया जाता था। आज मैं आप सबको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश उस दौर से निकल चुका है, और आज मैं कह सकता हूं 9.5 वर्ष में आपने देखा होगा, अब यहां पे पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं है। ये जो होटल बना है ना, ये होटल पॉलिसी पैरालिसिस का ही शिकार हुआ था। इस क्षेत्र का पहला 5-स्टार होटल है। मैं यहां ब्रजतीर्थ विकास परिषद का गठन होने के बाद जब पहली बार आया था, ढेर सारे प्रस्ताव यहां पेंडिंग पड़े हुए थे। मैंने कहा, अभी क्यों पेंडिंग पड़े हुए हैं? ठीक है साहब, मैंने कहा ठीक है साहब, नहीं 3 दिन के अंदर मुझे निर्णय करके बताओ, और नहीं तो बोरिया बिस्तर बांधो। एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के दायरे में कार्य करो। और मुझे प्रसन्नता है विवांता के नाम पर यह ताज ग्रुप का एक बेहतरीन 5-स्टार होटल आज यहां श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ है।
मित्रों, निर्णय लेने की सामर्थ्य निवेश के लिए आज 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हम लोगों ने दी है। कोई पिक एंड चूज नहीं होगा, ये मेरा है, ये पराया है, ये नहीं होगा, सब हमारे हैं। उसके अनुरूप हमने पॉलिसी बना दी, पॉलिसी का जो पालन कर रहा है आप निवेश करिए, गवर्नमेंट की इंसेंटिव को लीजिए, कहीं कोई भेदभाव नहीं, सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ डीबीटी के माध्यम से, ये सारी सुविधा यूपी के अंदर मौजूद है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी है, स्किलिंग के लिए भी है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी है। आप सोचो 9.5 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं, देश के अंदर किसी राज्य में इतनी नौकरी कभी नहीं, और यहां पे अभी सुश्री अंजना ओम कश्यप जी जो बात कह रही थी कि पर्चा लीक और पर्ची लीक, जो लोग पर्ची लीक कराते थे वही पर्चा लीक भी कराते थे। अब यूपी में पर्चा लीक नहीं होता है क्योंकि पर्चा लीक करने वाले को मालूम है कि तो जेल तो जाएगा ही जाएगा, बाप दादों की पूरी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवा करके सड़कों पे कटोरा लेकर के घूमने के लिए मजबूर हो जाएगा। हमने 2020 में ही उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कानून बनाया है कि जो भी पर्चा लीक के इस अनैतिक कार्यों में लिप्त होगा उसको आजन्म कारावास के लिए जेल के अंदर सड़ाएंगे, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे, और यह कार्रवाई यूपी के अंदर हम प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। तब हम यूपी के अंदर बिना भेदभाव के आरक्षण की नीति को पालन करते हुए 9.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में हम लोग सफल हुए हैं। यही कारण है जब सरकार की नीयत ठीक होती है, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल होता है, हमने 9.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश का जो एक वातावरण दिया, 65 लाख नौजवानों को इसके माध्यम से उन्हीं के जनपद या उसी के प्रदेश में हमने उसे नौकरी दी है, और एमएसएमई के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हमने यूपी के अंदर 3.25 करोड़ से अधिक लोगों को प्रदेश के अंदर एमएसएमई उद्योग के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। जिले 25 हैं, लेकिन आज के दिन पे मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी के अंदर आप 79 यहां के प्रोडक्ट हैं जिसको हम जीआई टैगिंग कर चुके हैं, यानी वह ग्लोबल मार्केट के लिए अब वह अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है, और यह उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के अंदर इन सभी चीजों में सफलता प्राप्त की है। आज मैं मान सकता हूं कि यूपी के लिए बेहतरीन अवसर है हमारे यहां नौजवानों के लिए। हर जनपद में हम एक सरदार वल्लभ भाई पटेल स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन की स्थापना के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाए हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D प्रिंटिंग है, रोबोटिक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इन सभी पे हमारे हर जनपद में इसकी ट्रेनिंग की बेहतरीन सुविधा, हमारी वोकेशनल एजुकेशन में भी और टेक्निकल एजुकेशन में भी हम लोगों ने उपलब्ध करवाई है। अटल टिकरिंग लैब के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर भी हमने अपने छात्रों के लिए यह सुविधा माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में उसको एक आज की इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का उसे कार्य किया है। यह नया भारत का नया यूपी है, यह अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, तो आधुनिक विकास को भी अपने साथ पूरी मजबूती के साथ लेकर के चलता है। अब यूपी बीमारू नहीं है, अब वो यूपी नहीं है जिसकी पहचान गड्ढा युक्त सड़कों से होती थी, वह यूपी नहीं है
जिस यूपी की पहचान होती थी कि जहां से सायंकाल होते ही अंधकार प्रारंभ हो जाए वो यूपी का सीमा है। अब यूपी की पहचान देश के अंदर एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क किसी राज्य के पास है तो वो यूपी है। 60% एक्सप्रेसवे हमारे पास हैं यूपी के पास। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, मेट्रो की सुविधा सबसे ज्यादा सिटी के अंदर चलने वाली है वो यूपी के अंदर। 7 सिटी में वर्तमान में हम मेट्रो की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा संचालित कर रहे हैं। भारत की पहली रैपिड रेल यूपी में, भारत की पहली इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में यूपी से प्रारंभ हुआ। एयर कनेक्टिविटी में देश के अंदर सबसे बड़ा एयरपोर्ट का नेटवर्क किसी के पास है वो यूपी के पास। 17 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ आज यूपी इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर मात्र आवागमन के लिए माध्यम नहीं है, ये केवल हमारी गति को तेज करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी गति के साथ साथ आर्थिक प्रगति को भी एक नए आयाम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य इस अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोगों ने यूपी के अंदर किया है। और मित्रों, उन्हीं सब बातों को लेकर के आज जब मैं यहां पे आया हूं, आपने देखा होगा लाखों लोग इस ब्रज भूमि में वर्तमान में आए हैं, क्योंकि कल मथुरा के लल्ला का जन्मदिन है। चारों ओर उत्साह का वातावरण है। हर घर, हर कस्बा, हर वार्ड, हर क्षेत्र, चारों ओर एक धूमधाम है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं। 2017 के पहले जन्माष्टमी के आयोजन को थाने, यानी एक ही आयोजन होता था जो थानों में होता था और जेलों में होता था, उसको समाजवादी पार्टी ने बैन कर दिया था, कावड़ यात्रा को रोक दी थी, जन्माष्टमी के आयोजन को इन्होंने रोक दिया था। मैं 17 में जब आया तो मैंने पहले देखा कि कावड़ यात्रा, मैंने पूछा भाई कावड़ यात्रा क्या तैयारी है, जब हमारे अधिकारी अन्य राज्यों के साथ, क्योंकि 5 राज्य उसके साथ जुड़ते हैं, यूपी के साथ उत्तराखंड भी है, दिल्ली भी है, हरियाणा है, राजस्थान है, हिमाचल है, पंजाब है, सभी जगह के श्रद्धालु आते हैं, तो इनके साथ एक अंतर्राज्यीय बैठक भी होती है, इंटर स्टेट जो बैठक होती थी उसमें हमारे अधिकारी गए थे। मैंने कहा क्या तैयारी है, उन्होंने कहा जो गत वर्ष का जियो है हमने उसको ही जारी करने के लिए कहा। मैंने कहा क्या है गत वर्ष का जियो, उन्होंने कहा साहब डीजे नहीं बजेगा, घंटा संग घड़ियाल ये सब नहीं बजेंगे। भाई हमने कहा तो फिर क्या है, ये शिव की यात्रा है या कोई शव यात्रा निकल रही है। मैंने कहा बैठक मेरे सामने कराओ। मैंने अगले सप्ताह बैठक करवाई, सभी राज्यों के प्रतिनिधि आए थे। मैंने कहा भाई देखो यूपी के अंदर डीजे भी बजेगा, संग घड़ियाल सब बजेंगे, हां कावड़ की एक ऊंचाई हम सुनिश्चित कराएंगे, हम सुविधा देंगे, सुरक्षा भी हम देंगे, और भक्तिमय माहौल में कावड़ यात्रा निकलनी चाहिए, जो सुविधा चाहिए हमसे लो। अधिकारी मुझे डरा रहे थे, कह रहे थे साहब उपद्रव हो जाएगा। हमने कहा भी कोई उपद्रव नहीं होता है, मैं जानता हूं कौन उपद्रवी है और उपद्रवियों को हम ठीक कर देंगे। आपने देखा होगा कोई उपद्रव नहीं। इस वर्ष 5 करोड़ श्रद्धालु थे कावड़ यात्रा में, गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच, एक ही उसमें 5 करोड़ श्रद्धालु कावड़ यात्री थे। रोहिलखंड का दूसरा है, अयोध्या से बस्ती गोरखपुर वाली तीसरी यात्रा चलती है, प्रयागराज से काशी की चौथी चलती है, बुंदेलखंड की अलग है, मैं इनकी काउंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उन क्षेत्रों में केवल एक ही कावड़ यात्रा में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे और एक भी जगह कोई उपद्रव नहीं था, कहीं अव्यवस्था नहीं थी, हर व्यक्ति
खुशी के साथ आगे बढ़ रहा था। आप लोगों के उत्सव के इस आनंद को भी छीनना चाहते थे, हमने इसको फिर से पुनर्बहाल कराया, कहा नहीं इसको रोका नहीं जा सकता है। कानून के दायरे में रहकर कि कोई उत्सव मनाता है तो उसको सरकार का दायित्व तो बनता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे, उसको समर्थन करे, उसको प्रोत्साहित करे। और ऐसे ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी आयोजन भी था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को मैंने कहा भी हर थाने में करो, हर जेल में हम आयोजन करो, हर महत्वपूर्ण स्थल पर होना चाहिए, आप रोकेंगे क्यों? और कैसे रोक सकते हैं? हमारे कान्हा तो यहां पे कंस की ही जेल में पैदा हुए थे, तो क्या उसको हम भूल जाएंगे? कभी नहीं भूलेंगे। कभी वो जेल थी, आज हमारे लिए श्री कृष्ण जन्मस्थली है। और श्री कृष्ण जन्मस्थली देश और दुनिया का लाखों श्रद्धालु आया हुआ है। पिछली सरकारें उसको समझ नहीं पाई थी, उन भावनाओं को सम्मान नहीं दे पाई थी, और जनता जनार्दन की भावनाओं को जो भी सरकार कुचलने का कार्य करती है, लोकतंत्र उसको कुचल कर रख देता है, उसके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा कर देता है, और यही इनकी दुर्गति का कारण है। इन्होंने यूपी की इस विरासत को अपमानित किया, इन्होंने अयोध्या को भी अपमानित किया, इन्होंने हमारी इस पावन ब्रजभूमि को अपमानित किया, इन्होंने काशी को भी अपमानित करने का काम किया था। और यही कारण है कि यूपी इन्हें अब स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करने वाला है। यूपी का व्यक्ति अब कर्फ्यू मुक्त और दंगा मुक्त वातावरण का अभ्यस्त हो चुका है। अब यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है, और इस चंगापन को लेकर के वह पूरे उत्साह के वातावरण में डबल इंजन की सरकार को अपना आशीर्वाद दिए जा रहा है। एक झूठ 10 बार बोलने से या 100 बार बोलने से सच कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। और इस सच को आधी आबादी भी जानती है कि वास्तव में सच क्या है। सच ये है कि उसको सुरक्षा चाहिए, सच ये है नौजवान को अच्छी एजुकेशन चाहिए, स्किलिंग चाहिए, अच्छी एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था चाहिए, उस प्रकार का एक वातावरण उसको चाहिए। उसको आज यूपी के अंदर, इस नए यूपी के अंदर उसे प्राप्त हो रहा है। आधी आबादी के लिए जो वातावरण मिला है, और मैं पंचायत आज तक से कहूंगा, वास्तव में जिन लोगों ने पिछले 9-9.5 वर्ष में आधी आबादी हो या युवा हो, यह आयोजन उनके बीच में होना चाहिए। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने देना चाहूंगा। हमारे पास 5 मिल्क प्रोड्यूसर हैं वर्तमान में यूपी के अंदर, ये सभी 2019 के बाद स्थापित हुए। 4 लाख महिलाएं इसके साथ जुड़ी है और ये सभी प्रॉफिट कमा रही हैं। क्या ये काम 17 के पहले नहीं हो सकता था? क्या ये 17 के पहले नहीं हो सकता था? आप झांसी में जाइए, बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर है, 116 करोड़ रुपए का उनका वार्षिक टर्नओवर है। आप आगरा में आइए, एक मिल्क प्रोड्यूसर आपका आगरा क्षेत्र में भी है, बेहतरीन काम कर रहा है। एक लखनऊ में है, एक काशी में, एक गोरखपुर में, और
कितना उत्साह है उन लोगों में। जब पहला मिल्क प्रोड्यूसर हमने स्थापित किया था झांसी में, कोविड के ठीक पहले का मामला था, 5 महिलाएं मेरे सामने आई थी, उन्होंने कहा हमें कुछ काम चाहिए। तो मैं भौचक था, मैंने कहा क्या काम करेंगे आप? उन्होंने कहा हमें कार्य चाहिए। मैंने कहा आपने पढ़ाई कहां तक की है? मैं सोचता था कि पढ़ी लिखी महिलाएं होंगे तो फिर कहीं देखते हैं, कोई व्यवस्था करवाते हैं। तो उसमें उन्होंने जवाब दिया, किसी ने कहा हम 3 पास हैं, किसी ने कहा 4 पास हैं, किसी ने कहा 5 पास है, 5 से ऊपर कोई नहीं था। अब मेरे सामने था कि मैं ना भी नहीं बोल सकता था, लेकिन उस समय हां भी नहीं बोल सकता था। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, कुछ हम करेंगे। और तब हमने एक अधिकारी से कहा, मैंने कहा इनके लिए कुछ होना चाहिए, ये कुछ कार्य करना चाहती हैं। फिर उनके साथ बैठ करके तय किया गया क्या काम कर सकती हैं। पता लगा कि मिल्क कलेक्शन का काम बेहतरीन ढंग से कर सकती हैं, समूह बना सकती हैं। आज 62,000 बहनें उनके साथ जुड़ी हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में, 62,000। ये सफल कहानी है। मुझे लगता है यही वास्तविक पंचायत का उद्देश्य भी है, ये जाएगा सबके सामने। उस हस्तशिल्पी की कहानी को बताइए, जिस हस्तशिल्पी ने सफलतापूर्वक पिछले 9 वर्ष में एक उद्यमी बनने की यात्रा प्रारंभ की है। 17 के पहले जो हताश था, निराश था, उससे पूछिए आपकी कहानी का राज क्या है, तो बोलेगा यूपी का कानून का राज, जो पहले 17 के पहले अराजकता में बदल चुका था। उन लोगों से बात करिए जिन लोगों ने सफलतापूर्वक 9.5 लाख नौजवानों ने, जिन्होंने यूपी के अंदर बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पर्ची और खर्ची के उत्तर प्रदेश शासन की नौकरी प्राप्त की है। तब उनसे, उनके अभिभावकों से पूछिए इसका राज क्या है, वही कहेगा कि पारदर्शी और ईमानदारी पूर्वक की गई उनकी भर्ती। जो सिस्टम प्रदेश के अंदर लागू हुआ है उसका परिणाम है कि आज उन चेहरों पर खुशी आई है जहां तक कभी खुशी नहीं पहुंचती थी। उन लोगों तक जाइए जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, सड़क की हो, मेट्रो की हो, रेलवे की हो या रोपवे की हो। कोई सोचता था बरसाना में राधा रानी मंदिर में रोपवे मिलेगी, आज ये संभव हो पाया है, हमारी सरकार ने किया है। आज ये संभव हो पाया है। कुछ लोगों को ये मंदिर की आस्था, कुछ लोगों को लगती थी कि यह अनावश्यक है, उन्होंने इसको सांप्रदायिकता के साथ जोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन वे भूल गए यह आस्था अर्थव्यवस्था का आधार भी है। अर्थव्यवस्था को कैसे नया आयाम देती है, जब श्रद्धालु आता है, जब श्रद्धालु आता है अकेले नहीं आता है, तब वह फूल पत्ती वाले से भी फूल खरीदता है, माला खरीदता है, पैसा उस माली के घर में भी जाता है, तब वह स्थानीय उत्पाद का भी क्रय करता है, कहीं ठाकुर जी की पोशाक खरीदता है, कहीं पर किसी हलवाई के द्वारा बनाए गए मथुरा के पेड़े को खरीदता है, वह पैसा उस कारीगर के घर में भी जाता है। जब वह एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो स्थानीय रिक्शा में जाता है या टैक्सी में जाता है, उस टैक्सी के ड्राइवर के घर में भी, उस रिक्शा चालक के घर में भी पैसा जाता है। जब वह किसी रेस्टोरेंट और होटल में रुकता है तो किसी रेस्टोरेंट के संचालक को और वहां काम करने वाले लोगों को रोजगार भी मिलता है और पैसा भी मिलता है। जब वह किसी होटल में रुकता है, यही होटल है,
एक फाइव स्टार होटल बना है, मैं मानता हूं, मैं आज पहली बार यहां पे आया हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि कम से कम 500 लोग यहां रोजगार प्राप्त किए होंगे इस अकेले एक होटल में। 500 लोग यहां रोजगार प्राप्त कर रहे होंगे। अगर ये होटल नहीं बनता तो 500 लोग कहां रोजगार प्राप्त करते। इनकी नियति बन जाती पलायन करने की। ये दूसरे राज्यों में जाकर के अपमानित भी होते, परिवार की चिंता अलग, लेकिन आज उसको चिंता नहीं है। आज अपने ही गांव में, अपने ही

यहाँ पे ठाकुर बांके बिहारी का यह मंदिर का दर्शन करने के लिए देश और दुनिया का श्रद्धालु आया है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए आया है, उसको कहीं सुविधा पूर्ण रहने की व्यवस्था चाहिए, वो सरकार कर रही है। एक कार्य जगह एक है, स्थल एक है, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ एक पूरा सिस्टम कैसे कार्य करता हुआ दिखाई देता, ऑटो मोड पर कैसे कार्य करता हुआ दिखाई देता है, और उसकी आधारशिला कोई है, कानून का राज, सुशासन, जहां से प्रारंभ होता है। और मुझे लगता है कि कानून का राज कैसे होता है, उस बेटी से पूछिए किराना की, यानी जिसने अपने बचपन में अपने पिता को खोया है, कौन पूछ सकता उन लोगों से। और इसीलिए सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करती है कि नहीं, इस मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर बेटी की सुरक्षा के साथ इसने खिलवाड़ किया है तो इसको जेल या जहन्नुम में से एक जगह पहुंचाना जरूर है, क्योंकि ये इसका हकदार है, क्योंकि इसने जुर्म किया है, वह जुर्म किया है जो किसी अपराध से बड़ा अपराध है, और इसीलिए उस अपराध को सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लिया है। आज मुझे प्रसन्नता है, किराना में प्लान नहीं है, और कुछ लोग दुस्साहस किए थे, अभी आपने देखा होगा, लोगों ने प्रयास किया था कि अन्य जगह जैसा अपराध कर लेते हैं वैसे यूपी में कर सकते हैं, गलत फहमी के शिकार थे। ये यूपी है, नए दौर का यूपी है, ये बोलता नहीं है, प्रणाम देता है, प्रणाम देता है। कोई ताकत अजमा के देखेगा तो उसकी ताकत को चकनाचूर करके रख देगा यूपी। यूपी पीछे हटने वाला नहीं है, हर उसको जवाब देने की सामर्थ्य रखता है। और कुछ लोगों ने जो जरूरत की थी, अभी हाल ही में उसी केराना की भूमि पर, तो उसका जवाब मिल चुका है, इससे ही बड़ा जवाब मिलेगा। और मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, यूपी आज सुरक्षित है, सुशासन के आनंद का अनुभव कर रहा है, अपने विरासत भी और विकास की यात्रा के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और इस आनंद का अनुभव मुझे लगता है कि कोई कर सकता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा युवा भी कर सकता है। आधी आबादी बहनें और माताएं भी कर सकती हैं, अन्नदाता किसान भी कर रहा है, हमारा हस्तशिल्पी कारीगर और वह गरीब भी कर रहा है, जिसको राशन भी मिल रहा है, जिसको आयुष्मान की सुविधा भी मिल रही है, जिसको बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उपलब्ध हो रही हैं, स्कूली शिक्षा भी मिल रही है, और स्किलिंग के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की सुविधा भी प्राप्त हो रही है। ये सभी कुछ आज के दिन पे यूपी के अंदर मौजूद है। मैं आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप को, एक पंचायत आज तक के लिए कि उन्होंने किया है, और मैं आपको फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, मैंने अंजना जी को उस समय मैंने कहा था 21 में, जब उन्होंने इंटरव्यू 22 में लिया था, तो मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा चिंता मत करिए, हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी। सत्ताईस में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी, यूपी का युवा बनाएगा, यूपी की माताएं बनाएंगी, यूपी का अन्नदाता किसान बनाएगा, यूपी का गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, यहां का वंचित, यहां का दलित, यहां का पिछड़ा, वह व्यक्ति जिस तक सुविधा पहुंची है, वह उस इस डबल इंजन की सरकार को फिर से यूपी के अंदर बनाने में अपना आशीर्वाद देगा। इसमें कोई संदेह किसी को भी लेस मात्र नहीं होना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं पंचायत आज तक में इस पूरे ग्रुप को हृदय से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी को।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई।

0: और शुभकामनाएं देते हुए अपने बात को यहीं पे संपन्न करता हूं। राधे राधे।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
6: जेके वॉल मैक्स।
7: बेस्ट पेंट
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
10: जेके मैक्स पेंट्स।
9: जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
2: असली शहद, असली स्वाद।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: चल रहे हैं अभी तक ठीक नहीं हो पाए।
11: पंचायत आज तक मथुरा के मंच से सीएम योगी ने फूका चुनावी बिगुल, बोले यूपी में फिर धमाकेदार तरीके से बनाएंगे सरकार। अखिलेश पर कहा हल्की भाषा बोलते हैं एसपी के मुखिया। बिहार में परीक्षा व्यवस्था में धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों से राहुल की मुलाकात। सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप। लाठी चार्ज में कई छात्रों के घायल होने का दावा। शुद्धिकरण मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी, कहा 24 दिन बाद भी नहीं हुआ कोई एक्शन। नैनीताल हाईकोर्ट में दाखिल की गई है जनहित याचिका। ममता का शुभेंदु सरकार पर बड़ा हमला, कहा अभिषेक बैनर्जी के दफ्तर में बीजेपी ने भेजे गुंडे। बीजेपी की सफाई, घटना से कोई लेना देना नहीं।

इस बीच बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं पंचायत। आज तक मथुरा में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यूपी में धमाकेदार तरीके से वो सरकार बनाएंगे। 2027 चुनाव के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ऐलान कि उन्हीं की सरकार आएगी। पंचायत आज तक के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सरकार बनाने की बात कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सुशासन का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस बात को भी कहा और उन्होंने कहा कि पहले गुंडा राज था लेकिन अब सुशासन है। धमाकेदार तरीके से उनकी जीत होगी, यानी कि पूरे आत्मविश्वास के साथ यहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 में उन्हीं की सरकार बनने वाली है। यूपी में ना कर्फ्यू हो रहा है, ना दंगा हो रहा है, अब सब चंगा है। नए दौर का यूपी सिर्फ बोलता नहीं बल्कि नए दौर का यूपी जवाब देता है। पर्चा लीक और पर्ची लीक मामले पर भी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब ये दोनों ही चीजें उत्तर प्रदेश में नहीं होती हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है बताएंगे आपको, लेकिन अयोध्या की बात करते हैं जहां राम मंदिर के पहले सीईओ रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र के कामकाज की शुरुआत हो चुकी है। खास बात यह है कि जिस दिन मंदिर ट्रस्ट की नई जिम्मेदारी संभालने वाले सीईओ अयोध्या पहुंचे उसी दिन कांग्रेस ने उनकी नियुक्ति को लेकर मोर्चा खोल दिया।

0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र कार्यभार लेने ट्रस्ट पहुंचे तो उनका स्वागत इस तरह से हुआ, किसी ने राम नाम का पटका पहनाया, किसी ने फूलों की मालाओं से लाद दिया।
1: एक बार राष्ट्र सेवा के लिए और अभी श्री राम के मंदिर की और श्री राम भक्तों के लिए मंदिर के ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के।
0: राष्ट्र की सेवा करने के बाद राम की सेवा में जितेंद्र मिश्र जुट गए हैं, मगर उनकी इस नियुक्ति पर कांग्रेस सवाल उठा रही है।
2: पंडित जी क्या पूजा पाठ भी करते थे पहले? अरे भाई ये काम साधु संतों का है। अब एयर मार्शल साहब ने हवाई जहाज उड़ाया, हवाई जहाज उड़ा लेते, अब इनके आरएसएस के जंगल में फंस गए वो। अब कल को ये भी बेचारे बदनाम होकर बाहर निकलेंगे, क्या तमाशा है भाई। मंदिर का काम मंदिर वालों को करने दो।
0: कांग्रेस के बयान पर बीजेपी पलटवार कर रही है।
3: ये तो हम सबके लिए खुशी की बात है कि एक योग व्यक्ति के हाथों में अयोध्या धाम के संचालन की जिम्मेदारी मिली है। जो लोग इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं ये वो लोग हैं जिनका विश्वास ना राम में है ना राम के काज में।
0: कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि पूर्व एयर मार्शल को सीईओ बनाने के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर का कोई सच छिपा रही हो।
4: आर्मी के लोगों को, रिटायर्ड आर्मी एयर चीफ को आपने राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बना दिया है, उनका इससे क्या ताल्लुक है कि ऑपरेशन संदूर के अंदर कहीं कोई सच तो नहीं छुपा हुआ?
0: अब बीजेपी मांग कर रही है कि राशिद अल्वी ने सेना का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए।
5: एयर मार्शल को राम मंदिर की जवाबदारी दी जा रही है, मतलब समझ लें वो कितने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने वाले लोग होते हैं, और ऐसा कहना कि उनको जवाबदारी दे रही है, सैनिकों का अपमान है, इसके लिए राशिद अल्वी को माफी मांगनी चाहिए।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद अब नए सीईओ पर सियासत गरमा रही है। आज तक ब्यूरो।
6: उधर उत्तर प्रदेश की सियासत में विपक्ष के सामने चुनौती योगी आदित्यनाथ के विजय रथ को रोकने की है। ऐसे में विपक्ष में मंथन और रणनीतियों का दौर जारी है। जहां कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव खेल रही है, तो वहीं मायावती से फैसलों से हर कोई हैरान है।
7: बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है, हवा के अंदर बीजेपी नहीं आ रही है।
0: विपक्ष मानता है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के विजय रथ को रोकना आसान नहीं है। अखिलेश राहुल साथ तो हैं, लेकिन सीट शेयरिंग की तस्वीर वक्त पर साफ करने का दबाव कांग्रेस लगातार डाल रही है।
8: देखिए, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा हारे, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाइव करे, और ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो हम अपनी पार्टी का सर्वाइवल भी चाहते हैं और हम भाजपा को हराना भी चाहते हैं, और देश के अंदर राहुल जी के नेतृत्व में एक माहौल बन गया है जो पूरे देश के अंदर इस वक्त चल रहा है। तो मेरा जो काम करने का तरीका है वो सिंपल और साफ है कि लड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि जिसका नतीजा आए, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी होना है उसे तुरंत कर करके जल्दी से हमें मैदान में निकलना चाहिए।
9: जिस अलायंस ने अभी सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जीते, जिस अलायंस का अगर हम असेंबली सेगमेंट देखें तो बड़े पैमाने पे 250 से ज्यादा जीते, वही अलायंस रहेगा। और दूसरी बात, बहुत सारे साथी तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है समाजवादियों का कि बीजेपी हारे, जो जीतेगा सवाल संख्या का नहीं होगा, सवाल गिनती का नहीं है, सवाल है जीत का, और जो बीजेपी को हराएंगे उसी तरह से हम लोग फैसला लेंगे।
10: सीट का फॉर्मूला तय हुआ है?
9: कोई सीट का फॉर्मूला नहीं, जीत का फॉर्मूला है हमारा।
0: एसपी कांग्रेस गठबंधन में सीटों की खींचतान पिछले चुनाव पर भी देखने को मिली थी, जहां कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आई थी। ऐसे में कांग्रेस लगातार समाजवादी पार्टी पर प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव खेल रही है। वहीं अखिलेश यादव भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। इस बीच यूपी में मैनपुरी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक पुलिस वाला मूछों पर ताव देते हुए अखिलेश यादव को वीडियो दिखाने की बात कर रहा है। अखिलेश यादव ने भी वीडियो पर पलटवार करने में देरी नहीं की। सिर पर सत्ता सजातीय हाथ है, इसीलिए इनकी मूंछों पर ताव है। ऐसे लोगों से क्या होना इंसाफ है। पर अब ये कुछ दिनों की बात है, क्योंकि दस्तक दे रहा बदलाव है। हम निलंबन की मांग नहीं करेंगे। उधर लखनऊ में मायावती की अगुवाई में बीएसपी की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें साफ किया गया कि बीएसपी आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ रही है। वहीं मायावती ने सबको चौंकाते हुए एक बार फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को अपरिपक्व बताते हुए शंट कर दिया। आकाश आनंद तीसरी बार बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिए गए। आकाश आनंद बैठक में नहीं थे, लेकिन पहली बार आकाश आनंद के छोटे भाई ईशान आनंद बीएसपी की बैठक में शामिल हुए। ऐसे में ईशान आनंद की सियासी एंट्री की अटकलें तेज हो गई हैं।
11: जब तक सुश्री मायावती जी हैं, तब तक आकाश आनंद को किसी और दुश्मन की आवश्यकता नहीं है। आकाश आनंद को डिप्रेशन में डालने का काम, लगातार उसको बेइज्जत करने का काम कोई विरोधी पक्ष नहीं कर रहा है।
12: मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी अब राजनीति से थोड़ा सा दूर हटना चाहती हैं।
0: बहरहाल यूपी में 2027 के लिए हर पार्टी अपनी रणनीति तय कर रही है। जहां बीजेपी को हटाने के लिए विपक्ष में मंथन का दौर जारी है। आज तक ब्यूरो।
6: पंचायत आज तक के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर यूपी में धमाकेदार तरीके से सरकार बनाने की बात कही। बड़ी खबर आपको बता दें, आज ही इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कहा कि 2027 में उन्हीं की सरकार बनेगी।
13: मैंने अंजना जी को उस समय मैंने कहा था, 21 में जब उन्होंने इंटरव्यू 22 में लिया था, तो मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा चिंता मत करिए, हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी। सत्ताईस में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी। यूपी का युवा बनाएगा, यूपी की माताएं बनाएंगी, यूपी का अन्नदाता किसान बनाएगा, यूपी का गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, यहां का वंचित, यहां का दलित, यहां का पिछड़ा, वह व्यक्ति जिस तक सुविधा पहुंची है, वह उस इस डबल इंजन की सरकार को फिर से यूपी के अंदर बनाने में अपना आशीर्वाद देगा। इसमें कोई संदेह किसी को भी लेस मात्र नहीं होना चाहिए।
6: उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दावा किया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जिसके लिए वो मान सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
0: एसआईआर पर जारी घमासान के बीच अब पंजाब में राघव चड्ढा को लेकर सियासत तेज हो गई। राघव चड्ढा ने पंजाब सरकार पर वोटर लिस्ट से नाम बाहर करने का आरोप लगाया है। मैं पंजाब में राज्यसभा का मौजूदा सांसद हूं और मेरा वोटर आईडी पंजाब के मोहाली में रजिस्टर्ड है, फिर भी वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में मेरा नाम शिफ्टेड दिखाया गया है। ये सिर्फ कोई क्लर्क की गलती नहीं लगती, ये साफ तौर पर राजनीतिक बदले की भावना का मामला है। हो सकता है कि पंजाब में आपकी सरकार हो, लेकिन पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उनकी निजी संपत्ति नहीं है। उधर मान सरकार के मंत्रियों का कहना है कि ये चुनाव आयोग से जुड़ा मामला है, जिसका पंजाब सरकार से कोई लेना देना नहीं है।
14: ये बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट अथॉरिटी भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, ये बता दीजिए, क्योंकि उसको तो इलेक्शन कमीशन को तो वही अपॉइंट करता है, उनको स्टेट तो करती नहीं है।
6: पर उनका कहना है कि जो बीएलओ है या फिर जो पंजाब का
14: वो बहुत बड़े झूठ बोलने के माहिर है, आप उनकी वीडियो निकाल के देख लीजिए। पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दोष लगाए थे, अब उनको दोहरा रहे हैं।
15: पंजाब में 20 लाख लोगों के वोट कट गए और ज्यादातर प्रवासियों के कट गए, जहां इतने प्रवासियों के कट गए वहां एक प्रवासी के और कट गए।
0: हालांकि राघव चड्ढा कहते हैं कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है, जहां वो एसआईआर की गाइडलाइन के तहत वापस अपना नाम जुड़वाएंगे, लेकिन इस मुद्दे ने कांग्रेस को एक बार फिर एसआईआर पर हमले का मौका दे दिया है।
16: इलेक्शन कमीशन आम आदमी पार्टी चला रहा है क्या? जो राजदूत का नाम कटा है, जो तीन तीन देशों में सेवा देकर आए, उनका नाम किसने कटवा दिया? इसीलिए तो हम एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।
0: राघव चड्ढा पंजाब से पहले आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पंजाब की वोटर लिस्ट में नाम ना होने से उनकी राज्यसभा सदस्यता जा सकती है। हालांकि अब नियमों में बदलाव किए जा चुके हैं, जहां राज्यसभा सांसद देश के किसी भी हिस्से में मतदाता के तौर पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
6: वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुद्धिकरण मामले में जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने कहा कि 24 दिन बीत जाने के बावजूद हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने नड्डा को राज्यसभा में दिए उनके बयान का हवाला देते हुए कहा कि जल्द से जल्द उत्तराखंड सरकार को निर्देश दें और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो।
0: शुद्धिकरण पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को खत लिखा है और खत में उन्होंने कहा है कि हल्द्वानी में उनके कार्यक्रम के बाद रामलीला ग्राउंड का शुद्धिकरण करने पहुंचे लोगों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। खड़गे ने खत में लिखा है कि हैरानी की बात है कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। शुद्धिकरण का मुद्दा मेरे या कांग्रेस अध्यक्ष के पद से कहीं ऊपर है, ये करोड़ों लोगों की भावनाओं से गहराई से जुड़ा है। खत में खड़गे ने जेपी नड्डा को उनका बयान याद दिलाया है जो 13 अगस्त को राज्यसभा में जेपी नड्डा ने दिया था।
17: जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है।
0: कांग्रेस इसी बयान का हवाला देकर कार्रवाई की मांग कर रही है
18: कि नड्डा जी ने कहा था कि इसकी तहकीकात जरूर होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहां तो सरकार बीजेपी की सरकार है, मैं किसको दोष दूं? जो सरकार वहां चलाती है और जो एक सब कुछ हुआ उसके आंखों के सामने हुआ, फिर भी वो लोग कोई एक्शन नहीं लिए, वहां की सरकार भी कोई एक्शन नहीं ली।
0: कांग्रेस सवाल कर रही है कि जिनके खिलाफ मामला दर्ज होना था उनके बजाय राहुल गांधी पर एफआईआर क्यों दर्ज की गई?
19: 24 दिन निकल गए हैं भाजपा सरकार की ओर से, इस पर तो एक्शन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एक और एक्शन बहुत तत्परता से हुआ और वो है कि राहुल जी के खिलाफ जरूर एफआईआर हो गई है।
0: फिलहाल शुद्धिकरण पर सियासी संग्राम मचा हुआ है और ये थमता नजर नहीं आ रहा। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
6: बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान 60 घंटे पाकिस्तान की कैद में रहे पूर्व ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान से एयरफोर्स से रिटायरमेंट ले चुके हैं। उन्होंने गोवा की प्राइवेट एयरलाइन फ्लाई 91 ज्वाइन कर लिया है। उनका सामान्य रिटायरमेंट 2037 में होना था जब वो 54 साल के होते। उन्होंने 31 मार्च 2026 को वायुसेना छोड़ी और अगस्त में प्राइवेट एयरलाइन ज्वाइन कर ली है। करीब दो दशक की सर्विस के बाद अब वो कमर्शियल यात्री विमान के पायलट होंगे। अभिनंदन वायुसेना में MiG-21 फाइटर उड़ाते थे। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान F-16 लड़ाकू विमान के मार गिराने के दौरान उनका विमान मिसाइल की चपेट में आ गया था। जेट से इजेक्ट होकर वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उतर गए थे। पीओके में पाकिस्तानी फौज ने उन्हें पकड़ लिया था। भारत के जबरदस्त दबाव के चलते करीब 60 घंटे बाद 1 मार्च 2019 को अटारी बॉर्डर के जरिए उनकी वापसी हुई थी। 2021 में उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। रबात अंकित बालियान हत्याकांड की हरियाणा की जेल में बंद गैंगस्टर राके पंपू को एनकाउंटर का डर सता रहा है। पंपू नाम का नाम अंकित हत्याकांड में साजिशकर्ता के तौर पर सामने आया और अब यूपी पुलिस से उसे हरियाणा से शामली लाया गया है। गैंगस्टर को डर है कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए।
20: ये आदमी जो हत्या लूटपाट अपहरण करने से नहीं डरता, उसे यूपी पुलिस से डर लगता है। वो बदमाश जो 3 राज्यों में अपनी दहशत बना के रखता है, वो यूपी पुलिस से कांप रहा है। हरियाणा के करनाल जेल में बंद गैंगस्टर राकेश कादियान और पंपू ने यूपी पुलिस को एक पत्र भेजा है। चिट्ठी में उसने कहा है कि उसे डर लग रहा है कि कहीं यूपी ले जाने के दौरान उसकी गाड़ी भी ना पलट जाए।
21: कुख्यात गैंगस्टर राकेश और पंपू ने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कहा है कि अगर उसे जेल से उत्तर प्रदेश पुलिस लेकर जाए तो उसके हाथों और पैरों में बेड़ियां डाल दे, जाहिर है जिससे भागने की कोशिश में इनकाउंटर की गुंजाइश ही न बचे।
1: राकेश खाद्यान्न उर्फ पंपू ने मांग की है कि करनाल से शामली जाने के दौरान उसकी सुरक्षा की जाए। सुरक्षा में हरियाणा पुलिस के जवान तैनात रहे। हरियाणा पुलिस की वैन में ही उसे यूपी भेजा जाए। पूरे रूट की वीडियोग्राफी हो, हाथों और पैरों में मजबूत बेड़ियां हो। आश्चर्य की बात यह है कि यूपी पुलिस ने पंपू को शामली लाने की कवायद शुरू भी नहीं की थी। उससे पहले ही पंपू डर गया और सुरक्षा मांगने लगा। बता दें कि 2012 में पंपू ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इसके खिलाफ हत्या, लूटपाट, फिरौती, अपहरण के मुकदमे हैं। राकेश पंपू गोगी गैंग का सक्रिय सदस्य है। 2025 में दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। तब से हरियाणा की करनाल जेल में बंद है। अंकित बालियान मर्डर केस में पंपू पर आरोप है कि इसने शूटर्स को हथियार और पैसे दिए। फिलहाल यूपी पुलिस ने 4 में से 2 शूटर्स को ढेर कर दिया, जबकि 2 शूटर फरार हैं, जिन पर 1-1 लाख का इनाम है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
6: और अब शेयर बाजार की। कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ है। इस दौरान सेंसेक्स 417 अंक टूटकर 76,152 और निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 23,873 के स्तर पर बंद हुआ है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के चलते बाजार पर दबाव रहा। इसके अलावा ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी से भी निवेशकों की चिंता बढ़ गई। हालांकि बैंकिंग शेयर्स में खरीदारी से बाजार को कुछ सहारा मिला है। शेयर बाजार में गिरावट के बीच रुपए में आज मजबूत बढ़त देखने को मिली और डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे मजबूत होकर 94.59 के स्तर पर बंद हुआ। आरबीआई की योजनाओं के जरिए डॉलर की मजबूत आवक से रुपए को सहारा मिला। हालांकि महंगे कच्चे तेल और आयातकों की डॉलर मांग से रुपए की बढ़त कुछ सीमित रही है। सराफा बाजार में आज तेजी का रुख रहा। सोना 2,579 रुपए बढ़कर 1,53,733 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 4,420 बढ़कर 2,32,816 रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड डील में नरमी से सोने और चांदी को सहारा मिला। इसके चलते घरेलू सराफा बाजार में दोनों की कीमतें में तेजी देखने को मिली है। अब बात दुनिया की, जहां पाकिस्तान से एक बार फिर कट्टरपंथ के चेहरे की तस्वीर सामने आई, क्योंकि पाकिस्तान में 125 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया, जिसको लेकर देश में गुस्सा है।
2: लाहौर से करीब 130 किलोमीटर दूर नारोबाल का सिराज गांव, जहां कभी एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर श्रद्धा और इतिहास का गवाह बनकर खड़ा था, लेकिन 21 अगस्त को कट्टरपंथियों की सनक ने उस 125 साल पुरानी विरासत को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। आरोप है कि धार्मिक चरमपंथी संगठन तहरीके लब्बैक यानी TLP के गुंडों ने पास के मदरसे का दायरा बढ़ाने के लिए मंदिर की जमीन पर कब्जा किया और इस पवित्र ढांचे को हथौड़ों से ढहा दिया।
22: 100 साल पुराने मंदिरों को तोड़ करके मदरसे और मस्जिद का निर्माण ढहा कर ये हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ।
23: हम अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से अपील करते हैं, वो पाकिस्तान की सरकार पर दबाव बनाए और वहां हिंदू और सिख को स्वाभिमान पूर्ण जिंदगी जीने का मौका दे।
2: जब दुनिया में थूथू हुई तो बेशर्म पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए कुदरत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी प्रशासन अब बेशर्मी से दावा कर रहा है कि मंदिर इंसानों ने नहीं बल्कि भारी बारिश ने तोड़ा है। अभी 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपनी संकीर्ण मानसिकता का प्रदर्शन देते हुए कहा था कि पाकिस्तान हिंदुओं को बर्दाश्त करता है।
24: But there is a lot in between which they have forgotten. We are Muslims, they are not. But we are Muslims of the mindset that we tolerate. We have 3-4% Hindu population in Pakistan.
2: जम्मू में भी पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां राष्ट्रीय बजरंग दल समेत देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
6: रुकेंगे आज शुरू से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
25: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
26: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Papa!
2: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
1: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का?
1: सब कैशलेस हो गया
2: है।
1: हां ओ ला भाई मेरा बैट,
2: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
3: बेटा चार्ज हुआ यार।
4: ओ ला बैट किसका है?
5: टाटा एआईजी है तो भरोसा है।
6: आगे आगे,
7: अरे उधर
6: उधर यार, करेक्ट करेक्ट।
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: एक तो एक
10: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
2: असली शहद, असली स्वाद।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: खाना कहाँ से मंगवाया?
9: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
11: जेके वॉल मैक्स।
9: बेस्ट प्राइमर
12: जेके मैक्स।
9: बेस्ट पेंट
12: जेके मैक्स।
9: जेके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
10: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूँ?
9: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: इन एसोसिएशन विद
4: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
2: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: और वही कहाँ गए थे घूमने?
11: जीके मैक्स।
12: खाना कहाँ से मंगवाया?
11: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
13: जीके वॉल मैक्स।
11: बेस्ट प्राइमर
13: जीके मैक्स।
11: बेस्ट पेंट
13: जीके मैक्स।
11: जीके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
14: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
11: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: आगे दलदल का इलाका है, भरपूसी के एकदम किनारे पर खड़े हैं। और बटार में देखिए, ये सोलर प्रोजेक्ट था जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है।
1: पता तो चले कि किनके अपने लापता है, क्योंकि बहुत सारे लापता लोगों की संख्या 2500 से ज्यादा है।
0: सब कुछ सब रेत से भरा हुआ था और ये तबाही के निशान अपने साथ कई सारी मानवीय त्रासदियों के निशान भी छोड़ जाते हैं।
1: सब बरामद हो, उनकी आवश्यक जरूरी चीजें हैं, उन लोगों की चीजें बरामद की जा सकती
2: है।
3: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
4: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
5: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जारी रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
4: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: पंचायत आश्रित मथुरा के मंच से सीएम योगी ने फूका चुनावी बिगुल, बोले यूपी में फिर धमाकेदार तरीके से बनाएंगे सरकार। अखिलेश पर कहा हल्की भाषा बोलते हैं एसपी के मुखिया। बिहार में परीक्षा व्यवस्था में धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों से राहुल की मुलाकात। सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप, लाठीचार्ज में कई छात्रों के घायल होने का दावा। शुद्धिकरण मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी, कहा 24 दिन बाद भी नहीं हुआ कोई एक्शन। नैनीताल हाईकोर्ट में दाखिल की गई है जनहित याचिका। ममता का शुभेंदु सरकार पर बड़ा हमला, का अभिषेक बैनर्जी के दफ्तर में बीजेपी ने भेजे गुंडे, बीजेपी की सफाई, घटना से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, पटना समेत 8 जिलों में हाई अलर्ट, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को सतर्क रहने के निर्देश।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं नेहा बाथम। यूपी बिहार में इस वक्त बाढ़ का कहर है, खासतौर पर गंगा नदी के किनारे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान को पार कर चुका है। यूपी की बात करें तो वाराणसी, प्रयागराज और फर्रुखाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित है। वाराणसी में तो हालात ये हो गए हैं कि घाटों के किनारे अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सभी घाट डूब चुके हैं।
1: कहते हैं इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो वैतरणी के कठिन और दुर्गम रास्तों को पार करने के बाद यमलोक में प्रवेश मिलता है। अब ये तो पुराणों का दावा है, लेकिन वाराणसी में मरने वालों को सीधे वैतरणी नसीब हो रही है। बाढ़ से हालात इतने बदतर हो गए हैं कि काशी की इन छोटी छोटी गलियों में नावें चल रही हैं और उन नावों के ऊपर शव रखे हैं, क्योंकि नीचे कहीं जमीन नहीं बची जहां अंतिम संस्कार हो सके। इसीलिए मणिकर्णिका घाट की छत के ऊपर इन शवों को लेकर जाना पड़ रहा है।
2: गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट पर मोक्ष की कामना के लिए शवों के आने का सिलसिला जारी है। देख सकते हैं कि कितनी बाधाओं को पार करने के बाद लोग इस मणिकर्णिका घाट के ऊंचे बने मचान, जिसे छत कहते हैं, वहां पर शव लेकर जा रहे हैं और बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कहा जाता है कि अंतिम यात्रा में जहाँ चार कंधे शव को मिला करते हैं, लेकिन अब उससे भी लोगों को वंचित रहना पड़ रहा है, क्योंकि नाव ही एकमात्र सहारा है जिसके जरिए लोग डेड बॉडी को ऊपर बने मचान तक ले जा रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, क्योंकि गंगा किनारे का पूरा घाट जो है वे जलमग्न हो चुका है। और देख सकते हैं कि जितनी भी छोटी बड़ी इमारतें हैं, मंदिर है, मठ है, वे भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। तो शवयात्री इस तरह से ऐसे हालात में और मजबूरी वश शवों को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अब चार कंधा भी मिलना मुश्किल हो गया है और नाव ही मात्र एक सहारा है।
1: समस्या सिर्फ ये नहीं है कि गंगा में बाढ़ आ गई तो घाट डूब गए और अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहे। दिक्कत ये भी है कि शव ले जाने के लिए नाव वाले और फिर अंतिम संस्कार करवाने वाले मुंह मांगा पैसा मांग रहे हैं। एक ही जगह पर ये शव जल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ गंदगी भी बहुत ज्यादा है।
3: पानी तो मानकर चलिए, इसके पहले नीचे लाश जलता था, नीचे पानी लगने की वजह से छत पे लाश जल रहा है इस समय फिलहाल।
4: पूरा नीचे का
3: मणिकर्णिका आपका मान लीजिए डूब गया है, इस पे कभी जलता नहीं था। जब बाढ़ वगैरह आता है अधिक से अधिक ना, तब इसके ऊपर लाश जलता है। इस समय तो पानी मान चलिए बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, कॉरिडोर के पास पहुंच चुका है पानी, अभी तो बढ़ ही रहा है लगभग, मानकर चलिए पानी आपका। दिक्कत ये हुआ है कि मान चलिए अगर मोड़ पर से हम लोग चल रहे हैं गाड़ी लेकर, तो वहां से मान लीजिए लाश लाने का कोई सुविधा नहीं है। अगर नाव कर रहे हैं तो उसको पैसा देना पड़ रहा है, यहाँ तक पानी पूरा लगा पड़ा है, इसलिए नाव पे हम लोग रख कर बॉडी को लेकर आ रहे, इसके ऊपर चढ़ा रहे हैं, अधिक से अधिक पैसा लग रहा है।
4: कुछ नाव की यहाँ प्रबंध नहीं है,
3: सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे
5: बाढ़ बहुत आगे तक आ चुका है भैया, ये समस्या बहुत हो रहा है। पहले हम लोग कंधे पे लाद के लेके आते थे, अब नाव से लेके आना पड़ रहा है। अंतिम समय में कंधा से ज्यादा नाव पर जरूरत पड़ रहा है। अब पानी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इससे बहुत हालात गंभीर होती जा रही है। धीरे धीरे से आने जाने में दिक्कत हो रहा है, परिवार को लाने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ हम लोग 10 लोग आते थे, वहाँ 4 ही लोग आ रहे हैं। यहाँ पर परिवार के सारे सदस्य नहीं आ पा रहे हैं। सर,
1: माना जाता है कि अगर वाराणसी में चिता जलती है तो मरने वाले को मोक्ष मिलता है, इसीलिए आसपास के कई इलाकों से लोग यहीं अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। लेकिन बाढ़ इतनी है कि आसपास के जिलों से लोग नहीं आ पा रहे, और जो स्थानीय लोग आ भी रहे हैं उन्हें भारी दिक्कतें हो रही हैं। पहले जहां एक बार में 50 शव जलते थे, अब सिर्फ 15 से 20 शवदाह हो रहे हैं।
2: अब हम आ पहुंचे हैं उस छत पर मणिकर्णिका घाट के, जहां पर शवदाह हो रहा है। कुछ दिनों पहले ये सारे प्लेटफॉर्म जहां पूरी तरह से भरे थे, वहां अब कुछ ही शव आ रहे हैं, क्योंकि आसपास के इलाकों में भी, बनारस से यहां आने में भी काफ़ी बाढ़ का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और देख सकते हैं हमारे ठीक दाहिनी ओर गंगा द्वार है विश्वनाथ मंदिर का, यहां भी बाढ़ का पानी पूरी तरह से ऊपर पहुंच चुका है और कुछ ही सीढ़ियां शेष रह गई हैं, जिसके बाद विश्वनाथ धाम में बाढ़ का पानी पहुंच जाएगा। और जो ये नीचे का इलाका है, नीचे का क्षेत्र है, ये भी पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुका है। जहां एक बार में यहाँ लगभग 40 से 50 सौदा हो जाया करते थे, वहां महज अब इस ऊपर छत पर जगह 15 से 20 सौदा की है बची है। तो विभीषिका का आलम यह है बाढ़ के कि लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के डीएम से फोन पर बात की, वाराणसी में बाढ़ की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली, राहत कैंपों में लोगों को दी जा रही व्यवस्थाओं के बारे में पूछा, लोगों को युद्ध स्तर पर राहत देने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद हैं, इसीलिए उन्होंने बनारस के लिए चिंता जताई है। अब ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का फोन आने के बाद वाराणसी का जिला प्रशासन और नगर निगम कुछ ठीक काम करेगा और इन परेशान हाल लोगों को राहत देगा।
6: विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का अपने संसदीय क्षेत्र के बाढ़ से संबंधित चीजों के बारे में फोन आया कि क्या स्थिति है काशी की, गंगा जी का पानी कहाँ कहाँ बढ़ा है, गंगा जी का पानी अस्सी घाट पर कितना पहुंचा, रविदास गेट कितना पहुंचा, ढेलवरिया कितना है, नक्की घाट कितना। तो मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी को हमसे अधिक अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में जानकारी है और उन्होंने दिशा निर्देश भी दिया कि सभी पार्षद सभी जनप्रतिनिधियों के साथ सामंजस्य बना के जिला प्रशासन के साथ जुड़ के काम करिए आप लोग, और नगर निगम क्या क्या काम कर रहा है, कहाँ कहाँ पानी लगा, किस किस क्षेत्रों में पानी लगा, एक एक चीज का उन्होंने जानकारी लिया। और दिशा
1: वाराणसी ही नहीं बल्कि प्रयागराज में भी बाढ़ का कहर दिख रहा है। यहाँ तो गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर आ चुकी हैं। शहर के निचले इलाकों में पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। दारागंज के दशाश्वमेध घाट की सड़क भी गंगा के पानी में डूब गई है। लोग अपना सामान समेटकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रयागराज में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जल पुलिस, गोताखोर, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मोर्चे पर।
7: प्रयागराज में गंगा और यमुना के जल स्तर में जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है, अब ये बाढ़ की वजह से जो निचले इलाकों में रिहायशी इलाके हैं वहां पर अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हम इस वक्त दारागंज इलाके में हैं। आप देख सकते हैं कि ये सड़क है और ये नागवास की रोड दारागंज की सड़क है जहां पर ये गंगा का पानी आ गया है। दशाश्वमेध घाट है और यहां पर जो लोगों के तमाम घर हैं इस बाढ़ के पानी में समाते जा रहे हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी चला गया है, लोग दूसरी मंजिलों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। कुछ बच्चे हैं यहाँ पर इस बाढ़ की वजह से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये बाढ़ लोगों को अब परेशान करने लगी है। आप देख सकते हैं ये दारागंज का जो इलाका है और पूरा जो यहाँ पर इलाके में जो घर बने हैं उनमें ये बाढ़ का पानी आ गया है। तमाम इन सड़कों पर जहाँ तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी आपको देखने को मिलेगा और ये जो छोटी दुकानें हैं, झोपड़ियाँ हैं, यहाँ पर जो स्थानीय दुकानदार हैं, सब्जियों की दुकानें लगती थी यहाँ पर, वो भी इस बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। लोग अब दूसरी तरफ सुरक्षित अपना ठिकाना उन्होंने बनाया है।
8: ये दारागंज की सड़क है, इससे पानी आ, पहले तो गंगा जी वहाँ रहती थी, अभी तो यहाँ तक आ चुकी है। अब तो यहाँ बोट वगैरह चल रहे हैं, नाव चल रही है पूरी। पहले तो हम लोग नीचे जाते थे, सीढ़ियों से उतर करके नहाते थे। काफी घर यहाँ पे डूब गए हैं, पानी काफी ऊपर आ गया है और अभी भी गंगा जी बढ़ती ही चली जा रही है। अभी संभावना नहीं है कि कहाँ क्या कहाँ तक डूबेगा, कहाँ तक जाएगा पानी, अब देखते हैं आगे कितना क्या होता है।
1: वहीं प्रयागराज में संगम क्षेत्र से लेकर मेला क्षेत्र, घाट, शमशान, मंदिर और आश्रम तक बाढ़ के पानी में जलमग्न है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ के पानी में एक मचान नुमा मठ का अधिकांश हिस्सा डूब चुका है, पंडाल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन करीब 80 फीट ऊंचे लोहे के खंभे पर शीशे से बने मंच के भीतर जल रही अखंड ज्योति आज भी प्रज्वलित।
2: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन दिनों बाढ़ का कहर है और जो खतरे का निशान है 84 है, लेकिन 2 सेंटीमीटर नीचे खतरे के निशान से अभी भी गंगा और यमुना बह रही है। पूरे जगह बाढ़ का पानी ही पानी है, लेकिन अगर आप जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये प्रयागराज का शास्त्री ब्रिज कहते हैं, और इस शास्त्री ब्रिज के नीचे वाला जो इलाका है जहाँ पर पानी ही पानी नजर आ रहा है, ये माघ मेला कुंभ मेला क्षेत्र है। हर साल माघ मेला और हर 6 साल पर अर्धकुंभ और 12 साल पर महाकुंभ लगता है और इसी पानी वाली जगह पर तंबुओं का शहर नजर आता है। मेला खत्म होते ही पूरा तंबू उखड़ जाता है, लेकिन अगर
9: तंबुओं में एक पंडाल नहीं उखड़ता तो ये है देवराहा बाबा का पंडाल। आप देखेंगे देवराहा बाबा को कुटिया बाबा के नाम से कहा जाता है, कुटिया वाले बाबा, तो उनकी वो कुटिया है, तकरीबन एक डेढ़ मंजिला मकान के ऊपर बनी है। इसलिए ऐसी बनाई गई है कि ये डूबे नहीं और हमेशा बनी रहे।
1: वहीं यूपी का चित्रकूट तो पिछले एक सप्ताह से बाढ़ की मार झेल रहा है। यहाँ मंदाकिनी नदी ने पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। लगातार बारिश ने भी 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई इलाके डूबे हैं, कई गांवों का संपर्क टूट चुका है।
10: फिलहाल जो मंदाकिनी नदी है वह अपने रौद्र रूप पर है और लगातार अभी जलस्तर जो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जो बारिश हुई है जो पिछले 5 साल का उसने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जबकि पिछले 5 साल पहले बारिश 487 mm के पास हुई थी, लेकिन इस बार 2 गुना बारिश ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से चित्रकूट के जो नदी नाले हैं उफान पर हैं और जो डैम हैं वह भी ओवरफ्लो हो गए हैं। जिसकी
0: उधर बिहार में भी गंगा का पानी राजधानी पटना से लेकर दूसरे जिलों तक कहर बरपा रहा है। पटना में दियारा के इलाके में कई गांव डूब गए हैं, हजारों लोगों का रेस्क्यू किया गया है। पटना में भी नदी किनारे रहने वाले कई इलाके गंगा नदी में डूब गए हैं और बिहार से दूसरे बहुत सी जिलों में नदियां लगातार जमीन का कटान भी कर रही हैं। हजारों एकड़ फसल बाढ़ से बर्बाद हो चुकी है।

0: गंगा की उफनती लहरों पर हिचकोले खाती ये नाव बता रही है कि हालात कितने विकट हैं। गंगा नदी का पानी बिहार की राजधानी पटना में भी कहर बरपा रहा है। गंगा उफान पर है, पटना में दियारा इलाके के कई गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। इन लोगों को नावों के सहारे बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि सोन नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी छोड़ा गया, जिससे गंगा में पानी बढ़ गया और दियारा के कई गांव डूब गए। कई लोगों को निकाला गया है और हजारों लोग अभी भी बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं।
1: बिहार में भी गंगा नदी उफान पे है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के अंदर क्या हालात हैं। ये गंगा नदी का किनारा है और देखिए गंगा का जलस्तर किस तरह से लगातार ऊपर जा रहा है, और जो खासतौर पे दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, अब उनके लिए एक बार फिर से संकट है। वो निकल करके हर साल जब बाढ़ की स्थिति बनती है तो अपने जान माल को बचाते हुए अपने मवेशियों को लेकर के गंगा के दियारा क्षेत्र से बाहर आते हैं और पटना किनारे कहीं ना कहीं आसरा और ठिकाना बनाते हैं। और देखिए ये तमाम लोग अपने सामान को लेते हुए अब आगे आ रहे हैं। आप लोग भी उस तरफ से आए हैं क्या?
2: हाँ सर।
1: क्या स्थिति उधर बाढ़ की?
2: पूरा भर गया, उसमें पूरा घर में पानी घुस गया है।
1: तो अब क्या मतलब जो मवेशी हैं सबको लेकर के बाहर आ रहे हैं वहाँ से?
2: हाँ, उधर से सब इधर आ रहा है पूरा।
1: क्या दिक्कत है बताइए, क्या परेशानी?
3: चूल्हा तर पानी हो गया है, बहुत 3 दिन खाना बनला हो गया, चिवरा तो फाक रहे हैं हम लोग, पूरे पानी है इतना घर में।
1: तो उधर से सारे लोग निकल गए या अभी भी हैं वहाँ पर दियारा क्षेत्र?
3: अभी बहुत आदमी है, अभी तक लाखों में आदमी है, लाखों करोड़ों में आदमी फंसेला है सब। नकटा, मानस, छितर चौक, नवदियारी, कासिम चौक, सब आदमी फंसेला है।
1: अब धीरे धीरे जैसे पानी बढ़ रहा है लोग निकलना चाह रहे हैं।
3: हाँ, पानी बहुत से निकल रहे हैं, नाव मिल रहा है तो निकल रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो नहीं कर रहे हैं।
1: ये भी एक समस्या है, देखिए नाव से ही निकलना है, तो नाव अगर उपलब्ध हो पा रहा है तो लोग वहां से निकल रहे हैं। और दूर तक जहां तक हमारे कैमरे की नजर जाती है, अगर सामने हम दिखाएं तो ये पूरा दियारा, पटना दियारा है सामने, जो नकटा दियारा और कासिमचक तमाम अलग अलग गांव हैं दियारा के, जहां लोग रहते हैं अपने परिवार के साथ, दियारा क्षेत्र में गांव है। और अब जबकि गंगा का पानी बढ़ा है और सबसे बड़ा संकट पटना में गंगा के रौद्र रूप का ये भी है कारण कि जो सोन नदी है वहां से बहुत ज्यादा पानी का डिस्चार्ज हुआ है। लगभग 5.25 लाख क्यूसेक पानी सोन नदी से निकला है और वो नदी कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है, गंगा से कनेक्ट होती है सोन केनाल के जरिए।
0: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी आज पटना के इस बाढ़ का जायजा लिया। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद अब इसका पानी सड़कों तक पहुंच गया है। राजधानी पटना के गायघाट स्थित भद्रघाट, महावीर घाट समेत कई घाटों से सटी सड़कों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। महावीर घाट के पास करीब 3 फीट से अधिक पानी सड़क पर पहुंच चुका है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है।
4: गंगन घाट पर अभी पानी नहीं है ज्यादा, बट भद्र घाट और अपने महावीर घाट पे पानी आ चुका है, तो उसके लिए हम बैरिकेडिंग करा रहे हैं, तो व्हीकल्स बिल्कुल भी एंटर नहीं करेंगे। दूसरा, हम साइनेजेस भी लगाएंगे कि अब ये सेफ नहीं है, बिल्कुल पानी ऊपर आ रहा है। पानी अभी किसी भी सेटलमेंट के अंदर नहीं घुसा है, बट लोगों ने अपनी गाय भैंसें बांध दी है वहां पे, तो वो भी मेरा अनुरोध है। हमने
5: वक्त एक ब्रेक का उछला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपके झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है, अब उसकी चलने की सामर्थ्य समाप्त, खेल खत्म। अब जब खेल खत्म तो फिर आगे की कोई संभावना नहीं, संभावना नहीं तो आगे के बारे में स्वयं सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं तो राम नाम का ही सहारा सही।

0: 12 बजे वाली ट्रेन 3 बजे चलेगी। तो आप यही है संगीत, बाकी लोग एडजस्ट करें।
1: मेरा संगीत माय वे।
2: गन्ना बड़े सियासत में फंसा हुआ इस समय। नहीं,
3: गन्ने की वैल्यू बढ़ गई है।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपके झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है, अब उसकी चलने की सामर्थ्य समाप्त, खेल खत्म। अब जब खेल खत्म तो फिर आगे की कोई संभावना नहीं, संभावना नहीं तो आगे के बारे में स्वयं सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं तो राम नाम का ही सहारा सही।

0: 12 बजे वाली ट्रेन 3 बजे चलेगी। अब आप यही है संगीत, बाकी लोग एडजस्ट करें।
1: मेरा संगीत माय वे।
2: गन्ना बड़े सियासत में फंसा हुआ इस समय, नहीं
3: गन्ने की वैल्यू बढ़ गई है। हाँ, सड़क से उठा के स्टार बना दिया गन्ने।
4: यही है था, कभी हमने अन्ना को बनाया, कभी गन्ने को बनाया।
1: गन्ने को हल्के में लेते थे, आज गन्ना ज्यादा बताओ, सबको जूस निकाल दिया भाई।
2: पलकों ने बोला कि तुम आर्मी वगैरह ज्वाइन करो, उसकी माँ ने कल बोला कि ऑफिसर वगैरह बन जाओ, तो उसने कहा क्यों बन जाए, उसने कहा अच्छा लगेगा हमको, मेरा शौक है, अरमान है। उसने मेरा भी अरमान था कि मेरे माता पिता मतलब पिताजी और मम्मी जो है वो ऑफिसर होते हैं, बने कि आप लोग, हम कह रहे हैं तेरे पैदा होने से पहले अपन पैदा हुए थे। तो मैंने कहा तू आर्मी कमांडो वगैरह बन, मैंने ब्लैक कैट कमांडो सब बनते हैं, तो ब्लैक डॉग कमांडो बन जा।
5: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच, in association with
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है। जब जाने की बारी है, जब आपने श्री रामचंद्र जी के नाम का सहारा लिया, तो आपने नाम इसलिए लिया कि आपको वहां पे लूटना था। हम तो कहेंगे कि वहां पे जो भी महंत लोग हैं मथुरा में, अरे भाजपाइयों से सावधान रहो, नहीं तो जो चढ़ावा है वहां का, जो चंदा है, उस पर भी निगाह इनकी पड़ चुकी, इनको घुसने मत देना वहां पर। और किशन जी की जो पूरा दुनिया में जो उनका चाहत है, मोहब्बत है, जो उनके अनुयायी हैं,

0: वो बीजेपी की वजह से नहीं है। और किशन जी की मानने वाले लोगों का आपने क्या हाल कर रखा है? मथुरा में आज सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, मथुरा में आज मथुरा जी में सड़कों पे तीन तीन फीट पानी है। तो आप नगर पालिकाएं आपकी जहां जहां पे हैं, आपने कहा था कॉरिडोर बनाएंगे आप, मतलब कौन सा कॉरिडोर बना?
1: जो वामी है, जो कांगी है, जो सपाई है, जो कांग्रेसी है, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है, हिंदुओं को बांटना है, मुसलमानों को एकत्रित करना है और उसके सहारे चुनावी वैतरणी पार करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये जान चुकी है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और 27 में उत्तर प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार अर्थात नरेंद्र मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार की जो काम उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जिस तरीके से विकास समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों तक पहुंचा है, कानून का शासन स्थापित हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, उसके आधार पर वोट देगी।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: विशेष मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, आगे देखिए खबरदार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पंचायत आज तक मथुरा के मंच से मुख्यमंत्री योगी ने फूका चुनावी बिगुल, बोले यूपी में फिर धमाकेदार ढंग से बनाएंगे अपनी सरकार। अखिलेश पर कहा हल्की भाषा बोलते हैं एसपी के मुखिया अखिलेश यादव। बिहार में परीक्षा व्यवस्था में धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों से राहुल की मुलाकात। सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप। लाठीचार्ज में कई छात्रों के घायल होने का दावा। शुद्धिकरण मामले में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने नड्डा को लिखी चिट्ठी, कहा 24 दिन बाद भी नहीं हुआ कोई एक्शन। नैनीताल हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका। ममता का शुभेंदु सरकार पर बड़ा हमला, का अभिषेक बनर्जी के दफ्तर में बीजेपी ने भेजे हुंडे। बीजेपी की सफाई, घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं। और कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, रूस से जारी युद्ध पर जताई चिंता, शांति के पक्ष में है भारत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मैं हूँ सईद अंसारी, स्वागत है आपका खबरदार में। ये वक्त है हर खबर से आपको खबरदार करने का। कल जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी पूरे देश के श्री कृष्ण मंदिरों और भक्तों के बीच होने लगी है। और तब आज उसी भक्ति के माहौल में राजनीतिक शक्ति हासिल करने वाली राजनीति की सबसे बड़ी खबर से आइए आपको सबसे पहले हम खबरदार करते हैं, जहां आज चर्चा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो रही है। एक तरफ मुद्दा अयोध्या के चढ़ावा चोरी विवाद का है, विपक्ष के सवालों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO अपने चयन के बाद अयोध्या पहुंचते हैं। वहीं मथुरा में कल जन्माष्टमी से पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, और जब उनसे पहले जब बाबा नीम करौली पर बनी फिल्म की चर्चा चारों तरफ है, तब फर्रुखाबाद में बाबा नीम करौली को प्रणाम करके भी संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हैं। 2027 के धर्म मार्ग पर चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तक के मंच पर अब से बस कुछ ही देर पहले एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वो तीसरी बार धमाकेदार तरीके से वापसी करेंगे, जबकि अखिलेश यादव कहते हैं कि सीटें बंटने का फॉर्मूला नहीं है लेकिन जीत का फॉर्मूला उनके पास। और तब क्या मथुरा प्लान से योगी आदित्यनाथ 2027 का रण जीत सकते हैं?
1: जिस अलायंस ने अभी सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जीते, जिस अलायंस का अगर हम असेंबली सेगमेंट देखें तो बड़े पैमाने पे 250 से ज्यादा जीते, वही अलायंस रहेगा। और दूसरी बात, बहुत सारे साथी तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। हमारा लक्ष्य समाजवादियों का कि बीजेपी हारे, जो जीतेगा सवाल संख्या का नहीं होगा, सवाल गिनती का नहीं है, सवाल है जीत का। और जो बीजेपी को हराएंगे उसी तरह से हम लोग फैसला लेंगे।
2: सीट का फॉर्मूला तय हुआ
1: है? कोई सीट का फॉर्मूला नहीं, जीत का फॉर्मूला है हमारा।
3: सीट के नंबर की जगह जीत के नंबर की बात जब अखिलेश यादव करने लगे, तब 2024 में PDA के फॉर्मूले और संविधान वाली सियासत के दम पर यूपी में बीजेपी से आगे रहने का सियासी स्वाद चख चुके अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एकता क्या योगी आदित्यनाथ 2027 में तोड़ देंगे, जो आज तक के मंच पर आकर सीधे विपक्ष के शासनकाल की याद दिलाते हैं।
4: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहां माफियाओं को, दंगाइयों को, पेशेवर अपराधियों को पाला, उन्हें प्रोत्साहित किया, उनके सामने नतमस्तक हुआ करते थे। वही लोग यूपी के बीमारूपन के कारण भी थे, यूपी के निवेश के विरोध, यूपी में निवेश के विरोधी भी थे, यूपी में पर्यटन के विरोधी भी थे, यूपी में महिला सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए थे, और उत्तर प्रदेश के युवाओं की नौकरी और युवाओं के रोजगार पर भी सबसे बड़ी डकैती डालने का काम ये वही लोग करते थे।
3: आज तक के पंचायत आज तक कार्यक्रम में मथुरा में ये बात मुख्यमंत्री तब कहते हैं जब जन्माष्टमी के कार्यक्रम में वो मथुरा वृंदावन के दौरे पर पहुंचे।
5: राधे राधे, आज मैं ब्रज की पावन धरा पर आ रहा हूँ।
3: इंस्टा स्टाइल में वीडियो बनाकर पोस्ट करते मुख्यमंत्री का संदेश साफ है, यूथ बूथ संस्कार और संस्कृति।
4: हमारे पास युवा शक्ति है, युवा की इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ना, उस स्किलिंग को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ना, स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ उसको जोड़ना, और पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने सफलतापूर्वक उसे आगे बढ़ाने का काम किया।
3: जन्माष्टमी से ठीक पहले बच्चों से मिलते मुख्यमंत्री योगी और योगी का मथुरा दौरा, इसी के साथ सवाल आता है क्या योगी का मथुरा प्लान 2027 में आएगा काम? जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ 1051 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं, दूसरी तरफ सनातन का इतिहास याद कराते हैं, मथुरा में तोड़े गए मंदिर का काल याद कराते हैं, ब्रज की शक्ति की बात करते हैं और 2017 से पहले दंगों का हिसाब भी बताते हैं।
6: सनातन की निरंतरता का इतिहास है, मथुरा
2: इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थित केशव देव मंदिर के इतिहास ने कई आक्रमण सहे हैं। विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, लेकिन क्या वे श्री कृष्ण की स्मृति को मिटा पाए, राधा रानी की स्मृति को मिटा पाए? क्या जन्माष्टमी का आयोजन रुक गया? क्या वृंदावन की भक्ति रुक गई? क्या बरसाना की होली थम गई? क्या गोवर्धन की परिक्रमा रुकी? नहीं, और यही है हमारा सनातन, यही है ब्रज की शक्ति।
3: ब्रज की शक्ति की बात करते मुख्यमंत्री उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार फोकस बनाए हैं, जहां 26 जिलों में 27 लोकसभा सीट है और विधानसभा की 136 सीट, जहां 2024 में सीटें बढ़ने से अखिलेश यादव जब उत्साहित होते हैं तो योगी ये याद कराना नहीं भूलते कि पश्चिमी यूपी में पहले कितने दंगे होते थे।
2: सरकारें नतमस्तक होती थी उन दंगाइयों के सामने, नागरगढ़ की थी, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित किया जाता था। मुजफ्फरनगर का दंगा कई महीनों तक चला, कर्फ्यू कई महीनों तक चला। अलीगढ़ में दंगा, मेरठ में दंगा, लखनऊ में दंगा, और आज मैं कह सकता हूं कि हमारा यूपी पिछले 9.5 वर्ष से कर्फ्यू से भी मुक्त है, दंगा से भी मुक्त है। आप उत्सव हमारी पहचान बन चुकी है।
3: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त तक कानून व्यवस्था एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। जहां कभी पलायन मुद्दा बना है, वहां यूपी में बदलाव की बात योगी आदित्यनाथ करते हैं, बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं।
4: सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करती है कि नहीं, इस मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर बेटी की सुरक्षा के साथ इसने खिलवाड़ किया है तो इसको जेल या जहन्नुम में से एक जगह पहुंचाना जरूर है, क्योंकि ये इसका हकदार है। कुछ लोगों ने जो जरूरत की थी, अभी हाल ही में उसी केराना की भूमि पर, तो उसका जवाब मिल चुका है, इससे ही बड़ा जवाब मिलेगा।
3: पश्चिमी यूपी में बीजेपी को लीड मिलती रही है। 2014 से 2022 तक दो लोकसभा और दो विधानसभा चुनावों में बीजेपी बड़ी बढ़त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हासिल करती आई। ऐसे में जब अयोध्या के चढ़ावा चोरी विवाद से समाजवादी पार्टी बीजेपी को घेर कर बैकफुट पर ढकेलना चाहती है, तब कृष्ण जन्मभूमि पर अखिलेश यादव को बोलने की चुनौती देते मुख्यमंत्री ये याद कराना नहीं भूलते कि हिंदू त्योहारों को लेकर उत्तर प्रदेश में कैसे बदलाव आया है।
2: जन्माष्टमी का उत्सव, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आया है। मैं हर दिन की मथुरा वृंदावन की रिपोर्ट लेता हूं और यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के प्रतिदिन आने के समाचार को सुनता हूं, देखता हूं। आज मुझे लगता है कि वास्तव में यह परिवर्तन, यही परिवर्तन है। आज यहां पे होली का रंगोत्सव होता है, ब्रज तीर्थ से जुड़े हुए उन सभी कार्यक्रमों में वैष्णव कुंभ भी इसी क्षेत्र में हुआ। आप उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा भी होती है, रामनवमी के भी आयोजन अयोध्या धाम में भव्यता के साथ हो रहे हैं, दीपोत्सव हो रही है, शोभा यात्राएं निकल रही हैं, महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। पहले उत्सव से पहले उपद्रव की आशंका रहती थी, आज उत्सव के पहले व्यवस्था की तैयारी होती है। अब उपद्रव की आशंका नहीं, अब तो तैयारी हो रही है और यही बदलाव है।
0: पंचायत आज तक के मंच पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म मार्ग वाली राजनीतिक रणनीति पर चलते हुए यह भी याद कराया कि 2017 से पहले कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में रोक दी जाया करती थी, और फिर योगी आदित्यनाथ ने हिंदू धर्म के उत्सवों के लिए क्या निर्णय लिया।
4: 2017 के पहले जन्माष्टमी के आयोजन को थाने, यानी एक ही आयोजन होता था जो थानों में होता था और जेलों में होता था, उसको समाजवादी पार्टी ने बैन कर दिया था, कांवड़ यात्रा को रोक दी थी। जन्माष्टमी के आयोजन को इन्होंने रोक दिया था। मैं 17 में जब आया तो मैंने पहले देखा कि कावड़ यात्रा, मैंने पूछा भाई कावड़ यात्रा क्या तैयारी है, जब हमारे अधिकारी अन्य राज्यों के साथ, क्योंकि 5 राज्य उसके साथ जुड़ते हैं, यूपी के साथ उत्तराखंड भी है, दिल्ली भी है, हरियाणा है, राजस्थान है, हिमाचल है, पंजाब है, सभी जगह के श्रद्धालु आते हैं, तो इनके साथ एक अंतर्राज्यीय बैठक भी होती है, इंटर स्टेट जो बैठक होती थी उसमें हमारे अधिकारी गए थे। मैंने कहा क्या तैयारी है, उन्होंने कहा साहब जो गत वर्ष का जियो है हमने उसको ही जारी करने के लिए कहा। मैंने कहा क्या है गत वर्ष का जियो, उन्होंने कहा साहब डीजे नहीं बजेगा, घंटा संग घड़ियाले सब नहीं बजेंगे। भाई हमने कहा तो फिर क्या है, ये शिव की यात्रा है या कोई शव यात्रा निकल रही है। मैंने कहा बैठक मेरे सामने कराओ। मैंने अगले सप्ताह बैठक करवाई, सभी राज्यों के प्रतिनिधि आए थे। मैंने कहा भी देखो यूपी के अंदर डीजे भी बजेगा, संघ घड़ियाल सब बजेंगे, हां कावड़ की एक ऊंचाई हम सुनिश्चित कराएंगे, हम सुविधा देंगे, सुरक्षा भी हम देंगे, और भक्तिमय माहौल में कावड़ यात्रा निकलनी चाहिए, जो सुविधा चाहिए हमसे लो। अधिकारी मुझे डरा रहे थे, कह रहे थे साहब उपद्रव हो जाएगा। हमने कहा भी कोई उपद्रव नहीं होता है, मैं जानता हूं कौन उपद्रवी है और उपद्रवियों को हम ठीक कर देंगे। आपने देखा होगा कोई उपद्रव नहीं।
0: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट को लेकर राजनीति होती है। जयंत चौधरी इस समय बीजेपी के साथ हैं और जिनको लेकर पिछले दिनों अखिलेश यादव के बयान को लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है।
4: जिन्होंने अच्छा किया नहीं वे अच्छा देख भी नहीं सकते, और यह इनकी सबसे बड़ी समस्या है। इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि इन लोगों ने 17 के पहले यूपी के अंदर जो पाषाण युग लेके आए थे, उसी पाषाण युग की कल्पना को लेकर के आज भी ये क्या बात करते हैं। आपने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के कुछ वचनों को सुना होगा जो उनके संस्कार के अनुरूप ही होता है। उनके मुंह से चवन्नी और कुत्ता जैसे शब्द निकले थे। दुनिया एजुकेशन को बेहतर बनाने में रुचि ले रही है, स्किलिंग को नया आयाम दे रही है, याई डिपटेक मेटेक इन पे चर्चा कर रही है, और ये लोग अपनी ही पार्टी के लोगों को कुत्ता और बिल्ली बना रहे हैं। लोकतंत्र का इससे बड़ा उपहास मित्रों दूसरा नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में जनता को हम जनार्दन कहते हैं, और समाजवादी पार्टी अपने ही नेताओं को कुत्ता बिल्ली बना करके किस रूप में लोकतंत्र का उपहास उड़ा रही है, कैसे एक केंद्रीय मंत्री के बारे में समाजवादी पार्टी के मुखिया किस प्रकार की हल्की बातें करते हैं, या इनकी उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो उन लोगों ने 17 के पहले यूपी के अंदर किया था।
0: उत्तर प्रदेश में करीब 20 से 21 % जेंजी वोटर्स भी हैं। युवा वोटर्स पर इस समय सबकी नजर, रोजगार नौकरी बड़ा मुद्दा है, और तब 2017 से पहले की स्थिति की याद दिलाकर सरकारी नौकरी के मुद्दे पर अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला किया है।
4: उन्हें नकल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हर नौकरी में सेंध लगाना भी उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको उन्होंने अपने कालखंड के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया था, और इसी को कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। जो उस समय जैसी व्यवस्था थी वैसे चल रहा था, चारों ओर अराजकता थी, योग्यता से ज्यादा पर्ची को महत्व दिया जाता था, विवेक से ज्यादा उस समय प्रदेश के अंदर फतवा को महत्व दिया जाता था, और भारत की वरासत की बजाय उस समय एक परिवार की चाटुकारिता को महत्व दिया जाता था। 9 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं, देश के अंदर किसी राज्य में इतनी नौकरी कभी नहीं। और यहां पे अभी सुश्री अंजना ओम कश्यप जी जो बात कह रही थी कि पर्चा लीक और पर्ची लीक, जो लोग पर्ची लीक कराते थे वही पर्चा लीक भी कराते थे। अब यूपी में पर्चा लीक नहीं होता है क्योंकि पर्चा लीक करने वाले को मालूम है कि तो जेल तो जाएगा ही जाएगा, बाप दादों की पूरी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवा करके सड़कों पे कटोरा लेकर के घूमने के लिए मजबूर हो जाएगा। हमने 2020 में ही उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कानून बनाया है कि जो भी पर्चा लीक के इस अनैतिक कार्यों में लिप्त होगा उसको आजन्म कारावास के लिए जेल के अंदर सड़ाएंगे, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे। और ये कार्रवाई यूपी के अंदर हम प्रभावी ढंग से कर रहे हैं, तब हम यूपी के अंदर बिना भेदभाव के आरक्षण की नीति को पालन करते हुए 9.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में हम लोग सफल हुए हैं।
0: मथुरा के बाद अब राजनीति अयोध्या की देखकर खबरदार हो जाइए, जहां चढ़ावा चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष के लिए बीजेपी के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार है। तो ट्रस्ट के नए सीईओ रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र के साथ सवाल यह आता है कि क्या ट्रस्ट वापस मजबूत होगा, और तभी विपक्षी नेताओं के सवाल राजनीति को नया मोड़ देते हैं। कांग्रेस के नेता राशिद अलवी ने तो ये शक व्यक्त कर दिया कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर का सच दबाए रखने के लिए तो सरकार ने जितेंद्र मिश्र को सीईओ बना नहीं दिया। बीजेपी कह रही है कि सेना पर सवाल उठाना और सनातन का अपमान करना कांग्रेस की फितरत रही है।
6: कांग्रेस की पीड़ा तो है, अयोध्या में राम मंदिर क्यों बन गया, क्योंकि ये तो कहते थे राम हुए ही नहीं। समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ, जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर से अयोध्या को अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं।
3: दो हजार 2027 के चुनाव में जब 5 महीने का वक्त रह गया, तब अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी एक तरफ लगातार बीजेपी के सबसे मजबूत हिंदू वोट पर चोट सवालों से करती रही है।
1: श्रद्धा और आस्था उससे खिलवाड़ की बीजेपी ने, और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है।
3: तब चढ़ावा चोरी से उठे सियासी सवालों के साए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पहले सीईओ के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के हीरो रहे रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र की नियुक्ति से कई संदेश देने की कोशिश हुई है। संदेश इस बात का कि देश की रक्षा में हमेशा आगे रहने वाली सेना से जुड़े अफसर को ट्रस्ट में लाकर ये जिम्मेदारी इसलिए सौंपी गई है ताकि ट्रस्ट के ट्रस्ट पर कोई सवाल न रह जाए।
7: मैं चयन समिति, श्री राम मंदिर ट्रस्ट और ऑफ कोर्स भगवान श्री राम का आभारी हूं कि मुझे इस दायित्व के लिए मेरा चयन किया गया है, और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे सामर्थ्य दें कि मैं इस कार्य को अच्छी तरह से भली भांति रूप से कर पाऊं।
3: सीईओ पद पर चयन के बाद रिटायर्ड एयर मार्शल अयोध्या पहुंचे ही, उससे पहले उनके चयन पर विपक्ष के तमाम सवाल आने लगे।
8: लोगों के दिमागों में शक और शुबा पैदा करती है, उनका इससे क्या ताल्लुक है। मुझे लगता है कि ऑपरेशन संदूर के अंदर कहीं कोई सच तो नहीं छुपा हुआ, जिस वजह से उन्हें यहां पे सीईओ बनाया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है।
9: कांग्रेस अब मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस हो गई है। राशिद अलवी जी, आपने उस राज का पर्दाफाश कर दिया, जो हल्का फुल्का भरम का नकाब था वो भी आपने उतार दिया। फिर भी कांग्रेस पार्टी को अगर मन में यह संदेह है यह ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था, तो सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ का संभवतः अजरबैजान में दिया गया बयान वो देख लें, जिसमें वो कहते हैं कि 9 और 10 यानी 9-10 मई 2025 की वो बात कर रहे हैं, 9 और 10 की दरमियानी रात मेरे सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे जगा कर यह कहा रात 2:30 बजे कि हिंदुस्तान ने हमारे कई एयरबेसेस पर अटैक कर दिए हैं और नूर खान एयरबेस पर भी अटैक हुआ है।
3: तो क्या विपक्ष से फिर वो चूक हुई जो पहले भी होती रही, खासकर तब जबकि अखिलेश यादव जहां केवल चढ़ावा चोरी विवाद पर आस्था के अपमान के एंगल से बीजेपी को घेरना चाहते हैं।
1: इस पे मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं, ये फैसला सरकार का है, ट्रस्ट अपना फैसला लेता है और ट्रस्ट के सामने चुनौती इसलिए है कि जिस तरह की बातें आई और SIT ने जो जांच के बाद रिपोर्टें दी हैं, SIT के बाद FIR दर्ज हुई, FIR दर्ज के बाद जेल गए हैं, क्लीन चिट मिल गई है, तो क्रेडिबिलिटी से भी ऊपर आस्था है और आस्था पर श्रद्धा पर बड़ी चोट पहुंचाई बीजेपी ने, तो जो भी बनेगा उसकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है।
10: बड़ी डेवलपमेंट क्या है, जो चढ़ावा चोर है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, क्या नए CEO जो नियुक्त हुए हैं क्या वो चढ़ावा चोरी जो करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या चढ़ावा चोरी में जो पैसे वहां गायब हुए हैं भगवान के दरबार से वो पैसे क्या फिर से वापस दान पत्र में आएंगे या फिर से वो रिकॉर्ड में आएंगे? केवल बना देने से या उनको बैठा देने से कोई बड़ा डेवलपमेंट है, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं।
3: तब राशिद अलवी रिटायर्ड एयर मार्शल के राम मंदिर ट्रस्ट का CEO बनते ही ऑपरेशन सिंदूर में संदेह की सियासत करने लगे, जिससे बीजेपी को जवाब देने का भरपूर मौका मिलता है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी संत समाज से किसी के CEO न बनने पर चिंता जताते हैं, तो विपक्ष के दूसरे नेताओं ने जाति से लेकर संघ परिवार पर भरोसे तक की कमी का हवाला दे दिया।
11: भाई ये काम साधु संतों का है, अब एयर मार्शल साहब ने हवाई जहाज उड़ाया, हवाई जहाज उड़ा लेते, अब इनके RSS के जंगल में फंस गए वो।
12: आपने रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल को बना दिया, सर्विंग ऑफिसर को बनाइए ना, नियंत्रण दीजिए सरकार को, सर्विंग ऑफिसर को बनाइए। आपको लगता है IAS IPS ऑफिसर नहीं कर सकते, तो सेना से ही सर्विंग ऑफिसर को उठा के बनाइए किसी को भी।
13: रिटायर्ड अधिकारी से क्या समझते
12: हैं? नहीं, रिटायर्ड हो गया ना, रिटायर्ड किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है रिटायर्ड? भाई रिटायर्ड हो गया, उसकी काम हो गया उसका पूरा।
13: क्या आप चाहते हैं साधु संतों के हाथ तो जिम्मेदारी देना चाहिए?
12: ये काम तो साधु संतों का ही है, ये काम इनका नहीं है, लेकिन आपको उसके ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए चाहिए तो उसके लिए पूरा सरकारी तंत्र मौजूद है, इस्तेमाल करिए उसका।
14: रिटायर्ड एयरफोर्स मैन बीइंग अपॉइंटेड इटसेल्फ इज अ क्वेश्चनेबल थिंग।
15: एक मिश्रा जी गए, निपेंद्र मिश्रा जी गए तो दूसरे आए, क्या कोई दलित OBC नहीं हो सकता था?
16: सरकार को, मोदी जी को, भाजपा RSS VSP के लोगों पर विश्वास नहीं रहा।
17: मंदिर का कॉरपोरेटीकरण हो गया है, बिजनेस हो गया ना, जब बिजनेस होता है तो CEO आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, डायरेक्टर्स आते हैं, सब लोग आते हैं।
3: ये सारे बयान के इस बात का सबूत है कि जुलाई में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट पर विश्वास को लेकर जो मुद्दा विपक्ष के हाथ लगा वो या तो समय बीतने के साथ कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि 3 महीने के बाद अब इस मामले में 8 आरोपी जेल में हैं, 2 जुलाई को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्र इस्तीफा दे चुके हैं, अब नई जिम्मेदारी ट्रस्ट में सौंपी जा चुकी है।
7: मैं जब एक बार CEO के रूप में टेक ओवर कर लूंगा तो ट्रस्ट के विश्वास से और अपनी टीम की मदद से जो भी उत्तम से उत्तम कार्य होगा राम मंदिर के लिए वो मैं करने का पूरा प्रयत्न करूंगा और श्री राम से ये प्रार्थना करूंगा कि मुझे इसके लिए भरपूर सामर्थ्य प्रदान करें। धन्यवाद।
3: CEO की जरूरत इसलिए बताई गई थी कि मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या और कामकाज बढ़ने के साथ रोजाना की व्यवस्था, सुरक्षा और निगरानी पर ध्यान देना जरूरी है, जो चढ़ावा चोरी के बाद और बढ़ गई। अब सवाल है कि पहला CEO मिलने से क्या पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, क्या नया चेहरा पुराने सवालों को मिटा देगा, या फिर राजनीति में चढ़ावा चोरी का मुद्दा जिंदा रहेगा।
0: और अब खबर फर्रुखाबाद की, जहां योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर उनका हाल जाना, राहत सामग्री बांटी, छात्रों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस सब के बीच नीप करौली बाबा को भी याद किया, जिनका रिश्ता फर्रुखाबाद से काफी करीबी है, जिनके जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश इस समय बहुत चर्चा में।
3: फरुखाबाद योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, बाढ़ का हवाई सर्वे करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर उनका हाल जानते हैं, राहत सामग्री देते हैं। हाई स्कूल के छात्रों के साथ मुख्यमंत्री पंडाल में सेल्फी लेते हैं। लेकिन जिस बात पर अभी गौर करना जरूरी है वो है फरुखाबाद पहुंचकर बाबा नीम करौरी को योगी आदित्यनाथ का नमन।
18: बाबा नीम करौरी की पावन धरा फरुखाबाद को मेरा सादर नमन। आज मैं जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करूंगा।
3: नीम करौरी बाबा का जन्म फिरोजाबाद में हुआ, ऐसे में फिर योगी ने फरुखाबाद में उनको क्यों याद किया? बाबा नीम करौरी से जुड़े योगी आदित्यनाथ के मैसेज के क्या सियासी मायने हैं? राजनीतिक जानकारों को लगता है कि योगी का बाबा नीम करौरी को याद करना अपने आप में अहम है। जिन्हें लेकर आई फिल्म हनुमान अंश ने सिनेमा घरों में जिस तरह से भक्तिमय माहौल बनाया वो अविश्वसनीय कहा जा रहा है।
19: मेरी अम्मा के पास पहुँचना है।
20: दुनिया एक छलावा।
3: करीब 2 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 61 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। जो नीम करौरी बाबा के भक्त भी नहीं है वो भी इस फिल्म को देखकर प्रभावित दिखते हैं।
21: गुफा गए तो हमने आपको बिल्कुल जंगों में लिपटो पाओ,
22: बिल्कुल भूले। आंखें वही देखती हैं जो मन में होता है और मन वही दिखाता है जो अंदर होता है।
23: कुछ मूवी ऐसी होती है जो दिल को छू जाती है, बहुत ही हम्बल सी मूवी। मुझे कभी नीम करौरी बाबा के बारे में पता भी नहीं था, थोड़ा बहुत सुना था सोशल मीडिया और न्यूज चैनल के थ्रू, पर ज्यादा कुछ नहीं पता था। बट ये मूवी देख के ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कब से उनको जानती हूँ। ये मूवी, माई गॉड, मैंने एक बार भी मेरा फोन टच नहीं किया। हैट्स ऑफ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मूवी, और ये मूवी सभी को देखनी चाहिए।
24: एक बार बाबा ने अगर आपको अपना लिया तो चाहे आप कहीं पर कितनी भी मुश्किल।
3: जय संतोषी माता फिल्म से हनुमान अंश फिल्म की तुलना की जा रही है, जिसकी सादगी और भजन देखने सुनने वालों को खूब भा रहा है।
25: तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया रा।
3: इस फिल्म में मध्य प्रदेश के इन लोक गायक की जिंदगी नहीं बदली।
25: मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे।
3: इस फिल्म ने उसके एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की भी तकदीर बदल दी, जिनके पास फिल्म में प्रचार तक के कहते हैं कि पैसे नहीं थे।
26: जब हमने शुरू किया इस फिल्म का कैंपेन तो हमारे पास पैसे नहीं थे, और हमें कैंपेन शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे, और हमारे दिमाग में बहुत बात क्लियर थी कि हमको महाराज जी के संदेश के अराउंड ही हमको कैंपेन नहीं करना है, मार्केटिंग कैंपेन नहीं करना है। हमारी फिल्म आ गई, आप लोग आके देखो क्योंकि हमने फिल्म बनाई। क्यों भाई? सबसे पहली बात है उस कोर के साथ में जुड़ना है जो उन्होंने संदेश देना चाहे। तो हमने बड़े मंगल शुरू हुए थे, 8 बड़े मंगल थे। हमने हर बड़े मंगल को एक भंडारा कराया जिसमें हमने जाके भोजन का वितरण किया, और हमने यही सिर्फ लोगों को बताया कि महाराज जी का प्रमुख उद्देश्य ही लाइफ का ये था कि लोगों को आप भूखों को भोजन कराएं, भक्तों को प्रसाद कराएं और भूखों को भोजन कराएं। आप समझिए कि हमारा सारा काम उन 8 बड़े मंगल ने कर दिया।
3: इस फिल्म की प्रोड्यूसर 21 साल की अनुप्रिया नागर है, जो पहली फिल्म को मिली कामयाबी से गदगद है।
26: ये फिल्म 1943 में समाप्त हो जाती है।
27: अच्छा।
26: प्री इंडिपेंडेंस समाप्त हो जाती है, और इसका कुछ भाग 1965 में है। जो कहानी बता रहा है, जो सूत्रधार है, वो 1965 में जब कैची धाम बन गया, वो हनुमानगढ़ी भी हो सकता है, वो कैची धाम भी हो सकता है, वहाँ पे वहाँ से अपने ग्रैंडसन को अपनी कहानी बता रहा है कि वो कैसे महाराज जी से मिला। एक क्रांतिकारी, एक डॉक्टर जो नेहरू जी के साथ में, जिसने बहुत समय तक वो नेहरू जी के साथ में उनके डॉक्टर थे, वो डॉक्टर, और ये सब रियल इंसिडेंस, रियल लोग हैं। वो अपनी जब कहानी बता रहे तो वो पीछे जाके कहानी बता रहे। इस समय तक स्टीव जॉब्स वगैरह की, स्टीव जॉब्स महाराज जी के जाने के बाद में पहुंचे थे। तो इनका सब अब अगले आने वाली फिल्मों में होगा, पार्ट्स में होगा।
3: नीम करौरी बाबा का असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था, लेकिन बाद में वो बाबा नीम करौरी के नाम से मशहूर हुए और कई चमत्कार के दावे किए जाते हैं। उन्हीं में से एक दावा ट्रेन रोकने और चलाने का चमत्कार से जुड़ा है, जहाँ से उनका नाम नीम करौरी बाबा पड़ा ऐसा कहा जाता है।
1: अरे चलना तो छोड़िए साहब, गाड़ी हिली।
3: लेखक रामदास की चर्चित किताब मिरेकल ऑफ लव के मुताबिक एक बार युवा अवस्था में बाबा लक्ष्मण नारायण शर्मा यात्रा के दौरान बिना टिकट ट्रेन में सवार हुए, लेकिन टीटी ने उन्हें टिकट न होने पर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नीब करौरी गाँव के पास ट्रेन से उतार दिया। लेकिन बाबा के उतरते ही कहा जाता है कि ट्रेन नहीं चली। काफी देर बाद जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई, तब बाबा की तलाश की गई और उनके दोबारा ट्रेन में बैठने पर ऐसा कहा जाता है कि वो ट्रेन चल पड़ी। इस घटना के बाद बाबा का नाम उस स्थान से जुड़ गया जहां उन्हें ट्रेन से उतारा गया था। बाद में वो कुछ समय तक नीम करौरी गांव में भी रहे, इसी वजह से लोग उन्हें नीम करौरी बाबा कहने लगे। इसीलिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जब फर्रुखाबाद पहुंचते हैं तो उन्हें नमन भी करते हैं।
18: बाबा नीम करौरी की पावन धरा फर्रुखाबाद को मेरा सादर नमन।
3: एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स हो, मेटा के मार्क जकरबर्ग हो या फिर अमेरिकी अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, और साथ ही प्रसिद्ध अमेरिकी भक्ति गायक कृष्णदास के बारे में बताया जाता है कि ये नीब करौरी बाबा से प्रभावित रहे। बहुत मशहूर लोग हिंदू धर्म के करीब आए, विराट और अनुष्का की गिनती भी उनके भक्तों में होती है। वीरेंद्र सहवाग भी इसीलिए फिल्म का प्रचार करते देखे गए।
2: भारत की महान संत परंपरा में ऐसे संत सदियों में आते हैं। महाराज जी को समझना तो संभव नहीं है, लेकिन उनकी एक झलक पाना जरूर संभव है, और हनुमान अंश उसी झलक को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। अगर आप महाराज जी को जानते हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए, और अगर नहीं जानते तो और भी जरूर देखिए। जय सीताराम।
4: तुम करना क्या चाहते हो?
3: भक्ति की शक्ति का ही नतीजा है कि हनुमान अंश बिना बड़े प्रचार के भी लोगों को सिनेमा घरों तक खींच लाने में कामयाब दिखी है।
20: एक छलावा।
3: इस एक फिल्म ने अपने से जुड़े हर शख्स की तकदीर बदल दी है।
5: और इतनी दोपहर हो गई, खाना काहे नहीं खाए हो?
6: अभी सोकर उठे हैं, रात भर नींद नहीं आती।
8: जब दिन भर सोते रहोगे तो रात में नींद आते।
3: और ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब फर्रुखाबाद पहुंचकर बाबा नीम करौरी से इस जगह के रिश्ते को समझते हुए अपने दौरे में जिक्र करते हैं, और वो भी इंस्टा मोड में वीडियो बनाकर, तो ये बात साफ है कि मुख्यमंत्री समझ रहे हैं सोशल मीडिया से प्रचलित और मजबूत होती आस्था को कैसे हिंदू राजनीति से जोड़ना है और उसका लाभ लेना है।
0: मायावती ने आज एक बार फिर से चौंकाया। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी संयोजक पद से एक बार फिर से हटा दिया। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी कोई जिम्मेदारी आकाश को नहीं दी गई। अब आकाश आनंद पार्टी के सिर्फ कार्यकर्ता हैं। आकाश की जगह उनके छोटे भाई मायावती के साथ दिखाई दिए। अब सवाल यह है कि क्या आकाश की जगह उनके छोटे भाई लेंगे, या फिर कुछ दिनों की नाराजगी मुख्यमंत्री की है, जैसी नाराजगी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पहले भी दिखा चुकी है।
9: जानते हैं कि बहन जी के सामने आप लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन एक तैयारियों को लेकर सिर्फ किस तरीके की है।
3: बीएसपी में मायावती की बात आते ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की जुबान पर ताला लग जाता है। ये बात तो सबको पता है, लेकिन मायावती के बड़े भतीजे की पहेली का जवाब किसी के पास नहीं। लखनऊ में पार्टी के ऑल इंडिया स्तर की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करने जब मायावती आई तो उनके साथ आकाश आनंद नहीं दिखे।
9: इधर बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मायावती, वो यहाँ पर पहुँची हैं, और ये पूरे देश भर से अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं। वो अब ऐसे में चूंकि बसपा 2027 की बड़ी तैयारियों के साथ में यहाँ पर है, और इस बार जो जिम्मेदारी है वो उन सभी पर तैयारी की जिम्मेदारी है कि आखिर 2027 में कैसी ये रणनीति तय होगी। आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस बार आकाश आनंद नहीं है, लेकिन साथ में उनके अन्य लोग मौजूद हैं।
3: मायावती के पीछे सबकी नजरें आकाश को ढूंढती रहीं, लेकिन आकाश की जगह उनके छोटे भाई ईशान दिखाई दिए, तो मायावती की कुर्सी पर बैठते ही अपने पिता के साथ चुपचाप बाकी नेताओं के संग खड़े हो गए। सवाल है कि क्या मायावती अपने दूसरे भतीजे को आगे बढ़ाएंगी? क्या बीएसपी की बैठक से आकाश की दूरी और ईशान का नजर आना नया संदेश? आखिर आकाश आनंद को लेकर बीएसपी में इतना कंफ्यूजन क्यों है? इस सवाल की ताजा वजह मायावती का आकाश को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटाना है। ये बताना है कि आकाश आनंद को राजनीतिक रूप से और अधिक परिपक्व होने की जरूरत है, इसीलिए उन्हें किसी भी बड़ी जिम्मेदारी से दूर रखने का फैसला किया गया है। सत्ता की, विरोधी दलों की साम दाम दंड भेद जैसे हथकंडों के इस्तेमाल से पार्टी को होने वाले संभावित चुनावी नुकसान से बचाया जा सके। मायावती के इस ताजा फैसले के बाद आकाश आनंद ने भी अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल तुरंत बदल लिया। उन्होंने राष्ट्रीय संयोजक की जगह खुद को बीएसपी कार्यकर्ता के रूप में पहचान दिखाना शुरू कर दिया। इससे आकाश के समर्थकों में निराशा कही जाती है, क्योंकि जिस भतीजे को मायावती ने अब से कुछ साल पहले आशीर्वाद देते हुए अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया, वो अब पार्टी की बैठक से गायब है। 16 अप्रैल 2019 को सियासी एंट्री करने वाले आकाश आनंद 3 सितंबर 2026 तक 7 साल 4 महीने 18 दिनों में बीएसपी में कभी अंदर आते हैं, कभी बाहर जाते हैं। 23 जून 2019 को मायावती ने आकाश आनंद को बीएसपी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया। 10 दिसंबर 2023 को उन्होंने आकाश को अपना उत्तराधिकारी बताया, लेकिन 7 मई 2024 को मायावती ने आकाश को पहली बार राजनीतिक उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय समन्वयक के पद से हटा दिया। वजह बताई कि आकाश को परिपक्वता हासिल करने की जरूरत। फिर अगले ही महीने 24 जून 2024 को मायावती ने चौंकाते हुए आकाश को पार्टी में पद और उत्तराधिकार का हक लौटा दिया। अगले साल मार्च के महीने में मायावती ने आकाश को सभी पदों से दूसरी बार हटाते हुए दो टुक कहा कि उनके रहते कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। फिर अगले ही महीने मायावती का भतीजे पर दिल पसीजा और एक और मौका देने की बात कहते हुए पार्टी में एंट्री करा दी। फिर 18 मई 2025 को आकाश आनंद दूसरी बार बीएसपी के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक बन गए, लेकिन 16 महीनों बाद मायावती ने आकाश आनंद को तीसरी बार पार्टी संयोजक के पद से हटाकर परिपक्वता को ही वजह बताई। मायावती ऐसा क्यों कर रही है, ये बात तो वही बता सकती है, लेकिन इसमें पार्टी के अंदर यकीन है कंफ्यूजन की हालत पैदा होती है। वही विपक्षी पार्टियों को इसके जरिए बीएसपी को वोट बैंक को फुसलाने का मौका मिलता है।
10: मायावती जी कभी आकाश आनंद को जिम्मेदारी देती हैं, कभी अपरिपक्व बनाकर वापस लेती हैं, यद्यपि उनका ये आंतरिक विषय है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी समझ नहीं पा रही है, इसलिए पीडीए के तमाम अर्थ रोज बताते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश जी हो, मायावती जी हो और कांग्रेस हो, ये समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता को विकास पसंद है।
11: मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी अब राजनीति से थोड़ा सा दूर हटना चाहती हैं।
12: जब तक सुश्री मायावती जी हैं, तब तक आकाश आनंद को किसी और दुश्मन की आवश्यकता नहीं है। आकाश आनंद को डिप्रेशन में डालने का काम, लगातार उसको बेइज्जत करने का काम कोई विरोधी पक्ष नहीं कर रहा है।
3: 2024 में मायावती का वोट जिस तरह से बिखरा है, कम हुआ, बाकी पार्टियों में बटा, उसने यूपी का सियासी गणित पलट कर रख दिया। अब सवाल है कि क्या अगले साल विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट एकजुट हो पाएगा या फिर बिखर जाएगा।
0: एक समय था जब बीएसपी वोट ट्रांसफर करने वाली इकलौती पार्टी मानी जाती थी। मायावती ने जिसे कहा उनके वोटर्स ने उन्हें वोट कर दिया, लेकिन मायावती की ये शक्ति अब उतनी नहीं दिखती। इसने उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल दी है, बीएसपी की राजनीतिक हैसियत को कमजोर कर दिया है। साल 2012 तक करीब 80-85% जाट मतदाता एक तरफा बीएसपी के साथ खड़े रहते थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार बड़ा बदलाव देखा गया। बीएसपी के पास लगभग 65% जाट वोट ही बचे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कल्याणकारी योजनाओं, फ्री राशन और आवास के दम पर करीब 21% जाट वोटों पर कब्जा कर लिया। 2024 लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। 2024 के आम चुनाव में कहानी पूरी तरह से बदल गई। संविधान बचाओ के नारे और समाजवादी पार्टी के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए फॉर्मूले ने मायावती के आधार को ही हिलाकर रख दिया। इस चुनाव में केवल 44% जाटव वोटर ही बीएसपी के साथ रहे, जबकि करीब 25% जाटव मतदाताओं ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दिया और बाकी बीजेपी के खाते में गए। अगर जाटव वोट 40% से नीचे खिसका तो बीएसपी का वजूद संकट में आ जाएगा और पार्टी सिंगल डिजिट सीटों पर सिमट जाएगी। मतलब अगला विधानसभा चुनाव बीएसपी के लिए करो या मरो वाला माना जा रहा है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती भतीजे को लेकर ही कंफ्यूज्ड दिखाई दे रही हैं। जब बीएसपी का कोर वोटर ये सब देखेगा तो वो क्या सोचे, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश साक्षरता के मामले में उत्तर भारत के बाकी राज्यों से बहुत आगे है, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में 150 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं है। 3,500 स्कूल हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर बच्चों को एक ही टीचर सारे विषय पढ़ा रहे हैं। वर्ष 2022 में बनी सुक्खू सरकार कह रही है कि टीचर्स की भर्ती के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा।
7: स्कूल में जहाँ सिंगल टीचर है वो भी समय की परिस्थितियां, आप इंतजार कीजिए, जल्दी हम इसको सिंगल टीचर्स के बारे में मैं एक नीति पर कार्य कर रहा हूँ।
3: कितना इंतजार करें मुख्यमंत्री जी, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार को बने दिसंबर में 4 साल हो जाएंगे। सवाल यह है कि स्कूलों की हालत सुधारने के लिए अब आपको कितना वक्त चाहिए, क्योंकि ये सोच से परे है कि हिमाचल प्रदेश में 150 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं, 3,500 स्कूलों के छात्र सिर्फ एक टीचर के भरोसे हैं। अब आप सोचिए इन विद्यालयों में क्या पढ़ाई होती होगी, क्या बच्चे पढ़ पाते होंगे, क्या उनका भविष्य मजबूत होगा। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी विधायक रीना कश्यप ने शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया, जिस पर दखल देते हुए मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, लेकिन सवाल है कि ये नौबत आई ही क्यों।
13: हमारा जो प्राइमरी स्कूल रेनबाड़ू है, पिछले एक वर्ष से वहाँ पे हमारे पास कोई टीचर नहीं है, जबकि बच्चों की संख्या कम से कम वहाँ पे 40-50 है। उसी प्रकार हमारा जो प्राइमरी स्कूल ढेंडो है वहाँ भी पिछले एक वर्ष से कोई टीचर नहीं है। बहुत हैरानी का जो विषय है कि 12 ऐसे स्कूल है जहाँ पर अगर टीचर ना हो तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ये बहुत ही गंभीर विषय है, और जब मैंने वहाँ के लोगों से बात की तो वहाँ पे खुद जो स्थानीय लोग है वो टीचर हायर करके खुद पैसे दे रहे हैं।
14: जो हमारे विदाउट टीचर स्कूल है इसकी संख्या लगभग कोई 150 के आसपास है। हमारी विभाग की प्राथमिकता रहेगी कि जो विदाउट टीचर स्कूल है पहले वहां पर टीचर जाए।
3: सोचिए हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का क्या हाल, जहां सैकड़ों स्कूलों में टीचर नहीं है और 3,500 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले परिजन अपनी जेब से पैसे खर्च करके पढ़ाने के लिए अब टीचर अलग से रखने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के इस सच से पर्दा उठाने के लिए हम कुल्लू पहुंचते हैं। यहाँ हमें टूटी फूटी हालत में एक स्कूल मिलता है, और सबसे ज्यादा हैरानी एडमिशन ओपन के इस तरह के इश्तेहार से होती है। प्राइवेट स्कूलों में अक्सर ऐसे एडमिशन के पोस्टर आपने देखे होंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के इस स्कूल में ऐसा पोस्टर लगना अपने आप में छात्रों और उनके परिजनों से मजाक है, क्योंकि जिस स्कूल में एडमिशन के लिए बुलाया जा रहा वो सिर्फ एक टीचर के हवाले है। सोचिए हिमाचल प्रदेश में एक टीचर के सहारे पूरा स्कूल चल रहा, लेकिन कुल्लू के इस प्राइमरी स्कूल में देश के भविष्यों के साथ तो अत्याचार हो रहा है, जिसमें प्राइमरी से 5वीं कक्षा तक के 21 बच्चे हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर। पिछले 2 साल से एक ही टीचर ये सारी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
15: मैं 2024 से पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, 2 साल मेरे को हो चुके हैं अभी अगस्त में। हाँ जी, हमने बोला और ये लोग काफी बार गए भी थे, तो शायद टीचर की शॉर्टेज है तो करके बोलते रहे थे डिपार्टमेंट से कि टीचर भेज देंगे। अब देखते हैं सर, ऑब्वियस है वो तो मुश्किल होगी। अब सब्जेक्ट इतने सारे हैं, फिर क्लासेस भी अलग अलग हैं, बच्चे चाहे कम हैं, बेशक हर एक क्लास को अलग अलग से ट्रीट करना पड़ता है। प्री वालों को फिर अलग से, फिर फर्स्ट से फिफ्थ का सिलेबस अलग है, हर एक बच्चे को पकड़ना पड़ता है, तो प्रॉब्लम तो होती है।
3: सोचिए एक टीचर 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पिछले 2 साल से सारे विषय पढ़ाती है। अनीता ठाकुर बताती है कि शिक्षकों की कमी को देखते हुए स्कूल प्रबंधन समिति की ओर से एक अस्थाई टीचर रखा गया, जिसे प्रति छात्र 200 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब वो भी चली गई। अब इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से लेकर मिड डे मील का खाना तैयार करने की जिम्मेदारी तक एक टीचर के भरोसे अंजाम दी जा रही है।
16: हम गए नीचे डिप्टी डायरेक्टर के पास टीचर के लिए, उन्होंने कहा फिलहाल कोई मतलब टीचर है ही नहीं, हम तो भेजने के लायक सभी स्कूल व्यस्त है, सारे टीचर कोई आने के लिए नहीं, मतलब यहाँ सर एक टीचर से क्या होगा, यहाँ तो एक टीचर तो मतलब मिड डे मील का ही काम करता, ज्यादातर बच्चे को क्या पढ़ाएंगे वो।
3: कुल्लू जैसे हालात चंबा की सलूणी क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में भी दिखते हैं, जहाँ 98 बच्चों की पढ़ाई के लिए 2 टीचर का जिम्मा है। इसमें भी एक टीचर जनगणना ड्यूटी में लगा दिए गए। ऐसे में आप सोचिए कि 98 बच्चों को सिर्फ एक टीचर कैसे पढ़ाते होंगे। छात्रों के साथ होती इस नाइंसाफी के खिलाफ अभी एकलौते टीचर भी बच्चों के साथ अनशन पर बैठने की चेतावनी देने लगे।
17: हम एक हफ्ते के अंदर अगर हमारे भेड़ो स्कूल में टीचर नहीं आया तो हम समेत बच्चों के आपके डीसी ऑफिस में आके धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमने जो है अब हम सोच रहे हैं कि अगर हमारे भेड़ो स्कूल में टीचर नहीं आते तो हम भेड़ो स्कूल से सभी बच्चों को लेकर जो है डीसी उपयुक्त महोदय के समक्ष ले आके जो है वहाँ पे अनशन पे बैठेंगे।
3: इस स्कूल में शिक्षा की तरह खेल के इंतजामों का भी हाल बेहाल है। स्कूल का मैदान पूरी तरह लैंडस्लाइड की चपेट में आया है। बच्चे छोड़िए, अगर किसी बड़े का भी पांव फिसल जाए तो सीधा खाई में गिर सकता है। इस तरह चंबा के इस स्कूल में छोटे बच्चों की जान पर खतरा बना हुआ है।
17: अरे श्री सुखविंदर सुखू जी से भी रिक्वेस्ट है कि सर हमारे भेड़ो स्कूल पे भी प्लीज ध्यान दें कि हमारे भेड़ो स्कूल के हालात कैसे हैं, और ऐसे हालात में बच्चों को शिक्षा देना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है टीचरों को भी। और आप देख सकते हैं कि हमारे भेड़ो स्कूल के हालात को लेकर कैसे हालात है, ये शिक्षा का सवाल है सर। आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारे भेड़ो स्कूल में कैसे व्यवस्था है।
3: साक्षरता दर के मामले में हिमाचल प्रदेश का नाम बेहतरीन राज्यों में शुमार है। भारत सरकार से अनुबंधित एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट कहती है कि हिमाचल प्रदेश के छात्रों का रीडिंग लेवल पूरे देश में सबसे बेहतर है। मतलब हिमाचल के छात्र देश के लिए मिसाल है। इसके बावजूद वहाँ की सरकार इन बच्चों को इस बेहतरीन प्रदर्शन के बदले में क्या शिक्षक भी नहीं दे पाती।
14: सिंगल टीचर स्कूल भी हमारे प्रदेश में लगभग कोई 3500 के आसपास है, और इस 3500 में से लगभग 2500 ऐसे हैं जहां पर आपकी इनरोलमेंट बच्चों की 15 से कम है। तो हम पहली प्राथमिकता जो 15 से ऊपर जहां पर आपकी इनरोलमेंट है वहां पर दूसरा टीचर अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, और इसी तरह से जो हमारे विदाउट टीचर स्कूल्स है इनको हम फिलअप करेंगे। ये हमारे मैं आपको विश्वास लाता हूं।
3: शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर पूरे देश में चिंता जताई जा रही है। अपनी पढ़ाई की चिंता करते हुए छोटे छोटे बच्चे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होते हैं। ऐसे में हिमाचल के ये स्कूल छात्रों की मजबूरी से सरकार को खबरदार करते हैं।
0: और आइए अब आपको वीआईपी कल्चर से खबरदार करते हैं। इसका उदाहरण मुंबई में देखने को मिला, जहां वीआईपी सोच से जुड़ी एक अमानवीय तस्वीर दिखाई दी। मुंबई में वीआईपी काफिले को निकालने की जल्दी में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने साइकिल सवार को धक्का देकर गिरा दिया, उसकी साइकिल उठाकर फेंक दी। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मामला 31 अगस्त का है। इस घटना को लेकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी से इस बर्ताव के लिए क्या सिर्फ ये पुलिस वाला ही दोषी है, या फिर ऊपर बैठे ऑफिसर्स नेताओं की वो सोच जो आम आदमी से खुद को ऊपर समझते हैं। इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाली प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि साइकिल वाले को गिराने वाले पुलिस वाले को रत्ती भर भी अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है।
19: ऑनेस्टली बोलो तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग जो नॉर्मल कॉमन इंसान है उनको मिसबिहेव करने, मतलब अभी जैसे वो वीडियो में गरीब इंसान था, उन्होंने एक भी बार सोचा नहीं कि उन्होंने साइकिल फेंक दिया। उसके बाद भी जब कॉन्वॉय पास हुआ उसके बाद भी उन्होंने जाके हेल्प नहीं किया। वो आदमी सामने से आके पूछा आपने हम लोग के साथ में ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने उसको इग्नोर किया और ऐसे दिखाया जैसे कि केयरलेस बिहेवियर था। हमने भी उनको जाके पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने जस्ट इग्नोर कर दिया उस चीज़ को। वो जो उन्होंने बिहेव किया साइकिल वाले के साथ में वो सही नहीं था। एटलीस्ट उनको बोलना चाहिए था कि आप साइड हो जाओ।
0: आखिर ये वीआईपी काफिला किसका था? इस सवाल का जवाब अब आ चुका है। ये काफिला सुप्रिया सुले का बताया जा रहा है। बड़ी खबर यही है कि जो काफिला, जिस काफिले के चक्कर में इस ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने साइकिल सवार से अमानवीय हरकत की, वो सुप्रिया सुले की काफिले की गाड़ी थी। अब तक साइकिल सवार को गिराने वाले पुलिस कांस्टेबल पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है, हालांकि विभाग ने जांच की बात कही। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
22: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
23: स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद द कोलर स्पा एट होम।

0: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है, जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल टू इन वन बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
2: असली शहद, असली स्वाद।
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
4: छक्का
5: सब कैशलेस हो गया
4: है।
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: ओए, जाके दे खड़ी की,
8: पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है
7: और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी?
8: क्या
9: बिस्किट पेश है? अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
7: पार्किंग यार कहीं भी लगा ले।
10: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
11: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
14: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट,
13: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx, JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है, जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल टू इन वन बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।

0: Spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स,

0: रिश्ता लंबा चलेगा।
1: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर।
6: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स। इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: आज तक भर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में ब्लैक एंड व्हाइट लेकर हमारी साथी अंजना होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आठवीं पंचायत में तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, बालकृष्ण रूप में जो बच्चे यहाँ पर सज धज के आए हैं उनके साथ उनको आप इस वक्त देख रहे हैं। और आजकल मुख्यमंत्री जी जहां पर जा रहे हैं संबोधन में, वो वृंदावन कृष्ण बिहारी की जय के साथ शुरुआत कर रहे हैं।
1: राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की। सेफई सिंडिकेट ये महाभारत के रिश्तों का सबसे अच्छा उदाहरण है।
0: पेपर लीक, रोजगार, इन सब पर क्या है आपकी योजना?
1: अंजना ओम कश्यप जी जो बात कह रही थी, अब यूपी में पर्चा लीक नहीं होता है क्योंकि पर्चा लीक करने वाले को मालूम है कि तो जेल तो जाएगा ही जाएगा, बाप दादों की पूरी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवा करके सड़कों पे कटोरा लेकर के घूमने के लिए मजबूर हो जाएगा। मैंने कहा क्या तैयारी है? उन्होंने कहा जो गत वर्ष का जियो है हमने उसको ही जारी करने के लिए कहा। मैंने कहा क्या है गत वर्ष का जियो? उन्होंने कहा साहब डीजे नहीं बजेगा, घंटा संग घड़ियाले सब नहीं बजेंगे। भाई हमने कहा तो फिर क्या है, ये शिव की यात्रा है या कोई शव यात्रा निकल रही है? इन्होंने यूपी की इस विरासत को अपमानित किया, इन्होंने अयोध्या को भी अपमानित किया, इन्होंने हमारी इस पावन ब्रज भूमि को अपमानित किया। इस मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर बेटी की सुरक्षा के साथ इसने खिलवाड़ किया है तो इसको जेल या जहन्नुम में से एक जगह पहुंचाना जरूर है क्योंकि ये इसका हकदार है। अंजना जी को उस समय मैंने कहा था, जब उन्होंने इंटरव्यू 22 में लिया था, तो मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा चिंता मत करिए, हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और यूपी पंचायत में तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, वो दो दिन मथुरा वृंदावन में रहने वाले हैं और कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव भी यहाँ पर मन रहा है। तो वो क्या यहाँ पर इस मंच से कहते हैं वो भी दिलचस्प होगा। और बालकृष्ण रूप में जो बच्चे यहाँ पर सज धज के आए हैं उनके साथ उनको आप इस वक्त देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत स्वागत यूपी पंचायत में। महज 50 दिन पुरानी बात है, वो यूपी पंचायत में लखनऊ में मौजूद रहे और वहां से उन्होंने जनता का संबोधन किया। और आज एक बार फिर इस मंच से वो आज तक के तमाम दर्शकों और यहां पर मौजूद जो लोग हैं मथुरा वृंदावन में, उन सब के सामने अपना संबोधन रखेंगे। लेकिन तीन चार बड़ी बातें हैं जिनकी चर्चा हम पहले करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे लंबा कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश में अब तक का हो चुका है। सत्रह में बने, 22 में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और अब सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने इस बार 27 का रहेगा। बहुत सारी बातें हैं क्योंकि ये पहला चुनाव है जो जेंजी आंदोलन के बाद देश में होने वाला है, तो उस पर क्या सोचते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये जानेंगे। ये मथुरा की धरती है, ये कृष्ण बिहारी की धरती है। और आजकल मुख्यमंत्री जी जहां पर जा रहे हैं संबोधन में, वो वृंदावन कृष्ण बिहारी की जय के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो कई जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई अयोध्या अगर झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो मथुरा जन्म स्थान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्या सोच है ये वो इस मंच से जानना चाहेंगे। विजय की पालकी, जय कन्हैया लाल की, क्या इस सोच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल पड़े हैं। इसी के साथ साथ जिन मुद्दों पर हम लोग चर्चा चाहेंगे वो है अयोध्या का मुद्दा, क्योंकि उसके ध्वजवाहक के तौर पर लंबे वक्त से मुख्यमंत्री जी लगे रहे। मंदिर बनने के बाद अनेकों बार 70-80 बार वो वहां पर गए। चढ़ावा चोरी का मुद्दा, क्या राजनीतिक रूप से चुनावी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर नए सीईओ के गठन के बाद, नई टीम बनने के बाद एक बार फिर से भक्तों का भरोसा वो जीत पाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आपने देखा होगा आज दिन भर कांग्रेस के कई नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े एक आर्मी के पूर्व अधिकारी को आपने सीईओ के पद पर क्यों नियुक्त कर दिया? तो इस पर मुख्यमंत्री जी क्या सोचते हैं वो जानना दिलचस्प रहेगा। जेन जी, जेन अल्फा, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने ये चैलेंज होगा कि वो कैसे उनकी भावनाओं को क्लॉकेट करेंगे, क्योंकि अब उनकी भाषा अलग है, इंस्टाग्राम की पीढ़ी से आपको जुड़ना है, तो उसमें आपकी क्या सोच है? एक दिलचस्प सवाल मेरे मन में भी है जो मैं चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी बनाए कि चढ़ावा चोरी या जेन जी आंदोलन, उनकी नजर में कौन सा रियल चैलेंज है जो उनके लिए चुनावी तौर पर 27 के पहले आने वाला है? हमने दर्शकों को भी दिखाया, कई जगहों पर जेन अल्फा वीडियोस भी बना रहे हैं, वो मिड डे मील की मुख्यमंत्री जी बहुत चर्चा कर रहे हैं कि उसका स्तर और बेहतर होना चाहिए, पेपर लीक, रोजगार, इन सब पर क्या है आपकी योजना और युवाओं को कैसे आप अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं अलग है और उसको वो अलग अलग जगहों पर सामने आकर दिखा भी चुके हैं। एक और रीत आजकल मुख्यमंत्री जी चल रही है जिसमें महिलाओं का वोट निर्णायक हो रहा है, तो बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद क्या यूपी में भी आपकी कोई योजना है, क्योंकि अब अखिलेश जी भी अनाउंस कर रहे हैं पैसों की बात, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या करने वाले हैं? कुछ ऐसी खबर आई कि 30+10+10 वाली बात आने वाली है, तो महिलाओं को लेकर आप क्या सोच रहे हैं उस पर चर्चा होगी। अब आपने सैफई सिंडिकेट और रामपुर सिंडिकेट का जिक्र किया है और आप अपना कानून व्यवस्था का पूरा एजेंडा रखते हैं, तो क्या आज भी समाजवादी पार्टी की पुरानी सरकार और उसके तौर तरीकों पर आप जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे? जो अगला मुद्दा मेरी नज़र में है जिस पर हम लोग उम्मीद रखते हैं कि मुख्यमंत्री जी आज बोलेंगे, वो ये है कि पिछली बार आप बुलडोजर बाबा, हम लोगों ने देखा जिस दिन रिजल्ट आया तो बुलडोजर के मिनी एचर ले लेके लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। माफियाओं को हमारे इंटरव्यू में आपने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में नहीं मिलाएंगे तो क्या उनकी आरती बताएंगे? क्या वही सख्त रूप आपका फिर से देखने को मिलेगा और क्या वही आपके चुनाव का नैरेटिव बनेगा? इसी के साथ साथ जो अगला मुद्दा हम लोग मान रहे हैं कि बड़ा होगा वो ये है कि 2017 और 2022 ये चुनाव अलग था, 2024 में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं, वो एक नई ऊर्जा के साथ आ रहे हैं, उनको आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? इन तमाम मुद्दों पर आपका रिपोर्ट कार्ड, आपका जनता से संवाद सुनने के लिए हम सब आतुर हैं। तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत कीजिए। हमने शीर्षक मुख्यमंत्री जी बड़ा दिलचस्प रखा है, मथुरा की धरती है योगी जी की चुनावी लीला। बहुत बहुत स्वागत है आपका, तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए।
2: राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, पंचायत आज तक ब्रज की इस पावन धरा पर आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा आयोजित पंचायत आज तक के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में हमारे मंत्रीगण, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, न्यूज डायरेक्टर आज तक श्री सुप्रिय प्रसाद जी, मैनेजिंग एडिटिंग सुश्री श्वेता सिंह जी, मैनेजिंग एडिटर सुश्री अंजना ओम कश्यप जी, आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण, मैं सबसे पहले आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप को पंचायत आज तक के इस आयोजन को कान्हा के इस धरा पर करने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं। पूरी ब्रजभूमि इस समय कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव की तैयारी में लगा हुआ है, एक उत्सव है, चारों ओर आनंद का माहौल है, हर घर में लोगों के यहां श्रद्धालु जनों के घरों में आनंद जैसा उत्साह का वातावरण है और उस उत्साहपूर्ण माहौल में पंचायत आज तक ने इसी वृंदावन की धरती पर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। मित्रों, मानव जीवन की वास्तविकता क्या है, और जीवन कैसे जिया जाना चाहिए, श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले इसी पावन धरा पर जन्म लेकर के जीवन के उन रहस्यों को हम सबके सामने उद्घाटित करके रखा है। और जीवन का उद्देश्य क्या है? सत्य है, धर्म है, लेकिन इनका मार्ग कर्तव्य से होकर के जाता है, या प्रेरणा इसी धरा की देन है। और उसी धरा पर आज हम सबको पंचायत आज तक के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आज तक इंडिया टुडे ग्रुप की को इसके लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न हम सबके सामने आता है, क्या आज उत्तर प्रदेश में जो उत्साह का वातावरण है, उत्सव का वातावरण है, आप ब्रजभूमि में ही देखें, मथुरा वृंदावन में जन्मोत्सव का माहौल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, बरसाना में रंगोत्सव होली के अवसर पर, ब्रजरज महोत्सव यहां के उत्सवपूर्ण वातावरण के साथ ही यहां की पंचकोशी परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा और 84 कोसी परिक्रमा, यह उत्सवपूर्ण वातावरण, इसका जो पोटेंशियल है, इसकी जो संभावनाएं हैं और इसकी जो चुनौतियां हैं, क्या 2017 के पहले संभव था? आज हम जहां खड़े हैं, याद करिए, ये वही धरा है जहां पर जून 2016 में जवाहर बाग की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी। उनतीस लोग मारे गए थे, उपद्रव का तांडव था, चारों ओर अराजकता थी, यूपी पुलिस के भी अधिकारी मारे गए थे। और उस धरती पर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ? क्या आज वहां पर एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जहां पहले हजारों की संख्या में श्रद्धालु आने को तैयार नहीं था? उस धरती पर आज के दिन पर गत वर्ष अकेले इस ब्रजभूमि पे 11 करोड़ श्रद्धालु पर्यटक के रूप में आया था। और मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं
3: तो गत वर्ष उत्तर प्रदेश में 2025 में 156 करोड़ श्रद्धालुओं ने आकर के उत्तर प्रदेश के अंदर आस्था को आर्थिकी के साथ जोड़ने का एक नया अनुभव देश और दुनिया को करवाया था। यह जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन उसी बदलाव का परिणाम है जो चुनौती से भागता नहीं, उन चुनौतियों में संभावनाएं देखता है और उन संभावनाओं को समाधान तक पहुंचा करके सफलता के नित नए प्रतिमान स्थापित करता है। जो लोग चुनौती को समस्या मानते थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश को कर्फ्यू ग्रस्त बनाया था, दंगा ग्रस्त बनाया था, अराजक बनाया था, उपद्रव प्रदेश में बदल दिया था। जिन लोगों ने चुनौती को एक संभावना के रूप में लिया, उन्होंने उन संभावनाओं में सफलता के नित नए प्रतिमान स्थापित भी किए और वही प्रगति आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबको दिखाई दे रही है। आजादी के बाद जो संभावनाएं आगे बढ़ने के लिए होनी चाहिए थी, उन संभावनाओं को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तिलांजलि देकर के कुंद किया गया, उन्हें अपमानित किया गया। यहां के पोटेंशियल को परफॉर्मेंस के रूप में बदलने की बजाय उसे प्लानवादी बनाने का प्रयास किया गया। दुष्परिणाम क्या था? दशकों तक यूपी के सामने बीमारू राज्य के रूप में अपनी पहचान को छुपाने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। यहां का युवा अपनी पहचान को छुपाता था, यहां का व्यापारी अपनी पहचान को छुपाता था, यहां का हर नागरिक जब यूपी के बाहर जाता था तो अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होता था। गलती उस युवा की नहीं थी, गलती उस बेटी की नहीं थी, गलती उस व्यापारी या उस उद्यमी की नहीं थी। बीमार यूपी नहीं था, यूपी में तो सब कुछ था। यहां संभावनाएं थी, यहां विरासत थी, दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि थी, सबसे अच्छा जल संसाधन था, लेकिन योग्य नेतृत्व का अभाव था। बीमारू उत्तर प्रदेश नहीं था, बीमारू वह मानसिकता थी जो 2017 के पहले यूपी में शासन कर रही थी। वह बीमारू थी, वह बीमार थी, इसलिए उसने यूपी को बीमारू बना दिया। उनकी नीति बीमार थी, उनके क्रियाकलाप बीमार थे, इसलिए यूपी बीमारू बना। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यूपी अब बीमारू नहीं है। यूपी भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में आज तेजी के साथ आगे बढ़ा है। हमने यूपी को बॉटम थ्री से टॉप थ्री इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। मैं मानता हूं इस बात को, यह डबल इंजन सरकार की ताकत है, जिसे हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर जिस यूपी के बारे में ये चर्चाएं चला करती थी कि यूपी में निवेश कौन करेगा, वहां सुरक्षा नहीं, और स्वाभाविक निवेश की पहली शर्त है सुरक्षा। निवेश की पहली शर्त होती है सरकार की नीति क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है। निवेश की पहली शर्त होती है किसे सिंगल विंडो की सुविधा चाहिए, एक फाइल 56 टेबल में घूम करके नहीं आएगी, एक सिंगल विंडो की सुविधा उसे चाहिए। दुर्भाग्य से 2017 तक इस सुविधा यूपी के अंदर लोग पैदा नहीं कर पाए। यूपी का कल्चर किस रूप में इन्होंने खड़ा किया, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहां माफियाओं को, दंगाइयों को, पेशेवर अपराधियों को पाला, उन्हें प्रोत्साहित किया, उनके सामने नतमस्तक हुआ करते थे। वही लोग यूपी के बीमारूपन के कारण भी थे, यूपी के निवेश के विरोध, यूपी में निवेश के विरोधी भी थे, यूपी में पर्यटन के विरोधी भी थे, यूपी में महिला सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए थे, और उत्तर प्रदेश के युवाओं की नौकरी और युवाओं के रोजगार पर भी सबसे बड़ी डकैती डालने का काम ये वही लोग करते थे, ये वही लोग करते थे। 2017 के पहले यूपी के अंदर कोई नौकरी निकलती थी, कोई भी नौकरी निकलती थी, विज्ञापन जारी हुआ तो खेल प्रारंभ हो जाता था। सिपाही सिंडिकेट ये महाभारत के रिश्तों का सबसे अच्छा उदाहरण है। महाभारत के सारे रिश्ते इस परिवार में मिल जाएंगे, सिंडिकेट के अंदर मिल जाएंगे। वहां शकुनी भी हैं, वहां पर वे सभी पात्र हैं, कोई दुर्योधन है, कोई दुशासन है, वे सभी पात्र मिल जाएंगे, और ये सभी पात्र मिलकर के यूपी के अंदर फिर युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ कर देते थे। हर युवा चिंतित होता था, पहले परीक्षा के, पहले विज्ञापन के बारे में, फिर परीक्षा के बारे में, फिर परिणाम के बारे में, फिर पोस्टिंग के बारे में, और फिर आगे जो खेल होता था वह भी यूपी के अंदर हम सब उस रूप में देखते आए हैं। मित्रों, 2017 के पहले अगर उन्होंने ईमानदारी के साथ यूपी के अंदर उन नौजवानों के लिए उस प्रकार के अवसर दिए होते, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां यूपी के अंदर कभी नहीं आती। स्कूल कॉलेजेस की स्थिति क्या थी उत्तर प्रदेश के अंदर, किस प्रकार का माहौल हो चुका था बेसिक शिक्षा में, जर्जर भवन स्कूल के, विद्यालय का भवन है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है तो छात्र भी नहीं होते थे। यूपी के अंदर बालक बालिकाओं के लिए ड्रॉप आउट रेट 19 से 20 फीसदी था, ये केवल स्कूली शिक्षा में। आप सोचो 9.5 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं, देश के अंदर किसी राज्य में इतनी नौकरी कभी नहीं, और यहां पे अभी सुश्री अंजना ओम कश्यप जी जो बात कह रही थी कि पर्चा लीक और पर्ची लीक, जो लोग पर्ची लीक कराते थे वही पर्चा लीक भी कराते थे। अब यूपी में पर्चा लीक नहीं होता है क्योंकि पर्चा लीक करने वाले को मालूम है कि तो जेल तो जाएगा ही जाएगा, बाप दादों की पूरी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवा करके सड़कों पे कटोरा लेकर के घूमने के लिए मजबूर हो जाएगा। हमने 2020 में ही उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कानून बनाया है कि जो भी पर्चा लीक के इस अनैतिक कार्यों में लिप्त होगा उसको आजन्म कारावास के लिए जेल के अंदर सड़ाएंगे, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे, और ये कार्रवाई यूपी के अंदर हम प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। तब हम यूपी के अंदर बिना भेदभाव के आरक्षण की नीति को पालन करते हुए 9.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में हम लोग सफल हुए हैं। आपने देखा होगा कि इन लोगों ने 17 के पहले यूपी के अंदर जो पाषाण युग लेके आए थे, उसी पाषाण युग की कल्पना को लेकर के आज भी ये क्या बात करते हैं। आपने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के कुछ वचनों को सुना होगा, जो उनके संस्कार के अनुरूप ही होता है। उनके मुंह से चवन्नी और कुत्ता जैसे शब्द निकले थे। दुनिया एजुकेशन को बेहतर बनाने में रुचि ले रही है, स्किलिंग को नया आयाम दे रही है, याई डिपटेक मेटेक इन पे चर्चा कर रही है, और ये लोग अपनी ही पार्टी के लोगों को कुत्ता और बिल्ली बना रहे हैं। लोकतंत्र का इससे बड़ा उपहास मित्रों दूसरा नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में जनता को हम जनार्दन कहते हैं, और समाजवादी पार्टी अपने ही नेताओं को कुत्ता बिल्ली बना करके किस रूप में लोकतंत्र का उपहास उड़ा रही है। कैसे एक केंद्रीय मंत्री के बारे में समाजवादी पार्टी के मुखिया किस प्रकार की हल्की बातें करते हैं, या इनकी उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो उन लोगों ने 17 के पहले यूपी के अंदर किया था। और मेरा मानना है यही वह मानसिकता है जो इतिहास के शहीदों को और बलिदानियों को कभी सम्मान नहीं दे पाई। इन लोगों ने, मुझे याद है, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैं एक बार दिल्ली के लिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बैठा था। उस समय समाजवादी पार्टी के शिक्षा मंत्री अचानक आ गए, तो हम लोग एक ही जो उनका रिटायरिंग रूम था उसी में बैठे थे। तो उसी दिन वे गोरखपुर के एक कार्यक्रम में थे। गोरखपुर आप जानते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की बलिदानी भूमि भी है। गोरखपुर में ही गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई थी। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नाम पे एक पार्क का उद्घाटन था, तो पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम में उनको बुलाया गया था, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री। और जब उनको भाषण देने के लिए वे गए, तो उन्होंने मंच से पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का नाम नहीं लिया। उन्होंने इस बात को कहा कि साहब मुझे बिस्मिल्ला साहब के जन्मदिन पर आकर के खुशी हुई। मंच से एक सज्जन ने कहा कि भाई ये बिस्मिल्ला साहब नहीं है, ये सहनाई वादक के उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब नहीं है भाई, ये तो क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल हैं। कहा कि तुम भाजपाई हो इसलिए पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का नाम ले रहे हो। ये उस समय के शिक्षा मंत्री बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के। तो जिस व्यक्ति को क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल और सहनाई वादन के उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब के नाम में ही जिनमें अंतर महसूस न होता हो, वे उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा को कहां ले गए होंगे, आप सहज कल्पना कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने नकल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हर नौकरी में सेंध लगाना भी उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको उन्होंने अपने कालखंड के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया था, और इसी को कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। मित्रों, निर्णय लेने की सामर्थ्य, निवेश के लिए आज 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हम लोगों ने दी है। कोई पिक एंड चूज नहीं होगा, ये मेरा है, ये पराया है, ये नहीं होगा, सब हमारे हैं। उसके अनुरूप हमने पॉलिसी बना दी, पॉलिसी का जो पालन कर रहा है, आप निवेश करिए, गवर्नमेंट की इंसेंटिव को लीजिए, कहीं कोई भेदभाव नहीं, सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ डीबीटी के माध्यम से, ये सारी सुविधा यूपी के अंदर मौजूद है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी है, स्किल है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी है। मित्रों, उन्हीं सब बातों को लेकर के आज जब मैं यहां पे आया हूं, आपने देखा होगा लाखों लोग इस ब्रज भूमि में वर्तमान में आए हैं, क्योंकि कल मथुरा के लल्ला का जन्मदिन है। चारों ओर उत्साह का वातावरण है, हर घर, हर कस्बा, हर वार्ड, हर क्षेत्र, चारों ओर एक धूमधाम है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, 2017 के पहले जन्माष्टमी के आयोजन को थाने, यानी एक ही आयोजन होता था जो थानों में होता था और जेलों में होता था, उसको समाजवादी पार्टी ने बैन कर दिया था, कावड़ यात्रा को रोक दी थी, जन्माष्टमी के आयोजन को इन्होंने रोक दिया था। मैं 17 में जब आया तो मैंने पहले देखा कि कावड़ यात्रा, मैंने पूछा भाई कावड़ यात्रा क्या तैयारी है, जब हमारे अधिकारी अन्य राज्यों के साथ, क्योंकि 5 राज्य उसके साथ जुड़ते हैं, यूपी के साथ उत्तराखंड भी है, दिल्ली भी है, हरियाणा है, राजस्थान है, हिमाचल है, पंजाब है, सभी जगह के श्रद्धालु आते हैं, तो इनके साथ एक अंतर्राज्यीय बैठक भी होती है, इंटर स्टेट जो बैठक होती थी उसमें हमारे अधिकारी गए थे। मैंने कहा क्या तैयारी है, उन्होंने कहा जो गत वर्ष का जियो है हमने उसको ही जारी करने के लिए कहा। मैंने कहा क्या है गत वर्ष का जियो, उन्होंने कहा साहब डीजे नहीं बजेगा, घंटा, संग, घड़ियाल ये सब नहीं बजेंगे। भाई हमने कहा तो फिर क्या है, ये शिव की यात्रा है या कोई शव यात्रा निकल रही है। मैंने कहा बैठक मेरे सामने कराओ। मैंने अगले सप्ताह बैठक करवाई, सभी राज्यों के प्रतिनिधि आए थे। मैंने कहा भाई देखो यूपी के अंदर डीजे भी बजेगा, संग, घड़ियाल सब बजेंगे, हाँ कावड़ की एक ऊंचाई हम सुनिश्चित कराएंगे, हम सुविधा देंगे, सुरक्षा भी हम देंगे, और भक्तिमय माहौल में कावड़ यात्रा निकलनी चाहिए, जो सुविधा चाहिए हमसे लो। अधिकारी मुझे डरा रहे थे, कह रहे थे साहब उपद्रव हो जाएगा। हमने कहा भी कोई उपद्रव नहीं होता है, मैं जानता हूं कौन उपद्रवी है और उपद्रवियों को हम ठीक कर देंगे। आपने देखा होगा कोई उपद्रव नहीं। इस वर्ष 5 करोड़ श्रद्धालु थे कावड़ यात्रा में, गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच, एक ही उसमें 5 करोड़ श्रद्धालु कावड़ यात्री थे। रोहिलखंड का दूसरा है, अयोध्या से बस्ती गोरखपुर वाली तीसरी यात्रा चलती है, प्रयागराज से काशी की चौथी चलती है, बुंदेलखंड की अलग है, मैं इनकी काउंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उन क्षेत्रों में केवल एक ही कावड़ यात्रा में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे, कोई उपद्रव नहीं था, कहीं अव्यवस्था नहीं थी, हर व्यक्ति खुशी के साथ आगे बढ़ रहा था। आप लोगों के उत्सव के इस आनंद को भी छीनना चाहते थे, हमने इसको फिर से पुनर्बहाल कराया, कहा नहीं इसको रोका नहीं जा सकता है, कानून के दायरे में रहकर कि कोई उत्सव मनाता है तो उसको सरकार का दायित्व तो बनता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे, उसको समर्थन करे, उसको प्रोत्साहित करे। और ऐसे ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी आयोजन भी था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को मैंने कहा भी हर थाने में करो, हर जेल में हम आयोजन करो, हर महत्वपूर्ण स्थल पर होना चाहिए, आप रोकेंगे क्यों और कैसे रोक सकते हैं। हमारे कान्हा तो यहां पे कंस की ही जेल में पैदा हुए थे, तो क्या उसको हम भूल जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे, कभी वो जेल थी, आज हमारे लिए श्री कृष्ण जन्मस्थली है, और श्री कृष्ण जन्मस्थली देश और दुनिया का लाखों श्रद्धालु आया हुआ है। पिछली सरकारें उसको समझ नहीं पाई थी, उन भावनाओं को सम्मान नहीं दे पाई थी, और जनता जनार्दन की भावनाओं को, जो भी सरकार कुचलने का कार्य करती है, लोकतंत्र उसको कुचल कर रख देता है, उसके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा कर देता है, और यही इनकी दुर्गति का कारण है। इन्होंने यूपी की इस विरासत को अपमानित किया, इन्होंने अयोध्या को भी अपमानित किया, इन्होंने हमारी इस पावन ब्रजभूमि को अपमानित किया, इन्होंने काशी को भी अपमानित करने का काम किया था, और यही कारण है कि यूपी इन्हें अब स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करने वाला है। यूपी का व्यक्ति अब कर्फ्यू मुक्त और दंगा मुक्त वातावरण का अभ्यस्त हो चुका है। अब यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है, और इस चंगापन को लेकर के वह पूरे उत्साह के वातावरण में डबल इंजन की सरकार को अपना आशीर्वाद दिए जा रहा है। जो सिस्टम प्रदेश के अंदर लागू हुआ है उसका परिणाम है कि आज उन चेहरों पर खुशी आई है जहां तक कभी खुशी नहीं पहुंचती थी। उन लोगों तक जाइए जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, सड़क की हो, मेट्रो की हो, रेलवे की हो या रोपवे की हो। कोई सोचता था बरसाना में राधा रानी मंदिर में रोपवे मिलेगी, आज ये संभव हो पाया है, हमारी सरकार ने किया है, आज ये संभव हो पाया है। मंदिर की आस्था कुछ लोगों को लगती थी कि अनावश्यक है, उन्होंने इसको सांप्रदायिकता के साथ जोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन वे भूल गए यह आस्था अर्थव्यवस्था का आधार भी है, अर्थव्यवस्था को कैसे नया आयाम देती है। जब श्रद्धालु आता है, जब श्रद्धालु आता है अकेले नहीं आता है, तब वह फूल पत्ती वाले से भी फूल खरीदता है, माला खरीदता है, पैसा उस माली के घर में भी जाता है, तब वह स्थानीय उत्पाद का भी क्रय करता है, कहीं ठाकुर जी की पोशाक खरीदता है, कहीं पर किसी हलवाई के द्वारा बनाए गए मथुरा के पेड़े को खरीदता है, वह पैसा उस कारीगर के घर में भी जाता है। जब वह एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो स्थानीय रिक्शा में जाता है या टैक्सी में जाता है, उस टैक्सी के ड्राइवर के घर में भी, उस रिक्शा चालक के घर में भी पैसा जाता है। जब वह किसी रेस्टोरेंट और होटल में रुकता है तो किसी रेस्टोरेंट के संचालक को और वहां काम करने वाले लोगों को रोजगार भी मिलता है और पैसा भी मिलता है। जब वह किसी होटल में रुकता है, यही होटल है, एक फाइव स्टार होटल बना है, मैं मानता हूं, मैं आज पहली बार यहां पे आया हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि कम से कम 500 लोग यहां रोजगार प्राप्त किए होंगे इस अकेले एक होटल में, 500 लोग यहां रोजगार प्राप्त कर रहे होंगे। अगर ये होटल नहीं बनता तो ये 500 लोग कहां रोजगार प्राप्त करते। इनकी नियति बन जाती पलायन करने की, ये दूसरे राज्यों में जाकर के अपमानित भी होते, परिवार की चिंता अलग, लेकिन आज उसको चिंता नहीं है। आज अपने ही गांव में, अपने ही शहर में, किसी होटल में उसे कार्य, उस युवा को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये तब हुआ है क्योंकि यहां पे ठाकुर बांके बिहारी का यह मंदिर का दर्शन करने के लिए देश और दुनिया का श्रद्धालु आया है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए आया है, उसको कहीं सुविधापूर्ण रहने की व्यवस्था चाहिए, वो सरकार कर रही है। एक कार्य जगह एक है, स्थल एक है, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ एक पूरा सिस्टम कैसे कार्य करता हुआ दिखाई देता, ऑटो मोड पर कैसे कार्य करता हुआ दिखाई देता है। कानून का राज, सुशासन जहां से प्रारंभ होता है, और मुझे लगता है कि कानून का राज कैसे होता है, उस बेटी से पूछिए किराना की, यानी जिसने
4: अपने बचपन में अपने पिता को खोया है, कौन पूछ सकता उन लोगों से। और इसीलिए सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करती है कि नहीं, इस मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर बेटी की सुरक्षा के साथ इसने खिलवाड़ किया है तो इसको जेल या जहन्नुम में से एक जगह पहुंचाना जरूर है, क्योंकि ये इसका हकदार है, क्योंकि इसने जुर्म किया है। वह जुर्म किया है जो किसी अपराध से बड़ा अपराध है, और इसीलिए उस अपराध को सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लिया है। आज मुझे प्रसन्नता है कि राणा में प्लान नहीं है, और कुछ लोग दुस्साहस किए थे, अभी आपने देखा होगा, लोगों ने प्रयास किया था कि अन्य जगह जैसा अपराध कर लेते हैं वैसे यूपी में कर सकते हैं। गलत फहमी के शिकार थे, ये यूपी है, नए दौर का यूपी है, ये बोलता नहीं है, प्रणाम देता है। कोई ताकत अजमा के देखेगा तो उसकी ताकत को चकनाचूर करके रख देगा यूपी। यूपी पीछे हटने वाला नहीं है, हर उसको जवाब देने की सामर्थ्य रखता है। और कुछ लोगों ने जो जरूरत की थी अभी हाल ही में उसी केराना की भूमि पर, तो उसका जवाब मिल चुका है, इससे ही बड़ा जवाब मिलेगा। और मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, यूपी आज सुरक्षित है, सुशासन के आनंद का अनुभव कर रहा है, अपने विरासत भी और विकास की यात्रा के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस आनंद का अनुभव मुझे लगता है कि कोई कर सकता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा युवा भी कर सकता है। आधी आबादी बहनें और माताएं भी कर सकती हैं, अन्नदाता किसान भी कर रहा है, हमारा हस्तशिल्पी कारीगर और वह गरीब भी कर रहा है, जिसको राशन भी मिल रहा है, जिसको आयुष्मान की सुविधा भी मिल रही है, जिसको बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उपलब्ध हो रही हैं, स्कूली शिक्षा भी मिल रही है और स्किलिंग के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की सुविधा भी प्राप्त हो रही है। ये सभी कुछ आज के दिन पे यूपी के अंदर मौजूद है। जब सरकार की नीयत ठीक होती है, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल होता है। हमने 9.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश का जो एक वातावरण दिया, 65 लाख नौजवानों को इसके माध्यम से उन्हीं के जनपद या उसी के प्रदेश में हमने उसे नौकरी दी है, और एमएसएमई के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हमने यूपी के अंदर 3.25 करोड़ से अधिक लोगों को प्रदेश के अंदर एमएसएमई उद्योग के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। जिले 25 हैं, लेकिन आज के दिन पे मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी के अंदर आप 79 यहां के प्रोडक्ट हैं जिसको हम जीआई टैगिंग कर चुके हैं, यानी वह ग्लोबल मार्केट के लिए अब वह अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। और यह उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के अंदर इन सभी चीजों में सफलता प्राप्त की है। आज मैं मान सकता हूं कि यूपी के लिए बेहतरीन अवसर है, हमारे यहां नौजवानों के लिए। हर जनपद में हम एक सरदार वल्लभ भाई पटेल स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन की स्थापना के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाए हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D प्रिंटिंग है, रोबोटिक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इन सभी पे हमारे हर जनपद में इसकी ट्रेनिंग की बेहतरीन सुविधा, हमारी वोकेशनल एजुकेशन में भी और टेक्निकल एजुकेशन में भी हम लोगों ने उपलब्ध करवाई है। अटल टिकरिंग लैब के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर भी हमने अपने छात्रों के लिए यह सुविधा माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में उसको एक आज की इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का उसे कार्य किया है। एक झूठ 10 बार बोलने से या 100 बार बोलने से सच कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। और इस सच को आधी आबादी भी जानती है कि वास्तव में सच क्या है। सच ये है कि उसको सुरक्षा चाहिए, सच ये है नौजवान को अच्छी एजुकेशन चाहिए, स्किलिंग चाहिए, अच्छी एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था चाहिए, उस प्रकार का एक वातावरण उसको चाहिए। उसको आज यूपी के अंदर, इस नए यूपी के अंदर उसे प्राप्त हो रहा है। ये नया भारत का नया यूपी है, ये अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, तो आधुनिक विकास को भी अपने साथ पूरी मजबूती के साथ लेकर के चलता है। अब यूपी बीमारू नहीं है, अब वो यूपी नहीं है जिसकी पहचान गड्ढा युक्त सड़कों से होती थी, वह यूपी नहीं है जिस यूपी की पहचान होती थी कि जहां से सायंकाल होते ही अंधकार प्रारंभ हो जाए वह यूपी का सीमा है। अब यूपी की पहचान देश के अंदर एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क किसी राज्य के पास है तो वह यूपी है। 60% एक्सप्रेसवे हमारे पास हैं यूपी के पास। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, मेट्रो की सुविधा सबसे ज्यादा सिटी के अंदर चलने वाली है वो यूपी के अंदर, 7 सिटी में वर्तमान में हम मेट्रो की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा संचालित कर रहे हैं। भारत की पहली रैपिड रेल यूपी में, भारत की पहली इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में यूपी से प्रारंभ हुआ। एयर कनेक्टिविटी में देश के अंदर सबसे बड़ा एयरपोर्ट का नेटवर्क किसी के पास है वो यूपी के पास। 17 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ आज यूपी इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर मात्र आवागमन के माध्यम नहीं है, केवल हमारी गति को तेज करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी गति के साथ साथ आर्थिक प्रगति को भी एक नए आयाम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य इस अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोगों ने यूपी के अंदर किया है। और मैं आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप को, एक पंचायत आज तक के लिए कि उन्होंने किया है, और मैं आपको फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, मैंने अंजना जी को उस समय भी मैंने कहा था, 21 में जब उन्होंने इंटरव्यू 22 में लिया था तो मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा चिंता मत करिए, हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी। '27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी, यूपी का युवा बनाएगा, यूपी की माताएं बनाएंगी, यूपी का अन्नदाता किसान बनाएगा, यूपी का गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, यहां का वंचित, यहां का दलित, यहां का पिछड़ा वह व्यक्ति जिस तक सुविधा पहुंची है वह उस इस डबल इंजन की सरकार को फिर से यूपी के अंदर बनाने में अपना आशीर्वाद देगा। इसमें कोई संदेह किसी को भी लेस मात्र नहीं होना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं पंचायत आज तक में इस पूरे ग्रुप को हृदय से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यहीं पर संपन्न करता हूँ। राधे राधे।
5: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच in association with
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
2: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
3: एक को एक
4: विश्राम।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक श्राम

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपके झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है, अब उसकी चलने की सामर्थ्य समाप्त, खेल खत्म। अब जब खेल खत्म तो फिर आगे की कोई संभावना नहीं, संभावना नहीं तो आगे के बारे में स्वयं सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं तो राम नाम का ही सहारा सही।

0: पंचायत आज तक मथुरा के मंच से सीएम योगी ने फूका चुनावी बिगुल, बोले यूपी में फिर धमाकेदार ढंग से बनाएंगे सरकार। अखिलेश पर किया वार, अखिलेश की भाषा हल्की। बीएसपी में किसी बड़ी जिम्मेदारी देने से मायावती के इनकार के बाद भतीजे आकाश आनंद ने बदला अपना एक्स प्रोफाइल, खुद को लिखा पार्टी कार्यकर्ता, बाबा साहेब की सोच के युवा समर्थक। बिहार की परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी के आरोप पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों से मिले राहुल, सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का लगाया आरोप, कहा जनता को देना होगा जवाब। यूक्रेन के दौरे पर कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, रूस से जारी युद्ध पर चिंता व्यक्त की, कहा शांति के पक्ष में है भारत। और बिहार में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, पटना समेत 8 जिलों में हाई अलर्ट, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सतर्क।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक कि कैसे उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए ऐलान जंग हो चुका है। आज हम आपको योगी अखिलेश मायावती का पूरा प्लान 2027 का दिखाएंगे, लेकिन पहले हम बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लिए तीसरे टर्म की चुनौती है। 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर से योगी आदित्यनाथ को निपटना है, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के धुआंधार दौरे कर रहे हैं, शिलान्यास, लोकार्पण और नई नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी के अवसर पर श्रीकृष्ण धरती मथुरा पहुंचे, जहां योगी आदित्यनाथ ने 1051 करोड़ रुपए की 229 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। तो आइए दिखाएं आपको कि क्या शिलान्यास पॉलिटिक्स से जीतेंगे योगी।
1: योगी की घोषणाएं धुआंधार, 2027 में होगी नैया पार। योगी के शिलान्यास पॉलिटिक्स, विपक्ष के पास क्या तोड़ है? जिले दर जिले योगी का प्लान पर योजना, वोटर फिक्स करना।
2: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
1: अब मथुरा को 1051 करोड़ की सौगात, चुनाव में बन जाएगी बात।
2: वृंदावन बिहारी लाल के।
1: योगी की विकास और हिंदुत्व की राजनीति, विपक्ष की क्या है नीति?
3: 1051 करोड़ से अधिक की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जा रहा है।
1: यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीएम योगी के लिए चैलेंज तीसरे टर्म का है, तो 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर से निपटने का भी। ऐसे में सीएम योगी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को एक बार फिर पटखनी देने के लिए नए प्लान के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। एक गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से सीएम योगी यूपी में जिले दर जिले घूम रहे हैं, करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की ये शिलान्यास पॉलिटिक्स विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मिश्रण पर आधारित एक सोची समझी चुनावी और प्रशासनिक रणनीति है, जिसके तहत वो यूपी के सभी जिलों में जाकर करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। ये रणनीति जनता के बीच सीधा संवाद बनाने और अखिलेश के पीडीए वाले नैरेटिव को काटने के लिए तैयार की गई है। और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ बांके बिहारी कृष्ण की धरती पर पहुंचे हैं। जन्माष्टमी के मौके पर उन्होंने मथुरा के लिए 1051 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, तो विकास को आधार बनाकर पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार पर प्रहार भी किया।
4: लंबे समय पर हम लोग विकास को केवल सड़क, बिजली, पानी, भवन और उद्योग के चश्मे से हमने देखने की कोशिश की। विकास के नाम पर विरासत का अपमान होता रहा। इतिहास के नायकों को भारतीय स्मृति से मिटाने की कोशिश हुई। पहले विदेशी आक्रांताओं ने हमारे इतिहास को और ऐतिहासिक चिन्हों को नष्ट किया, फिर अंग्रेजों ने और पूर्ववर्ती सरकारों ने तो उस हद को पार कर दिया। मुझे याद है, आज जो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी आज अपनी जिस विरासत उत्सव के लिए जाना जा रहा है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या ये आज से पहले यानी 2017 के पहले क्या ये संभव था?
1: मथुरा में सीएम योगी ने ये भी कहा कि कैसे विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, तो उन्होंने वृंदावन से लेकर काशी और अयोध्या का जिक्र किया।
4: एक तरफ इतिहास में मंदिरों पर प्रहार के प्रसंग मिलते हैं और दूसरी ओर उसी कालखंड में ब्रज की धरती में स्वामी हरिदास जी जैसे संत अपनी साधना से संगीत की ऐसी धारा विकसित करते हैं जिसकी गूंज सदियों से चली आ रही है। यही कहानी काशी की भी है। काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ दिया, लेकिन परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। लोग माता अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही अयोध्या में हुआ। बाबर ने 1528 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को तोड़ करके एक गुलामी का ढांचा बनवा दिया। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है।
1: इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने यूपी दंगों को लेकर पिछली समाजवादी सरकार को टारगेट किया तो ये भी दावा किया कि अब यूपी कर्फ्यू और दंगा मुक्त हो चुका है।
4: 2016 जून 16 में जिस मथुरा में जवाहर बाग की घटना घटित हुई थी जिसमें 29 लोग मारे गए थे, उपद्रव वही है। बरेली में महीनों महीनों दंगे, सरकारें नतमस्तक होती थी उन दंगाइयों के सामने। नाग रगड़ती थी, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर के सम्मानित किया जाता था। मुजफ्फरनगर का दंगा कई महीनों तक चला, कर्फ्यू कई महीनों तक चला। अलीगढ़ में दंगा, मेरठ में दंगा, लखनऊ में दंगा, और आज मैं कह सकता हूं कि हमारा यूपी पिछले 9.5 वर्ष से कर्फ्यू से भी मुक्त है, दंगा से भी मुक्त है।
1: मथुरा वृंदावन पर योगी आदित्यनाथ के इस फोकस से फिर मथुरा पर सबकी नजरें टिक गई हैं।
2: वृंदावन बिहारी लाल के,
1: क्योंकि कुछ महीनों में यूपी का चुनाव है, जहां अब की बार अटकलें लग रही हैं कि क्या अब की बार सत्ता का रास्ता मथुरा से होकर जाएगा।
5: वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है। जब जाने की बारी है, जब आपने श्री रामचंद्र जी के नाम का सहारा लिया, तो आपने नाम इसलिए लिया कि आपको वहां पे लूटना था। हम तो कहेंगे कि वहां पे जो भी महंत लोग हैं मथुरा में, अरे भाजपाइयों से सावधान रहो, नहीं तो जो चढ़ावा है वहां का, जो चंदा है, उस पर भी निगाह इनकी पड़ चुकी, इनको घुसने मत देना वहां पर।
6: जो वामी है, जो कांगी है, जो सपाई है, जो कांग्रेसी है, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है, हिंदुओं को बांटना है, मुसलमानों को एकत्रित करना है, और उसके सहारे चुनावी वैतरणी पार करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये जान चुकी है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो।
7: मुख्यमंत्री रहते योगी आदित्यनाथ 43वीं बार मथुरा आए, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राम के बाद अब कृष्ण के सहारे राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ने से अखिलेश यादव बहुत उत्साहित हैं। तो ऐसे में योगी ने मथुरा प्लान और परियोजना पॉलिटिक्स कितनी काम आएगी, यह हम आपको दिखाते हैं।
1: मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का विवाद अखिलेश यादव के लिए संवेदनशील मसला हो सकता है, क्योंकि खुद को यदुवंशी कृष्ण का वंशज बताने वाले यादव समाज और मुस्लिम समाज को एक साथ साधना उनके लिए चुनौती भरा हो सकता है। अखिलेश इस मुश्किल को समझते हैं, इसलिए वो जितना संभव हो बीजेपी को राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर घेरते हैं और मंदिर की बात पर अपने इटावा के केदारेश्वर महादेव मंदिर की बात करना नहीं भूलते।
8: भगवान शिव भोले बाबा का मंदिर का निर्माण हम भी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि किस मंदिर में आकर के मुझे पूजा करने का मौका मिलेगा, खैर, लेकिन जब इन्होंने बताया तो ये हमारा सौभाग्य भी है। सौभाग्य हो, कितना पौराणिक है और कितनी मान्यता है, लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, तो हमें भी वो मौका मिला। और सच्चाई ये है कि जो नहीं जा पाए या नहीं पहुंच पाए उनके लिए भी हमने मांगा है, और हमारा भी मंदिर जो बन रहा है वो शिव शक्ति अक्ष रेखा पर बन रहा है, जिस पर केदारनाथ है, उज्जैन है, रामेश्वर है, और उसी में इटावा का केदारेश्वर धाम बना रहे हैं।
1: सीएम योगी का मिशन इलेक्शन क्लियर है, अपने काम गिनाना, कानून व्यवस्था, विकास और सरकार की उपलब्धियों को उठाना और समाजवादी पार्टी पर तगड़ा प्रहार करना। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की पिच पर धुआंधार बैटिंग करने के लिए मशहूर हैं, और इसीलिए जब वो शिलान्यास और लोकार्पण की राजनीति कर रहे हैं तो उसमें हिंदुत्व को भी जोड़ते हैं। आपको बता दें, जुलाई 2026 के अंत तक सामने आई रिपोर्ट के अनुसार 3 महीनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 43 जिलों का दौरा करके सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और आधारभूत ढांचे से जुड़ी कुल 36,877 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद अगस्त से लेकर अब तक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जारी है। 7 अगस्त अम्बेडकर नगर, 706 करोड़ की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 9 अगस्त सिद्धार्थ नगर, 311 करोड़ की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 11 अगस्त संत कबीर नगर, 684 करोड़ की 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 24 अगस्त रायबरेली, 889 करोड़ की 346 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 29 अगस्त देवरिया, 305 करोड़ की 80 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 3 सितंबर मथुरा, 1051 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। यानी अब तक सीएम योगी यूपी में जिले दर जिले हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान और शिलान्यास कर चुके हैं, और इसके पीछे योगी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र का बुनियादी ढांचा मजबूत कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी कहती है कि योगी सरकार की शिलान्यास और उद्घाटन की राजनीति केवल दिखावा और चुनावी प्रोपेगेंडा है। आज तक ब्यूरो।
7: उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस समय की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। बीएसपी में किसी बड़ी जिम्मेदारी देने से इनकार, मायावती के इनकार के बाद मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने अपना एक्स प्रोफाइल बदल लिया है। आकाश ने अब स्वयं को पार्टी कार्यकर्ता एक्स पर लिखा है। इसके साथ ही आकाश ने आगे लिखा है, बाबा साहेब की सोच के युवा समर्थक। मतलब उन्होंने इससे पहले जो उनका पद था वो हटा दिया है, और अब ये देखिए एक सम आपको दिखा रहे हैं। मायावती ने एक बार फिर से आकाश को दरकिनार किया है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने से इनकार किया है। मुख्यमंत्री योगी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जिले दर जिले परियोजनाओं वाली पॉलिटिक्स से वोट फिक्स करने में जुट गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ की इस काट के लिए प्लान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी तैयार कर लिया है, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर के आंदोलन के बाद से जेंजी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा फोकस जेंजी और जेन अल्फा पर है, लेकिन उनके साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठजोड़ भी है। अखिलेश जिलेवार घोषणा पत्र की तैयारी कर रहे हैं ताकि योगी सरकार की शिलान्यास वाली रणनीति का तोड़ निकाल सके, और इन सब के बीच मायावती का प्लान सबको चौंका रहा है। तो आइए दिखाएं आपको 2027 के ऐलान जंग में किसकी कितनी तैयारी है।
9: 27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी।
1: जब 2027 की जंग के लिए सियासत धुआंधार हो रही है, तब आज तक के मंच से सीएम योगी ऐलान करते हैं 2027 में फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी और धमाकेदार बनेगी।
9: चिंता मत करिए, हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी।
1: जी हाँ, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जेन जी और जेन अल्फा पर अपनी रणनीति फोकस कर रहे हैं और एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या वो कारगर साबित होगी? आइए आपको पहले अखिलेश यादव का प्लान बताते हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की नज़र हर वर्ग को साधने वाले घोषणा पत्र पर है। समाजवादी पार्टी इस बार पुराने वादों के साथ कई नए वादों को जोड़कर ऐसा मैनिफेस्टो तैयार करने में जुटी है जिसमें युवा, महिलाएं, आउटसोर्स कर्मचारी और अलग अलग जातीय समूहों को साधने की कोशिश होगी। समाजवादी पार्टी का खास फोकस जेन जी और जेन अल्फा पर भी है। पेपर लीक रोकने के पुख्ता इंतजाम, लखनऊ की आईटी सिटी को विस्तार और आईटी कंपनियों को यूपी में लाने का वादा एजेंडे में शामिल हो सकता है। अखिलेश सरकार के चर्चित वादे कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता और मुफ्त लैपटॉप फिर लौट सकते हैं। महिलाओं के लिए सालाना 40,000 रुपए की घोषणा और यश भारती सम्मान की वापसी का भी वादा हो सकता है।
10: बिना आदि आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है। पहले भी समाजवादी सरकार में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो फैसले लिए गए थे, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और देश के लिए उदाहरण बने हैं। हाल ही में जापान का एक डेलीगेशन जब आया तो उस डेलीगेशन को वही 1090 जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था उसी को दिखा करके सरकार ये बताना चाहती है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए वो क्या फैसले और क्या काम कर रहे हैं।
11: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहां माफियाओं को, दंगाइयों को, पेशेवर अपराधियों को पाला, उन्हें प्रोत्साहित किया, उनके सामने नतमस्तक हुआ करते थे। वही लोग यूपी के बीमारूपन के कारण भी थे, यूपी के निवेश के विरोध, यूपी में निवेश के विरोधी भी थे, यूपी में पर्यटन के विरोधी भी थे, यूपी में महिला सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए थे और उत्तर प्रदेश के युवाओं की नौकरी और युवाओं के रोजगार पर भी सबसे बड़ी डकैती डालने का काम ये वही लोग करते थे।
1: सीएम योगी युवाओं को भी साध रहे हैं और महिला वोटरों को अपने पाले में खींचने के लिए योजनाएं भी ला रहे हैं। तो नीट पेपर लीक के खिलाफ छिड़े आंदोलन और विपक्ष के इस मुद्दे की काट निकालने के लिए भी पूरी रणनीति के साथ उतरे हैं
11: कि जो भी पर्चा लीक के इस अनैतिक कार्यों में लिप्त होगा उसको आजन्म कारावास के लिए जेल के अंदर सड़ाएंगे, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे। और ये कार्रवाई यूपी के अंदर हम प्रभावी ढंग से कर रहे हैं, तब हम यूपी के अंदर बिना भेदभाव के आरक्षण की नीति को पालन करते हुए 9.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में हम लोग सफल हुए हैं। जिन्होंने अच्छा किया नहीं वे अच्छा देख भी नहीं सकते और यह इनकी सबसे बड़ी समस्या है। एक केंद्रीय मंत्री के बारे में समाजवादी पार्टी के मुखिया किस प्रकार की हल्की बातें करते हैं या इनकी उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो उन लोगों ने 17 के पहले यूपी के अंदर किया था।
1: यूपी में योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए समाजवादी पार्टी फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, ये शिवपाल सिंह यादव ने कंफर्म कर दिया है। लेकिन कांग्रेस ये स्वीकार कर रही है कि यूपी में बीजेपी को हराना आसान नहीं है।
12: जनता अब की बात, हमारा जो गठबंधन है अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, ये रहेगा और मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा।
13: जो करने काम करने का तरीका है वो सिंपल और साफ है कि लड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि जिसका नतीजा है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी होना है उसे तुरंत कर करके जल्दी से हमें मैदान में निकलना चाहिए। बीजेपी हमसे आगे ना निकल जाए, बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है, हवा के अंदर बीजेपी नहीं हार रही है।
1: सीएम योगी की टक्कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ से तगड़ी है, ये कंफर्म है। लेकिन मायावती ने भी चुनावी मैदान में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन बीएसपी में मायावती की बात आते ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की जुबान पर ताला लग जाता है। ये बात तो सबको पता है लेकिन मायावती के बड़े भतीजे की पहेली का जवाब किसी के पास नहीं है। लखनऊ में पार्टी की ऑल इंडिया स्तर की एक अहम बैठक की अध्यक्षता करने जब मायावती आई तो उनके साथ आकाश आनंद नहीं थे।
14: इधर बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मायावती वो यहाँ पर पहुंची हैं और ये पूरे देश भर से अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं वो अब ऐसे में क्योंकि बसपा 2027 की बड़ी तैयारियों के साथ में यहाँ पर है और इस बार जो जिम्मेदारी है वो उन सभी पर तैयारी की जिम्मेदारी है कि आखिर 2027 में कैसी ये रणनीति तय होगी। आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस बार आकाश आनंद नहीं है लेकिन साथ में उनके अन्य लोग मौजूद हैं।
1: मायावती के पीछे सबकी नजरें आकाश को ढूंढ रही थी लेकिन आकाश की जगह उनके छोटे भाई ईशान दिखाई दिए जो मायावती के कुर्सी पर बैठते ही अपने पिता के साथ चुपचाप बाकी नेताओं के साथ खड़े हो गए। वही आकाश आनंद जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल कहकर खुद को युवाओं यानी जेन जी के बीच एक युवा विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे थे।
15: सो कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं। वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहां भाजपा कर रही है। रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताएं।
1: 2024 में मायावती का वोट जिस तरह से बिखरा कम हुआ, बाकी पार्टियों में बटा, उसने यूपी का सियासी गणित पलट कर रख दिया। अब सवाल ये है कि क्या अगले साल विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट पूरी तरह बिखर जाएगा। आज तक ब्यूरो।
7: और आइए अब हम आपको दिखाएं कि जिस तरह से श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी को विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ एक हथियार बनाया, क्या अब बीजेपी ने उसका तोड़ निकाल लिया है। जी हां, ट्रस्ट के नए सीईओ रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र के साथ सवाल यह आता है कि क्या ट्रस्ट का ट्रस्ट अब वापस मजबूत होगा, और तभी विपक्षी नेताओं के प्रश्न राजनीति को नया मोड़ दे देते हैं। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी तो ये शक व्यक्त कर चुके हैं कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर का सच दबाए रखने के लिए तो सरकार ने जितेंद्र मिश्र को सीईओ नहीं बना दिया। बीजेपी कह रही है कि सेना पर सवाल उठाना और सनातन का अपमान करना कांग्रेस की फितरत रही है।
16: अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर से चढ़ावे की चोरी से राम भक्तों की आस्था को जितनी चोट पहुंची थी उससे ज्यादा हलचल सियासत में मची हुई है। नतीजा यह है कि कल ही भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अफसर जितेंद्र मिश्रा को मंदिर ट्रस्ट का नया सीईओ बनाया गया और आज ही उनकी तैनाती पर सवालों के बौछार किए जाने लगे।
17: लोगों के दिमागों में शक और शुबा पैदा करती है। ऑपरेशन संदूर के अंदर कहीं कोई सच तो नहीं छुपा हुआ जिस वजह से उन्हें यहां पे सीईओ बनाया गया।
18: कांग्रेस अब मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस हो गई है। राशिद अल्वी जी, आपने उस राज का पर्दाफाश कर दिया, जो हल्का फुल्का भरम का नकाब था वो भी आपने उतार दिया।
19: भाई ये काम साधु संतों का है। अब एयर मार्शल साहब ने हवाई जहाज उड़ाया, हवाई जहाज उड़ा लेते, अब इनके आरएसएस के जंगल में फंस गए हो।
20: एक आदमी जो फौज की कमान संभालता था, इस धार्मिक इदारे की या धार्मिक मंदिर की कमान को कैसे संभाल पाएगा।
21: रिटायर्ड एयरफोर्स मैन बीइंग अपॉइंटेड इटसेल्फ इज अ क्वेश्चनेबल थिंग।
22: मेरिट पर पोस्टिंग नहीं होती है, बल्कि जो इस बीजेपी का कोई भी काम अंजाम देता है उसके लिए पोस्टिंग्स होती है।
23: एयर मार्शल लगा हुआ है, अब ये कैसे मार्शल निकलते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
16: जिस जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के इस्लामिक दहशत गर्दों को नेस्तनाबूद किया, S-400 को निशाना बनाने की पाकिस्तानी चाल को नाकाम किया, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, 42 साल की राष्ट्र सेवा में जिस एयर मार्शल को शौर्य चक्र से विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल तक से सम्मानित किया गया, वो राम मंदिर ट्रस्ट में आकर खुद को धन्य मानते हैं।
24: चयन समिति का
0: बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि उन्होंने इतने सब कैंडिडेट्स में से मेरा चयन किया है। इसे मैं श्री राम का आशीर्वाद भी मानूंगा कि 43 वर्ष राष्ट्र सेवा के बाद भारतीय वायुसेना में मुझे श्री राम ने एक और अवसर प्रदान किया है जहां पर मैं श्री राम मंदिर और श्री राम भक्तों की सेवा कर पाऊंगा।
7: दर्शक, में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दर्शक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में हिंदू मंदिर क्यों तोड़ा। आप देखते रहिए दस्तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
24: JK Maxx.
25: खाना कहाँ से मंगवाया?
24: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
26: जेके वॉल मैक्स
24: बेस्ट प्राइमर
26: जेके मैक्स
24: बेस्ट पेंट
26: जेके मैक्स
24: जेके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
25: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
24: जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
27: एक तो एक
28: श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: आगे आगे
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
9: सोच बदलो और बैंक भी।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
4: इन एसोसिएशन विद
5: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
6: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: हम बस कल्पना कर सकते हैं कि यह शहर पहले कैसा रहा होगा। इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। यहाँ पर बिना किसी स्टिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
8: ये हब है जहाँ पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे।
9: कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, बरेली, नेपाल, आज तक।

बारिश और उसके साथ बढ़ती मुसीबत की तस्वीरें देश के कई हिस्सों से सामने आ रही हैं। कहीं सड़क नदी बन गई है तो कहीं पूरी सड़क और पुल ही धंस गए। हिमाचल के सोलन से आई तस्वीरें देखिए। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर डेली से मंडी के पास सड़क पर इतना पानी आया कि पूरा हाईवे नदी में तब्दील हो गया। तेज बहाव के बीच गाड़ियां फंसी हैं। सड़क पर मलबा और पत्थर लगातार आ रहे हैं और हाईवे पर लंबा जाम लगा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी भारी बारिश के बाद जलभराव की तस्वीरें सामने आईं। रेस कोर्स इलाके में सड़कें पानी से भर गईं और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। अब आसनसोल के बाराबनी की तस्वीर देखिए। यहां बारिश के बाद सड़क का करीब 80 से 90 फीट हिस्सा धस गया। सड़क करीब 6 से 7 फीट नीचे बैठ गई, जिसके बाद रास्ते पर बैरिकेडिंग कर आवाजाही रोक दी गई। सड़क के किनारे खड़े लोग और धंसी हुई जमीन खतरे की गहराई साफ दिखा रही है। और आखिर में पश्चिम बंगाल के ही बांकुड़ा से तस्वीर। लगातार बारिश के बाद डुमनी नहर पर बना पुल पानी के तेज बहाव की भेंट चढ़ गया। पुल का हिस्सा टूटकर पानी में समा गया। अब ग्रामीणों के सामने रोजमर्रा की आवाजाही की चुनौती खड़ी हो गई है। सोलन का हाईवे, आसनसोल की धंसी सड़क और पांकुड़ा का टूटा पुल। बारिश की ये तस्वीरें बता रही हैं कि पानी का प्रहार कितना भारी पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत एक बार फिर से आपका। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर हो रहे अत्याचार और धार्मिक स्थलों की बर्बादी पर वहां की सरकार का दोहरा चेहरा एक बार फिर से कैसे बेनकाब हुआ। पंजाब प्रांत के नरोवाल स्थित सिराज गांव में करीब 125 साल पुराने ऐतिहासिक हिंदू मंदिर को ढहा दिया गया। इस नापाक हरकत के सामने आने के बाद भारत ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी है, पाकिस्तान से दोषियों को सजा देने और मंदिर को हुए नुकसान को दूर करने की नसीहत दी है। नरोवाल के स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों का सीधा आरोप है कि मंदिर की जमीन को पास के मदरसे में शामिल करने की नीयत से ये सोची समझी साजिश के तहत मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। अपनी नाकामी छिपाने में जुटी पाकिस्तानी शासन की करतूत इसे भारी बारिश से हुआ हादसा बताकर मामले पर लीपापोती करने में लगी हुई है।
4: पाकिस्तान का कट्टरपंथी चेहरा फिर बेनकाब। मदरसे के लिए प्राचीन हिंदू मंदिर को तोड़ा। भारत का विदेश मंत्रालय पाकिस्तान पर भड़का। पहले गुरुद्वारा और अब मंदिर पर इस्लामी प्रहार। जरदारी की जुर्रत देखिए, कहा हिंदुओं को बर्दाश्त कर रहे। मरियम का लाहौर में जगह को हिंदू नाम देने का प्लान फ्लॉप। कट्टर पंथियों के आगे झुकी मरियम नवाज शरीफ की सरकार। पाकिस्तान में मंदिर की तोड़फोड़, भारत में फूटा आक्रोश। लाहौर से करीब 130 किलोमीटर दूर नरोवाल का सिराज गांव, जहां कभी एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर श्रद्धा और इतिहास का गवाह बनकर खड़ा था, लेकिन 21 अगस्त को कट्टरपंथियों की सनक ने उस 125 साल पुरानी विरासत को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। आरोप है कि धार्मिक चरमपंथी संगठन तहरीक लबैक यानी TLP के गुंडों ने पास के मदरसे का दायरा बढ़ाने के लिए मंदिर की जमीन पर कब्जा किया और इस पवित्र ढांचे को हथौड़ों से ढहा दिया।
5: जो कभी माँ भारती का अभिन्न अंग हुआ करता था, वहाँ पर देवी दुर्गा के और हमारे देवी देवताओं के जयकारे गूंजते थे। उस भव्य दिव्य मंदिर जो कि 1000 वर्ग मीटर में फैला हुआ था, उस मंदिर को अचानक सिर्फ एक मदरसा बनाने के लिए मंदिर को कुर्बान कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर ये हिंदू द्रोही, अल्पसंख्यक द्रोही, ये इतना गहरा जहर है जिसकी एक पराकाष्ठा सामने आई है।
4: और जब दुनिया में थू-थू हुई तो बेशर्म पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए कुदरत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी प्रशासन अब बेशर्मी से दावा कर रहा है कि मंदिर इंसानों ने नहीं बल्कि भारी बारिश ने तोड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के इस झूठ को वहीं के हिंदुओं ने खारिज कर दिया है और अब भारत के हिंदू और साधु संत पाकिस्तान को सबसे बड़ी चेतावनी दे रहे हैं।
6: जो पाकिस्तान ने मंदिर तोड़ा है 100 साल से पुराना, वो मंदिरों का निर्माण करे। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम भारतीय पाकिस्तान का नामो निशान देंगे, मिटा देंगे। हमारे पीएम मोदी पर भरोसा है, जैसे सिंदूर ऑपरेशन में हुआ था, क्या वो भूल गया है? पाकिस्तान ही मंगा देश है वह, और हमारे 100 साल पुराने मंदिरों को तोड़ करके मदरसे और मस्जिद का निर्माण ढहा कर ये हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है।
4: भारत के विदेश मंत्रालय ने ऐतिहासिक हिंदू मंदिर तोड़े जाने की घटना पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। इसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की बदतर हालत का सबूत बता दिया। अपने बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत इस घिनौने कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान यही बहाना बना रहा है कि मंदिर भारी बारिश की वजह से टूटा, जबकि सच यह है कि तहरीक लबैक नाम के आतंकी संगठन ने
1: मदरसे के लिए मंदिर को ध्वस्त किया है। उसके आतंकी मंदिर के शिखर पर लगी धातु और उसकी ईंटें तक उठाकर ले गए। बहानेबाज पाकिस्तान का ये दोहरा चेहरा कोई नया नहीं है। अभी 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपनी संकीर्ण मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए कहा था कि पाकिस्तान हिंदुओं को बर्दाश्त करता है।
7: They believe in अखंड भारत, but there is a lot in between which they have forgotten. We are Muslims, they are not. But we are Muslims of the mindset that we tolerate. We have 3-4% Hindu population in Pakistan.
1: जरदारी पाकिस्तान में घुसखोरी के लिए कुख्यात हैं। उन्हें मिस्टर 10% कहा जाता है। यही वजह है कि उनके इस बयान के बाद जावेद अख्तर ने उन पर तीखा पोस्ट किया था। जावेद अख्तर ने इसको लेकर लिखा है कि बेनजीर भुट्टो से शादी के बाद लाइमलाइट में आए मिस्टर जरदारी 10% से नीचे वालों के प्रति संवेदनहीन रहते हैं, और इस वजह से जब पाकिस्तान का ऐसा भ्रष्ट राष्ट्रपति बराबरी के हक की जगह बर्दाश्त करने जैसा जहरीला शब्द इस्तेमाल करता हो, वहाँ का कट्टरपंथी समाज मंदिरों को ढहाने में कोई कसर क्यों छोड़ेगा। इस्लामी कट्टरपंथ का ही नतीजा है कि 1947 में विभाजन के वक्त जिस पाकिस्तान में 15% हिंदू रहते थे, आज वहाँ उनका नामो निशान मिटाने की चाल में पाकिस्तान कामयाब होता दिख रहा है। पाकिस्तान की आधिकारिक जनगणना के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदू आबादी घटकर अब महज 1.61% रह गई है। यही खौफनाक हाल दूसरे अल्पसंख्यकों का है। विभाजन के समय लाखों में फैले सिख समुदाय की गिनती आज पूरे पाकिस्तान में सिमट कर महज 20,000 से 22,000 रह गई है। ईसाइयों की आबादी भी घटकर मात्र 1.37% बची है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1,000 से ज्यादा अल्पसंख्यक लड़कियों का अपहरण कर उनका जबरन निकाह और धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। इसमें 75% शिकार हिंदू बेटियां हैं, जिनमें से 71% नाबालिग हैं। यहां तक कि 22% बच्चियों की उम्र तो 14 साल से भी कम होती है। पाकिस्तान में ईस्ट निंदा का सिर्फ आरोप लगते ही 100 से ज्यादा लोगों को भीड़ सड़कों और जेलों में पीट पीट कर मार चुकी है। एक तरफ तो अल्पसंख्यकों का ये हाल है, दूसरी तरफ पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने कुछ दिन पहले दुनिया को दिखाने के लिए लाहौर के पुराने इलाकों का नाम फिर से बहाल करने का ढोंग रचा था। इस्लामपुरा का नाम वापस बदलकर कृष्णा नगर किया जाना था। बाबरी मस्जिद चौक का नाम बदलकर फिर से जैन मंदिर चौक किया जाना था। मुस्तफाबाद को धर्मपुरा और रहमान गली को राम गली नाम दिया जाना था। लेकिन जैसे ही कट्टरपंथियों ने आंखें दिखाई, मरियम नवाज ने घुटने टेक दिए और अपना फैसला वापस ले लिया। नारोवाल का मंदिर ढहाने से ठीक पहले इसी साल जून में लाहौर से 70 किलोमीटर दूर फरुखाबाद में 125 साल पुराना ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब ढहा दिया गया था। इसके ठीक बाद अगस्त 2026 के अंत में बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में भी 200 साल पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह सभा क्वेटा को शॉपिंग मॉल बनाने के लिए बुलडोजर से ढहा दिया गया। दिन रात हिंदुओं और सिखों को बांटने की चाल चलने वाला पाकिस्तान इस्लामी कट्टरपंथियों को शह देकर अपने देश में दोनों पर ही जुल्म करता है। लेकिन अब उसका जुल्म और बर्दाश्त नहीं होगा। जम्मू की सड़कों पर अब पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश की ज्वाला धधक रही है।
8: ये मंदिर जो 1000 स्क्वायर फीट के दायरे में था, जो मदरसे के अंदर शामिल करने के लिए तोड़ा गया, और अब वहाँ की सरकार जो है वो सफाई दे रही है कि बारिश की वजह से ये मंदिर टूटा। लेकिन जबकि क्लियर है वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समाज है उन्होंने सीधे कहा है कि इस मंदिर को जो है इन आतंकवादियों ने तोड़ा है, जो वहाँ पर मदरसा बनाना चाहते हैं, जो उसको मदरसे के अंदर शामिल करना चाहते हैं उस जमीन को भी, ये सारा क्लियर है। इसलिए हिंदू समाज रोषित है और हिंदू समाज अपने मंदिर का पुनर्निर्माण मांगता है, और पाकिस्तान के सीधी सीधी चेतावनी है कि अगर जल्द से जल्द हमारा मंदिर पुनर्स्थापित नहीं हुआ तो पाकिस्तान के खिलाफ पूरे विश्व के अंदर जहां जहां हिंदू है वहां वहां प्रदर्शन जो है वो किए जाएंगे।
1: राष्ट्रीय बजरंग दल समेत देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। सवाल यह है कि खुद को इंसानियत का हमदर्द बताने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान क्या कभी इस नफरत के वायरस का इलाज कर पाएंगे, या फिर बर्दाश्त करने के ढोंग के पीछे पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के वजूद को पूरी तरह मिटा दिया जाएगा।
3: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे नेपाल की विनाश लीला में विनाशकारी बाढ़ क्या क्या लील गई, अब उसके निशान दिखाई देने लगे हैं। हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा लगातार ग्राउंड जीरो से पूरी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। इस विनाशकारी बाढ़ ने घर, सड़क, पुल सबको मलबे में बदल दिया, लेकिन सबसे बड़ी चिंता उन करीब 100 हाइड्रो पावर कर्मचारियों को लेकर है जो मलबे से भरी सुरंगों में फंसे बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब तक सुरंगों से सिर्फ शव ही बरामद हुए। तो आइए हम आपको दिखाएं कैसे नेपाल की त्रासदी आज भी सिरहन पैदा कर रही है।

0: नेपाल में कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई है कि मौत का आंकड़ा 1222 के पार पहुंच गया है और करीब 5000 लोग अब भी लापता हैं। अभी नेपाल की त्रासदी एक चैलेंज बनी हुई है और इस बीच नेपाल सीमा से करीब 55 किलोमीटर दूर तिब्बत में गुरुवार को 5 तीव्रता का भूकंप आया। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के जोशीमठ से करीब 128 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था और इसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। आपको बता दें कि नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ के बाद तिब्बत में करीब 100 नेपाली नागरिक लापता हैं। लेकिन नेपाल में भी चुनौतियां कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चिंता उन करीब 100 हाइड्रो पावर कर्मचारियों को लेकर है जो मलबे से भरी सुरंगों में फंसे बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है लेकिन अब तक सुरंगों से सिर्फ शव ही बरामद हुए हैं। इस बीच आज तक के रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा नेपाल त्रासदी की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने ग्रीन हाउस का वीडियो तो देखा ही होगा, कैसे पूरी दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में इसे मिरेकल हाउस यानी कि चमत्कारी घर कहा जा रहा है। इस घर पर बड़े बड़े आर्टिकल छापे जा रहे हैं। आज तक की टीम नेपाल के नुवाकोट के त्रिशूली बाजार में मौजूद इस घर से पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती है और ये समझने की कोशिश करती है कि उस दिन की इस भीषण बाढ़ में ये घर कैसे बच गया।
1: दोपहर के लगभग 12 बजे का समय था, भटकोशी की का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा था। चेतावनी पहुंची, कुछ लोग भागने की कोशिश किए, जो दूर उस पार नदी के उस पार के लोग हैं वो आगे ऊपर की ओर चले गए। इस मकान के लोग जब तक निकल पाते तब तक पानी का स्तर बढ़ गया था। हर साल यहाँ नदी का स्तर बढ़ता है, लोगों के लिए लगा ये सामान्य बात है। कुछ तस्वीरें लेने के लिए पुल पर चले गए, वो पुल बह गया। जब तक घर के लोग समझ पाते कि ये हर साल की तरह पानी बढ़ने वाली स्थिति नहीं है बल्कि एक आपदा है, जब तक लोग भागते तब तक मलबा, सैलाब सब कुछ इतनी तेजी से यहाँ पर आया कि लोग अपने घर में ही बस कैद होकर रह गए। उसके बाद वो छतों पर गए, उन छतों पर ही उन्होंने 24 घंटे का वो समय बताया जब तक आपदा टल नहीं गई। ये एक चमत्कार की तस्वीर है जो नेपाल के त्रिशूली में देखने को मिली है कि जो नदी अपने साथ तबाही लेकर के आई थी, ये परिवार ये घर उस तबाही को भी झेल गया। ये चमत्कार नहीं दौर क्या है।
0: लेकिन अब आज तक की ग्राउंड रिपोर्टिंग में कई और ऐसे घर मिले हैं जो ग्रीन हाउस की तरह सैलाब के बीच खड़े रहे।
1: आपने उस मकान के बारे में सुना जो भटकोशी के प्रकोप को झेल गई, वो घर बच गया, परिवार को निकालना पड़ा। लेकिन ऐसे चमत्कार बहुत सारे घरों के साथ हुए जो नदी की धारा जो है अपने बीचों बीच इन मकानों के आई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा। जहां पर आपने वो पहला घर देखा था उसके आगे देखे दो और मकान है। ये दो मकान में तीसरा मकान जो सबसे पीछे है वो पूरी तरह बर्बाद हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, सब कुछ मलबे में चला गया। लेकिन उसके ठीक पीछे यानी नदी के पानी के करीब जो कि धारा किनारे पर, देखिए मलबा 12 से 15 फीट है, इसके बावजूद भी वो जो दो मकान है वो बचे हुए हैं। लोग वहां पर छतों पर गए और चूंकि समय था तो समय रहते वो भागने में भी कामयाब हो गए। इसी के साथ देखिए कहते ना कि मिरेकल क्या होता। अब यहाँ पर देखिए कुछ होटल्स हैं, नीचे की मंजिल अगर आप देखेंगे पहली और दूसरे मंजिल वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए, सब कुछ नहीं है। लेकिन लोगों के पास भागने के लिए यहाँ भी समय था, वो भी अपने छतों पर चले। अब ठीक इसके पीछे त्रिशूली नदी बह रही है और पानी कहाँ तक था ये देखिए, जहां मैं खड़ा हूँ पानी मलबा यहाँ पर 12 से 15 फीट तक आता है। लेकिन उसके बावजूद इन इमारतों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। पहाड़ों पर जो निर्माण कार्य था इतना मजबूत था कि वो इस प्रवाह को और उसकी ताकत को झेल गया। इसी तरह ढूंगे बाजार में देखिए पीछे भी इधर मकान है, ये एक दो पीछे तीन मंजिल और आगे कृषि भवन का जो ब्लॉक है, ये सारे मकान जो कि बिल्कुल धारा के बीचों बीच थे प्रवाह को, उसके बावजूद ये बचे रह गए। लेकिन आप सोचिए कि विडंबना देखिए कि जो धारा के बीच में आए वो मकान बच गए, लेकिन सड़क के बिल्कुल किनारे जो कि पहले से ही ऊंचाई पर हैं, मलबा इतना आया कि यहाँ के मकान, ये दुकानें ढह गई, ये मकान ढह गया, इस मकान का पूरा हिस्सा गिर गया, यहाँ पर जो मकान है ये भी पूरी तरह बर्बाद हो गया। इसके ऊपर की मंजिल जो है, सोचिए ये मकान जो कि सड़क के किनारे ऊंचाई पर है और इतने ऊंचे मलबा भर गया और ये सब कुछ पीछे देखिए ये तबाही का मंजर है। ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, चाहे इन घरों की बनावट कह लीजिए यानी एक वैज्ञानिक तरीका, या फिर कुछ तो था ऐसा जिसकी वजह से जब पानी गया उसके बाद ये तमाम मकान उस सैलाब की ताकत को झेल गए।
0: लेकिन कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के कर्मचारी अब भी गायब हैं। आशंका है कि कुछ लोग अब भी सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। ऐसे में अमेरिका से भी रेस्क्यू टीम अब नेपाल पहुंची है। अमेरिका की क्राइसिस रिस्पांस इंटरनेशनल यानी CRI की 13 सदस्यीय टीम नेपाल पहुंच गई है। ये टीम रसुआ जिले के चिलिमे क्षेत्र में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंगों में लापता लोगों की खोज में मदद कर रही है। टीम खास उपकरणों की मदद से सुरंगों के अंदर फंसे लोगों की आवाज या किसी भी तरह की हलचल का पता लगाने की कोशिश में है। नेपाल में बाढ़ के बाद सैकड़ों अज्ञात शवों को जलाने के बजाय दफनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि शवों के अवशेष सुरक्षित रहें और DNA जांच से पहचान कर परिजनों को सौंपे जा सके। यही वजह है कि अज्ञात शवों को सामूहिक कब्रों में दफनाया जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे नेपाल की त्रिशूली नदी में विनाशकारी बाढ़ आई तो उसने अपना दायरा बढ़ा लिया और नुवाकोट में पूरा बाजार मलबे में दफन हो गया।
2: बेतरावती में हूँ, आज तक पहला नेटवर्क बेतरावती के उस इलाकों में है। ये पूरी तरह से बह चुका है, जिसे फुटहिल कहा जाता है। ठीक पहाड़ियों से रसुआ शुरू होता है और ये एक त्रिशूली की जो धारा है 30 मीटर चौड़ी धारा होती थी, आज इसका दायरा 600 मीटर बढ़ चुका है। 20 गुना जो है त्रिशूली ने अपना फैलाव, ये घर मकान दुकान, अगर आपको पीछे लग रहा होगा कि नदी का किनारा नहीं, 9 दिन पहले ये बाजार गुलजार था। मानसरोवर के यात्री जाते थे इसी बेतरावती पवित्र शहर में, डुबकी लगाते थे, यहाँ कैंप करते थे, कहीं बस अड्डा था, कहीं बाजार था, सब कुछ मलबे में है। सड़क के दूसरी तरफ भी ये पूरा रास्ता, जितने पुल ब्रिज थे वो सब कुछ बह गए हैं। अब क्या है कि त्रिशूली का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे कम होने लगा है और अपने साथ जैसे जैसे पानी कम हो रही है वैसे वैसे तबाही की वो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वो मार्मिक मंजर दिखाई दे रहा है इसी इलाके में। दरअसल जैसे ही रसुआ से पानी नीचे आया, सबसे बड़ा बाजार यही था, यहाँ के जो लोग थे वो ऊपर पहाड़ी की तरफ भागे, लेकिन बहुत सारे छोटे बच्चे महिलाएं थे जिनके बारे में कोई सुराग नहीं है। अब जैसे मैं आया हूँ वैसे तमाम सारे लोग दुर्गम रास्तों से, वो लोग हैं जो यहाँ पहाड़ियों को पार करते हुए पहुंच रहे हैं देखने कि अपनों का कोई सुराग मिल जाए। ये पूरी इमारत है, अगर लोग समय रहते नहीं भागे होंगे बहुत मुश्किल है कि वो बच पाए, क्योंकि ऊपर की तो पूरी मंजिल ही साफ हो चुकी है। सोचिए इतने मोटे छड़ ये सब कुछ बेंड हुआ, पूरी की पूरी छत जो है वो जा चुकी है। आगे जाता हूँ, यहाँ पर ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं, ये किसी बच्चे की किताब है वो हिस्सा, सोचिए कि ये बच्चे महिलाएं बुजुर्ग सबसे ज्यादा इस तरह की आपदा में वो प्रभावित होते हैं, उसकी किताब यहाँ रह गई है, छोटे बच्चों के जूते रह गए, संभवतः वो भागने की कोशिश कर रहे थे।
0: इस बीच भारत ने नेपाल के लिए 5वीं राहत उड़ान भेजी है, जिसमें 11 सदस्यीय रेस्क्यू टीम, विशेष उपकरण और 5.5 टन मेडिकल सप्लाईज शामिल है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने संसद में भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम मित्र देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मिल रही मदद के लिए आभार जताया है और आगे भी सहयोग की उम्मीद जताई है। आशुतोष मिश्रा, नुवाकोट, आज तक।
3: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद द कोलर स्पा एट होम। Your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
7: Papa,
8: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
8: छक्का
7: सब कैशलेस हो गया है।
8: हाँ ला भाई मेरा बैट,
7: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
9: चार्ज हुआ यार,
10: बैट किसका है?
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: खाना कहाँ से मंगवाया?
3: जीके मैक्स।

0: matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Papa!
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
1: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
2: छक्का
1: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ ला भाई मेरा बैट,
1: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
2: चार्ज हुआ यार,
3: बैट किसका है?
4: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: खाना कहाँ से मंगवाया?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट प्राइमर
6: जेके मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
6: जेके मैक्स।
3: जेके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
7: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
3: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: AU! सोच बदलो और बैंक भी।

0: है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि 403 सीटों पर भरपूर तैयारी कर रहे एनडीए में 300 से ज्यादा सीटों पर खुद बीजेपी कमान संभालेगी।
1: एनडीए के जिस तरीके से घटक दल हैं, बीजेपी 300 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वैसे में घटक दलों के लिए कितनी सीटें मिलती हैं, इस बात का मंथन लगातार चल रहा है। चूंकि यह मंथन इसलिए भी है, चाहे वो अपना दल हो, राष्ट्रीय लोक दल हो, निषाद पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर की सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, इन सभी को भी एक पटरी पर रखना है। 2027 के लिए समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के जो कह सकते हैं उनसे लड़ने के लिए बीजेपी की अपनी नई रणनीति और मंथन लगातार जारी है। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार कह रही है कि यह गठबंधन काम नहीं आएगा।
0: अभी तक चल रही चर्चा में सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बीजेपी 300 से कुछ अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि सहयोगियों को 70 से 80 सीटें मिलने की संभावना है। इसमें 20 से 30 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी सहयोगी दल के चुनाव चिन्ह पर लड़ सकते हैं। सीट शेयरिंग पर नवंबर दिसंबर तक फैसला हो सकता है। कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे में पश्चिमी यूपी में आरएलडी, पूर्वांचल में निषाद पार्टी और एसपीएसपी, जबकि काशी मिर्जापुर के इलाके में अपना दल एस को प्राथमिकता मिल सकती है। दरअसल 2022 में बीजेपी ने 376 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 17 सीटें अपना दल एस को मिली थी। इस बार ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी भी दो नए साथी एनडीए के खेमे में जुड़ गए हैं। इस लिहाज से बीजेपी को 376 के पिछले आंकड़ों में से ही सीटें बांटनी पड़ सकती हैं। दूसरी तरफ सहयोगी दल भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा करने की तैयारी में है। खास तौर पर उन सीटों पर फोकस है जहां बीजेपी लंबे समय से कमजोर रही है या कभी जीत नहीं सकी। उधर जयंत चौधरी को 54 से रुपया बनाने का दावा करने वाली अखिलेश यादव कभी आरएलडी तो कभी ओम प्रकाश राजभर को 80-80 सीटें मिलने का तंज करते रहते हैं। अब इंडिया गठबंधन के दल बीजेपी पर एनडीए के साथियों के साथ धोखे का आरोप लगा रहे हैं। अब नजर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच होने वाली बैठकों पर है। अंतिम सीट बंटवारे से पहले कई दौर की बातचीत होगी और साल के अंत तक तस्वीर साफ होने की संभावना है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

2027 के चुनावी समर में बीजेपी ने दिल्ली से लखनऊ तक अपने दल की मोर्चाबंदी कर ली है। एक महीने के सेवा संकल्प अभियान को यूपी की चुनावी तैयारी का शंखनाद माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी के साथ एनडीए के बाकी दलों के अंदर भी चुनावी तैयारी से पहले सीट बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आज तक गैर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, अब से कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

पंचायत आज तक मथुरा के मन से सीएम योगी ने फूका चुनावी बिगुल, बोले यूपी में फिर धमाकेदार तरीके से बनाएंगे सरकार। अखिलेश परवार कहा एसपी के मुखिया की भाषा हल्की। बीएसपी में किसी बड़ी जिम्मेदारी देने से मायावती के इनकार के बाद भतीजे आकाश आनंद ने बदला एक्स प्रोफाइल, खुद को लिखा पार्टी कार्यकर्ता, बाबा साहेब की सोच के युवा समर्थक। बिहार की परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी के आरोपों पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों से मिले राहुल गांधी, सरकार पर युवाओं की आवाज को दबाने का जड़ा आरोप, कहा जनता को देना होगा जवाब। यूक्रेन के दौरे पर कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, रूस से जारी युद्ध पर जताई चिंता, कहा शांति के पक्ष में है भारत। और जम्मू कश्मीर के बड़गांव में आतंकवादियों से एनकाउंटर, खुफिया जानकारी पर सेना और पुलिस की साझा टीम का एक्शन, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पिछले साल भारत में आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप हुआ था, यह खिताब भारत ने जीता था। इसी वर्ल्ड कप का एक मैच खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई विमेंस टीम इंदौर पहुंची थी, जहां एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के साथ छेड़खानी की शर्मनाक वारदात हुई। इस सिलसिले में इंदौर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था, लेकिन खुद पुलिस को मालूम नहीं था कि छेड़खानी के इल्जाम में जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है वो 11 साल पुराने एक कत्ल का राज खोल देगा।
1: ये इंदौर के तेजाजी नगर के रहने वाले छगन और उनका परिवार है। इस परिवार को पूरे 11 सालों के बाद एक ऐसी खबर मिली है जिसकी आस उन्होंने लगभग छोड़ ही दी। ये और बात है कि दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक लौ फिर भी टिमटिमा रही थी। अब इस परिवार के इन दो नौजवान सदस्यों को देखिए। एक इस परिवार का दामाद है चेतन खरे, जबकि दूसरा है इस परिवार का बेटा विनोद पटेल। गौर कीजिए, चेतन और विनोद दोनों के सिर में लंबे बाल हैं, और इन लंबे बालों का संबंध 11 साल पुरानी उस खबर से है जिसका इंतजार इस परिवार के साथ साथ चेतन और विनोद को भी इतने सालों से था। दोनों ने उसी खबर की उम्मीद में इतने सालों तक अपने बाल भी नहीं कटवाए, लेकिन अब जब वो खबर इन्हें मिल चुकी है, चेतन और विनोद ने आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुपति बालाजी मंदिर में जाकर अपने बाल कटवाने का फैसला किया है। यकीनन इस खबर से पटेल परिवार में राहत भी है और खुशी भी। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी खबर है जिसने इस परिवार को पूरे 11 सालों तक बेचैन रखा, जिसने एक माँ को पूरे 11 सालों तक ठीक से सोने भी नहीं दिया, और जिस खबर की उम्मीद में इस घर के बेटे और दामाद को अपने बालों वाली भीष्म प्रतिज्ञा करनी पड़ी। तो आइए अब आपको उस खबर की कहानी सिलसिलेवार तरीके से बता दें। असल में इस परिवार का एक बेटा 11 साल पहले तब गुमनाम कातिलों का शिकार बन गया था, जब वो एक बाइक पर अपनी बहन के घर जाने के लिए निकला था। 17 अप्रैल 2015 को 17 साल का कृष्णा घर से निकलने के बाद गायब हो गया। इसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। घर वाले उसे ढूंढते रहे और हार कर उन्होंने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। लेकिन उनकी उम्मीदों को तब बड़ा झटका लगा जब करीब 5 दिन बाद उसकी लाश शहर के ही खजराना बाईपास के इलाके से सड़ी गली हालत में बरामद हुई। एक वो दिन था और एक आज का दिन। इंदौर पुलिस के लिए कृष्णा की मौत एक ऐसी अबूझ पहेली बनी हुई थी जिसका दूर दूर तक उसके पास कोई सुराग नहीं था। मामले की तफ्तीश धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चली गई, मगर अब एकाएक 11 साल बाद पुलिस ने इंदौर के उस ब्लाइंड मर्डर की पहेली को न सिर्फ सुलझा लिया है, बल्कि 2 में से 3 गुनहगारों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। और कृष्णा के कत्ल के इसी खुलासे ने उसके इस परिवार को वो राहत दी है जिसका इंतजार उन्हें 11 सालों से था। लेकिन आखिर 11 साल बाद एकाएक इस मामले का खुलासा हुआ कैसे? आखिर कैसे पुलिस ने उस केस को अचानक सॉल्व कर लिया जिसका उसके पास कल तक कोई क्लू ही नहीं था? तो इस सच्चाई को जानना भी कम जरूरी नहीं। आपको याद होगा 2025 में ऑस्ट्रेलिया की विमेंस क्रिकेट टीम भारत में आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने पहुंची थी। तब ऑस्ट्रेलिया का एक मैच इंदौर में भी था, लेकिन इंदौर के साथ साथ उस वक्त पूरे देश के बाशिंदों को तब काफी शर्मिंदगी हुई जब ऑस्ट्रेलिया की टीम की एक मेंबर के साथ शहर के पॉश इलाके में छेड़छाड़ की वारदात हुई। इसके बाद इंदौर पुलिस ने करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद उस वारदात को अंजाम देने वाले सिरफिरे को धर दबोचा। इंदौर के इस परिवार को मिली राहत की उस खबर का ताल्लुक 10 महीने पुरानी छेड़छाड़ की उस वारदात से भी है, क्योंकि पुलिस ने कृष्णा के कत्ल के इल्जाम में जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो आरोपी कोई और नहीं बल्कि वही अकील उर्फ नाइट्रा नाम का छठा हुआ बदमाश है, जो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर के साथ हुए छेड़छाड़ के केस का संदिग्ध गुनहगार है। अब कृष्णा के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद अकील और उसके साथी आरिफ ने 17 अप्रैल 2015 की उस मनहूस वारदात की पूरी कहानी सुनाई है जिसने पटेल परिवार की सारी खुशियां एकाएक छीन ली थी। असल में कृष्णा को उस दिन अपने जीजा के साथ डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन वो बीच रास्ते से ही गायब हो गया।
2: उस दिन हुआ क्या था, उस दिन हमको हॉस्पिटल जाना था। ये कृष्णा पटेल उनके घर से आ रहे थे, मैं केलोत था, तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना था। तो 11:00 में इनका फोन आया कि जाजी मैं जीजा मैं टोल टैक्स के आगे आ गया हूँ। उसके बाद मैंने बोला कि आप फाइल लेके आए, तो यार फाइल तो लाया नहीं हूँ मैं। तो मैंने कहा फाइल तो लाना पड़ेगी, डॉक्टर को दिखाना है अपने को, फाइल वहीं है। तो ठीक है, तो उसके कुछ 10-15 वहाँ से इनको आना रहता, कम से कम 10-15 मिनट का फासला रहता इतनी दूर आने में जितनी देर अपन आए। तो उन फाइल लेके वहाँ पर वापस पहुँचे नहीं, उनका थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद उनका फ़ोन कवरेज एरिया आ रहा था कृष्णा पटेल का। तो उसके बाद मैंने विनोद पटेल को यहाँ पे घर पे फोन लगाया कि यार कृष्णा आए क्या, तो बोले यार जाजी यहाँ से तो निकली कि आए नहीं यार। हमने फिर उसके बाद ढूंढा ढांडी पहले हमने यहाँ पे पूछा, तो हो सकता है कि कहीं परिवार में निकल गए। हमने परिवार जनों से भी बातचीत की, तो बोले यार यहाँ पे नहीं आए, यहाँ पे नहीं आए। हम 2-3 बजे तक, मतलब 3-4 बजे तक हम सब दूर ढूंढा करें कि यार ऐसा ऐसा हो सकता है। तो फिर हम तेजाजी नगर थाने पे गए।
1: इसके बाद फिर कृष्णा की लाश ही बरामद हुई। खजराना बाईपास के पास जिस सुनसान इलाके में उसकी लाश मिली, वहीं कृष्णा की जली हुई बाइक भी पड़ी थी। लेकिन तब से लेकर गुनहगारों के पकड़े जाने तक कृष्णा के घर वालों को ये बात समझ ही नहीं आई कि आखिर उनके मासूम बेटे की जान किसी ने क्यों ली।
3: 11 साल आपके कैसे निकले, क्योंकि एक आपका बहुत लाड़का बेटा था।
4: कैसे निकले वो तो माँ की आत्मा ही जानती है कि कैसे निकले। मैं 7 साल तक सोई नहीं हूँ, आज भी नहीं सोती हूँ, रात भर फिरती हूँ, मेरी नींद ही उड़ गई। वक्त तो क्या निकलेगा, वो तो दिल से क्या बुलाए, अपना बेटा क्या बुला रहा है, मरते दम तक नहीं बुलाता है।
1: पुलिस के लिए कृष्णा की मौत एक ऐसी पहेली थी जिसे वो सालों साल सुलझाने की कोशिश करती रही, मगर उसे कोई कामयाबी नहीं मिली और केस धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। उधर कृष्णा की जान लेने वाले आरोपी अकील उर्फ नाइट्रा, आरिफ और परवेज कानून की नजरों से दूर एक के बाद एक जुर्म की वारदातों को अंजाम देते रहे। कृष्णा का कत्ल करने के बाद अकील और आरिफ उज्जैन निकल गए और वहां भी उन्होंने कत्ल की एक और वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद अकील और आरिफ दोनों अलग अलग मौके पर गिरफ्तार भी हुए और जेल भी गए। फिर बाद में दोनों जमानत पर बाहर भी आ गए। और इसी बीच अकील ने ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर के साथ छेड़छाड़ की उस वारदात को भी अंजाम दिया। मगर अब इंदौर पुलिस को अपने मुखबिरों के जरिए अकील उर्फ नाइट्रा के बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। मुखबिर ने बताया 11 साल पहले खजराना में 17 साल के जिस कृष्णा नाम के लड़के की हत्या हुई थी, उस वारदात को अकील ने ही अपने 2 साथियों के साथ अंजाम दिया था। असल में जेल में बंद रहने के दौरान अकील ने एक बार शेखी बघारते हुए अपने एक साथी कैदी को हत्या की धमकी दी और ये कहा कि जिस तरह उसने कृष्णा समेत और कई लोगों की हत्या की है और पुलिस को इसके बारे में पता ही नहीं चला, वो उसकी भी हत्या कर देगा और किसी को कानोकान खबर भी नहीं होगी।
5: हरियाणा पुलिस ने एक लगभग 11 वर्ष पुराने अंधे कत्ल का खुलासा किया है। इसमें 17 अप्रैल 2015 को कृष्णा नाम के लड़के का अपहरण और उसके बाद में हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया था। तब समय माधवी में धारा 363 और 302 का यह अपराध था। मृतक के गले पे चाकू से प्रहार करके उसकी हत्या की गई थी। इसमें सतत चेष्टा तत्समय भी की गई थी, किंतु अपेक्षित सफलता न मिलने के कारण इसमें खात्मा किया गया था। वर्ष 2019 में ऑपरेशन उजागर के तहत कई सारे अंधे कत्ल के मामले में पुनः खोला गया था। तब से यह मामला लगातार पेंडिंग चल रहा था। अभी हाल ही में विश्वस्त मुखबिर सूचना पर से यह ज्ञात हुआ कि इस पूरे घटनाक्रम में 3 आरोपी संबंधित थे।
1: इत्तेफाक से जेल में बंद उस कैदी ने बाहर आकर अकील के इस बड़बोलेपन के बारे में पुलिस के एक मुखबिर को खबर दे दी और इस मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने उस खुफिया खबर के आधार पर पहले अकील को पकड़ा और फिर उसके साथ ही आरिफ को। कृष्णा का कत्ल अकील और आरिफ ने परवेज के साथ मिलकर किया था। अब परवेज की मौत हो चुकी है, ऐसे में पुलिस ने अकील और आरिफ को गिरफ्तार करने के साथ साथ इस मामले का खुलासा कर दिया है।
6: जब मैंने यहाँ पर खजाना थाने पर पोस्टिंग हुई, तो उसके बाद में इस अपराध को मैंने बारीकी से देखा इसको और विवेचना के हर पहलू पर देखा, तकनीकी साक्ष्यों का संकलन किया, अपनी मुखबिर सूचना तंत्र मैंने डेवलप किया, तो हमारी टीम के द्वारा मिलकर इसमें बड़ी एक सफलता मिली है, जिसमें आरिफ और अकील दो आरोपी हैं जिनके द्वारा उक्त घटनाक्रम अंजाम दिया गया। एक परवेज एक साथी और था इनका, जो बीमारी के कारण जेल में मृत्यु हो चुकी है जिसकी, और दोनों काफ़ी आदतन और शातिर बदमाश है, एक के विरुद्ध 14 अपराध है, मतलब 3 अपराध हैं और सभी गंभीर प्रवृत्ति के अपराध हैं और ये हेवी काफ़ी आपराधिक किस्म की व्यक्ति है। बड़ी मनोवैज्ञानिक तरीके से इन लोगों से पूछताछ की गई हमारी टीम द्वारा, परिजनों इत्यादि को भी उसके मृतक के विश्वास में लिया गया और उन लोगों से जब हम लोगों ने शिनाख्त इत्यादि ये सब चीज़ों की कार्रवाई की तो उससे हम लोगों के संदेह करना पुलिस।
7: आरोपियों ने कृष्णा को किडनैप किया और यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर खजराना इलाके में ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या का कारण था उसके पास गोल्ड का लॉकेट था, ब्रेसलेट था, लेकिन जो आरोपी हैं वो कृष्णा से जब इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे तो कृष्णा ने इसका विरोध किया था और विरोध करने के बाद जो है कृष्णा की गला रेत कर हत्या कर दी थी और उसके बॉडी को खजराना छोड़कर चले गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म जब होता है तो कहीं ना कहीं अपने निशान छोड़ जाता है और वही वजह थी आरोपियों ने इसके बाद उज्जैन जाके क्राइम किया था। वहाँ भी एक जो मुसाफिर है उसकी कार से छीनकर गोली मारकर उसकी हत्या की थी और इसके बाद वो जेल चले गए थे। आरोपी पर तकरीबन 14 से 15 मामले दर्ज हैं लेकिन पुलिस ये कबू अब तक उस बात को, इस हत्याकांड को उजागर नहीं कर पाई थी। इसके पहले भी एक ऑस्ट्रेलियन महिला खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ का भी ये आरोपी रह चुका है।
1: अकील ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि उस दिन वो तीनों नशे की हालत में खजराना बाईपास इलाके में घूम रहे थे, तब उन्हें बाइक पर कृष्णा आता हुआ दिखाई दिया जिसने चांदी की चेन और सोने की पेंडेंट पहन रखी थी। उसके साथ लूटपाट करने के इरादे से तीनों ने पहले उससे लिफ्ट ली और फिर सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ छीना झपटी करने लगे और जब कृष्णा ने इसका विरोध किया तो फिर अकील ने उसके गले में चाकू मारकर उसकी जान ले ली। इसके बाद उसकी लाश को वहीं छोड़कर उसके पास मौजूद सारी कीमती चीजें लूट ली और सबूत मिटाने के लिए उसकी बाइक को भी आग के हवाले कर दिया।
6: मुख्य वजह थी इन लोगों के द्वारा लूट करना। एक्चुअली ये लोग लिफ्ट ले के बहाने उसको एक सुनसान स्थान पर लेके आए, C21 मैदान है जहाँ पर जो बाईपास से लगा हो एकांत मैदान था ना, यहाँ पे उस समय 2015 में ज़्यादा रहवासी इलाका भी नहीं था। इस जगह लेके आने साथ में नाश्ता किया और उसके बाद उस व्यक्ति से कहा इनके द्वारा कि ये तुम्हारे गले में चेन है ये सोने की है या नकली। उसने कहा दिया बहुत कम है कि क्योंकि दोस्ती जैसी हो गई है, आधे घंटे में इनकी दोस्ती हो गई होगी। तो उसने कहा क्या है इसे सोने का, तो उसने कहा कि हमें दे दो। उसने देना से इनकार किया, विरोध किया, विरोध करने पर इन्होंने अपने पास रखे हुए चाकू से उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। तो उसमें अधिक रक्तस्राव हुआ और मौके पर इनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के बाद में ये लोग भाग गए थे स्पॉट से। और जाने के बाद फिर अन्य अपराध ये उज्जैन और देवास इत्यादि अन्य अपराध घटित किए और नशे में उस समय लोगों को इनको ध्यान भी नहीं था कि इतना बड़ा घटनाक्रम घटित हो चुका है।
2: डेड बॉडी 5 दिन बाद इन हमको अबगार के माध्यम से पता चला। हम SP ऑफिस में आवेदन देने के लिए गए थे कि साहब हमारा लड़का, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, लड़के की जल्द से जल्द जाँच की जाए। आवेदन के लिए हम देने के लिए कमिश्नर SP ऑफिस गए थे। वहाँ पे से हमको अखबार के माध्यम से 2 बजे मालूम पड़ा कि यार आप गला कटे हो राज, तो हम SP ऑफिस जो वायरलेस है वहाँ पे गए। वहाँ से हमने खजराना थाने से संपर्क किया, खजराना थाने के TA साहब से संपर्क किया। वहाँ से फिर हमको एम्बॉय हॉस्पिटल गया शिनाख्ती के लिए, हम वहाँ पे गए। उसके बाद से तत्पर ये कार्रवाइयाँ चलती रही।
7: ये वही तेजाजी नगर थाना है जहाँ 2015-17 अप्रैल को कृष्णा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी और ये तेजाजी नगर थाने की पुलिस जो है कृष्णा को गुमशुदगी की रिपोर्ट करने के बाद में उसको ढूंढने के लिए निकली थी। लेकिन आप ये जो जगह देख रहे हैं ये इतना डेवलप इलाका उस समय नहीं था, यहाँ जंगल था। कृष्णा अपने घर से निकला था हॉस्पिटल जाने के लिए, लेकिन इस ब्रिज के कुछ आगे ही ये घना जंगल था। उस समय आरोपियों ने कृष्णा को किडनैप किया और यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर खजराना इलाके में ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी।
1: तब मामले की जांच इंदौर पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच ने भी की थी लेकिन कातिलों का कोई सुराग नहीं मिला। उधर उन्हीं दिनों जब कृष्णा के घर वालों से पूछताछ हुई तो उन्होंने पुलिस के पास अपने ऐसे दुश्मनों के नाम लिए जिनके साथ उनका पुराना जमीन जायदाद को लेकर विवाद चला रहा था। पुलिस ने ऐसे तमाम लोगों से पूछताछ की, कम से कम 100 से ज्यादा लोगों से सवाल जवाब किए, सैकड़ों CCTV कैमरों की जांच की, लेकिन असली कातिलों तक फिर भी नहीं पहुंच सकी।
8: 14 आरोप है, उसके 14 बार वो गिरफ्तार हुआ, क्या पुलिस को उस समय कहीं आपने इन्वेस्टिगेशन, आप नहीं थे उस समय, क्या उस समय कोई बात इससे छुपाई बताई नहीं गई थी पुलिस को?
6: क्योंकि ये अपराधी काफी शातिर किस्म के होते हैं ये, और आदतन बदमाश और ज्यादा शातिर होते हैं, तो इतनी आसानी से हर चीज का कबूल ये लोग स्वीकारोक्ति नहीं करते हैं। जब जो अपराध होता है उसी से संबंधित वो भी साक्ष्य होते हैं तो ये लोग स्वीकार कर पाते हैं। और चूंकि ये अपराध पुराना था, कभी किसी ने इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया इतना बारीकी से, और ना किसी का इसकी ओर ध्यान गया, चूंकि अज्ञात था, और चूंकि आदतन बदमाश है तो इनके पर इस तरह की घटना कर दी गई होगी, ऐसा समय संज्ञान में भी किसी के आया नहीं होगा। लेकिन जब मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ और मुखबिर की सूचना सटीक थी, तो उसके आधार पर जब ये पूछताछ की गई इसी स्पेशल केस को लेकर, तो उन लोगों का टूट गया और उन लोगों ने सब अपना खुलासा कर दिया।
1: केस की तफ्तीश कर रही पुलिस अलग अलग एंगलों पर उलझती रही, लेकिन आखिरकार इस केस का खुलासा तब जाकर हुआ जब एक मुखबिर ने इसके बारे में पुलिस को जानकारी दी। इत्तेफाक देखिए कि मुखबिर को भी शायद अकील और आरिफ की इस करतूत की खबर नहीं होती। अगर अकील ने जेल में बंद रहते हुए दूसरे कैदी को हड़काने के चक्कर में कृष्णा के कत्ल को लेकर बड़े बड़े बोल वचन न दिए होते। उधर अकील ने मुंह खोला, इधर मुखबिर को खबर मिली और पुलिस ने आखिरकार उसे उसी जुर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जिस पर उसने इतने सालों से पर्दा डाल रखा था। वो भी तब जब वो इस वारदात को अंजाम देने के बाद कई बार अलग अलग केसेस में गिरफ्तार होता रहा और जेल जाता रहा। पुलिस उससे पूछताछ भी करती रही मगर कृष्णा के कत्ल को लेकर उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला था।
5: ये इसमें कुछ दबाव, कुछ जो लूट की संपत्ति को लेकर कहीं ना कहीं झगड़ा हो रहा था इस बात को लेकर के, और कई मुखबिर जो था, जो खजराना का जो पुलिस से जुड़ा हुआ था, उसने मुखबिर ने सूचना दी, तो उस आधार पर जब उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तब को इस घटना पास हुआ। आरिफ के लगभग 3 से 4 अपराध पंजीबद्ध है, उज्जैन में भी पंजीबद्ध है, और अकील जो है अकील के 1 दर्जन से अधिक अपराध अलग अलग थानों में पंजीबद्ध है, उज्जैन में भी मामले पंजीबद्ध है, पुलिस कमिश्नर भी इसके मामले पंजीबद्ध है।
1: धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर आज तक।
0: लंबे 11 सालों तक कृष्णा मर्डर केस अनसुलझा रहा, लेकिन परिवार ने कभी हिम्मत नहीं हारी, ना ही अपनी कसम तोड़ी। अब 11 साल बाद इसी परिवार ने खुद आरोपियों से बातचीत की और उसके बाद ये माना कि पुलिस ने सही कातिलों को पकड़ा है, कोई फर्जी केस नहीं खोला।
1: मुखबिरों से मिली जानकारी के बाद पुलिस गुनहगारों तक तो पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 11 साल पुरानी वारदात की पूरी कहानी भी समझनी थी। ऐसे में पुलिस ने आरोपियों को उस जगह पर लेकर जाने का फैसला किया जिस सुनसान जगह पर उन्होंने कृष्णा का कत्ल किया था।
5: ये दोनों आरोपी अलग अलग जेल में बंद रहे हैं अलग अलग मामले में, और अलग अलग पुलिस के मुखबिर स्रोत रहते हैं, तो मुखबिरों के माध्यम से ही ये सूचना मिली थी कि इन्होंने कुछ लोगों को इस घटनाक्रम की जानकारी दी है। फिर पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को राउंडअप किया, राउंडअप करके इनसे सूक्ष्मता से पूछताछ करी, उन्होंने पूरा घटनाक्रम स्वीकार किया, घटना स्थल है वो उसका विजिट कराया गया, तो एक्जैक्टली जो सीखना था वो मैच किया गया, और पुलिस ने जब तस्दीक के उपरांत पूरे घटनाक्रम को सत्य पाया तो दोनों को हिरासत में लिया, और उन्होंने जो लूटा हुआ मशरूका था, सोने का लॉकेट और चांदी की चेन वो भी बरामद कर ली है। मृतक की जो मोटरसाइकिल थी वो उन्होंने जला के उसमें नष्ट कर दी।
9: इतने साल बाद सर मशरूका बरामद किस तरह से, कहां छिपा के रखा था?
5: घर पे ही अपने छिपा के रखा था और पुलिस ने इसको रिकवर कर लिया।
1: असल में पीड़ित परिवार का अपने कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पुराना जमीनी विवाद चला आ रहा है। ऐसे में उन्हें शक था कि उनके बेटे कृष्णा के कत्ल के पीछे जमीन जायदाद का वो पुराना झगड़ा भी हो सकता है। उधर पुलिस ने कृष्णा के कातिलों को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन उन्हें पीड़ित परिवार को इस बात का भरोसा भी दिलाना था कि उन्होंने 11 साल बाद जिन्हें पकड़ा है वही उनके बेटे के असली गुनहगार हैं। आरोपियों की धरपकड़ के बाद पुलिस इसकी अच्छी तरह से तस्दीक भी करना चाहती थी, लिहाजा पुलिस ने पीड़ित परिवार का आरोपियों से आमना सामना भी करवाया। कृष्णा के घर वालों ने और खासकर उसकी मां ने अकील और आरिफ से काफी सवाल जवाब किए। दोनों ही आरोपियों ने 11 साल पुराना वो पूरा घटनाक्रम पीड़ित परिवार को सुनाया और तब जाकर उन्हें तसल्ली हुई कि इंदौर पुलिस ने उनके बेटे के असली कातिलों को ही गिरफ्तार किया है।
8: परिजन आए आरोपी से मिलने मृतक के, तब क्या बात हुई, क्या उनको बताया, क्यों मारा उसके निर्दोष बेटे को?
6: इनकी जो मृतक की माता थी वो काफी स्वाभिमानी महिला है, उसके द्वारा बताया गया कि मैं ऐसे कैसे किसी पे विश्वास कर लूँ कि इन्होंने नहीं किया। उसने काफ़ी क्वेश्चनरी क्वेश्चन किए आरोपियों से, और जब उसे संतुष्टि हुई तब जाके उसकी आंखों में आंसू छलक आए कि उसके बेटे को आज अल्टीमेटली न्याय मिला है। और उन लोगों ने अपना घटनाक्रम पूरा जिस तरह किया था उसको पूरी तरह स्वीकार किया और अंततः ये खुलासा हो गया। इनके परिजन बहुत संतुष्ट हैं पुलिस कार्रवाई से, और उनकी आंखों में खुशी भी है और गम भी है कि आज उनका बेटा खो गया, लेकिन पुलिस ने अंततः उन्हें न्याय दिलाया, इस चीज़ से बड़ी संतुष्टि और खुशी है।
1: वैसे बात सिर्फ मुखबिर की नहीं है, इस केस को सॉल्व करने में पुलिस को काफी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि इतने पुराने मामले में सबूत इकट्ठा करना भी एक बड़ी चुनौती थी। मुलजिमों की गिरफ्तारी के साथ साथ उनके खिलाफ टेक्निकल एविडेंस भी इकट्ठा करने थे, जिन्हें पुलिस ने कामयाबी से पूरा किया।
8: पेचीदा मामला था, कहां कहां क्या क्या प्रॉब्लम सही थी आपको इसको सॉल्व करने में?
6: इसको सॉल्व करने में बड़ी समस्या ये थी कि चूंकि पुराना केस था, सभी लोग इसमें इतनी एक्सरसाइज मेहनत कर चुके हैं, और वापस री इन्वेस्टिगेट करने में हम लोगों को क्या दूसरी भी समस्याएं थी, टेक्निकल एविडेंसेस थे, टेक्निकल बेसिस थे, फिर परिजनों की संतुष्टि और सब चेन ऑफ कस्टडी, ये सब चीजें थी और वो बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो गई।
1: धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर आज तक।
0: वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
11: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: पंचायत आज तक मथुरा के मन से सीएम योगी ने फूका चुनावी बिगुल, बोले यूपी में फिर धमाकेदार तरीके से बनाएंगे सरकार। अखिलेश परवार कहा एसपी के मुखिया की भाषा हल्की। बीएसपी में किसी बड़ी जिम्मेदारी देने से मायावती के इनकार के बाद भतीजे आकाश आनंद ने बदला एक्स प्रोफाइल, खुद को लिखा पार्टी कार्यकर्ता, बाबा साहेब की सोच के युवा समर्थक। बिहार की परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी के आरोपों पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों से मिले राहुल गांधी, सरकार पर युवाओं की आवाज को दबाने का जड़ा आरोप, कहा जनता को देना होगा जवाब। यूक्रेन के दौरे पर कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, रूस से जारी युद्ध पर जताई चिंता, कहा शांति के पक्ष में है भारत। और जम्मू कश्मीर के बड़गांव में आतंकवादियों से एनकाउंटर, खुफिया जानकारी पर सेना और पुलिस की साझा टीम का एक्शन, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: विमल इलायची मामले में एफडीए को टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन का जवाब मिला, शाहरुख खान ने नहीं दिया जवाब, 30 दिन का नोटिस, जवाब की समीक्षा के बाद होगी अगली कार्रवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई दर्ज करेगी एफआईआर, दिशा सालियान की मौत के नए सिरे से होगी जांच, फडणवीस बोले शुरुआती जांच में कुछ पहलुओं की दोबारा पड़ताल होगी। दिशा सालियान केस में सीबीआई जांच के आदेश पर आदित्य ठाकरे का पलटवार, बोले मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी पर लगाया बदनाम करने का आरोप। मुंबई के मेयर ऋतु तावड़े ने बीएमसी कैंटीन का निरीक्षण किया, साफ सफाई को लेकर ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिए गए। पुणे पौष हादसे में अनीश अवधिया के माता पिता की मांग, गंभीर अपराधों में नाबालिग की उम्र सीमा घटाकर 18 से 16 कर दी जानी चाहिए, कहा मेरे बेटे को न्याय मिले। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 के मुंबई रोड शो में रिलायंस के निर्देशक अनंत अंबानी ने की गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात। वाइब्रेंट गुजरात रोड शो के तहत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने व्यापारिक दिग्गजों के साथ बैठक की। महाराष्ट्र के अकोला में दिखाई दिया बप्पा की भक्ति का रंग, जगह जगह मनाया जा रहा है गणपति उत्सव का जश्न। अकोला में बैंक लॉकर से 1 करोड़ रुपए का सोना गायब, डुप्लीकेट चाबी से 715 ग्राम सोना निकालने के आरोप, क्लीनर गिरफ्तार। नागपुर में मालिक ने नहीं दी मजदूरी तो जिंदा डेटोनेटर और कई मोबाइल लेकर भाग गया कर्मचारी, चंद्रपुर से रेलवे में डेटोनेटर लेकर पहुंच गया था नागपुर, पुलिस ने गिरफ्तार किया। वेब सीरीज की जबरदस्त सफलता के बाद आज रिलीज हुई है मिर्जापुर द मूवी, जिसमें कालीन भैया, गुड्डू भैया और मुन्ना भैया का जलवा बरकरार। बॉक्स ऑफिस पर अरशद वारसी और संजीदा शेख की डार्क कॉमेडी थ्रिलर जीवन बीमा योजना ने भी दस्तक दी, अरशद वारसी पहली बार डबल रोल में नजर आएंगे। तापसी पन्नू की फिल्म गांधारी ओटीटी पर, फिल्म में इश्वाक, छाया कदम और स्वास्थ्य का भी नजर आएंगी, नेटफ्लिक्स पर हो रही है स्ट्रीम। बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के बाद अजय देवगन की धमाल 4 नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई, जिसमें अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा समेत कई अन्य सितारे भी हैं। एक बार फिर से लौट रहा है लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस, इस शो का 20वां सीजन कल से जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगा। एनपीसीआई के प्रोटोकॉल से एआई एजेंट छोटी और बार बार होने वाली पेमेंट खुद करेगा, स्पेंडिंग लिमिट, ऑडिट ट्रायल और साथ ही आइडेंटिटी चेक्स जैसे सेफगार्ड्स भी इसमें शामिल होंगे। एचएसबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार और कंपनीज ने बड़ी लागत से बोझ खुद उठाकर महंगाई को कंट्रोल में रखा है, आगे चलकर हालात बदलने पर ब्याज दरें बढ़ा सकता है आरबीआई। चीनी, क्रूड ऑयल जैसे सामानों की कीमतें बढ़ने से एफएमसीजी कंपनीज पर लागत का दबाव बढ़ गया है, नोमुरा के मुताबिक आने वाले दिनों में ब्रिटेनिया के बाद अब बाकी की कंपनीज भी दाम बढ़ाएंगी। देश में गोल्ड लोन तेजी के साथ बढ़कर दूसरा सबसे बड़ा रिटेल क्रेडिट सेगमेंट बन गया है, छोटे कारोबारी, एमएसएमई और सामान्य आय वाले लोगों को पर्सनल लोन की जगह सोना गिरवी रखकर कर्ज लेना ज्यादा पसंद। पीएम की गैर मौजूदगी में सोना ना खरीदें, पीएम की गैर जरूरी सोना न खरीदने की अपील से सितंबर में सोने के आयात में 15% की गिरावट की आशंका, अगस्त के करीब 45 टन के मुकाबले इस महीने 38 टन गोल्ड आयात का अनुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। मुंबई में बेहद चर्चित दिशा सालियान केस की मिस्ट्री सुलझाने की जिम्मेदारी अब सीबीआई को सौंपी गई है और बीजेपी से मर्डर केस बताकर तत्कालीन उद्धव सरकार और आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगा रही है। आज आदित्य ठाकरे ने कहा है कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना है ही नहीं, बीजेपी सरकार मुझे और राहुल गांधी को बदनाम करने का कैंपेन चला रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो खुद कैसे तय कर सकते हैं कि वो बेकसूर हैं, ये तो सीबीआई की जांच के बाद ही तय होगा। अब
2: फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत समेत कई सेलिब्रिटीज की मैनेजर रह चुकी दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री अब सीबीआई सुलझाएगी। 2 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान केस में सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने और दिशा की मौत से जुड़े हर पहलू की जांच करने का आदेश दिया था। इस मामले में बीजेपी का आरोप है दिशा ने सुसाइड नहीं की थी, उसकी हत्या की गई थी। बीजेपी तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार के रवैये और आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाती रही है। आज आदित्य ठाकरे ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया। आदित्य ने कहा, मेरा दिशा सालियान केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीजेपी लगातार उन्हें बदनाम करने के लिए कैंपेन चला रही है।
3: Why should I even respond? BJP leaders are making serious allegations.
4: Yeah, see, BJP tries to defame everybody. They've tried to make Rahul Gandhi a pappu for years. They've tried to defame me for the last 6 years. Anybody who pricks the BJP, they have a problem with. जिससे कोई लेना देना नहीं है, उसपे मेरा बात करके कोई फायदा नहीं है, वो चलते रहे।
2: वहीं सीएम फडणवीस ने कहा कि मुंबई पुलिस ने अपनी फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पहले ही जमा कर दी थी, लेकिन हाईकोर्ट को लगा कि कुछ टेक्निकल पहलुओं या डिटेल्स की और जांच की जरूरत है, इसलिए सीबीआई को केस ट्रांसफर किया गया है।
5: देखिए, इसमें जो मुंबई पुलिस है उन्होंने अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट दिया था, लेकिन फिर भी शायद हाईकोर्ट को ऐसा लगा कि इसमें कुछ और जांच करनी चाहिए या कोई उसमें टेक्निकल इस प्रकार की कोई चीज कमी है, इसके चलते उन्होंने सीबीआई को दिया। अब इसके ऊपर मैं ज्यादा क्या कहूँ।
2: बीजेपी विधायक राम कदम लंबे समय से आदित्य ठाकरे पर आरोप लगाते हुए इसे मर्डर केस करार दे रहे हैं।
6: दिशा सालियान मामले में श्रीमान आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि उनका इससे कोई संबंध नहीं है। सवाल ये उठता है, संबंध है या नहीं है ये जांच एजेंसी जांच करने के पश्चात तय करेगी। कौन दोषी है, कौन लोग उसके मर्डर के लिए जिम्मेदार है, किसने उसे पीड़ित प्रताड़ित अत्याचारित किया है, पर दिशा के परिवार का और देश का सवाल है कि जब आपके पिता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, पुलिस इस बात को क्या कारण तक खंगाल नहीं रही थी। उसके परिवार के बार बार जाने के बाद सारे सबूत मिटने तक किस चीज का इंतजार कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज से लेकर जो जांच में जो महत्वपूर्ण सारी चीजें हैं, सारी चीजें मिटने तक किसका इंतजार कर रही थी। ये सारे सबूत मिटाए जा रहे थे या किसी के कहने पर ये हो रहा था।
7: देखिए, कोर्ट के ऑर्डर तो मैंने अभी पूरी तरह से पढ़ी नहीं, आई हैव नॉट गॉन थ्रू इट, लेकिन सीबीआई के पास अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए हैंड ओवर किया है, तो ऑनरेबल कोर्ट का जो भी ऑर्डर है हम फॉलो करेंगे।
2: अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए 6 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे दिशा के पिता सतीश सालियान भी कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के फैसले से उन्हें ये उम्मीद जगी है कि उनकी बेटी को देरी से ही सही लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा।
8: कहीं उसमें मोड़ आए, आपको कब ये चीज में कन्विंस हुआ कि कहीं ना कहीं कोई दोषी है, कोई आरोपी है? पहले इसको सुसाइड केस बताया जा रहा।
9: दोषी तो रहेगा, दोषी के बिना थोड़ी होएगा, मर्डर होएगा, ऐसा है।
8: लेकिन क्या ऐसे सरकमस्टेंसेस जो आपको लगता है जिसमें अभी तक जांच नहीं हो पाई और सीबीआई को उस चीज में फोकस करना चाहिए?
9: नहीं, अबे मैं तो कुछ नहीं उसके बारे में बोलता हूँ। जो लोग नीलेश साहब बोलते हैं सही बोलते हैं, उनको दिमाग चाणक्य दिमाग है।
8: उनका अब तो आप लगता है आदित्य ठाकरे आरोपी है इसमें?
9: अभी जो मैं नहीं बोलूंगा, जो जांच कर रहे हैं वो लोग बोलेंगे।
8: लेकिन खुश है आप इस फैसले से?
9: हाँ, जरूर जरूर।
2: 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा सालियान की मौत हुई थी। दिशा का शव इसी इमारत के नीचे मिला था। मुंबई पुलिस ने जांच के बाद इसे मौत मिस्ट्री को आत्महत्या बताया था, लेकिन अब सीबीआई इसका पूरा सच खंगालेगी।
10: कोर्ट ने इनका पूरा झूठ पकड़ लिया। पहली चीज, इसमें उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट बनाए थे सब झूठे पाए गए। इन्होंने खुद जो सीसीटीवी प्रोड्यूस किया उसमें भी इनका सुसाइड थ्योरी झूठा साबित हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी, आपको याद होगा कोर्ट ने पहला सवाल पूछा
8: इंजरी को लेकर।
10: हाँ, कोर्ट ने कहा आप कह रहे हो 14वें माले से लड़की गिर रही है, मुंह पर गिर रही है, वो फोर्स क्या होता है 14वें माले का, और नाक ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, होठ भी ठीक है, अंदर का एक दांत टूटा हुआ दिखा रहे हो।
8: क्या ग्राउंड्स आपको लगता है जो कोर्ट ने इसमें सीबीआई सीनियर सीबीआई ऑफिशियल को इन्वेस्टिगेट करने को कहा है?
10: क्योंकि सीनियर पुलिस अधिकारी आरोपी है, आदित्य ठाकरे आरोपी है, उद्धव ठाकरे आरोपी है, परमवीर सिंह आरोपी है, तो ऐसे इतनी बड़ी पूरी रिया चक्रवर्ती आरोपी है, तो इतने सब लोग आरोपी है, तो इसमें सीबीआई बेटर है और वो भी सीनियर ऑफिसर।
8: एफआईआर रजिस्टर करने को कहा गया सीबीआई की तरफ?
10: हाँ हाँ, कोर्ट ने क्लियर कहा है सतीश सालियान जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है और एफआईआर रजिस्टर करना है और बाद में इन्वेस्टिगेट करना है।
2: दिशा की मौत के ठीक 6 दिन बाद 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा के अपने फ्लैट पर मृत पाए गए थे। दोनों मौतों के बीच सिर्फ 6 दिन का अंतर था। यही वजह रही कि सोशल मीडिया और सार्वजनिक बहस में दोनों मामलों को जोड़कर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। मामले में दखल देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुरुआती जांच में कमियों को हाईलाइट किया और नई सीबीआई जांच का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि स्टेज पर किसी खास व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाया गया है जब तक कि कोई ठोस सबूत सामने न आ जाए।
11: दिशा सालियान मामले में महाराष्ट्र की राजनीति में फिर एक बार नया मोड़ ला दिया है, जहां एक तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं उसके बाद इस मामले पर से पर्दा उठने की उम्मीद जताई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां इस पर आधारित जो सियासी घमासान शुरू हो चुका है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अब देखना यह होगा कि क्या सीबीआई जांच के बाद सच सामने आता है या तो फिर महाराष्ट्र के राजनीति में ये सियासी जुबानबाजी इस तरह से जारी रहती है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: आज महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने त्योहारों के मौसम में पहले एसओपी जारी करने की बात कही है, जिसके बाद महाप्रसाद हो, लंगर हो, इफ्तार हो, बाकी की तमाम पार्टियां इवेंट हो, 7 दिन पहले उसके लिए आपको एफडीए को बताना होगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर त्योहारों और कम्युनिटी में खाना बांटने के दौरान साफ सफाई और क्वालिटी पर कड़ी नजर रखेंगे। वहीं विमल इलायची के विज्ञापन के मामले में भी एफडीए को टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन की ओर से जवाब मिल गया है, लेकिन अभी तक शाहरुख खान की तरफ से जवाब नहीं दिया गया है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने कहा है कि उनके जवाब को देखेंगे और फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।
2: जब से महाराष्ट्र एफडीए की कमान तुकाराम मुंडे ने संभाली है तब से पूरे सूबे में मिलावटखोरों और खाने पीने में गंदगी के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। आज मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े अचानक बीएमसी कैंटीन की साफ सफाई का निरीक्षण करने पहुंच गई। जिन्होंने फ्रिज खोलकर देखा, फिर फ्रीजर में रखी चीजों को देखा, उसके बाद कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर को साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। वहीं महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने त्योहारों के मौसम से पहले एसओपी जारी किया है, जिसके तहत महाप्रसाद, लंगर और इफ्तार पार्टी को इवेंट से 7 दिन पहले एफडीए को बताना होगा।
12: प्रत्येक फेस्टिवलच्या वेळेस काय करायला पाहिजे अशा गाईडलाईन्स पण आहे की जे जास्त हाय रिस्क फूड आयटम्स आहेत त्या हाय रिस्क फूड आयटमच्या बाबतीत विशेष काळजी घेतली जावी, विशेष मोहिमा आखल्या जाव्यात असे निर्देश फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचे आहेत। महाराष्ट्रामध्ये ही ज्या ज्या वेळेस असे सण येतात, उत्सव येतात, त्यावेळेस अशा इंडिपेंडंट त्या सणापुरत्या किंवा उत्सवापुरत्या काही प्रमाणात ऑर्डर काढलेल्या आहेत।
2: फूड सेफ्टी ऑफिसर त्योहारों और कम्युनिटी में खाना बांटने के दौरान साफ सफाई और क्वालिटी पर कड़ी नजर रखेंगे।
8: त्योहारों के सीजन से पहले एफडीए ने जो एसओपी निकाले हैं उनका फॉलो होना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्वालिटी जिस तरीके की फूड की त्योहारों में लोग खाते हैं उस पर बड़ी बात ये भी रहेगी कि महाप्रसाद हो, लंगर का खाना हो, इफ्तार पार्टीज हो, इन सभी के लिए 7 दिन पहले एफडीए को नोटिफाई करना पड़ेगा। एक कैटरर ही इस खाने को बना सकता है, यानी कि अगर आप फ्री में खाना बांट रहे हैं तो भी एक अच्छी क्वालिटी का साफ सुथरा खाना बांटना पड़ेगा। इस तरह के कदम महाराष्ट्र एफडीए ने उठाए हैं।
2: वही विमल इलायची के विज्ञापन केस में एफडीए को टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन की ओर से जवाब मिल गया है, लेकिन अभी तक शाहरुख खान ने जवाब नहीं दिया है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने कहा है कि उनके जवाब को देखेंगे और फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। दरअसल विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर महाराष्ट्र एफडीए ने अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को 11 अगस्त को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसका जवाब इन सितारों को 30 दिन के अंदर देना था। एफडीए के मुताबिक विज्ञापन में विमल नाम, प्रोडक्ट और डायलॉग इस तरह इस्तेमाल किए गए हैं कि इससे विमल ब्रांड का प्रचार होता दिखता है। क्योंकि विमल ब्रांड पान मसाला से भी जुड़ा है, इसलिए एफडीए को शक है कि विज्ञापन के जरिए प्रतिबंधित पान मसाले का इनडायरेक्ट प्रचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी एफडीए की कार्रवाई का खुले तौर पर समर्थन कर चुके हैं।
13: बहुत अच्छी एक्शन हो रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि फूड एडल्ट्रेशन या किसी भी प्रकार से जो हमारे फूड के मानक है इनको जब कोई ब्रीच करता है तो उसके कारण लोगों की जान को खतरा होता है, लोगों की हेल्थ को खतरा होता है, इसलिए इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन की आवश्यकता थी और वो एक्शन हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रकार की एक्शन हो रही है और ये एक्शन कंटिन्यू रहेगी।
2: ये पूरा मामला बीजेपी विधायक विक्रम पचपुते की शिकायत के बाद गरमाया है। पचपुते ने एफडीए की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि इलायची की आड़ में तंबाकू और गुटखे का प्रचार अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे विज्ञापनों के जरिए युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफडीए ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ से उनके विज्ञापन करार की कॉपी, फीस का ब्यौरा और विज्ञापन करने से पहले की गई जांच पड़ताल के सबूत मांगे थे। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने साफ कर दिया है कि अगर सितारों की तरफ से आया जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो उन पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद FSSAI एक्ट के तहत अगली कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर इन अभिनेताओं पर 3 साल तक किसी भी प्रोडक्ट के विज्ञापन पर रोक भी लगाई जा सकती है।
14: ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे, इस पे एग्जामिन कर भी रहे थे, तो दोरी हो गई ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हम काम कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। जो भी ऐसे सरोगेट ऐड या गलत ऐड, मिसलीडिंग ऐड करते हैं, उनके लिए रेगुलेशंस है, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 24 के तहत है, और एडवर्टाइजिंग के और क्लेम्स के भी रेगुलेशन 2018 से है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन आया है 1 जुलाई 2019 से। तो उसके बाद कोई भी ऐसी गलत ऐड, मिसलीडिंग ऐड, सरोगेट ऐड नहीं कर सकता है, उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिटेड है, उस पर लीगल कार्रवाई भी हो सकती है।
2: फिलहाल एफडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई पर सियासत भी तेज होती जा रही है।
15: महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिन 3 एक्टर्स को विमल इलायची की ऐड करने के लिए नोटिस इशू किया गया था, उसमें से अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ ने उन नोटिसेस का रिप्लाई किया है। शाहरुख खान ने इस नोटिस का रिप्लाई अभी तक नहीं किया है, कुछ दिनों और का समय उनके पास है। महाराष्ट्र एफडीए ने उस नोटिस में साफ किया था कि फूड सेफ्टी एक्ट है, उसके मुताबिक किसी भी तरह की सैरोगेट ऐड, एक ऐसी चीज़ की जो कि बैन किया गया है जैसे कि टोबैको, वो अलाउड नहीं है। और इसके बावजूद जो एक्टर्स इस तरीके की एड्स में काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स बाजार में मिलते नहीं हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं इसे एक तरह से बैंड प्रोडक्ट की एड समझ ही ट्रीट किया जाएगा, और जो एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, जो इसमें काम करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। एफडीए को अब ये डिसाइड करना है जो नोटिस आए हैं उस पर आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन वहादत के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
0: नीम करौली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई कर रही है। महज 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म करीब 80 करोड़ की कमाई कर चुकी है और फिल्म इसी वीकेंड 100 करोड़ के क्लब में पहुंच सकती है। फिल्म की सफलता के बाद डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने दूसरे पार्ट का भी ऐलान कर दिया है। अभिनेत्री कंगना रनौत समेत कई सेलिब्रिटीज फिल्म के समर्थन में अपील कर रहे हैं और इस फिल्म ने 1975 में आई धार्मिक फिल्म जय संतोषी मां की याद दिला दी है, जिसे देखने के लिए लोग नंगे पांव थिएटर जाते थे।

0: करना क्या चाहते हो?
1: राम जी के पास पहुंचना है।
2: बात है सन 1942 की, जब हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था और मैं गढ़वाल की पहाड़ियों में रह रहा हूँ।
3: राम नाम की खूंटी।
4: बाबा जी, ये मेरा बेटा है।
5: नीम करौली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर नए नए कीर्तिमान बना रही है।
6: एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा और इन अंग्रेजों का अच्छे से इलाज करेगा।
5: महज 2 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म इस वीकेंड तक 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है। खबरें हैं कि हनुमान अंश अब तक करीब 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। बजट की तुलना में कमाई की बात करें तो इस फिल्म को बॉलीवुड की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म मानी जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर बेहद धीमी शुरुआत करने वाली हनुमान अंश अपने बजट से करीब 2600% ज्यादा की कमाई कर चुकी है। इस फिल्म ने यश की बहुचर्चित और 500 करोड़ की बजट की फिल्म टॉक्सिक को 7वें दिन की कमाई में पछाड़ दिया। फिल्म को मिल रहे रिस्पांस को देखते हुए डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने हनुमान अंश का दूसरा पार्ट बनाने का ऐलान भी कर दिया है।
7: हालांकि जब रिलीज हुई थी तो बिल्कुल बज नहीं था और आज वो फिल्म अपने तीसरे हफ्ते को क्रॉस कर चुका है और आज उसके कलेक्शन जो है टोटल वो 70 करोड़ से ज्यादा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टॉक्सिक यश की जो एक पैन इंडिया बिग बजटेड फिल्म आई है वो और आवारा पंटू इमरान हाशमी की, उसके साथ कम्पीट कर रही है ये फिल्म। और 16वें दिन पे जब ये फिल्म, जिसे हम आजकल कहते हैं वर्ड ऑफ द माउथ, जी हाँ, जब लोग प्रशंसा करते हैं उसकी, सोशल मीडिया पे बात करते हैं उसकी, कंटेंट की तारीफ करते हैं, तब जाके ये सारी फिल्में लोग और जाकर ऑडियंसेस देखना चाहती है। और एक सीक्वल भी इस फिल्म में एक हिंट किया गया है कि आ सकती है।
8: साहब भूत,
9: सुबह सुबह भांग भांग खा के आए हो क्या?
8: अरे साहब, वो आदमी
5: 7 अगस्त 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई हनुमान अंश ने पहले दिन महज 10 लाख की कमाई की थी।
10: और देखना की पुलिस यहाँ पर आती है या नहीं।
5: पहले 2 हफ्तों में ये केवल 1,48,00,000 रुपए की कमाई कर सकी थी।
11: एक बाबा को उतार दिया।
5: लेकिन बाद में फिल्म के गाने वायरल हुए और वर्ड ऑफ माउथ यानी फिल्म देखकर आए लोगों ने इसका प्रचार किया, जिसके बाद सिनेमाघरों में दशकों बाद किसी धार्मिक फिल्म का क्रेज देखा जा रहा है। हनुमान अंश की कमाई के पैटर्न को समझने के लिए 51 साल पहले रिलीज हुई शोले और जय संतोषी माँ का उदाहरण लिया जा सकता है। सीतारा। 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई शोले में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बच्चन और अमजद खान जैसे बड़े सितारे थे। उस समय शोले करीब 3 करोड़ रुपए में बनी थी, लेकिन उसकी वर्ल्ड वाइड कमाई 50 करोड़ रुपए थी। ऐसी ही फिल्म जय संतोषी माँ का उस दौर में इतना ज्यादा क्रेज था कि लोग सिनेमा घरों में नंगे पैर फिल्म देखने जाते थे। अब ऐसा ही क्रेज हनुमान अंश के लिए देखा जा रहा है।
12: चाहे आप कहीं पर हो, कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, वो वहाँ से निकाल ही नहीं।
13: शुरू किया फिल्म का कैंपेन तो हमारे पास पैसे नहीं थे और हमें कैंपेन शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे और हमारे दिमाग में बहुत बात क्लियर थी कि हमको महाराज जी के संदेश के अराउंड ही हमको कैंपेन नहीं करना है, मार्केटिंग कैंपेन नहीं करना है। हमारी फिल्म आ गई, आप लोग आके देखो क्योंकि हमने फिल्म बनाई। क्यों भाई? सबसे पहली बात है उस कोर के साथ में जुड़ना है जो उन्होंने संदेश देना चाहा। तो हमने बड़े मंगल शुरू हुए थे, 8 बड़े मंगल थे। हमने हर बड़े मंगल को एक भंडारा कराया जिसमें हमने जाके भोजन का वितरण किया और हमने यही सिर्फ लोगों को बताया कि महाराज जी का प्रमुख उद्देश्य ही लाइफ का ये था कि लोगों को आप भूखों को भोजन कराएं, भक्तों को प्रसाद कराएं और भूखों को भोजन खिलाएं। आप समझिए कि हमारा सारा काम उन 8 बड़े मंगल ने कर दिया। अपने आप लोगों को बिलीव, ट्रस्ट आ गया हमारी फिल्म के ऊपर कि ये लोग कुछ तो जेन्युइन कर रहे हैं। हम अपने फिल्म के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं भैया महाराज जी का संदेश ये था और ये कंबल ओढ़े और लोगों को खाना बांट रहे हैं
14: और भरी गर्मी में और गर्मी नहीं लगती थी।
5: हनुमान अंश के लीड एक्टर और नीम करौली बाबा का किरदार निभाने वाले शुभिनव सत्य के अभिनय की काफी तारीफ हो रही है। कैमरे के सामने आने से पहले लंबे समय तक उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है।
15: सुबह 7 बजे की शिफ्ट होती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था 10 बजे तक कैमरा ही नहीं रोल हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो सर कहते थे कि ऐसा करो, हनुमान चालीसा करते हैं।
13: तो हमारे गणपति रोल बोलते हैं।
15: हाँ, गणपति रोल
13: बोलते हैं। गणपति रोल किया, फिर पूरी पूरी
0: हनुमान चालीसा
13: करी, फिर हनुमान एक्सटेंडेड हनुमान चालीसा,
0: हाँ आराम से मस्ती में।
13: जब तक हनुमान चालीसा खत्म हुई तब तक
0: सब सॉल्व
13: फंसा ही पड़ा है,
0: तो क्या कर सकते
13: हैं ये करते तब तक जब तक हमारा फिनिश होता था, वो कुछ ना कुछ वहाँ से
0: सॉल्यूशन आ जाता था।
4: मैंने तेरे ही भरोसे,
5: फिल्म के कई गाने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बुंदेलखंड के नेत्रहीन सिंगर सुनील लोधी का गाया गीत मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दी काफी लोकप्रिय हो रहा है।
4: मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई, मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे।
5: अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत भी फिल्म हनुमान अंश की तारीफ में कसीदे पढ़ रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हनुमान अंश कोई फिल्म नहीं है, ये एक सत्संग है। नीम करौली बाबा से खुद जुड़े लोगों की सच्ची घटनाओं को बेहद खूबसूरती से छोटी छोटी कहानियों में पिरोया गया है। अपनी थेरेपी छोड़ो और इसे देखने जाओ। वही नीम करौली बाबा के भक्त और पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी फिल्म देखने के बाद अपना अनुभव साझा किया।
11: भारत की महान संत परंपरा में ऐसे संत सदियों में आते हैं। महाराज जी को समझना तो संभव नहीं है, लेकिन उनकी एक झलक पाना जरूर संभव है, और हनुमान अंश उसी झलक को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। अगर आप महाराज जी को जानते हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए, और अगर नहीं जानते तो और भी जरूर देखिए।
5: फिलहाल हनुमान अंश का कुमार दर्शकों पर धीरे धीरे चढ़ रहा है। लोग अपने बच्चों और बुजुर्ग माता पिता को लेकर भी सिनेमा घरों में पहुंच रहे हैं। मुंबई से सना फरजीन के साथ आज तक ब्यूरो।
16: और चलिए इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: मुंबई में जन्माष्टमी से पहले दहीहांडी की तैयारियां जोरों पर हैं, क्योंकि गोविंदा पथक दिन रात पिरामिड बनाने की प्रैक्टिस में है। न्यू परशुराम गोविंदा पथक के सदस्य दिन भर ड्यूटी के बाद रात 9 बजे से लेकर 1 बजे रात तक अभ्यास करते हैं। 7, 8 और 9 थर की ऊंचाई मानव श्रृंखला बनाने वाली ये गोविंदा सिर्फ मटकी ही नहीं तोड़ते, बल्कि साहस, एकता और भरोसे की भी मिसाल पेश करते हैं। महाराष्ट्र सरकार भी दहीहांडी को साहसी खेल का दर्जा दे चुकी है।
2: 5 सितंबर को दही हंडी होने वाली है, लेकिन उसके पहले ही किस तरीके की तस्वीरें इस समय मुंबई में देखी जा रही है, दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, वो सारे पथक इस समय यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हुए जो अभी कुछ देर पहले ही प्रैक्टिस कर रहे थे, और किस तरह की व्यवस्था है थोड़ा ये भी देखे। ये देखिए, ट्रॉली के साथ में बाकायदा दही हंडी कुछ देर पहले यहाँ पर लगाई गई थी, बहुत सारी प्रैक्टिस हुई, आसपास की कई टीमें यहाँ पहुंची और सभी ने यहाँ पर पिरामिड बना करके दही हंडी तक पहुंचने की कोशिश करी है। एक बहुत ही भव्य मंच यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ तमाम मुझे लगता है आम खास लोग पहुंचे होंगे। और अब देखिए, ये छोटा सा बच्चा बहुत ही ज्यादा, और इनके साथ भी बहुत सारे लोग, आप लोग वाकई में बड़े साहसी हैं। लेकिन उससे पहले बोल बजरंग
3: बली की जय।
2: अरे बोल बजरंग
3: बली की जय।
2: चलिए थोड़ी बातों का सिलसिला शुरू करते, कैसी चल रही है तैयारी?
4: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत जोरों शोरों से तैयारी चालू है।
2: कैसे मिल सकता है टाइम आपको? आप काम पे भी जाते हैं उसके बाद यहाँ पर थोड़ा
4: सा? सब लोग देखो, सब अभी क्या है, सब हम लोग का एरिया रीडेवलपमेंट की वजह से टूट गया है, बराबर। तो सब पनवेल नवी मुंबई उधर से प्रैक्टिस के लिए जमा होते, उसके बाद 12:30-1 बजे रात को घर पहुँचते, फिर सुबह 6 बजे काम के लिए निकलते।
2: मैं इस समय मौजूद हूँ मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में, और यहाँ के लोग, यहाँ के रहवासी किस तरीके से दही हंडी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। एक तरह की प्रथा है ये, एक तरह की संस्कृति है जो मुंबई और महाराष्ट्र को पेश करती है, उन्हें बताती है। एक के साथ एक लोग कंधे जोड़ते हैं और इस तरह से एक के ऊपर एक थर बनाते हैं, कंधे पर एक दूसरे का वजन लेकर के धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत ज्यादा ऊंचे जाकर के हंडी लटकाई होती है जो मिट्टी की होती है, जिसमें दही रखी गई होती है, और कोई अपने माथे से तो कोई फिर अपने नारियल से फोड़ता है उस दही हंडी को, और उसके बाद।
1: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपके झूठ सर ये धूल झोंक

0: राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है, अब उसकी चलने की सामर्थ्य समाप्त, खेल खत्म। अब जब खेल खत्म तो फिर आगे की कोई संभावना नहीं, संभावना नहीं तो आगे के बारे में स्वयं सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं तो राम नाम का ही सहारा सही।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

मथुरा के मंच से सीएम योगी ने फूका चुनावी बिगुल, बोले यूपी में फिर से धमाकेदार तरीके से बनाएंगे सरकार। अखिलेश परिवार का एसपी के मुखिया की भाषा हल्की। बीएसपी में किसी बड़ी जिम्मेदारी देने से मायावती के इनकार के बाद भतीजे आकाश आनंद ने बदला एक्स प्रोफाइल, खुद को लिखा पार्टी कार्यकर्ता, बाबा साहेब की सोच का युवा समर्थक। ममता से अलग होकर एनसीपीआई में शामिल 20 सांसदों को 22 सितंबर तक जवाब देने का मिला वक्त, स्पीकर ओम बिरला ने बढ़ाई मियाद, टीएमसी ममता गुट ने की है सदस्यता रद्द करने की मांग। यूक्रेन के दौरे पर कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, रूस से जारी युद्ध पर जताई चिंता, कहा शांति के पक्ष में है भारत। और बिहार में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, पटना समेत आठ जिलों में हाई अलर्ट, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सतर्क।

0: पंचायत आज तक मथुरा के मंच से सीएम योगी ने फूंका चुनावी बिगुल, बोले यूपी में फिर से धमाकेदार तरीके से बनाएंगे सरकार।
1: 27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी। यूपी का युवा बनाएगा
0: पंचायत आज तक में, बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी सुशासन के आनंद का अनुभव कर रहा है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को लेकर भी कहा हल्की भाषा का इस्तेमाल करते हैं एसपी के मुखिया। बिहार में परीक्षा व्यवस्था में धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों ने राहुल गांधी से मुलाकात की, सरकार पर युवाओं की आवाज को दबाने के आरोप लगाए, लाठीचार्ज में कई छात्रों के घायल होने का भी दावा किया। शुद्धिकरण मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी, कहा 24 दिन के बाद भी नहीं हुआ कोई एक्शन, नैनीताल हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका। अभिषेक बनर्जी के दफ्तर में तोड़फोड़ और लूटपाट के मामले में ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा पुलिस को साथ लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को किया गया प्रताड़ित। जेड प्लस सुरक्षा वापस लेने पर ममता बनर्जी का पलटवार, बोली झूठ बोलकर जनता को गुमराह न करें, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, मैं लोकतंत्र और जनता पर करती हूं भरोसा। ममता बनर्जी बोली महज 4 महीने में हनीमून पीरियड मनीमून में बदल गया है, बीजेपी सत्ता के नशे में खो रही अपनी जमीन। कोलकाता का जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर ऋषि अरविंद यूनिवर्सिटी करने पर उठी है मांग, बीजेपी विधायक सरवरी मुखर्जी ने एबीवीपी के कार्यक्रम में अपील की। बीएसपी में किसी बड़ी जिम्मेदारी से मायावती के इनकार के बाद भतीजे आकाश आनंद ने अपना एक्स प्रोफाइल बदला, खुद को लिखा पार्टी का कार्यकर्ता, बाबा साहेब की सोच के युवा समर्थक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 4 और 5 सितंबर को बिहार का दौरा करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी डेमोक्रेटिक लॉन्च, मनीष ब्रह्मभट्ट का आरोप, मूल आंदोलन को केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए हैंडपिक्ड टीम में बदला गया। मनीष ब्रह्मभट्ट ने नई पार्टी के गठन पर उठाए हैं सवाल, आंदोलन में शिवसेना, सपा, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस समेत कई दलों की भागीदारी, फिर आम आदमी पार्टी से जुड़े 8 लोग क्यों। यूक्रेन के दौरे पर कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, रूस से जारी युद्ध पर जताई चिंता, कहा शांति के पक्ष में है भारत। विमल इलायची मामले में एफडीए को टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन का जवाब मिला, शाहरुख खान ने नहीं दिया जवाब, 30 दिन का नोटिस, जवाब की समीक्षा के बाद होगी आगे की कार्रवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई दर्ज करेगी एफआईआर, दिशा सालियान की मौत की नए सिरे से जांच होगी, फडणवीस बोले शुरुआती जांच में कुछ पहलुओं की दोबारा पड़ताल जरूरी। दिशा सालियान केस में सीबीआई जांच के आदेश पर आदित्य ठाकरे का पलटवार, बोले मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी पर लगाया बदनाम करने का आरोप। मुंबई के मेयर ऋतु तावड़े ने बीएमसी कैंटीन का निरीक्षण किया, साफ सफाई को लेकर ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए। पुणे पॉश मामले में अनीश अवधिया के माता पिता की मांग, गंभीर अपराधों में नाबालिग की उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 की जाए, बोले बेटे को मिलेगा न्याय। उज्जैन में नकली दवा सिंडिकेट का भंडाफोड़, आयुर्वेदिक लाइसेंस की आड़ में बनाई जा रही थी दवाएं, 5 लाख टैबलेट्स की सप्लाई का खुलासा हुआ। उत्तराखंड के हर्रावाला में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के छात्र फिर से आंदोलन पर हैं, 7 छात्र पानी की टंकी पर चढ़े। चंबा के स्कूल में 98 बच्चों पर शिक्षा का संकट है, 2 शिक्षकों के भरोसे हो रही है पढ़ाई, लैंडस्लाइड से जान पर भी खतरा। हिमाचल के बिलासपुर में सरकारी प्राथमिक स्कूल में 1 साल से शिक्षक नहीं है, रेपुटेशन के सहारे 13 बच्चों की पढ़ाई। हिमाचल में 150 स्कूलों में शिक्षक नहीं है, 3500 स्कूलों में सिर्फ 1 ही शिक्षक। विधानसभा में गूंजा मुद्दा, नेपाल में आपदा में मारे गए लोगों के सम्मान में 7 सितंबर को राष्ट्रीय शोक, सरकारी दफ्तरों और विदेशों में दूतावासों पर आधा झुकेगा तिरंगा। जेंजी आंदोलन में मारे गए युवाओं की याद में 8 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश, कैबिनेट बैठक में लिया फैसला। नेपाल में बाढ़ से भारी हाइड्रो पावर सुरंग में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन, नाव के अंदर पहुंचकर फंसे मजदूरों की तलाश जारी, भारत, चीन और दक्षिण कोरिया के विशेषज्ञ भी जुटे। नेपाल में त्रिशूली सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, 93 सदस्यीय टीम मलबा हटाने में जुटी हुई है। 170 मीटर लंबी सुरंग का मुहाना खोलने की कोशिश, 3 फीट हिस्सा खुला, 7 बड़े बोल्डर्स ब्लास्टिंग के लिए तैयार। नेपाल तिब्बत सीमा पर तबाही के बाद चीन की चेतावनी, तिब्बत पठार के ग्लेशियर और अस्थिर होंगे, बार बार ग्लेशियर टूटने से बढ़ सकता है आपदा का खतरा। टिहरी के बिगुन गांव में भारी भूस्खलन, कई हेक्टेयर जमीन प्रभावित हुई, घरों में दरारें, 12 परिवार शिफ्ट। सोलन के जावली में भारी बारिश का तांडव, दुकान में घुसा सैलाब का पानी, जान बचाकर भागा दुकानदार। बेगूसराय में बाढ़ की वजह से खोरमपुर गांव पूरी तरह से डूबा है, सड़कों और घरों में कमर तक भर गया है पानी, आने जाने के लिए लोग मजबूर हैं, घर में ताला लगाकर पलायन करने के लिए मजबूर हुए लोग। कानपुर में पांडू नदी उफनाई, सैकड़ों घरों में घुस गया है पानी, लोगों को हो रही है परेशानी, घरों का सामान बाहर निकालकर रह रहे हैं लोग। नवगछिया के राघोपुर में गंगा का कहर, गंगा के तेज बहाव से बढ़ा संकट, अब पुरानी रेल लाइन वाले बांध की सुरक्षा चुनौती। कैमूर में मोहनिया में बाढ़ का संकट है, पावर हाउस में घुसा पानी, बिजली आपूर्ति ठप होने का खतरा। चित्रकूट में बाढ़ और बारिश का कहर, मंदाकिनी में 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 36 गांव प्रभावित। रोहतास के पास कई गांवों में घुसा है सोन नदी के बाढ़ का पानी, एसडीआरएफ की टीम द्वारा सोन नदी के बीच स्थित टीला पर फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। चमोली में सड़क नहीं डांडी बन गई है सहारा, प्रसूता को 3 किलोमीटर तक कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया, बारिश और खाई के बीच ग्रामीणों ने तय किया जोखिम भरा सफर। कांगड़ा में भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से बाल बाल बचाए एक थ्री व्हीलर और ड्राइवर, तेज बहाव के बीच स्थानीय लोगों ने दिखाई बहादुरी, बचाई ड्राइवर की जान। कांगड़ा में भूस्खलन से पानी का मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई, धर्मशाला के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति बाधित। धर्मशाला में पेयजल संकट के बीच वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति की कोशिश, जल शक्ति विभाग ने लोगों से पानी का समझदारी और जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने की अपील की है। बाढ़ से घिरा सारण का सोनपुर, सबलपुर दियारा का 4 पंचायत पूरी तरह से जलमग्न हुआ, हजारों की आबादी प्रभावित हुई। बक्सर में शिक्षकों ने की दरिंदगी, सरकारी स्कूल के 2 शिक्षकों पर लगा बालिकाओं के साथ रेप का आरोप, शिक्षा विभाग ने दोनों ही शिक्षकों को निलंबित किया, जांच जारी। सूरत में एक ही घर से मां बेटी के शव मिले, सड़क मचा हत्या, आत्महत्या की गुत्थी में उलझी हुई है पुलिस जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से होगा मौत के कारणों का खुलासा। मेरठ में स्कूल बस की चपेट में आने से 4 साल के बच्चे की मौत हुई, शव को लेकर थाने पहुंचे परिजन हंगामा किया, मुकदमा दर्ज करवाया। फतेहाबाद में दामाद ने सो रहे ससुराल वालियों को तलवार से काट डाला, 5 में 4 की हालत बेहद नाजुक है, कानपुर रेफर, ग्रामीणों ने दामाद को पकड़कर पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। अकोला में बैंक लॉकर से 1 करोड़ रुपए का सोना गायब हुआ, डुप्लीकेट चाबी से 715 ग्राम निकालने के आरोप है, क्लीनर गिरफ्तार। नागपुर में मालिक ने नहीं दी मजदूरी तो जिंदा डेटोनेटर और कई मोबाइल लेकर भागा कर्मचारी, चंद्रपुर से रेलवे में डेटोनेटर लेकर पहुंचा नागपुर, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिजनौर में 30 फीट गहरे कुएं में गिरा था तेंदुआ, 3 घंटे की मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू किया जा सका। हापुड़ में एक स्टील की फैक्ट्री में भीषण आग लगी, आग से उठ रहा था काला धुआं, कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। पलामू में नेशनल हाईवे पर ट्रक में लोड सीएनजी गैस लीक हुई, पुलिस ने लीकेज बंद कराकर और मार्ग को वन वे में करके बड़ी घटना को टाला। विभाड़ी में नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, 4 करोड़ की नकली दवाएं पकड़ी गई, ड्रग्स विभाग ने मकान को सील किया। रेवाड़ी में भीषण सड़क हादसा, सेंटर्स कार ने छात्राओं से भरे टेम्पो को टक्कर मारी थी, 15 से ज्यादा छात्राएं घायल हुई, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। कच्छ में 1 लाख के बदले 5 लाख और सस्ते सोने का लालच, पश्चिम कच्छ में ठगों का भंडाफोड़, 2 की गिरफ्तारी। मेरठ में डिलीवरी बॉय को बंधक बनाकर पीटने के आरोप में पुलिस ने जांच कार्रवाई करने की बात कही है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की स्टार रामेश्वरम सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक, 7 साल की मासूम पर कुत्तों ने हमला बोला, हाथ पैर और कमर पर बुरी तरह से काटा और घसीटा भी, सीसीटीवी कैमरे की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। आज देशभर के मंदिरों में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्कॉन मंदिर रंग बिरंगी लाइट से सजाए गए हैं। जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा, भीड़ संभालने और भक्तों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां, दिल्ली के स्कॉन मंदिर में भी सुंदर सजावट। जन्माष्टमी पर सुबह 4 बजे से पूरे दिन मध्य रात्रि 12 बजे तक भक्तों के लिए खुले रहेंगे मंदिर, भीड़ के प्रबंधन के लिए खास इंतजाम। गया के स्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर दुल्हन की तरह सजाया गया पूरा मंदिर परिसर, 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना। एनपीसीआई के नए एजेंट प्रोटोकॉल से एआई एजेंट छोटी और बार बार खोलने वाली पेमेंट्स खुद करेगा, स्पेंडिंग लिमिट, ऑडिट ट्रेल और साथ ही आइडेंटिटी चेक्स जैसे तमाम चीजें इसमें शामिल होंगी। एचएसबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार और कंपनीज ने बड़ी लागत का बोझ खुद उठाकर महंगाई को कंट्रोल में रखने की कोशिश की, आगे चलकर हालात बदलने पर ब्याज दरें बढ़ा सकता है आरबीआई। चीनी क्रूड ऑयल जैसे सामानों की कीमतें बढ़ने से एफएमसीजी कंपनीज पर लागत का दबाव बढ़ गया है, नोमरा के मुताबिक आने वाले दिनों में ब्रिटानिया के बाद अब कई और कंपनीज भी बढ़ा देंगी दाम। देश में गोल्ड लोन तेजी से बढ़कर दूसरा सबसे बड़ा रिटेल क्रेडिट सेगमेंट बन गया है, छोटे कारोबारी एमएसएमई और सामान्य आय वाले लोगों को पर्सनल लोन्स की जगह सोना गिरवी रखकर कर्ज लेना ज्यादा पसंद। पीएम की गैर जरूरी सोना न खरीदने की अपील के बाद सितंबर में सोने के आयात में 15% की गिरावट की आशंका, अगस्त के मुकाबले 35 टन के मुकाबले इस महीने 38 टन गोल्ड आयात करने का अनुमान। प्रोजेक्ट ब्रोशर में किए गए वादों से डेवलपर के पीछे हटने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। गुरुग्राम के डीएलएफ द प्राइमस प्रोजेक्ट मामले में कहा है कि ब्रोशर में किए गए तमाम वादों को पूरा करना होगा बिल्डर को। भारत में कुल वर्कफोर्स का 10% हिस्सा घटाने से पेपल के 1600 कर्मचारी की नौकरी चली गई है। दूसरी तरफ उबर की ग्लोबल छटनी में भारत में करीब 250 कर्मचारियों की नौकरियों पर खतरा। भारत में होम बायर्स के बीच क्लाइमेट प्रोटेक्शन वाले घरों की डिमांड बढ़ने से इनके दाम भी बढ़ गए हैं। मुंबई में बाढ़ग्रस्त इलाकों के मुकाबले सुरक्षित इलाकों में फ्लैट की कीमत लगभग 2.5 गुना ज्यादा। भारत की पब्लिक रिलेशंस इंडस्ट्री 2025-26 में 3,220 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अर्थव्यवस्था में किया गया 545 अरब डॉलर का योगदान। लोकल सर्किल्स के सर्वे के मुताबिक पिछले 6 महीनों में अंडों की कीमत में 10-15% की बढ़ोतरी हुई है। इससे परेशान 48% परिवारों ने अंडों की खरीदारी घटा दी है। वेब सीरीज की जबरदस्त सफलता के बाद आज रिलीज हुई मिर्जापुर द मूवी, जिसमें कालीन भैया, गुड्डू भैया और मुन्ना भैया का जलवा भी देखने को मिलेगा। बॉक्स ऑफिस पर अरशद वारसी और संजीदा शेख की डार्क कॉमेडी थ्रिलर जीवन बीमा योजना ने भी दस्तक दी। अरशद वारसी पहली बार डबल रोल में नजर आएंगे। तापसी पन्नू की फिल्म गांधारी ओटीटी पर। फिल्म में इश्फाक और छाया कदम और साथ ही स्वास्तिका मुखर्जी भी हैं। फिल्म गांधारी नेटफ्लिक्स पर हो रही है स्ट्रीम। बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के बाद अजय देवगन की धमाल 4 नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई। इसमें अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा समेत कई और भी सितारे। आज से एक बार फिर से लौट रहा है लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस। इस शो का 20वां सीजन आज से जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगा। कुणाल खेमू की दूसरी निर्देशित फिल्म वाइफ्स का ट्रेलर रिलीज हुआ। इस फिल्म में कुणाल, प्रीति जिंटा, साथ ही स्पर्श श्रीवास्तव, वंशिका धीर और अन्य कलाकार शामिल हैं। रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 की रिलीज डेट आई है सामने। 15 अक्टूबर को दशहरा के दौरान सिनेमाघरों में दस्तक देगी। शैतान और रेड 2 की सफलता के बाद देवगन फिल्म्स और पैनोरमा स्टूडियोज ने नई हॉरर थ्रिलर फिल्म पर शुरू कर दिया है काम। रोहित जुगराज के निर्देशन में शूटिंग शुरू हुई। कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार किच्चा सुदीप के बर्थडे पर फैंस को मिला एक बड़ा सरप्राइज। उनकी भव्य ऐतिहासिक फिल्म देवराया की हुई आधिकारिक घोषणा। रवीना परिणीति के बाद अब मालामाल वीकली 2 में ईशा देओल की एंट्री हुई है। 2 जल्द ही फ्लोर पर नजर आएंगी। उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का बड़ा दावा, रूसी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने से बच रही हैं विमान कंपनियां। रूस में कई उड़ानें हो चुकी हैं रद्द। एक दिन पहले यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन को आधिकारिक तौर पर सूचित कर दिया गया है कि रूसी हवाई क्षेत्र अब सुरक्षित नहीं है। यूक्रेन के साथ शांति समझौते को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। उन्हें यूक्रेन के साथ शांति समझौते की उम्मीद है, मगर यूक्रेन की तरफ से हो रहे हमले और जेलेंस्की के द्वारा नागरिक विमानों से रूसी हवाई क्षेत्र से बचने की अपील किए जाने के बाद बढ़ गई हैं मुश्किलें। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने रूस के साथ व्यापार दोगुना करने की बात कही। रूस के ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से बोले, इंडोनेशिया रूस के बीच व्यापार बढ़ाने पर जोर। रूसी सेना ने कीव ओडिशा समेत कई इलाकों पर किया भीषण हवाई हमला। यूक्रेनी प्रशासन का आरोप है ओडिशा में रिहायशी इमारतों को बनाया गया निशाना, 17 लोग इसमें घायल हुए। ट्रंप का बड़ा बयान, कहा अमेरिकी सेना पर और अधिक हमलों की कर रहे हैं तैयारियां। अमेरिका जब चाहे ईरान पर कर सकता है हमले। ईरान ने कुवैत में मिसाइल और ड्रोन से किया हमला। ईरान पर हुई अमेरिकी बमबारी के जवाब में ईरान की सेना का पलटवार। एक दिन पहले ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और मौजूद अमेरिकी ठिकानों को बनाया था निशाना। नॉर्वे ने यूक्रेन की अपील पर आर्कटिक में रूसी जहाज को किया जब्त। क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद यूक्रेन की ऊर्जा संपत्तियों पर कब्जे से जुड़े मामलों में रूस पर 4.22 अरब डॉलर का लगा था जुर्माना। यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। रूस से जारी युद्ध पर जताई गई है चिंता। जेलेंस्की ने कहा भारत के साथ कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत की यात्रा पर आए बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। बैठक के दौरान भारत और बेल्जियम के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 5 साल में दोगुना करने पर सहमति। ट्रंप की तस्वीर के साथ यूएस मिंट ने जारी किया है $1 का सिक्का। अमेरिका के 250वें जन्मदिन की याद में जारी किया गया विशेष तरह का सिक्का।

0: तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, बालकृष्ण रूप में जो बच्चे यहाँ पर सज धज के आए हैं उनके साथ उनको आप इस वक्त देख रहे हैं। और आजकल मुख्यमंत्री जी जहां पर जा रहे हैं संबोधन में, वो वृंदावन कृष्ण बिहारी की जय के साथ शुरुआत कर रहे हैं।
1: राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, सेफई सिंडिकेट ये महाभारत के रिश्तों का सबसे अच्छा उदाहरण है।
0: पेपर लीक, रोजगार, इन सब पर क्या है आपकी योजना?
1: अंजना ओम कश्यप जी जो बात कह रही थी, अब यूपी में पर्चा लीक नहीं होता है, क्योंकि पर्चा लीक करने वाले को मालूम है कि तो जेल तो जाएगा ही जाएगा, बाप दादों की पूरी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवा करके सड़कों पे कटोरा लेकर के घूमने के लिए मजबूर हो जाएगा। मैंने कहा क्या तैयारी है? उन्होंने कहा जो गत वर्ष का जियो है हमने उसको ही जारी करने के लिए कहा। मैंने कहा क्या है गत वर्ष का जियो? उन्होंने कहा साहब डीजे नहीं बजेगा, घंटा संग घड़ियाले सब नहीं बजेंगे। भाई हमने कहा तो फिर क्या है, ये शिव की यात्रा है या कोई शव यात्रा निकल रही है? इन्होंने यूपी की इस विरासत को अपमानित किया, इन्होंने अयोध्या को भी अपमानित किया, इन्होंने हमारी इस पावन ब्रज भूमि को अपमानित किया। इस मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर बेटी की सुरक्षा के साथ इसने खिलवाड़ किया है तो इसको जेल या जहन्नुम में से एक जगह पहुंचाना जरूर है, क्योंकि ये इसका हकदार है। अंजना जी को उस समय मैंने कहा था, जब उन्होंने इंटरव्यू 22 में लिया था तो मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा चिंता मत करिए, हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और यूपी पंचायत में तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, वो दो दिन मथुरा वृंदावन में रहने वाले हैं और कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव भी यहाँ पर मन रहा है। तो वो क्या यहाँ पर इस मंच से कहते हैं वो भी दिलचस्प होगा। और बालकृष्ण रूप में जो बच्चे यहाँ पर सज धज के आए हैं उनके साथ उनको आप इस वक्त देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत स्वागत यूपी पंचायत में। महज 50 दिन पुरानी बात है, वो यूपी पंचायत में लखनऊ में मौजूद रहे और वहां से उन्होंने जनता का संबोधन किया। और आज एक बार फिर इस मंच से वो आज तक के तमाम दर्शकों और यहां पर मौजूद जो लोग हैं मथुरा वृंदावन में, उन सब के सामने अपना संबोधन रखेंगे। लेकिन तीन चार बड़ी बातें हैं जिनकी चर्चा हम पहले करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे लंबा कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश में अब तक का हो चुका है। सत्रह में बने, 22 में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और अब सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने इस बार 27 का रहेगा। बहुत सारी बातें हैं क्योंकि ये पहला चुनाव है जो जेंजी आंदोलन के बाद देश में होने वाला है, तो उस पर क्या सोचते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये जानेंगे। ये मथुरा की धरती है, ये कृष्ण बिहारी की धरती है। और आजकल मुख्यमंत्री जी जहां पर जा रहे हैं संबोधन में, वो वृंदावन कृष्ण बिहारी की जय के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो कई जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई अयोध्या अगर झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो मथुरा जन्म स्थान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्या सोच है ये वो इस मंच से जानना चाहेंगे। विजय की पालकी, जय कन्हैया लाल की, क्या इस सोच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल पड़े हैं। इसी के साथ साथ जिन मुद्दों पर हम लोग चर्चा चाहेंगे वो है अयोध्या का मुद्दा, क्योंकि उसके ध्वजवाहक के तौर पर लंबे वक्त से मुख्यमंत्री जी लगे रहे। मंदिर बनने के बाद अनेकों बार 70-80 बार वो वहां पर गए। चढ़ावा चोरी का मुद्दा, क्या राजनीतिक रूप से चुनावी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर नए सीईओ के गठन के बाद, नई टीम बनने के बाद एक बार फिर से भक्तों का भरोसा वो जीत पाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आपने देखा होगा आज दिन भर कांग्रेस के कई नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े एक आर्मी के पूर्व अधिकारी को आपने सीईओ के पद पर क्यों नियुक्त कर दिया। तो इस पर मुख्यमंत्री जी क्या सोचते हैं वो जानना दिलचस्प रहेगा। जेन जी, जेन अल्फा। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने ये चैलेंज होगा कि वो कैसे उनकी भावनाओं को क्लॉकेट करेंगे, क्योंकि अब उनकी भाषा अलग है, इंस्टाग्राम की पीढ़ी से आपको जुड़ना है, तो उसमें आपकी क्या सोच है। एक दिलचस्प सवाल मेरे मन में भी है जो मैं चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी बनाए, कि चढ़ावा चोरी या जेंजी आंदोलन, उनकी नजर में कौन सा रियल चैलेंज है जो उनके लिए चुनावी तौर पर 27 के पहले आने वाला है। हमने दर्शकों को भी दिखाया, कई जगहों पर जेन अल्फा वीडियोस भी बना रहे हैं, वो मिड डे मील की मुख्यमंत्री जी बहुत चर्चा कर रहे हैं कि उसका स्तर और बेहतर होना चाहिए। पेपर लीक, रोजगार, इन सब पर क्या है आपकी योजना और युवाओं को कैसे आप अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं अलग है और उसको वो अलग अलग जगहों पर सामने आकर दिखा भी चुके हैं। एक और रीत आजकल मुख्यमंत्री जी चल रही है जिसमें महिलाओं का वोट निर्णायक हो रहा है, तो बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद क्या यूपी में भी आपकी कोई योजना है, क्योंकि अब अखिलेश जी भी अनाउंस कर रहे हैं पैसों की बात, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या करने वाले हैं। कुछ ऐसी खबर आई कि 30+10+10 वाली बात आने वाली है, तो महिलाओं को लेकर आप क्या सोच रहे हैं उस पर चर्चा होगी। अब आपने सैफई सिंडिकेट और रामपुर सिंडिकेट का जिक्र किया है और आप अपना कानून व्यवस्था का पूरा एजेंडा रखते हैं, तो क्या आज भी समाजवादी पार्टी की पुरानी सरकार और उसके तौर तरीकों पर आप जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे। जो अगला मुद्दा मेरी नज़र में है, जिस पर हम लोग उम्मीद रखते हैं कि मुख्यमंत्री जी आज बोलेंगे, वो ये है कि पिछली बार आप बुलडोजर बाबा, हम लोगों ने देखा जिस दिन रिजल्ट आया तो बुलडोजर के मिनी एचर ले लेके लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। माफियाओं को हमारे इंटरव्यू में आपने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में नहीं मिलाएंगे तो क्या उनकी आरती बताएंगे, क्या वही सख्त रूप आपका फिर से देखने को मिलेगा और क्या वही आपके चुनाव का नैरेटिव बनेगा। इसी के साथ साथ जो अगला मुद्दा हम लोग मान रहे हैं कि बड़ा होगा वो ये है कि 2017 और 2022 ये चुनाव अलग था, 2024 में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं, वो एक नई ऊर्जा के साथ आ रहे हैं, उनको आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं। इन तमाम मुद्दों पर आपका रिपोर्ट कार्ड, आपका जनता से संवाद सुनने के लिए हम सब आतुर हैं। तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत कीजिए। हमने शीर्षक मुख्यमंत्री जी बड़ा दिलचस्प रखा है, मथुरा की धरती है योगी जी की चुनावी लीला। बहुत बहुत स्वागत है आपका, तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए।
2: राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, पंचायत आज तक ब्रज की इस पावन धरा पर आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा आयोजित पंचायत आज तक के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में हमारे मंत्रीगण, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, न्यूज डायरेक्टर आज तक श्री सुप्रिय प्रसाद जी, मैनेजिंग एडिटिंग सुश्री श्वेता सिंह जी, मैनेजिंग एडिटर सुश्री अंजना ओम कश्यप जी, आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण, मैं सबसे पहले आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप को पंचायत आज तक के इस आयोजन को कान्हा के इस धरा पर करने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं। पूरी ब्रजभूमि इस समय कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव की तैयारी में लगा हुआ है, एक उत्सव है, चारों ओर आनंद का माहौल, एक उत्सव है, चारों ओर आनंद का माहौल है, हर घर में लोगों के यहां श्रद्धालु जनों के घरों में आनंद जैसा उत्साह का वातावरण है और उस उत्साहपूर्ण माहौल में पंचायत आज तक ने इसी वृंदावन की धरती पर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। मित्रों, मानव जीवन की वास्तविकता क्या है, और जीवन कैसे जिया जाना चाहिए, श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले इसी पावन धरा पर जन्म लेकर के जीवन के उन रहस्यों को हम सबके सामने उद्घाटित करके रखा है। और जीवन का उद्देश्य क्या है? सत्य है, धर्म है, लेकिन इनका मार्ग कर्तव्य से होकर के जाता है, या प्रेरणा इसी धरा की देन है। और उसी धरा पर आज हम सबको पंचायत आज तक के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आज तक इंडिया टुडे ग्रुप को इसके लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न हम सबके सामने आता है, क्या आज उत्तर प्रदेश में जो उत्साह का वातावरण है, उत्सव का वातावरण है, आप ब्रजभूमि में ही देखें, मथुरा वृंदावन में जन्मोत्सव का माहौल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, बरसाना में रंगोत्सव होली के अवसर पर, ब्रजरज महोत्सव यहां के उत्सवपूर्ण वातावरण के साथ ही यहां की पंचकोशी परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा और 84 कोसी परिक्रमा, यह उत्सवपूर्ण वातावरण, इसका जो पोटेंशियल है, इसकी जो संभावनाएं हैं और इसकी जो चुनौतियां हैं, क्या 2017 के पहले संभव था? आज हम जहां खड़े हैं, याद करिए, ये वही धरा है जहां पर जून 2016 में जवाहर बाग की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी। उनतीस लोग मारे गए थे, उपद्रव का तांडव था, चारों ओर अराजकता थी, यूपी पुलिस के भी अधिकारी मारे गए थे। और उस धरती पर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ? क्या आज वहां पर एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जहां पहले हजारों की संख्या में श्रद्धालु आने को तैयार नहीं था, उस धरती पर आज के दिन पर गत वर्ष अकेले इस ब्रजभूमि पर 11 करोड़ श्रद्धालु पर्यटक के रूप में आया था। और मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं
3: तो गत वर्ष उत्तर प्रदेश में 2025 में 156 करोड़ श्रद्धालुओं ने आकर के उत्तर प्रदेश के अंदर आस्था को आर्थिकी के साथ जोड़ने का एक नया अनुभव देश और दुनिया को करवाया था। यह जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन उसी बदलाव का परिणाम है जो चुनौती से भागता नहीं, उन चुनौतियों में संभावनाएं देखता है और उन संभावनाओं को समाधान तक पहुंचा करके सफलता के नित नए प्रतिमान स्थापित करता है। जो लोग चुनौती को समस्या मानते थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश को कर्फ्यू ग्रस्त बनाया था, दंगा ग्रस्त बनाया था, अराजक बनाया था, उपद्रव प्रदेश में बदल दिया था। जिन लोगों ने चुनौती को एक संभावना के रूप में लिया, उन्होंने उन संभावनाओं में सफलता के नित नए प्रतिमान स्थापित भी किए और वही प्रगति आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबको दिखाई दे रही है। आजादी के बाद जो संभावनाएं आगे बढ़ने के लिए होनी चाहिए थी, उन संभावनाओं को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तिलांजलि देकर के कुंद किया गया, उन्हें अपमानित किया गया। यहां के पोटेंशियल को परफॉर्मेंस के रूप में बदलने की बजाय उसे प्लानवादी बनाने का प्रयास किया गया। दुष्परिणाम क्या था? दशकों तक यूपी के सामने बीमारू राज्य के रूप में अपनी पहचान को छुपाने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। यहां का युवा अपनी पहचान को छुपाता था, यहां का व्यापारी अपनी पहचान को छुपाता था, यहां का हर नागरिक जब यूपी के बाहर जाता था तो अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होता था। गलती उस युवा की नहीं थी, गलती उस बेटी की नहीं थी, गलती उस व्यापारी या उस उद्यमी की नहीं थी। बीमार यूपी नहीं था, यूपी में तो सब कुछ था। यहां संभावनाएं थी, यहां विरासत थी, दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि थी, सबसे अच्छा जल संसाधन था, लेकिन योग्य नेतृत्व का अभाव था। बीमारू उत्तर प्रदेश नहीं था, बीमारू वह मानसिकता थी जो 2017 के पहले यूपी में शासन कर रही थी। वह बीमारू थी, वह बीमार थी, इसलिए उसने यूपी को बीमारू बना दिया। उनकी नीति बीमार थी, उनके क्रियाकलाप बीमार थे, इसलिए यूपी बीमारू बना। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यूपी अब बीमारू नहीं है। यूपी भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में आज तेजी के साथ आगे बढ़ा है। हमने यूपी को बॉटम थ्री से टॉप थ्री इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। मैं मानता हूं इस बात को, यह डबल इंजन सरकार की ताकत है, जिसे हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर जिस यूपी के बारे में ये चर्चाएं चला करती थी कि यूपी में निवेश कौन करेगा, वहां सुरक्षा नहीं, और स्वाभाविक भी, निवेश की पहली शर्त है सुरक्षा। निवेश की पहली शर्त होती है सरकार की नीति क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है। निवेश की पहली शर्त होती है किसे सिंगल विंडो की सुविधा चाहिए, एक फाइल 56 टेबल में घूम करके नहीं आएगी, एक सिंगल विंडो की सुविधा उसे चाहिए। दुर्भाग्य से 2017 तक इस सुविधा यूपी के अंदर लोग पैदा नहीं कर पाए। यूपी का कल्चर किस रूप में इन्होंने खड़ा किया, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहां माफियाओं को, दंगाइयों को, पेशेवर अपराधियों को पाला, उन्हें प्रोत्साहित किया, उनके सामने नतमस्तक हुआ करते थे, वही लोग यूपी के बीमारूपन के कारण भी थे, यूपी के निवेश के विरोध, यूपी में निवेश के विरोधी भी थे, यूपी में पर्यटन के विरोधी भी थे, यूपी में महिला सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए थे, और उत्तर प्रदेश के युवाओं की नौकरी और युवाओं के रोजगार पर भी सबसे बड़ी डकैती डालने का काम ये वही लोग करते थे, ये वही लोग करते थे। 2017 के पहले यूपी के अंदर कोई नौकरी निकलती थी, कोई भी नौकरी निकलती थी, विज्ञापन जारी हुआ तो खेल प्रारंभ हो जाता था। सिपाही सिंडिकेट ये महाभारत के रिश्तों का सबसे अच्छा उदाहरण है। महाभारत के सारे रिश्ते इस परिवार में मिल जाएंगे, सिंडिकेट के अंदर मिल जाएंगे। वहां शकुनी भी हैं, वहां पर वे सभी पात्र हैं, कोई दुर्योधन है, कोई दुशासन है, वे सभी पात्र मिल जाएंगे, और ये सभी पात्र मिलकर के यूपी के अंदर फिर युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ कर देते थे। हर युवा चिंतित होता था, पहले परीक्षा के, पहले विज्ञापन के बारे में, फिर परीक्षा के बारे में, फिर परिणाम के बारे में, फिर पोस्टिंग के बारे में, और फिर आगे जो खेल होता था वह भी यूपी के अंदर हम सब उस रूप में देखते आए हैं। मित्रों, 2017 के पहले अगर उन्होंने ईमानदारी के साथ यूपी के अंदर उन नौजवानों के लिए उस प्रकार के अवसर दिए होते, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां यूपी के अंदर कभी नहीं आती। स्कूल कॉलेजेस की स्थिति क्या थी? उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार का माहौल हो चुका था? बेसिक शिक्षा में जर्जर भवन स्कूल के, विद्यालय का भवन है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है तो छात्र भी नहीं होते थे। यूपी के अंदर बालक बालिकाओं के लिए ड्रॉप आउट रेट 19-20% था, ये केवल स्कूली शिक्षा में। आप सोचो 9.5 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं, देश के अंदर किसी राज्य में इतनी नौकरी कभी नहीं, और यहां पे अभी सुश्री अंजना ओम कश्यप जी जो बात कह रही थी कि पर्चा लीक और पर्ची लीक, जो लोग पर्ची लीक कराते थे वही पर्चा लीक भी करवाते थे। अब यूपी में पर्चा लीक नहीं होता है क्योंकि पर्चा लीक करने वाले को मालूम है कि तो जेल तो जाएगा ही जाएगा, बाप दादों की पूरी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवा करके सड़कों पे कटोरा लेकर के घूमने के लिए मजबूर हो जाएगा। हमने 2020 में ही उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कानून बनाया है कि जो भी पर्चा लीक के इस अनैतिक कार्यों में लिप्त होगा उसको आजन्म कारावास के लिए जेल के अंदर सड़ाएंगे, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे, और ये कार्रवाई यूपी के अंदर हम प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। तब हम यूपी के अंदर बिना भेदभाव के आरक्षण की नीति को पालन करते हुए 9.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में हम लोग सफल हुए हैं। आपने देखा होगा कि इन लोगों ने 17 के पहले यूपी के अंदर जो पाषाण युग लेके आए थे, उसी पाषाण युग की कल्पना को लेकर के आज भी ये क्या बात करते हैं। आपने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के कुछ वचनों को सुना होगा, जो उनके संस्कार के अनुरूप ही होता है। उनके मुंह से चवन्नी और कुत्ता जैसे शब्द निकले थे। दुनिया एजुकेशन को बेहतर बनाने में रुचि ले रही है, स्किलिंग को नया आयाम दे रही है, याई डिपटेक मेटेक इन पे चर्चा कर रही है, और ये लोग अपनी ही पार्टी के लोगों को कुत्ता और बिल्ली बना रहे हैं। लोकतंत्र का इससे बड़ा उपहास मित्रों दूसरा नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में जनता को हम जनार्दन कहते हैं, और समाजवादी पार्टी अपने ही नेताओं को कुत्ता बिल्ली बना करके किस रूप में लोकतंत्र का उपहास उड़ा रही है। कैसे एक केंद्रीय मंत्री के बारे में समाजवादी पार्टी के मुखिया किस प्रकार की हल्की बातें करते हैं, या इनकी उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो उन लोगों ने 17 के पहले यूपी के अंदर किया था। और मेरा मानना है यही वो मानसिकता है जो इतिहास के शहीदों को और बलिदानियों को कभी सम्मान नहीं दे पाई। इन लोगों ने, मुझे याद है, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैं एक बार दिल्ली के लिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बैठा था। उस समय समाजवादी पार्टी के शिक्षा मंत्री अचानक आ गए, तो हम लोग एक ही जो उनका रिटायरिंग रूम था उसी में बैठे थे। तो उसी दिन वे गोरखपुर के एक कार्यक्रम में थे। गोरखपुर आप जानते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बलिदानी भूमि भी है। गोरखपुर में ही गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई थी। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पे एक पार्क का उद्घाटन था, तो पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम में उनको बुलाया गया था, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री। और जब उनको भाषण देने के लिए वे गए, तो उन्होंने मंच से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम नहीं लिया। उन्होंने इस बात को कहा कि साहब मुझे बिस्मिल्ला साहब के जन्मदिन पर आकर के खुशी हुई। मंच से एक सज्जन ने कहा कि भाई ये बिस्मिल्ला साहब नहीं है, ये सेनाई वादक के उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब नहीं है भाई, ये तो क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं। कहा कि तुम भाजपाई हो इसलिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ले रहे। ये उस समय के शिक्षा मंत्री बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के। तो जिस व्यक्ति को क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सेनाई वादन के उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब के नाम में ही जिनमें अंतर महसूस न होता हो, वे उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा को कहां ले गए होंगे, आप सहज कल्पना कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने नकल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हर नौकरी में सेंध लगाना भी उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको उन्होंने अपने कालखंड के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया था, और इसी को कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। मित्रों, निर्णय लेने की सामर्थ्य, निवेश के लिए आज 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हम लोगों ने दी है। कोई पिक एंड चूज नहीं होगा, ये मेरा है, ये पराया है, ये नहीं होगा, सब हमारे हैं। उसके अनुरूप हमने पॉलिसी बना दी, पॉलिसी का जो पालन कर रहा है, आप निवेश करिए, गवर्नमेंट की इंसेंटिव को लीजिए, कहीं कोई भेदभाव नहीं, सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ डीवीटी के माध्यम से, ये सारी सुविधा यूपी के अंदर मौजूद है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी है, स्किल है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी है। मित्रों, उन्हीं सब बातों को लेकर के आज जब मैं यहां पे आया हूं, आपने देखा होगा लाखों लोग इस ब्रज भूमि में वर्तमान में आए हैं, क्योंकि कल मथुरा के लल्ला का जन्मदिन है। चारों ओर उत्साह का वातावरण है, हर घर, हर कस्बा, हर वार्ड, हर क्षेत्र, चारों ओर एक धूमधाम है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, 2017 के पहले जन्माष्टमी के आयोजन को थाने, यानी एक ही आयोजन होता था जो थानों में होता था और जेलों में होता था, उसको समाजवादी पार्टी ने बैन कर दिया था, कावड़ यात्रा को रोक दी थी, जन्माष्टमी के आयोजन को इन्होंने रोक दिया था। मैं 17 में जब आया तो मैंने पहले देखा कि कावड़ यात्रा, मैंने पूछा भाई कावड़ यात्रा क्या तैयारी है, जब हमारे अधिकारी अन्य राज्यों के साथ, क्योंकि 5 राज्य उसके साथ जुड़ते हैं, यूपी के साथ उत्तराखंड भी है, दिल्ली भी है, हरियाणा है, राजस्थान है, हिमाचल है, पंजाब है, सभी जगह के श्रद्धालु आते हैं, तो इनके साथ एक अंतर्राज्यीय बैठक भी होती है, इंटर स्टेट जो बैठक होती थी उसमें हमारे अधिकारी गए थे। मैंने कहा क्या तैयारी है, उन्होंने कहा जो गत वर्ष का जियो है हमने उसको ही जारी करने के लिए कहा। मैंने कहा क्या है गत वर्ष का जियो, उन्होंने कहा साहब डीजे नहीं बजेगा, घंटा, संग, घड़ियाले सब नहीं बजेंगे। भाई हमने कहा तो फिर क्या है, ये शिव की यात्रा है या कोई सौ यात्रा निकल रही है। मैंने कहा बैठक मेरे सामने कराओ। मैंने अगले सप्ताह बैठक करवाई, सभी राज्यों के प्रतिनिधि आए थे। मैंने कहा भी देखो यूपी के अंदर डीजे भी बजेगा, संग, घड़ियाल सब बजेंगे, हां कावड़ की एक ऊंचाई हम सुनिश्चित कराएंगे, हम सुविधा देंगे, सुरक्षा भी हम देंगे, और भक्तिमय माहौल में कावड़ यात्रा निकलनी चाहिए, जो सुविधा चाहिए हमसे लो। अधिकारी मुझे डरा रहे थे, कह रहे थे साहब उपद्रव हो जाएगा। हमने कहा भी कोई उपद्रव नहीं होता है, मैं जानता हूं कौन उपद्रवी है और उपद्रवियों को हम ठीक कर देंगे। आपने देखा होगा कोई उपद्रव नहीं। इस वर्ष 5 करोड़ श्रद्धालु थे कावड़ यात्रा में, गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच, एक ही उसमें 5 करोड़ श्रद्धालु कावड़ यात्री थे। रोहेलखंड का दूसरा है, अयोध्या से बस्ती गोरखपुर वाली तीसरी यात्रा चलती है, प्रयागराज से काशी की चौथी चलती है, बुंदेलखंड की अलग है, मैं इनकी काउंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उन क्षेत्रों में केवल एक ही कावड़ यात्रा में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे, कोई उपद्रव नहीं था, कहीं अव्यवस्था नहीं थी, हर व्यक्ति खुशी के साथ आगे बढ़ रहा था। आप लोगों के उत्सव के इस आनंद को भी छीनना चाहते थे, हमने इसको फिर से पुनर्बहाल कराया, कहा नहीं इसको रोका नहीं जा सकता है, कानून के दायरे में रहकर कि कोई उत्सव मनाता है तो उसको सरकार का दायित्व तो बनता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे, उसको समर्थन करे, उसको प्रोत्साहित करे। और ऐसे ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी आयोजन भी था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को मैंने कहा भी हर थाने में करो, हर जेल में हम आयोजन करो, हर महत्वपूर्ण स्थल पर होना चाहिए, आप रोकेंगे क्यों और कैसे रोक सकते हैं। हमारे कान्हा तो यहां पे कंस की ही जेल में पैदा हुए थे, तो क्या उसको हम भूल जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे, कभी वो जेल थी, आज हमारे लिए श्री कृष्ण जन्मस्थली है, और श्री कृष्ण जन्मस्थली देश और दुनिया का लाखों श्रद्धालु आया हुआ है। पिछली सरकारें उसको समझ नहीं पाई थी, उन भावनाओं को सम्मान नहीं दे पाई थी, और जनता जनार्दन की भावनाओं को, जो भी सरकार कुचलने का कार्य करती है, लोकतंत्र उसको कुचल कर रख देता है, उसके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा कर देता है, और यही इनकी दुर्गति का कारण है। इन्होंने यूपी की इस विरासत को अपमानित किया, इन्होंने अयोध्या को भी अपमानित किया, इन्होंने हमारी इस पावन ब्रजभूमि को अपमानित किया, इन्होंने काशी को भी अपमानित करने का काम किया था, और यही कारण है कि यूपी इन्हें अब स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करने वाला है। यूपी का व्यक्ति अब कर्फ्यू मुक्त और दंगा मुक्त वातावरण का अभ्यस्त हो चुका है। अब यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है,

कि आज उन चेहरों पर खुशी आई है जहां तक कभी खुशी नहीं पहुंचती थी। उन लोगों तक जाइए जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, सड़क की हो, मेट्रो की हो, रेलवे की हो या रोपवे की हो। कोई सोचता था बरसाना में राधा रानी मंदिर में रोपवे मिलेगी, आज संभव हो पाया है, हमारी सरकार ने किया है, आज संभव हो पाया है। मंदिर की आस्था कुछ लोगों को लगती थी कि अनावश्यक है, उन्होंने इसको सांप्रदायिकता के साथ जोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन वे भूल गए यह आस्था अर्थव्यवस्था का आधार भी है। अर्थव्यवस्था को कैसे नया आयाम देती है, जब श्रद्धालु आता है, जब श्रद्धालु आता है अकेले नहीं आता है, तब वह फूल पत्ती वाले से भी फूल खरीदता है, माला खरीदता है, पैसा उस माली के घर में भी जाता है, तब वह स्थानीय उत्पाद का भी क्रय करता है, कहीं ठाकुर जी की पोशाक खरीदता है, कहीं पर किसी हलवाई के द्वारा बनाए गए मथुरा के पेड़े को खरीदता है, वह पैसा उस कारीगर के घर में भी जाता है। जब वह एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो स्थानीय रिक्शा में जाता है या टैक्सी में जाता है, उस टैक्सी के ड्राइवर के घर में भी, उस रिक्शा चालक के घर में भी पैसा जाता है। जब वह किसी रेस्टोरेंट और होटल में रुकता है तो किसी रेस्टोरेंट के संचालक को और वहां काम करने वाले लोगों को रोजगार भी मिलता है और पैसा भी मिलता है। जब वह किसी होटल में रुकता है, यही होटल है, एक 5-स्टार होटल बना है, मैं मानता हूं, मैं आज पहली बार यहां पे आया हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि कम से कम 500 लोग यहां रोजगार प्राप्त किए होंगे इस अकेले एक होटल में, 500 लोग यहां रोजगार प्राप्त कर रहे होंगे। अगर ये होटल नहीं बनता तो ये 500 लोग कहां रोजगार प्राप्त करते, इनकी नियति बन जाती पलायन करने की, ये दूसरे राज्यों में जाकर के अपमानित भी होते, परिवार की चिंता अलग, लेकिन आज उसको चिंता नहीं है, आज अपने ही गांव में, अपने ही शहर में किसी होटल में उसे कार्य, उस युवा को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये तब हुआ है क्योंकि यहां पे ठाकुर बांके बिहारी का यह मंदिर का दर्शन करने के लिए देश और दुनिया का श्रद्धालु आया है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए आया है, उसको कहीं सुविधापूर्ण रहने की व्यवस्था चाहिए, वो सरकार कर रही है। एक कार्य जगह एक है, स्थल एक है, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ एक पूरा सिस्टम कैसे कार्य करता हुआ दिखाई देता, ऑटो मोड पर कैसे कार्य करता हुआ दिखाई देता है। कानून का राज, सुशासन जहां से प्रारंभ होता है, और मुझे लगता है कि कानून का राज कैसे होता है, उस बेटी से पूछिए किराना की, यानी जिसने अपने बचपन में अपने पिता को खोया है, कौन पूछ सकता उन लोगों से। और इसीलिए सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करती है कि नहीं, इस मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर बेटी की सुरक्षा के साथ इसने खिलवाड़ किया है तो इसको जेल या जहन्नुम में से एक जगह पहुंचाना जरूर है, क्योंकि ये इसका हकदार है, क्योंकि इसने जुर्म किया है, वह जुर्म किया है जो किसी अपराध से बड़ा अपराध है, और इसीलिए उस अपराध को सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लिया है। आज मुझे प्रसन्नता है किराना में प्लान नहीं है, और कुछ लोग दुस्साहस किए थे, अभी आपने देखा होगा, लोगों ने प्रयास किया था कि अन्य जगह जैसा अपराध कर लेते हैं वैसे यूपी में कर सकते हैं, गलत फहमी के शिकार थे। ये यूपी है, नए दौर का यूपी है, ये बोलता नहीं है, प्रणाम देता है, प्रणाम देता है। कोई ताकत अजमा के देखेगा तो उसकी ताकत को चकनाचूर करके

रख देगा यूपी, यूपी पीछे हटने वाला नहीं है, हर उसको जवाब देने की सामर्थ्य रखता है। और कुछ लोगों ने जो जरूरत की थी अभी हाल ही में उसी केराना की भूमि पर, तो उसका जवाब मिल चुका है, इससे ही बड़ा जवाब मिलेगा। और मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, यूपी आज सुरक्षित है, सुशासन के आनंद का अनुभव कर रहा है, अपने विरासत भी और विकास की यात्रा के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस आनंद का अनुभव मुझे लगता है कि कोई कर सकता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा युवा भी कर सकता है। आधी आबादी बहनें और माताएं भी कर सकती हैं, अन्नदाता किसान भी कर रहा है, हमारा हस्तशिल्पी कारीगर और वह गरीब भी कर रहा है, जिसको राशन भी मिल रहा है, जिसको आयुष्मान की सुविधा भी मिल रही है, जिसको बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उपलब्ध हो रही हैं, स्कूली शिक्षा भी मिल रही है और स्किलिंग के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की सुविधा भी प्राप्त हो रही है। ये सभी कुछ आज के दिन पे यूपी के अंदर मौजूद है। जब सरकार की नीयत ठीक होती है, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल होता है। हमने 9.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश का जो एक वातावरण दिया, 65 लाख नौजवानों को इसके माध्यम से उन्हीं के जनपद या उसी के प्रदेश में हमने उसे नौकरी दी है। और एमएसएमई के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हमने यूपी के अंदर 3.25 करोड़ से अधिक लोगों को प्रदेश के अंदर एमएसएमई उद्योग के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। जिले 25 हैं, लेकिन आज के दिन पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी के अंदर आप हम लोग 79 यहां के प्रोडक्ट हैं जिसको हम जीआई टैगिंग कर चुके हैं, यानी वह ग्लोबल मार्केट के लिए अब वह अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। और यह उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के अंदर इन सभी चीजों में सफलता प्राप्त की है। आज मैं मान सकता हूं कि यूपी के लिए बेहतरीन अवसर है हमारे यहां नौजवानों के लिए। हर जनपद में हम एक सरदार वल्लभ भाई पटेल स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन की स्थापना के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाए हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D प्रिंटिंग है, रोबोटिक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इन सभी पे हमारे हर जनपद में इसकी ट्रेनिंग की बेहतरीन सुविधा, हमारी वोकेशनल एजुकेशन में भी और टेक्निकल एजुकेशन में भी हम लोगों ने उपलब्ध करवाई है। अटल टिकरिंग लैब के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर भी हमने अपने छात्रों के लिए ये सुविधा माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में उसको एक आज की इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का उसे कार्य किया है। एक झूठ 10 बार बोलने से या 100 बार बोलने से वो सच कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। और इस सच को आधी आबादी भी जानती है कि वास्तव में सच क्या है। सच ये है कि उसको सुरक्षा चाहिए, सच ये है नौजवान को अच्छी एजुकेशन चाहिए, स्किलिंग चाहिए, अच्छी एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था चाहिए, उस प्रकार का एक वातावरण उसको चाहिए। उसको आज यूपी के अंदर, इस नए यूपी के अंदर उसे प्राप्त हो रहा है। ये नया भारत का नया यूपी है, ये अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, तो आधुनिक विकास को भी अपने साथ पूरी मजबूती के साथ लेकर के चलता है।
अब यूपी बीमारू नहीं है, अब वो यूपी नहीं है जिसकी पहचान गड्ढा युक्त सड़कों से होती थी। वह यूपी नहीं है जिस यूपी की पहचान होती थी कि जहां से सायंकाल होते ही अंधकार प्रारंभ हो जाए, वह यूपी का सीमा है। अब यूपी की पहचान देश के अंदर एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क किसी राज्य के पास है तो वह यूपी है। 60% एक्सप्रेसवे हमारे पास हैं यूपी के पास। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, मेट्रो की सुविधा सबसे ज्यादा सिटी के अंदर चलने वाली है वो यूपी के अंदर। 7 सिटी में वर्तमान में हम मेट्रो की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा संचालित कर रहे हैं। भारत की पहली रैपिड रेल यूपी में, भारत की पहली इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में यूपी से प्रारंभ हुआ। एयर कनेक्टिविटी में देश के अंदर सबसे बड़ा एयरपोर्ट का नेटवर्क किसी के पास है वो यूपी के पास। 17 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ आज यूपी इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर मात्र आवागमन के लिए माध्यम नहीं है, ये केवल हमारी गति को तेज करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी गति के साथ साथ आर्थिक प्रगति को भी एक नए आयाम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य इस अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोगों ने यूपी के अंदर किया है। और मैं आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप को, इस पंचायत आज तक के लिए कि उन्होंने किया है, और मैं आपको फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, मैंने अंजना जी को उस समय मैंने कहा था 21 में जब उन्होंने इंटरव्यू 22 में लिया था, तो मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा चिंता मत करिए, हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी। '27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी। यूपी का युवा बनाएगा, यूपी की माताएं बनाएंगी, यूपी का अन्नदाता किसान बनाएगा, यूपी का गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, यहां का वंचित, यहां का दलित, यहां का पिछड़ा, वह व्यक्ति जिस तक सुविधा पहुंची है वह उस इस डबल इंजन की सरकार को फिर से यूपी के अंदर बनाने में अपना आशीर्वाद देगा। इसमें कोई संदेह किसी को भी लेस मात्र नहीं होना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं पंचायत आज तक में इस पूरे ग्रुप को हृदय से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी को। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपने बात को यहीं पे संपन्न करता हूं। राधे राधे।

0: यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए ऐलान जंग शुरू हो गया है। यूपी में योगी सरकार के लिए तीसरे टर्म की चुनौती है, 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर से भी निपटना है। ऐसे में सीएम योगी यूपी में अलग अलग जिलों में धुआंधार दौरे कर रहे हैं, शिलान्यास, लोकार्पण और नई नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। और अब सीएम योगी जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण की धरती मथुरा पहुंचे हुए हैं। यहां योगी आदित्यनाथ ने 1051 करोड़ रुपए की 229 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
1: योगी की घोषणाएं धुआंधार, 2027 में होगी नैया पार। योगी की शिलान्यास पॉलिटिक्स, विपक्ष के पास क्या तोड़ है? जिले दर जिले योगी का प्लान पर योजना, वोटर फिक्स करना।
2: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
1: अब मथुरा को 1051 करोड़ की सौगात, चुनाव में बन जाएगी बात।
3: वृंदावन बिहारी लाल के।
1: योगी की विकास और हिंदुत्व की राजनीति, विपक्ष की क्या है नीति?
4: 1051 करोड़ से अधिक की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जा रहा है।
1: यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीएम योगी के लिए चैलेंज तीसरे टर्म का है तो 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर से निपटने का भी। ऐसे में सीएम योगी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को एक बार फिर पटखनी देने के लिए नए प्लान के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। एक गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से सीएम योगी यूपी में जिले दर जिले घूम रहे हैं, करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की ये शिलान्यास पॉलिटिक्स विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मिश्रण पर आधारित एक सोची समझी चुनावी और प्रशासनिक रणनीति है, जिसके तहत वो यूपी के सभी जिलों में जाकर करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। ये रणनीति जनता के बीच सीधा संवाद बनाने और अखिलेश के पीडीए वाले नैरेटिव को काटने के लिए तैयार की गई है। और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ बांके बिहारी कृष्ण की धरती पर पहुंचे हैं। जन्माष्टमी के मौके पर उन्होंने मथुरा के लिए 1051 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया तो विकास को आधार बनाकर पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार पर प्रहार भी किया।
5: लंबे समय तक हम लोग विकास को केवल सड़क, बिजली, पानी, भवन और उद्योग के चश्मे से हमने देखने की कोशिश की। विकास के नाम पर विरासत का अपमान होता रहा। इतिहास के नायकों को भारतीय स्मृति से मिटाने की कोशिश हुई। पहले विदेशी आक्रांताओं ने हमारे इतिहास को और ऐतिहासिक चिन्हों को नष्ट किया, फिर अंग्रेजों ने और पूर्ववर्ती सरकारों ने तो उस हद को पार कर दिया। मुझे याद है आज जो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी आज अपनी जिस विरासत उत्सव के लिए जाना जा रहा है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या ये आज से पहले यानी 2017 के पहले क्या ये संभव था?
1: मथुरा में सीएम योगी ने ये भी कहा कि कैसे विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े तो उन्होंने वृंदावन से लेकर काशी और अयोध्या का जिक्र किया।
5: एक तरफ इतिहास में मंदिरों पर प्रहार के प्रसंग मिलते हैं और दूसरी ओर उसी कालखंड में ब्रज की धरती में स्वामी हरिदास जी जैसे संत अपनी साधना से संगीत की ऐसी धारा विकसित करते हैं जिसकी गूंज सदियों से चली आ रही है। यही कहानी काशी की भी है। काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ दिया, लेकिन परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। लोग माता अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही अयोध्या में हुआ बाबर ने 1528 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को तोड़ करके एक गुलामी का ढांचा बनवा दिया। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है।
1: इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने यूपी दंगों को लेकर पिछली समाजवादी सरकार को टारगेट किया तो ये भी दावा किया कि अब यूपी कर्फ्यू और दंगा मुक्त हो चुका है।
5: 2016 जून 16 में जिस मथुरा में जवाहर बाग की घटना घटित हुई थी जिसमें 29 लोग मारे गए थे, उपद्रव वही है। बरेली में महीनों महीनों दंगे, सरकारें नतमस्तक होती थी उन दंगाइयों के सामने, नाक रगड़ती थी। दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर के सम्मानित किया जाता था। मुजफ्फरनगर का दंगा कई महीनों तक चला, कर्फ्यू कई महीनों तक चला। अलीगढ़ में दंगा, मेरठ में दंगा, लखनऊ में दंगा, और आज मैं कह सकता हूं कि हमारा यूपी पिछले 9.5 वर्ष से कर्फ्यू से भी मुक्त है, दंगा से भी मुक्त है।
1: मथुरा वृंदावन पर योगी आदित्यनाथ के इस फोकस से फिर मथुरा पर सबकी नजरें टिक गई हैं।
2: वृंदावन बिहारी लाल के,
1: क्योंकि कुछ महीनों में यूपी का चुनाव है, जहां अब की बार अटकलें लग रही हैं कि क्या अब की बार सत्ता का रास्ता मथुरा से होकर जाएगा।
6: वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है। जब जाने की बारी है, जब आपने श्री रामचंद्र जी के नाम का सहारा लिया, तो आपने नाम इसलिए लिया कि आपको वहां पे लूटना था। हम तो कहेंगे कि वहां पे जो भी महंत लोग हैं मथुरा में, अरे भाजपाइयों से सावधान रहो, नहीं तो जो चढ़ावा है वहां का, जो चंदा है, उस पर भी निगाह इनकी पड़ चुकी, इनको घुसने मत देना वहां पर।
7: जो वामी है, जो कांगी है, जो सपाई है, जो कांग्रेसी है, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है, हिंदुओं को बांटना है, मुसलमानों को एकत्रित करना है और उसके सहारे चुनावी वैतरणी पार करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये जान चुकी है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे।
0: सीएम रहते योगी आदित्यनाथ 43वीं बार मथुरा आए हुए हैं, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राम के बाद अब कृष्ण के सहारे सियासी नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ने से अखिलेश यादव उत्साहित हैं। तो ऐसे में योगी ने मथुरा प्लान और परियोजना पॉलिटिक्स कितनी उनकी काम आने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
1: मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का विवाद अखिलेश यादव के लिए संवेदनशील मसला हो सकता है, क्योंकि खुद को यदुवंशी कृष्ण का वंशज बताने वाले यादव समाज और मुस्लिम समाज को एक साथ साधना उनके लिए चुनौती भरा हो सकता है। अखिलेश इस मुश्किल को समझते हैं, इसलिए वो जितना संभव हो बीजेपी को राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर घेरते हैं और मंदिर की बात पर अपने इटावा के केदारेश्वर महादेव मंदिर की बात करना नहीं भूलते।
8: भगवान शिव भोले बाबा का मंदिर का निर्माण हम भी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि किस मंदिर में आकर के मुझे पूजा करने का मौका मिलेगा, खैर लेकिन जब इन्होंने बताया तो ये हमारा सौभाग्य भी है। सौभाग्य हो, कितना पौराणिक है और कितनी मान्यता है, लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, तो हमें भी वो मौका मिला। और सच्चाई ये है कि जो नहीं जा पाए या नहीं पहुंच पाए उनके लिए भी हमने मांगा है, और हमारा भी मंदिर जो बन रहा है वो शिव शक्ति अक्ष रेखा पर बन रहा है, जिस पर केदारनाथ है, उज्जैन है, रामेश्वर है, और उसी में इटावा का केदारेश्वर धाम बना रहे हैं।
1: सीएम योगी का मिशन इलेक्शन क्लियर है, अपने काम गिनाना, कानून व्यवस्था, विकास और सरकार की उपलब्धियों को उठाना और समाजवादी पार्टी पर तगड़ा प्रहार करना। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की पिच पर धुआंधार बैटिंग करने के लिए मशहूर हैं, और इसीलिए जब वो शिलान्यास और लोकार्पण की राजनीति कर रहे हैं तो उसमें हिंदुत्व को भी जोड़ते हैं। आपको बता दें, जुलाई 2026 के अंत तक सामने आई रिपोर्ट के अनुसार तीन महीनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 43 जिलों का दौरा करके सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और आधारभूत ढांचे से जुड़ी कुल 36,877 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद अगस्त से लेकर अब तक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जारी है। 7 अगस्त अम्बेडकर नगर 706 करोड़ की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 9 अगस्त सिद्धार्थ नगर 311 करोड़ की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 11 अगस्त संत कबीर नगर 684 करोड़ की 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 24 अगस्त रायबरेली 889 करोड़ की 346 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 29 अगस्त देवरिया 305 करोड़ की 80 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 3 सितंबर मथुरा 1051 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। यानी अब तक सीएम योगी यूपी में जिले दर जिले हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान और शिलान्यास कर चुके हैं और इसके पीछे योगी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र का बुनियादी ढांचा मजबूत कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी कहती है कि योगी सरकार की शिलान्यास और उद्घाटन की राजनीति केवल दिखावा और चुनावी प्रोपेगेंडा है। आज तक ब्यूरो।
0: सीएम योगी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जिले दर जिले परियोजनाओं वाली पॉलिटिक्स से वोट फिक्स करने में जुटे हैं, तो योगी के इस काट के लिए प्लान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी तैयार कर लिया है, क्योंकि जंतर मंतर के आंदोलन के बाद जेंजी बीजेपी के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का बड़ा फोकस है जेंजी और जैन अल्फा पर। इन सबके बीच मायावती का प्लान भी सबको चौंका रहा है, तो आइए देखते हैं 2027 के ऐलान जंग में कितनी तैयारियां हैं।
9: 27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी।
1: जब 2027 की जंग के लिए सियासत धुआंधार हो रही है, तब आज तक के मंच से सीएम योगी ऐलान करते हैं 2027 में फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी और धमाकेदार बनेगी।
9: चिंता मत करिए, हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी।
1: जी हाँ, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जेन जी और जेन अल्फा पर अपनी रणनीति फोकस कर रहे हैं और एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या वो कारगर साबित होगी? आइए आपको पहले अखिलेश यादव का प्लान बताते हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की नजर हर वर्ग को साधने वाले घोषणा पत्र पर है। समाजवादी पार्टी इस बार पुराने वादों के साथ कई नए वादों को जोड़कर ऐसा मैनिफेस्टो तैयार करने में जुटी है जिसमें युवा, महिलाएं, आउटसोर्स कर्मचारी और अलग अलग जातीय समूहों को साधने की कोशिश होगी। समाजवादी पार्टी का खास फोकस जेन जी और जेन अल्फा पर भी है। पेपर लीक रोकने के पुख्ता इंतजाम, लखनऊ की आईटी सिटी को विस्तार और आईटी कंपनियों को यूपी में लाने का वादा एजेंडे में शामिल हो सकता है। अखिलेश सरकार के चर्चित वादे कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता और मुफ्त लैपटॉप फिर लौट सकते हैं। महिलाओं के लिए सालाना 40,000 रुपए की घोषणा और यश भारती सम्मान की वापसी का भी वादा हो सकता है।
10: बिना आदि आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है। पहले भी समाजवादी सरकार में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो फैसले लिए गए थे, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और देश के लिए उदाहरण बने हैं। हाल ही में जापान का एक डेलीगेशन जब आया, तो उस डेलीगेशन को वही 1090 जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, उसी को दिखा करके सरकार ये बताना चाहती है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए वो क्या फैसले और क्या काम कर रहे हैं।
9: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहां माफियाओं को, दंगाइयों को, पेशेवर अपराधियों को पाला, उन्हें प्रोत्साहित किया, उनके सामने नतमस्तक हुआ करते थे। वही लोग यूपी के बीमारूपन के कारण भी थे, यूपी के निवेश के विरोध, यूपी में निवेश के विरोधी भी थे, यूपी में पर्यटन के विरोधी भी थे, यूपी में महिला सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए थे, और उत्तर प्रदेश के युवाओं की नौकरी और युवाओं के रोजगार पर भी सबसे बड़ी डकैती डालने का काम ये वही लोग करते थे।
1: सीएम योगी युवाओं को भी साध रहे हैं और महिला वोटरों को अपने पाले में खींचने के लिए योजनाएं भी ला रहे हैं। तो नीट पेपर लीक के खिलाफ छिड़े आंदोलन और विपक्ष के इस मुद्दे की काट निकालने के लिए भी पूरी रणनीति के साथ उतरे हैं
9: कि जो भी पर्चा लीक के इस अनैतिक कार्यों में लिप्त होगा उसको आजन्म कारावास के लिए जेल के अंदर सड़ाएंगे, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे। और ये कार्रवाई यूपी के अंदर हम प्रभावी ढंग से कर रहे हैं, तब हम यूपी के अंदर बिना भेदभाव के आरक्षण की नीति को पालन करते हुए 9.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में हम लोग सफल हुए हैं। जिन्होंने अच्छा किया नहीं वे अच्छा देख भी नहीं सकते, और यह इनकी सबसे बड़ी समस्या है। एक केंद्रीय मंत्री के बारे में समाजवादी पार्टी के मुखिया किस प्रकार की हल्की बातें करते हैं, यह इनकी उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो उन लोगों ने 17 के पहले यूपी के अंदर किया था।
1: यूपी में योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए समाजवादी पार्टी फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, ये शिवपाल सिंह यादव ने कंफर्म कर दिया है। लेकिन कांग्रेस ये स्वीकार कर रही है कि यूपी में बीजेपी को हराना आसान नहीं है।
11: जनता अब की बात, हमारा जो गठबंधन है अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, ये रहेगा और मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा।
12: जो काम करने का तरीका है वो सिंपल और साफ है कि लड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि जिसका नतीजा है, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी होना है उसे तुरंत कर करके जल्दी से हमें मैदान में निकलना चाहिए। बीजेपी हमसे आगे ना निकल जाए, बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है, हवा के अंदर बीजेपी नहीं हार रही है।
1: सीएम योगी की टक्कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ से तगड़ी है, ये कंफर्म है। लेकिन मायावती ने भी चुनावी मैदान में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन बीएसपी में मायावती की बात आते ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की जुबान पर ताला लग जाता है। ये बात तो सबको पता है, लेकिन मायावती के बड़े भतीजे की पहेली का जवाब किसी के पास नहीं है। लखनऊ में पार्टी की ऑल इंडिया स्तर की एक अहम बैठक की अध्यक्षता करने जब मायावती आई तो उनके साथ आकाश आनंद नहीं थे।
13: इधर बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मायावती, वो यहाँ पर पहुंची हैं, और ये पूरे देश भर से अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं। वो अब ऐसे में चूंकि बसपा 2027 की बड़ी तैयारियों के साथ में यहाँ पर है, और इस बार जो जिम्मेदारी है वो उन सभी पर तैयारी की जिम्मेदारी है कि आखिर 2027 में कैसी ये रणनीति तय होगी। आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस बार आकाश आनंद नहीं है, लेकिन साथ में उनके अन्य लोग मौजूद हैं।
1: मायावती के पीछे सबकी नजरें आकाश को ढूंढ रही थी, लेकिन आकाश की जगह उनके छोटे भाई ईशान दिखाई दिए, जो मायावती के कुर्सी पर बैठते ही अपने पिता के साथ चुपचाप बाकी नेताओं के साथ खड़े हो गए। वही आकाश आनंद जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल कहकर खुद को युवाओं यानी जेन जी के बीच एक युवा विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे थे।
14: सो कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहां भाजपा कर रही। रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं।
1: 2024 में मायावती का वोट जिस तरह से बिखरा, कम हुआ, बाकी पार्टियों में बटा, उसने यूपी का सियासी गणित पलट कर रख दिया। अब सवाल ये है कि क्या अगले साल विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट पूरी तरह बिखर जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा ने दावा किया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जिसके लिए वो मान सरकार पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं।
1: एसआईआर पर जारी घमासान के बीच अब पंजाब में राघव चड्ढा को लेकर सियासत तेज हो गई। राघव चड्ढा ने पंजाब सरकार पर वोटर लिस्ट से नाम बाहर करने का आरोप लगाया है। मैं पंजाब में राज्यसभा का मौजूदा सांसद हूं और मेरा वोटर आईडी पंजाब के मोहाली में रजिस्टर्ड है, फिर भी वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में मेरा नाम शिफ्टेड दिखाया गया है। ये सिर्फ कोई क्लर्क की गलती नहीं लगती, ये साफ तौर पर राजनीतिक बदले की भावना का मामला है। हो सकता है कि पंजाब में आपकी सरकार हो, लेकिन पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उनकी निजी संपत्ति नहीं है। उधर मान सरकार के मंत्रियों का कहना है कि ये चुनाव आयोग से जुड़ा मामला है, जिसका पंजाब सरकार से कोई लेना देना नहीं है।
15: ये बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट अथॉरिटी भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, ये बता दीजिए, क्योंकि उसको तो इलेक्शन कमीशन को तो वही अपॉइंट करता है, उनको स्टेट तो करती नहीं है।
0: पर उनका कहना है कि जो बीएलओ है या फिर जो पंजाब
15: वो बहुत बड़े झूठ बोलने के माहिर है, आप उनकी वीडियो निकाल के देख लीजिए। पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दोष लगाए थे, अब उनको दोहरा रहे हैं।
16: पंजाब में 20 लाख लोगों के वोट कट गए और ज्यादातर प्रवासियों की कट गई, जहाँ इतने प्रवासियों की कट गई वहाँ एक प्रवासी की और कट गई।
1: हालांकि राघव चड्ढा कहते हैं कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है, जहां वो एसआईआर की गाइडलाइन के तहत वापस अपना नाम जुड़वाएंगे, लेकिन इस मुद्दे ने कांग्रेस को एक बार फिर एसआईआर पर हमले का मौका दे दिया है।
17: इलेक्शन कमीशन आम आदमी पार्टी चला रहा है क्या? जो राजदूत का नाम कटा है, जो तीन तीन देशों में सेवा देकर आए, उनका नाम किसने कटवा दिया? इसीलिए तो हम एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।
1: राघव चड्ढा पंजाब से पहले आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पंजाब की वोटर लिस्ट में नाम ना होने से उनकी राज्यसभा सदस्यता जा सकती है? हालांकि अब नियमों में बदलाव किए जा चुके हैं, जहां राज्यसभा सांसद देश के किसी भी हिस्से में मतदाता के तौर पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: के मंच से सीएम योगी ने फूका चुनावी बिगुल, बोले यूपी में फिर से धमाकेदार तरीके से बनाएंगे सरकार। अखिलेश परवार का एसपी के मुखिया की भाषा हल्की। बीएसपी में किसी बड़ी जिम्मेदारी देने से मायावती के इनकार के बाद भतीजे आकाश आनंद ने बदला एक्स प्रोफाइल, खुद को लिखा पार्टी कार्यकर्ता, बाबा साहेब की सोच का युवा समर्थक। ममता से अलग होकर एनसीपीआई में शामिल 20 सांसदों को 22 सितंबर तक जवाब देने का मिला वक्त, स्पीकर ओम बिरला ने बढ़ाई मियाद, टीएमसी ममता गुट ने की है सदस्यता रद्द करने की मांग। यूक्रेन के दौरे पर कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, रूस से जारी युद्ध पर जताई चिंता, कहा शांति के पक्ष में है भारत। और बिहार में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, पटना समेत 8 जिलों में हाई अलर्ट, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सतर्क। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए ऐलान जंग शुरू हो गया है। यूपी में योगी सरकार के लिए तीसरे टर्म की चुनौती है, 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर से भी निपटना है। ऐसे में सीएम योगी यूपी में अलग अलग जिलों में धुआंधार दौरे कर रहे हैं, शिलान्यास, लोकार्पण और नई नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। और अब सीएम योगी जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण की धरती मथुरा पहुंचे हुए हैं। यहां योगी आदित्यनाथ ने 1051 करोड़ रुपए की 229 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
1: योगी की घोषणाएं धुआंधार, 2027 में होगी नैया पार। योगी के शिलान्यास पॉलिटिक्स, विपक्ष के पास क्या तोड़ है? जिले दर जिले योगी का प्लान पर योजना, वोटर फिक्स करना।
2: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
1: अब मथुरा को 1051 करोड़ की सौगात, चुनाव में बन जाएगी बात।
3: वृंदावन बिहारी लाल के।
1: योगी के विकास और हिंदुत्व की राजनीति, विपक्ष की क्या है नीति?
4: 1051 करोड़ से अधिक की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जा रहा है।
1: यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीएम योगी के लिए चैलेंज तीसरे टर्म का है तो 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर से निपटने का भी। ऐसे में सीएम योगी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को एक बार फिर पटखनी देने के लिए नए प्लान के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। एक गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से सीएम योगी यूपी में जिले दर जिले घूम रहे हैं, करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की ये शिलान्यास पॉलिटिक्स, विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मिश्रण पर आधारित एक सोची समझी चुनावी और प्रशासनिक रणनीति है, जिसके तहत वो यूपी के सभी जिलों में जाकर करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। ये रणनीति जनता के बीच सीधा संवाद बनाने और अखिलेश के पीडीए वाले नैरेटिव को काटने के लिए तैयार की गई है। और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ बांके बिहारी कृष्ण की धरती पर पहुंचे हैं। जन्माष्टमी के मौके पर उन्होंने मथुरा के लिए 1051 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया तो विकास को आधार बनाकर पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार पर प्रहार भी किया।
5: लंबे समय तक हम लोग विकास को केवल सड़क, बिजली, पानी, भवन और उद्योग के चश्मे से हमने देखने की कोशिश की। विकास के नाम पर विरासत का अपमान होता रहा, इतिहास के नायकों को भारतीय स्मृति से मिटाने की कोशिश हुई। पहले विदेशी आक्रांताओं ने हमारे इतिहास को और ऐतिहासिक चिन्हों को नष्ट किया, फिर अंग्रेजों ने और पूर्ववर्ती सरकारों ने तो उस हद को पार कर दिया। मुझे याद है आज जो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी आज अपनी जिस विरासत उत्सव के लिए जाना जा रहा है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या ये आज से पहले यानी 2017 के पहले क्या ये संभव था?
1: मथुरा में सीएम योगी ने ये भी कहा कि कैसे विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, तो उन्होंने वृंदावन से लेकर काशी और अयोध्या का जिक्र किया।
5: एक तरफ इतिहास में मंदिरों पर प्रहार के प्रसंग मिलते हैं और दूसरी ओर उसी कालखंड में ब्रज की धरती में स्वामी हरिदास जी जैसे संत अपनी साधना से संगीत की ऐसी धारा विकसित करते हैं जिसकी गूंज सदियों से चली आ रही है। यही कहानी काशी की भी है। काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ दिया, लेकिन परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। लोग माता अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही अयोध्या में हुआ। बाबर ने 1528 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को तोड़ करके एक गुलामी का ढांचा बनवा दिया। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है।
1: इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने यूपी दंगों को लेकर पिछली समाजवादी सरकार को टारगेट किया, तो ये भी दावा किया कि अब यूपी कर्फ्यू और दंगा मुक्त हो चुका है।
5: 2016 में जिस मथुरा में जवाहर बाग की घटना घटित हुई थी जिसमें 29 लोग मारे गए थे, उपद्रव वही है। बरेली में महीनों महीनों दंगे, सरकारें नतमस्तक होती थी उन दंगाइयों के सामने, नाक रगड़ती थी। दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर के सम्मानित किया जाता था। मुजफ्फरनगर का दंगा कई महीनों तक चला, कर्फ्यू कई महीनों तक चला। अलीगढ़ में दंगा, मेरठ में दंगा, लखनऊ में दंगा, और आज मैं कह सकता हूं कि हमारा यूपी पिछले 9.5 वर्ष से कर्फ्यू से भी मुक्त है, दंगा से भी मुक्त है।
1: मथुरा वृंदावन पर योगी आदित्यनाथ के इस फोकस से फिर मथुरा पर सबकी नजरें टिक गई हैं।
2: वृंदावन बिहारी लाल के,
1: क्योंकि कुछ महीनों में यूपी का चुनाव है, जहां अब की बार अटकलें लग रही हैं कि क्या अब की बार सत्ता का रास्ता मथुरा से होकर जाएगा।
6: वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो उसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है। जब जाने की बारी है, जब आपने श्री रामचंद्र जी के नाम का सहारा लिया, तो आपने नाम इसलिए लिया कि आपको वहां पे लूटना था। हम तो कहेंगे कि वहां पे जो भी महंत लोग हैं मथुरा में, अरे भाजपाइयों से सावधान रहो, नहीं तो जो चढ़ावा है वहां का, जो चंदा है, उस पर भी निगाह इनकी पड़ चुकी, इनको घुसने मत देना वहां पर।
7: जो वामी है, जो कांगी है, जो सपाई है, जो कांग्रेसी है, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है, हिंदुओं को बांटना है, मुसलमानों को एकत्रित करना है और उसके सहारे चुनावी वैतरणी पार करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये जान चुकी है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे।
0: सीएम रहते योगी आदित्यनाथ 43वीं बार मथुरा आए हुए हैं, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राम के बाद अब कृष्ण के सहारे सियासी नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ने से अखिलेश यादव उत्साहित हैं। तो ऐसे में योगी ने मथुरा प्लान और परियोजना पॉलिटिक्स कितनी उनकी काम आने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
1: मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का विवाद अखिलेश यादव के लिए संवेदनशील मसला हो सकता है, क्योंकि खुद को यदुवंशी कृष्ण का वंशज बताने वाले यादव समाज और मुस्लिम समाज को एक साथ साधना उनके लिए चुनौती भरा हो सकता है। अखिलेश इस मुश्किल को समझते हैं, इसलिए वो जितना संभव हो बीजेपी को राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर घेरते हैं और मंदिर की बात पर अपने इटावा के केदारेश्वर महादेव मंदिर की बात करना नहीं भूलते।
8: भगवान शिव भोले बाबा का मंदिर का निर्माण हम भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि किस मंदिर में आकर के मुझे पूजा करने का मौका मिलेगा। खैर, लेकिन जब इन्होंने बताया तो ये हमारा सौभाग्य भी है। सौभाग्य है और कितना पौराणिक है और कितनी मान्यता है, लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, तो हमें भी वो मौका मिला। और सच्चाई ये है कि जो नहीं जा पाए, अब नहीं पहुंच पाए, उनके लिए भी हमने मांगा है। और हमारा भी मंदिर जो बन रहा है वो शिव शक्ति अक्ष रेखा पर बन रहा है, जिस पर केदारनाथ है, उज्जैन है, रामेश्वर है, और उसी में इटावा का केदारेश्वर धाम बना रहे हैं।
1: सीएम योगी का मिशन इलेक्शन क्लियर है, अपने काम गिनाना, कानून व्यवस्था, विकास और सरकार की उपलब्धियों को उठाना और समाजवादी पार्टी पर तगड़ा प्रहार करना। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की पिच पर धुआंधार बैटिंग करने के लिए मशहूर हैं, और इसीलिए जब वो शिलान्यास और लोकार्पण की राजनीति कर रहे हैं तो उसमें हिंदुत्व को भी जोड़ते हैं। आपको बता दें, जुलाई 2026 के अंत तक सामने आई रिपोर्ट के अनुसार 3 महीनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 43 जिलों का दौरा करके सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और आधारभूत ढांचे से जुड़ी कुल 36,877 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद अगस्त से लेकर अब तक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जारी है। 7 अगस्त अम्बेडकर नगर, 706 करोड़ की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 9 अगस्त सिद्धार्थ नगर, 311 करोड़ की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 11 अगस्त संत कबीर नगर, 684 करोड़ की 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 24 अगस्त रायबरेली, 889 करोड़ की 346 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 29 अगस्त देवरिया, 305 करोड़ की 80 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 3 सितंबर मथुरा, 1051 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। यानी अब तक सीएम योगी यूपी में जिले दर जिले हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान और शिलान्यास कर चुके हैं, और इसके पीछे योगी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र का बुनियादी ढांचा मजबूत कर रही है। जबकि समाजवादी पार्टी कहती है कि योगी सरकार की शिलान्यास और उद्घाटन की राजनीति केवल दिखावा और चुनावी प्रोपेगेंडा है। आज तक ब्यूरो।
0: सीएम योगी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जिले दर जिले परियोजनाओं वाली पॉलिटिक्स से वोट फिक्स करने में जुटे हैं, तो योगी के इस काट के लिए प्लान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी तैयार कर लिया है, क्योंकि जंतर मंतर के आंदोलन के बाद जेंजी बीजेपी के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का बड़ा फोकस है जेंजी और जैन अल्फा पर। इन सबके बीच मायावती का प्लान भी सबको चौंका रहा है, तो आइए देखते हैं 2027 के ऐलान जंग में कितनी कितनी तैयारियां हैं।
9: 27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी।
1: जब 2027 की जंग के लिए सियासत धुआंधार हो रही है, तब आज तक के मंच से सीएम योगी ऐलान करते हैं 2027 में फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी और धमाकेदार बनेगी।
9: चिंता मत करिए, हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी।
1: जी हाँ, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जेन जी और जेन अल्फा पर अपनी रणनीति फोकस कर रहे हैं और एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या वो कारगर साबित होगी? आइए आपको पहले अखिलेश यादव का प्लान बताते हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की नजर हर वर्ग को साधने वाले घोषणा पत्र पर है। समाजवादी पार्टी इस बार पुराने वादों के साथ कई नए वादों को जोड़कर ऐसा मैनिफेस्टो तैयार करने में जुटी है, जिसमें युवा, महिलाएं, आउटसोर्स कर्मचारी और अलग अलग जातीय समूहों को साधने की कोशिश होगी। समाजवादी पार्टी का खास फोकस जेन जी और जेन अल्फा पर भी है। पेपर लीक रोकने के पुख्ता इंतजाम, लखनऊ की आईटी सिटी को विस्तार और आईटी कंपनियों को यूपी में लाने का वादा एजेंडे में शामिल हो सकता है। अखिलेश सरकार के चर्चित वादे कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता और मुफ्त लैपटॉप फिर लौट सकते हैं। महिलाओं के लिए सालाना 40,000 रुपए की घोषणा और यश भारती सम्मान की वापसी का भी वादा हो सकता है।
10: बिना आदि आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है। पहले भी समाजवादी सरकार में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो फैसले लिए गए थे, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और देश के लिए उदाहरण बने हैं। हाल ही में जापान का एक डेलीगेशन जब आया तो उस डेलीगेशन को वही 1090 जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, उसी को दिखा करके सरकार ये बताना चाहती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो क्या फैसले और क्या काम कर रहे हैं।
11: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहां माफियाओं को, दंगाइयों को, पेशेवर अपराधियों को पाला, उन्हें प्रोत्साहित किया, उनके सामने नतमस्तक हुआ करते थे। वही लोग यूपी के बीमारूपन के कारण भी थे, यूपी के निवेश के विरोध, यूपी में निवेश के विरोधी भी थे, यूपी में पर्यटन के विरोधी भी थे, यूपी में महिला सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए थे और उत्तर प्रदेश के युवाओं की नौकरी और युवाओं के रोजगार पर भी सबसे बड़ी डकैती डालने का काम ये वही लोग करते थे।
1: सीएम योगी युवाओं को भी साध रहे हैं और महिला वोटरों को अपने पाले में खींचने के लिए योजनाएं भी ला रहे हैं। तो नीट पेपर लीक के खिलाफ छिड़े आंदोलन और विपक्ष के इस मुद्दे की काट निकालने के लिए भी पूरी रणनीति के साथ उतरे हैं।
11: कि जो भी पर्चा लीक के इस अनैतिक कार्यों में लिप्त होगा उसको आजन्म कारावास के लिए जेल के अंदर सड़ाएंगे, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे। और ये कार्रवाई यूपी के अंदर हम प्रभावी ढंग से कर रहे हैं, तब हम यूपी के अंदर बिना भेदभाव के आरक्षण की नीति को पालन करते हुए 9.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में हम लोग सफल हुए हैं। जिन्होंने अच्छा किया नहीं वे अच्छा देख भी नहीं सकते और यह इनकी सबसे बड़ी समस्या है। एक केंद्रीय मंत्री के बारे में समाजवादी पार्टी के मुखिया किस प्रकार की हल्की बातें करते हैं, यह इनकी उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो उन लोगों ने 17 के पहले यूपी के अंदर किया था।
1: यूपी में योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए समाजवादी पार्टी फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, ये शिवपाल सिंह यादव ने कंफर्म कर दिया है। लेकिन कांग्रेस ये स्वीकार कर रही है कि यूपी में बीजेपी को हराना आसान नहीं है।
12: जनता अब की बार हमारा जो गठबंधन है अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, ये रहेगा और मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा।
13: जो करने काम करने का तरीका है वो सिंपल और साफ है कि लड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि जिसका नतीजा आए, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी होना है उसे तुरंत कर करके जल्दी से हमें मैदान में निकलना चाहिए। बीजेपी हमसे आगे ना निकल जाए, बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है, हवा के अंदर बीजेपी नहीं आ रही है।
1: सीएम योगी की टक्कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ से तगड़ी है, ये कंफर्म है। लेकिन मायावती ने भी चुनावी मैदान में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन बीएसपी में मायावती की बात आते ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की जुबान पर ताला लग जाता है। ये बात तो सबको पता है लेकिन मायावती के बड़े भतीजे की पहेली का जवाब किसी के पास नहीं है। लखनऊ में पार्टी की ऑल इंडिया स्तर की एक अहम बैठक की अध्यक्षता करने जब मायावती आई तो उनके साथ आकाश आनंद नहीं थे।
14: इधर बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मायावती, वो यहाँ पर पहुंची हैं और ये पूरे देश भर से अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं। वो अब ऐसे में क्योंकि बसपा 2027 की बड़ी तैयारियों के साथ में यहाँ पर है और इस बार जो जिम्मेदारी है वो उन सभी पर तैयारी की जिम्मेदारी है कि आखिर 2027 में कैसी ये रणनीति तय होगी। आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस बार आकाश आनंद नहीं है लेकिन साथ में उनके अन्य लोग मौजूद हैं।
1: मायावती के पीछे सबकी नजरें आकाश को ढूंढ रही थी, लेकिन आकाश की जगह उनके छोटे भाई ईशान दिखाई दिए, जो मायावती के कुर्सी पर बैठते ही अपने पिता के साथ चुपचाप बाकी नेताओं के साथ खड़े हो गए। वही आकाश आनंद जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल कहकर खुद को युवाओं यानी जेन जी के बीच एक युवा विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे थे।
15: सो कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहां भाजपा कर रही। रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताएं।
1: 2024 में मायावती का वोट जिस तरह से बिखरा कम हुआ, बाकी पार्टियों में बटा, उसने यूपी का सियासी गणित पलट कर रख दिया। अब सवाल ये है कि क्या अगले साल विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट पूरी तरह बिखर जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी को विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ हथियार बनाया, क्या अब बीजेपी ने उसका तोड़ निकाल लिया है। जी हाँ, ट्रस्ट के नए सीईओ रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र के साथ सवाल आता है कि क्या ट्रस्ट का ट्रस्ट वापस आ पाएगा, और तभी विपक्षी नेताओं के सवाल सियासत को नया मोड़ दे देते हैं। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने तो ये शक जाहिर कर दिया है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर का सच दबाए रखने के लिए सरकार ने जितेंद्र मिश्रा को सीईओ तो नहीं बना दिया। बीजेपी कह रही है कि सेना पर सवाल उठाना और सनातन का अपमान करना कांग्रेस की फितरत रही है।
16: अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर से चढ़ावे की चोरी से राम भक्तों की आस्था को जितनी चोट पहुंची थी उससे ज्यादा हलचल सियासत में मची हुई है। नतीजा यह है कि कल ही भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अफसर जितेंद्र मिश्रा को मंदिर ट्रस्ट का नया सीईओ बनाया गया और आज ही उनकी तैनाती पर सवालों के बौछार किए जाने लगे।
17: लोगों के दिमागों में शक और शुबा पैदा करती है। ऑपरेशन संदूर के अंदर कहीं कोई सच तो नहीं छुपा हुआ जिस वजह से उन्हें यहां पे सीईओ बनाया गया।
18: कांग्रेस अब मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस हो गई है। राशिद अल्वी जी, आपने उस राज का पर्दाफाश कर दिया, जो हल्का फुल्का भरम का नकाब था वो भी आपने उतार दिया।
19: भाई ये काम साधु संतों का है। अब एयर मार्शल साहब ने हवाई जहाज उड़ाया, हवाई जहाज उड़ा लेते, अब इनके आरएसएस के जंगल में फंस गए वो।
20: एक आदमी जो फौज की कमान संभालता था, इस धार्मिक इदारे की या धार्मिक मंदिर की कमान को कैसे संभाल पाएगा।
21: रिटायर्ड एयरफोर्स

0: उसके लिए पोस्टिंग्स होती है।
1: एयर मार्शल लगा हुआ है, अब ये कैसे मार्शल निकलते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
2: जिस जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के इस्लामिक दहशतगर्दों को नेस्तनाबूद किया, S-400 को निशाना बनाने की पाकिस्तानी चाल को नाकाम किया, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, 42 साल की राष्ट्र सेवा में जिस एयर मार्शल को शौर्य चक्र से विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल तक से सम्मानित किया गया, वो राम मंदिर ट्रस्ट में आकर खुद को धन्य मानते हैं।
3: चयन समिति का बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि उन्होंने इतने सब कैंडिडेट्स में से मेरा चयन किया है। इसे मैं श्री राम का आशीर्वाद भी मानूंगा कि 43 वर्ष राष्ट्र सेवा के बाद भारतीय वायुसेना में मुझे श्री राम ने एक और अवसर प्रदान किया है जहां पर मैं श्री राम मंदिर और श्री राम भक्तों की सेवा कर पाऊँ।
2: जितेंद्र मिश्रा राष्ट्र सेवा के बाद राम भक्तों की सेवा को अपनी खुशकिस्मती मानते हैं, लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी की सियासत का हिस्सा बता रहा है। अब सवाल जात पात से लेकर बिजनेस धंधे तक उठ रहे हैं।
4: एक मिश्रा जी गए, नृपेंद्र मिश्रा जी गए तो दूसरे आए, क्या कोई दलित ओबीसी नहीं हो सकता था?
5: इसका मतलब अब सरकार को, मोदी जी को भाजपा आरएसएस वीएचपी के लोगों पर विश्वास नहीं रहा।
6: ये धर्म का स्थान है, भगवान राम का जन्म स्थान है, यहाँ पर परम पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा नामित होना चाहिए, धर्माचार्य को वहाँ बैठाना चाहिए था।
2: राम मंदिर ट्रस्ट में 2 सितंबर को बैठक में बड़े बदलाव हुए हैं। गोविंद देवगिरी को ट्रस्ट का नया महासचिव बनाया गया है, महेश भागचंदका को ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष बनाया गया है, अधिवक्ता मदन मोहन पांडे और शिक्षाविद निर्मला यादव ट्रस्ट में नए सदस्य बनाए गए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अफसर को लेकर उठाए जा रहे हैं।
7: तीर्थ क्षेत्र न्यास का सीईओ बनाए जाने पर भी सेना पर आपत्ति कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी रवायत है, वो देश के सेनाध्यक्ष को गुंडा कहते हैं, वो बार बार सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं और अब एयर मार्शल के सीईओ बनाए जाने पर भी राष्ट्रीय दल भी सवाल खड़ा कर रहे हैं।
2: हालांकि विपक्ष के सवाल सिर्फ सेना के अफसर को सीईओ बनाने को नहीं है, विपक्ष आरोप लगाता है कि सेना के अफसर को सीईओ बनाकर सरकार चढ़ावा चोरी के असली गुनहगारों को बचाना चाहती है। विपक्ष की मांग है कि जब तक ट्रस्ट के पुराने जिम्मेदारों पर मुकदमा नहीं होता, सीईओ की तैनाती से पुराने पाप नहीं धुलेंगे, क्योंकि चंदे से चढ़ावे तक में गड़बड़ी के आरोप हैं जिनकी पूरी जांच बाकी है।
8: आई एम राइटिंग ए लेटर एंड थरोली इंक्वायरी, एवरी मनी शुड कम टू दी बैक टू दी राम।
9: He may be raided by ED if he finds some real facts behind it.
10: मंदिर का कॉर्पोरेटीकरण हो गया है, बिजनेस हो गया ना। जब बिजनेस होता है तो सीईओ आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, डायरेक्टर्स आते हैं, सब लोग आते हैं।
2: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट पर इतने हमले नहीं हुए जितने सवाल इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर के सीईओ बनाने के बाद हुए हैं। इसमें सवाल ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जाति तक और सेना को धार्मिक मामलों में घसीटने से लेकर चंदा चोरों को बचाने तक के उठाए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
11: उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा ने दावा किया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जिसके लिए वो मान सरकार पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं।
12: SIR पर जारी घमासान के बीच अब पंजाब में राघव चड्ढा को लेकर सियासत तेज हो गई। राघव चड्ढा ने पंजाब सरकार पर वोटर लिस्ट से नाम बाहर करने का आरोप लगाया है। मैं पंजाब में राज्यसभा का मौजूदा सांसद हूं और मेरा वोटर आईडी पंजाब के मोहाली में रजिस्टर्ड है, फिर भी वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में मेरा नाम शिफ्टेड दिखाया गया है। ये सिर्फ कोई क्लर्क की गलती नहीं लगती, ये साफ तौर पर राजनीतिक बदले की भावना का मामला है। हो सकता है कि पंजाब में आपकी सरकार हो लेकिन पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उनकी निजी संपत्ति नहीं है। उधर मान सरकार के मंत्रियों का कहना है कि ये चुनाव आयोग से जुड़ा मामला है जिसका पंजाब सरकार से कोई लेना देना नहीं है।
13: ये बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट अथॉरिटी भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, ये बता दीजिए, क्योंकि उसको तो इलेक्शन कमीशन को तो वही अपॉइंट करता है, उनको स्टेट तो करती नहीं है।
11: पर उनका कहना है कि जो BLO है या फिर जो पंजाब का
13: वो बहुत बड़े झूठ बोलने के बाहर है, आप उनकी वीडियो निकाल के देख लीजिए। पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दोष लगाए थे, अब उनको दोहरा रहे हैं।
14: पंजाब में 20 लाख लोगों के वोट कट गए और ज्यादातर प्रवासियों के।

0: कट गए, जहाँ इतने प्रवासियों की कट गए वहाँ एक प्रवासी की और कट गई।
1: हालांकि राघव चड्ढा कहते हैं कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है जहां वो SIR की गाइडलाइन के तहत वापस अपना नाम जुड़वाएंगे, लेकिन इस मुद्दे ने कांग्रेस को एक बार फिर SIR पर हमले का मौका दे दिया है।
2: इलेक्शन कमीशन, आम आदमी पार्टी चला रहा है क्या? जो राजदूत का नाम कटा है, जो तीन तीन देशों में सेवा देकर आए, उनका नाम किसने कटवा दिया? इसीलिए तो हम SIR की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।
1: राघव चड्ढा पंजाब से पहले आम आदमी पार्टी और अब BJP से राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पंजाब की वोटर लिस्ट में नाम ना होने से उनकी राज्यसभा सदस्यता जा सकती है। हालांकि अब नियमों में बदलाव किए जा चुके हैं जहां राज्यसभा सांसद देश के किसी भी हिस्से में मतदाता के तौर पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
3: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: पंचायत आज तक मथुरा के मंच से सीएम योगी ने फूका चुनावी बिगुल, बोले यूपी में फिर से धमाकेदार तरीके से बनाएंगे सरकार। अखिलेश परिवार का एसपी के मुखिया की भाषा हल्की। बीएसपी में किसी बड़ी जिम्मेदारी देने से मायावती के इनकार के बाद भतीजे आकाश आनंद ने बदला एक्स प्रोफाइल, खुद को लिखा पार्टी कार्यकर्ता, बाबा साहेब की सोच का युवा समर्थक। ममता से अलग होकर एनसीपीआई में शामिल 20 सांसदों को 22 सितंबर तक जवाब देने का मिला वक्त, स्पीकर ओम बिरला ने बढ़ाई मियाद, टीएमसी ममता गुट ने की है सदस्यता रद्द करने की मांग। यूक्रेन के दौरे पर कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, रूस से जारी युद्ध पर जताई चिंता, कहा शांति के पक्ष में है भारत। और बिहार में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, पटना समेत आज जिलों में हाई अलर्ट, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सतर्क। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए ऐलाने जंग शुरू हो गया है। यूपी में योगी सरकार के लिए तीसरे टर्म की चुनौती है, 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर से भी निपटना है। ऐसे में सीएम योगी यूपी में अलग अलग जिलों में धुआंधार दौरे कर रहे हैं, शिलान्यास, लोकार्पण और नई नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। और अब सीएम योगी जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण की धरती मथुरा पहुंचे हुए हैं। यहां योगी आदित्यनाथ ने 1051 करोड़ रुपए की 229 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
1: योगी की घोषणाएं धुआंधार, 2027 में होगी नैया पार। योगी की शिलान्यास पॉलिटिक्स, विपक्ष के पास क्या तोड़ है? जिले दर जिले योगी का प्लान पर योजना, वोटर फिक्स करना।
2: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
1: अब मथुरा को 1051 करोड़ की सौगात, चुनाव में बन जाएगी बात।
3: वृंदावन बिहारी लाल के।
1: योगी की विकास और हिंदुत्व की राजनीति, विपक्ष की क्या है नीति?
4: 1051 करोड़ से अधिक की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जा रहा है।
1: यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीएम योगी के लिए चैलेंज तीसरे टर्म का है तो 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर से निपटने का भी। ऐसे में सीएम योगी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को एक बार फिर पटखनी देने के लिए नए प्लान के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। एक गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से सीएम योगी यूपी में जिले दर जिले घूम रहे हैं, करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की ये शिलान्यास पॉलिटिक्स, विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मिश्रण पर आधारित एक सोची समझी चुनावी और प्रशासनिक रणनीति है, जिसके तहत वो यूपी के सभी जिलों में जाकर करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। ये रणनीति जनता के बीच सीधा संवाद बनाने और अखिलेश के पीडीए वाले नैरेटिव को काटने के लिए तैयार की गई है। और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ बांके बिहारी कृष्ण की धरती पर पहुंचे हैं। जन्माष्टमी के मौके पर उन्होंने मथुरा के लिए 1051 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया तो विकास को आधार बनाकर पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार पर प्रहार भी किया।
5: लंबे समय तक हम लोग विकास को केवल सड़क, बिजली, पानी, भवन और उद्योग के चश्मे से हमने देखने की कोशिश की। विकास के नाम पर विरासत का अपमान होता रहा। इतिहास के नायकों को भारतीय स्मृति से मिटाने की कोशिश हुई। पहले विदेशी आक्रांताओं ने हमारे इतिहास को और ऐतिहासिक चिन्हों को नष्ट किया, फिर अंग्रेजों ने और पूर्ववर्ती सरकारों ने तो उस हद को पार कर दिया। मुझे याद है आज जो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी आज अपनी जिस विरासत उत्सव के लिए जाना जा रहा है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या ये आज से पहले यानी 2017 के पहले क्या ये संभव था?
1: मथुरा में सीएम योगी ने ये भी कहा कि कैसे विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, तो उन्होंने वृंदावन से लेकर काशी और अयोध्या का जिक्र किया।
5: एक तरफ इतिहास में मंदिरों पर प्रहार के प्रसंग मिलते हैं और दूसरी ओर उसी कालखंड में ब्रज की धरती में स्वामी हरिदास जी जैसे संत अपनी साधना से संगीत की ऐसी धारा विकसित करते हैं जिसकी गूंज सदियों से चली आ रही है। यही कहानी काशी की भी है। काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ दिया, लेकिन परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। लोग माता अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही अयोध्या में हुआ। बाबर ने 1528 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को तोड़ करके एक गुलामी का ढांचा बनवा दिया। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है।
1: इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने यूपी दंगों को लेकर पिछली समाजवादी सरकार को टारगेट किया, तो ये भी दावा किया कि अब यूपी कर्फ्यू और दंगा मुक्त हो चुका है।
5: 2016 में जिस मथुरा में जवाहर बाग की घटना घटित हुई थी जिसमें 29 लोग मारे गए थे, उपद्रव वही है। बरेली में महीनों महीनों दंगे, सरकारें नतमस्तक होती थी उन दंगाइयों के सामने। नाग रगड़ती थी, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर के सम्मानित किया जाता था। मुजफ्फरनगर का दंगा कई महीनों तक चला, कर्फ्यू कई महीनों तक चला। अलीगढ़ में दंगा, मेरठ में दंगा, लखनऊ में दंगा, और आज मैं कह सकता हूं कि हमारा यूपी पिछले 9.5 वर्ष से कर्फ्यू से भी मुक्त है, दंगा से भी मुक्त है।
1: मथुरा वृंदावन पर योगी आदित्यनाथ के इस फोकस से फिर मथुरा पर सबकी नजरें टिक गई हैं।
2: वृंदावन बिहारी लाल के,
1: क्योंकि कुछ महीनों में यूपी का चुनाव है, जहां अब की बार अटकलें लग रही हैं कि क्या अब की बार सत्ता का रास्ता मथुरा से होकर जाएगा।
6: वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो उसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है। जब जाने की बारी है, जब आपने श्री रामचंद्र जी के नाम का सहारा लिया, तो आपने नाम इसलिए लिया कि आपको वहां पे लूटना था। हम तो कहेंगे कि वहां पे जो भी महंत लोग हैं मथुरा में, अरे भाजपाइयों से सावधान रहो, नहीं तो जो चढ़ावा है वहां का, जो चंदा है, उस पर भी निगाह इनकी पड़ चुकी, इनको घुसने मत देना वहां पर।
7: जो वामी है, जो कांगी है, जो सपाई है, जो कांग्रेसी है, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है, हिंदुओं को बांटना है, मुसलमानों को एकत्रित करना है और उसके सहारे चुनावी वैतरणी पार करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये जान चुकी है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे।
0: सीएम रहते योगी आदित्यनाथ 43वीं बार मथुरा आए हुए हैं, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राम के बाद अब कृष्ण के सहारे सियासी नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ने से अखिलेश यादव उत्साहित हैं। तो ऐसे में योगी ने मथुरा प्लान और परियोजना पॉलिटिक्स कितनी उनकी काम आने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
1: मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का विवाद अखिलेश यादव के लिए संवेदनशील मसला हो सकता है, क्योंकि खुद को यदुवंशी कृष्ण का वंशज बताने वाले यादव समाज और मुस्लिम समाज को एक साथ साधना उनके लिए चुनौती भरा हो सकता है। अखिलेश इस मुश्किल को समझते हैं, इसलिए वो जितना संभव हो बीजेपी को राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर घेरते हैं और मंदिर की बात पर अपने इटावा के केदारेश्वर महादेव मंदिर की बात करना नहीं भूलते।
8: वन शिव भोले बाबा का मंदिर का निर्माण हम भी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि किस मंदिर में आकर के मुझे पूजा करने का मौका मिलेगा, खैर, लेकिन जब इन्होंने बताया तो ये हमारा सौभाग्य भी है। सौभाग्य हो कितना पौराणिक है और कितनी मान्यता है, लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, तो हमें भी वो मौका मिला। और सच्चाई ये है कि जो नहीं जा पाए, अब नहीं पहुंच पाए, उनके लिए भी हमने मांगा है। और हमारा भी मंदिर जो बन रहा है वो शिव शक्ति अक्ष रेखा पर बन रहा है, जिस पर केदारनाथ है, उज्जैन है, रामेश्वर है, और उसी में इटावा का केदारेश्वर धाम बना रहे हैं।
1: सीएम योगी का मिशन इलेक्शन क्लियर है, अपने काम गिनाना, कानून व्यवस्था, विकास और सरकार की उपलब्धियों को उठाना और समाजवादी पार्टी पर तगड़ा प्रहार करना। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की पिच पर धुआंधार बैटिंग करने के लिए मशहूर हैं, और इसीलिए जब वो शिलान्यास और लोकार्पण की राजनीति कर रहे हैं तो उसमें हिंदुत्व को भी जोड़ते हैं। आपको बता दें, जुलाई 2026 के अंत तक सामने आई रिपोर्ट के अनुसार 3 महीनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 43 जिलों का दौरा करके सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और आधारभूत ढांचे से जुड़ी कुल 36,877 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद अगस्त से लेकर अब तक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जारी है। 7 अगस्त अम्बेडकर नगर, 706 करोड़ की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 9 अगस्त सिद्धार्थ नगर, 311 करोड़ की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 11 अगस्त संत कबीर नगर, 684 करोड़ की 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 24 अगस्त रायबरेली, 889 करोड़ की 346 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 29 अगस्त देवरिया, 305 करोड़ की 80 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 3 सितंबर मथुरा, 1051 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। यानी अब तक सीएम योगी यूपी में जिले दर जिले हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान और शिलान्यास कर चुके हैं, और इसके पीछे योगी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र का बुनियादी ढांचा मजबूत कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी कहती है कि योगी सरकार की शिलान्यास और उद्घाटन की राजनीति केवल दिखावा और चुनावी प्रोपेगेंडा है। आज तक ब्यूरो।
0: सीएम योगी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जिले दर जिले परियोजनाओं वाली पॉलिटिक्स से वोट फिक्स करने में जुटे हैं, तो योगी के इस काट के लिए प्लान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी तैयार कर लिया है, क्योंकि जंतर मंतर के आंदोलन के बाद जेंजी बीजेपी के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का बड़ा फोकस है जेंजी और जैन अल्फा पर। इन सबके बीच मायावती का प्लान भी सबको चौंका रहा है, तो आइए देखते हैं 2027 के ऐलान जंग में कितनी तैयारियां हैं।
9: 27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी।
1: जब 2027 की जंग के लिए सियासत धुआंधार हो रही है, तब आज तक के मंच से सीएम योगी ऐलान करते हैं 2027 में फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी और धमाकेदार बनेगी।
9: चिंता मत करिए, हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी।
1: जी हाँ, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जेन जी और जेन अल्फा पर अपनी रणनीति फोकस कर रहे हैं और एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या वो कारगर साबित होगी? आइए आपको पहले अखिलेश यादव का प्लान बताते हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की नजर हर वर्ग को साधने वाले घोषणा पत्र पर है। समाजवादी पार्टी इस बार पुराने वादों के साथ कई नए वादों को जोड़कर ऐसा मैनिफेस्टो तैयार करने में जुटी है, जिसमें युवा, महिलाएं, आउटसोर्स कर्मचारी और अलग अलग जातीय समूहों को साधने की कोशिश होगी। समाजवादी पार्टी का खास फोकस जेन जी और जेन अल्फा पर भी है। पेपर लीक रोकने के पुख्ता इंतजाम, लखनऊ की आईटी सिटी को विस्तार और आईटी कंपनियों को यूपी में लाने का वादा एजेंडे में शामिल हो सकता है। अखिलेश सरकार के चर्चित वादे कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता और मुफ्त लैपटॉप फिर लौट सकते हैं। महिलाओं के लिए सालाना 40,000 रुपए की घोषणा और यश भारती सम्मान की वापसी का भी वादा हो सकता है।
10: बिना आदि आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है। पहले भी समाजवादी सरकार में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो फैसले लिए गए थे, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और देश के लिए उदाहरण बने हैं। हाल ही में जापान का एक डेलीगेशन जब आया तो उस डेलीगेशन को वही 1090 जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, उसी को दिखा करके सरकार ये बताना चाहती है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए वो क्या फैसले और क्या काम कर रहे हैं।
11: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहां माफियाओं को, दंगाइयों को, पेशेवर अपराधियों को पाला, उन्हें प्रोत्साहित किया, उनके सामने नतमस्तक हुआ करते थे। वही लोग यूपी के बीमारूपन के कारण भी थे, यूपी के निवेश के विरोध, यूपी में निवेश के विरोधी भी थे, यूपी में पर्यटन के विरोधी भी थे, यूपी में महिला सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए थे, और उत्तर प्रदेश के युवाओं की नौकरी और युवाओं के रोजगार पर भी सबसे बड़ी डकैती डालने का काम ये वही लोग करते थे।
1: सीएम योगी युवाओं को भी साध रहे हैं और महिला वोटरों को अपने पाले में खींचने के लिए योजनाएं भी ला रहे हैं। तो नीट पेपर लीक के खिलाफ छिड़े आंदोलन और विपक्ष के इस मुद्दे की काट निकालने के लिए भी पूरी रणनीति के साथ उतरे हैं
11: कि जो भी पर्चा लीक के इस अनैतिक कार्यों में लिप्त होगा उसको आजन्म कारावास के लिए जेल के अंदर सड़ाएंगे, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे। और ये कार्रवाई यूपी के अंदर हम प्रभावी ढंग से कर रहे हैं, तब हम यूपी के अंदर बिना भेदभाव के आरक्षण की नीति को पालन करते हुए 9.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में हम लोग सफल हुए हैं। जिन्होंने अच्छा किया नहीं वे अच्छा देख भी नहीं सकते, और यह इनकी सबसे बड़ी समस्या है। एक केंद्रीय मंत्री के बारे में समाजवादी पार्टी के मुखिया किस प्रकार की हल्की बातें करते हैं, यह इनकी उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो उन लोगों ने 17 के पहले यूपी के अंदर किया था।
1: यूपी में योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए समाजवादी पार्टी फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, ये शिवपाल सिंह यादव ने कंफर्म कर दिया है। लेकिन कांग्रेस ये स्वीकार कर रही है कि यूपी में बीजेपी को हराना आसान नहीं है।
12: जनता अब की बात, हमारा जो गठबंधन है अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, ये रहेगा और मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा।
13: जो करने काम करने का तरीका है वो सिंपल और साफ है कि लड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि जिसका नतीजा आए, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी होना है उसे तुरंत कर करके जल्दी से हमें मैदान में निकलना चाहिए। बीजेपी हमसे आगे ना निकल जाए, बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है, हवा के अंदर बीजेपी नहीं हार रही है।
1: सीएम योगी की टक्कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ से तगड़ी है, ये कंफर्म है। लेकिन मायावती ने भी चुनावी मैदान में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन बीएसपी में मायावती की बात आते ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की जुबान पर ताला लग जाता है। ये बात तो सबको पता है, लेकिन मायावती के बड़े भतीजे की पहेली का जवाब किसी के पास नहीं है। लखनऊ में पार्टी की ऑल इंडिया स्तर की एक अहम बैठक की अध्यक्षता करने जब मायावती आई तो उनके साथ आकाश आनंद नहीं थे।
14: इधर बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मायावती, वो यहाँ पर पहुंची हैं, और ये पूरे देश भर से अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं। वो अब ऐसे में चूंकि बसपा 2027 की बड़ी तैयारियों के साथ में यहाँ पर है, और इस बार जो जिम्मेदारी है वो उन सभी पर तैयारी की जिम्मेदारी है कि आखिर 2027 में कैसी ये रणनीति तय होगी। आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस बार आकाश आनंद नहीं है, लेकिन साथ में उनके अन्य लोग मौजूद हैं।
1: मायावती के पीछे सबकी नजरें आकाश को ढूंढ रही थी, लेकिन आकाश की जगह उनके छोटे भाई ईशान दिखाई दिए, जो मायावती के कुर्सी पर बैठते ही अपने पिता के साथ चुपचाप बाकी नेताओं के साथ खड़े हो गए। वही आकाश आनंद, जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल कहकर खुद को युवाओं यानी जेन जी के बीच एक युवा विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे थे।
15: सो कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहां भाजपा कर रही। रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताएं।
1: 2024 में मायावती का वोट जिस तरह से बिखरा कम हुआ, बाकी पार्टियों में बटा, उसने यूपी का सियासी गणित पलट कर रख दिया। अब सवाल ये है कि क्या अगले साल विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट पूरी तरह बिखर जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी को विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ हथियार बनाया, क्या अब बीजेपी ने उसका तोड़ निकाल लिया है। जी हाँ, ट्रस्ट के नए सीईओ रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र के साथ सवाल आता है कि क्या ट्रस्ट का ट्रस्ट वापस आ पाएगा, और तभी विपक्षी नेताओं के सवाल सियासत को नया मोड़ दे देते हैं। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने तो ये शक जाहिर कर दिया है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर का सच दबाए रखने के लिए सरकार ने जितेंद्र मिश्रा को सीईओ तो नहीं बना दिया। बीजेपी कह रही है कि सेना पर सवाल उठाना और सनातन का अपमान करना कांग्रेस की फितरत रही है।
16: अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर से चढ़ावे की चोरी से राम भक्तों की आस्था को जितनी चोट पहुंची थी उससे ज्यादा हलचल सियासत में मची हुई है। नतीजा यह है कि कल ही भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अफसर जितेंद्र मिश्रा को मंदिर ट्रस्ट का नया सीईओ बनाया गया और आज ही उनकी तैनाती पर सवालों के बौछार किए जाने लगे।
17: लोगों के दिमागों में शक और शुबा पैदा करती है। ऑपरेशन संदूर के अंदर कहीं कोई सच तो नहीं छुपा हुआ, जिस वजह से उन्हें यहां पे सीईओ बनाया गया।
18: कांग्रेस अब मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस हो गई है। राशिद अल्वी जी, आपने उस राज का पर्दाफाश कर दिया, जो हल्का फुल्का भरम का नकाब था वो भी आपने उतार दिया।
19: भाई ये काम साधु संतों का है। अब एयर मार्शल साहब ने हवाई जहाज उड़ाया, हवाई जहाज उड़ा लेते, अब इनके आरएसएस के जंगल में फंस गए वो।
20: एक आदमी जो फौज की कमान संभालता था, इस धार्मिक इदारे की या धार्मिक मंदिर की कमान को कैसे संभाल पाएगा।
21: रिटायर्ड एयरफोर्स मैन बीइंग अपॉइंटेड इटसेल्फ इज अ क्वेश्चनेबल थिंग।
22: मेरिट पर पोस्टिंग नहीं होती है, बल्कि जो इस बीजेपी का कोई भी काम अंजाम देता है उसके लिए पोस्टिंग्स होती है।
23: एयर मार्शल लगा हुआ है, अब ये कैसे मार्शल निकलते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
16: जिस जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के इस्लामिक दहशत गर्दों को नेस्तनाबूद किया, S-400 को निशाना बनाने की पाकिस्तानी चाल को नाकाम किया, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, 42 साल की राष्ट्र सेवा में जिस एयर मार्शल को शौर्य चक्र से विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल तक से सम्मानित किया गया, वो राम मंदिर ट्रस्ट में आकर खुद को धन्य मानते हैं।
24: चयन समिति का बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि उन्होंने इतने सब कैंडिडेट्स में से मेरा चयन किया है। इसे मैं श्री राम का आशीर्वाद भी मानूंगा कि 43 वर्ष राष्ट्र सेवा के बाद भारतीय वायुसेना में मुझे श्री राम ने एक और अवसर प्रदान किया है जहां पर मैं श्री राम मंदिर और श्री राम भक्तों की सेवा कर पाऊँ।
16: जितेंद्र मिश्रा राष्ट्र सेवा के बाद राम भक्तों की सेवा को अपनी खुशकिस्मती मानते हैं, लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी की सियासत का हिस्सा बता रहा है। अब सवाल जात पात से लेकर बिजनेस धंधे तक उठ रहे हैं।
25: एक मिश्रा जी गए, निपेंदन मिश्रा जी गए तो दूसरे आए, क्या कोई दलित ओबीसी नहीं हो सकता था?
26: इसका मतलब अब सरकार को, मोदी जी को
2: भाजपा, आरएसएस, वीएचपी के लोगों पर विश्वास नहीं रहा।
3: ये धर्म का स्थान है, भगवान राम का जन्म स्थान है, यहाँ पर परम पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा नामित होना चाहिए, धर्माचार्य को वहाँ बैठाना चाहिए था।
4: राम मंदिर ट्रस्ट में 2 सितंबर को बैठक में बड़े बदलाव हुए हैं। गोविंद देवगिरी को ट्रस्ट का नया महासचिव बनाया गया है, महेश भागचंदका को ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष बनाया गया है, अधिवक्ता मदन मोहन पांडे और शिक्षाविद निर्मला यादव ट्रस्ट में नए सदस्य बनाए गए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अफसर को लेकर उठाए जा रहे हैं।
5: तीर्थ क्षेत्र न्यास का सीईओ बनाए जाने पर भी सेना पर आपत्ति कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी रवायत है, वो देश के सेनाध्यक्ष को गुंडा कहते हैं, वो बार बार सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, और अब एयर मार्शल के सीईओ बनाए जाने पर भी राशिद अलवी सवाल खड़ा कर रहे हैं।
4: हालांकि विपक्ष के सवाल सिर्फ सेना के अफसर को सीईओ बनाने को नहीं है, विपक्ष आरोप लगाता है कि सेना के अफसर को सीईओ बनाकर सरकार चढ़ावा चोरी के असली गुनहगारों को बचाना चाहती है। विपक्ष की मांग है कि जब तक ट्रस्ट के पुराने जिम्मेदारों पर मुकदमा नहीं होता, सीईओ की तैनाती से पुराने पाप नहीं धुलेंगे, क्योंकि चंदे से चढ़ावे तक में गड़बड़ी के आरोप है जिनकी पूरी जाँच बाकी है।
25: आई एम राइटिंग ए लेटर एंड थरोली इंक्वायरी, एवरी मनी शुड कम टू दी बैक टू दी राम।
2: He may be raided by ED if he finds some real facts behind it.
6: मंदिर का कॉर्पोरेटीकरण हो गया है, बिजनेस हो गया ना। जब बिजनेस होता है तो सीईओ आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, डायरेक्टर्स आते हैं, सब लोग आते हैं।
4: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट पर इतने हमले नहीं हुए जितने सवाल इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर के सीईओ बनाने के बाद हुए हैं। इसमें सवाल ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जाति तक और सेना को धार्मिक मामलों में घसीटने से लेकर चंदा चोरों को बचाने तक के उठाए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा ने दावा किया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जिसके लिए वो मान सरकार पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं।
7: एसआईआर पर जारी घमासान के बीच अब पंजाब में राघव चड्ढा को लेकर सियासत तेज हो गई। राघव चड्ढा ने पंजाब सरकार पर वोटर लिस्ट से नाम बाहर करने का आरोप लगाया है। मैं पंजाब में राज्यसभा का मौजूदा सांसद हूं और मेरा वोटर आईडी पंजाब के मोहाली में रजिस्टर्ड है, फिर भी वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में मेरा नाम शिफ्टेड दिखाया गया है। ये सिर्फ कोई क्लर्क की गलती नहीं लगती, ये साफ तौर पर राजनीतिक बदले की भावना का मामला है। हो सकता है कि पंजाब में आपकी सरकार हो, लेकिन पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उनकी निजी संपत्ति नहीं है। उधर मान सरकार के मंत्रियों का कहना है कि ये चुनाव आयोग से जुड़ा मामला है जिसका पंजाब सरकार से कोई लेना देना नहीं है।
26: ये बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट अथॉरिटी भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, ये बता दीजिए, क्योंकि उसको तो इलेक्शन कमीशन को तो वही अपॉइंट करता है, उनको स्टेट तो करती नहीं है।
0: पर उनका कहना है कि जो बीएलओ है या फिर जो पंजाब का
26: वो बहुत बड़े झूठ बोलने के माहिर है, आप उनकी वीडियो निकाल के देख लीजिए। पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दोष लगाए थे, अब उनको दोहरा रहे हैं।
27: पंजाब में 20 लाख लोगों के वोट कट गए और ज्यादातर प्रवासियों के कट गए, जहां इतने प्रवासियों के कट गए वहां एक प्रवासी और कट गए।
7: हालांकि राघव चड्ढा कहते हैं कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है, जहां वो एसआईआर की गाइडलाइन के तहत वापस अपना नाम जुड़वाएंगे, लेकिन इस मुद्दे ने कांग्रेस को एक बार फिर एसआईआर पर हमले का मौका दे दिया है।
28: इलेक्शन कमीशन आम आदमी पार्टी चला रहा है क्या? जो राजदूत का नाम कटा है, जो 3-3 देशों में सेवा देकर आए, उनका नाम किसने कटवा दिया? इसीलिए तो हम एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।
7: राघव चड्ढा पंजाब से पहले आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पंजाब की वोटर लिस्ट में नाम ना होने से उनकी राज्यसभा सदस्यता जा सकती है? हालांकि अब नियमों में बदलाव किए जा चुके हैं, जहां राज्यसभा सांसद देश के किसी भी हिस्से में मतदाता के तौर पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: सीएम योगी ने फूका चुनावी बिगुल, बोले यूपी में फिर से धमाकेदार तरीके से बनाएंगे सरकार। अखिलेश परवार, कहा एसपी के मुखिया की भाषा हल्की। बीएसपी में किसी बड़ी जिम्मेदारी देने से मायावती के इनकार के बाद भतीजे आकाश आनंद ने बदला एक्स प्रोफाइल, खुद को लिखा पार्टी कार्यकर्ता, बाबा साहेब की सोच का युवा समर्थक। ममता से अलग होकर एनसीपीआई में शामिल 20 सांसदों को 22 सितंबर तक जवाब देने का मिला वक्त, स्पीकर ओम बिरला ने बढ़ाई मियाद, टीएमसी ममता गुट ने की है सदस्यता रद्द करने की मांग। यूक्रेन के दौरे पर कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, रूस से जारी युद्ध पर जताई चिंता, कहा शांति के पक्ष में है भारत। और बिहार में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, पटना समेत 8 जिलों में हाई अलर्ट, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सतर्क। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए ऐलाने जंग शुरू हो गया है। यूपी में योगी सरकार के लिए तीसरे टर्म की चुनौती है, 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर से भी निपटना है। ऐसे में सीएम योगी यूपी में अलग अलग जिलों में धुआंधार दौरे कर रहे हैं, शिलान्यास, लोकार्पण और नई नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। और अब सीएम योगी जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण की धरती मथुरा पहुंचे हुए हैं। यहां योगी आदित्यनाथ ने 1051 करोड़ रुपए की 229 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
1: योगी की घोषणाएं धुआंधार, 2027 में होगी नैया पार। योगी की शिलान्यास पॉलिटिक्स, विपक्ष के पास क्या तोड़ है? जिले दर जिले योगी का प्लान पर योजना, वोटर फिक्स करना।
2: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
1: अब मथुरा को 1051 करोड़ की सौगात, चुनाव में बन जाएगी बात।
3: वृंदावन बिहारी लाल के।
1: योगी की विकास और हिंदुत्व की राजनीति, विपक्ष की क्या है नीति?
4: 1051 करोड़ से अधिक की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जा रहा है।
1: यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीएम योगी के लिए चैलेंज तीसरे टर्म का है तो 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर से निपटने का भी। ऐसे में सीएम योगी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को एक बार फिर पटखनी देने के लिए नए प्लान के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। एक गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से सीएम योगी यूपी में जिले दर जिले घूम रहे हैं, करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की ये शिलान्यास पॉलिटिक्स, विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मिश्रण पर आधारित एक सोची समझी चुनावी और प्रशासनिक रणनीति है, जिसके तहत वो यूपी के सभी जिलों में जाकर करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। ये रणनीति जनता के बीच सीधा संवाद बनाने और अखिलेश के पीडीए वाले नैरेटिव को काटने के लिए तैयार की गई है। और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ बांके बिहारी कृष्ण की धरती पर पहुंचे हैं। जन्माष्टमी के मौके पर उन्होंने मथुरा के लिए 1051 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया तो विकास को आधार बनाकर पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार पर प्रहार भी किया।
5: लंबे समय तक हम लोग विकास को केवल सड़क, बिजली, पानी, भवन और उद्योग के चश्मे से हमने देखने की कोशिश की। विकास के नाम पर विरासत का अपमान होता रहा। इतिहास के नायकों को भारतीय स्मृति से मिटाने की कोशिश हुई। पहले विदेशी आक्रांताओं ने हमारे इतिहास को और ऐतिहासिक चिन्हों को नष्ट किया, फिर अंग्रेजों ने और पूर्ववर्ती सरकारों ने तो उस हद को पार कर दिया। मुझे याद है आज जो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी आज अपनी जिस विरासत उत्सव के लिए जाना जा रहा है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या ये आज से पहले यानी 2017 के पहले क्या ये संभव था?
1: मथुरा में सीएम योगी ने ये भी कहा कि कैसे विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, तो उन्होंने वृंदावन से लेकर काशी और अयोध्या का जिक्र किया।
5: एक तरफ इतिहास में मंदिरों पर प्रहार के प्रसंग मिलते हैं और दूसरी ओर उसी कालखंड में ब्रज की धरती में स्वामी हरिदास जी जैसे संत अपनी साधना से संगीत की ऐसी धारा विकसित करते हैं जिसकी गूंज सदियों से चली आ रही है। यही कहानी काशी की भी है। काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ दिया, लेकिन परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही अयोध्या में हुआ। बाबर ने 1528 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को तोड़ करके एक गुलामी का ढांचा बनवा दिया। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है।
1: इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने यूपी दंगों को लेकर पिछली समाजवादी सरकार को टारगेट किया, तो ये भी दावा किया कि अब यूपी कर्फ्यू और दंगा मुक्त हो चुका है।
5: 2016 जून 16 में जिस मथुरा में जवाहर बाग की घटना घटित हुई थी जिसमें 29 लोग मारे गए थे, उपद्रव वही है। बरेली में महीनों महीनों दंगे, सरकारें नतमस्तक होती थी उन दंगाइयों के सामने। नागरगढ़ थी दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित किया जाता था। मुजफ्फरनगर का दंगा कई महीनों तक चला, कर्फ्यू कई महीनों तक चला। अलीगढ़ में दंगा, मेरठ में दंगा, लखनऊ में दंगा, और आज मैं कह सकता हूं कि हमारा यूपी पिछले 9.5 वर्ष से कर्फ्यू से भी मुक्त है, दंगा से भी मुक्त है।
1: मथुरा वृंदावन पर योगी आदित्यनाथ के इस फोकस से फिर मथुरा पर सबकी नजरें टिक गई हैं।
3: वृंदावन बिहारी लाल के,
1: क्योंकि कुछ महीनों में यूपी का चुनाव है, जहां अब की बार अटकलें लग रही हैं कि क्या अब की बार सत्ता का रास्ता मथुरा से होकर जाएगा।
6: वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है। जब जाने की बारी है, जब आपने श्री रामचंद्र जी के नाम का सहारा लिया, तो आपने नाम इसलिए लिया कि आपको वहां पे लूटना था। हम तो कहेंगे कि वहां पे जो भी महंत लोग हैं मथुरा में, अरे भाजपाइयों से सावधान रहो, नहीं तो जो चढ़ावा है वहां का, जो चंदा है, उस पर भी निगाह इनकी पड़ चुकी, इनको घुसने मत देना वहां पर।
7: जो वामी है, जो कांगी है, जो सपाई है, जो कांग्रेसी है, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है, हिंदुओं को बांटना है, मुसलमानों को एकत्रित करना है और उसके सहारे चुनावी वैतरणी पार करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये जान चुकी है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे।
0: सीएम रहते योगी आदित्यनाथ 43वीं बार मथुरा आए हुए हैं, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राम के बाद अब कृष्ण के सहारे सियासी नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ने से अखिलेश यादव उत्साहित हैं। तो ऐसे में योगी ने मथुरा प्लान और परियोजना पॉलिटिक्स कितनी उनकी काम आने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
1: मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का विवाद अखिलेश यादव के लिए संवेदनशील मसला हो सकता है, क्योंकि खुद को यदुवंशी कृष्ण का वंशज बताने वाले यादव समाज और मुस्लिम समाज को एक साथ साधना उनके लिए चुनौती भरा हो सकता है। अखिलेश इस मुश्किल को समझते हैं, इसलिए वो जितना संभव हो बीजेपी को राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर घेरते हैं और मंदिर की बात पर अपने इटावा के केदारेश्वर महादेव मंदिर की बात करना नहीं भूलते।
8: भगवान शिव भोले बाबा का मंदिर का निर्माण हम भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि किस मंदिर में आकर के मुझे पूजा करने का मौका मिलेगा। खैर, लेकिन जब इन्होंने बताया तो ये हमारा सौभाग्य भी है। सौभाग्य हो कितना पौराणिक है और कितनी मान्यता है, लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, तो हमें भी वो मौका मिला। और सच्चाई ये है कि जो नहीं जा पाए या नहीं पहुंच पाए उनके लिए भी हमने मांगा है। और हमारा भी मंदिर जो बन रहा है वो शिव शक्ति अक्ष रेखा पर बन रहा है, जिस पर केदारनाथ है, उज्जैन है, रामेश्वर है, और उसी में इटावा का केदारेश्वर धाम बना रहे हैं।
1: सीएम योगी का मिशन इलेक्शन क्लियर है, अपने काम गिनाना, कानून व्यवस्था, विकास और सरकार की उपलब्धियों को उठाना और समाजवादी पार्टी पर तगड़ा प्रहार करना। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की पिच पर धुआंधार बैटिंग करने के लिए मशहूर हैं, और इसीलिए जब वो शिलान्यास और लोकार्पण की राजनीति कर रहे हैं तो उसमें हिंदुत्व को भी जोड़ते हैं। आपको बता दें, जुलाई 2026 के अंत तक सामने आई रिपोर्ट के अनुसार 3 महीनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 43 जिलों का दौरा करके सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और आधारभूत ढांचे से जुड़ी कुल 36,877 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद अगस्त से लेकर अब तक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जारी है। 7 अगस्त अम्बेडकर नगर, 706 करोड़ की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 9 अगस्त सिद्धार्थ नगर, 311 करोड़ की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 11 अगस्त संत कबीर नगर, 684 करोड़ की 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 24 अगस्त रायबरेली, 889 करोड़ की 346 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 29 अगस्त देवरिया, 305 करोड़ की 80 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 3 सितंबर मथुरा, 1051 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। यानी अब तक सीएम योगी यूपी में जिले दर जिले हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान और शिलान्यास कर चुके हैं, और इसके पीछे योगी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र का बुनियादी ढांचा मजबूत कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी कहती है कि योगी सरकार की शिलान्यास और उद्घाटन की राजनीति केवल दिखावा और चुनावी प्रोपेगेंडा है। आज तक ब्यूरो।
0: सीएम योगी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जिले दर जिले परियोजनाओं वाली पॉलिटिक्स से वोट फिक्स करने में जुटे हैं, तो योगी के इस काट के लिए प्लान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी तैयार कर लिया है, क्योंकि जंतर मंतर के आंदोलन के बाद जेंजी बीजेपी के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का बड़ा फोकस है जेंजी और जैन अल्फा पर। इन सबके बीच मायावती का प्लान भी सबको चौंका रहा है, तो आइए देखते हैं 2027 के ऐलाने जंग में कितनी कितनी तैयारियां हैं।
9: 27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी।
1: जब 2027 की जंग के लिए सियासत धुआंधार हो रही है, तब आज तक के मंच से सीएम योगी ऐलान करते हैं 2027 में फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी और धमाकेदार बनेगी।
9: चिंता मत करिए, हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी।
1: जी हाँ, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जेन जी और जेन अल्फा पर अपनी रणनीति फोकस कर रहे हैं और एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या वो कारगर साबित होगी? आइए आपको पहले अखिलेश यादव का प्लान बताते हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की नजर हर वर्ग को साधने वाले घोषणा पत्र पर है। समाजवादी पार्टी इस बार पुराने वादों के साथ कई नए वादों को जोड़कर ऐसा मैनिफेस्टो तैयार करने में जुटी है, जिसमें युवा, महिलाएं, आउटसोर्स कर्मचारी और अलग अलग जातीय समूहों को साधने की कोशिश होगी। समाजवादी पार्टी का खास फोकस जेन जी और जेन अल्फा पर भी है। पेपर लीक रोकने के पुख्ता इंतजाम, लखनऊ की आईटी सिटी को विस्तार और आईटी कंपनियों को यूपी में लाने का वादा एजेंडे में शामिल हो सकता है। अखिलेश सरकार के चर्चित वादे कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता और मुफ्त लैपटॉप फिर लौट सकते हैं। महिलाओं के लिए सालाना 40,000 रुपए की घोषणा और यश भारती सम्मान की वापसी का भी वादा हो सकता है।
10: बिना आधी आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है। पहले भी समाजवादी सरकार में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो फैसले लिए गए थे, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और देश के लिए उदाहरण बने हैं। हाल ही में जापान का एक डेलीगेशन जब आया तो उस डेलीगेशन को वही 1090 जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, उसी को दिखा करके सरकार ये बताना चाहती है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए वो क्या फैसले और क्या काम कर रहे हैं।
11: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहां माफियाओं को, दंगाइयों को, पेशेवर अपराधियों को पाला, उन्हें प्रोत्साहित किया, उनके सामने नतमस्तक हुआ करते थे। वही लोग यूपी के बीमारूपन के कारण भी थे, यूपी के निवेश के विरोध, यूपी में निवेश के विरोधी भी थे, यूपी में पर्यटन के विरोधी भी थे, यूपी में महिला सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए थे, और उत्तर प्रदेश के युवाओं की नौकरी और युवाओं के रोजगार पर भी सबसे बड़ी डकैती डालने का काम ये वही लोग करते थे।
1: सीएम योगी युवाओं को भी साध रहे हैं और महिला वोटरों को अपने पाले में खींचने के लिए योजनाएं भी ला रहे हैं। तो नीट पेपर लीक के खिलाफ छिड़े आंदोलन और विपक्ष के इस मुद्दे की काट निकालने के लिए भी पूरी रणनीति के साथ उतरे हैं
11: कि जो भी पर्चा लीक के इस अनैतिक कार्यों में लिप्त होगा उसको आजन्म कारावास के लिए जेल के अंदर सड़ाएंगे, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे। और ये कार्रवाई यूपी के अंदर हम प्रभावी ढंग से कर रहे हैं, तब हम यूपी के अंदर बिना भेदभाव के आरक्षण की नीति को पालन करते हुए 9.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में हम लोग सफल हुए हैं। जिन्होंने अच्छा किया नहीं वे अच्छा देख भी नहीं सकते, और यह इनकी सबसे बड़ी समस्या है। एक केंद्रीय मंत्री के बारे में समाजवादी पार्टी के मुखिया किस प्रकार की हल्की बातें करते हैं, यह इनकी उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो उन लोगों ने 17 के पहले यूपी के अंदर किया था।
1: यूपी में योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए समाजवादी पार्टी फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, ये शिवपाल सिंह यादव ने कंफर्म कर दिया है। लेकिन कांग्रेस ये स्वीकार कर रही है कि यूपी में बीजेपी को हराना आसान नहीं है।
12: जनता अब की बार हमारा जो गठबंधन है अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, ये रहेगा और मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा।
13: जो करने काम करने का तरीका है वो सिंपल और साफ है कि लड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि जिसका नतीजा आए, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी होना है उसे तुरंत कर करके जल्दी से हमें मैदान में निकलना चाहिए। बीजेपी हमसे आगे ना निकल जाए, बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है, हवा के अंदर बीजेपी नहीं आ रही है।
1: सीएम योगी की टक्कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ से तगड़ी है, ये कंफर्म है। लेकिन मायावती ने भी चुनावी मैदान में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन बीएसपी में मायावती की बात आते ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की जुबान पर ताला लग जाता है। ये बात तो सबको पता है, लेकिन मायावती के बड़े भतीजे की पहेली का जवाब किसी के पास नहीं है। लखनऊ में पार्टी की ऑल इंडिया स्तर की एक अहम बैठक की अध्यक्षता करने जब मायावती आई तो उनके साथ आकाश आनंद नहीं थे।
14: इधर बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मायावती, वो यहाँ पर पहुँची हैं, और ये पूरे देश भर से अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं। वो अब ऐसे में क्योंकि बसपा 2027 की बड़ी तैयारियों के साथ में यहाँ पर है, और इस बार जो जिम्मेदारी है वो उन सभी पर तैयारी की जिम्मेदारी है कि आखिर 2027 में कैसी ये रणनीति तय होगी। आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस बार आकाश आनंद नहीं है, लेकिन साथ में उनके अन्य लोग मौजूद हैं।
1: मायावती के पीछे सबकी नजरें आकाश को ढूंढ रही थी, लेकिन आकाश की जगह उनके छोटे भाई ईशान दिखाई दिए, जो मायावती के कुर्सी पर बैठते ही अपने पिता के साथ चुपचाप बाकी नेताओं के साथ खड़े हो गए। वही आकाश आनंद, जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल कहकर खुद को युवाओं यानी जेन जी के बीच एक युवा विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे थे।
15: सो कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहां भाजपा कर रही है। रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताओ।
1: 2024 में मायावती का वोट जिस तरह से बिखरा, कम हुआ, बाकी पार्टियों में बटा, उसने यूपी का सियासी गणित पलट कर रख दिया। अब सवाल ये है कि क्या अगले साल विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट पूरी तरह बिखर जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी को विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ हथियार बनाया, क्या अब बीजेपी ने उसका तोड़ निकाल लिया है। जी हाँ, ट्रस्ट के नए सीईओ रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र के साथ सवाल आता है कि क्या ट्रस्ट का ट्रस्ट वापस आ पाएगा, और तभी विपक्षी नेताओं के सवाल सियासत को नया मोड़ दे देते हैं। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने तो ये शक जाहिर कर दिया है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर का सच दबाए रखने के लिए सरकार ने जितेंद्र मिश्रा को सीईओ तो नहीं बना दिया। बीजेपी कह रही है कि सेना पर सवाल उठाना और सनातन का अपमान करना कांग्रेस की फितरत रही है।
16: अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर से चढ़ावे की चोरी से राम भक्तों की आस्था को जितनी चोट पहुंची थी उससे ज्यादा हलचल सियासत में मची हुई है। नतीजा यह है कि कल ही भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अफसर जितेंद्र मिश्रा को मंदिर ट्रस्ट का नया सीईओ बनाया गया और आज ही उनकी तैनाती पर सवालों के बौछार किए जाने लगे।
17: लोगों के दिमागों में शक और शुबा पैदा करती है। ऑपरेशन संदूर के अंदर कहीं कोई सच तो नहीं छुपा हुआ जिस वजह से उन्हें यहां पे सीईओ बनाया गया।
18: कांग्रेस अब मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस हो गई है। राशिद अल्वी जी, आपने उस राज का पर्दाफाश कर दिया जो हल्का फुल्का भरम का नकाब था, वो भी आपने उतार दिया।
19: भाई ये काम साधु संतों का है। अब एयर मार्शल साहब ने हवाई जहाज उड़ाया, हवाई जहाज उड़ा लेते, अब इनके आरएसएस के जंगल में फंस गए वो।
20: एक आदमी जो फौज की कमान संभालता था, इस धार्मिक इदारे की या धार्मिक मंदिर की कमान को कैसे संभाल पाएगा।
21: रिटायर्ड एयरफोर्स मैन बीइंग अपॉइंटेड इटसेल्फ इज अ क्वेश्चनेबल थिंग।
22: मेरिट पर पोस्टिंग नहीं होती है, बल्कि जो इस बीजेपी का कोई भी काम अंजाम देता है उसके लिए पोस्टिंग्स होती है।
23: एयर मार्शल लगा हुआ है, अब ये कैसे मार्शल निकल

0: बनाने की पाकिस्तानी चाल को नाकाम किया, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। 42 साल की राष्ट्र सेवा में जिस एयर मार्शल को शौर्य चक्र से विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल तक से सम्मानित किया गया, वो राम मंदिर ट्रस्ट में आकर खुद को धन्य मानते हैं।
1: चयन समिति का बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि उन्होंने इतने सब कैंडिडेट्स में से मेरा चयन किया है। इसे मैं श्री राम का आशीर्वाद भी मानूंगा कि 43 वर्ष राष्ट्र सेवा के बाद भारतीय वायुसेना में मुझे श्री राम ने एक और अवसर प्रदान किया है जहां पर मैं श्री राम मंदिर और श्री राम भक्तों की सेवा कर पाऊंगा।
0: जितेंद्र मिश्रा राष्ट्र सेवा के बाद राम भक्तों की सेवा को अपनी खुशकिस्मती मानते हैं, लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी की सियासत का हिस्सा बता रहा है। अब सवाल जात पात से लेकर बिजनेस धंधे तक उठ रहे हैं।
2: एक मिश्रा जी गए, नृपेंद्र मिश्रा जी गए तो दूसरे आए, क्या कोई दलित ओबीसी नहीं हो सकता था?
3: इसका मतलब सरकार को, मोदी जी को भाजपा आरएसएस वीएचपी के लोगों पर विश्वास नहीं रहा।
4: ये धर्म का स्थान है, भगवान राम का जन्म स्थान है, यहाँ पर परम पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा नामित होना चाहिए, धर्माचार्य को वहाँ बैठाना चाहिए था।
0: राम मंदिर ट्रस्ट में 2 सितंबर को बैठक में बड़े बदलाव हुए हैं। गोविंद देवगिरी को ट्रस्ट का नया महासचिव बनाया गया है, महेश भागचंदका को ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष बनाया गया है, अधिवक्ता मदन मोहन पांडे और शिक्षाविद निर्मला यादव ट्रस्ट में नए सदस्य बनाए गए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अफसर को लेकर उठाए जा रहे हैं।
5: तीर्थ क्षेत्र न्यास का सीईओ बनाए जाने पर भी सेना पर आपत्ति कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी की पुरानी रवायत है, वो देश के सेनाध्यक्ष को गुंडा कहते हैं, वो बार बार सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं और अब एयर मार्शल के सीईओ बनाए जाने पर भी राष्ट्रीय दल भी सवाल खड़ा कर रहे हैं।
0: हालांकि विपक्ष के सवाल सिर्फ सेना के अफसर को सीईओ बनाने को नहीं है। विपक्ष आरोप लगाता है कि सेना के अफसर को सीईओ बनाकर सरकार चढ़ावा चोरी के असली गुनहगारों को बचाना चाहती है। विपक्ष की मांग है कि जब तक ट्रस्ट के पुराने जिम्मेदारों पर मुकदमा नहीं होता, सीईओ की तैनाती से पुराने पाप नहीं धुलेंगे, क्योंकि चंदे से चढ़ावे तक में गड़बड़ी के आरोप हैं जिनकी पूरी जाँच बाकी है।
6: आई एम राइटिंग ए लेटर एंड थरोली इंक्वायरी, एवरी मनी शुड कम टू दी बैक टू दी राम।
7: He may be raided by ED if he finds some real facts behind it.
8: मंदिर का कॉर्पोरेटीकरण हो गया है, बिजनेस हो गया ना। जब बिजनेस होता है तो सीईओ आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, डायरेक्टर्स आते हैं, सब लोग आते हैं।
0: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट पर इतने हमले नहीं हुए जितने सवाल इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर के सीईओ बनाने के बाद हुए हैं। इसमें सवाल ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जाति तक और सेना को धार्मिक मामलों में घसीटने से लेकर चंदा चोरों को बचाने तक के उठाए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
9: उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा ने दावा किया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जिसके लिए वो मान सरकार पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं।
10: एसआईआर पर जारी घमासान के बीच अब पंजाब में राघव चड्ढा को लेकर सियासत तेज हो गई। राघव चड्ढा ने पंजाब सरकार पर वोटर लिस्ट से नाम बाहर करने का आरोप लगाया है। मैं पंजाब में राज्यसभा का मौजूदा सांसद हूं और मेरा वोटर आईडी पंजाब के मोहाली में रजिस्टर्ड है, फिर भी वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में मेरा नाम शिफ्टेड दिखाया गया है। ये सिर्फ कोई क्लर्क की गलती नहीं लगती, ये साफ तौर पर राजनीतिक बदले की भावना का मामला है। हो सकता है कि पंजाब में आपकी सरकार हो, लेकिन पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उनकी निजी संपत्ति नहीं है। उधर मान सरकार के मंत्रियों का कहना है कि ये चुनाव आयोग से जुड़ा मामला है जिसका पंजाब सरकार से कोई लेना देना नहीं है।
11: ये बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट अथॉरिटी भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, ये बता दीजिए, क्योंकि उसको तो इलेक्शन कमीशन को तो बॉडी अपॉइंट करता है, उनको स्टेट तो करती नहीं है।
12: पर उनका कहना कि जो बीएलओ है या फिर जो पंजाब का
11: वो बहुत बड़े झूठ बोलने के माहिर है, आप उनकी वीडियो निकाल के देख लीजिए। पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दोष लगाए थे, अब उनको दोहरा रहे हैं।
13: पंजाब में 20 लाख लोगों के वोट कट गए और ज्यादातर प्रवासियों के कट गए, जहां इतने प्रवासियों के कट गए वहां एक प्रवासी और कट गए।
10: हालांकि राघव चड्ढा कहते हैं कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है, जहां वो SIR की गाइडलाइन के तहत वापस अपना नाम जुड़वाएंगे। लेकिन इस मुद्दे ने कांग्रेस को एक बार फिर SIR पर हमले का मौका

0: दिया है।
1: इलेक्शन कमीशन आम आदमी पार्टी चला रहा है क्या? जो राजदूत का नाम कटा है, जो तीन तीन देशों में सेवा देकर आए, उनका नाम किसने कटवा दिया? इसीलिए तो हम SIR की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।
0: राघव चड्ढा पंजाब से पहले आम आदमी पार्टी और अब BJP से राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पंजाब की वोटर लिस्ट में नाम ना होने से उनकी राज्यसभा सदस्यता जा सकती है? हालांकि अब नियमों में बदलाव किए जा चुके हैं, जहां राज्यसभा सांसद देश के किसी भी हिस्से में मतदाता के तौर पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: सीएम योगी ने फूका चुनावी बिगुल, बोले यूपी में फिर से धमाकेदार तरीके से बनाएंगे सरकार। अखिलेश परवार, कहा एसपी के मुखिया की भाषा हल्की। बीएसपी में किसी बड़ी जिम्मेदारी देने से मायावती के इनकार के बाद भतीजे आकाश आनंद ने बदला एक्स प्रोफाइल, खुद को लिखा पार्टी कार्यकर्ता, बाबा साहेब की सोच का युवा समर्थक। ममता से अलग होकर एनसीपीआई में शामिल 20 सांसदों को 22 सितंबर तक जवाब देने का मिला वक्त, स्पीकर ओम बिरला ने बढ़ाई मियाद, टीएमसी ममता गुट ने की है सदस्यता रद्द करने की मांग। यूक्रेन के दौरे पर कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, रूस से जारी युद्ध पर जताई चिंता, कहा शांति के पक्ष में है भारत। और बिहार में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, पटना समेत 8 जिलों में हाई अलर्ट, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सतर्क। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए ऐलाने जंग शुरू हो गया है। यूपी में योगी सरकार के लिए तीसरे टर्म की चुनौती है, 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर से भी निपटना है। ऐसे में सीएम योगी यूपी में अलग अलग जिलों में धुआंधार दौरे कर रहे हैं, शिलान्यास, लोकार्पण और नई नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। और अब सीएम योगी जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण की धरती मथुरा पहुंचे हुए हैं। यहां योगी आदित्यनाथ ने 1051 करोड़ रुपए की 229 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
1: योगी की घोषणाएं धुआंधार, 2027 में होगी नैया पार। योगी की शिलान्यास पॉलिटिक्स, विपक्ष के पास क्या तोड़ है? जिले दर जिले योगी का प्लान पर योजना, वोटर फिक्स करना।
2: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
1: अब मथुरा को 1051 करोड़ की सौगात, चुनाव में बन जाएगी बात।
3: वृंदावन बिहारी लाल के।
1: योगी की विकास और हिंदुत्व की राजनीति, विपक्ष की क्या है नीति?
4: 1051 करोड़ से अधिक की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जा रहा है।
1: यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीएम योगी के लिए चैलेंज तीसरे टर्म का है तो 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर से निपटने का भी। ऐसे में सीएम योगी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को एक बार फिर पटखनी देने के लिए नए प्लान के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। एक गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से सीएम योगी यूपी में जिले दर जिले घूम रहे हैं, करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की ये शिलान्यास पॉलिटिक्स, विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मिश्रण पर आधारित एक सोची समझी चुनावी और प्रशासनिक रणनीति है, जिसके तहत वो यूपी के सभी जिलों में जाकर करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। ये रणनीति जनता के बीच सीधा संवाद बनाने और अखिलेश के पीडीए वाले नैरेटिव को काटने के लिए तैयार की गई है। और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ बांके बिहारी कृष्ण की धरती पर पहुंचे हैं। जन्माष्टमी के मौके पर उन्होंने मथुरा के लिए 1051 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया तो विकास को आधार बनाकर पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार पर प्रहार भी किया।
5: लंबे समय तक हम लोग विकास को केवल सड़क, बिजली, पानी, भवन और उद्योग के चश्मे से हमने देखने की कोशिश की। विकास के नाम पर विरासत का अपमान होता रहा। इतिहास के नायकों को भारतीय स्मृति से मिटाने की कोशिश हुई। पहले विदेशी आक्रांताओं ने हमारे इतिहास को और ऐतिहासिक चिन्हों को नष्ट किया, फिर अंग्रेजों ने और पूर्ववर्ती सरकारों ने तो उस हद को पार कर दिया। मुझे याद है आज जो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी आज अपनी जिस विरासत उत्सव के लिए जाना जा रहा है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या ये आज से पहले यानी 2017 के पहले क्या ये संभव था?
1: मथुरा में सीएम योगी ने ये भी कहा कि कैसे विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, तो उन्होंने वृंदावन से लेकर काशी और अयोध्या का जिक्र किया।
5: एक तरफ इतिहास में मंदिरों पर प्रहार के प्रसंग मिलते हैं और दूसरी ओर उसी कालखंड में ब्रज की धरती में स्वामी हरिदास जी जैसे संत अपनी साधना से संगीत की ऐसी धारा विकसित करते हैं जिसकी गूंज सदियों से चली आ रही है। यही कहानी काशी की भी है। काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ दिया, लेकिन परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही अयोध्या में हुआ। बाबर ने 1528 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को तोड़ करके एक गुलामी का ढांचा बनवा दिया। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है।
1: इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने यूपी दंगों को लेकर पिछली समाजवादी सरकार को टारगेट किया, तो ये भी दावा किया कि अब यूपी कर्फ्यू और दंगा मुक्त हो चुका है।
5: 2016 जून 16 में जिस मथुरा में जवाहर बाग की घटना घटित हुई थी जिसमें 29 लोग मारे गए थे, उपद्रव वही है। बरेली में महीनों महीनों दंगे, सरकारें नतमस्तक होती थी उन दंगाइयों के सामने। नागरगढ़ थी दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित किया जाता था। मुजफ्फरनगर का दंगा कई महीनों तक चला, कर्फ्यू कई महीनों तक चला। अलीगढ़ में दंगा, मेरठ में दंगा, लखनऊ में दंगा, और आज मैं कह सकता हूं कि हमारा यूपी पिछले 9.5 वर्ष से कर्फ्यू से भी मुक्त है, दंगा से भी मुक्त है।
1: मथुरा वृंदावन पर योगी आदित्यनाथ के इस फोकस से फिर मथुरा पर सबकी नजरें टिक गई हैं।
2: वृंदावन बिहारी लाल के,
1: क्योंकि कुछ महीनों में यूपी का चुनाव है, जहां अब की बार अटकलें लग रही हैं कि क्या अब की बार सत्ता का रास्ता मथुरा से होकर जाएगा।
6: वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है। जब जाने की बारी है, जब आपने श्री रामचंद्र जी के नाम का सहारा लिया, तो आपने नाम इसलिए लिया कि आपको वहां पे लूटना था। हम तो कहेंगे कि वहां पे जो भी महंत लोग हैं मथुरा में, अरे भाजपाइयों से सावधान रहो, नहीं तो जो चढ़ावा है वहाँ का, जो चंदा है, उस पर भी निगाह इनकी पड़ चुकी, इनको घुसने मत देना वहाँ पर।
7: जो वामी है, जो कांगी है, जो सपाई है, जो कांग्रेसी है, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है, हिंदुओं को बांटना है, मुसलमानों को एकत्रित करना है और उसके सहारे चुनावी वैतरणी पार करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये जान चुकी है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे।
0: सीएम रहते योगी आदित्यनाथ 43वीं बार मथुरा आए हुए हैं, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राम के बाद अब कृष्ण के सहारे सियासी नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ने से अखिलेश यादव उत्साहित हैं। तो ऐसे में योगी ने मथुरा प्लान और परियोजना पॉलिटिक्स कितनी उनकी काम आने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
1: मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का विवाद अखिलेश यादव के लिए संवेदनशील मसला हो सकता है, क्योंकि खुद को यदुवंशी कृष्ण का वंशज बताने वाले यादव समाज और मुस्लिम समाज को एक साथ साधना उनके लिए चुनौती भरा हो सकता है। अखिलेश इस मुश्किल को समझते हैं, इसलिए वो जितना संभव हो बीजेपी को राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर घेरते हैं और मंदिर की बात पर अपने इटावा के केदारेश्वर महादेव मंदिर की बात करना नहीं भूलते।
8: भगवान शिव भोले बाबा का मंदिर का निर्माण हम भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि किस मंदिर में आकर के मुझे पूजा करने का मौका मिलेगा। खैर, लेकिन जब इन्होंने बताया तो ये हमारा सौभाग्य भी है। सौभाग्य हो कितना पौराणिक है और कितनी मान्यता है, लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, तो हमें भी वो मौका मिला। और सच्चाई ये है कि जो नहीं जा पाए या नहीं पहुंच पाए उनके लिए भी हमने मांगा है। और हमारा भी मंदिर जो बन रहा है वो शिव शक्ति अक्ष रेखा पर बन रहा है, जिस पर केदारनाथ है, उज्जैन है, रामेश्वर है, और उसी में इटावा का केदारेश्वर धाम बना रहे हैं।
1: सीएम योगी का मिशन इलेक्शन क्लियर है, अपने काम गिनाना, कानून व्यवस्था, विकास और सरकार की उपलब्धियों को उठाना और समाजवादी पार्टी पर तगड़ा प्रहार करना। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की पिच पर धुआंधार बैटिंग करने के लिए मशहूर हैं, और इसीलिए जब वो शिलान्यास और लोकार्पण की राजनीति कर रहे हैं तो उसमें हिंदुत्व को भी जोड़ते हैं। आपको बता दें, जुलाई 2026 के अंत तक सामने आई रिपोर्ट के अनुसार 3 महीनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 43 जिलों का दौरा करके सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और आधारभूत ढांचे से जुड़ी कुल 36,877 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद अगस्त से लेकर अब तक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जारी है। 7 अगस्त अम्बेडकर नगर, 706 करोड़ की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 9 अगस्त सिद्धार्थ नगर, 311 करोड़ की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 11 अगस्त संत कबीर नगर, 684 करोड़ की 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 24 अगस्त रायबरेली, 889 करोड़ की 346 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 29 अगस्त देवरिया, 305 करोड़ की 80 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 3 सितंबर मथुरा, 1051 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। यानी अब तक सीएम योगी यूपी में जिले दर जिले हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान और शिलान्यास कर चुके हैं, और इसके पीछे योगी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र का बुनियादी ढांचा मजबूत कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी कहती है कि योगी सरकार की शिलान्यास और उद्घाटन की राजनीति केवल दिखावा और चुनावी प्रोपेगेंडा है। आज तक ब्यूरो।
0: सीएम योगी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जिले दर जिले परियोजनाओं वाली पॉलिटिक्स से वोट फिक्स करने में जुटे हैं, तो योगी के इस काट के लिए प्लान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी तैयार कर लिया है, क्योंकि जंतर मंतर के आंदोलन के बाद जेंजी बीजेपी के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का बड़ा फोकस है जेंजी और जैन अल्फा पर। इन सबके बीच मायावती का प्लान भी सबको चौंका रहा है, तो आइए देखते हैं 2027 के ऐलाने जंग में कितनी कितनी तैयारियां हैं।
9: 27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी।
1: जब 2027 की जंग के लिए सियासत धुआंधार हो रही है, तब आज तक के मंच से सीएम योगी ऐलान करते हैं 2027 में फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी और धमाकेदार बनेगी।
9: चिंता मत करिए, हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी।
1: जी हाँ, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जेन जी और जेन अल्फा पर अपनी रणनीति फोकस कर रहे हैं और एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या वो कारगर साबित होगी? आइए आपको पहले अखिलेश यादव का प्लान बताते हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की नजर हर वर्ग को साधने वाले घोषणा पत्र पर है। समाजवादी पार्टी इस बार पुराने वादों के साथ कई नए वादों को जोड़कर ऐसा मैनिफेस्टो तैयार करने में जुटी है, जिसमें युवा, महिलाएं, आउटसोर्स कर्मचारी और अलग अलग जातीय समूहों को साधने की कोशिश होगी। समाजवादी पार्टी का खास फोकस जेन जी और जेन अल्फा पर भी है। पेपर लीक रोकने के पुख्ता इंतजाम, लखनऊ की आईटी सिटी को विस्तार और आईटी कंपनियों को यूपी में लाने का वादा एजेंडे में शामिल हो सकता है। अखिलेश सरकार के चर्चित वादे कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता और मुफ्त लैपटॉप फिर लौट सकते हैं। महिलाओं के लिए सालाना 40,000 रुपए की घोषणा और यश भारती सम्मान की वापसी का भी वादा हो सकता है।
10: बिना आधी आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है। पहले भी समाजवादी सरकार में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो फैसले लिए गए थे, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और देश के लिए उदाहरण बने हैं। हाल ही में जापान का एक डेलीगेशन जब आया तो उस डेलीगेशन को वही 1090 जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, उसी को दिखा करके सरकार ये बताना चाहती है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए वो क्या फैसले और क्या काम कर रहे हैं।
11: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहां माफियाओं को, दंगाइयों को, पेशेवर अपराधियों को पाला, उन्हें प्रोत्साहित किया, उनके सामने नतमस्तक हुआ करते थे। वही लोग यूपी के बीमारूपन के कारण भी थे, यूपी के निवेश के विरोध, यूपी में निवेश के विरोधी भी थे, यूपी में पर्यटन के विरोधी भी थे, यूपी में महिला सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए थे, और उत्तर प्रदेश के युवाओं की नौकरी और युवाओं के रोजगार पर भी सबसे बड़ी डकैती डालने का काम ये वही लोग करते थे।
1: सीएम योगी युवाओं को भी साध रहे हैं और महिला वोटरों को अपने पाले में खींचने के लिए योजनाएं भी ला रहे हैं। तो नीट पेपर लीक के खिलाफ छिड़े आंदोलन और विपक्ष के इस मुद्दे की काट निकालने के लिए भी पूरी रणनीति के साथ उतरे हैं
11: कि जो भी पर्चा लीक के इस अनैतिक कार्यों में लिप्त होगा उसको आजन्म कारावास के लिए जेल के अंदर सड़ाएंगे, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे। और ये कार्रवाई यूपी के अंदर हम प्रभावी ढंग से कर रहे हैं, तब हम यूपी के अंदर बिना भेदभाव के आरक्षण की नीति को पालन करते हुए 9.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में हम लोग सफल हुए हैं। जिन्होंने अच्छा किया नहीं वे अच्छा देख भी नहीं सकते, और यह इनकी सबसे बड़ी समस्या है। एक केंद्रीय मंत्री के बारे में समाजवादी पार्टी के मुखिया किस प्रकार की हल्की बातें करते हैं, यह इनकी उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो उन लोगों ने 17 के पहले यूपी के अंदर किया था।
1: यूपी में योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए समाजवादी पार्टी फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, ये शिवपाल सिंह यादव ने कंफर्म कर दिया है। लेकिन कांग्रेस ये स्वीकार कर रही है कि यूपी में बीजेपी को हराना आसान नहीं है।
12: जनता अब की बार हमारा जो गठबंधन है अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, ये रहेगा और मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करें।
13: जो करने काम करने का तरीका है वो सिंपल और साफ है कि लड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि जिसका नतीजा आए, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी होना है उसे तुरंत कर करके जल्दी से हमें मैदान में निकलना चाहिए। बीजेपी हमसे आगे ना निकल जाए, बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है, हवा के अंदर बीजेपी नहीं हार रही है।
1: सीएम योगी की टक्कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ से तगड़ी है, ये कंफर्म है। लेकिन मायावती ने भी चुनावी मैदान में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन बीएसपी में मायावती की बात आते ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की जुबान पर ताला लग जाता है। ये बात तो सबको पता है, लेकिन मायावती के बड़े भतीजे की पहेली का जवाब किसी के पास नहीं है। लखनऊ में पार्टी की ऑल इंडिया स्तर की एक अहम बैठक की अध्यक्षता करने जब मायावती आई तो उनके साथ आकाश आनंद नहीं थे।
14: इधर बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मायावती, वो यहाँ पर पहुँची हैं, और ये पूरे देश भर से अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं। वो अब ऐसे में क्योंकि बसपा 2027 की बड़ी तैयारियों के साथ में यहाँ पर है, और इस बार जो जिम्मेदारी है वो उन सभी पर तैयारी की जिम्मेदारी है कि आखिर 2027 में कैसी ये रणनीति तय होगी। आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस बार आकाश आनंद नहीं है, लेकिन साथ में उनके अन्य लोग मौजूद हैं।
1: मायावती के पीछे सबकी नजरें आकाश को ढूंढ रही थी, लेकिन आकाश की जगह उनके छोटे भाई ईशान दिखाई दिए, जो मायावती के कुर्सी पर बैठते ही अपने पिता के साथ चुपचाप बाकी नेताओं के साथ खड़े हो गए। वही आकाश आनंद, जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल कहकर खुद को युवाओं यानी जेन जी के बीच एक युवा विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे थे।
15: सो कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहां भाजपा कर रही है। रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के वर्ग आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताएं।
1: 2024 में मायावती का वोट जिस तरह से बिखरा, कम हुआ, बाकी पार्टियों में बटा, उसने यूपी का सियासी गणित पलट कर रख दिया। अब सवाल ये है कि क्या अगले साल विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट पूरी तरह बिखर जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी को विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ हथियार बनाया, क्या अब बीजेपी ने उसका तोड़ निकाल लिया है। जी हाँ, ट्रस्ट के नए सीईओ रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र के साथ सवाल आता है कि क्या ट्रस्ट का ट्रस्ट वापस आ पाएगा, और तभी विपक्षी नेताओं के सवाल सियासत को नया मोड़ दे देते हैं। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने तो ये शक जाहिर कर दिया है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर का सच दबाए रखने के लिए सरकार ने जितेंद्र मिश्रा को सीईओ तो नहीं बना दिया। बीजेपी कह रही है कि सेना पर सवाल उठाना और सनातन का अपमान करना कांग्रेस की फितरत रही है।
16: अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर से चढ़ावे की चोरी से राम भक्तों की आस्था को जितनी चोट पहुंची थी उससे ज्यादा हलचल सियासत में मची हुई है। नतीजा यह है कि कल ही भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अफसर जितेंद्र मिश्रा को मंदिर ट्रस्ट का नया सीईओ बनाया गया और आज ही उनकी तैनाती पर सवालों के बौछार किए जाने लगे।
17: लोगों के दिमागों में शक और शुबा पैदा करती है। ऑपरेशन संदूर के अंदर कहीं कोई सच तो नहीं छुपा हुआ जिस वजह से उन्हें यहां पे सीईओ बनाया गया।
18: कांग्रेस अब मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस हो गई है। राशिद अल्वी जी, आपने उस राज का पर्दाफाश कर दिया जो हल्का फुल्का भरम का नकाब था, वो भी आपने उतार दिया।
19: भाई ये काम साधु संतों का है। अब एयर मार्शल साहब ने हवाई जहाज उड़ाया, हवाई जहाज उड़ा लेते, अब इनके आरएसएस के जंगल में फंस गए वो।
20: एक आदमी जो फौज की कमान संभालता था, इस धार्मिक इदारे की या धार्मिक मंदिर की कमान को कैसे संभाल पाएगा।
21: रिटायर्ड एयरफोर्स मैन बीइंग अपॉइंटेड इटसेल्फ इज अ क्वेश्चनेबल थिंग।
22: मेरिट पर पोस्टिंग नहीं होती है, बल्कि जो इस बीजेपी का कोई भी काम अंजाम देता है उसके लिए पोस्टिंग्स होती है।
23: एयर मार्शल लगा हुआ है, अब ये कैसे मार्शल निकलते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
16: जिस जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के इस्लामिक दहशत गर्दों को नेस्तनाबूद किया, S-400 को निशाना बनाने की पाकिस्तानी चाल को नाकाम किया, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, 42 साल की राष्ट्र सेवा में जिस एयर मार्शल को शौर्य चक्र से विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल तक से सम्मानित किया गया, वो राम मंदिर ट्रस्ट में आकर खुद को धन्य मानते हैं।
24: चयन समिति का बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि उन्होंने इतने सब कैंडिडेट्स में से मेरा चयन किया है। इसे मैं श्री राम का आशीर्वाद भी मानूंगा कि 43 वर्ष राष्ट्र सेवा के बाद भारतीय वायुसेना में मुझे श्री राम ने एक और अवसर प्रदान किया है जहां पर मैं श्री राम मंदिर और श्री राम भक्तों की सेवा कर पाऊँ।
16: जितेंद्र मिश्रा राष्ट्र सेवा के बाद राम भक्तों की सेवा को अपनी खुशकिस्मती मानते हैं, लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी की सियासत का हिस्सा बता रहा है। अब सवाल जात पात से लेकर बिजनेस धंधे तक उठ रहे हैं।
25: एक मिश्रा जी गए, निपेंद्र मिश्रा जी गए तो दूसरे आए, क्या कोई दलित ओबीसी नहीं हो सकता था।
26: इसका मतलब सरकार को, मोदी जी को भाजपा आरएसएस वीएचपी के लोगों पर विश्वास नहीं रहा।
27: ये धर्म का स्थान है,
2: भगवान राम का जन्म स्थान है, यहाँ पर परम पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा नामित होना चाहिए, धर्माचार्य को वहां बैठाना चाहिए था।
3: राम मंदिर ट्रस्ट में 2 सितंबर को बैठक में बड़े बदलाव हुए हैं। गोविंद देवगिरी को ट्रस्ट का नया महासचिव बनाया गया है। महेश भागचंदका को ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अधिवक्ता मदन मोहन पांडे और शिक्षाविद निर्मला यादव ट्रस्ट में नए सदस्य बनाए गए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अफसर को लेकर उठाए जा रहे हैं।
4: तीर्थ क्षेत्र न्यास का सीईओ बनाए जाने पर भी सेना पर आपत्ति कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी रवायत है, वो देश के सेनाध्यक्ष को गुंडा कहते हैं, वो बार बार सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, और अब एयर मार्शल के सीईओ बनाए जाने पर भी राशिदल भी सवाल खड़ा कर रहे हैं।
3: हालांकि विपक्ष के सवाल सिर्फ सेना के अफसर को सीईओ बनाने को नहीं है। विपक्ष आरोप लगाता है कि सेना के अफसर को सीईओ बनाकर सरकार चढ़ावा चोरी के असली गुनहगारों को बचाना चाहती है। विपक्ष की मांग है कि जब तक ट्रस्ट के पुराने जिम्मेदारों पर मुकदमा नहीं होता, सीईओ की तैनाती से पुराने पाप नहीं धुलेंगे, क्योंकि चंदे से चढ़ावे तक में गड़बड़ी के आरोप है जिनकी पूरी जाँच बाकी है।
5: आई एम राइटिंग ए लेटर एंड थरोली इंक्वायरी, एवरी मनी शुड कम टू दी बैक टू दी राम।
6: He may be raided by ED if he finds some real facts behind it.
7: मंदिर का कॉर्पोरेटीकरण हो गया है, बिजनेस हो गया ना। जब बिजनेस होता है तो सीईओ आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, डायरेक्टर्स आते हैं, सब लोग आते हैं।
3: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट पर इतने हमले नहीं हुए जितने सवाल इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर के सीईओ बनाने के बाद हुए हैं। पर इतने हमले नहीं हुए जितने सवाल इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर के सीईओ बनाने के बाद हुए हैं। इसमें सवाल ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जाति तक और सेना को धार्मिक मामलों में घसीटने से लेकर।
0: राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा ने दावा किया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जिसके लिए वो मान सरकार पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं।
8: SIR पर जारी घमासान के बीच अब पंजाब में राघव चड्ढा को लेकर सियासत तेज हो गई। राघव चड्ढा ने पंजाब सरकार पर वोटर लिस्ट से नाम बाहर करने का आरोप लगाया है। मैं पंजाब में राज्यसभा का मौजूदा सांसद हूं और मेरा वोटर आईडी पंजाब के मोहाली में रजिस्टर्ड है, फिर भी वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में मेरा नाम शिफ्टेड दिखाया गया है। ये सिर्फ कोई क्लर्क की गलती नहीं लगती, ये साफ तौर पर राजनीतिक बदले की भावना का मामला है। हो सकता है कि पंजाब में आपकी सरकार हो, लेकिन पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उनकी निजी संपत्ति नहीं है। उधर मान सरकार के मंत्रियों का कहना है कि ये चुनाव आयोग से जुड़ा मामला है जिसका पंजाब सरकार से कोई लेना देना नहीं है।
27: ये बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट अथॉरिटी भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, ये बता दीजिए, क्योंकि उसको तो इलेक्शन कमीशन को तो वही अपॉइंट करता है, उनको स्टेट तो करती नहीं है।
0: पर उनका कहना कि जो बीएलओ है या फिर जो पंजाब का
27: वो बहुत बड़े झूठ बोलने के माहिर है, आप उनकी वीडियो निकाल के देख लीजिए। पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दोष लगाए थे, अब उनको दोहरा रहे हैं।
28: पंजाब में 20 लाख लोगों के वोट कट गए और ज्यादातर प्रवासियों के कट गए, जहां इतने प्रवासियों के कट गए वहां एक प्रवासी और कट गए।
8: हालांकि राघव चड्ढा कहते हैं कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है, जहां वो SIR की गाइडलाइन के तहत वापस अपना नाम जुड़वाएंगे, लेकिन इस मुद्दे ने कांग्रेस को एक बार फिर SIR पर हमले का मौका दे दिया है।
29: इलेक्शन कमीशन आम आदमी पार्टी चला रहा है क्या? जो राजदूत का नाम कटा है, जो 3-3 देशों में सेवा देकर आए, उनका नाम किसने कटवा दिया? इसीलिए तो हम SIR की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।
8: राघव चड्ढा पंजाब से पहले आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पंजाब की वोटर लिस्ट में नाम ना होने से उनकी राज्यसभा सदस्यता जा सकती है? हालांकि अब नियमों में बदलाव किए जा चुके हैं, जहां राज्यसभा सांसद देश के किसी भी हिस्से में मतदाता के तौर पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: सीएम योगी ने फूका चुनावी बिगुल, बोले यूपी में फिर से धमाकेदार तरीके से बनाएंगे सरकार। अखिलेश परवार का एसपी के मुखिया की भाषा हल्की। बीएसपी में किसी बड़ी जिम्मेदारी देने से मायावती के इनकार के बाद भतीजे आकाश आनंद ने बदला एक्स प्रोफाइल, खुद को लिखा पार्टी कार्यकर्ता, बाबा साहेब की सोच का युवा समर्थक। ममता से अलग होकर एनसीपीआई में शामिल 20 सांसदों को 22 सितंबर तक जवाब देने का मिला वक्त, स्पीकर ओम बिरला ने बढ़ाई मियाद, टीएमसी ममता गुट ने की है सदस्यता रद्द करने की मांग। यूक्रेन के दौरे पर कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, रूस से जारी युद्ध पर जताई चिंता, कहा शांति के पक्ष में है भारत। और बिहार में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, पटना समेत 8 जिलों में हाई अलर्ट, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सतर्क। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए ऐलाने जंग शुरू हो गया है। यूपी में योगी सरकार के लिए तीसरे टर्म की चुनौती है, 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर से भी निपटना है। ऐसे में सीएम योगी यूपी में अलग अलग जिलों में धुआंधार दौरे कर रहे हैं, शिलान्यास, लोकार्पण और नई नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। और अब सीएम योगी जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण की धरती मथुरा पहुंचे हुए हैं। यहां योगी आदित्यनाथ ने 1051 करोड़ रुपए की 229 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
1: योगी की घोषणाएं धुआंधार, 2027 में होगी नैया पार। योगी की शिलान्यास पॉलिटिक्स, विपक्ष के पास क्या तोड़ है? जिले दर जिले योगी का प्लान पर योजना, वोटर फिक्स करना।
2: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
1: अब मथुरा को 1051 करोड़ की सौगात, चुनाव में बन जाएगी बात।
3: वृंदावन बिहारी लाल के।
1: योगी की विकास और हिंदुत्व की राजनीति, विपक्ष की क्या है नीति?
4: 1051 करोड़ से अधिक की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जा रहा है।
1: यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीएम योगी के लिए चैलेंज तीसरे टर्म का है तो 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर से निपटने का भी। ऐसे में सीएम योगी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को एक बार फिर पटखनी देने के लिए नए प्लान के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। एक गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से सीएम योगी यूपी में जिले दर जिले घूम रहे हैं, करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की ये शिलान्यास पॉलिटिक्स, विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मिश्रण पर आधारित एक सोची समझी चुनावी और प्रशासनिक रणनीति है, जिसके तहत वो यूपी के सभी जिलों में जाकर करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। ये रणनीति जनता के बीच सीधा संवाद बनाने और अखिलेश के पीडीए वाले नैरेटिव को काटने के लिए तैयार की गई है। और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ बांके बिहारी कृष्ण की धरती पर पहुंचे हैं। जन्माष्टमी के मौके पर उन्होंने मथुरा के लिए 1051 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया तो विकास को आधार बनाकर पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार पर प्रहार भी किया।
5: लंबे समय तक हम लोग विकास को केवल सड़क, बिजली, पानी, भवन और उद्योग के चश्मे से हमने देखने की कोशिश की। विकास के नाम पर विरासत का अपमान होता रहा। इतिहास के नायकों को भारतीय स्मृति से मिटाने की कोशिश हुई। पहले विदेशी आक्रांताओं ने हमारे इतिहास को और ऐतिहासिक चिन्हों को नष्ट किया, फिर अंग्रेजों ने और पूर्ववर्ती सरकारों ने तो उस हद को पार कर दिया। मुझे याद है आज जो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी आज अपनी जिस विरासत उत्सव के लिए जाना जा रहा है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या ये आज से पहले यानी 2017 के पहले क्या ये संभव था?
1: मथुरा में सीएम योगी ने ये भी कहा कि कैसे विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, तो उन्होंने वृंदावन से लेकर काशी और अयोध्या का जिक्र किया।
5: एक तरफ इतिहास में मंदिरों पर प्रहार के प्रसंग मिलते हैं और दूसरी ओर उसी कालखंड में ब्रज की धरती में स्वामी हरिदास जी जैसे संत अपनी साधना से संगीत की ऐसी धारा विकसित करते हैं जिसकी गूंज सदियों से चली आ रही है। यही कहानी काशी की भी है। काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ दिया, लेकिन परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। लोग माता अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही अयोध्या में हुआ। बाबर ने 1528 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को तोड़ करके एक गुलामी का ढांचा बनवा दिया। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है।
1: इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने यूपी दंगों को लेकर पिछली समाजवादी सरकार को टारगेट किया, तो ये भी दावा किया कि अब यूपी कर्फ्यू और दंगा मुक्त हो चुका है।
5: 2016 जून 16 में जिस मथुरा में जवाहर बाग की घटना घटित हुई थी जिसमें 29 लोग मारे गए थे, उपद्रव वही है। बरेली में महीनों महीनों दंगे, सरकारें नतमस्तक होती थी उन दंगाइयों के सामने। नागरगढ़ थी दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर के सम्मानित किया जाता था। मुजफ्फरनगर का दंगा कई महीनों तक चला, कर्फ्यू कई महीनों तक चला। अलीगढ़ में दंगा, मेरठ में दंगा, लखनऊ में दंगा, और आज मैं कह सकता हूं कि हमारा यूपी पिछले 9.5 वर्ष से कर्फ्यू से भी मुक्त है, दंगा से भी मुक्त है।
1: मथुरा वृंदावन पर योगी आदित्यनाथ के इस फोकस से फिर मथुरा पर सबकी नजरें टिक गई हैं।
2: वृंदावन बिहारी लाल के,
1: क्योंकि कुछ महीनों में यूपी का चुनाव है, जहां अब की बार अटकलें लग रही हैं कि क्या अब की बार सत्ता का रास्ता मथुरा से होकर जाएगा।
6: वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है। जब जाने की बारी है, जब आपने श्री रामचंद्र जी के नाम का सहारा लिया, तो आपने नाम इसलिए लिया कि आपको वहां पे लूटना था। हम तो कहेंगे कि वहां पे जो भी महंत लोग हैं मथुरा में, अरे भाजपाइयों से सावधान रहो, नहीं तो जो चढ़ावा है वहां का, जो चंदा है, उस पर भी निगाह इनकी पड़ चुकी, इनको घुसने मत देना वहां पर।
7: जो वामी है, जो कांगी है, जो सपाई है, जो कांग्रेसी है, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है, हिंदुओं को बांटना है, मुसलमानों को एकत्रित करना है और उसके सहारे चुनावी वैतरणी पार करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये जान चुकी है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे।
0: सीएम रहते योगी आदित्यनाथ 43वीं बार मथुरा आए हुए हैं, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राम के बाद अब कृष्ण के सहारे सियासी नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ने से अखिलेश यादव उत्साहित हैं। तो ऐसे में योगी ने मथुरा प्लान और परियोजना पॉलिटिक्स कितनी उनकी काम आने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
1: मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का विवाद अखिलेश यादव के लिए संवेदनशील मसला हो सकता है, क्योंकि खुद को यदुवंशी कृष्ण का वंशज बताने वाले यादव समाज और मुस्लिम समाज को एक साथ साधना उनके लिए चुनौती भरा हो सकता है। अखिलेश इस मुश्किल को समझते हैं, इसलिए वो जितना संभव हो बीजेपी को राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर घेरते हैं और मंदिर की बात पर अपने इटावा के केदारेश्वर महादेव मंदिर की बात करना नहीं भूलते।
8: भगवान शिव भोले बाबा का मंदिर का निर्माण हम भी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि किस मंदिर में आकर के मुझे पूजा करने का मौका मिलेगा, खैर, लेकिन जब इन्होंने बताया तो ये हमारा सौभाग्य भी है। सौभाग्य हो कितना पौराणिक है और कितनी मान्यता है, लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, तो हमें भी वो मौका मिला। और सच्चाई ये है कि जो नहीं जा पाए या नहीं पहुंच पाए उनके लिए भी हमने मांगा है। और हमारा भी मंदिर जो बन रहा है वो शिव शक्ति अक्ष रेखा पर बन रहा है, जिस पर केदारनाथ है, उज्जैन है, रामेश्वर है, और उसी में इटावा का केदारेश्वर धाम बना रहे हैं।
1: सीएम योगी का मिशन इलेक्शन क्लियर है, अपने काम गिनाना, कानून व्यवस्था, विकास और सरकार की उपलब्धियों को उठाना और समाजवादी पार्टी पर तगड़ा प्रहार करना। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की पिच पर धुआंधार बैटिंग करने के लिए मशहूर हैं, और इसीलिए जब वो शिलान्यास और लोकार्पण की राजनीति कर रहे हैं तो उसमें हिंदुत्व को भी जोड़ते हैं। आपको बता दें, जुलाई 2026 के अंत तक सामने आई रिपोर्ट के अनुसार 3 महीनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 43 जिलों का दौरा करके सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और आधारभूत ढांचे से जुड़ी कुल 36,877 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद अगस्त से लेकर अब तक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जारी है। 7 अगस्त अम्बेडकर नगर, 706 करोड़ की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 9 अगस्त सिद्धार्थ नगर, 311 करोड़ की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 11 अगस्त संत कबीर नगर, 684 करोड़ की 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 24 अगस्त रायबरेली, 889 करोड़ की 346 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 29 अगस्त देवरिया, 305 करोड़ की 80 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 3 सितंबर मथुरा, 1051 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। यानी अब तक सीएम योगी यूपी में जिले दर जिले हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान और शिलान्यास कर चुके हैं, और इसके पीछे योगी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र का बुनियादी ढांचा मजबूत कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी कहती है कि योगी सरकार की शिलान्यास और उद्घाटन की राजनीति केवल दिखावा और चुनावी प्रोपेगेंडा है। आज तक ब्यूरो।
0: सीएम योगी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जिले दर जिले परियोजनाओं वाली पॉलिटिक्स से वोट फिक्स करने में जुटे हैं, तो योगी के इस काट के लिए प्लान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी तैयार कर लिया है, क्योंकि जंतर मंतर के आंदोलन के बाद जेंजी बीजेपी के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का बड़ा फोकस है जेंजी और जैन अल्फा पर। इन सबके बीच मायावती का प्लान भी सबको चौंका रहा है, तो आइए देखते हैं 2027 के ऐलाने जंग में कितनी कितनी तैयारियां हैं।
9: 27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी।
1: जब 2027 की जंग के लिए सियासत धुआंधार हो रही है, तब आज तक के मंच से सीएम योगी ऐलान करते हैं 2027 में फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी और धमाकेदार बनेगी।
9: चिंता मत करिए, हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी।
1: जी हाँ, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जेन जी और जेन अल्फा पर अपनी रणनीति फोकस कर रहे हैं और एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या वो कारगर साबित होगी? आइए आपको पहले अखिलेश यादव का प्लान बताते हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की नजर हर वर्ग को साधने वाले घोषणा पत्र पर है। समाजवादी पार्टी इस बार पुराने वादों के साथ कई नए वादों को जोड़कर ऐसा मैनिफेस्टो तैयार करने में जुटी है जिसमें युवा, महिलाएं, आउटसोर्स कर्मचारी और अलग अलग जातीय समूहों को साधने की कोशिश होगी। समाजवादी पार्टी का खास फोकस जेन जी और जेन अल्फा पर भी है। पेपर लीक रोकने के पुख्ता इंतजाम, लखनऊ की आईटी सिटी को विस्तार और आईटी कंपनियों को यूपी में लाने का वादा एजेंडे में शामिल हो सकता है। अखिलेश सरकार के चर्चित वादे कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता और मुफ्त लैपटॉप फिर लौट सकते हैं। महिलाओं के लिए सालाना 40,000 रुपए की घोषणा और यश भारती सम्मान की वापसी का भी वादा हो सकता है।
10: बिना आधी आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है। पहले भी समाजवादी सरकार में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो फैसले लिए गए थे, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और देश के लिए उदाहरण बने हैं। हाल ही में जापान का एक डेलीगेशन जब आया तो उस डेलीगेशन को वही 1090 जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, उसी को दिखा करके सरकार ये बताना चाहती है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए वो क्या फैसले और क्या काम कर रहे हैं।
11: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहां माफियाओं को, दंगाइयों को, पेशेवर अपराधियों को पाला, उन्हें प्रोत्साहित किया, उनके सामने नतमस्तक हुआ करते थे। वही लोग यूपी के बीमारूपन के कारण भी थे, यूपी के निवेश के विरोध, यूपी में निवेश के विरोधी भी थे, यूपी में पर्यटन के विरोधी भी थे, यूपी में महिला सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए थे, और उत्तर प्रदेश के युवाओं की नौकरी और युवाओं के रोजगार पर भी सबसे बड़ी डकैती डालने का काम ये वही लोग करते थे।
1: सीएम योगी युवाओं को भी साध रहे हैं और महिला वोटरों को अपने पाले में खींचने के लिए योजनाएं भी ला रहे हैं। तो नीट पेपर लीक के खिलाफ छिड़े आंदोलन और विपक्ष के इस मुद्दे की काट निकालने के लिए भी पूरी रणनीति के साथ उतरे हैं
11: कि जो भी पर्चा लीक के इस अनैतिक कार्यों में लिप्त होगा उसको आजन्म कारावास के लिए जेल के अंदर सड़ाएंगे, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे। और ये कार्रवाई यूपी के अंदर हम प्रभावी ढंग से कर रहे हैं, तब हम यूपी के अंदर बिना भेदभाव के आरक्षण की नीति को पालन करते हुए 9.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में हम लोग सफल हुए हैं। जिन्होंने अच्छा किया नहीं वे अच्छा देख भी नहीं सकते, और यह इनकी सबसे बड़ी समस्या है। एक केंद्रीय मंत्री के बारे में समाजवादी पार्टी के मुखिया किस प्रकार की हल्की बातें करते हैं, यह इनकी उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो उन लोगों ने 17 के पहले यूपी के अंदर किया था।
1: यूपी में योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए समाजवादी पार्टी फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, ये शिवपाल सिंह यादव ने कंफर्म कर दिया है। लेकिन कांग्रेस ये स्वीकार कर रही है कि यूपी में बीजेपी को हराना आसान नहीं है।
12: जनता अब की बात, हमारा जो गठबंधन है अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, ये रहेगा और मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे।
13: जो करने काम करने का तरीका है वो सिंपल और साफ है कि लड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि जिसका नतीजा आए, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी होना है उसे तुरंत कर करके जल्दी से हमें मैदान में निकलना चाहिए। बीजेपी हमसे आगे ना निकल जाए, बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है, हवा के अंदर बीजेपी नहीं हार रही है।
1: सीएम योगी की टक्कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ से तगड़ी है, ये कंफर्म है। लेकिन मायावती ने भी चुनावी मैदान में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन बीएसपी में मायावती की बात आते ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की जुबान पर ताला लग जाता है। ये बात तो सबको पता है, लेकिन मायावती के बड़े भतीजे की पहेली का जवाब किसी के पास नहीं है। लखनऊ में पार्टी की ऑल इंडिया स्तर की एक अहम बैठक की अध्यक्षता करने जब मायावती आई तो उनके साथ आकाश आनंद नहीं थे।
14: इधर बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मायावती, वो यहाँ पर पहुँची हैं, और ये पूरे देश भर से अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं। वो अब ऐसे में चूंकि बसपा 2027 की बड़ी तैयारियों के साथ में यहाँ पर है, और इस बार जो जिम्मेदारी है वो उन सभी पर तैयारी की जिम्मेदारी है कि आखिर 2027 में कैसी ये रणनीति तय होगी। आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस बार आकाश आनंद नहीं है, लेकिन साथ में उनके अन्य लोग मौजूद हैं।
1: मायावती के पीछे सबकी नजरें आकाश को ढूंढ रही थी, लेकिन आकाश की जगह उनके छोटे भाई ईशान दिखाई दिए, जो मायावती के कुर्सी पर बैठते ही अपने पिता के साथ चुपचाप बाकी नेताओं के साथ खड़े हो गए। वही आकाश आनंद, जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल कहकर खुद को युवाओं यानी जेन जी के बीच एक युवा विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे थे।
15: सो कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहां भाजपा कर रही है। रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं।
1: 2024 में मायावती का वोट जिस तरह से बिखरा कम हुआ, बाकी पार्टियों में बटा, उसने यूपी का सियासी गणित पलट कर रख दिया। अब सवाल ये है कि क्या अगले साल विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट पूरी तरह बिखर जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी को विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ हथियार बनाया, क्या अब बीजेपी ने उसका तोड़ निकाल लिया है। जी हाँ, ट्रस्ट के नए सीईओ रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र के साथ सवाल आता है कि क्या ट्रस्ट का ट्रस्ट वापस आ पाएगा, और तभी विपक्षी नेताओं के सवाल सियासत को नया मोड़ दे देते हैं। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने तो ये शक जाहिर कर दिया है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर का सच दबाए रखने के लिए सरकार ने जितेंद्र मिश्रा को सीईओ तो नहीं बना दिया। बीजेपी कह रही है कि सेना पर सवाल उठाना और सनातन का अपमान करना कांग्रेस की फितरत रही है।
16: अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर से चढ़ावे की चोरी से राम भक्तों की आस्था को जितनी चोट पहुंची थी उससे ज्यादा हलचल सियासत में मची हुई है। नतीजा यह है कि कल ही भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अफसर जितेंद्र मिश्रा को मंदिर ट्रस्ट का नया सीईओ बनाया गया और आज ही उनकी तैनाती पर सवालों के बौछार किए जाने लगे।
17: लोगों के दिमागों में शक और शुबा पैदा करती है। ऑपरेशन संदूर के अंदर कहीं कोई सच तो नहीं छुपा हुआ, जिस वजह से उन्हें यहां पे सीईओ बनाया गया।
18: कांग्रेस अब मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस हो गई है। राशिद अल्वी जी, आपने उस राज का पर्दाफाश कर दिया, जो हल्का फुल्का भरम का नकाब था वो भी आपने उतार दिया।
19: भाई ये काम साधु संतों का है। अब एयर मार्शल साहब ने हवाई जहाज उड़ाया, हवाई जहाज उड़ा लेते, अब इनके आरएसएस के जंगल में फंस गए वो।
20: एक आदमी जो फौज की कमान संभालता था, इस धार्मिक इदारे की या धार्मिक मंदिर की कमान को कैसे संभाल पाएगा?
21: रिटायर्ड एयरफोर्स मैन बीइंग अपॉइंटेड इटसेल्फ इज अ क्वेश्चनेबल थिंग।
22: मेरिट पर पोस्टिंग नहीं होती है ये, बल्कि जो इस बीजेपी का कोई भी काम अंजाम देता है उसके लिए पोस्टिंग्स होती है।
23: एयर मार्शल लगा हुआ है, अब ये कैसे मार्शल निकलते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
16: जिस जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के इस्लामिक दहशत गर्दों को नेस्तनाबूद किया, S-400 को निशाना बनाने की पाकिस्तानी चाल को नाकाम किया, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, 42 साल की राष्ट्र सेवा में जिस एयर

0: चयन समिति का बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि उन्होंने इतने सब कैंडिडेट्स में से मेरा चयन किया है। इसे मैं श्री राम का आशीर्वाद भी मानूंगा कि 43 वर्ष राष्ट्र सेवा के बाद भारतीय वायुसेना में मुझे श्री राम ने एक और अवसर प्रदान किया है जहां पर मैं श्री राम मंदिर और श्री राम भक्तों की सेवा कर पाऊँ।
1: जितेंद्र मिश्रा राष्ट्र सेवा के बाद राम भक्तों की सेवा को अपनी खुशकिस्मती मानते हैं, लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी की सियासत का हिस्सा बता रहा है। अब सवाल जात पात से लेकर बिजनेस धंधे तक उठ रहे हैं।
2: एक मिश्रा जी गए, निपेंद्र मिश्रा जी गए तो दूसरे आए, क्या कोई दलित ओबीसी नहीं हो सकता था?
3: इसका मतलब सरकार को, मोदी जी को भाजपा आरएसएस वीएचपी के लोगों पर विश्वास नहीं रहा।
4: ये धर्म का स्थान है, भगवान राम का जन्म स्थान है, यहाँ पर परम पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा नामित होना चाहिए, धर्माचार्य को वहाँ बैठाना चाहिए था।
1: राम मंदिर ट्रस्ट में 2 सितंबर को बैठक में बड़े बदलाव हुए हैं। गोविंद देवगिरी को ट्रस्ट का नया महासचिव बनाया गया है, महेश भागचंदका को ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष बनाया गया है, अधिवक्ता मदन मोहन पांडे और शिक्षाविद निर्मला यादव ट्रस्ट में नए सदस्य बनाए गए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अफसर को लेकर उठाए जा रहे हैं।
5: तीर्थ क्षेत्र न्यास का सीईओ बनाए जाने पर भी सेना पर आपत्ति कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी रवायत है, वो देश के सेनाध्यक्ष को गुंडा कहते हैं, वो बार बार सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं और अब एयर मार्शल के सीईओ बनाए जाने पर भी राशिद अल्वी सवाल खड़ा कर रहे हैं।
1: हालांकि विपक्ष के सवाल सिर्फ सेना के अफसर को सीईओ बनाने को नहीं है। विपक्ष आरोप लगाता है कि सेना के अफसर को सीईओ बनाकर सरकार चढ़ावा चोरी के असली गुनहगारों को बचाना चाहती है। विपक्ष की मांग है कि जब तक ट्रस्ट के पुराने जिम्मेदारों पर मुकदमा नहीं होता, सीईओ की तैनाती से पुराने पाप नहीं धुलेंगे, क्योंकि चंदे से चढ़ावे तक में गड़बड़ी के आरोप है जिनकी पूरी जाँच बाकी है।
6: आई एम राइटिंग ए लेटर एंड थोरली इंक्वायरी, एवरी मनी शुड कम टू दी बैक टू दी राम।
7: He may be raided by ED if he finds some real facts behind it.
8: मंदिर का कॉर्पोरेटीकरण हो गया है, बिजनेस हो गया ना। जब बिजनेस होता है तो सीईओ आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, डायरेक्टर्स आते हैं, सब लोग आते हैं।
1: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट पर इतने हमले नहीं हुए जितने सवाल इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर के सीईओ बनाने के बाद हुए हैं। इसमें सवाल ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जाति तक और सेना को धार्मिक मामलों में घसीटने से लेकर चंदा चोरों को बचाने तक के उठाए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
9: उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा ने दावा किया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जिसके लिए वो मान सरकार पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं।
10: एसआईआर पर जारी घमासान के बीच अब पंजाब में राघव चड्ढा को लेकर सियासत तेज हो गई। राघव चड्ढा ने पंजाब सरकार पर वोटर लिस्ट से नाम बाहर करने का आरोप लगाया है। मैं पंजाब में राज्यसभा का मौजूदा सांसद हूं और मेरा वोटर आईडी पंजाब के मोहाली में रजिस्टर्ड है, फिर भी वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में मेरा नाम शिफ्टेड दिखाया गया है। ये सिर्फ कोई क्लर्क की गलती नहीं लगती, ये साफ तौर पर राजनीतिक बदले की भावना का मामला है। हो सकता है कि पंजाब में आपकी सरकार हो, लेकिन पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उनकी निजी संपत्ति नहीं है। उधर मान सरकार के मंत्रियों का कहना है कि ये चुनाव आयोग से जुड़ा मामला है जिसका पंजाब सरकार से कोई लेना देना नहीं है।
11: ये बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट अथॉरिटी भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, ये बता दीजिए, क्योंकि उसको तो इलेक्शन कमीशन को तो वही अपॉइंट करता है, उनको स्टेट तो करती नहीं है।
12: पर उनका कहना है कि जो बीएलओ है या फिर जो पंजाब का
11: वो बहुत बड़े झूठ बोलने के माहिर है, आप उनकी वीडियो निकाल के देख लीजिए। पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दोष लगाए थे, अब उनको दोहरा रहे हैं।
13: पंजाब में 20 लाख लोगों के वोट कट गए और ज्यादातर प्रवासियों के कट गए, जहां इतने प्रवासियों के कट गए वहां एक प्रवासी और कट गए।
10: हालांकि राघव चड्ढा कहते हैं कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है, जहां वो एसआईआर की गाइडलाइन के तहत वापस अपना नाम जुड़वाएंगे, लेकिन इस मुद्दे ने कांग्रेस को एक बार फिर एसआईआर पर हमले का मौका दे दिया है।
14: इलेक्शन कमीशन आम आदमी पार्टी चला रहा है क्या? जो राजदूत का नाम कटा है, जो 3-3 देशों में सेवा देकर आए, उनका नाम किसने कटवा दिया? इसीलिए तो हम एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।
10: राघव चड्ढा

0: पंजाब से पहले आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पंजाब की वोटर लिस्ट में नाम न होने से उनकी राज्यसभा सदस्यता जा सकती है। हालांकि अब नियमों में बदलाव किए जा चुके हैं, जहां राज्यसभा सांसद देश के किसी भी हिस्से में मतदाता के तौर पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: मन से सीएम योगी ने फूका चुनावी बुगुल, बोले यूपी में फिर से धमाकेदार तरीके से बनाएंगे सरकार। अखिलेश परवार, कहा एसपी के मुखिया की भाषा हल्की। बीएसपी में किसी बड़ी जिम्मेदारी देने से मायावती के इनकार के बाद भतीजे आकाश आनंद ने बदला एक्स प्रोफाइल, खुद को लिखा पार्टी कार्यकर्ता, बाबा साहेब की सोच का युवा समर्थक। ममता से अलग होकर एनसीपीआई में शामिल 20 सांसदों को 22 सितंबर तक जवाब देने का मिला वक्त, स्पीकर ओम बिरला ने बढ़ाई मियाद, टीएमसी ममता गुट ने की है सदस्यता रद्द करने की मांग। यूक्रेन के दौरे पर कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, रूस से जारी युद्ध पर जताई चिंता, कहा शांति के पक्ष में है भारत। और बिहार में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, पटना समेत आठ जिलों में हाई अलर्ट, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सतर्क। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए ऐलान जंग शुरू हो गया है। यूपी में योगी सरकार के लिए तीसरे टर्म की चुनौती है, 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर से भी निपटना है। ऐसे में सीएम योगी यूपी में अलग अलग जिलों में धुआंधार दौरे कर रहे हैं, शिलान्यास, लोकार्पण और नई नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। और अब सीएम योगी जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण की धरती मथुरा पहुंचे हुए हैं। यहां योगी आदित्यनाथ ने 1051 करोड़ रुपए की 229 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
1: योगी की घोषणाएं धुआंधार, 2027 में होगी नैया पार। योगी की शिलान्यास पॉलिटिक्स, विपक्ष के पास क्या तोड़ है? जिले दर जिले योगी का प्लान पर योजना, वोटर फिक्स करना।
2: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
1: अब मथुरा को 1051 करोड़ की सौगात, चुनाव में बन जाएगी बात।
3: वृंदावन बिहारी लाल के।
1: योगी की विकास और हिंदुत्व की राजनीति, विपक्ष की क्या है नीति?
4: 1051 करोड़ से अधिक की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जा रहा है।
1: यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीएम योगी के लिए चैलेंज तीसरे टर्म का है तो 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर से निपटने का भी। ऐसे में सीएम योगी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को एक बार फिर पटखनी देने के लिए नए प्लान के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। एक गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से सीएम योगी यूपी में जिले दर जिले घूम रहे हैं, करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की ये शिलान्यास पॉलिटिक्स विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मिश्रण पर आधारित एक सोची समझी चुनावी और प्रशासनिक रणनीति है, जिसके तहत वो यूपी के सभी जिलों में जाकर करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। ये रणनीति जनता के बीच सीधा संवाद बनाने और अखिलेश के पीडीए वाले नैरेटिव को काटने के लिए तैयार की गई है। और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ बांके बिहारी कृष्ण की धरती पर पहुंचे हैं। जन्माष्टमी के मौके पर उन्होंने मथुरा के लिए 1051 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया तो विकास को आधार बनाकर पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार पर प्रहार भी किया।
5: लंबे समय तक हम लोग विकास को केवल सड़क, बिजली, पानी, भवन और उद्योग के चश्मे से हमने देखने की कोशिश की। विकास के नाम पर विरासत का अपमान होता रहा। इतिहास के नायकों को भारतीय स्मृति से मिटाने की कोशिश हुई। पहले विदेशी आक्रांताओं ने हमारे इतिहास को और ऐतिहासिक चिन्हों को नष्ट किया, फिर अंग्रेजों ने और पूर्ववर्ती सरकारों ने तो उस हद को पार कर दिया। मुझे याद है आज जो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी आज अपनी जिस विरासत उत्सव के लिए जाना जा रहा है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या ये आज से पहले यानी 2017 के पहले क्या ये संभव था?
1: मथुरा में सीएम योगी ने ये भी कहा कि कैसे विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, तो उन्होंने वृंदावन से लेकर काशी और अयोध्या का जिक्र किया।
5: एक तरफ इतिहास में मंदिरों पर प्रहार के प्रसंग मिलते हैं और दूसरी ओर उसी कालखंड में ब्रज की धरती में स्वामी हरिदास जी जैसे संत अपनी साधना से संगीत की ऐसी धारा विकसित करते हैं जिसकी गूंज सदियों से चली आ रही है। यही कहानी काशी की भी है। काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ दिया, लेकिन परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही अयोध्या में हुआ। बाबर ने 1528 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को तोड़ करके एक गुलामी का ढांचा बनवा दिया। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है।
1: इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने यूपी दंगों को लेकर पिछली समाजवादी सरकार को टारगेट किया, तो ये भी दावा किया कि अब यूपी कर्फ्यू और दंगा मुक्त हो चुका है।
5: 2016 जून 16 में जिस मथुरा में जवाहर बाग की घटना घटित हुई थी जिसमें 29 लोग मारे गए थे, उपद्रव वही है। बरेली में महीनों महीनों दंगे, सरकारें नतमस्तक होती थी उन दंगाइयों के सामने। नागरगढ़ थी दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित किया जाता था। मुजफ्फरनगर का दंगा कई महीनों तक चला, कर्फ्यू कई महीनों तक चला। अलीगढ़ में दंगा, मेरठ में दंगा, लखनऊ में दंगा, और आज मैं कह सकता हूं कि हमारा यूपी पिछले 9.5 वर्ष से कर्फ्यू से भी मुक्त है, दंगा से भी मुक्त है।
1: मथुरा वृंदावन पर योगी आदित्यनाथ के इस फोकस से फिर मथुरा पर सबकी नजरें टिक गई हैं।
2: वृंदावन बिहारी लाल के,
1: क्योंकि कुछ महीनों में यूपी का चुनाव है, जहां अब की बार अटकलें लग रही हैं कि क्या अब की बार सत्ता का रास्ता मथुरा से होकर जाएगा।
6: वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है। जब जाने की बारी है, जब आपने श्री रामचंद्र जी के नाम का सहारा लिया, तो आपने नाम इसलिए लिया कि आपको वहां पे लूटना था। हम तो कहेंगे कि वहां पे जो भी महंत लोग हैं मथुरा में, अरे भाजपाइयों से सावधान रहो, नहीं तो जो चढ़ावा है वहाँ का, जो चंदा है, उस पर भी निगाह इनकी पड़ चुकी, इनको घुसने मत देना वहाँ पर।
7: जो वामी है, जो कांगी है, जो सपाई है, जो कांग्रेसी है, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है, हिंदुओं को बांटना है, मुसलमानों को एकत्रित करना है और उसके सहारे चुनावी वैतरणी पार करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये जान चुकी है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे।
0: सीएम रहते योगी आदित्यनाथ 43वीं बार मथुरा आए हुए हैं, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राम के बाद अब कृष्ण के सहारे सियासी नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ने से अखिलेश यादव उत्साहित हैं। तो ऐसे में योगी ने मथुरा प्लान और परियोजना पॉलिटिक्स कितनी उनकी काम आने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
1: मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का विवाद अखिलेश यादव के लिए संवेदनशील मसला हो सकता है, क्योंकि खुद को यदुवंशी कृष्ण का वंशज बताने वाले यादव समाज और मुस्लिम समाज को एक साथ साधना उनके लिए चुनौती भरा हो सकता है। अखिलेश इस मुश्किल को समझते हैं, इसलिए वो जितना संभव हो बीजेपी को राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर घेरते हैं और मंदिर की बात पर अपने इटावा के केदारेश्वर महादेव मंदिर की बात करना नहीं भूलते।
8: वन शिव भोले बाबा का मंदिर का निर्माण हम भी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि किस मंदिर में आकर के मुझे पूजा करने का मौका मिलेगा, खैर, लेकिन जब इन्होंने बताया तो ये हमारा सौभाग्य भी है। सौभाग्य हो कितना पौराणिक है और कितनी मान्यता है, लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, तो हमें भी वो मौका मिला। और सच्चाई ये है कि जो नहीं जा पाए या नहीं पहुंच पाए उनके लिए भी हमने मांगा है। और हमारा भी मंदिर जो बन रहा है वो शिव शक्ति अक्ष रेखा पर बन रहा है, जिस पर केदारनाथ है, उज्जैन है, रामेश्वर है, और उसी में इटावा का केदारेश्वर धाम बना रहे हैं।
1: सीएम योगी का मिशन इलेक्शन क्लियर है, अपने काम गिनाना, कानून व्यवस्था, विकास और सरकार की उपलब्धियों को उठाना और समाजवादी पार्टी पर तगड़ा प्रहार करना। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की पिच पर धुआंधार बैटिंग करने के लिए मशहूर हैं, और इसीलिए जब वो शिलान्यास और लोकार्पण की राजनीति कर रहे हैं तो उसमें हिंदुत्व को भी जोड़ते हैं। आपको बता दें, जुलाई 2026 के अंत तक सामने आई रिपोर्ट के अनुसार 3 महीनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 43 जिलों का दौरा करके सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और आधारभूत ढांचे से जुड़ी कुल 36,877 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद अगस्त से लेकर अब तक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जारी है। 7 अगस्त अम्बेडकर नगर 706 करोड़ की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 9 अगस्त सिद्धार्थ नगर 311 करोड़ की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 11 अगस्त संत कबीर नगर 684 करोड़ की 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 24 अगस्त रायबरेली 889 करोड़ की 346 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 29 अगस्त देवरिया 305 करोड़ की 80 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 3 सितंबर मथुरा 1051 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। यानी अब तक सीएम योगी यूपी में जिले दर जिले हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान और शिलान्यास कर चुके हैं, और इसके पीछे योगी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र का बुनियादी ढांचा मजबूत कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी कहती है कि योगी सरकार की शिलान्यास और उद्घाटन की राजनीति केवल दिखावा और चुनावी प्रोपेगेंडा है। आज तक ब्यूरो।
0: सीएम योगी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जिले दर जिले परियोजनाओं वाली पॉलिटिक्स से वोट फिक्स करने में जुटे हैं, तो योगी के इस काट के लिए प्लान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी तैयार कर लिया है, क्योंकि जंतर मंतर के आंदोलन के बाद जेंजी बीजेपी के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का बड़ा फोकस है जेंजी और जैन अल्फा पर। इन सबके बीच मायावती का प्लान भी सबको चौंका रहा है, तो आइए देखते हैं 2027 के ऐलाने जंग में कितनी कितनी तैयारियां हैं।
9: 27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी।
1: जब 2027 की जंग के लिए सियासत धुआंधार हो रही है, तब आज तक के मंच से सीएम योगी ऐलान करते हैं 2027 में फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी और धमाकेदार बनेगी।
9: चिंता मत करिए, हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी।
1: जी हाँ, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जेन जी और जेन अल्फा पर अपनी रणनीति फोकस कर रहे हैं और एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या वो कारगर साबित होगी? आइए आपको पहले अखिलेश यादव का प्लान बताते हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की नजर हर वर्ग को साधने वाले घोषणा पत्र पर है। समाजवादी पार्टी इस बार पुराने वादों के साथ कई नए वादों को जोड़कर ऐसा मैनिफेस्टो तैयार करने में जुटी है, जिसमें युवा, महिलाएं, आउटसोर्स कर्मचारी और अलग अलग जातीय समूहों को साधने की कोशिश होगी। समाजवादी पार्टी का खास फोकस जेन जी और जेन अल्फा पर भी है। पेपर लीक रोकने के पुख्ता इंतजाम, लखनऊ की आईटी सिटी को विस्तार और आईटी कंपनियों को यूपी में लाने का वादा एजेंडे में शामिल हो सकता है। अखिलेश सरकार के चर्चित वादे कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता और मुफ्त लैपटॉप फिर लौट सकते हैं। महिलाओं के लिए सालाना 40,000 रुपए की घोषणा और यश भारती सम्मान की वापसी का भी वादा हो सकता है।
10: बिना आधी आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है। पहले भी समाजवादी सरकार में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो फैसले लिए गए थे, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और देश के लिए उदाहरण बने हैं। हाल ही में जापान का एक डेलीगेशन जब आया तो उस डेलीगेशन को वही 1090 जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, उसी को दिखा करके सरकार ये बताना चाहती है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए वो क्या फैसले और क्या काम कर रहे हैं।
11: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहां माफियाओं को, दंगाइयों को, पेशेवर अपराधियों को पाला, उन्हें प्रोत्साहित किया, उनके सामने नतमस्तक हुआ करते थे। वही लोग यूपी के बीमारूपन के कारण भी थे, यूपी के निवेश के विरोध, यूपी में निवेश के विरोधी भी थे, यूपी में पर्यटन के विरोधी भी थे, यूपी में महिला सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए थे, और उत्तर प्रदेश के युवाओं की नौकरी और युवाओं के रोजगार पर भी सबसे बड़ी डकैती डालने का काम ये वही लोग करते थे।
1: सीएम योगी युवाओं को भी साध रहे हैं और महिला वोटरों को अपने पाले में खींचने के लिए योजनाएं भी ला रहे हैं। तो नीट पेपर लीक के खिलाफ छिड़े आंदोलन और विपक्ष के इस मुद्दे की काट निकालने के लिए भी पूरी रणनीति के साथ उतरे हैं
11: कि जो भी पर्चा लीक के इस अनैतिक कार्यों में लिप्त होगा उसको आजन्म कारावास के लिए जेल के अंदर सड़ाएंगे, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे। और ये कार्रवाई यूपी के अंदर हम प्रभावी ढंग से कर रहे हैं, तब हम यूपी के अंदर बिना भेदभाव के आरक्षण की नीति को पालन करते हुए 9.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में हम लोग सफल हुए हैं। जिन्होंने अच्छा किया नहीं वे अच्छा देख भी नहीं सकते, और यह इनकी सबसे बड़ी समस्या है। एक केंद्रीय मंत्री के बारे में समाजवादी पार्टी के मुखिया किस प्रकार की हल्की बातें करते हैं, यह इनकी उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो उन लोगों ने 17 के पहले यूपी के अंदर किया था।
1: यूपी में योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए समाजवादी पार्टी फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, ये शिवपाल सिंह यादव ने कंफर्म कर दिया है। लेकिन कांग्रेस ये स्वीकार कर रही है कि यूपी में बीजेपी को हराना आसान नहीं है।
12: जनता अब की बात, हमारा जो गठबंधन है अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, ये रहेगा और मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करें।
13: जो करने काम करने का तरीका है वो सिंपल और साफ है कि लड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि जिसका नतीजा आए, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी होना है उसे तुरंत कर करके जल्दी से हमें मैदान में निकलना चाहिए। बीजेपी हमसे आगे ना निकल जाए, बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है, हवा के अंदर बीजेपी नहीं आ रही है।
1: सीएम योगी की टक्कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ से तगड़ी है, ये कंफर्म है। लेकिन मायावती ने भी चुनावी मैदान में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन बीएसपी में मायावती की बात आते ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की जुबान पर ताला लग जाता है। ये बात तो सबको पता है, लेकिन मायावती के बड़े भतीजे की पहेली का जवाब किसी के पास नहीं है। लखनऊ में पार्टी की ऑल इंडिया स्तर की एक अहम बैठक की अध्यक्षता करने जब मायावती आए तो उनके साथ आकाश आनंद नहीं थे।
14: इधर बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मायावती, वो यहाँ पर पहुँची हैं, और ये पूरे देश भर से अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं। वो अब ऐसे में क्योंकि बसपा 2027 की बड़ी तैयारियों के साथ में यहाँ पर है, और इस बार जो जिम्मेदारी है वो उन सभी पर तैयारी की जिम्मेदारी है कि आखिर 2027 में कैसी ये रणनीति तय होगी। आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस बार आकाश आनंद नहीं है, लेकिन साथ में उनके अन्य लोग मौजूद हैं।
1: मायावती के पीछे सबकी नजरें आकाश को ढूंढ रही थी, लेकिन आकाश की जगह उनके छोटे भाई ईशान दिखाई दिए, जो मायावती के कुर्सी पर बैठते ही अपने पिता के साथ चुपचाप बाकी नेताओं के साथ खड़े हो गए। वही आकाश आनंद, जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल कहकर खुद को युवाओं यानी जेन जी के बीच एक युवा विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे थे।
15: सो कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहां भाजपा कर रही है। रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं।
1: 2024 में मायावती का वोट जिस तरह से बिखरा, कम हुआ, बाकी पार्टियों में बटा, उसने यूपी का सियासी गणित पलट कर रख दिया। अब सवाल ये है कि क्या अगले साल विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट पूरी तरह बिखर जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी को विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ हथियार बनाया, क्या अब बीजेपी ने उसका तोड़ निकाल लिया है। जी हाँ, ट्रस्ट के नए सीईओ रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र के साथ सवाल आता है कि क्या ट्रस्ट का ट्रस्ट वापस आ पाएगा, और तभी विपक्षी नेताओं के सवाल सियासत को नया मोड़ दे देते हैं। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने तो ये शक जाहिर कर दिया है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर का सच दबाए रखने के लिए सरकार ने जितेंद्र मिश्रा को सीईओ तो नहीं बना दिया। बीजेपी कह रही है कि सेना पर सवाल उठाना और सनातन का अपमान करना कांग्रेस की फितरत रही है।
16: अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर से चढ़ावे की चोरी से राम भक्तों की आस्था को जितनी चोट पहुंची थी उससे ज्यादा हलचल सियासत में मची हुई है। नतीजा यह है कि कल ही भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अफसर जितेंद्र मिश्रा को मंदिर ट्रस्ट का नया सीईओ बनाया गया और आज ही उनकी तैनाती पर सवालों के बौछार किए जाने लगे।
17: लोगों के दिमागों में शक और शुबा पैदा करती है। ऑपरेशन संदूर के अंदर कहीं कोई सच तो नहीं छुपा हुआ, जिस वजह से उन्हें यहां पे सीईओ बनाया गया।
18: कांग्रेस अब मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस हो गई है। राशिद अल्वी जी, आपने उस राज का पर्दाफाश कर दिया, जो हल्का फुल्का भरम का नकाब था वो भी आपने उतार दिया।
19: भाई ये काम साधु संतों का है, अब एयर मार्शल साहब ने हवाई जहाज उड़ाया, हवाई जहाज उड़ा लेते, अब इनके आरएसएस के जंगल में फंस गए वो।
20: एक आदमी जो फौज की कमान संभालता था, इस धार्मिक इदारे की या धार्मिक मंदिर की कमान को कैसे संभाल पाएगा।
21: रिटायर्ड एयरफोर्स मैन बीइंग अपॉइंटेड इटसेल्फ इज अ क्वेश्चनेबल थिंग।
22: मेरिट पर पोस्टिंग नहीं होती है ये, बल्कि जो इस बीजेपी का कोई भी काम अंजाम देता है उसके लिए पोस्टिंग्स होती है।
23: एयर मार्शल लगा हुआ है, अब ये कैसे मार्शल निकलते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
16: जिस जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के इस्लामिक दहशत गर्दों को नेस्तनाबूद किया, S-400 को निशाना बनाने की पाकिस्तानी चाल को नाकाम किया, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, 42 साल की राष्ट्र सेवा में जिस एयर मार्शल को शौर्य चक्र से विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल तक से सम्मानित किया गया, वो राम मंदिर ट्रस्ट में आकर खुद को धन्य मानते हैं।
24: चयन समिति का बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि उन्होंने इतने सब कैंडिडेट्स में से मेरा चयन किया है। इसे मैं श्री राम का आशीर्वाद भी मानूंगा कि 43 वर्ष राष्ट्र सेवा के बाद भारतीय वायुसेना में मुझे श्री राम ने एक और अवसर प्रदान किया है जहां पर मैं श्री राम मंदिर और श्री राम भक्तों की सेवा कर पाऊँ।
16: जितेंद्र मिश्रा राष्ट्र सेवा के बाद राम भक्तों की सेवा को अपनी खुशकिस्मती मानते हैं, लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी की सियासत का हिस्सा बता रहा है। अब सवाल जात पात से लेकर बिजनेस धंधे तक उठ रहे हैं।
25: एक मिश्रा जी गए, निपेंद्र मिश्रा जी गए तो दूसरे आए, क्या कोई दलित ओबीसी नहीं हो सकता था।
26: इसका मतलब सरकार को, मोदी जी को भाजपा आरएसएस वीएचपी के लोगों पर विश्वास नहीं रहा,
2: ये धर्म का स्थान है, भगवान राम का जन्म स्थान है, यहाँ पर परम पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा नामित होना चाहिए, धर्माचार्य को वहां बैठाना चाहिए था।
3: राम मंदिर ट्रस्ट में 2 सितंबर को बैठक में बड़े बदलाव हुए हैं। गोविंद देवगिरी को ट्रस्ट का नया महासचिव बनाया गया है, महेश भागचंदका को ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष बनाया गया है, अधिवक्ता मदन मोहन पांडे और शिक्षाविद निर्मला यादव ट्रस्ट में नए सदस्य बनाए गए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अफसर को लेकर उठाए जा रहे हैं।
4: तीर्थ क्षेत्र न्यास का सीईओ बनाए जाने पर भी सेना पर आपत्ति कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी रवायत है, वो देश के सेनाध्यक्ष को गुंडा कहते हैं, वो बार बार सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, और अब एयर मार्शल के सीईओ बनाए जाने पर भी राशिद अल्वी सवाल खड़ा कर रहे हैं।
3: हालांकि विपक्ष के सवाल सिर्फ सेना के अफसर को सीईओ बनाने को नहीं है। विपक्ष आरोप लगाता है कि सेना के अफसर को सीईओ बनाकर सरकार चढ़ावा चोरी के असली गुनहगारों को बचाना चाहती है। विपक्ष की मांग है कि जब तक ट्रस्ट के पुराने जिम्मेदारों पर मुकदमा नहीं होता, सीईओ की तैनाती से पुराने पाप नहीं धुलेंगे, क्योंकि चंदे से चढ़ावे तक में गड़बड़ी के आरोप है जिनकी पूरी जाँच बाकी है।
25: आई एम राइटिंग ए लेटर एंड थरोली इंक्वायरी, एवरी मनी शुड कम टू दी बैक टू दी राम।
26: He may be raided by ED if he finds some real facts behind it.
5: मंदिर का कॉर्पोरेटीकरण हो गया है, बिजनेस हो गया ना। जब बिजनेस होता है तो सीईओ आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, डायरेक्टर्स आते हैं, सब लोग आते हैं।
3: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट पर इतने हमले नहीं हुए जितने सवाल इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर के सीईओ बनाने के बाद हुए हैं। इसमें सवाल ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जाति तक और सेना को धार्मिक मामलों में घसीटने से लेकर चंदा चोरों को बचाने तक के उठाए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा ने दावा किया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जिसके लिए वो मान सरकार पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं।
6: SIR पर जारी घमासान के बीच अब पंजाब में राघव चड्ढा को लेकर सियासत तेज हो गई। राघव चड्ढा ने पंजाब सरकार पर वोटर लिस्ट से नाम बाहर करने का आरोप लगाया है। मैं पंजाब में राज्यसभा का मौजूदा सांसद हूं और मेरा वोटर आईडी पंजाब के मोहाली में रजिस्टर्ड है, फिर भी वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में मेरा नाम शिफ्टेड दिखाया गया है। ये सिर्फ कोई क्लर्क की गलती नहीं लगती, ये साफ तौर पर राजनीतिक बदले की भावना का मामला है। हो सकता है कि पंजाब में आपकी सरकार हो, लेकिन पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उनकी निजी संपत्ति नहीं है। उधर मान सरकार के मंत्रियों का कहना है कि ये चुनाव आयोग से जुड़ा मामला है जिसका पंजाब सरकार से कोई लेना देना नहीं है।
7: ये बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट अथॉरिटी भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, ये बता दीजिए, क्योंकि उसको तो इलेक्शन कमीशन को तो वही अपॉइंट करता है, उनको स्टेट तो करती नहीं है।
0: पर उनका कहना कि जो बीएलओ है या फिर जो पंजाब
7: का वो बहुत बड़े झूठ बोलने के माहिर है, आप उनकी वीडियो निकाल के देख लीजिए। पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दोष लगाए थे, अब उनको दोहरा रहे हैं।
8: पंजाब में 20 लाख लोगों के वोट कट गए और ज्यादातर प्रवासियों के कट गए, जहां इतने प्रवासियों के कट गए वहां एक प्रवासी और कट गए।
6: हालांकि राघव चड्ढा कहते हैं कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है, जहां वो SIR की गाइडलाइन के तहत वापस अपना नाम जुड़वाएंगे, लेकिन इस मुद्दे ने कांग्रेस को एक बार फिर SIR पर हमले का मौका दे दिया है।
27: इलेक्शन कमीशन आम आदमी पार्टी चला रहा है क्या? जो राजदूत का नाम कटा है, जो तीन तीन देशों में सेवा देकर आए, उनका नाम किसने कटवा दिया? इसीलिए तो हम SIR की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।
6: राघव चड्ढा पंजाब से पहले आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पंजाब की वोटर लिस्ट में नाम ना होने से उनकी राज्यसभा सदस्यता जा सकती है? हालांकि अब नियमों में बदलाव किए जा चुके हैं, जहां राज्यसभा सांसद देश के किसी भी हिस्से में मतदाता के तौर पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: मन से सीएम योगी ने फूका चुनावी बिगुल, बोले यूपी में फिर से धमाकेदार तरीके से बनाएंगे सरकार। अखिलेश परवार का एसपी के मुखिया की भाषा हल्की। बीएसपी में किसी बड़ी जिम्मेदारी देने से मायावती के इनकार के बाद भतीजे आकाश आनंद ने बदला एक्स प्रोफाइल, खुद को लिखा पार्टी कार्यकर्ता, बाबा साहेब की सोच का युवा समर्थक। ममता से अलग होकर एनसीपीआई में शामिल 20 सांसदों को 22 सितंबर तक जवाब देने का मिला वक्त, स्पीकर ओम बिरला ने बढ़ाई मियाद, टीएमसी ममता गुट ने की है सदस्यता रद्द करने की मांग। यूक्रेन के दौरे पर कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, रूस से जारी युद्ध पर जताई चिंता, कहा शांति के पक्ष में है भारत। और बिहार में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, पटना समेत आठ जिलों में हाई अलर्ट, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सतर्क। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए ऐलाने जंग शुरू हो गया है। यूपी में योगी सरकार के लिए तीसरे टर्म की चुनौती है, 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर से भी निपटना है। ऐसे में सीएम योगी यूपी में अलग अलग जिलों में धुआंधार दौरे कर रहे हैं, शिलान्यास, लोकार्पण और नई नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। और अब सीएम योगी जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण की धरती मथुरा पहुंचे हुए हैं। यहां योगी आदित्यनाथ ने 1051 करोड़ रुपए की 229 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
1: योगी की घोषणाएं धुआंधार, 2027 में होगी नैया पार। योगी की शिलान्यास पॉलिटिक्स, विपक्ष के पास क्या तोड़ है? जिले दर जिले योगी का प्लान पर योजना, वोटर फिक्स करना।
2: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
1: अब मथुरा को 1051 करोड़ की सौगात, चुनाव में बन जाएगी बात।
2: वृंदावन बिहारी लाल के।
1: योगी की विकास और हिंदुत्व की राजनीति, विपक्ष की क्या है नीति?
3: 1051 करोड़ से अधिक की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जा रहा है।
1: यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीएम योगी के लिए चैलेंज तीसरे टर्म का है तो 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर से निपटने का भी। ऐसे में सीएम योगी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को एक बार फिर पटखनी देने के लिए नए प्लान के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। एक गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से सीएम योगी यूपी में जिले दर जिले घूम रहे हैं, करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की ये शिलान्यास पॉलिटिक्स, विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मिश्रण पर आधारित एक सोची समझी चुनावी और प्रशासनिक रणनीति है, जिसके तहत वो यूपी के सभी जिलों में जाकर करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। ये रणनीति जनता के बीच सीधा संवाद बनाने और अखिलेश के पीडीए वाले नैरेटिव को काटने के लिए तैयार की गई है। और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ बांके बिहारी कृष्ण की धरती पर पहुंचे हैं। जन्माष्टमी के मौके पर उन्होंने मथुरा के लिए 1051 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया तो विकास को आधार बनाकर पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार पर प्रहार भी किया।
4: लंबे समय पर हम लोग विकास को केवल सड़क, बिजली, पानी, भवन और उद्योग के चश्मे से हमने देखने की कोशिश की। विकास के नाम पर विरासत का अपमान होता रहा। इतिहास के नायकों को भारतीय स्मृति से मिटाने की कोशिश हुई। पहले विदेशी आक्रांताओं ने हमारे इतिहास को और ऐतिहासिक चिन्हों को नष्ट किया, फिर अंग्रेजों ने और पूर्ववर्ती सरकारों ने तो उस हद को पार कर दिया। मुझे याद है आज जो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी आज अपनी जिस विरासत उत्सव के लिए जाना जा रहा है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या ये आज से पहले यानी 2017 के पहले क्या ये संभव था?
1: मथुरा में सीएम योगी ने ये भी कहा कि कैसे विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, तो उन्होंने वृंदावन से लेकर काशी और अयोध्या का जिक्र किया।
4: एक तरफ इतिहास में मंदिरों पर प्रहार के प्रसंग मिलते हैं और दूसरी ओर उसी कालखंड में ब्रज की धरती में स्वामी हरिदास जी जैसे संत अपनी साधना से संगीत की ऐसी धारा विकसित करते हैं जिसकी गूंज सदियों से चली आ रही है। यही कहानी काशी की भी है। काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ दिया, लेकिन परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। लोग माता अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही अयोध्या में हुआ। बाबर ने 1528 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को तोड़ करके एक गुलामी का ढांचा बनवा दिया। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है।
1: इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने यूपी दंगों को लेकर पिछली समाजवादी सरकार को टारगेट किया, तो ये भी दावा किया कि अब यूपी कर्फ्यू और दंगा मुक्त हो चुका है।
4: 2016 जून 16 में जिस मथुरा में जवाहर बाग की घटना घटित हुई थी जिसमें 29 लोग मारे गए थे, उपद्रव वही है। बरेली में महीनों महीनों दंगे, सरकारें नतमस्तक होती थी उन दंगाइयों के सामने। नागरगढ़ की थी, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित किया जाता था। मुजफ्फरनगर का दंगा कई महीनों तक चला, कर्फ्यू कई महीनों तक चला। अलीगढ़ में दंगा, मेरठ में दंगा, लखनऊ में दंगा, और आज मैं कह सकता हूं कि हमारा यूपी पिछले 9.5 वर्ष से कर्फ्यू से भी मुक्त है, दंगा से भी मुक्त है।
1: मथुरा वृंदावन पर योगी आदित्यनाथ के इस फोकस से फिर मथुरा पर सबकी नजरें टिक गई हैं।
2: वृंदावन बिहारी लाल के,
1: क्योंकि कुछ महीनों में यूपी का चुनाव है, जहां अब की बार अटकलें लग रही हैं कि क्या अब की बार सत्ता का रास्ता मथुरा से होकर जाएगा।
5: वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है। जब जाने की बारी है, जब आपने श्री रामचंद्र जी के नाम का सहारा लिया, तो आपने नाम इसलिए लिया कि आपको वहां पे लूटना था। हम तो कहेंगे कि वहां पे जो भी महंत लोग हैं मथुरा में, अरे भाजपाइयों से सावधान रहो, नहीं तो जो चढ़ावा है वहां का, जो चंदा है, उस पर भी निगाह इनकी पड़ चुकी, इनको घुसने मत देना वहां पर।
6: जो वामी है, जो कांगी है, जो सपाई है, जो कांग्रेसी है, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है, हिंदुओं को बांटना है, मुसलमानों को एकत्रित करना है और उसके सहारे चुनावी वैतरणी पार करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये जान चुकी है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे।
0: सीएम रहते योगी आदित्यनाथ 43वीं बार मथुरा आए हुए हैं, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राम के बाद अब कृष्ण के सहारे सियासी नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ने से अखिलेश यादव उत्साहित हैं। तो ऐसे में योगी ने मथुरा प्लान और परियोजना पॉलिटिक्स कितनी उनकी काम आने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
1: मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का विवाद अखिलेश यादव के लिए संवेदनशील मसला हो सकता है, क्योंकि खुद को यदुवंशी कृष्ण का वंशज बताने वाले यादव समाज और मुस्लिम समाज को एक साथ साधना उनके लिए चुनौती भरा हो सकता है। अखिलेश इस मुश्किल को समझते हैं, इसलिए वो जितना संभव हो बीजेपी को राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर घेरते हैं और मंदिर की बात पर अपने इटावा के केदारेश्वर महादेव मंदिर की बात करना नहीं भूलते।
7: भगवान शिव भोले बाबा का मंदिर का निर्माण हम भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि किस मंदिर में आकर के मुझे पूजा करने का मौका मिलेगा। खैर, लेकिन जब इन्होंने बताया तो ये हमारा सौभाग्य भी है। सौभाग्य हो कितना पौराणिक है और कितनी मान्यता है, लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, तो हमें भी वो मौका मिला। और सच्चाई ये है कि जो नहीं जा पाए या नहीं पहुंच पाए उनके लिए भी हमने मांगा है। और हमारा भी मंदिर जो बन रहा है वो शिव शक्ति अक्ष रेखा पर बन रहा है, जिस पर केदारनाथ है, उज्जैन है, रामेश्वर है, और उसी में इटावा का केदारेश्वर धाम बना रहे हैं।
1: सीएम योगी का मिशन इलेक्शन क्लियर है, अपने काम गिनाना, कानून व्यवस्था, विकास और सरकार की उपलब्धियों को उठाना और समाजवादी पार्टी पर तगड़ा प्रहार करना। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की पिच पर धुआंधार बैटिंग करने के लिए मशहूर हैं, और इसीलिए जब वो शिलान्यास और लोकार्पण की राजनीति कर रहे हैं तो उसमें हिंदुत्व को भी जोड़ते हैं। आपको बता दें, जुलाई 2026 के अंत तक सामने आई रिपोर्ट के अनुसार 3 महीनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 43 जिलों का दौरा करके सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और आधारभूत ढांचे से जुड़ी कुल 36,877 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद अगस्त से लेकर अब तक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जारी है। 7 अगस्त अम्बेडकर नगर, 706 करोड़ की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 9 अगस्त सिद्धार्थ नगर, 311 करोड़ की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 11 अगस्त संत कबीर नगर, 684 करोड़ की 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 24 अगस्त रायबरेली, 889 करोड़ की 346 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 29 अगस्त देवरिया, 305 करोड़ की 80 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 3 सितंबर मथुरा, 1051 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। यानी अब तक सीएम योगी यूपी में जिले दर जिले हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान और शिलान्यास कर चुके हैं, और इसके पीछे योगी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र का बुनियादी ढांचा मजबूत कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी कहती है कि योगी सरकार की शिलान्यास और उद्घाटन की राजनीति केवल दिखावा और चुनावी प्रोपेगेंडा है। आज तक ब्यूरो।
0: सीएम योगी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जिले दर जिले परियोजनाओं वाली पॉलिटिक्स से वोट फिक्स करने में जुटे हैं, तो योगी के इस काट के लिए प्लान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी तैयार कर लिया है, क्योंकि जंतर मंतर के आंदोलन के बाद जेंजी बीजेपी के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का बड़ा फोकस है जेंजी और जैन अल्फा पर। इन सबके बीच मायावती का प्लान भी सबको चौंका रहा है, तो आइए देखते हैं 2027 के ऐलाने जंग में कितनी कितनी तैयारियां हैं।
8: 27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी।
1: जब 2027 की जंग के लिए सियासत धुआंधार हो रही है, तब आज तक के मंच से सीएम योगी ऐलान करते हैं 2027 में फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी और धमाकेदार बनेगी।
8: चिंता मत करिए, हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी।
1: जी हाँ, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जेन जी और जेन अल्फा पर अपनी रणनीति फोकस कर रहे हैं और एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या वो कारगर साबित होगी? आइए आपको पहले अखिलेश यादव का प्लान बताते हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की नजर हर वर्ग को साधने वाले घोषणा पत्र पर है। समाजवादी पार्टी इस बार पुराने वादों के साथ कई नए वादों को जोड़कर ऐसा मैनिफेस्टो तैयार करने में जुटी है जिसमें युवा, महिलाएं, आउटसोर्स कर्मचारी और अलग अलग जातीय समूहों को साधने की कोशिश होगी। समाजवादी पार्टी का खास फोकस जेन जी और जेन अल्फा पर भी है। पेपर लीक रोकने के पुख्ता इंतजाम, लखनऊ की आईटी सिटी को विस्तार और आईटी कंपनियों को यूपी में लाने का वादा एजेंडे में शामिल हो सकता है। अखिलेश सरकार के चर्चित वादे कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता और मुफ्त लैपटॉप फिर लौट सकते हैं। महिलाओं के लिए सालाना 40,000 रुपए की घोषणा और यश भारती सम्मान की वापसी का भी वादा हो सकता है।
9: बिना आधी आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है। पहले भी समाजवादी सरकार में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो फैसले लिए गए थे, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और देश के लिए उदाहरण बने हैं। हाल ही में जापान का एक डेलीगेशन जब आया तो उस डेलीगेशन को वही 1090 जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, उसी को दिखा करके सरकार ये बताना चाहती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो क्या फैसले और क्या काम कर रहे हैं।
10: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहां माफियाओं को, दंगाइयों को, पेशेवर अपराधियों को पाला, उन्हें प्रोत्साहित किया, उनके सामने नतमस्तक हुआ करते थे। वही लोग यूपी के बीमारूपन के कारण भी थे, यूपी के निवेश के विरोध, यूपी में निवेश के विरोधी भी थे, यूपी में पर्यटन के विरोधी भी थे, यूपी में महिला सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए थे और उत्तर प्रदेश के युवाओं की नौकरी और युवाओं के रोजगार पर भी सबसे बड़ी डकैती डालने का काम ये वही लोग करते थे।
1: सीएम योगी युवाओं को भी साध रहे हैं और महिला वोटरों को अपने पाले में खींचने के लिए योजनाएं भी ला रहे हैं। तो नीट पेपर लीक के खिलाफ छिड़े आंदोलन और विपक्ष के इस मुद्दे की काट निकालने के लिए भी पूरी रणनीति के साथ उतरे हैं
10: कि जो भी पर्चा लीक के इस अनैतिक कार्यों में लिप्त होगा उसको आजन्म कारावास के लिए जेल के अंदर सड़ाएंगे, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे। और ये कार्रवाई यूपी के अंदर हम प्रभावी ढंग से कर रहे हैं, तब हम यूपी के अंदर बिना भेदभाव के आरक्षण की नीति को पालन करते हुए 9.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में हम लोग सफल हुए हैं। जिन्होंने अच्छा किया नहीं वे अच्छा देख भी नहीं सकते और यह इनकी सबसे बड़ी समस्या है। एक केंद्रीय मंत्री के बारे में समाजवादी पार्टी के मुखिया किस प्रकार की हल्की बातें करते हैं, यह इनकी उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो उन लोगों ने 17 के पहले यूपी के अंदर किया था।
1: यूपी में योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए समाजवादी पार्टी फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, ये शिवपाल सिंह यादव ने कंफर्म कर दिया है। लेकिन कांग्रेस ये स्वीकार कर रही है कि यूपी में बीजेपी को हराना आसान नहीं है।
11: जनता अब की बात, हमारा जो गठबंधन है अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, ये रहेगा और मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा।
12: जो करने काम करने का तरीका है वो सिंपल और साफ है कि लड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि जिसका नतीजा आए, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी होना है उसे तुरंत कर करके जल्दी से हमें मैदान में निकलना चाहिए। बीजेपी हमसे आगे ना निकल जाए, बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है, हवा के अंदर बीजेपी नहीं आ रही है।
1: सीएम योगी की टक्कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ से तगड़ी है, ये कंफर्म है। लेकिन मायावती ने भी चुनावी मैदान में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन बीएसपी में मायावती की बात आते ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की जुबान पर ताला लग जाता है। ये बात तो सबको पता है लेकिन मायावती के बड़े भतीजे की पहेली का जवाब किसी के पास नहीं है। लखनऊ में पार्टी की ऑल इंडिया स्तर की एक अहम बैठक की अध्यक्षता करने जब मायावती आई तो उनके साथ आकाश आनंद नहीं थे।
13: इधर बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मायावती, वो यहाँ पर पहुँची हैं और ये पूरे देश भर से अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं। वो अब ऐसे में चूंकि बसपा 2027 की बड़ी तैयारियों के साथ में यहाँ पर है और इस बार जो जिम्मेदारी है वो उन सभी पर तैयारी की जिम्मेदारी है कि आखिर 2027 में कैसी ये रणनीति तय होगी। आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस बार आकाश आनंद नहीं है लेकिन साथ में उनके अन्य लोग मौजूद हैं।
1: मायावती के पीछे सबकी नजरें आकाश को ढूंढ रही थी, लेकिन आकाश की जगह उनके छोटे भाई ईशान दिखाई दिए, जो मायावती के कुर्सी पर बैठते ही अपने पिता के साथ चुपचाप बाकी नेताओं के साथ खड़े हो गए। वही आकाश आनंद, जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल कहकर खुद को युवाओं यानी जेन जी के बीच एक युवा विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे थे।
14: सो कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहां भाजपा कर रही है। रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताएं।
1: 2024 में मायावती का वोट जिस तरह से बिखरा, कम हुआ, बाकी पार्टियों में बटा, उसने यूपी का सियासी गणित पलट कर रख दिया। अब सवाल ये है कि क्या अगले साल विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट पूरी तरह बिखर जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी को विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ हथियार बनाया, क्या अब बीजेपी ने उसका तोड़ निकाल लिया है। जी हाँ, ट्रस्ट के नए सीईओ रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र के साथ सवाल आता है कि क्या ट्रस्ट का ट्रस्ट वापस आ पाएगा, और तभी विपक्षी नेताओं के सवाल सियासत को नया मोड़ दे देते हैं। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने तो ये शक जाहिर कर दिया है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर का सच दबाए रखने के लिए सरकार ने जितेंद्र मिश्रा को सीईओ तो नहीं बना दिया। बीजेपी कह रही है कि सेना पर सवाल उठाना और सनातन का अपमान करना कांग्रेस की फितरत रही है।
15: अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर से चढ़ावे की चोरी से राम भक्तों की आस्था को जितनी चोट पहुंची थी उससे ज्यादा हलचल सियासत में मची हुई है। नतीजा यह है कि कल ही भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अफसर जितेंद्र मिश्रा को मंदिर ट्रस्ट का नया सीईओ बनाया गया और आज ही उनकी तैनाती पर सवालों के बौछार किए जाने लगे।
16: लोगों के दिमागों में शक और शुबा पैदा करती है। ऑपरेशन संदूर के अंदर कहीं कोई सच तो नहीं छुपा हुआ जिस वजह से उन्हें यहां पे सीईओ बनाया गया।
17: कांग्रेस अब मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस हो गई है। राशिद अल्वी जी, आपने उस राज का पर्दाफाश कर दिया जो हल्का फुल्का भरम का नकाब था, वो भी आपने उतार दिया।
18: भाई ये काम साधु संतों का है। अब एयर मार्शल साहब ने हवाई जहाज उड़ाया, हवाई जहाज उड़ा लेते, अब इनके आरएसएस के जंगल में फंस गए वो।
19: एक आदमी जो फौज की कमान संभालता था, इस धार्मिक इदारे की या धार्मिक मंदिर की कमान को कैसे संभाल पाएगा?
20: रिटायर्ड एयरफोर्स मैन बीइंग अपॉइंटेड इटसेल्फ इज अ क्वेश्चनेबल थिंग।
21: मेरिट पर पोस्टिंग नहीं होती है, बल्कि जो इस बीजेपी का कोई भी काम अंजाम देता है उसके लिए पोस्टिंग्स होती है।
22: एयर मार्शल लगा हुआ है, अब ये कैसे मार्शल निकलते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
15: जिस जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के इस्लामिक दहशत गर्दों को नेस्तनाबूद किया, S-400 को निशाना बनाने की पाकिस्तानी चाल को नाकाम किया, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, 42 साल की राष्ट्र सेवा में जिस एयर मार्शल को शौर्य चक्र से विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल तक से सम्मानित किया गया, वो राम मंदिर ट्रस्ट में आकर खुद को धन्य मानते हैं।
23: चयन समिति का बहुत हार्दिक रूप से

0: श्री राम का आशीर्वाद भी मानूंगा कि 43 वर्ष राष्ट्र सेवा के बाद भारतीय वायुसेना में मुझे श्री राम ने एक और अवसर प्रदान किया है जहां पर मैं श्री राम मंदिर और श्री राम भक्तों की सेवा कर पाऊँ।
1: जितेंद्र मिश्रा राष्ट्र सेवा के बाद राम भक्तों की सेवा को अपनी खुशकिस्मती मानते हैं, लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी की सियासत का हिस्सा बता रहा है। अब सवाल जात पात से लेकर बिजनेस धंधे तक उठ रहे हैं।
2: एक मिश्रा जी गए, नृपेंद्र मिश्रा जी गए तो दूसरे आए, क्या कोई दलित ओबीसी नहीं हो सकता था?
3: इसका मतलब सरकार को, मोदी जी को भाजपा आरएसएस वीएचपी के लोगों पर विश्वास नहीं रहा।
4: ये धर्म का स्थान है, भगवान राम का जन्म स्थान है, यहाँ पर परम पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा नामित होना चाहिए, धर्माचार्य को वहाँ बैठाना चाहिए था।
1: राम मंदिर ट्रस्ट में 2 सितंबर को बैठक में बड़े बदलाव हुए हैं। गोविंद देवगिरी को ट्रस्ट का नया महासचिव बनाया गया है, महेश भागचंदका को ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष बनाया गया है, अधिवक्ता मदन मोहन पांडे और शिक्षाविद निर्मला यादव ट्रस्ट में नए सदस्य बनाए गए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अफसर को लेकर उठाए जा रहे हैं।
5: तीर्थ क्षेत्र न्यास का सीईओ बनाए जाने पर भी सेना पर आपत्ति कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी रवायत है, वो देश के सेनाध्यक्ष को गुंडा कहते हैं, वो बार बार सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, और अब एयर मार्शल के सीईओ बनाए जाने पर भी राष्ट्रीय दल भी सवाल खड़ा कर रहे हैं।
1: हालांकि विपक्ष के सवाल सिर्फ सेना के अफसर को सीईओ बनाने को नहीं है। विपक्ष आरोप लगाता है कि सेना के अफसर को सीईओ बनाकर सरकार चढ़ावा चोरी के असली गुनहगारों को बचाना चाहती है। विपक्ष की मांग है कि जब तक ट्रस्ट के पुराने जिम्मेदारों पर मुकदमा नहीं होता, सीईओ की तैनाती से पुराने पाप नहीं धुलेंगे, क्योंकि चंदे से चढ़ावे तक में गड़बड़ी के आरोप हैं, जिनकी पूरी जांच बाकी है।
6: आई एम राइटिंग ए लेटर एंड थरूली इंक्वायरी, एवरी मनी शुड कम टू दी बैक टू दी राम।
7: He may be raided by ED if he finds some real facts behind it.
8: मंदिर का कॉर्पोरेटीकरण हो गया है, बिजनेस हो गया ना। जब बिजनेस होता है तो सीईओ आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, डायरेक्टर्स आते हैं, सब लोग आते हैं।
1: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट पर इतने हमले नहीं हुए जितने सवाल इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर के सीईओ बनाने के बाद हुए हैं। इसमें सवाल ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जाति तक और सेना को धार्मिक मामलों में घसीटने से लेकर चंदा चोरों को बचाने तक के उठाए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
9: उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा ने दावा किया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जिसके लिए वो मान सरकार पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं।
10: एसआईआर पर जारी घमासान के बीच अब पंजाब में राघव चड्ढा को लेकर सियासत तेज हो गई। राघव चड्ढा ने पंजाब सरकार पर वोटर लिस्ट से नाम बाहर करने का आरोप लगाया है। मैं पंजाब में राज्यसभा का मौजूदा सांसद हूं और मेरा वोटर आईडी पंजाब के मोहाली में रजिस्टर्ड है, फिर भी वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में मेरा नाम शिफ्टेड दिखाया गया है। ये सिर्फ कोई क्लर्क की गलती नहीं लगती, ये साफ तौर पर राजनीतिक बदले की भावना का मामला है। हो सकता है कि पंजाब में आपकी सरकार हो, लेकिन पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उनकी निजी संपत्ति नहीं है। उधर मान सरकार के मंत्रियों का कहना है कि ये चुनाव आयोग से जुड़ा मामला है जिसका पंजाब सरकार से कोई लेना देना नहीं है।
11: ये बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट अथॉरिटी भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, ये बता दीजिए, क्योंकि उसको तो इलेक्शन कमीशन को तो वही अपॉइंट करता है, उनको स्टेट तो करती नहीं है।
12: पर उनका कहना है कि जो बीएलओ है या फिर जो पंजाब का
11: वो बहुत बड़े झूठ बोलने के माहिर है, आप उनकी वीडियो निकाल के देख लीजिए। पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दोष लगाए थे, अब उनको दोहरा रहे हैं।
13: पंजाब में 20 लाख लोगों के वोट कट गए और ज्यादातर प्रवासियों के कट गए, जहां इतने प्रवासियों के कट गए वहां एक प्रवासी और कट गए।
10: हालांकि राघव चड्ढा कहते हैं कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है, जहां वो एसआईआर की गाइडलाइन के तहत वापस अपना नाम जुड़वाएंगे, लेकिन इस मुद्दे ने कांग्रेस को एक बार फिर एसआईआर पर हमले का मौका दे दिया है।
14: इलेक्शन कमीशन आम आदमी पार्टी चला रहा है क्या? जो राजदूत का नाम कटा है, जो 3-3 देशों में सेवा देकर आए, उनका नाम किसने कटवा दिया? इसीलिए तो हम एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।
10: राघव चड्ढा पंजाब से पहले आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पंजाब की वोटर लिस्ट में नाम ना होने से उनकी राज्यसभा सदस्यता जा सकती है? हालांकि अब नियमों में बदलाव किए जा चुके हैं, जहां राज्यसभा सांसद

0: देश के किसी भी हिस्से में मतदाता के तौर पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: सीएम योगी ने फूका चुनावी बिगुल, बोले यूपी में फिर से धमाकेदार तरीके से बनाएंगे सरकार। अखिलेश परवार, कहा एसपी के मुखिया की भाषा हल्की। बीएसपी में किसी बड़ी जिम्मेदारी देने से मायावती के इनकार के बाद भतीजे आकाश आनंद ने बदला एक्स प्रोफाइल, खुद को लिखा पार्टी कार्यकर्ता, बाबा साहेब की सोच का युवा समर्थक। ममता से अलग होकर एनसीपीआई में शामिल 20 सांसदों को 22 सितंबर तक जवाब देने का मिला वक्त, स्पीकर ओम बिरला ने बढ़ाई मियाद, टीएमसी ममता गुट ने की है सदस्यता रद्द करने की मांग। यूक्रेन के दौरे पर कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, रूस से जारी युद्ध पर जताई चिंता, कहा शांति के पक्ष में है भारत। और बिहार में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, पटना समेत आठ जिलों में हाई अलर्ट, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सतर्क। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए ऐलान जंग शुरू हो गया है। यूपी में योगी सरकार के लिए तीसरे टर्म की चुनौती है, 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर से भी निपटना है। ऐसे में सीएम योगी यूपी में अलग अलग जिलों में धुआंधार दौरे कर रहे हैं, शिलान्यास, लोकार्पण और नई नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। और अब सीएम योगी जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण की धरती मथुरा पहुंचे हुए हैं। यहां योगी आदित्यनाथ ने 1,051 करोड़ रुपए की 229 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
1: योगी की घोषणाएं धुआंधार, 2027 में होगी नैया पार। योगी की शिलान्यास पॉलिटिक्स, विपक्ष के पास क्या तोड़ है? जिले दर जिले योगी का प्लान पर योजना, वोटर फिक्स करना।
2: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
1: अब मथुरा को 1,051 करोड़ की सौगात, चुनाव में बन जाएगी बात।
3: वृंदावन बिहारी लाल के।
1: योगी की विकास और हिंदुत्व की राजनीति, विपक्ष की क्या है नीति?
4: 1,051 करोड़ से अधिक की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जा रहा है।
1: यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीएम योगी के लिए चैलेंज तीसरे टर्म का है तो 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर से निपटने का भी। ऐसे में सीएम योगी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को एक बार फिर पटखनी देने के लिए नए प्लान के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। एक गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से सीएम योगी यूपी में जिले दर जिले घूम रहे हैं, करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की ये शिलान्यास पॉलिटिक्स विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मिश्रण पर आधारित एक सोची समझी चुनावी और प्रशासनिक रणनीति है, जिसके तहत वो यूपी के सभी जिलों में जाकर करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। ये रणनीति जनता के बीच सीधा संवाद बनाने और अखिलेश के पीडीए वाले नैरेटिव को काटने के लिए तैयार की गई है। और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ बांके बिहारी कृष्ण की धरती पर पहुंचे हैं। जन्माष्टमी के मौके पर उन्होंने मथुरा के लिए 1,051 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया तो विकास को आधार बनाकर पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार पर प्रहार भी किया।
5: लंबे समय पर हम लोग विकास को केवल सड़क, बिजली, पानी, भवन और उद्योग के चश्मे से हमने देखने की कोशिश की। विकास के नाम पर विरासत का अपमान होता रहा, इतिहास के नायकों को भारतीय स्मृति से मिटाने की कोशिश हुई। पहले विदेशी आक्रांताओं ने हमारे इतिहास को और ऐतिहासिक चिन्हों को नष्ट किया, फिर अंग्रेजों ने और पूर्ववर्ती सरकारों ने तो उस हद को पार कर दिया। मुझे याद है आज जो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी आज अपनी जिस विरासत उत्सव के लिए जाना जा रहा है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या ये आज से पहले यानी 2017 के पहले क्या ये संभव था?
1: मथुरा में सीएम योगी ने ये भी कहा कि कैसे विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, तो उन्होंने वृंदावन से लेकर काशी और अयोध्या का जिक्र किया।
5: एक तरफ इतिहास में मंदिरों पर प्रहार के प्रसंग मिलते हैं और दूसरी ओर उसी कालखंड में ब्रज की धरती में स्वामी हरिदास जी जैसे संत अपनी साधना से संगीत की ऐसी धारा विकसित करते हैं जिसकी गूंज सदियों से चली आ रही है। यही कहानी काशी की भी है। काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ दिया, लेकिन परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। लोग माता अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही अयोध्या में हुआ। बाबर ने 1528 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को तोड़ करके एक गुलामी का ढांचा बनवा दिया। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है।
1: इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने यूपी दंगों को लेकर पिछली समाजवादी सरकार को टारगेट किया, तो ये भी दावा किया कि अब यूपी कर्फ्यू और दंगा मुक्त हो चुका है।
5: 2016 जून 16 में जिसम
0: सीएम रहते योगी आदित्यनाथ 43वीं बार मथुरा आए हुए हैं, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राम के बाद अब कृष्ण के सहारे सियासी नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ने से अखिलेश यादव उत्साहित हैं। तो ऐसे में योगी ने मथुरा प्लान और परियोजना पॉलिटिक्स कितनी उनकी काम आने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
1: मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का विवाद अखिलेश यादव के लिए संवेदनशील मसला हो सकता है, क्योंकि खुद को यदुवंशी कृष्ण का वंशज बताने वाले यादव समाज और मुस्लिम समाज को एक साथ साधना उनके लिए चुनौती भरा हो सकता है। अखिलेश इस मुश्किल को समझते हैं, इसलिए वो जितना संभव हो बीजेपी को राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर घेरते हैं और मंदिर की बात पर अपने इटावा के केदारेश्वर महादेव मंदिर की बात करना नहीं भूलते।
6: भगवान शिव भोले बाबा का मंदिर का निर्माण हम भी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि किस मंदिर में आकर के मुझे पूजा करने का मौका मिलेगा, खैर, लेकिन जब इन्होंने बताया तो ये हमारा सौभाग्य भी है। सौभाग्य हो कितना पौराणिक है और कितनी मान्यता है, लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, तो हमें भी वो मौका मिला। और सच्चाई ये है कि जो नहीं जा पाए या नहीं पहुंच पाए उनके लिए भी हमने मांगा है। और हमारा भी मंदिर जो बन रहा है वो शिव शक्ति अक्ष रेखा पर बन रहा है, जिस पर केदारनाथ है, उज्जैन है, रामेश्वर है, और उसी में इटावा का केदारेश्वर धाम बना रहे हैं।
1: सीएम योगी का मिशन इलेक्शन क्लियर है, अपने काम गिनाना, कानून व्यवस्था, विकास और सरकार की उपलब्धियों को उठाना और समाजवादी पार्टी पर तगड़ा प्रहार करना। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की पिच पर धुआंधार बैटिंग करने के लिए मशहूर हैं, और इसीलिए जब वो शिलान्यास और लोकार्पण की राजनीति कर रहे हैं तो उसमें हिंदुत्व को भी जोड़ते हैं। आपको बता दें, जुलाई 2026 के अंत तक सामने आई रिपोर्ट के अनुसार 3 महीनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 43 जिलों का दौरा करके सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और आधारभूत ढांचे से जुड़ी कुल 36,877 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद अगस्त से लेकर अब तक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जारी है। 7 अगस्त अम्बेडकर नगर 706 करोड़ की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 9 अगस्त सिद्धार्थ नगर 311 करोड़ की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 11 अगस्त संत कबीर नगर 684 करोड़ की 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 24 अगस्त रायबरेली 889 करोड़ की 346 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 29 अगस्त देवरिया 305 करोड़ की 80 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 3 सितंबर मथुरा 1051 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। यानी अब तक सीएम योगी यूपी में जिले दर जिले हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान और शिलान्यास कर चुके हैं, और इसके पीछे योगी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र का बुनियादी ढांचा मजबूत कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी कहती है कि योगी सरकार की शिलान्यास और उद्घाटन की राजनीति केवल दिखावा और चुनावी प्रोपेगेंडा है। आज तक ब्यूरो।
0: सीएम योगी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जिले दर जिले परियोजनाओं वाली पॉलिटिक्स से वोट फिक्स करने में जुटे हैं, तो योगी के इस काट के लिए प्लान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी तैयार कर लिया है, क्योंकि जंतर मंतर के आंदोलन के बाद जेंजी बीजेपी के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का बड़ा फोकस है जेंजी और जैन अल्फा पर। इन सबके बीच मायावती का प्लान भी सबको चौंका रहा है, तो आइए देखते हैं 2027 के ऐलाने जंग में कितनी कितनी तैयारियां हैं।
7: 27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी।
1: जब 2027 की जंग के लिए सियासत धुआंधार हो रही है, तब आज तक के मंच से सीएम योगी ऐलान करते हैं 2027 में फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी और धमाकेदार बनेगी।
7: चिंता मत करिए, हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी।
1: जी हाँ, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जेन जी और जेन अल्फा पर अपनी रणनीति फोकस कर रहे हैं और एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या वो कारगर साबित होगी? आइए आपको पहले अखिलेश यादव का प्लान बताते हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की नजर हर वर्ग को साधने वाले घोषणा पत्र पर है। समाजवादी पार्टी इस बार पुराने वादों के साथ कई नए वादों को जोड़कर ऐसा मैनिफेस्टो तैयार करने में जुटी है, जिसमें युवा, महिलाएं, आउटसोर्स कर्मचारी और अलग अलग जातीय समूहों को साधने की कोशिश होगी। समाजवादी पार्टी का खास फोकस जेन जी और जेन अल्फा पर भी है। पेपर लीक रोकने के पुख्ता इंतजाम, लखनऊ की आईटी सिटी को विस्तार और आईटी कंपनियों को यूपी में लाने का वादा एजेंडे में शामिल हो सकता है। अखिलेश सरकार के चर्चित वादे कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता और मुफ्त लैपटॉप फिर लौट सकते हैं। महिलाओं के लिए सालाना 40,000 रुपए की घोषणा और यश भारती सम्मान की वापसी का भी वादा हो सकता है।
8: बिना आधी आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है। पहले भी समाजवादी सरकार में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो फैसले लिए गए थे, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और देश के लिए उदाहरण बने हैं। हाल ही में जापान का एक डेलीगेशन जब आया, तो उस डेलीगेशन को वही 1090 जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, उसी को दिखा करके सरकार ये बताना चाहती है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए वो क्या फैसले और क्या काम कर रहे हैं।
7: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहां माफियाओं को, दंगाइयों को, पेशेवर अपराधियों को पाला, उन्हें प्रोत्साहित किया, उनके सामने नतमस्तक हुआ करते थे। वही लोग यूपी के बीमारूपन के कारण भी थे, यूपी के निवेश के विरोध, यूपी में निवेश के विरोधी भी थे, यूपी में पर्यटन के विरोधी भी थे, यूपी में महिला सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए थे, और उत्तर प्रदेश के युवाओं की नौकरी और युवाओं के रोजगार पर भी सबसे बड़ी डकैती डालने का काम ये वही लोग करते थे।
1: सीएम योगी युवाओं को भी साध रहे हैं और महिला वोटरों को अपने पाले में खींचने के लिए योजनाएं भी ला रहे हैं। तो नीट पेपर लीक के खिलाफ छिड़े आंदोलन और विपक्ष के इस मुद्दे की काट निकालने के लिए भी पूरी रणनीति के साथ उतरे हैं
7: कि जो भी पर्चा लीक के इस अनैतिक कार्यों में लिप्त होगा, उसको आजन्म कारावास के लिए जेल के अंदर सड़ाएंगे, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे, और ये कार्रवाई यूपी के अंदर हम प्रभावी ढंग से कर रहे हैं, तब हम यूपी के अंदर बिना भेदभाव के आरक्षण की नीति को पालन करते हुए 9.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में हम लोग सफल हुए हैं। जिन्होंने अच्छा किया नहीं वे अच्छा देख भी नहीं सकते, और यह इनकी सबसे बड़ी समस्या है। एक केंद्रीय मंत्री के बारे में समाजवादी पार्टी के मुखिया किस प्रकार की हल्की बातें करते हैं, यह इनकी उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो उन लोगों ने 17 के पहले यूपी के अंदर किया था।
1: यूपी में योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए समाजवादी पार्टी फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, ये शिवपाल सिंह यादव ने कंफर्म कर दिया है। लेकिन कांग्रेस ये स्वीकार कर रही है कि यूपी में बीजेपी को हराना आसान नहीं है।
9: जनता अब की बार हमारा जो गठबंधन है अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, ये रहेगा और मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा।
10: जो करने काम करने का तरीका है वो सिंपल और साफ है कि लड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि जिसका नतीजा आए, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी होना है उसे तुरंत कर करके जल्दी से हमें मैदान में निकलना चाहिए। बीजेपी हमसे आगे ना निकल जाए, बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है, हवा के अंदर बीजेपी नहीं हार रही है।
1: सीएम योगी की टक्कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ से तगड़ी है, ये कंफर्म है। लेकिन मायावती ने भी चुनावी मैदान में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन बीएसपी में मायावती की बात आते ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की जुबान पर ताला लग जाता है। ये बात तो सबको पता है, लेकिन मायावती के बड़े भतीजे की पहेली का जवाब किसी के पास नहीं है। लखनऊ में पार्टी की ऑल इंडिया स्तर की एक अहम बैठक की अध्यक्षता करने जब मायावती आई तो उनके साथ आकाश आनंद नहीं थे।
11: इधर बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मायावती, वो यहाँ पर पहुंची हैं, और ये पूरे देश भर से अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं। वो अब ऐसे में चूंकि बसपा 2027 की बड़ी तैयारियों के साथ में यहाँ पर है, और इस बार जो जिम्मेदारी है वो उन सभी पर तैयारी की जिम्मेदारी है कि आखिर 2027 में कैसी ये रणनीति तय होगी। आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस बार आकाश आनंद नहीं है, लेकिन साथ में उनके अन्य लोग मौजूद हैं।
1: मायावती के पीछे सबकी नजरें आकाश को ढूंढ रही थी, लेकिन आकाश की जगह उनके छोटे भाई ईशान दिखाई दिए, जो मायावती के कुर्सी पर बैठते ही अपने पिता के साथ चुपचाप बाकी नेताओं के साथ खड़े हो गए। वही आकाश आनंद जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल कहकर खुद को युवाओं यानी जेन जी के बीच एक युवा विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे थे।
12: सो कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहां भाजपा कर रही है। रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताएं।
1: 2024 में मायावती का वोट जिस तरह से बिखरा, कम हुआ, बाकी पार्टियों में बटा, उसने यूपी का सियासी गणित पलट कर रख दिया। अब सवाल ये है कि क्या अगले साल विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट पूरी तरह बिखर जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी को विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ हथियार बनाया, क्या अब बीजेपी ने उसका तोड़ निकाल लिया है। जी हाँ, ट्रस्ट के नए सीईओ रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र के साथ सवाल आता है कि क्या ट्रस्ट का ट्रस्ट वापस आ पाएगा, और तभी विपक्षी नेताओं के सवाल सियासत को नया मोड़ दे देते हैं। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने तो ये शक जाहिर कर दिया है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर का सच दबाए रखने के लिए सरकार ने जितेंद्र मिश्रा को सीईओ तो नहीं बना दिया। बीजेपी कह रही है कि सेना पर सवाल उठाना और सनातन का अपमान करना कांग्रेस की फितरत रही है।
13: अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर से चढ़ावे की चोरी से राम भक्तों की आस्था को जितनी चोट पहुंची थी उससे ज्यादा हलचल सियासत में मची हुई है। नतीजा यह है कि कल ही भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अफसर जितेंद्र मिश्रा को मंदिर ट्रस्ट का नया सीईओ बनाया गया और आज ही उनकी तैनाती पर सवालों के बौछार किए जाने लगे।
14: लोगों के दिमागों में शक और शुबा पैदा करती है। ऑपरेशन संदूर के अंदर कहीं कोई सच तो नहीं छुपा हुआ, जिस वजह से उन्हें यहां पे सीईओ बनाया गया।
15: कांग्रेस अब मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस हो गई है। राशिद अलवी जी, आपने उस राज का पर्दाफाश कर दिया, जो हल्का फुल्का भरम का नकाब था वो भी आपने उतार दिया।
10: भाई ये काम साधु संतों का है। अब एयर मार्शल साहब ने हवाई जहाज उड़ाया, हवाई जहाज उड़ा लेते हैं, इनके आरएसएस के जंगल में फंस गए वो।
16: एक आदमी जो फौज की कमान संभालता था, इस धार्मिक इदारे की या धार्मिक मंदिर की कमान को कैसे संभाल पाएगा?
17: A retired Air Force man being appointed itself is a questionable thing.
18: मेरिट पर पोस्टिंग नहीं होती है, बल्कि जो इस बीजेपी का कोई भी काम अंजाम देता है उसके लिए पोस्टिंग्स होती है।
19: एयर मार्शल लगा हुआ है, अब ये कैसे मार्शल निकलते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
13: जिस जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के इस्लामिक दहशत गर्दों को नेस्तनाबूद किया, S-400 को निशाना बनाने की पाकिस्तानी चाल को नाकाम किया, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, 42 साल की राष्ट्र सेवा में जिस एयर मार्शल को शौर्य चक्र से विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल तक से सम्मानित किया गया, वो राम मंदिर ट्रस्ट में आकर खुद को धन्य मानते हैं।
20: चयन समिति का बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि उन्होंने इतने सब कैंडिडेट्स में से मेरा चयन किया है। इसे मैं श्री राम का आशीर्वाद भी मानूंगा कि 43 वर्ष राष्ट्र सेवा के बाद भारतीय वायुसेना में मुझे श्री राम ने एक और अवसर प्रदान किया है जहां पर मैं श्री राम मंदिर और श्री राम भक्तों की सेवा कर पाऊंगा।
13: जितेंद्र मिश्रा राष्ट्र सेवा के बाद राम भक्तों की सेवा को अपनी खुशकिस्मती मानते हैं, लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी की सियासत का हिस्सा बता रहा है। अब सवाल जात पात से लेकर बिजनेस धंधे तक उठ रहे हैं।
21: एक मिश्रा जी गए, निपेंद्र मिश्रा जी गए तो दूसरे आए, क्या कोई दलित ओबीसी नहीं हो सकता था?
22: इसका मतलब सरकार को, मोदी जी को भाजपा आरएसएस वीएचपी के लोगों पर विश्वास नहीं रहा।
23: ये धर्म का स्थान है, भगवान राम का जन्म स्थान है, यहाँ पर परम पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा नामित होना चाहिए, धर्माचार्य को वहां बैठाना चाहिए था।
13: राम मंदिर ट्रस्ट में 2 सितंबर को बैठक में बड़े बदलाव हुए हैं। गोविंद देवगिरी को ट्रस्ट का नया महासचिव बनाया गया है, महेश भागचंदका को ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष बनाया गया है, अधिवक्ता मदन मोहन पांडे और शिक्षाविद निर्मला यादव ट्रस्ट में नए सदस्य बनाए गए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अफसर को लेकर उठाए जा रहे हैं।
24: तीर्थ क्षेत्र न्यास का सीईओ बनाए जाने पर भी सेना पर आपत्ति कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी की पुरानी रवायत है, वो देश के सेनाध्यक्ष को गुंडा कहते हैं, वो बार बार सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं और अब एयर मार्शल के सीईओ बनाए जाने पर भी राशिद अलवी सवाल खड़ा कर रहे हैं।
13: हालांकि विपक्ष के सवाल सिर्फ सेना के अफसर को सीईओ बनाने को नहीं है। विपक्ष आरोप लगाता है कि सेना के अफसर को सीईओ बनाकर सरकार चढ़ावा चोरी के असली गुनहगारों को बचाना चाहती है। विपक्ष की मांग है कि जब तक ट्रस्ट के पुराने जिम्मेदारों पर मुकदमा नहीं होता, सीईओ की तैनाती से पुराने पाप नहीं धुलेंगे, क्योंकि चंदे से चढ़ावे तक में गड़बड़ी के आरोप है जिनकी पूरी जांच बाकी है।
25: आई एम राइटिंग ए लेटर एंड थरूली इंक्वायरी, एवरी मनी शुड कम टू दी बैक टू दी राम।
26: He may be raided by ED if he finds some real facts behind it.
27: मंदिर का कॉर्पोरेटीकरण हो गया है, बिजनेस हो गया ना। जब बिजनेस होता है तो सीईओ आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, डायरेक्टर्स आते हैं, सब लोग आते हैं।
13: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट पर इतने हमले नहीं हुए जितने सवाल इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर के सीईओ बनाने के बाद हुए हैं। इसमें सवाल ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जाति तक और सेना को धार्मिक मामलों में घसीटने से लेकर चंदा चोरों को बचाने तक के उठाए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा ने दावा किया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जिसके लिए वो मान सरकार पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं।
2: एसआईआर पर जारी घमासान के बीच अब पंजाब में राघव चड्ढा को लेकर सियासत तेज हो गई। राघव चड्ढा ने पंजाब सरकार पर वोटर लिस्ट से नाम बाहर करने का आरोप लगाया है। मैं पंजाब में राज्यसभा का मौजूदा सांसद हूं और मेरा वोटर आईडी पंजाब के मोहाली में रजिस्टर्ड है, फिर भी वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में मेरा नाम शिफ्टेड दिखाया गया है। ये सिर्फ कोई क्लर्क की गलती नहीं लगती, ये साफ तौर पर राजनीतिक बदले की भावना का मामला है। हो सकता है कि पंजाब में आपकी सरकार हो, लेकिन पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उनकी निजी संपत्ति नहीं है। उधर मान सरकार के मंत्रियों का कहना है कि ये चुनाव आयोग से जुड़ा मामला है जिसका पंजाब सरकार से कोई लेना देना नहीं है।
3: ये बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट अथॉरिटी भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, ये बता दीजिए, क्योंकि उसको तो इलेक्शन कमीशन को तो वही अपॉइंट करता है, उनको स्टेट तो करती नहीं है।
4: पर उनका कहना है कि जो बीएलओ है या फिर जो पंजाब
3: का वो बहुत बड़े झूठ बोलने के माहिर है, आप उनकी वीडियो निकाल के देख लीजिए। पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दोष लगाए थे, अब उनको दोहरा रहे हैं।
5: पंजाब में 20 लाख लोगों के वोट कट गए और ज्यादातर प्रवासियों के कट गए, जहां इतने प्रवासियों के कट गए वहां एक प्रवासी और कट गए।
2: हालांकि राघव चड्ढा कहते हैं कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है, जहां वो एसआईआर की गाइडलाइन के तहत वापस अपना नाम जुड़वाएंगे, लेकिन इस मुद्दे ने कांग्रेस को एक बार फिर एसआईआर पर हमले का मौका दे दिया है।
6: इलेक्शन कमीशन आम आदमी पार्टी चला रहा है क्या? जो राजदूत का नाम कटा है, जो तीन तीन देशों में सेवा देकर आए, उनका नाम किसने कटवा दिया? इसीलिए तो हम एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।
2: राघव चड्ढा पंजाब से पहले आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पंजाब की वोटर लिस्ट में नाम ना होने से उनकी राज्यसभा सदस्यता जा सकती है? हालांकि अब नियमों में बदलाव किए जा चुके हैं, जहां राज्यसभा सांसद देश के किसी भी हिस्से में मतदाता के तौर पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

सीएम योगी ने फूका चुनावी बिगुल, बोले यूपी में फिर से धमाकेदार तरीके से बनाएंगे सरकार। अखिलेश परवार, कहा एसपी के मुखिया की भाषा हल्की। बीएसपी में किसी बड़ी जिम्मेदारी देने से मायावती के इनकार के बाद भतीजे आकाश आनंद ने बदला एक्स प्रोफाइल, खुद को लिखा पार्टी कार्यकर्ता, बाबा साहेब की सोच का युवा समर्थक। ममता से अलग होकर एनसीपीआई में शामिल 20 सांसदों को 22 सितंबर तक जवाब देने का मिला वक्त, स्पीकर ओम बिरला ने बढ़ाई मियाद, टीएमसी ममता गुट ने की है सदस्यता रद्द करने की मांग। यूक्रेन के दौरे पर कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, रूस से जारी युद्ध पर जताई चिंता, कहा शांति के पक्ष में है भारत। और बिहार में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, पटना समेत आठ जिलों में हाई अलर्ट, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सतर्क।